ओम शांति। हमारी शुभ भावनाएं हमें महानता की ओर ले चलती हैं, जो विश्व कल्याणकारी हैं, जिन्हें भगवान ने अपने महान कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें अपने चित्त को शांत रखते हुए अपने महान कर्तव्यों की ओर मुख करना चाहिए और उसमें हमारी सबके लिए शुभ भावनाएं और शुभ वृत्ति बहुत ही बड़ा काम करती है। किसी के लिए भी निगेटिव वृत्ति ना हो, घृणा की वृत्ति ना हो, ईर्ष्या की वृत्ति ना हो, शुभ वृत्ति, सबको आगे बढ़ाने की भावना, सबका कल्याण करने की इच्छा, सबको सुख देने की इच्छा, ये महान आत्माओं के लक्षण हैं। तो चेक कर लें, हमारे मन में किसी को भी गिराने चढ़ाने की भावना तो नहीं है? ऐसा तो नहीं हम इस दलदल में फंस गए हैं? ये दो दलदले हैं, तेरा मेरा और गिराना चढ़ाना। इनसे उन आत्माओं को मुक्त रहना है जो इस संसार को कुछ देना चाहते हैं। संसार प्यासी नजरों से हमारी ओर देख रहा है। जिनकी ओर संसार की अनेक आत्माएं निहार रही हैं, वो किसे देख रहे हैं? वो कहाँ हैं? सोच लेना है। क्या हम संसार की इन बातों पर खरे उतरेंगे? जिस सब के लिए हमने त्याग किया है, ये पवित्र जीवन अपनाया है, संसार की तृष्णाओं को लात मारी है, क्या वो सब महान बलिदान करके हम कहीं उलझ गए? जो उलझ गए वो तो गए, महान कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये न भूलो, बाबा ने हमें अपने खजाने दिए हैं, जन्म दिया है, वरदान दिया है, शक्तियां दी हैं, अपना शुभ भावनाओं का हाथ हमारे सिर पर रखा है। वे हमें इस संसार में चमकाना चाहते हैं, विश्व की स्टेज पर लाना चाहते हैं, केवल चमकाने के लिए नहीं, लेकिन संसार का कल्याण करने के लिए, संसार को दुखों से मुक्त करने के लिए। हम शुभ भावनाओं से अपने चित्त को भरकर विजयी आत्मा बनने की ओर अपने कदम बढ़ाएं। हमें माया के हर स्वरूप पर विजय पाना है और विजय पाते पाते विजयी रतन बन जाना है। कोई भी ये न सोचे हम तो देर से आए हैं, या हम तो समर्पित नहीं हैं, या हम तो अपने गृहस्थ में रहते हैं, हम भला विजय माला में कैसे आएंगे? नहीं, बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि अंत तक भी 3-4 सीटें खाली रखी जाती हैं, ताकि कोई भी अगर तीव्र पुरुषार्थ करके उन चेयर्स पर बैठना चाहे तो उसको खुली ऑफर होती है। कोई ये नहीं कह सकता हम तो अंत में आए हैं, अब के बाद भी आने वालों को सुंदर चांस रहेगा, केवल लगन से उस ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता होगी। सब चीजों का त्याग करके, त्याग कोई घरों का या धन संपत्ति या काम धंधे का नहीं, व्यर्थ का त्याग, झंझटों का त्याग, दूसरों को देखने का त्याग, दूसरों की अवगुणी वृत्ति रखने का त्याग, ईर्ष्या द्वेष का त्याग, इन सब पर भी बहुत सहज विजय पाई जा सकती है और विजय पा लेनी है। इसलिए सभी अपने कदम तीव्रता से आगे बढ़ाएं और विजय माला को अपने गले की माला बना लें, विजय माला में सुशोभित हो जाएं, ताकि हम बाबा के गले का भी हार बन जाएं। याद रखेंगे, विजय माला तो उनके ही गले में पड़ेगी जो स्व परिवर्तन करेंगे, जो दूसरों को बदलने की सोचते रहेंगे, उनको कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे, वह मैं विजय माला का मणका हूं। हो सके तो अपना नंबर फिक्स कर देना, विजय माला में आने के लिए 8 घंटे योग चाहिए, कर्म योग, चलते फिरते योग, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता की धारणा चाहिए, तेरे मेरे मैंपन का संपूर्ण
त्याग होना चाहिए, सुभावनाओं से जीवन भरा हुआ हो, चित्त निर्मल हो गया हो और हम बाबा के कार्यों में संपूर्ण समर्पण भाव से तत्पर हों, तो विजयमाला में आने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा और सारा दिन अभ्यास करते रहेंगे। परम धाम से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। कभी सूक्ष्म वतन से बाप दादा के मस्तक से निकली हुई रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। सारा दिन इस अभ्यास का आनंद लेंगे। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, सुस्वागतम। हमेशा की तरह एक सुविचार के द्वारा हम करते हैं हमारे कार्यक्रम की शुभ शुरुआत। कहते हैं कि कोई भी समस्या सदा के लिए नहीं होती, वह तो आपकी जिंदगी में अनुभव के पन्ने पर हस्ताक्षर करने के लिए आती है और आपको बहुत कुछ देख कर जाती है। वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हाँ, सिखाने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा वक्त भी ले लेता है। इसलिए सीखते रहने के लिए धैर्यता को जब हम साथी बनाते हैं, तब अनुभव के पन्ने पर ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर कर सकते हैं। दोस्तों वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो सदा काल के लिए नहीं होती, लेकिन वो हमारी परीक्षा लेकर जरूर जाती है। हमारी परीक्षा होती है पेशेंस की, हमारी स्थिति की, मनस्थिति की। और उस समय सचमुच अगर हमारे मन में आत्मविश्वास है, हमारा भगवान पर भरोसा है, तो उस परीक्षा में हम बहुत ही अच्छी तरह से हम पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता। दोस्तों वैसे भी देखा जाए तो आज जिंदगी में हर एक के पास कई सारे अनुभव है, और उस अनुभव के द्वारा समझदारी भी हमारी बढ़ती रहती है। हम इस समय अमृत धारा में ये भी अनुभव कर रहे हैं कि सचमुच शास्त्रों के द्वारा सुनाया गया ज्ञान जो है, वो आज तक हमने किस नज़रिया से देखा था, और जब हमने उसका चिंतन करना शुरू किया, उस चिंतन को अपने ज़िंदगी में ढालना शुरू किया, तब सचमुच ये भी एक अनोखा अनुभव हम करते जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? चलिए दोस्तों, शास्त्रों की बात हो रही है और इसी शास्त्रों के सिलसिले में श्रीमद् भागवत कथा का हम बहुत सुंदर चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, आपने जो सुविचार सुनाया उसमें मुख्य रूप से अनुभव शब्द के ऊपर मैं विचार कर रहा था। अनुभव जब खुद अनुभव नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरों को बता नहीं सकते, और इसलिए अनुभवी का महत्व संसार में बहुत है। इतना ही नहीं, अगर कोई नौकरी के लिए चला जाता है, उसने डिग्री भले हासिल की होगी, बहुत अच्छी तरह से मार्क्स भी मिले होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, तो उसको प्राधान्य दिया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है, और उसकी तनख्वाह भी फ्रेश जो ग्रेजुएट होते हैं उससे भी ज़्यादा होती है। तो ज़िंदगी में हर एक का अनुभव हमें लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम समस्या जो है उसका भी अनुभव हमें लेना है। लेकिन समस्या हर किसी के ज़िंदगी में आती ही है, चाहे हम लेना चाहे या ना चाहे। ना चाहते हुए भी ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा कि जिसके ज़िंदगी में समस्या नहीं आए। लेकिन समस्या को जब पार कर लेता है, तब क्या होगा, उसका अनुभव होगा, और फिर दूसरी समस्या आती है तो वो अनुभव जो है उसका उपयोग जिंदगी में बहुत होता है। और भी एक चीज़ आपने जो सुनाई वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये परिस्थिति जो है वो क्षण काल के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है, और इसलिए मन को समझाना है कि ये परिस्थिति जो है, ये स्थिति है, ये समस्या है, कुछ देर के लिए है, ज़्यादा देर नहीं है, वो भी चली जाएगी। इसके साथ साथ महान विद्वान जो है वो भी कहते हैं कि अच्छी स्थिति जो होती है उसमें कभी कभी हमें अहंकार आता है, वो अहंकार ना आए, इसके लिए ये भी हमें सोचना है कि ये भी दिन चले जाएंगे। कोई भी दिन हमेशा के लिए नहीं रहते, चाहे अच्छे या बुरे, और इसलिए समय को चक्र कहा जाता है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही, और मैं समझती हूँ आज जिंदगी में हर कोई किसी न किसी प्रकार से अनुभवी है, और अनुभवी होने के कारण हमें समझ भी आती है, समझदारी हमारी बढ़ती जाती है। दोस्तों चलिए, समय हो गया है एक बहुत सुंदर कथा सुनने का, और आज की कथा का नाम तो बड़ा ही सुंदर है, स्वर्ग के दर्शन। वैसे देखा जाए तो स्वर्ग के बारे में हर कोई जानना चाहता है, उत्सुक है, और बहुत कम जानकारी है हमें स्वर्ग के बारे में। लेकिन हाँ, जब सब सुखों का भंडार है तब ये जरूर निकलता है, अरे वाह, इनके पास तो जैसे स्वर्ग सुख है। लेकिन स्वर्ग है क्या? एवन बहिष्ट, बहुत सारे नाम है उसके। तो ये स्वर्ग के दर्शन कौन करता है, किस प्रकार से करता है, बहुत सुंदर बात इस कहानी में बताई है। चलिए दोस्तों सुनते हैं। एक छोटा सा लड़का भोला भाला, प्रतिदिन उसकी एक आदत थी, कौन सी, कि वो रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी जरूर सुनेगा, और दादी भी उसको अलग अलग प्रकार की कहानियां सुनाती थी, कभी नागलोक, कभी पाताल लोक, कभी चंद्रलोक, कभी सूर्यलोक, ऐसी कहानियां सुनाती थी। एक दिन दादी ने उसे बहुत सुंदर स्वर्गलोक का वर्णन सुनाया। इतना सुंदर स्वर्ग का वर्णन था कि उसे सुनकर ये छोटा भोला भाला बच्चा स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। दोस्तों चलिए, उसके साथ हम भी देखते हैं स्वर्ग, किस प्रकार का स्वर्ग दादी ने वर्णन किया, और सचमुच स्वर्ग क्या होता है, जरूर सुनते हैं कहानी के द्वारा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, चलिए स्वर्ग देखने के लिए सब तैयार हैं? तो आगे कहानी क्या कहती है? तो ये छोटा भोला भाला लड़का जिद करने लगा दादी के पास, हट करने लगा कि मुझे तो स्वर्ग का दर्शन करना ही है। दादी माँ ने उसको बहुत समझाया, अरे बेटा, मनुष्य स्वर्ग देख नहीं सकता। ये रोने लगा, रोते रोते सो गया और उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते हुए देवता उसके पास खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए बड़ा मूल्य देना पड़ता है। देखो, तुम सर्कस देखने के लिए जाते हो तो टिकट लेते हो ना, खरीदते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी उसी प्रकार तुम्हें कुछ रुपये देने पड़ेंगे। अब ये स्वप्न में भोला भाला लड़का सोचने लगा, कोई बात नहीं, मैं दादी से रुपये मांग लूंगा। लेकिन देवता ने कहा, अरे बेटा, स्वर्ग के लिए तुम्हारे यहाँ के रुपए थोड़ी चलते हैं, यहाँ तो भलाई पुण्य कर्मों के रुपए चलते हैं। अच्छा, तुम अब यह डिबिया तुम्हारे पास रखो। देखो, अगर तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें एक रुपया आ जाएगा, कोई बुरा काम करोगे तो एक रुपया इसमें से उड़ जाएगा, और जब ये पूरी डिब्बी भर जाएगी तब तुम्हें स्वर्ग दिखाई देगा। ये भोला भला लड़का जो है, इतनी सुंदर बातें सुनते हुए अचानक जाग गया, नींद उसकी टूट गई और देखा उसने तो उसके सिरहाने पर एक डिबिया भी थी। बड़ा प्रसन्न हुआ और उस दिन दादी ने उसे एक पैसा भी दे दिया था। पैसा लेकर वो घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा तो इस लड़के ने भिखारी को बिना पैसे दिए बताया कि जाओ यहाँ से भागकर। और इतने में उसने देखा कि ये उसके अध्यापक सामने से आ रहे हैं, और अध्यापक जो थे वो उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। ये देखकर उस लड़के ने भिखारी को बुलाया और पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी, प्रशंसा की। घर लौटकर बच्चे ने डिबिया खोली, परंतु क्या, वो तो खाली पड़ी थी। उसको बहुत दुख हुआ, वो रोने लगा, रोते रोते सो गया। सपने में उसने देखा फिर से वही देवता, तो उसने प्रश्न पूछा कि मुझे क्यों नहीं मिले डिब्बी में पैसे। तो देवता ने कहा, तुमने अपने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, वो प्रशंसा मिल गई ना, आप क्यों रोते हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम करता है उसको व्यापार कहते, उसको पुण्य नहीं कहते। दूसरे दिन फिर से उसने दादी के पास से पैसा लिया। पैसा लेकर बाजार गया, दो संतरे खरीदे। उसका साथी, उसका दोस्त बीमार था, तो बाजार से लौटते समय जब वो दोस्त को मिलने के लिए घर गया तो उसने देखा कि एक वैद्य जी आए हैं, उसने दवा दी है और वो उनको कह रहे हैं, उसकी माता को, कि आज इसको संतरे का जूस पिलाओ। लेकिन वो बड़ी गरीब थी, रोने लगी, बोली कि मैं तो मजदूरी करती हूँ, पेट भरती हूँ, बहुत दिन से मजदूरी पर गई नहीं, इसको कैसे मैं संतरे का जूस पिला सकती हूँ। इतने में क्या हुआ, इस लड़के ने अपने दोस्त के खातिर बहुत प्यार से वो दो संतरे उसकी माँ को दे दिए और उसने उसको आशीर्वाद दिया। घर जाकर देखता है तो डिबिये में 2 रुपये चमक रहे थे। फिर से वो खेलने के लिए जब गया तो वहाँ उसकी बहन आई थी, दोनों में कुछ अनबन हो गई और इसने, लड़के ने बहन को बहुत ज़्यादा पीटा, बेचारी रोने लगी। घर आता है, देखता है सारे पैसे गायब। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारी बातें होने लगी। आखिर क्या हुआ कि इसने बहुत अच्छा काम कई बार करते हुए अपनी डिबिया भर ली। अब उसका स्वभाव ही हो गया था अच्छा बर्ताव करने का अब उसको डिबिया देखनी नहीं पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन जब एक बूढ़ा साधु उसने देखा रो रहा है और जब उसने पूछा, बाबा जी आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने उसको कहा, मेरे पास एक डिबिया थी, बहुत परिश्रम करके मैंने उसमें रुपये भरे थे, मुझे बड़ी आशा थी कि मैं स्वर्ग देखूंगा, लेकिन क्या हुआ कि आज गंगा जी में स्नान करते हुए डिबिया पानी में गिर गई। अभी तो मैं स्वर्ग देख ही नहीं सकता, देखो ना मैं अभी बूढ़ा भी हो रहा हूँ, कितने परिश्रम से मैंने रुपए जमा किए थे। तो इस समय यह लड़का बोला, महाराज आप चिंता नहीं करो, आप बूढ़े हो गए लेकिन आपको स्वर्ग जरूर दिखाई देगा, मेरे पास ऐसी ही एक डिबिया है जो पूरी भरी हुई है, मैं तो जवान हूँ ना, मैं तो फिर से भर सकता हूँ, आप ये डिबिया ले लीजिए। दोस्तों इस प्रकार से उसका स्वभाव ही हुआ था और सचमुच ही ऐसे काम करते करते जब वो बहुत अच्छा बन गया तो एक दिन क्या देखता है कि उसको फिर से वो देवता मिली सपने में और उन्होंने उसको सचमुच स्वर्ग दिखाया। उसने जो दादी माँ से स्वर्ग का वर्णन सुना था उससे कई सुंदर, कई गुना सुंदर ये स्वर्ग था। दोस्तों वो इतना खुश हो गया, उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो देवता ने उसको कहा, अगर आप अच्छे कर्म करते हो बिना किसी अपेक्षा से, तो सचमुच ही आप स्वर्ग में देवता जैसे बन सकते हो। और इसीलिए जो अच्छा काम करता है उसको कहते हैं देवता। दोस्तों छोटी सी कहानी है लेकिन सचमुच मुझे लगता है कि एक सुंदर और महान सीख हमें देकर जाती है। स्वर्ग देखने की तो बहुतों की इच्छा होती है लेकिन स्वर्ग और नरक का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है।
2: वाह बहुत ही अच्छी, स्वर्ग का मतलब छोटा सा बच्चा सपने में आना, बहुत ही सुंदर रीति से इस कहानी में पेश किया है कि स्वर्ग होता क्या है और उसके लिए क्या करना है। देखिए ये कहानी जब मैं सुन रहा था तब मुझे लगा कि हर एक को अभी जांच करनी है ये बच्चे जैसी, कि क्या हमारे पास जो डिब्बी है भरी है या खाली है। सुबह उठने से रात में सोने तक क्या हम अच्छे कर्म करते हैं, या कभी अच्छे कर्म करते हैं कभी बुरे कर्म करते हैं। किसी को डांटना, किसी की निंदा नालस्ती करना, ये भी बुरे कर्म हैं। अगर मैंने अच्छा कर्म किया और एक रुपया जमा कर दिया और फिर कुछ बुरे कर्म किए, नकारात्मक सोच की, किसी की निंदा की, किसी को ठेस पहुंचाई, तो दो रुपये गायब हो जाएंगे। तो कभी मैं निगेटिव में जाऊँगा कभी पॉजिटिव में जाऊँगा। तो ऐसे करते करते अगर मेरी डिब्बी खाली रहेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। शास्त्रों में इसका ही वर्णन शायद चित्रगुप्त का अकाउंट जो है, खाता जो है, उसमें किया है। वहां चित्रगुप्त बैठ के आपका लेखा जोखा करता है, आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। और फिर सब शास्त्रों में कहते हैं जब शरीर छोड़ के हम ऊपर जाते हैं और फिर अपना ही लेखा जोखा जब चित्रगुप्त हमें दिखाता है, उस समय पश्चाताप हो गया तो कोई फायदा नहीं है। तो ये कहानी सीख बहुत अच्छी देती है कि जो कुछ करना है वो अभी करना है, किसी के लिए वेट नहीं करना है। डिब्बी भरनी है, डिब्बी खाली ना हो, इसके ऊपर ध्यान जाए। तो अच्छे कर्म करते समय एक बार आदत लग गई तो अपने आप अच्छे कर्म होते रहते हैं। ऐसे कहते हैं कि अगर सुबह उठ के चलना, वॉक लेना, टहलना बड़ा अच्छा है सेहत के लिए, तो एक दिन आलस आ जाएगा, लेजीनेस आएगा, लगेगा कि मैं सो जाऊं। लेकिन ऐसे करते करते अगर हफ्ता, 15 दिन, 1 मास तक अगर आप चलते रहे, टहलते रहे, तो उसकी आदत पड़ जाएगी और फिर क्या होगा, अपने आप आपके सेहत में भी सुधार आ जाएगा। तो ये ऐसी ही आदत अच्छे कर्म करने की अगर हम डालें तो जिंदगी भर अच्छे कर्म होते रहेंगे और हमें देख के दूसरों को भी उसे प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, चलिए शास्त्रों में भी स्वर्ग का बहुत सुंदर वर्णन है, और वो वर्णन जो है वो सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, चर्चा करने के बाद हर कोई चाहता है कि हम स्वर्ग में हों। लेकिन क्या सबसे पहले हमारे मन में स्वर्ग जैसी स्थिति है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सुहाना है, तो मन में अगर स्वर्ग होगा तो जरूर ही हम इस धरा पर भी जल्द से जल्द स्वर्ग ला सकते हैं। दोस्तों इन्हीं शुभ बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर दशम स्कंध में अनेकानेक कथाओं का समावेश है और उन कथाओं के द्वारा हम एक अलग पहलू देख रहे हैं भागवत कथा का, और किस प्रकार से ये सारा भागवत पुराण जो है वो हमें भी हम अपने जीवन में एक संदेश देता है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो दशम स्कंध का ये अध्याय जो है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी गौओं को और गोपों को दावा नल से बचाते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वन में जो आग लगती है, बांसों या पेड़ों की दहनियों का एक दूसरे से रगड़ जाने से उत्पन्न होने वाली जो आग है, जो कई मीलों तक फैल जाती है, इसको कहते हैं दावानल। तो इस अध्याय में शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि एक बार जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए थे, तब उनकी गौवे जो है वो बेरोक टोक चलती हुई बहुत दूर तक निकल गई। हरी हरी घास के लोभ के वश एक बहुत गहन घने जंगल में वो घुस गई। अब जब श्री कृष्ण, बलराम और ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे गौवे, हमारे पशुओं का कोई पता ठिकाना है ही नहीं, खेलते वक्त तो वो भूल गए थे, अब उन्हें अपने खेल कूद पर बहुत बड़ा पछतावा होने लगा और वे उन गौओं की खोज बीन करने के लिए दूर निकले। गौवे ब्रजवासियों का तो जीविका का साधन होता है, अब गौवे ही नहीं मिल रही है तो उनके न मिलने से जैसे वे अचेत से हो रहे थे। परीक्षित, इस प्रकार भगवान और ग्वाल बाल दोनों निकल गए गौओं को देखने के लिए, और जब भगवान उन गायों को पुकार रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि वन में सब ओर, चारों ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई है, जो वनवासी जीवों का काल होती है। अब क्या करे, जोर जोर की आंधी भी चल रही है और उसके कारण तो अग्नि और भी बढ़ रही है, चारों ओर फैल गई है प्रचंड अग्नि की लपेटें और समस्त चराचर जीवों को

0: नेचुरल कलामिटीज होती रहती है। तो इन सारी बातों का जो वर्णन है, तो क्या इतने साल पहले भी ये दावा नल के कारण लोग पीड़ित होते थे?
1: भक्ति जी, ये जब कथा मैं सुन रहा था और पढ़ रहा था, तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि भागवत कथा जो है वह भविष्य और भूतकाल इसका महान संगम है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसे मिक्स किया है। और क्योंकि क्या पेश करते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर पेश करते हैं, आप कुछ अच्छा खाना बनाते हैं तब क्या करते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन उसमें डालते हैं तो क्या टेस्टी बन जाता है। तो शायद भविष्य में, पुराने ज़माने में, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसी ही आग लगती होगी, इसकी मिसाल मुझे ये लगती है कि शास्त्रों में दो प्रकार के वर्णन हैं। एक अर्जुन ने, महाभारत में कहा गया है कि अर्जुन में खांडव वन जलाया, एक बाण छोड़ दिया और उससे खांडव वन जल गया। इसका मतलब जंगल को जलना ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती है तब जंगल जलता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, अप्राकृतिक नहीं है। जब घर्षण होता है तब आग लग जाती है, और हवा जब जोर से फैलती है तब आग भड़क जाती है और फिर उसकी लपेटे में सब कुछ आ जाता है। अभी यहाँ देखिए, जैसे आग लग गई तो यहाँ जो वर्णन किया है कि ग्वालवाल जो थे उन्होंने आग देखने के बाद इसको पुकारा, भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण जी और बलराम जी के रूप में भगवान को ही उन्होंने पुकारा। अभी भगवान को पुकारने के बाद क्या आग बुझ जाएगी, ये प्रश्न बहुत सारे मित्रों के मन में आ सकता है। ये भगवान आग बुझाते हैं, भगवान आग जलाते हैं, या क्या करते हैं? क्योंकि खांडव वन में जब अर्जुन ने खांडव वन जलाया तब अर्जुन भी श्री कृष्ण जी का पट्ट शिष्य भी था और बहुत प्यारा था। तो एक प्रकार से किसी के मन में यह आशंका आ सकती है कि क्या भगवान उसके लिए मदद करता है। और यहाँ भागवत कथा में ये जो वर्णन है दावानल का, तो वहाँ क्या भगवान आग बुझाने के लिए मदद करते हैं, इसके ऊपर हमें चिंतन करना है, सोचना है, लेकिन अभी हमारे लिए इतना समय नहीं है।
0: जरूर ज्ञानेश्वर जी, और बहुत सारे प्रश्न भी उपस्थित होते हैं। जैसे आपने कहा कि दोनों को मिक्स किया है, काल का जो वर्णन आपने बताया, क्योंकि आज ऐसे हम समझते हैं कि मनुष्य जो है, मानव प्राणी जो है, वो तमोप्रधान हो गया, इसीलिए हम प्रकृति के पांचों तत्वों को भी बहुत दुख पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण ये सारी जो नैसर्गिक विपदाएं है, नेचुरल कलामिटीज है, वो आती है। लेकिन यहाँ भगवान और भी कुछ शायद संदेश हमें देना चाहते हैं, जरूर हम उस पर चिंतन करेंगे। चलिए दोस्तों, एक ब्रेक के बाद हम अपनी चिंतन की धारा को आगे बढ़ाते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर चर्चा हम कर रहे हैं किस प्रकार से विपदाएं आती है, और उन विपदाओं में ग्वाल बालों ने जब श्री कृष्ण जी को, बलराम जी को पुकारा, बहुत ही आर्त होकर पुकारा, तब क्या हुआ? शुकदेव जी कहते हैं कि अपने सखा ग्वाल बालों के दीनता भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, तुम डरो मत, बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। और उस आज्ञा का पालन करते ग्वाल बालों ने जैसे ही बहुत अच्छा कहते हुए आंखें अपनी मूंद ली, तो क्या हुआ? योगेश्वर श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया, और इस प्रकार उस घोर संकट से सबको छुड़ा दिया। दोस्तों, भगवान के लिए तो कुछ भी संभव है, लेकिन फिर भी प्रश्न जरूर मन में आता है कि उन्होंने आग बुझाई नहीं, आग को पी लिया। इतना भयंकर विकराल दावा नल जो कई सारे वन भूमि को और आने वाले हरेक को चपेट में लेकर भस्मीभूत करता है, वो उसको बुझा भी सकते थे क्योंकि आखिर वो भगवान है, लेकिन उन्होंने उसको पी लिया। ज्ञानेश्वर जी, इसमें भी कुछ संदेश लगता है मुझे।
3: बिल्कुल भक्ति जी, हर कथा में, चाहे भागवत कथा हो या महाभारत की कथा हो, बहुत अच्छा गहरा संदेश हमें मिलता है, लेकिन हमें उस नजर से उसे देखना है। ये कथा सुनने के बाद दो प्रकार के विचार मेरे मन में आ गए। एक, दावानल अग्नि, उसे भगवान ने पी लिया। अभी जैसे देखिए, हम मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं, मोमबत्ती की जो ज्योत है उसे अगर हम फूंक मारे तो क्या होता है? ज्योत जो है वो बुझ जाती है। फूंक मारने के बाद ज्योत बुझ जाती है, क्यों? क्योंकि फूंक में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाता है, और वो ज्वलनशील पदार्थ जो ज्वाला है वो बुझ जाती है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऐसे ही ये तो हमारी छोटी सी ज्योत है और हम फूंक मारते हैं, वो मिनी लेवल पे, छोटे लेवल पे है। लेकिन हम जब भगवान की बात करें तब क्या होगा? इतना बड़ा दावानल जो है उसे फूंक मारने का जो वर्णन किया है, तो उसमें क्या हो, फूंक भी मारते हैं तो फूंक मारने के बाद कभी कभी क्या होता है, ज्योत दिखती ही नहीं है और लगता है हमने उसे पी लिया। एक विचार। और दूसरा विचार, आध्यात्मिक विचार अगर हम ले, तो ये जो वाइल्ड फायर जिसे कहते हैं या दावानल जो कहते हैं, वो आग जो है वो जंगल में ही लगती है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि बगीचे में आग लग गई, जंगल में आग लगती है और संतों ने और महान विद्वानों ने वर्णन जो किया है वो संसार का जंगल जैसे किया है। और जंगल में रास्ता भटक जाते हैं, जंगल में बड़े बड़े घने घने पेड़ होते हैं, अंधेरा होता है और डर लगता है। अभी उसमें क्या होता है, हमें संसार तो करना ही है, जिंदगी आगे बढ़ानी है, लेकिन उस समय जो दावाग्नि का वर्णन जो किया है, दो वृक्ष जो है वो आपस में घिसते हैं तब आग भड़क जाती है। तो टकराव जो है, दो वृक्षों का टकराव, वैसे हमारे विचारों का भी टकराव होता है और इस जंगल में गुजरते गुजरते हम एक दूसरे से टकराते हैं। ये वृक्ष के रूप में अगर हम हमारे विचार ले, दो व्यक्तियां ले, दो हस्तियां ले, तो क्या होगा, विचारों का टकराव होने के बाद वो अग्नि का रूप लेता है, क्रोध को अग्नि कहा जाता है, क्रोध का रूप लेता है और फिर देखते देखते आग भड़क जाती है और उसमें सब लपेटे में आ जाता है। वहां जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ लपेटे में आ जाते हैं, वैसे यहाँ क्रोध का अग्नि अगर उठता है तब हमारे रिश्ते जो है वो भी लपेटे में आ जाती है। अभी ये लपेटे में आने के बाद कितना अच्छा वर्णन किया है, इस रूप से अगर हम भागवत कथा को देखें तो हमें सचमुच ही उन्हें सलाम करना होगा। कितना अच्छा वर्णन किया है, देखिए, जब आग लग गई, भयभीत हो गए, तब ग्वाल वालों को भगवान ने कहा आप आंखें बंद करो। अभी जैसे भयभीत हम भी होते हैं, कभी कभी क्रोध अग्नि आ जाता है और हम भी भयभीत होते हैं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, काबू नहीं कर पाते और ऐसे कुछ करके बैठते हैं, यहाँ पछतावा होता है। और इसलिए भगवान ने जैसे कहा वैसे हमने भी कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर ली, तो क्या होगा, हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। और जैसे भगवान ने कहा कि आग पी ली, तो भगवान की मन में अगर हम प्रार्थना करते हैं, भगवान को मन में बसाते हैं, तो वही क्रोध की आग जो है वो भगवान जैसे पी लेता है, बुझाता नहीं, पी लेता है। क्रोध की अग्नि जो है हमारे पेट में चली जाती है और फिर पेट में से या मुख से कुछ अच्छे शब्द निकलते हैं, सॉरी कहे या और कुछ कहे, तो क्या होगा, हम किसी से क्षमा याचना भी करते हैं और फिर ये दावानल जो है वो शांत हो जाता है। ऐसे कुछ विचार अगर हम मन में लाए तो ये कथा कितनी श्रेष्ठ है यह हमें पता चलेगा।
2: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने एक अलग रीति से, मैं समझती हूँ, हमारे सब श्रोतागण को चिंतन की धारा दी है। और वैसे भी देखो, शास्त्र में वर्णन है कि भगवान शंकर जी ने विष पी लिया। ऐसी जो बातें हैं, यहाँ विष कहो या आग कहो, ये एक हम इस रीति से ले सकते हैं कि हमारे अंदर की कमियाँ, हमारे अंदर के विकार, और इसके कारण शायद जंगल माना हमारे मन में या तो स्वर्ग है या तो जंगल है, लेकिन उस जंगल को मंगल करना है तो हमें भगवान की स्मृति चाहिए, और भगवान की स्मृति से हम हर किसी संकट से बच सकते हैं। अर्थात भगवान हमें बचाता है, केवल ये बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर की शक्ति जो है वो दुगनी होती है, और वो दुगनी होने के कारण उस संकट से हम बहुत अच्छी तरह से पार हो सकते हैं। ये भी एक चिंतन धारा हो सकती है। चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ समय को देखते हुए मैं भक्ति अपने वाणी को विराम देती हूँ। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक ऐसा कार्यक्रम जो आप सबको समाधान प्रदान करता है। और आजकल विशेष हम चर्चा कर रहे हैं युवाओं की, और युवाओं पे बहुत सारी चर्चाएं हमने पहले भी की थी, आप सबके ध्यान में होगा। लेकिन अभी हम विशेष करके कुछ युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वो सीधे तौर पे अपने प्रश्न हमारे सामने, भ्राता जी के सामने रख सकें। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है पीढ़ी अंतराल, अर्थात जनरेशन गैप। आप जानते हैं कि सृष्टि का नियम ही है परिवर्तन। हर चीज में परिवर्तन होता चला आ रहा है, चाहे मनुष्य का मन हो, बुद्धि हो, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, हर चीज में हम परिवर्तन देखते हैं। लेकिन जो बड़े हैं वो सोचते हैं कि हमने जो सोचा है, जो किया है, वही बातें सही हैं। लेकिन ज़माने के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, और जो युवा वर्ग है वो सोचता है कि आज ज़माने में जो चीज़ें हो रही हैं हमें भी उसके साथ चलना है। तो जब दो अलग अलग विचार सामने आते हैं तो एक गैप पैदा हो जाता है पेरेंट्स के बीच, और बच्चों के बीच एक दूरी बनती चली जाती है। कैसे इस दूरी को हम भरें, उसी पे आज की हमारी ये चर्चा रहेगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले जो हमारे आज के आमंत्रित मेहमान हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारी आज के जो दो मेहमान हैं, दोनों ही जयपुर से पधारे हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी, और आपका भी कृष्णा जी, क्योंकि आप दोनों ही विशेष निमंत्रण पर यहाँ पे आए हुए हैं। समाधान कार्यक्रम आप लोग देखते रहते हैं, तो आज के इस विषय पर हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी बातें हमारे सम्मुख रखें, भ्राता जी के सम्मुख रखें। और मित्रों, साथ ही हमेशा जो हमारे साथ रहते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी, आइए उनका भी आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक्स।
0: पहले मैं आप दोनों की ओर आता हूँ। आप लोग समाधान लगातार देखते हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या परिवर्तन अपने आप में महसूस कर रहे हैं, और क्या लगता है इसकी कितनी ज्यादा आवश्यकता है आज युवा वर्ग को?
1: समाधान प्रोग्राम एक पॉजिटिविटी को प्रोवाइड करवा रहा है, इससे युवा वर्ग भी काफ़ी मोटिवेट हो रहा है, और प्लस उन लोगों को देखने में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग आगे चल के क्या क्या करेंगे, कैसे हमारे समस्याओं का समाधान होगा, क्या करना चाहिए। और इससे पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि बच्चे क्या चाहते हैं और पेरेंट्स क्या चाहते हैं।
0: चलिए, मतलब ये बात हो गई कि जो जनरेशन गैप की चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं उसका पहले ही समाधान हो गया है। चलिए, बात अच्छी बात। आप क्या कहेंगे सुनीता जी?
2: पीस ऑफ माइंड चैनल चला है, और इसमें सॉल्यूशन वाला जो ये प्रोग्राम आपका आता है, तो जो दूरदर्शन के काफी सारे प्रोग्राम जैसे चैनल चला रखे हैं मीडिया ने, काफी सारी नेगेटिविटी आती है, तो जो अच्छा सोचता है, अच्छी थिंक है, वो सोचता है कि टीवी पे नेगेटिव आ रही है, क्या देखें क्या नहीं देखें। लेकिन जब से चैनल चला है तो उसे कुछ अच्छा सीखने को मिला है, और उसकी जो एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, उससे काफी सारे उनको सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं।
0: बहुत अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट है। आप लोग भी नियमित रूप से इसे देख रहे हैं और अपने जीवन में अमल में भी ला रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का। जी, विषय पे आते हैं, क्या कारण मानती हैं सुनीता आप कि ये जो एक गैप आ गया है दोनों के बीच में, किसे जिम्मेवार मानती हैं?
2: जैसे 30 ईयर्स या 40 ईयर्स या 50 ईयर्स माने, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, पेरेंट्स हैं, उनकी थिंक और आज की युवा पीढ़ी की थिंक, हमारी थिंक काफ़ी डिफरेंट हो गया है। ये सब एनवायरनमेंट और जो बढ़ रहा है, टाइम आता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। लेकिन जो यूथ है वो एनवायरनमेंट को देखकर सीखता है कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा नहीं करूं। लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, इस एनवायरनमेंट में ये वाली चीज़ें जो हमने सीखी है आपको भी वही सीखनी है। तो मैं तो ये समझती हूं कि पेरेंट्स की जो थिंक है वो भी मानकर चलनी चाहिए। जैसे बच्चा चल रहा है, अगर यूथ के हिसाब से चल रहा है, एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो वो अच्छी चीज़ों के साथ चले। अगर पुराने अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मानकर चले तो सही है। अगर वो सिर्फ अपनी ही देखकर ही आगे बढ़ता चल रहा है और सिर्फ अपना ही पक्ष देख रहा है, तो जनरेशन गैप तो अपने आप ही होगा।
0: चलिए, आप तो बिल्कुल सुलझी हुई हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ मिल करके चलना चाहिए। लेकिन यदि आजकल हम शहरों में देखें तो बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। माता पिता जो हैं उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है, बच्चे घर में आनंद से रहते हैं, तो आप पाते हैं कि सचमुच एक कलह का कई बार कारण बन जाता है, अशांति का कारण बनता है। प्रथा जी, आप क्यों आना चाहूंगा? गाँव में तो आज भी हमारी सभ्यता जीवित है कि हम एक पूरे समूह में रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी आदि सभी। लेकिन यहाँ शहरों में जो ये गैप आ रहा है, बच्चे तुरंत ही अलग हो जाते हैं अपने माता पिता से, क्या रीजन आप मानते हैं, किसको जिम्मेवार?
3: देखिए, गाँव में तो ये है कि माँ बाप अगर कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे तो वो समझते हैं हमारा बच्चा अभी पढ़ रहा है, वो एमएससी में है या एमबीए कर रहा है या वो इंजीनियर बन गया है, वो समझदार है हमसे। मैंने कितने माँ बाप को देखा वो अपने बच्चे को सम्मान देते हैं और उसके बाद सुनते हैं
0: जी,
3: मुकाबले इसके कि वो अपनी बात थोपे उस पर, उसकी सुनते हैं। और ये मैं सोचता हूँ कि गांव के बिना पढ़े लिखे लोगों की बुद्धिमानी है। अच्छा, शहरों में क्या हो गया है, माँ बाप भी पढ़े लिखे
0: जी
3: और बच्चे भी पढ़े लिखे, और हो सकता है माँ बाप उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हों, और युवक जो हैं वो मॉडर्न एजुकेशन लिए हुए, उनके जो फ्रेंड सर्किल है वो अलग, किसी का अच्छा है किसी का थोड़ा कम अच्छा है। तो माँ बाप कुछ चाहते हैं, बच्चे कुछ चाहते हैं। माँ बाप के विचार अगर वो 50-60 साल के हैं तो थोड़ी ओल्ड कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, और जो युवक हैं वो 20-25-30 साल के हैं तो वो बिल्कुल आधुनिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो उधर दूसरे विचार, इधर दूसरे विचार, तो एक जनरेशन गैप बनता ही जाता है। लेकिन इसमें मैं, जैसे सुनीता बहन कह रही थी कि अपने बच्चों को समझें, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, उनकी रुचि को परखें और उन्हें सहयोग दें। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा गलत दिशा में भी होता है, पहले इंजीनियरिंग में जाएगा, 2 साल करके कहेगा नहीं मैं तो एमबीए करता हूँ छोड़ो, फिर उधर जाएगा। तो ये होता है
0: जी।
3: ये नहीं कि बच्चों की गलती नहीं है, वो भी गलती करते हैं, लेकिन क्योंकि माँ बाप समझदार हैं, वो बड़े हैं, तो उन्हें उनको गाइड करना चाहिए। यहाँ समस्या ये होती है कि माँ बाप उन्हें कमांड देते हैं क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, ये करो ये नहीं करना है, लेकिन उन्हें अच्छी राय देना, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेना, उन्हें ऐसी बात करना कि बच्चों के मन में माँ बाप की राय और माँ बाप के लिए सम्मान हो, तो ये गैप इतना ज्यादा जाएगा।
0: प्रताप जी, ये बहुत सुंदर बात आपने कही है कि पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है थोड़ा सा बड़ा हो और वो अपने बच्चों को थोड़ी सी स्वतंत्रता भी दें। पेरेंट्स ऐसे हो, एक खुला माहौल दे बच्चों को। क्या लगता है कि पेरेंट्स ऐसे हैं, ऐसा माहौल देते हैं या इतने ब्रॉड माइंडेड हैं?
1: जैसे कई पेरेंट्स होते हैं जो एजुकेशन में काफी अच्छे हैं, तो वो लोग जानते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, कितना देना चाहिए, वो लोग करते हैं। जैसे आजकल हम गाँव में देखें, आजकल जो बच्चे करते हैं वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि फ्रीडम ज़्यादा हो जाती है। वो तो समझते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, जैसे उस बच्चा एमबीए कर रहा है, बोलो मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पता नहीं होता कि वो शहर में है, पेरेंट्स गांव में है, तो उससे कहीं ना कहीं वो बुरा असर भी आ जाता है। और हम शहरों में जब आएँ, पेरेंट्स क्या करते हैं कि मॉम भी जॉब करेगी और डैड भी जॉब करेंगे, तो उससे क्या होता है कि वो बच्चे का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं, बच्चा कहीं और जा रहा है, मम्मी पापा कहीं और जा रहे हैं, वो भी एक गैप का एक कारण है।
0: बिल्कुल, तो दोनों हो जाते हैं एक प्रकार से। विशेष करके ये मैं जानना चाहूंगा कि हम जब ये कहते हैं कि पेरेंट्स कहीं हमें एक स्वतंत्रता नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये भी बात आती है कि जब स्वतंत्रता दी जाती है युवाओं को, आप देखेंगे कि कई बार ओवर प्रोटेक्टिव तो हो जाते हैं पेरेंट्स, वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब वो पूरी तरह से स्वतंत्र भी कर देते हैं तो बच्चे गलत दिशाओं में निकल जाते हैं। अच्छा, स्वतंत्रता नहीं मिल रही है तो फिर ये गैप बन जाता है कि आप पुरानी मान्यता के हैं, हम नई पीढ़ी वाले हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, या ऐसे में कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का?
1: जैसे पेरेंट्स से काफ़ी अनुभव है उनको, तो उनकी कभी कभी बात टाइम माननी चाहिए। जैसे वो बोल रहे हैं कि बेटा इस रास्ते में मत जाओ, ये गलत है, तो हमें मानना चाहिए कि हाँ उनमें अनुभव है, वो इसीलिए कह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी जिद भी कर लेते हैं, नहीं मुझे वो करना है, मेरा दोस्त वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जिद भी बहुत बड़ा कारण बन जाती है और हम दूसरों को देखते हैं वो भी गलत है।
0: बिल्कुल, ये तो बात पक्की लग रही है कि आपके माता पिता और बड़ों के साथ आपकी कोई जनरेशन गैप वाली बात नहीं है।
1: मैं ज्वाइंट फैमिली से हूँ
0: जी,
1: हाँ, और मेरी फैमिली में सब लोग एक साथ रहते हैं, तो हमें तो कहीं ऐसा लगता नहीं है।
0: ये एक बहुत अच्छी चीज है दादा जी, जैसे कृष्णा जी ने कहा, अच्छा लगता है जब हमारी जो पुरातन संस्कृति है सब आपस में हिलमिल के रहते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन दुर्भाग्य से शहरों में ऐसा नहीं हो पा रहा है,
3: क्योंकि जो पुरातन हमारी संस्कृति है वो तो एक्सेलेंट है, लोगों ने ये मान लिया कि जो वर्तमान हमारी कल्चर है वो बहुत सुंदर है, पर ये वर्तमान कल्चर तो विदेश से ज्यादा आई है, सारा वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव
0: जो
3: सारे हमारे यहाँ हो गए हैं। तो वास्तव में युवकों को भी चाहिए कि वो अपनी पुरानी सभ्यता को समझें और बड़ों की बात को भी सुने, जरा सम्मान दें, जिद्दी ना हो जाए, क्योंकि जैसा आप लोगों ने कहा तो अति जो स्वतंत्रता है वो कहीं कहीं उनके बिगड़ने का कारण बन रही है। और माँ बाप अगर दोनों ही जॉब में हैं तो वो उन पर ध्यान भी नहीं दे पाते। और आजकल कॉलेजों में ऐसा माहौल है कि बच्चे जो हैं वो गलत संघ में आके कुछ गलत काम करने लगते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं। माँ बाप को एक ही बच्चा है, उसने भी सुसाइड कर लिया, माँ बाप रोते रह जाते हैं। तो ये इस चीज़ को ठीक करना है कि बच्चे भी माँ बाप की बातों को समझें। और अगर माँ बाप ने स्वतंत्रता दी है, बहुत माँ बाप अपने बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं, बच्चे जाओ पढ़ो, उन्नति करो, हम तुम्हें पैसा देते हैं, तो बच्चों को उसका सदुपयोग करना चाहिए।
0: बिल्कुल राधा जी, लेकिन ये जो एक प्रकार से ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पेरेंट्स, ठीक है, इसको कोई भी सही नहीं मानेगा, इससे कई बार युवा वर्ग ये समझता है कि हम अपने आप को खुलापन महसूस नहीं कर रहे हैं, विकसित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों में कई बार बैलेंस रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि कितनी स्वतंत्रता दी जाए और कितना प्रोटेक्टिव हम हों। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए भी एक कठिन विषय हो जाता है और इसमें शायद कहीं ना कहीं बच्चों के साथ उनके टकराव हो जाते हैं।
3: इसलिए मैंने कहा कि माँ बाप बच्चों को इतना तो न दबाएं कि वो कुछ कर ही ना पाएं, सदा ही जो वो कह रहे वही उन्हें करना है, और उनको इतनी स्वतंत्रता भी न दें कि वो अपने लक्ष्य को भूल के इधर उधर बिखर जाएं, जैसा कि आजकल हो रहा है।
0: जी, जी।
3: तो मैं यही बात फिर दोहराऊंगा कि माँ बाप को बच्चों को थोड़ा अच्छी तरह गाइड करना चाहिए और इतना प्यार देना चाहिए, इतना अपनापन देना चाहिए कि बच्चे समझें कि हमारे माँ बाप हमारे बड़े शुभचिंतक हैं और उनकी ये राय बहुत सुंदर है। और अगर मान लो उनकी कोई राय सुंदर नहीं है तो माँ बाप को भी चाहिए वो ऐसे फ्लेक्सिबल हों कि बच्चों की बात सुने और बच्चे अपनी बात कह पाएं, ऐसा माहौल घरों में परिवारों में क्रिएट करना चाहिए।
0: बिल्कुल, जैसे कि ये कहा गया है कि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो आप उनके मित्र बन जाएं, ऐसा ना हो कि उन पे अभी भी दबाव डालते रहें। तो मित्रवत यदि व्यवहार होता है तो शायद वो खुल के अपनी सारी बातों को कह भी पाते हैं। और मुझे लगता है व्रता जी एक बड़ा कारण लगता है, सुनीता आपको भी ऐसा ही होगा कि शायद कि कई बार ऐसा होता है कि मित्रवत व्यवहार नहीं होता तो बच्चे दूर रहते हैं, पेरेंट्स दूर होते हैं, तो आपस में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता और शायद ये एक बड़ा कारण बन जाता है गैप होने का। क्योंकि संवाद ही नहीं हो रहा है, संवाद शून्य है, तो दूरियां बढ़ती जाएंगी। क्या कहेंगे आप?
2: यू जब पेरेंट्स से बात करता है, जैसे मित्रवत भी करता है, तो सबकी थिंक एक जैसी नहीं होती है, पेरेंट्स की भी नहीं होती। बच्चे फैमिलियर जैसे फ्रेंड्स सर्किल के साथ रहकर वो बताते रहते हैं कि आज मेरी मम्मी ने मेरी बात सुनी, मेरी मानी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी मम्मी की तरह हमारी मम्मी भी हो। तो जाते ही घर बोलते हैं कि आज ये हुआ हमारे साथ, हमने ये देखा, तो डांटना शुरू हो जाता है उसी टाइम पे। फिर इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा झूठ बोलने लग जाता है, उसे लगता है कि हम जो बात बताते हैं घर जाके हमें तो उससे डांट मिलती है तो हम क्यों बताएं। तो झूठ स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे वो कम करता है, अपने दूरियां बनाना शुरू कर देता है अपने माँ बाप से कि नहीं मेरा सोल्यूशन
0: बात करता हूं, तब तो झूठ ही बोलना पड़ता है, उससे अच्छा है कि मैं बात ही ना करूं,
2: मेरा सोल्यूशन यहाँ मिल ही नहीं रहा। तो फिर वो दूसरी साइड जाने लग जाता है, तो गैप हो गया वो एक तरीके से, मतलब एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाया ना माँ बाप के बीच ना बच्चों। तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम जो है उसकी ओरिजिनल वो बता ही नहीं पाता, अपनी जो उसकी इच्छाएं हैं वो दबी की दबी ही रह जाती हैं वहां पर, वो कह ही नहीं पाता।
0: लेकिन सुनीता ऐसा नहीं लगता कि पेरेंट्स ही तो हमारे सबसे अच्छे शुभ चिंतक हैं? मान लीजिए वो नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम खुल के उनसे ऐसी बात करें, उन्हें इतने विश्वास में लेके बात करें जैसे भ्राता जी कह रहे थे, तो वो भी हमसे खुले, हमारी बातों को समझें और हमारे घर में ही हमारे मित्र हों, बनिस्पत इसके कि हम बाहर मित्र ढूंढें और उनसे शेयर करें। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे, क्या उनसे खुल के बात करके उन्हें हम अपना दोस्त नहीं बना सकते?
2: जिसे खुल के भी बात करते हैं तो भी उस काम के लिए मना किया जाता है, ठीक है वो उनकी बात ठीक है पेरेंट्स की, वो मना करते हैं, उनके नजरिए से वो ठीक होगा, लेकिन उसी टाइम पर मना करना, एक तो धीरे धीरे किसी चीज़ को ख़त्म करना, धीरे धीरे ही कोई चीज़ ख़त्म होती है। अगर आप इमीजिएटली उसी टाइम पे उस चीज़ को कि नहीं अभी ही करना है,
0: जैसे आदेश है,
2: आदेश है, जैसे गुस्सा आता है किसी बच्चे को, नहीं तुम्हें गुस्सा नहीं आना, तो बच्चा ज़्यादा रोता है उसी टाइम पे, वो ज़्यादा रोता है उस टाइम पे। अगर उसे प्यार से उस टाइम पे समझाया जाए, धीरे धीरे उसको समझाते हैं तो चुप हो जाता है। अगर माँ बाप भी धीरे धीरे बच्चे को समझाए तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है।
0: बिल्कुल।
2: अगर फिर भी अगर ऐसा लगता है कि ठीक है हमारे पेरेंट्स कर रहे, तो हमें उस माहौल में क्या करना चाहिए हमें कि हम हमारे घर वाले हमारी बात ही मान जाए या हमें उस गलत राह पे जाने से रोक भी दे, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए,
0: राता जी।
3: हाँ बिल्कुल ठीक बात ये इन्होंने कही है कि वास्तव में मैं तो ये देखता हूँ सब जगह कि ज्यादा गलती माँ बाप की है इसमें। भले ही हमारे दर्शकों को ये बात लगेगी कि ये युवकों का पक्ष ले रहे हैं, कई बार माँ बाप थोड़े किसी पिछले कारण से बड़े क्रोधी रहते हैं, झगड़े होंगे किसी से और गुस्सा उतारेंगे बच्चों पर, तो इसमें ये दूरी बढ़ती जाती है। इसलिए माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों की सुने, संवाद करें उनसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर माँ बाप उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत परिवार हमने देखे हैं, बच्चों को ऐसा अपने कॉन्फिडेंस में लिया है, अगर लड़की कोई गलती करके आई माँ को बताएगी आज मेरे से ये गलती हो गई मम्मी, और माँ उसको समाएगी और समझाएगी, डांटेगी नहीं। ये जो डांटने की वो है ना कल्चर, डांट कल्चर, ये बड़ी खतरनाक है। इससे बच्चे दूर होते हैं,
0: चले जाते
3: क्योंकि
0: हैं।
3: बच्चे अभी इतने परिपक्व तो नहीं ना कि वो डांट सहते ही रहें सदाई, उनकी भावनाएं हर्ट होती हैं, फिर उनको अपनी माँ माँ नहीं लगती है, बाप बाप नहीं लगता है, वो दुश्मन लगते हैं कि ये हमारे मार्ग में बाधक हैं, तो वो अपना मार्ग चुन लेते हैं। इसलिए माहौल घर में ऐसा बनाए माँ बाप अपने बच्चों के साथ कि बच्चे उनसे खुले, सब कुछ कहें उनको। जैसे मैंने बताया ना, मुझे माताएं सुनाती हैं हमारी लड़की इतनी अच्छी बड़ी गलती करके आ गई, तो भी आते ही मुझे बताया कि ये आज मेरे से गलती हो गई, मैं कान पकड़ती हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, मम्मी मुझे क्षमा करना, मुझे कुछ अच्छी चीज सिखाओ, मैं गलत संग में चली गई थी। तो माँ खुश हो जाती है, और चलो गलती तो मनुष्य ही करेगा ना, कोई जानवर थोड़ा ही गलती करेंगे। प्यार जहाँ है, अपनापन जितना ज्यादा है, ठीक है कल्याण की भावना तो होती है, लेकिन एक आदेश देने की जो वृत्ति है, इसको चेंज करके अगर बहुत अच्छी गाइडेंस, बहुत अच्छी एडवाइस, अपना प्यार बच्चों को दिया जाए, तो ये गैप निश्चित रूप से भर जाएगा।
1: आजकल क्या होता है कि जो किसी को एजुकेशन के लिए, किसी को जॉब के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, तो वो परिवार से एक तरह से मिलान नहीं हो पाता है, कन्वर्सेशन नहीं हो पाती है, तो वो परिवार की समस्याओं को और समझ नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गैप का कारण रहा है। हाँ। कि वो दूर रहता है घर से। हाँ। तो क्या रीजन रहे हैं उसके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं सभी के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
3: हाँ देखिए, अपने परिवार से कम्युनिकेशन तो रखना ही चाहिए, आजकल तो पत्र आदि लिखने की बात नहीं, कब लिखेंगे और कब उत्तर आएगा, सबके पास फोन है, और ऐसा कर देना चाहिए कि रोज एक बार 5 मिनट अपने परिवार से बात कर ली जाए, उसमें बात करके वो भी हल्के हो जाते हैं, वो भी हल्के हो जाते हैं। कोई ऐसी बात है, समस्या है, शेयर करें एक दूसरे को, कोई ना कुछ अच्छी बात एक दूसरे से मिलेंगी, कोई बात मन को भारी कर रही है वो सुनाने से भी टेंशन खत्म हो जाएगी, तो कम्युनिकेशन बनाए आपस में। देखो बाहर तो सबको ही रहना है, जॉब के लिए किसी को कहीं जाना पड़ेगा, किसी को कहीं, फिर उनको अपने परिवार होंगे ही, वो अपने परिवारों को एंजॉय करेंगे, लेकिन माँ बाप से प्रॉपर कम्युनिकेशन, उनको उसी तरह का सम्मान देना, ये बहुत आवश्यक है। अगर युवक अपने माँ बाप को प्रॉपर सम्मान देते हैं, तो माँ बाप के मन में भी युवकों से बहुत प्यार रहता है, और इससे समीपता बनी रहती है।
0: व्रत जी, दोनों की चर्चाओं से मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि बड़ों को युवा नहीं समझ पाते, और जो युवा हैं उनको बड़े नहीं समझ पाते, शायद एक दूसरे की कामना को नहीं समझ पाते। तो दोनों ही वर्ग हमारे पास हैं, आप हमारे प्रौढ़ पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और युवा हमारे साथ हैं। मैं पहले युवाओं से जानना चाहूँगा, आपकी अपने पेरेंट्स के साथ या जो बड़े हैं उनसे क्या अपेक्षा है?
1: हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि बड़ों को हमारी कुछ समझना चाहिए, उनको पूरी तरह से सुनना चाहिए। पहली बात तो है कि सुनना चाहिए, कि सुनना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज गलत बता रहे हैं, तो उसमें बताना चाहिए कि एग्जांपल के साथ कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन होगा।
0: ठीक है, सुने समझें और हमें समाधान दें। सुनीता,
2: पेरेंट्स को अपने बच्चों की पूरी बात को सुनना चाहिए, फिर उसमें उनको देखना चाहिए कि कौन सी बात गलत है और कौन सी सही है। अगर गलत है तो उसको सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और जो उनकी सही है उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जो मेरे साथ काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड सर्किल में जुड़े हुए हैं, तो जैसे विलेजर्स से अभी बताया आपने कि विलेजर्स की सोच अच्छी होती है कि अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन मैं जैसे कॉलेज वगैरह में मैंने गई, तो मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं, कई यूथ ऐसे देखे हैं, आ तो जाते हैं सिटी के अंदर, लेकिन वो जो यहाँ आके करते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं। तो जब उनको समझाया जाता है तो वो समझने को तैयार ही नहीं होते, उनको तो यूं लगता है कि किसी जेल से निकल कर आए।
0: लेकिन सुनीता, ये दोनों बातें जिस पे हम विशेष रूप से मैं लाना चाहता था वो यही था कि आपकी अपेक्षाएं पेरेंट्स सुने, समझें, हमारी अच्छी बातों को भी ध्यान दें, और बुरी बातें हैं तो प्यार से हमें समझाएं। व्रत जी, बड़ों की क्या अपेक्षा है?
3: युवकों से बड़े ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, युवा पीढ़ी उनका नाम रोशन करें। अगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका जिस फील्ड में भी हैं, माँ बाप का सीना गर्व से फूला रहता है। वो अपने फ्रेंड्स में, अपने समाज में बताते हैं, देखो हमारे बच्चे ये कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस उनको बहुत रहती हैं और युवकों को भी उनसे बहुत रहती हैं। बस यही है, एक दूसरे को समझें। और जैसा मैंने कहा, माँ बाप का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, युवकों को सहयोग दें पूरी तरह से, उन्हें समझें। जैसे आप लोगों ने कहा, हमारी ये कामना रहती है, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, माँ बाप को इस एक्सपेक्टेशंस को समझना चाहिए, अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए युवा वर्ग से। पर यहाँ समस्या वही आती है कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं टेंशन में, किसी चिंता में, किसी प्रॉब्लम में, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उनके बच्चों पर, युवकों पर जाता है, वो उतार देते हैं सारा। अभी रही बात जो आपने कही, ये प्रश्न हम बिल्कुल समुचित है, और हम भी जब स्टूडेंट थे तो देखते थे कि गांव से कई लड़के आए हैं और पूरी दादागिरी में हैं, जब चाहे कॉलेजों में स्ट्राइक करा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कि लेक्चरर को मारपीट कर देते हैं। तो ये वही जिनका एक अच्छा लक्ष्य नहीं होता है, तो माँ बाप ने उन्हें फ्री तो छोड़ दिया और वो बेचारे सोच के बैठे ही हैं कि लड़का MBA करने गया है, अब तो पढ़ के आएगा, हमारी गरीबी भी दूर करेगा और हमारा मान भी बढ़ाएगा, लेकिन बच्चा तो कहीं और ही जा रहा है। तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो यही स्पिरिचुअलिटी, राजयोग हमारी मदद करता है। जैसे आपने देखा, आपने अनुभवों से जाना कि हम उन्हें कुछ भी समझाएं तो हमें ही मूर्ख समझेंगे, बल्कि समझेंगे कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए, कोई तो होना चाहिए ना ऐसा करने वाला भी, वो अनेक तर्क देंगे आपको। लेकिन अगर हमारे अंदर राजयोग की शक्ति होगी, अगर हमारे अंदर स्वमान की शक्ति होगी, तो हमारे बोल में उनके लिए शुभ भावना, उनके लिए प्यार होगा, तो हमारा बोल बड़ा प्रभावशाली रहेगा। हमारे मन में उनके लिए नफरत नहीं रहेगी, ये क्या कर रहे हैं, ये बड़े गंदे लोग हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्यार और सुभावना से युक्त बोल, और जब स्वमान से भरे हुए बोल हम बोलेंगे, तो वो बच्चे अपनी उस गलती को अवश्य रियलाइज करेंगे कि माँ बाप उन पर खर्च कर रहे हैं, माँ बाप को उनसे अनेक उम्मीदें हैं, तो वो उन उम्मीदों पर खरे उतरें और कुछ ऐसा काम करें जिससे माँ बाप भी बहुत उत्साहित हों, बड़े प्रसन्न हों, माँ बाप का उन्हें आशीर्वाद भी मिले। मैं ये बात लास्ट में अवश्य कहना चाहूँगा कि युवा वर्ग इस बात को भूल चुका है, माँ बाप की ब्लेसिंग्स उनके लिए बहुत आवश्यक है, एक सुंदर भविष्य के लिए और जीवन में सफलता के लिए। इस बात को युवक छोटा न समझें, इसलिए प्रयत्न ऐसा करें कि माँ बाप उनसे प्रसन्न रहें, और माँ बाप को ये लगे हम जो अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है, वो ठीक रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल पावर हमें ये बल दे देती है कि हम एक बिगड़े हुए मनुष्य को भी सुधार सकते हैं। जैसे अंगुलीमाल डाकू की कहानी प्रसिद्ध है, महात्मा बुद्ध के पास स्पिरिचुअल पावर ही तो थी, तो अंगुलीमाल डाकू तुरंत रियलाइज कर गया कि ये सब गलत है और सरेंडर कर दिया।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी, आज की जो चर्चा रही है बहुत ही सुंदर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो गैप है वो भर जाए, क्योंकि गैप किसी को भी पसंद नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का भी, जयपुर से हमारे दोनों साथी जो पधारे हैं, कृष्णा सुनीता, बहुत बहुत शुक्रिया, पुनः आते रहिएगा। और साथ ही हम उम्मीद करेंगे, उम्मीद क्या, आप तो जॉइंट फैमिली में ही हैं, कि पेरेंट्स के साथ जो एक गैप है वो गैप बिल्कुल ना रहे, परिवार में खुशनुमा माहौल रहे, ताकि आप लोगों से दूसरे यूथ को भी प्रेरणा प्राप्त हो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जहां तक जनरेशन गैप की बात है, और जो मक्खन निकल के हमारे सामने आया वो ये कि यदि 3 S पे हम ध्यान दें, स्नेह, सहयोग और आपसी समझ के साथ सम्मान एक दूसरे के लिए, तो निश्चित रूप से गैप की कोई बात रहेगी ही नहीं। ऐसा लगता है कि आपस में जो दूरी है वो केवल संवाद की कमी के कारण ही है, और जहां संवाद नहीं है वहां क्लेरिटी नहीं आ पाती, हम समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे को, और फलतः जो स्नेह है वो कम होता चला जाता है, सहयोग है वो कम होता चला जाता है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि बच्चे उनसे दूर रहें, और ना ही बच्चे ये चाहेंगे कि माता पिता उनसे दूर रहें। परिवार आपस में एक शक्ति

देता है, परिवार आपस में एक दूसरे को बल प्रदान करता है। हम तो यही चाहेंगे जितने भी हमारे दर्शक हैं कि परिवार में वो प्यार, वो सम्मान, वो सहयोग कायम रहे, और जो ये पीढ़ी अंतराल या जनरेशन गैप वाला जो शब्द है ये हमारी डिक्शनरी से ही लोप हो जाए, हमारी तो यही शुभकामना है। तो आप सबसे पुनः जल्दी मुलाकात होगी।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया होंगे उम्मीद है, और आपका सब कारोबार घरवार सब अच्छा ही चल रहा होगा। मैं हूं आरजे शुभा, हाजिर हूं कार्यक्रम लेकर के गुड मॉर्निंग आबू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आज 18 जुलाई 2026 शनिवार की सुबह आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, और गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना जेनरेशन गैप को दूर कैसे करना है समाधान के अंतर्गत। और इस एपिसोड में आपको क्या क्या अच्छा लगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, 94-14-15-14-15 पर, कि जेनरेशन गैप इस एपिसोड में आपने क्या सीखा। आइए जानते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। शक संवत 1948 आषाढ़ शुक्ल पंचमी शनिवार, विक्रम संवत 2083 है, अंग्रेजी तारीख है 18 जुलाई सन 2026। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु है। राहु काल सुबह 9:01 से सुबह 10:30 तक है। पंचमी तिथि है, अगले दिन तड़के 3:42 तक, उपरांत षष्ठी तिथि का आरंभ है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:01 से, उपरांत उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का आरंभ है। वरियान योग रात्रि 8:46 तक, उपरांत परिध योग का आरंभ है। भवकरण दोपहर 4:06 तक, उपरांत बालवकरण का आरंभ है। चंद्रमा मध्य रात्रि 11:59 तक सिंह राशि पर, उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 5:35 तक था, और सूर्यास्त का समय 7:20 पर है। चंद्रोदय का समय 9:40 पर है। चंद्रास्त का समय रात्रि 10:04 तक। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी पंचांग के साथ। और आज राष्ट्रीय शाके 1948 शाके 27 गते 02 आषाढ़ शनिवार जैसे हैं, इस्लामी हिजरी है 1448-03 सफर हफ्ता और जुबरा आज के दिन है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी आज के दिन विशेष के साथ। लेते हैं यहाँ पर अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। गुड मॉर्निंग आबू।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। चलिए वेदर रिपोर्ट्स की ओर। सबसे पहले राजधानी जयपुर की ओर चलते हैं। यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है। उदयपुर में 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। आबू रोड में 37 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। माउंट आबू में 19 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 26 डिग्री तक जा सकता है। माउंट आबू में थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है। पाली राजस्थान में 28 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की कम संभावना है। जोधपुर में 28 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है। सूरत में 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकते हैं। सूरत में भारी बारिश होने की संभावना है। महसाना में 37 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर आसमान साफ रहेगा। राजकोट की ओर चलें, यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। 60% तक संभावना है बारिश होने की सुबह के समय। शाम के समय यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। गांधीनगर और अहमदाबाद के अंचल में 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। सुबह के समय बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है। रात्रि के समय थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है 60% तक। बादल छाए रहेंगे आसमान पर अहमदाबाद और गांधीनगर में। राजधानी दिल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है। 25% तक बारिश होने की संभावना है। कोलकाता में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकते हैं। 96% तक बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु में 28 डिग्री तक अधिकतम, न्यूनतम 20 डिग्री तक जा सकता है। और यहाँ पर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जोरदार भी बारिश होने की संभावना है। मुंबई महाराष्ट्र में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकते हैं। 91% तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। चेन्नई में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। 55% तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। जिला सिरोही में बारिश होने की संभावना है 25% तक। 38 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी बादलों के साथ, बारिशों के साथ, वेदर रिपोर्ट्स के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक 8:02 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। आज शनिवार 18 जुलाई 2026 और मैं हूँ आरजे शुभा। ये चलते हैं, जानते हैं गाड़ियों के बारे में जानकारियाँ। कौन सी गाड़ियाँ? बिल्कुल रेल गाड़ियों के बारे में जानकारियाँ, अब रोड रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियाँ जो अब तक 4 घंटे तक अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। आगरा कैंट से साबरमती तक जाने वाली सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 1, 2, 5, 4, 7 8:31 पर 6 मिनट देरी से चलती हुई पहुंचेगी। आरावली एक्सप्रेस 1, 4, 7, 0, 2 8:30 पर पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 9:05 पर पहुंचेगी। अजमेर एक्सप्रेस 1, 6, 2, 1, 0 9:10 पर पहुंचेगी। 9:45 पर जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 1, 9, 2, 2, 4 पहुँचने वाली है। जोधपुर बेंगलुरु सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 2, 0, 6, 9, 3 10:10 पर पहुँचेगी। और जोधपुर सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 2, 0, 4, 9, 6 संख्या वाली गाड़ी कैंसल्ड है। बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी तक जाने वाली एक्सप्रेस 2, 2, 9, 6, 5 11:05 पर पहुँचेगी। और दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 1, 9, 4, 1, 2 11:30 पर पहुंचेगी। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 1, 4, 8, 2, 2 11:40 पर पहुंचने वाली है। वहीं पर गाड़ी संख्या है 1, 9, 0, 3, 2 योगा एक्सप्रेस 1:04 देरी से चलती हुई 11:55 पर अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। इस मोड़ पर एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। कहते हैं उन्हें हेलो। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते भूरलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया है, आपका प्रोग्राम सुनकर के मैं आनंद ले रहा हूँ सर। और मेरा जो है आदमी के साथ में भजन सुना देना सर।
0: जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
1: आजा हनुमान वाला गाना है सर
0: जी, कोशिश करेंगे।
1: राम तुझे बुलाते हैं वो गाना सर, वो सुना देना तो आनंद आ जाएगा।
0: ठीक है,
1: सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको भी और सभी आर्जो को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर।
0: नमस्ते नमस्ते, थैंक यू,
1: धन्यवाद। गुड मॉर्निंग,
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुक रुक ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए चलते हैं थोड़ा शेयर बाजार की ओर, क्या कुछ हालचाल है भारतीय शेयर बाजार में देखते हैं। शेयर मार्केट बम्पर उछाल के साथ कल बंद हुआ है। टेक महिंद्रा, कोटक बैंक, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर के दम पर बीएसई का सेंसेक्स 964 अंक उछल करके 78151 बंद होने में कामयाब रहा, जबकि एनएसई के निफ्टी ने दोहरे शतक 261 के साथ 24,333 के लेवल पर बंद होने में कामयाबी हासिल की। सबसे खास बात ये रही कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में बिकवाली और बड़ी कंपनियों के शेयर में जमकर खरीदारी हुई है। सेंसेक्स टॉप गेनर्स के स्टॉक्स की बात करें तो टेक महिंद्रा का नाम सबसे ऊपर है और ये 3.88% चढ़कर के 1570 रुपये पर बंद हुआ है। कोटक बैंक में 3.67% और टीसीएस में 2.92, रिलायंस में 2.78 और आईसीआई बैंक में 2.59, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2.12% की तेजी रही। ट्रेंट 0.68% टूट करके 2,840 रुपये पर बंद हुआ। ये सेंसेक्स टॉप लूजर्स रहा और इसके अलावा एयरटेल, अल्ट्राटेक, इंडिगो और एनटीपीसी भी लाल निशान पर बंद हुए।

जी कुछ सेंसेक्स की बात कर रहे थे, आइए सोने और चांदी की ओर भी चलते हैं। 24 कैरेट सोना बेस वैल्यू है 1,42,670 रुपये, लेकिन टोटल अमाउंट बाजार में आपको दिखेगा 1,64,584 रुपये। वहीं पर 22 कैरेट टोटल अमाउंट 1,50,879 रुपये, 18 कैरेट है 1,23,481 रुपये। चांदी के दाम वर्तमान समय बाजार में क्या कुछ है, पर किलोग्राम 2,34,800 रुपये। वहीं पर प्लैटिनम का दाम है 51,510 रुपये पर 10 ग्राम।

पेट्रोल और डीजल की ओर चलते हैं। और पेट्रोल और डीजल राजधानी दिल्ली में 102 रुपये 12 पैसे हैं पेट्रोल का दाम।

राजस्थान में 113 रुपए 19 पैसे है, यानी कि 42 पैसे कम हुई है राजस्थान में पेट्रोल। डीजल की बात करते हैं, डीजल में दिल्ली में 95 रुपए 20 पैसे है, और वहीं पर राजस्थान की बात अगर करें, राजस्थान में 98 रुपए 25 पैसे है डीजल प्रति लीटर। यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसी है 96 रुपए और 51 पैसे, और एक यूरो के मुकाबले 110 रुपए 39 पैसे है, एक एडी के हिसाब से 26 रुपए 27 पैसे। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे अर्थव्यवस्था के साथ। लेते हैं यहाँ पर एक अल्फराम, मिलते हैं अल्फराम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए चलते हैं कुछ बातें जो जुड़ी हुई है जॉब्स के साथ, नौकरियों के साथ जानते हैं। UPPSC ने अपर सब ऑर्डिनेंट सर्विसेज यानी कि PSC 2026 परीक्षा का नोटिस जारी किया है। कैंडिडेट्स UPPSC की वेबसाइट यानी कि UPPSC.UP.NIC.IN पर आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पद के अनुसार ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर है और न्यूनतम आयु है 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। दिव्यांगों के लिए अधिकतम 55 साल है और इसके साथ साथ राजकीय इंटर कॉलेज के लिए 30 से 40 साल है। सैलरी लेवल है 7 से 10 के अनुसार होगा और अधिक जानकारी के लिए आप UPPSC.UP.NIC.IN पर जाकर के देख सकते हैं। और वहीं पर बैंक की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है, स्नातक पास कर सकते हैं आवेदन। IBPS बैंकों में PO और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 6715 पदों पर भर्ती के लिए निकाली है वैकेंसी। कैसे करें आवेदन, www.ibps.in पर जाएं, CRP, PO और MTS लिंक पर क्लिक करें और इसके बाद CRP प्रोसेस पर आप अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP PO/MTS और फिर -XVI पर आपको क्लिक करना होगा। फिर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। तो बैंकों में पीओ और मैनेजमेंट की ट्रेनी के 6715 पदों पर नौकरी पाने का शानदारी अवसर है। स्नातक की डिग्री या फिर समकक्ष योग्यता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने देश के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर भर्ती होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप जाकर के ये आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और ये आप UPPSC.UP.NIC.IN पर भी आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज पर दिए गए वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं पर रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के 323 पदों पर भर्ती निकाली है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 6234 पदों पर यानी कि कुल 6557 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन आमंत्रित किया है indianrailways.gov.in पर जाकर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें, अपने संबंधित जोन का चयन करें और विज्ञापन संख्या CEN नंबर 02/2026 पर क्लिक करें और क्लिक करके सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। ऑनलाइन आवेदन का सीधा लिंक indianrailways.gov.in है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT और फिर दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और वहीं पर IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 745 पदों पर भर्ती निकाली गई है। लास्ट डेट है 21 जुलाई। IBPS ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर और HR पर्सनल ऑफिसर के 745 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। www.ibps.in पर जाएं, CRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर लिंक पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पर कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस पर CRP SPL/XVI पर जाएं, अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP SPL/XVI पर क्लिक करें, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर भी क्लिक करके फॉर्म भरें।
शैक्षणिक योग्यता आईटी ऑफिसर कंप्यूटर साइंस, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीटेक या फिर बी या फिर एमई या एमटेक की डिग्री। इसके साथ साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कई विषयों के शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी है, लास्ट डेट चली गई है, क्षमा करें। और बात करें अगर लेक्चरर के 829 पदों पर पंजाब स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भर्ती निकाली है, लास्ट डेट 31 जुलाई है। erd.punjab.gov.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। 9 अगस्त 2000

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 10

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग गाबू। 8:41 और कुछ क्षणों के बाद आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। उससे पहले कुछ नजर डालते हैं दैनिक भास्कर के और आज जानते हैं हमारे आसपास के कुछ सूचना घटनाक्रमों के बारे में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा की पहली साधारण सभा बैठक 19 जुलाई को आदर्श विद्या मंदिर राम झरोका में होगी। जिला मंत्री डूंगर सिंह देवड़ा ने बताया कि बैठक में सिरोही जिले में रहने वाले प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, विभिन्न प्रकोष्ठों और आयामों के सदस्य मौजूद रहेंगी। वहीं पर शिवगंज में राजकीय कॉलेज कैलाश नगर में बीए प्रथम सेमेस्टर की रिक्त सीटों पर ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रवेश की इच्छुक अभ्यर्थी 30 जुलाई तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। नोडल अधिकारी प्राचार्य डॉक्टर रवि शर्मा जी ने बताया कि जो छात्र पहले ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें प्रवेश का अंतिम मौका है ये। वहीं पर सिरोही में नेशनल टेडस वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जी ने सिंघी जिले के दौर पर रहेंगे और इसके साथ साथ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 जुलाई के शाम 7 बजे वो पावापुरी पहुंचेंगे और उसके साथ साथ जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। और नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष आज सिरोही में और 18 जुलाई को शाम 7 बजे पावापुरी पहुंचेंगे जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। 19 जुलाई रविवार को सुबह 8:15 पर सिरोही पहुंचेंगे जहां वो JNVC परिसर में प्रवासी व्यापारी सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ये कुछ बातें दैनिक भास्कर के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2010 से पहले विकसित कॉलोनियों नियमों पर फेरे में फंसी 3000 प्लॉट धारक 16 साल से निर्माण स्वीकृति के इंतजार में हैं। और इसके साथ साथ झालावाड़ हादसे के एक साल बाद भी सोरडा स्कूल में 5 कमरे जर्जर, पेड़ की छाव में लगती है 1 से 5 कक्षाएं। तो ये कुछ बातें भी सामने आई हैं। और वहीं पर जिले में शिक्षकों के करीब 3000 पद रिक्त है। कई स्कूलों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, तबादलों से खाली हुए स्कूल, 176 शिक्षक कर्मचारी गए और बदले में आए सिर्फ 30। 98 स्कूलों में एक भी व्याख्याता नहीं है। अब 2 दिन बाद मानसून सक्रिय होने की उम्मीद। सिरोही में मानसून सुस्त, 110 मिलीमीटर बारिश और 30 बांधे अभी भी सूखे हैं। वहीं पर खड़ात में पौधारोपण कर संरक्षण का संकल्प लिया गया। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 भरने में छूट देने की मांग की गई है। और वहीं पर सबसे अधिक सीड बॉल बनाने वाली टीम को मिलेगा सीड बॉल महावीर सम्मान। विद्यार्थियों ने लिया 21,000 सीड बॉल बनाने का संकल्प। माउंट आबू में ज्ञान सरोवर में व्यापार एवं उद्योग प्रभाव की 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ। आइए लेते हैं यहाँ पर आप सभी से अलविदा। फिर मुलाकात होगी आज नई दुनिया नया जमाना कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी सुनेंगे आप आशियाना, लेकिन अंताक्षरी कार्यक्रम ये लाइव नहीं है, इस बात के लिए हमें खेद है। और ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से अभी सुनेंगे समाचार प्रभात। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग ड्रिंकिंग।

0: wearing. Lifestyle is about what we are thinking, speaking, behaving. That's my lifestyle.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
3: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस से बेस सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
4: मैं ये कहना चाहूँगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
5: Working to strengthen each other's
6: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
2: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
7: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाया।
8: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
9: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
10: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। विचार पर करेंगे विचार और नुस्खों का देंगे जरूर साथ। खुशनुमा जीवन की करेंगे बात तो नई नई व्यंजन भी बनाएंगे साथ। और प्रश्न पूछने वाली हूँ आज, प्रश्न का जवाब दे सकते हो। हमारे नंबर है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। तो आइए सुनते हैं एक गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना एक कला है। लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। कैसे, तो आज के विचार का विस्तार एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी कि बहुत समय की बात है, एक बहुत धनवान राजा था, उसका नाम था मिडास। धनवान होने पर भी वे संतुष्ट बिल्कुल नहीं था, उससे पैसे और सोने का बहुत ही अधिक लालच था। एक दिन उसके सपने में एक परी आई, वह जाग उठा। उसने देखा कि वह परी उसके सामने खड़ी है। अपने बिस्तर से उठकर के राजा परी के चरणों में गिर गया। उसने परी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप कितनी सुंदर हो, मैंने सुना है कि परियां मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। परी मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है, हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा को कुछ समय तक तो समझ में ही नहीं आया कि वह क्या मांगे। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा कि हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं जिस चीज को भी छूं वह सोना बन जाए। परी ने राजा की इच्छा पूर्ण कर दी। धीरे से राजा एक पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो पत्थर सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से नाचने लगा। राजा ने एक फूल को देखा, उसे छुआ तो वह भी सोना बन गया। राजा अपने बगीचे में जाकर के सब फूल पौधों को छूने लगा। वह जिसे भी छूता वह सोने में परिवर्तित हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगी तब उसने फल और पानी मंगवाया, और जब खाने के लिए हाथ लगाया तो फल सोने में बदल गए। पानी के जग को छूते ही वह भी सोना हो गया। राजा अब न कुछ खा सकता था न ही पी सकता था। अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। राजा को दुखी देख करके राजा की बेटी उसके पास आई, तो राजा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया। पश्चाताप के आंसुओं में राजा जब डूबा हुआ था तब वही परी उसके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्या आपको मिली हुई शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको और कुछ चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़े और माफी मांगते हुए कहा, कृपया आप ये शक्ति वापस ले लीजिए और मुझे, मेरी बेटी तथा मेरा सामान्य जीवन वापस दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है और आज से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, अपना धन गरीबों में बांटूंगा। ये सुनकर के परी ने अपनी दी हुई शक्ति वापस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसने सोने के प्रति अपने लालच को छोड़ दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: का।
1: मैं हूँ जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। छाती का दर्द हो, पसली का चलना हो, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो बहुत ही अच्छा आपको नुस्खे देने वाली हूँ कि अजवाइन एक चम्मच आप 250 ग्राम पानी में उबालिए, ठीक है। एक चौथाई भाग रह जाए, फिर आप इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में दो बार इस तरह आपको पीना है। इससे 5-7 दिन में ही छाती का दर्द खत्म हो जाएगा, और काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में 2 बार निरंतर कुछ दिन लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर नुस्खा है, फिर से दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि अजवाइन एक चम्मच, 250 ग्राम पानी लीजिए और उसमें डाल करके उबालिए। फिर एक चौथाई रह जाए तो इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में इस तरह आपको 2 बार पीना है, ठीक है। इससे 5-7 दिन में छाती का दर्द ठीक हो जाएगा, और ये काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में 2 बार निरंतर कुछ दिन तक लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। अगर आप 6 महीने से लेकर के 12 महीने के आयु वाले छोटे बच्चे को ठंडे मौसम व ठंडी हवा के कारण सर्दी लग जाए, छाती में कब बोले, छाती में दर्द हो या पसली चले, तो आधा कप पानी में 10-12 दाने अजवाइन के डाल करके उबालिए। बड़ों के लिए आपने सुना है, अभी बच्चों के लिए दे रही हूँ, 6 महीने से 12 महीने वाले जो साल भर के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। 10-12 दाने अजवाइन के डालिए और उबालिए। आधा रहने पर इसे कपड़े से छान लीजिए, और ये अजवाइन पर काढ़ा, थोड़ा सा ये जो अजवाइन का काढ़ा बनाया है, थोड़ा सा गरम गरम पर सहता सहता, ऐसे नहीं कि एकदम गरम, बच्चा बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए सहता सहता एकदम नवसे का हो जाए ना कि बच्चे को अब पिलाने की स्थिति में है ये काढ़ा, तब पिलाइएगा। गरम गरम एकदम जलता हुआ नहीं देना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर आप कहेंगे उषा दीदी ने कहा है कि गर्मा गर्म देना। अरे भाई, अब बड़े तो हम पी सकते हैं थोड़ा सा गर्म, चाय दूध कैसे पीते हैं, गरम गरम पीते हैं ना, इस तरह काढ़ा भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पी सकते हैं। इसलिए बच्चों को बच्चे के हिसाब से नवसेका देना है, दिन में 2 बार, ठीक है, और रात में सोने से पहले देना है और सुबह देना है। दिन में 1-2 बार दे सकते हैं, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर होगा। तो इस तरह बच्चों को भी सर्दी जुकाम या पसली, छाती में दर्द जो भी है, उसमें आप इस अजवाइन के काढ़े को दे सकते हो। साथ ही अजवाइन का काढ़ा यकृत, तिल्ली, हिचकी, वमन, मिचली, फिर खट्टी डकारे आना, पेट की गुड़गुड़ाहट, इन सभी समस्याओं में भी ये फायदा करता है। तो कहते हैं ना कि एक वस्तु और फायदे अनेक, तो ज़रूर आप आजमा सकते हैं। अगर दमा है, दमा की शिकायत है, तो सुहागा का फुल्ला और मूलहटी को अलग अलग खरल, या फिर इसको कूट पीस करके कपड़ छन कर दीजिए, और मैदे की तरह बारीक इसका चूर्ण बना लेना है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी बोतल में कांच की शीशी में सुरक्षित रख लीजिए। बस सांस खांसी जुकाम के ये सफल दवा है। अब इसको आप कैसे लेंगे, तो आप क्या करेंगे, साधारण मात्रा 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए, या गर्म जल के साथ लेना है, ठीक है। बच्चों के लिए आप 0.5 ग्राम माने रत्ती भर की मात्रा आप आयु के अनुसार दे दीजिए। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, बड़े हैं तो मात्रा को बढ़ा दीजिए, बच्चे हैं तो रत्ती भर ही दीजिएगा। फिर से दोहरा रही हूँ कि सुहागा का फुल्ला और मूलहटी, इनको अलग अलग खरल या फिर खरल में बांटिए, या हमारदस्ते में कूट पीस करके कप्पड़ छन करके मैदे की तरह बारीक चूर्ण बना लेना है, ठीक है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी कांच की शीशी में सुरक्षित रख दीजिए। बस सांस खांसी जुकाम इन सब के लिए ये सफल दवा है। लेना कैसे है, जो आपको बता रही हूँ कि साधारण मात्रा 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए या गरम जल के साथ लीजिएगा। और बच्चों के लिए 1 रत्ती, ठीक है, मात्रा आयु के अनुसार इसी तरह देना है। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो ये सारे ही नुस्खे फायदेमंद है और आप चाहो तो आजमा सकते हो। अब आइए ले लेते हैं एक अल्पविराम, पुनः लौट करके आ रही हूँ, फिर आपको मैं प्रश्न भी पूछूंगी, खुशनुमा जीवन की बातें भी आपके साथ करेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: हरी हरी घास में गधा चरने आया, आता जाता कुछ नहीं, अंताक्षरी करने आया। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब अंताक्षरी कार्यक्रम शुरू होगा। और आज हम आपको परिचय कराना चाहेंगे कि आबू रोड हीना कॉलोनी में शिव मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई है, तो इनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। मनीषा जी रस्तोगी, सुनीता जी शर्मा, ममता जी, सुरेखा, मनोज मोदी, अलका जी, भारती जी, वैशाली जी और करिश्मा जी, आप सभी को नमस्कार। सभी ठीक हो?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: तो फिर अंताक्षरी शुरू करें। तो चलिए, हमारे गीता जी बैठे हैं, गीता जी के द्वारा शुरुआत करते हैं। गीता जी, आज पुराने पिक्चर्स के गीत की थीम है, और वैसे हमारी बहने जैसा चाहे सब कह रही हैं कि मिक्स, तो चलिए मिक्स करते हैं। गीता जी के द्वारा शुरुआत करते हैं, जो लास्ट में आप सर ये छोड़ेंगे उससे आपको हाथ ऊपर करना है, जो सबसे पहले हाथ ऊपर करेंगे उनको पहले अवसर मिलेगा, ठीक है? तो गीता जी स्वागत आपका।
3: थैंक यू।
2: महिला विकास समिति के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: क्या बात है, आपका नाम क्या?
1: भारती।
0: भारती जी ने बाजी मार ली, साथ सभी ने दिया है, आता है, अब है पर बोलना है आपको, सुरेखा जी बोलेंगे। क्या बात है?
2: हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए, ऐसा क्या हो?
0: क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर महिलाएं सभी एक दूसरे को साथ दे रही है। अब ऐसा हो जाए, ए पर आप बोलना है आपको, फिर से ए पर कौन बोलेंगे? सुनीता जी सुनाएंगे।

0: हराया पर आप जो नहीं बोले उनका अवसर मिलना चाहिए आपका। आप सुरेखा जी मनोज मोदी।
1: राम तेरी गंगा मैली हो गई, पाप धोते।
2: जिस बीच में है या तो शुरू से साथ दो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए आप

तो चलिए बहुत अच्छा है, सुरेखा जी ने बहुत अच्छी कोशिश की है। धोते धोते अब तय पर आपको बोलना है, आप कौन बोलेंगे तय पर? सुनीता जी आप दूसरों को मत बताइए, आपका बोलना है अब तय पर। चलिए ममता जी, अच्छा वैशाली जी, एक मिनट वैशाली जी।

0: बहुत सुंदर है पर आपको हम सुनाएंगे है पर
1: तेरी बंदी
0: और जो भी बोलो एक बार आप हाथ खड़ा करो ताकि आपका नाम ले सके और उसके बाद शुरू करना है ममता जी सुनाएंगे
1: हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम हो ये दूरी हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी पाए लाखों का सावन जाए हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी
0: रैपर रैपर कौन सुनाएंगे आप रैपर भारती
1: रामपुर का वासी हूँ मैं लक्ष्मण मेरा नाम सीधी साधी बोली मेरी सीधा साधा काम
0: बहुत सुंदर अब मैं पर आपको सुनाना है मैं पर ममता जी क्या बात है।

0: माने, चाहे तू माने चाहे ना माने ना, पर मनीषा जी
1: नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, नाना
0: एक मिनट ये आगे पीछे हो जाएगा फिर से,
1: नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम इसे कर बैठे, नाना करते।
0: क्या बात है, क्या बात, बड़े उमंग उत्साह से सभी बोल रहे हैं, भले शुरुआत कोई भी कर रहे हैं लेकिन साथ बरोबर सभी दे रहे हैं, तो इस तरह एक दूसरे का साथ मिल जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा अलका जी,

0: भोले बाबा की सरकार, भोले बाबा की जय।
1: इन्होंने एक लाइन अपनी तरफ से ऐड कर दी है, चले अच्छी बात है, ये भी एक कला है। तो भोले बाबा की जय। फिर से यशोदा का यह कौन सुनाएंगे? वैशाली जी।
2: यश।

0: बहुत सुंदर करिश्मा हो ना हो हर पर आपको सुनाना है। आप हाथ कौन खड़ा करेंगे? क्या बात है सुनीता जी।
1: हमें तुमसे प्यार इतना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
0: बहुत सुंदर न पर ममता जी।
2: नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा।
0: भूल गई
2: पैसा मिलेगा, मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा।
0: घर पर कौन सुनाएंगे पैसा मिलेगा वैशाली।

0: नीलपल।
1: अच्छा नाम बोल भारती,
0: भारती जी।
2: ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे अरे रह जाएंगे दिल वाले देखते रह जाएंगे।
0: क्या बात है, पैसे वाले देखते रह जाएंगे। तो आप यहाँ पर कौन बोलेंगे? जी ममता जी, रह जाएंगे।

0: क्या बात है, गाड़ी भिला रही है और वास्तव में समय कह रहा है कि भाई आप जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जुड़ जाओ। तो हाय पर कौन बोलेंगे? हाय पर वैशाली जी।
1: हम आपके है कौन?
0: नहीं नहीं, एक लाइन से काम नहीं चलेगा, आपको पूरी पूरी करनी पड़ेगी। हाय पर मनीषा जी।

0: बहुत सुंदर प्यार का क्या पर करिश्मा क्या
1: क्या लेके आया जगत में क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा।

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ला परवेशाली जी,
1: लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा मुन्ना करे तमाशा।
0: तमाशा, श पर तमाशा, तमाशा, श

0: क्या बात है ममता जी, बहुत सुंदर। रोना ना पर
1: नाना करते प्यार,
0: ये हो गए करिश्मा।
2: निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, अरे निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, अरे कच्चा कच्चा मीठा छोटा छोटा निम्बुड़ा, कच्चा कच्चा छोटा छोटा निम्बुड़ा, निम्बुड़ा निम्बुड़ा, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निम्बुड़ा लाई दो, हाँ खेत से लाई दो, हाँ लाई दो लाई दो लाई दो निम्बू लाई दो, हो खेत से रियाना निम्बुड़ा लाई दो।
0: बहुत सुंदर करिश्मा, तय पर बोलना है आप, तय पर कौन बोलेंगे? अच्छा भारती जी।
3: दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम।
0: क्या बात है, कार्यक्रम अंतिम चरण पर चल रहा है, मैं पर आपको सुनाना है, कार्यक्रम अंतिम चरण पर है, मैं पर कौन बोलेंगे? मैं पर ममता जी।

0: मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने।
1: बहुत सुंदर, दुनिया क्या जाने। न पर आप कौन सुनाएंगे? न पर, न पर कौन सुनाएंगे?
0: नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, कि सजना पे दिल आ गया। तातैया हो, तातैया तातैया
1: हो। हाँ पर करिश्मा।

गुजराती राजस्थानी हिंदी भाषा में आप सुना सकते हो और बाकी तो आपको सभी को छूट दे रखी है हर प्रकार के गीत की, तो न पर आपको सुनाना है, समाप्ति की तरफ है, जल्दी जल्दी बोल लीजिए।

0: वो हो तुम माँ पर करिश्मा।
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस है ये वो मुझसे थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है।
0: अपन फिर से आप सुनाएं।
2: हरी तारा नाम छे हजार, हरी तारा नाम छे हजार, कया गमे

0: बहुत सुंदर दूध साकर ते मीठड़ा डम डम डिगा डिगा मौसम बिगा बिगा गया रे तो गया रे रैला सिमरई रूपा रे रूपा नल्ला।
1: फिर से बोलेंगे कौन, दो लाइन पूरी सुनाएंगे।

0: बात देखिए, यहाँ पर अंताक्षरी कार्यक्रम में हर एज ग्रुप है, कोई 70+ भी है तो कोई यूथ भी है तो कोई मतलब बीच वाले भी है, 40-45 वाले भी, तो 25-20 साल के भी है। जी, लय पर कौन सुनाएंगे? आप कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है वैशाली जी।
1: लो चे

चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कोशिश की है वैशाली जी ने। सर पर सेरा सजा जय पर आपको सुनाना है, तो कौन सुनाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, जय पर।

0: घड़ी घड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब लास्ट में कौन सुनाएंगे? घड़ी ड पर कौन सुनाएंगे? नहीं तो फिर ममता जी बाजी मार लेंगे। जल्दी से याद कर लीजिए। अब ये बस ये लास्ट गीत है।
0: डोली सजा के रखना, सहरा सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना।
1: ड पर आपको शुरुआत करनी है और मैं से शुरू होता ये गीत। ड पर। हाँ जी मनीषा जी।

0: क्या बात है। देखिए भोलेनाथ के मंदिर में बैठे हैं और भोलेनाथ के गीत से ही कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा साथ दिया इसके लिए। और आज के विनर घोषित करेंगे। ममता जी प्रथम रहे हैं और ममता जी ने 11 बार प्रस्तुति दी है। बाकी मैं सभी का नाम सुनाना चाहूंगी। सुरेखा जी मोदी, आपने 3 बार प्रस्तुति दी है। मनीषा जी, आपने 4 बार। सुनीता जी शर्मा, आपने 2 बार गा करके सुनाया है। और सुरेखा मनोज मोदी जी, आपने 1 बार प्रस्तुति दी है। अलका जी, आपने 4 बार। भारती जी ने 9 बार। वैशाली जी ने 8 बार। करिश्मा जी ने 7 बार। और ममता जी आज के विनर है, जिन्होंने 11 बार गा करके सुनाया है। बहुत आपके लिए ढेर सारी तालियां, एक बार और बहुत बहुत आपको बधाई। और आपको कैसा फील हो रहा है, आप आज के विनर रहे हैं तो?
1: मुझे आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये अंताक्षरी का मेरी लाइफ के अंदर ये महिलाओं के साथ पहला प्रोग्राम है। ऐसे तो स्कूल में बच्चियों के साथ तो मेरा प्रोग्राम होता है और एक साइड में बालक होते हैं, दूसरी साइड में बालिकाएं होती हैं और हम अंताक्षरी का प्रोग्राम करवाते हैं स्कूल में। किंतु महिलाओं के साथ मेरा ये प्रोग्राम जो है पहला है और इसमें मुझे विजेता घोषित किया गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी।
0: ममता जी दरअसल शिक्षिका है और अक्सर ममता जी आप बच्चों की अंताक्षरी लेते हैं, लेकिन आज आप जुड़े हैं जी, तो क्या कहेंगे, क्या हमको मतलब भिन्नता नजर आ रही है जो बच्चों से लेते हैं आप और आज आपने खुद दी है? तो
1: देखो ऐसा होता है कि बच्चों के साथ जो प्रतियोगिता होती है तो वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होती है और जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भी मेरी हम उम्र की हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है और मैं ऐसा चाहती हूँ कि दीदी बार बार आए और हमारे ऐसे प्रोग्राम करवाती रहें। इसी आशा के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ।
0: तो बहुत बहुत आभार आपका
1: और मैं रेडियो मधुबन का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए दिया है और यह जो प्रोग्राम है वे हजारों लाख लोग सुनेंगे, तो मैं इनका बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और चलिए अभी सुनेंगे एक गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: देंगे। तो ये आज का प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। बहुत ही सरल प्रश्न है और अगर आप जवाब देंगे तो साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यह कब आने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर आज का प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे, गरबा रास भी करेंगे। तो ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है और कब ये तिथि है? हेलो,
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि, जय माता दी। नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: सबसे पहले तो हमारे कंचन पर यात्रा में गए तो बस बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा सफल और मंगलमय रहे।
0: जी,
1: और आपका सवाल तो बहुत ही सुंदर है, आंसर दे दो।
0: हाँ जी, बिल्कुल दे दीजिए। अगर आप ऑफेयर देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ऑफेयर देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी थोड़ा सोचने का अवसर मिलेगा।
1: तो कोई बात नहीं,
0: आज के विषय में बोल रही हूँ। तो गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया तो कटोरा बदलने में देर नहीं लगेगी। तो गरीबों पर अक्सर हम कमेंट करते हैं, अक्सर उन पर हंसते हैं, हीन भावना से उनको देखते हैं, उनका मतलब समय प्रति समय वो कहते हैं ना कि लोग बाग अपमान भी करते हैं, क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी मतलब तेज मतलब ऊपर से कोई अमीर बन के नहीं आता है।
0: जी,
1: ऊपर से तो सब खाली हाथ ही आते हैं।
0: जी,
1: तो मतलब जो वो गरीब है ना, उनको उनका सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि देखिए हर एक इस धरती माता के ऊपर तो सब उनके पुत्र समान है।
0: जी,
1: वो देखिए मतलब जो पैसे वाला होता है उसको भी अन्न उगा के खिलाती है।
0: जी,
1: और जो गरीब होता है ना उसको भी अन्न मिलता है। प्रभु ने कितनी अच्छी बात बताई है कि देखिए मतलब जो सोते हैं तो कोई भूखा नहीं सोता है।
0: जी,
1: उसको बोले कोई सूखी रोटी खाता है, कोई माल पानी खाता है।
0: जी,
1: मगर उठते हैं तो सब भूखे उठते हैं, पैसे वाला हो या गरीब हो।
0: हाँ जी, बिल्कुल। तो कहते हैं कि भूखे उठते सभी हैं, लेकिन ईश्वर सभी को मतलब भूखा सुलाता नहीं है, उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है,
1: कुछ ना कुछ खिला के सुलाता है।
0: जी जी,
1: तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए आज के मंदिरों पे भी अपन देखते हैं तो कितने गरीब लोग बैठते हैं कटोरा लेके।
0: जी,
1: तो आपने सही बात की कि किसी की गरीब पे हंसना अच्छी बात नहीं है। जो भी आपके हाथ में लगे तो दे दो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है।
0: जी बिल्कुल,
1: मगर उसके ऊपर हंसोगे ना तो वो कल उठ के वही कटोरा अपने हाथ में आ सकता है, क्योंकि पलक झपकते ही करोड़पति रोड़पति बन सकता है।
0: जी जी, हो रहा है, देख रहे हैं समाज में। बहुत बहुत आभार सुरेश भाई।
1: बस तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये कुछ भी नहीं है, बस मतलब उसके कुछ पिछले कर्मों का होगा तो उसको मिल रहा है, बाकी अपन को मतलब उसके प्रति अच्छी भावना रखनी है।
0: जी,
1: ताकि अपना जीवन सुधर सकेगा।
0: बहुत सुंदर, बहुत
1: और अपन सच
0: जी
1: अपने अंदर से जो भी अच्छे विचार निकले वो उसको भी मतलब हिम्मतवान बनाए और उसको भी अच्छी राह दिखा सके।
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है कि भाई देखिए, कुछ नहीं कह सकते, आज बीज है तो कल तीज है, कब किसकी परिस्थितियाँ बदल जाए। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार,
0: वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
2: बहुत अच्छे दीदी, अगर आप आ गए तो और अच्छे हो गए।
0: अच्छा,
2: एकदम कार्यक्रम तो हम सुनते थे लेकिन कार्यक्रम सुनते थे लेकिन आज आपसे रूबरू बात हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी,
2: और बहुत अच्छी बात हो रही है, विषय भी अच्छा है, प्रश्न भी अच्छा है। प्रश्न तो मैं बाद में दूंगा
0: जी,
2: लेकिन विषय बहुत अच्छा दिया है दीदी। गरीब और अमीर
0: जी
2: बहुत फर्क है, माने तो
0: जी,
2: वरना कुछ नहीं है।
0: जी
2: वो कहता है कि हम भी कभी कभी ऐसे पहले थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा जो पैसे वाले बन गए, तो आज हम गरीब को बोल नहीं सकते
0: जी।
2: क्योंकि कहते हैं कि हर किसी को ऐसा भी नाता है, और उसको मजाक करना, उस पर कुछ बोल देना तो सही बात नहीं है। आज देखते हैं हम कई परिवार ऐसे हैं तो खाने का भी नहीं मिल रहा है, ऐसे परिवार है
0: जी।
2: लेकिन इसको हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन उसके मजाक से जरूर नहीं करना चाहिए कभी।
0: बिल्कुल,
2: मदद नहीं करो तो चलेगा, लेकिन मजाक नहीं करना कभी
0: जी।
2: आज कई गरीब परिस्थिति वाला ऐसे लोग होते हैं, तो इसके ऊपर लोग फंसते हैं, उसको ताना बाना मारते हैं, उसके कहते हैं कि भी आप कुछ करो, पैसा क्यों मांग रहे हो, सारी लड़ाई कर रहे हो, तो ऐसा तो बोलना सही नहीं। आपके पास हो तो दो, वरना तो आपके पास थोड़ा सा ले जाएगा। तो ऐसे ना करके हम कुछ ना कुछ मदद करेंगे तो ही सही है, क्योंकि सब तो अमीर नहीं होता
0: जी।
2: तो सबका हाल ऐसा आता है, सबका दिन आता है कभी कभी, तो ऐसे पर हम हंसने से नहीं, तो हम कुछ मदद करें, इसको कोई मदद करे, इसके साथ कोई मजाक करे तो अच्छा नहीं है
0: जी।
2: तो बस ऐसे मजाक नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ईश्वर भी सुनता है, और ईश्वर भी कहता है कि चलो भाई वो तो आज ऐसा है, आप पैसे वाले, कभी कभी आपका भी दिन ऐसा आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आपके पर लोग भी हंसेंगे। तो ऐसे ना करके हम जो हमारे पास हो उसकी मदद करें।
0: बिल्कुल, वो कभी कभी नहीं रोज सुनते हैं, लेकिन कहते हैं ना खुदा की लाठी की आवाज नहीं होती है,
2: नहीं होती। और कई लोग, कई किस्से दीदी देखे हैं हमने कि बहुत पैसे वाले थे, आज वो भी ऐसे हालत में हो गए, बहुत गुस्सा करते थे गरीबों पर
0: जी,
2: अत्याचार करे
0: जी,
2: और गरीबों को ताना उटाना मारे
0: जी।
2: तो वो सही नहीं है, वो इसके हिसाब से गरीब है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि किसी का घर में जाके ले जाए, ऐसा तो है नहीं। इसको चोरी करे, गरीब चोरी नहीं करता है कभी, ये हमने देखा है
0: जी।
2: तो बस कुछ न कुछ हम तो ऐसा कुछ मदद कीजिए, और मजाक नहीं करना बस
0: जी। जी, बहुत सुंदर,
2: ठीक है
0: जी,
2: नमस्कार,
0: आभार आपका। तो देखिए सुरेश भाई बाहर है, फिर भी देखे जिनको रुचि है रेडियो के प्रति, वो कहीं पर भी जाते हैं तो भी रेडियो से जुड़े रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सुनते ही नहीं है, अमल भी करते हैं, और रेडियो को कितना आप दिल में बसाए रखते हैं इस बात से पता चलता है। तो बात चल रही थी कि भाई गरीबी का, जैसे कि सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं गरीब की, तो उसकी मजाक भी मत करिए। बहुत अच्छी बात है, कितनी बार हमारे घर के बाहर जैसे कोई मांगने आते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई, रेडियो प्रोजेक्ट दानेरा।
0: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
3: बस अच्छे है, और पहले जो रेडियो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों फ्रिक्वेंसी बिल्कुल नहीं पकड़ रहा था, अब तो बात भी हो रही है सुरेश भाई ने, अभी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं हम
0: जी जी जी,
3: और अभी रेडियो ऑन किया है जब सुरेश भाई का कॉल था। तो किस बारे में चर्चा हो रही है,
0: बात हो रही है कि गरीब पर, देखिए कि मैं एक शेर बोलती हूँ, गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया ना तो कठोरा बदलने में देर नहीं लगेगी। मतलब जो गरीब के हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनको तुच्छ नजरों से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं, ये जी तो क्या कहेंगे।
3: सुरेश भाई ने जैसे बात बताई उस पर और मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई भी ऐसे गरीब थे जो आज अपनी मेहनत से, मैंने देखा है जो अपनी मेहनत से वो कुछ अपने कदम पर चल रहे हैं, और वो कभी कभी पुराने याद करते हैं, पुरानी बात जब वो गरीब थे, इधर ठोकरे खाई, ऐसे ठोकरे खाई, तो एक संदेश देते हैं कुछ लोगों को कि आप जो गरीब होते हैं खास करके उन लोगों को
0: जी।
3: पहले हमारी ऐसी परिस्थिति और हमने ऐसा किया, जब हम अपने कदम पर खड़े हुए, आप भी ऐसा कीजिए, अगर हम अपने कदम पर चले और मेहनत और अपनी नीति धर्म सब कुछ अच्छे रखे तो गरीबी दूर हट सकती है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और हम जो वैसे ही परिस्थिति में रहे और जैसे कि अभी बताया कि चोरी चकारी ऐसे कुछ करते हैं, तो ऐसे ही करते रहेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही, और हम कुछ ना कुछ बातें करते ही रहेंगे।
0: जी जी,
3: तो मेरा ही राय ये है दीदी।
0: जी बहुत बहुत आभार
3: जी। दीदी अब तो रेडियो चालू हो गया तो हम हर रोज जुड़ेंगे।
0: जरूर जरूर, प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: प्रश्न सुना नहीं दीदी, क्या है?
0: अच्छा, प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे सब खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, ऐसी कौन सी तिथि आ रही है और कब है वो तिथि?
3: वो अभी कुछ ही दिन है, शायद आज 12-13 से दो तीन ही बाकी है अभी आने वाली, पूनम की बात करती है शायद आप।
0: अच्छा ठीक है, आप आशियाना सुनिए, हम जरूर जवाब देंगे आपका। ठीक है,
3: थैंक यू दीदी, नमस्कार।
0: जी वेलकम, नमस्कार। तो आइए यहीं पर एक छोटा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।
4: अभी बजे हैं सुबह के 10, स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: करते।
1: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबेरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: माता रानी कहती है, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो, भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे दर पर मांगने वाले, तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि गरीब लोगों पर अक्सर हम छिटाकसी करते, हीन भावना से देखते, उनकी मजाक उड़ाते हैं, और उनको वो कहते हैं ना कि अगर चार जनों के बीच कोई गरीब रिश्तेदार, कहते हैं ना चार जने रईस बैठे हुए होते और कोई गरीब रिश्तेदार आकर के बैठ जाता है, तो उसको ऐसे नकारने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं नहीं, इनसे तो हमारा कोई लेना देना ना, ये तो बहुत दूर से है। भले सगे भाई भी होगा तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये तो दूर से भाई है, हमारा कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है। मतलब गरीब लोग इतने आपको ऐसे लगते हैं कि उसमें भी बहुत लोगों को अपने इंसल्ट महसूस होती है कि मेरा रिश्तेदार इतना गरीब है तो मैं कैसे दूसरे लोगों के सामने इसके साथ रहूं। अंदर भले वो काम लेंगे, अंदर ही अंदर उनसे कहेंगे आपसे, और देखिए आप देखिए, गरीब लोग जल्दी से आपकी मदद करेंगे, पैसे वाले मदद नहीं करेंगे। फिर भी पैसे वालों के पीछे सभी दीवाने होते हैं, उनके गुणगान करेंगे बिना कारण, उनकी तारीफ करेंगे। और गरीब भले आपकी मदद करता होगा, लेकिन चार जनों के बीच में खुल करके उसके आप तारीफ भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
2: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति। कुपाराम जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी कुपाराम।
2: हाँ जी कुपाराम जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
3: चलो प्रश्न तो आपका है वो शरद पुनमारी है
2: जी, चलिए हम जवाब जरूर देंगे, सही है या गलत आपको इंतजार करना पड़ेगा जी।
3: गरीब, पहली बात तो थोड़ा ये उल्लेख करना, वास्तव में गरीब किसको मानेंगे? और मेरे यहाँ कई भी मांगने वाले जो आते हैं ना
2: जी,
3: उनके मैं आपको बता रहा हूँ, इनको हाँ सरकार राशन दे रही है
2: जी,
3: वो राशन तो यहाँ किराने की दुकान में आके गेहूँ बेचते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा,
3: मांग के खाते हैं
2: जी।
3: मेरे पास कभी आते मैं पूछता हूँ, मेरे को बीड़ी पीते हो? जगह हाँ
2: जी।
3: तो मैंने कहा अब आज तो कुछ देता एक दो रुपया, लेकिन आज नहीं दूंगा जी। क्यों? बीड़ी छोड़ के आना मैंने
2: जी।
3: अब उसको बीड़ी की क्या जरूरत है
2: जी, अब गरीब है तो बीड़ी सिगरेट पीने की क्या जरूरत है। सही कहा,
3: दो रुपए इनकी पीता है ना
2: जी,
3: 20 साल के अंदर 54,000 रुपए होते हैं उसके
2: जी। क्या बात,
3: जब वो भीख मांगने वाला बीड़ी पीता है
2: जी।
3: अच्छा उसको बोलेंगे कि थोड़ा धंधा करो, मजदूरी चलो, तो वो कभी मजदूरी नहीं करेगा वो
2: जी,
3: क्योंकि उसको एक तो आदत पड़ गई है मांगने की
2: जी।
3: मानता हूँ गरीबी है, ऐसी बात नहीं, मजबूरी में भीख मांगता है तो वो बरोबर है
2: जी,
3: लेकिन जब उसे समझ आ जाएगी फिर तो उसको भीख मांगना बंद करना चाहिए, फिर धंधा मजदूरी करना पड़ता है
2: जी।
3: हाँ
2: जी,
3: मेरा ये विचार था।
2: हाँ जी, हाँ
3: अच्छा
2: जी।
3: दूसरी बात ये रही, अब वो एक सुबह उठ के आता है तो वो स्नान करके क्यों नहीं आता, जब पानी का तो पैसा लगता नहीं है
2: जी। बिल्कुल सही कहा आपने,
3: मेरे हिसाब से उनको गरीब को थोड़ा, ये गरीब जिसको मानते हैं उनको थोड़ा विचार देना है कि वो भीख ना मांगे, वो सफाई से रहे
2: जी,
3: तो अपना विचार बदल जाएंगे
2: जी। जी क्या बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत आभार कुपाराम जी,
3: आपके
2: आपके इन विचारों ने मुझे भी कुछ बातें याद दिला दी है, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर बात कही है कि देखिए गरीबी मतलब गरीब किसे कहते हैं, कोई दिल से होते हैं तो कोई वो नेचुरल गरीब होते हैं, वो बात अलग है, वो खुददारी से जीवन जीते, वो हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने, खुददारी से वो अपने रोजगार करते रहते, छोटा मोटा जो भी उनको मिला है मजदूरी करके पेट भरते, लेकिन हाथ नहीं फैलाते। और जो इस तरह के बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो हाथ फैलाने की आदत हो जाती है, वो उनके कितने भी सरकार मदद करे लेकिन वो मदद उनको मतलब लेना ही नहीं आती है, ले लेते, जैसे कि कुपाराम जी ने बताया कि राशन से जो उनको अनाज मिलता है बेच देते हैं, थोड़े से 2-4 रुपए दुकान वाले ज़्यादा दे देते हैं तो उस लोभ में बेच देते हैं, और भले बेच करके वो सिगरेट बीड़ी पियेंगे, शराब के भी आदि होते हैं, बहुत सारे गरीबों को देखा है शराब के भी आदि होते हैं, लेकिन उनको वही जीवन अच्छा लगता है। रेडियो मधुबन की टीम कभी आपने सुना भी होगा, पहले भी हम बोल चुके हैं इस बात को कि हमारे आबू के अंचल में ही कुछ कचरे बीनने वाले बच्चे हैं। उन बच्चों को हमने पढ़ाया, उनको जैसे कि कुपाराम जी ने कहा ना कि वो गंदे रहते हैं, नाना तो कम से कम हैंडपंप लगे होते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है। तो हमने देखा है कि उन गरीब बच्चों के घर के बाहर ही हैंडपंप लगा हुआ है, लेकिन वो स्नान ध्यान नहीं करते, इतने गंदे रहते हैं और कपड़े तो देख लो कि क्या डिज़ाइन है, क्या कलर है, समझ में ही नहीं आता। तो उन बच्चों को नहलाना धुलाना सब सिखाया, कपड़े धुलाना भी सिखाया। उन बच्चों का कहना था कि उनकी माताएं क्या करती है, कपड़ों को जला देती है, 8-10 दिन पहने रहते हैं, फिर उन कपड़ों को जला देती, फिर मांगने चले जाते हैं और लोग देते भी हैं, क्योंकि अब बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चे की हाइट बन जाती है, तो वो फिर इस तरह गरीब बच्चों को दे देते हैं। तो उनको नए नए कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए, और कीमत तो उनको पता नहीं, क्योंकि खरीदते हैं पैसे दे करके खरीदते हैं, तो उस चीज़ की कीमत नज़र आती है, और भीख में मिल गई ना, दान में मिल गई, उस चीज़ की क्या वैल्यू। तो उन बच्चों को उस वैल्यू का एहसास कराया कि आपकी माताएं जला देती है, जाने दो, लेकिन आपको खुद को नहा धो करके स्वच्छ हो करके पढ़ने के लिए आना है, कपड़े धुलाई करके आना है। तो बच्चे अच्छी तरह आने लगे, लेकिन माता पिता की आदत है ना, कुछ पिता लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जो कचरे बीनते हैं उसमें से 50-60 रुपये वो कमा लेते हैं पूरे दिन के, और पिता लोग शराब पी करके पड़े रहते हैं। ऐसा भी हमने इन आँखों से देखा है, और उनको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की कि आपके बच्चों का भविष्य इस तरह आप क्यों खराब करते हो। उनका स्कूल में एडमिशन भी कराया गार्जियन के तौर पर, लेकिन नहीं समझते हैं ना, वो बदलना ही नहीं चाहते अपनी परिस्थितियों को। उनको ऐसे कि बस 50-60 रुपये वो, फिर 50-60 रुपये उनकी बीवी कमा के लाती है, कचरा बीन करके 100-150 रुपये आ गए, हो गया पूरे दिन का आराम से गुजारा चल जाएगा, इससे आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप। इसलिए ये भी सही है कि जानबूझकर के लोग अपनी आदतों से मजबूर होकर के भी लोग कुछ काम धंधा नहीं करना चाहते। लेकिन चलिए, ये तो बात हो रही थी भाई गरीबों की कि वो अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे गरीब जो अपने स्वाभिमान में रहते हैं, आप उनकी मदद, लाचार स्थिति को देख करके अगर मदद करेंगे तो वो मदद भी नहीं लेंगे, खुददारी से जीवन जियेंगे, नहीं नहीं साहब हमारे पास कोई कमी नहीं है, वो नहीं लेते हैं। तब ऐसा लगता है कि कोई कोई तो उसको गलत समझ लेते हैं कि अरे देखो गरीब है फिर भी इतरा रहा है, लेकिन इतरा नहीं, वो स्वाभिमानी है। और कहीं कहीं पर मजबूरी भी होती है, माताएं बहनों को देखिए आप, कहीं कहीं पर पति गुजर जाता है या फिर शराबी कबाबी होता है, बच्चे हो जाते हैं तो माताएं मजबूर हो जाती हैं, वो खुद के लिए फिर भीख नहीं मांगेगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो भीख मांगेगी, क्योंकि उनको काम अगर नहीं मिलता है तो। बहुत सारी माताओं को तो जैसे कि कुपाराम जी ने कहा कि भाई काम के लिए कहते हैं कि आइए और काम करिए, लेकिन बहुत सारे गरीब को कोई काम, ऐसे भी लोग हैं जो देना नहीं चाहते कि अरे भाई बहुत गरीब है, कहीं घर से कुछ उठा के ले गया तो। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको परखना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, गरीबों के लिए ये ज़रूर करना चाहूँगी कि भाई वो स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेंगे, कपड़ों की शर्म नहीं है कि उन्होंने फटा पहन रखा है या पुराना पहन रखा है, फटे है तो आप सिलाई कर लीजिए, लेकिन स्वच्छ कपड़े पहनिए, धुलाई करके पहनिए। अगर आप स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो लोग आपको 2 नहीं 4 काम देंगे। घर पर देखिए आजकल माताएं बहनें भी क्या है, सर्विस ज़्यादा करती है या फिर घर पर भी रह करके बिजनेस करती है, तो उनको सारा काम करने का समय नहीं मिल पाता है, तो झाड़ू पोछे बर्तन में भी माइयों को रखते हैं, तो ऐसा काम तो कर सकते हैं ना। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है हमारी, हम गरीब हैं तो कोई सा भी काम शर्म नहीं, काम करने की कभी ऐब या शर्म नहीं रखनी चाहिए, चोरी झूठ छल कपट इनकी शर्म होनी चाहिए, इसलिए काम का शर्म नहीं करनी है। जैसे कि एक बार शुक्रवार को जब हम स्पेशल कोई माता बहन से आपको मिलवाते हैं, तो एक बहन से भी मिलवाया, नेपाल की बहन थी, किस तरह वो झाड़ू पोछा करके 6-7 हज़ार महीने के कमा लेती हैं, और देखिए अच्छे घर होते हैं, वहाँ से फिर बच्चों के कपड़े है, फिर खाने पीने का है वो भी देते हैं, वो देखिए ऐसे नहीं कि उनका दया देख करके कि उन पर दया करके दे रहे, नहीं, स्वाभाविक है 4 जनों का खाना बनाते हैं तो 5वें का बन ही जाता है, 1 जनों का ज़्यादा बनता ही है, और लास्ट में भोजन करने के बाद बचता है तो वो हम अपनी माइयों को ही देते हैं कि भाई ये बच्चा है जो ले जाओ, तो वो तो ताज़ा खाना ही है ना, बच्चा इसलिए दे रहे हैं और उनको पता है कि बच्चा है इसलिए दे रहे हैं, स्पेशल नहीं बनाया हमारे लिए या फिर हम उनके लिए स्पेशल नहीं बना रहे हैं, तो वो बात अलग है। तो गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन स्वाभिमान से जीना, ये अच्छी बात है कि गरीबी तो परिस्थितियां सभी के अंदर आती है। और बात रही हंसने की कि गरीब को देख करके हंसी मजाक नहीं करना है। वो कहते ना कि कभी भी ये पहिया घूम करके, ये चक्र घूम करके हमारे तक भी आ सकता है। हेलो
0: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं फिर से सुरेश भाई दानेरा से। मुझे एक सच्ची घटना याद आई है
2: जी।
0: के एक गरीब जो तो वो मांग रहा था, तो जो ज्यादा भीड़ में फुटपाथ पर, तो उनका जो मांगने का जो वटका होता है ना, वो लोगों को पैरों से इधर उधर हो रहा था, पैसे भी गिर रहे थे। तो एक इंसान ने देखा और वो बोला कि तुम इधर ऐसे ही हर रोज रहते हो, कुछ पैसा इकट्ठा करके क्यों कुछ काम नहीं करते, कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं। तो उन्होंने पैसा 500 रुपया दिया और कुछ कुछ काम कर लो ऐसा बोलकर वो तो चला गया
2: जी।
0: और लगभग 4-5 साल बाद जब वो 500 रुपया देने वाला जा रहा था, तो एक इंसान ने पकड़ा और पैरों में गिर गया और के अपने साथ ही चलो, अरे भाई मैं आपको पहचानता नहीं, आप है कौन। तो बहुत छोटा मोटा घर था, उनके घर में ले गया और अच्छी सी खातिरदारी की, लेकिन आप बताओ तो सही है कौन
2: जी।
0: तो क्या आपको याद हो 4-5 पहले जो आपने 500 रुपया दिया और मैं भीख मांग रहा था ना वो फुटपाथ पर, वो मैं ही हूँ। आपने सिर्फ उन दिन 500 रुपया ही नहीं दिया, लेकिन मुझे जीने की तरकीब सिखाई है। तो ये सब कुछ आपका ही है और आप बहुत धन्यवाद दिया, सब कुछ किया। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि गरीब को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए।
2: जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बड़े जी। तो ऐसा भी होता है कि देखिए, गरीब के अगर हम समय रहते उनकी मदद करते हैं तो वो भी ऊपर आ सकते हैं, उड़ सकते हैं ऊपर, क्योंकि उनके अंदर कला है कुछ करने की। जैसा कि आपने बताया कि 500 रुपए से उनको इतनी मदद मिली कि कुछ ही सालों में वो थोड़े से योग्य बन गए, छोटा मोटा घर भी खरीद लिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पैसों का सदुपयोग करना आना चाहिए। पैसे तो सभी के हाथ में मिल जाते हैं, लेकिन कितनी बार क्या है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो बात चल रही थी कि गरीब है, ठीक है वो गरीब है, लेकिन हमें उसकी हंसी मजाक उड़ाने की कहाँ आवश्यकता है। कभी कभी इंसान बेमतलब ही गरीबों की हंसी उड़ाते हैं, उनके ऊपर कॉमेंट कसते हैं, न जाने कितने व्यंग मार देते हैं। मांगने वाले के भी आप देखना, कोई मांगने हमारे दहलीज पर आता है तो बहुत सारे लोग तो उसका पूरा ही अपमान कर देते, अरे भाई अच्छे खासे हो, कुछ काम धंधा करो ना, ऐसे मतलब व्यंग में। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो आया है हमारे द्वार पर, तो उसकी कुछ मजबूरी होगी। अगर आप मदद कर सको तो ठीक है, नहीं तो मत करिए, क्योंकि आजकल किसी का कुछ नहीं कह सकते कि कोई मदद मांगने आता है और अपना ही चेन वगैरह खींच के ले जाता है, ऐसा भी हो रहा है अभी वर्तमान में। तो मत करिए, लेकिन हंसना नहीं है, उसके ऊपर छीटा कसी नहीं कसनी है कि अरे तुम क्या करते हो, तुम तो काम धंधा कर सकते हो। प्यार से कहो कि भाई काम धंधा करके अपना गुजारा करो, मांगना अच्छा नहीं है, ये बात तो अलग है, एक सलाह देना हुए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसे ताने मारते, ऐसे डांटते कि जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। हमने दिया भी कुछ नहीं और बहुत कुछ सुना दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करने से भी सामने वाला अगर वो मजबूरी से आया, हमें नहीं पता कि वो किस आशय से, किस मतलब भाव से आया है, लेकिन हमने उसका अपमान किया और उसका दिल दुख गया, उसको ताने मारे, उसके ऊपर व्यंग कसे और उसका दिल दुख गया, तो भी पाप के भागीदार तो हम हो जाएंगे ना। इसलिए कोई मांगने आ रहे हैं, देना न देना अपने हाथ में है, लेकिन अपमान नहीं करना है गरीब का, क्योंकि कब समय पलटी खाए, कब परिस्थितियां हमारे पास आ जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे। हो रहा है समाज में, देखिए करोड़पति के रोडपति बन रहे और रोडपति के करोड़पति बन रहे, जैसे योग्य बच्चे निकलते हैं पढ़ लिख करके होशियार बन जाते हैं, अच्छी ऊंची पोस्ट पर विराजमान हो जाते हैं, तो उनकी परिस्थिति अच्छी संभल जाती है, तो वो अच्छा जीवन जीने लगते हैं। बहुत सारे लोग जो अहंकार में रहते हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, वो देखो आप भीख मांगते नजर आते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ कुछ रॉयल भिखारी भी होते हैं कि लोगों से पैसे मांगने की आदत होती है और देना नहीं होता है। तो दरअसल गरीब तो उनको ही कहेंगे जो पैसे तो ले लेते हैं लोगों से, धंधे में डालना, उसमें डालना, इसमें डालना, और फिर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। जो मांगने आते हैं ना, उनको मुंह भी नहीं दिखाएंगे और घर परिवार में समझा देंगे कि बता देना भाई, वो आवे तो बोल देना कि घर पर नहीं हूँ, और वही जवाब मिलता है। बेचारे लोग कितना धक्का खाएंगे, 10, 15, 20 धीरे धीरे फ़ोन कॉल्स भी बंद, उठाना बंद, नंबर बदल देंगे। गरीब वो है जो इस तरह लोगों का मांग मांग करके खाते, मेहनत करने वाले कभी गरीब नहीं होते। इसलिए स्वाभिमान का जीवन जीना है और स्वाभिमान में रहना है, यही दरअसल दिल के अमीर कहलाते हैं। और आज के प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, तो ऐसी कौन सी तिथि आती आने वाली है अभी जो ये सब हम करने वाले हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए सुनेंगे फिर से एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: करता है।
1: ये ले बहू, इसे पी जा।
2: ये क्या है माँ जी?
1: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
2: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
1: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
3: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
1: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
2: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
3: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
2: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना?
4: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। परंतु आज के प्रश्न का जवाब बहुत सरल है। पहले मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जो भी आशियाना कार्यक्रम सुन रहे हैं आप प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये तिथि बहुत ही जल्दी आने वाली है।

0: तो भाई ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है? नवरात्रि तो देखिए बहुत सभी ने गरबा रास किया, डांडिया किया, मजा आ गया सभी को, है ना। तो गरबा रास अपने अपने सोसाइटी में हुए हैं और किए भी होंगे, लेकिन फिर से गरबा रास करेंगे परंतु कौन सी तिथि को? जवाब दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आशियाना की किचन में आज बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट वानगी, गुजराती में वानगी कहते हैं, और वैसे हम कह सकते हैं कोई भी एक अच्छे से डिश, तो बनाएंगे राजस्थानी कचौरी चाट। राजस्थानी कचौरी चाट का नाम सुनते ही तो पानी आ ही गया होगा, और वो भी जोधपुरी कचौरी चाट, उसका तो कहना ही क्या है। जगह जगह पर भले मिष्ठान वालों की दुकानें होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे दुकानों पर लिखा होता है कि जोधपुरी कचौरी, लेकिन चलिए जोधपुरी कचौरी आज हम सभी को बनाना सिखाएंगे ताकि आप सभी बना करके आनंद ले सको। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, नमस्कार लीला जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: एकदम बढ़िया है मैडम जी, आपकी इतनी अपनी फर्स्ट क्लास आवाज आज बराबर आई है, क्योंकि एक तो नहीं रहा ना, आवाज बराबर नहीं सुनाई दे रहा था।
0: अच्छा,
1: हाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, बराबर गुर गुर गुर गुर करके तो मजा नहीं आ रहा था सुनने में।
0: चलिए आज तो आवाज एकदम क्लीन आ रही है।
1: बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हर पूनम में गरबे के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं रात की।
0: अच्छा, तो आ जाइए फिर, करेंगे हम सभी रेडियो मधुबन में धमाल।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पूनम आ रही है फर्स्ट क्लास।
0: जी जी जी, चलिए हम देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं है। आ रही है तो कब आ रही है?
1: जल्दी जल्दी खीर पौंगे की खीर बनाएंगे और फिर चांदनी रात में रख देंगे और फिर चंदा मामा से अमृत गिरेगा अंदर।
0: जी जी, क्या बात है। बहुत अच्छा,
1: सरस पूनम नी रात जो चांदनी उगियो सखी सखी मारा चौक मा।
0: क्या बात है। बहुत खूब। तो लीला जी, हम जरूर आएंगे इस बार, भाई ज्यादा बनाना, ठीक है?
1: बहुत देर बनाएंगे अपन, कमी नहीं पड़ेगी।
0: ठीक है ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और उस दिन हमारे श्रोता बंधु को आप ही सिखा देना, ठीक है? दूध पोहे,
1: ठीक है? ठीक है मैडम जी।
0: ओके जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी, तो आज आपको कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? तो पहले मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, पेन और डायरी आप तैयार होगी आपके हाथ में, सामग्री लिख लीजिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी है कि लिख लेना अच्छा है। आप रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं, तो लिख लीजिए कि सामग्री है मैदा 250 ग्राम, फिर आप धुली हुई मूँग की दाल ले लीजिए 100 ग्राम, और हरी मिर्च ले लीजिए 3-4, अदरक भी एक छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं, 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, हींग चुटकी भर लेना है, पीसी हुई लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच लेना है, मोटा कुटा हुआ गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोयन और तलने के लिए तेल आवश्यकता के अनुसार लेना है। भरने की सामग्री दोहरा रही हूँ, 4-5 उबले हुए आलू लेना है, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये आप आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, चाट मसाला भी लेना है, हरी चटनी और इमली की सौंठ ये भी आपको तैयार रखना है, बीकानेरी भुजिया और फेटा हुआ दही, और ये सब आपको तैयार रखना है, ठीक है? तो फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थानी कचौरी चाट, वैसे तो देखिए राजस्थान के लोग चटपटा खाने के बहुत ही प्रसिद्ध है, जोधपुर की स्पेशल कचौरी की चाट खाने के बाद तो दिनों तक, बहुत दिनों तक उसका स्वाद याद आता रहता है। अक्सर आपने देखा ही होगा, क्योंकि कोई ऐसे नहीं होंगे हमारे श्रोता बंधु जिन्होंने जोधपुरी कचौरी चाट नहीं खाई होगी, और उसका आज मैंने याद दिला दिया होगा तो उसका टेस्ट भी याद आ गया होगा कि कैसा उसका स्वाद रहता है। लेकिन अब ये रोज तो बाहर से लाके नहीं खा सकते हैं, इसलिए घर पर बना करके आप जरूर खा सकते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी रहती है। तो मैदा 250 ग्राम लीजिएगा, दाल लेना है 100 ग्राम मूंग की दाल, ठीक है। हरी मिर्च, अदरक सब अपने आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, जैसे 3-4 हरी मिर्च है, 1 अदरक का टुकड़ा है, जीरा 1 चम्मच है, चुटकी भर हींग है, पीसी हुई लाल मिर्च और नमक दोनों ही अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच लेना है, और मोटा कुटा हुआ गरम मसाला भी आधा छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोवन के लिए और तलने के लिए आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है। फिर भरन की सामग्री है भरने की, कि उबले हुए आलू 4-5 ले लीजिए, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये सब आपको आवश्यकता के अनुसार लेना है। इसके साथ चाट मसाला भी आपको लेना है थोड़ा सा। अब इसमें आप तैयार रखेंगे हरी चटनी, इमली की सौंठ, बीकानेरी भुजिया और दही आपको लेना है, ठीक है। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए गीत सुनेंगे, उसके बाद राजस्थानी कचौरी चाट कैसे बनाई जाती है वो जरूर सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न है, हमारे जो भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं दे सकते हैं आज के प्रश्न का जवाब। प्रश्न है, ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। जवाब जरूर दीजिएगा, हमारे नंबर है रेडियो मधुबन के 94 14 15 14 15।

आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे हैं राजस्थानी कचौरी चाट। सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, आप लिख चुके होंगे। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप क्या करेंगे। मैदे को छानिए, छान करके एक बड़ा चम्मच तेल इसमें डालिए और थोड़ा सा नमक मिला करके नरम नरम इसको गूंदना है और गूंद करके गीले कपड़े से ढक करके रख देना है, ठीक है। फिर एक कढ़ाई रखिए गैस पर, कढ़ाई में तेल डालिए और हींग जीरे का तड़का लगाइए। फिर दाल जो हमारी भीगी हुई है, दाल को क्या है भिगो के रखना है एक घंटे पहले ही, ठीक है। तो इसका छोक लगा दीजिए, पानी निकाल देना है और छोक देना है दाल को। फिर नमक लाल मिर्च डाल करके कम पानी में गलने तक पकाइए, हल्के हल्के से छींटे देते जाने हैं। पानी तो निकाल ही देना है, बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो हाथ में लेकर के थोड़ा सा छींटा दीजिए, ठीक है, ताकि दाल हमारी थोड़ी सी गल जाए। गलने के बाद यदि वो पानी तो रखना ही नहीं है, फिर भी है तो आप उसको सुखा दीजिए और अच्छी तरह इसको मैश करिए। गरम मसाला और अमचूर मिलाइए, थोड़ा हरा मसाला भी मिला दीजिए। मैदे की छोटी लोइया बना करके बीच में मूंग का मिश्रण थोड़ा सा फैलाना है लोइया बना करके, ठीक है। फिर मूंग के दाल की ये पिट्ठी रखिए और इस मिश्रण को भर करके चारों ओर से मोड़ करके गोलाई में बंद करिए। हथेली से हल्का सा दबा करके कचौरी की तरह बनाइए, ठीक है। फिर गरम तेल में इसको डाल दीजिए, मंदी आंच पर करारी होने तक तलना है। तो कचौरी फूलना अवश्य, देखे कचौरी आप डाल रहे हैं तल रहे हैं तो कचौरी फूलनी ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर नहीं फूली बैठ जाएगी तो फिर वो कचौरी की तरह दिखाई नहीं देगी, इसलिए इस बात पर आपको पूरा ध्यान देना है। एक आध बिगड़ जाए तो दूसरी पर अच्छी मेहनत करनी है। अच्छी तरह इसका लुआ बनाना है, लुआ बना करके इसको हथेली से ही चौड़ा चौड़ा बना करना है। फिर मसाला जो पिट्ठी बनाई है दाल की बीच में रख करके गोल गोल फिर से लुआ बना करके हल्के हाथ से दबा देना है कचौरी की तरह। फिर तेल गरम हो जाए उसको मध्यम करके मध्यम आंच पर कचौरियाँ तलिए, दोनों तरफ से सुनहरी सुनहरी हो जाए फिर आप निकाल दीजिए और दूसरी कचौरिये तल दीजिए। कचौरिये फूलनी ज़रूर चाहिए। कचौरी को ऊपर से थोड़ा फ्राई करके उसमें कटे हुए आलू, हरा मसाला, जैसे कि हमने सामान लिया ना भाई उबले हुए आलू 3-4 लिए, उसके आप थोड़े से कटके कर लीजिए, काट लीजिए, ठीक है। और उसमें ये हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, कटा हुआ चाट मसाला, ये सभी आपको बताया था तो लीजिए। फिर आलू डाल करके हरा मसाला और चाट मसाला अपने स्वाद के अनुसार डालिए और हरी मिर्च, बीकानेरी भुजिया ये भी डाल दीजिए। इमली की सौंठ भी इसमें डालनी है, इमली की सौंठ बोले तो चटनी, ठीक है। और दही और नमक सब छिड़क करके पिरसिए। तो ये बन गई कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट। इसके खाने का जायका ही अलग है, बनाने का भी तरीका और खाने का भी स्वाद पूरा ही आपको अलग ही लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी। बच्चे, बुजुर्ग, किशोर सभी इसको पसंद करते हैं और सभी खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कचौरी चाट तैयार है, अब देर किस बात की, लीजिए एक प्लेट। प्लेट में ये सब रखिए और अच्छी तरह इसमें सब कुछ मसाला डालिए और एक थाली में रख दीजिए, स्वच्छ थाली में। और भी आपने कुछ बनाया है वो भी रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो कचौरी चाट का। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि भाई आप सभी ने सुना ही होगा कि ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सभी झूमने वाले हैं, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। तो आज के प्रश्न का जवाब सभी ने सही दिया है। नाम मैं पहले सुना रही हूँ, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, सुरेश भाई दानेराव से, कुपाराम जी कोजरा से और लीला जी माउंट आबू से, सभी ने सही जवाब दिया है। शरद पूर्णिमा जय। तो सही जवाब आप सभी के लिए, तालियां। और अब खाली दो लाइन में गीत की सुनाऊंगी क्योंकि समय भी होने को आ चुका है, इसलिए सिर्फ दो लाइन गीत की सुनाऊंगी। आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या,
भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान साहित्यकार से परिचित करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जी हाँ, आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है वृंदावन लाल वर्मा जी को।
2: श्रोताओं, हिंदी साहित्य के गगन में वृंदावन लाल वर्मा का नाम एक उज्जवल नक्षत्र के समान है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों को इतनी ऊंचाई प्रदान की कि उन्हें हिंदी के सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई। उनके उपन्यास झांसी की रानी और मृगनयनी ने हिंदी साहित्य में नए कीर्तिमान स्थापित किए। 80 वर्षों के अपने जीवन काल में उन्होंने 70 से अधिक पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य को अपार समृद्धि प्रदान की।
1: वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक कुलीन श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में हुआ था। यह परिवार परंपरागत रूप से शिक्षा और संस्कृति को महत्व देने वाला था। उनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद वर्मा था। श्री अयोध्या प्रसाद झांसी के तहसीलदार के कार्यालय में रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। यह एक सम्मानजनक सरकारी पद था। पिता का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता था, जिसके कारण वृंदावन लाल वर्मा का बचपन विभिन्न स्थानों पर बीता।
2: वृंदावन लाल वर्मा का परिवार अत्यंत रूढ़िवादी था, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था। उनके पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाएं। पिता के स्थानांतरण के कारण वृंदावन लाल वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा विभिन्न स्थानों पर हुई। उन्होंने झांसी, ग्वालियर और आगरा जैसे स्थानों पर अध्ययन किया। इस भ्रमणशील जीवन ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और लोगों से परिचित कराया, जो उनके भावी साहित्यिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।
1: बचपन से ही वृंदावन लाल वर्मा में पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के प्रति गहरी रुचि थी। वे घंटों रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियां सुनते रहते थे। उनके विद्यागुरु स्वर्गीय पंडित विद्याधर दीक्षित थे, जिन्होंने उनमें संस्कृत और इतिहास के प्रति रुचि जागृत की। वृंदावन लाल वर्मा में लेखन की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। जब वे मात्र 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी उन्होंने 3 छोटे छोटे नाटक लिखे और उन्हें इंडियन प्रेस प्रयाग को भेजा। उनकी प्रतिभा को देखते हुए प्रेस ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप 50 रुपये प्रदान किए। उस समय यह एक बड़ी राशि थी। यह उनकी साहित्यिक यात्रा की पहली उपलब्धि थी।
2: मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वृंदावन लाल वर्मा को घर की आर्थिक स्थिति के कारण लिपिक का काम करना पड़ा, लेकिन उनके मन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। विशेषकर वे वकील बनना चाहते थे। कुछ समय के बाद उन्होंने लिपिक के पद से त्यागपत्र दे दिया और आगे की पढ़ाई के लिए विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में दाखिला ले लिया। ग्वालियर से बीए करने के उपरांत उन्होंने आगरा जाकर एलएलबी की पढ़ाई प्रारंभ की।
1: कानून की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी में वकालत शुरू की, लेकिन शुरुआती दिन बहुत संघर्षपूर्ण रहे। उन्हें प्रारंभ में मुकदमे नहीं मिलते थे, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वकालत के साथ साथ उन्होंने लेखन भी जारी रखा। दिन में वकालत की तैयारी करते और रात में लिखते। उन्होंने अपनी आत्मकथा अपनी कहानी में अपने इस संघर्षमय जीवन का विस्तृत वर्णन किया है।
2: धीरे धीरे उनकी वकालत जमने लगी। वे एक सफल वकील के रूप में प्रतिष्ठित हुए, लेकिन उनका मन हमेशा साहित्य में ही रमता था। वे कहते थे कि वकालत मेरी जीविका है, लेकिन साहित्य मेरा जीवन। वृंदावन लाल वर्मा की पहली महत्वपूर्ण रचना सेनापति ऊदल नामक एक नाटक था, जो वर्ष 1909 में प्रकाशित हुआ। यह नाटक बुंदेलखंड के वीर सेनापति ऊदल की वीर गाथा पर आधारित था, लेकिन इस नाटक की नियति विचित्र रही। ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया क्योंकि उसमें स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावना थी।
1: यह घटना वृंदावन लाल वर्मा के लिए निराशाजनक थी, लेकिन इसने उनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति और अधिक प्रतिरोध की भावना जगाई। इसके बाद उन्होंने कई रचनाएं लिखी। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र एक मौलिक ग्रंथ, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद, ये रचनाएं उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती हैं। वे मौलिक लेखन के साथ साथ अनुवाद में भी रुचि रखते थे।
2: वर्ष 1927 में वृंदावन लाल वर्मा ने अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास गढ़ कुंडार लिखा। इस उपन्यास को उन्होंने केवल 2 महीने में पूरा किया। यह उपन्यास बुंदेलखंड के मध्यकालीन इतिहास पर आधारित था। गढ़ कुंडार की सफलता ने वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में स्थापित कर दिया। पाठकों और समीक्षकों ने इस उपन्यास की भूरी भूरी प्रशंसा की।
1: ১৯২৭ का वर्ष उनके लेखन का स्वर्णिम वर्ष था। इस एक ही वर्ष में उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं पूर्ण की। लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, हृदय की हिलोर आदि। यह उनकी अद्भुत लेखन क्षमता का प्रमाण था। 1930 में उन्होंने विराट की पद्मिनी नामक उपन्यास लिखा। यह उपन्यास भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित था और इसे भी पाठकों का भरपूर प्यार मिला।
2: इसके बाद कई वर्षों तक उनका लेखन स्थगित रहा। इसके कई कारण थे, जैसे व्यस्त वकालत, पारिवारिक जिम्मेदारियां और शायद कुछ निजी परिस्थितियां। वर्ष 1939 में उन्होंने पुनः सक्रिय रूप से लेखन शुरू किया, जिसमें उन्होंने धीरे धीरे व्यंग, जो वर्ष 1939 में प्रकाशित हुआ, वर्ष 1942 से 1944 के दौरान कभी ना कभी, और मुसाहिब जू की रचना की।
1: 1946 में वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी सबसे प्रसिद्ध और कालजयी कृति झांसी की रानी लिखी। यह उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित था। इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य में नए कीर्तिमान स्थापित किए। यह उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पर दूरदर्शन धारावाहिक बना, इस पर फिल्म बनी और भारत सरकार ने इसके लिए उन्हें 2,000 रुपये का पुरस्कार दिया। यह उपन्यास अंग्रेजी, चेक, स्पेनिश, जर्मन और चीनी भाषाओं में भी अनुवादित हुआ। यह उपन्यास आज भी रानी लक्ष्मीबाई पर लिखा गया सबसे प्रामाणिक और श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है।
2: इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा ने एक के बाद एक श्रेष्ठ उपन्यास लिखे। मृगनयनी 1950 में लिखा हुआ उनका यह उपन्यास मुगल सम्राट जहांगीर और उनकी प्रेमिका अनारकली की कथा पर आधारित है। इस पर भी एक धारावाहिक और फिल्म बनी। टूटे कांटे यह राजपूत वीरता की गाथा है। कचनार में बुंदेलखंड के इतिहास पर आधारित हमें जानकारी मिलती है। वहीं माधवजी सिंधिया, ये महान मराठा योद्धा माधवराव सिंधिया के जीवन पर आधारित है।
1: महारानी दुर्गावती गोंडवाना की वीर रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित कृति थी। यह उपन्यास अंग्रेजी में रानी दुर्गावती द फॉरगॉटन लाइफ ऑफ ए वॉरियर क्वीन ऑफ गोंडवाना एम्पायर शीर्षक से अनुवादित हुआ। अहिल्याबाई होलकर राज्य की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर पर केंद्रित थी। भुवन विक्रम यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित था। रामगढ़ की रानी बुंदेलखंड के इतिहास पर और टूटे धनुष राजपूताना के इतिहास पर केंद्रित था।
2: वृंदावन लाल वर्मा ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों की एक मजबूत परंपरा स्थापित की। उनसे पहले भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा ने इस विधा को नई ऊंचाई प्रदान की। आमतौर पर कहा जाता है कि ऐतिहासिक उपन्यास में या तो इतिहास मर जाता है या उपन्यास, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा ने इस मान्यता को झुठला दिया। उनके उपन्यासों में इतिहास और कल्पना का संतुलित समन्वय है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को बनाए रखते हुए रोचक कथानक बुना।
1: वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चितेरा कहा जाता है। उनके अधिकांश उपन्यासों की पृष्ठभूमि बुंदेलखंड का मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है। उन्होंने बुंदेलखंड की वीरता और शौर्य की गाथाएं, सांस्कृतिक परंपराएं, प्राकृतिक सौंदर्य और लोक जीवन सबको अपने उपन्यासों में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया।
2: वृंदावन लाल वर्मा के चरित्र चित्रण की विशेषता है कि उनके पात्र मात्र ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं रहते बल्कि जीवंत मानवीय चरित्र बन जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, अनारकली, ये सभी पात्र पाठकों के मन में जीवित हो उठते हैं। वृंदावन लाल वर्मा की भाषा सरल और प्रवाहमय है। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग है, बुंदेलखंडी शब्दों का समावेश है और वर्णनात्मक शैली अत्यंत प्रभावशाली है।
1: उनकी शैली इतनी मनोहारी थी कि पाठक उपन्यास में पूरी तरह से डूब जाता था, इसीलिए उन्हें हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट कहा गया। वृंदावन लाल वर्मा केवल उपन्यासकार ही नहीं थे, उन्हें इतिहास, पुरातत्व, कला, मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने इन विषयों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने बुंदेलखंड के विभिन्न किलों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, वहां के शिलालेखों और स्थापत्य का अध्ययन किया। यह सब उनके उपन्यासों की प्रामाणिकता में दिखाई देता है।
2: उपन्यासों के अतिरिक्त वृंदावन लाल वर्मा ने निबंध और लघु कथाएं भी लिखी। उनके निबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों पर केंद्रित थे। वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी कहानी नामक एक आत्मकथा भी लिखी। इसमें उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन, साहित्यिक यात्रा और अनुभवों का विस्तृत वर्णन किया है। यह आत्मकथा उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: वृंदावन लाल वर्मा केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक समर्पित समाज सेवी भी थे। वे प्रेम को जीवन का सबसे आवश्यक अंग मानते थे। उन्होंने जुनून की सीमा तक सामाजिक कार्य किए। उन्होंने वकालत व्यवसाय से कमाई गई समस्त पूंजी समाज के कमजोर वर्ग के नागरिकों को पुनर्वासित करने के कार्य में लगा दी। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा की।
2: वृंदावन लाल वर्मा एक सरल, विनम्र और उदार व्यक्ति थे। वे दिखावे से दूर रहते थे। उनका जीवन सादगी का प्रतीक था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनमें अद्भुत धैर्य और मेहनत की क्षमता थी। वे घंटों बैठकर लिखते रहते थे। उनकी एकाग्रता और समर्पण अनुकरणीय था। वृंदावन लाल वर्मा की साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए।
1: भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 1963 में सम्मानित किया। डीलिट मानद आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। साहित्य वाचस्पति साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की।
2: सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। वहीं भारत सरकार ने झांसी की रानी उपन्यास के लिए 2,000 रुपए का विशेष पुरस्कार दिया। साथ ही भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। इन सम्मानों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं ने भी उन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया।
1: वृंदावन लाल वर्मा अपने जीवन के अंतिम दिनों तक सक्रिय रूप से लेखन में संलग्न रहे। 80 वर्ष की आयु में भी उनकी लेखनी थमी नहीं थी। 23 फरवरी 1969 को इस महान साहित्यकार ने अंतिम सांस ली। उनके निधन से हिंदी साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे देश ने एक महान साहित्यकार को खो दिया।
2: वृंदावन लाल वर्मा ने अपने पीछे एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ी। 70 से अधिक प्रकाशित पुस्तकें, कई अप्रकाशित रचनाएं, हिंदी ऐतिहासिक उपन्यास की मजबूत परंपरा। उनके उपन्यास आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य का अध्ययन होता है। शोध छात्र उन पर शोध करते हैं।
1: वृंदावन लाल वर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महान स्तंभ के रूप में स्थापित हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों को नई ऊंचाई प्रदान की। उनके उपन्यासों ने लाखों पाठकों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और वीरता से परिचित करवाया। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और साहित्य साधना का उदाहरण है। वकालत के व्यस्त जीवन में भी उन्होंने साहित्य को समय दिया और 70 से अधिक पुस्तकें लिखी।
2: आज भी जब कोई झांसी की रानी पढ़ता है तो रानी लक्ष्मीबाई का वीरता भरा जीवन आंखों के सामने साकार हो उठता है। यही वृंदावन लाल वर्मा की महानता है। उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है और सदा रहेगा। वृंदावन लाल वर्मा ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक निबंध और लेख प्रकाशित किए जो विविध विषयों पर केंद्रित थे, जैसे साहित्य और समाज, इतिहास और संस्कृति, बुंदेलखंड का इतिहास, कला और स्थापत्य।
1: वृंदावन लाल वर्मा अपने उपन्यास लिखने से पहले गहन शोध करते थे। वे ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करते, शिलालेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों की जांच करते, संबंधित स्थानों का भ्रमण करते, स्थानीय किंवदंतियों और लोक कथाओं का संग्रह करते। झांसी की रानी लिखने से पहले उन्होंने झांसी के किले, रानी महल और आसपास के क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने 1857 के संग्राम से जुड़े तमाम दस्तावेजों और अंग्रेजी अभिलेखों का भी अध्ययन किया।
2: वृंदावन लाल वर्मा की सबसे बड़ी कला थी ऐतिहासिक तथ्यों को बनाए रखते हुए रोचक कथानक बुनना। उन्होंने इतिहास की सूखी तथ्यात्मकता को जीवंत कथाओं में बदल दिया। उनके उपन्यासों में मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं यथावत रहती थीं, प्रमुख ऐतिहासिक पात्र प्रामाणिक रहते थे, काल्पनिक पात्र और घटनाएं केवल कथा को रोचक बनाने के लिए जोड़ी जाती थीं।
1: वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में नारी पात्र अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली हैं। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, अनारकली, अहिल्याबाई, ये सभी पात्र न केवल सुंदर हैं बल्कि साहसी, बुद्धिमान और निर्णायक भी हैं। उन्होंने नारी को केवल सहायक पात्र के रूप में नहीं बल्कि मुख्य नायिका के रूप में प्रस्तुत किया। उनके उपन्यासों में नारी शक्ति का प्रभावशाली चित्रण मिलता है।
2: वृंदावन लाल वर्मा युद्ध दृश्यों का वर्णन अत्यंत प्रभावी ढंग से करते थे। झांसी की रानी में झांसी की लड़ाई और ग्वालियर के युद्ध का वर्णन इतना जीवंत है कि पाठक को लगता है मानो वह स्वयं युद्ध के मैदान में खड़ा है। वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड की संस्कृति, परंपराओं, लोकगीतों, रीति रिवाजों और जीवन शैली का सुंदर चित्रण किया। उनके उपन्यासों में बुंदेली भाषा के शब्द और मुहावरे, स्थानीय त्योहार और उत्सव, लोक संगीत और नृत्य, खान पान और वेशभूषा, सब कुछ जीवंत रूप से उभरता है।
1: वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में प्रबल देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना की भावना है। झांसी की रानी तो राष्ट्रीय चेतना का जैसे महाकाव्य है। इस उपन्यास ने लाखों युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह उपन्यास क्रांतिकारियों की प्रिय पुस्तक था और इसे पढ़कर कई युवा स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े।
2: वृंदावन लाल वर्मा ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की एक नई परंपरा स्थापित की। उनके उपन्यासों में इतिहास और साहित्य का सुंदर समन्वय है। झांसी की रानी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय इतिहास की गौरव गाथाओं को जीवंत किया। उनकी तुलना विश्व के श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकारों से की जा सकती है।
1: वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी उपन्यास केवल साहित्यिक कृति नहीं है, यह राष्ट्रीय चेतना का दस्तावेज है। इस उपन्यास ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वृंदावन लाल वर्मा के बाद कई लेखकों ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उन्होंने इस विधा को इतनी लोकप्रियता दी कि यह हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा बन गई। चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर जैसे लेखकों ने उनसे प्रेरणा ली।
2: वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। झांसी की रानी पढ़कर लाखों लोग रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान से परिचित हुए। यह उपन्यास आज भी युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाता है। उनके उपन्यासों में सशक्त महिला पात्रों ने महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती और अहिल्याबाई जैसे चरित्र आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
1: वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यासों के माध्यम से बुंदेलखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनके उपन्यासों को पढ़कर लोग बुंदेलखंड के इतिहास, संस्कृति और वीरता से परिचित हुए। वृंदावन लाल वर्मा स्मारक झांसी, झांसी में उनकी स्मृति में एक स्मारक स्थापित किया गया है। वृंदावन लाल वर्मा साहित्य पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध केंद्र, उनके साहित्य पर शोध के लिए विशेष केंद्र बनाए गए हैं।
2: प्रतिवर्ष उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर विभिन्न स्थानों पर साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। साहित्यकार और विद्वान उनके योगदान पर चर्चा करते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों में उनके उपन्यासों को शामिल किया गया है। झांसी की रानी और मृगनयनी ये विशेष रूप से पढ़ाए जाते हैं।
1: वृंदावन लाल वर्मा का जीवन संदेश है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प, समर्पण और कठिन परिश्रम हो तो वह किसी भी क्षेत्र में महान कार्य कर सकता है। उन्होंने वकालत के व्यस्त जीवन में भी साहित्य को समय दिया और 70 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनका संदेश था, इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने गौरवशाली इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। देशभक्ति सर्वोपरि, देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। नारी शक्ति को सम्मान, महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। और साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, समाज को दिशा देने का माध्यम है।
2: वृंदावन लाल वर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास में एक दीप्तिमान नक्षत्र हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों को ऐसी ऊंचाई प्रदान की कि आज भी उनकी बराबरी करना कठिन है। झांसी की रानी हिंदी साहित्य की अमर कृति है जो पीढ़ियों तक पढ़ी जाती रहेगी। उनके उपन्यासों ने लाखों पाठकों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और वीरता से परिचित कराया। उन्होंने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत की, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
1: आज जब हम झांसी की रानी पढ़ते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का वीरता भरा जीवन हमारे आंखों के सामने साकार हो उठता है। जब हम मृगनयनी पढ़ते हैं तो मुगल कालीन भारत जीवंत हो उठता है और यही वृंदावन लाल वर्मा की साहित्यिक महानता का प्रमाण है। वृंदावन लाल वर्मा का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में सदा के लिए अमर है। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेंगी।
2: इतिहास केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं होता, वह आज के लिए प्रेरणा और कल के लिए मार्गदर्शन होता है। यही था वृंदावन लाल वर्मा का साहित्यिक दर्शन। उनकी पुण्य स्मृति को शत शत नमन। श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, वाचन भगवती सक्सेना और विजयकांत नायक का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ़ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ़ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो ईजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो वॉट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: दादू दादू कहते हुए नन्ना वेद पीठ पर स्कूल बैग थामे अपने दादाजी की ओर दौड़ते हुए आया। आ गया मेरा बेटा लिटिल चैंप, कहते हुए वेद के कंधे से उसका बैग उतारकर एक हाथ में पकड़ते हुए दूसरे हाथ से दादाजी ने वेद को भी गोद में उठा लिया। आज मेरा चैंप टिफिन खत्म करके आया है कि नहीं?
1: दादू पता है आज मम्मी ने टिफिन में क्या दिया था? मेरे मन पसंद वेज बटर पराठे, दोनों पराठे खा लिए दादू मैंने। अब देखिए मैं कितना ताकतवर बन गया हूँ।
0: कहते हुए वेद ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर दादाजी को डोले शोले दिखाने लगा। अरे वाह मेरे लिटिल चैंप, अरे अच्छे से खाओगे तभी तो स्वस्थ रहोगे और पढ़ाई खेल सब में अव्वल रहोगे, है ना?
1: हाँ दादू। ये अपना घर आ गया, अब मैं कपड़े बदल कर और खाना खा कर आता हूँ, फिर आप मुझे ताकतवर भीम की कहानी सुनाना।
0: अभी नहीं बेटा, खाना खाकर थोड़ी देर मम्मी के साथ आराम करना, फिर हम दोनों शाम को पार्क में चलेंगे और चेस भी खेलेंगे। मैं रात में तुमको भीम की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है ना?
1: ओके दादू।
0: ऐसे ही रोजाना बस स्टॉप से घर तक दादाजी वेद को अपनी प्यार भरी बाहों में साथ लाते, दोनों की आपस में ढेर सारी बातें हुआ करती। फिर रोजाना शाम को पार्क में एक घंटा घूमने और खेलने के दौरान वेद दादाजी से ढेर सारे सवाल किया करता। दादाजी बड़े ही रोचक अंदाज में उसकी सारी जिज्ञासाओं को शांत किया करते। वेद की 10वीं कक्षा की परीक्षा के बाद ही अचानक दादाजी की तबीयत खराब हो गई और कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद एक दिन वे हमेशा हमेशा के लिए वेद से दूर चले गए। दादाजी से बेहद जुड़ाव रखने वाला वेद उनके शांत होते ही एकदम गुमसुम हो गया था। उसके जीवन का एक बड़ा सा कोना खाली खाली सा हो गया। दिन भर चोहलबाजी करने वाला वेद अब घर के किसी अंधेरे कोने में होता। मम्मी पापा को पता ही नहीं चलता, न खाने पीने की जिद, न ही घूमने या पहनने ओढ़ने की चाह। मानो वेद की जिंदगी वहीं ठहर सी गई थी। ऐसे ही बेचैन मन से एक दिन वेद दादाजी के कमरे में गया। रोज की तरह दादाजी का बिस्तर झटकार कर धुली हुई चादर बिछाई, फिर उनकी कुर्सी पर बैठ गया और टेबल पर सिर रखकर लेट गया। अचानक ही उसकी नजर टेबल के ऊपर पुस्तकों के नीचे रखी एक डायरी पर गई। उसने झट से वो डायरी निकाली, फिर मन ही मन पुतपुताया।
1: दादू मुझे अकेले छोड़ के कहाँ चले गए आप? मैं टूट गया हूँ आपके बिना, किससे कहूंगा मैं अपने दिल की बात? अब दादू मेरे ढेर सारे सवालों के जवाब कौन देगा?
0: कहते कहते वेद डायरी खोलकर पेज पलटते जा रहा था। अचानक एक पेज पर उसकी नजर ठहर गई। वेद मेरे लिटिल चैंप, जीवन में कभी भी निराश या दुखी मत होना। तुमने शतरंज का खेल सीखा है ना? शतरंज का खिलाड़ी कितनी ही मूल्यवान मोहरों को खोने के बाद भी आखिरी क्षण तक जीतने के लिए खेलता है। अनायासी वेद दादाजी के साथ बिताए अविस्मरणीय पलों के धुंधलके में खो गया।
1: दादू शतरंज का खेल काले सफेद चौसर पर और काली सफेद मोहरों के साथ ही क्यों खेला जाता है?
0: वेद शतरंज की चौसर, मोहरें, उनकी चालें, सब कुछ ही हमारे

0: तरह से समझ सकते हैं कि हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि सत्य की विजय होती है और सफेद रंग ही सत्य का प्रतीक होता है। इस तरह सफेद यानी सत्य हमेशा आगे रहता है।
1: दादू, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आप बाकी सारी मोहरों के बारे में भी कहानियां बनाकर बताइए ना।
0: तुझे सीखना है शतरंज? अरे 3-4 घंटे एक ही जगह बैठकर खेलना होता है, बैठेगा इतनी देर एक जगह?
1: हाँ दादू, बैठूंगा ना।
0: रोज मेरे साथ 1 घंटा योगा और मेडिटेशन करेगा? सारे शतरंज के खिलाड़ी अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए रोज योगा और मेडिटेशन करते हैं।
1: अरे हाँ दादू, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा।
0: आज पहले दिन मैं बस शतरंज की मोहरों और उनकी चालों के बारे में तुझे बताता हूँ।
1: जी दादू, शुरू कीजिए ना जल्दी।
0: चलो वेद, ये रहा चौसर। अब ये दो मोटी मोटी मोहरें दिख रही हैं ना, इन्हें हाथी यानी रूक कहते हैं। और ये दाएं बाएं आगे पीछे एकदम सीधे चलते हैं और सिखाते हैं कि हमें कभी भी अपना काम निकालने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार या घूसखोरी। नियम कानूनों का हमेशा पालन करना।
1: ठीक है दादू, इनको चौसर पर कहाँ जमाऊं?
0: इन दोनों हाथियों को पीछे वाले खंड के दोनों किनारों पर रखो। इसके बाद हाथी के बिल्कुल बाजू से ये दो घोड़े यानी नाइट। चलो अब अपनी मोहरे जमाओ वेद।
1: दादू, ये कैसे आगे बढ़ते हैं?
0: वेद, ये घोड़े 2.5 घर चलते हैं और सिखाते हैं कि अगर हमारे आसपास बेमतलब की बातें या एक दूसरे की बुराइयों पर चर्चा हो रही हो तो वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप दूसरी ओर चले जाओ, अपना रास्ता बदल दो।
1: दादू, घोड़े के बाद कौन सी मोहरे आती हैं?
0: घोड़े या नाइट के बाजू से ये लंबे लंबे ऊंट यानी बिशप रखते हैं। ये तिरछा चलते हैं और सिखाते हैं कि हमें अपने आसपास पैनी नजर रखना चाहिए, जैसे कक्षा में पढ़ाई के साथ खेल कूद में अव्वल रहने वाले साथी एक साथ कैसे मैनेज करते हैं, देश दुनिया में क्या कुछ नया घटित हो रहा है, या बाजार में अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या नई तकनीक अपना रहे हैं। यानी हमें अपने आसपास भी पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए। समझ में तो आ रहा है ना मेरे लिटिल चैंप? दादाजी बोले।
1: हाँ दादू, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, मैं तो अब रोज आपके साथ शतरंज खेलूंगा।
0: ठीक है, ऊंट के बाद सिर पर ताज वाली रानी और ये राजा, इनको जमाओ। रानी किसी भी दिशा में आगे पीछे दाएं बाएं तिरछे कहीं भी बढ़ सकती है और दूसरे खिलाड़ी मोहरों को मार भी सकती है। और ये राजा, ये अपने खंड से 1 घर आगे पीछे दाएं बाएं आगे बढ़ सकता है। ठीक
1: दादू, ये दोनों क्या सीख देते हैं?
0: वेद, किसी भी दिशा में बढ़ने वाली रानी हमें सीख देती है कि हमारे चारों ओर ज्ञान का अथाह भंडार है, जिससे जो भी सीखने को मिले सीखते जाना चाहिए। इसी तरह राजा ये सिखाता है कि हमें अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, एकदम से आगे बढ़ने से गिरने का खतरा होता है। अचानक ही वर्तमान में लौटता वेद खुद ब खुद बुदबुदाया।
1: नहीं दादू, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, आपने मुझे जो बातें सिखाई हैं, मैं उन पर अमल करूंगा, कितनी भी मुश्किलें हो अपना आत्मविश्वास बनाए रखूंगा।
0: दादू की डायरी को सीने से लगाते हुए वेद ने महसूस किया जैसे दादू कहीं नहीं गए हैं, उनके पास ही हैं, और वो एक अद्भुत ऊर्जा आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो गया है।

दोस्तों आप सुन रहे थे अंजलि खेर जी की लिखी कहानी दादाजी की डायरी से। दादाजी की डायरी से ये कहानी खास अंजलि जी ने इसलिए लिखी कि मैं और अप्रतिम दोनों ही इसमें एक्टिव रूप से आवाजें दे सकें। अप्रतिम को वो बहुत स्नेह करती हैं, इसलिए खास उन्होंने ये कहानी लिखी। और ये कहानी प्रेरणा है, या कह सकते हैं कि कुछ अंश हैं, उनकी लिखी प्रथम पुस्तक शतरंज और जीवन प्रबंधन से। कुछ समय पहले ही उनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। राम प्रसाद एंड सन्स उस पुस्तक के प्रकाशक हैं। ये पुस्तक अंजलि जी कहती हैं कि उनके जीवन के सबसे अहम पात्र उनके पिता, जिन्हें वो बाबा कहकर के पुकारती आई हैं, उन्हें समर्पित करती हैं। शतरंज का खेल और शतरंज के खेल को जब सिखाने वाले शिक्षक जीवन के उदाहरण देते हैं, उन उदाहरणों को सुनते, उनको मनन करते, उनको प्रेरणा मिली कि कहीं ना कहीं ये उदाहरण जीवन की प्रैक्टिकलिटी यानी कि व्यवहारिकता से संबंधित हैं, और शतरंज का खेल तो लाइफ के मैनेजमेंट को सिखाता है। शतरंज की चौसर हो या मोहरे हो या प्रत्येक मोहरों का अलग अलग विशेषता रखना, शतरंज के खेल में आवश्यक जीवन के मूल्यों का होना, धैर्य, संयम, आत्मविश्वास, एकाग्रता की शक्ति, परखने की शक्ति, ऐसे जीवन मूल्यों की आवश्यकता होती है। और यही जीवन मूल्य जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आवश्यक होते हैं। सफलता के लिए जिस प्रकार से शरीर और मस्तिष्क यानी कि तन मन का स्वस्थ होना आवश्यक है, शतरंज का भी ठीक ऐसा ही है, वाइस वर्सा। बस यही सब सोचते हुए उन्होंने जीवन के प्रबंधन को सिखाने का आधार इस खेल को चुना। और इस पुस्तक को पढ़ते हुए जिस प्रकार के व्यवहारिक प्रैक्टिकल उदाहरण अंजलि जी ने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से रखे हैं, वो कहानियां, वो उदाहरण, वो शिक्षाएं, वो सबक, वो कहीं ना कहीं मन में एक आत्मविश्वास और अभिप्रेरण, मोटिवेशन पैदा करते हैं कि दूसरों की लाइफ पर हम जो कंट्रोल पाना चाहते हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं हमें अपने ही जीवन का प्रबंधन, मैनेजमेंट पहले करना होगा। कुछ एक मुख्य शिक्षाएं मैं आपके साथ साझा करता हूँ। वो कहती हैं कि शतरंज का काला सफेद बोर्ड हमें सत्य असत्य, सही गलत और सच्चे झूठे का संज्ञान करने की सीख देता है। शतरंज के नियम के अनुसार सफेद मोहरे को पहले चलना होता है, और सफेद यानी सत्य की जीत होना। खिलाड़ी अपनी पहली चाल में पैदल दो घर चल सकता है, बाद में ये एक एक घर आगे बढ़ती है। यानी जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो पहले हम अति उत्साही होते हैं, लेकिन बाद में हमारी गति कुछ धीमी हो जाती है, लेकिन हमें इस उत्साह को कम नहीं होने देना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने हर मोहरे के अंदर क्या विशेषता है वो भी सिखाई है, जो कि अभी अभी हमने इस कहानी में भी सुनी। हम आज तक अंजलि जी की लिखी कहानियों को पसंद करते आए हैं, उनका उत्साहवर्धन करते आए हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि उन तक भी शतरंज और शतरंज में छिपे जीवन प्रबंधन की शिक्षाएं पहुंच सके। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत बहुत नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: दिल न मुझसे छिपा सच।

0: लाग्यो जेठ आषाढ़ का वरते जाओ, अदको तो लाग्यो सावण भादवो। अरे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ का वरते जाओ, अदको तो लाग्यो सावण भादवो।
1: कई है रतन, कई है, आज बड़ी खुश दिखाई रही है।
0: देख भाई, मु तो रोज खुश रहू, अन कई कई मु तो गुनगुनाती रहू। थोड़े की नवरी पड़ू नहीं, मारा तो मुंडा पे कई कई गीत तो आई जावे। अभी आषाढ़ महीना चाल रहो, और आषाढ़ महीना में तो आपा तेजा जी का गीत ने तो याद करैया।
1: सही है,
0: तो मैंने तो गीत याद आ गया, तो मैं गुनगुनावा लागी। पर आओ भाई आओ, राम राम
1: राम राम राम राम।
0: और अपना सगला श्रोता बंधु को भी स्वागत करा हा गांव री बातें कार्यक्रम में। आप सगला जना को खूब खूब स्वागत है,
1: हार्दिक अभिनंदन है आप सभी ने, श्रोता बंधुओं ने।
0: आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।
0: सुनता रहो,
1: मुस्कुराता रहो।
0: और बता कंचन, तबीयत तो बढ़िया?
1: बस ठीक, तू बता का चल रही हो आजकल? थारे खुश घनी देखा है रही है।
0: देख भाई, त्योहार आ रहा है, मन तो आषाढ़ सावन आवे ना तो त्योहार की याद आवे।
1: हाँ वो तो है।
0: अबे देख, एक तो भल्या नवमी आ रही है, तो देख भाई भल्या नवमी का बाद सब शकुन का काम बंद हो जाई।
1: हाँ,
0: चौमासो तो लाग गयो बसान।
1: हाँ,
0: तो
1: सही है।
0: पर भल्या नवमी लास्ट वे, यदि शादी ब्याह या शगुन को जो भी काम करनो वे आप कर लो।
1: सही,
0: पचे ये 3-4 महीना शांति
1: शांति, हमें शादी ब्याह जो भी बहना वे, हमारे शुभ काम जो भी करनो वे करी। पसे थन दियो ने वन्ने पुटी, तो अगर नवी नवी शादी वे तो ही बेटी ने पिए लावे के जोड़ा साथे नहीं रह सकता।
0: हाँ मैं भी सुनियो हो। हाँ। कोई कोई समाज में एडो रिवाज है।
1: हाँ मैं सुनियो है, क्योंकि मैं पड़ोस में रहता वनो नवी नवी शादी हुई वे कहता था कि मारे बच्ची ने लानी है हमें, तो जरे मैं क्यों रतन ने ध्यान वही रतन ने पूछू, रतन ने सब रीति रिवाज रो ध्यान भी है।
0: हाँ तो इमें यू ही है कि एक महीना तक बेटी ने अपना घरे रखे, जे की शादी वे के पहले यो चौमासो आवे।
1: हाँ।
0: आषाढ़ महीनो आवे।
1: हाँ।
0: तो आखो महीनो बेटी ने पियर में रखे।
1: हाँ जर इसमु कहू रतन ने पूछू, रतन ने ध्यान वेला नवो नवो जोड़ो वे जर के एक महीना पीर में लावे। बाद में तो कोई नहीं ना, बाद में तो लावे हके, पसे तो कोई टेंशन नहीं।
0: अरे बच्चो की जिंदगी भर पीर में बैठा रहा गए।
1: ना वो पूछू रही हूँ,
0: पर एक महीना रखे पचे जमाई लेवा आवे वाने। अच्छा। हो मान चूंडन पचे सीख देवे।
1: अच्छा,
0: जमाई के ड्रेस देवे, बेटी के कपड़ा देवे। भाई कपड़े भाई पहली बार
1: आई
0: जो 4 जोड़ी 5 जोड़ी तो बेटी का लिए ही देवे, जमाई का लिए 1 या 2 जोड़ी।
1: हाँ तो हमें देख, ओ महीनो बेवा वालो है आषाढ़, पर श्रावण महीना में तो देख मंदिरों में का गुंज उठीला।
0: हाँ तो भाई वो कहवे कि आषाढ़ महीनो तो यूं ही बीते, पाछे श्रावण में अपने रक्षाबंधन आवे, बड़ी तीज आवे, छोटी तीज आवे, आनी पे पाछे बेटी ने लानो ही पड़े।
1: लानी पड़े, सही बात है।
0: तो देखो भाई, अपने राजस्थान रा मायने अलग अलग तरह का समाज है, और हर समाज का थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रीति रिवाज है। कटे सावन महीना में लावे तो आखो महीनो सावन महीना में रखे थन ठाए। आखो सावन नहीं भेजे
1: बेटी भेजे सावन के ओके मल महीनो बैठो है, मल महीना में के बेटी ने एक महीना के मैं तो लावे यूजर। मैं क्यों मु रतन ने पूछू, रतन ने ध्यान वही के ओ मल महीनो का विये ने बेटी ने क्यों लावे।
0: देख माँ तो मल महीनो किन्ने के वहाँ ठाए थे जनवरी मास में, 14 दिसंबर 14 जनवरी जो मर महीनो लागे ने बिने माँ मल महीनो के वहाँ
1: माल मल महीनो जिद के माँ माते बाहर वे जनती के बेटी ने पीरे लावे।
0: हाँ।
1: माँ माते वरना बाहर पड़े।
0: माँ माते
1: मैं सुनियो है, मने ध्यान नहीं, मैं एडो सुनियो है कि भाई माँ माते बाहर वे जनती बेटी ने पीर में लावे के।
0: बिल्कुल कंचन, माँ माते तो देखो जदी बेटी जन्म लेवे वदी माँ का माते भार, तो खैर बेटियां तो कोई भार होवे कोनी, बेटियां तो आजकल भार उतारे
1: उतारे
0: तो यूज क्यों होनी, वैसे माँ के ऊपर केड़ो भार है।
1: सही बात है।
0: हाँ पहला दहेज को बोल बालो हो झट्टे, आज भी दहेज का लिए बेटिया ने परेशान करे, बुआ ने सतावे, तो वो पचे भार के वावे, बाकी तो आज बेटियां माँ बाप ने हल्की करे,
1: हल्की करे, सेवा चाकरी बेटियां इस करे।
0: हाँ सेवा चाकरी करे, प्यार भरी मीठी वाणियों भी आश्वासन,
1: दिन में चार चार फोन परा करे।
0: सेवा भी करे, जरूरत पड़े तो सेवा भी करे माँ बाप की।
1: पर माँ ने उम्मीद बेटा करती, बेटी ने वे ससुराल में वे तो फोन नहीं करे तो माँ बेटी रो फोन नहीं आयु, बेटी 4-4 बार फोन करे जर माँ ने तसल्ली वे। तो वो तो है
0: नहीं, अब बेटियां कहीं देखो ससुराल में, मैं तो क्यों चार बार फोन भी करो गलत है। आप चार दिन में एक बार बात कर लो बढ़िया। देखो आप झटे गया हो बटे वटा का वर्णन रो और बटे आप सेठ बेवा की कोशिश करो।
1: वो तो है,
0: मारो तो कहना यो है अनिवासे रोज को फोन नहीं होना चाहिए जाए। रोज को फोन कदी होवे कंचन कजदी आपने दोईता दोईती हो जावे।
1: जरे सही जदी
0: यू रहे कर टाबर कई कर रहे हुए
1: कर हाँ,
0: खाली बेटी ससुराल में है तो माँ ने भी फोन तरो करन परेशान नहीं करना छावे। आप आपका मनक सबने वालो वेवे विने सेट वेवा दो ससुराल में। और बेटी के भी अत्रो यो नहीं करना छाओ मम्मी कई कर रहे मम्मी कई कर रहे। देखो भाई सासरे वाला ने भी अच्छो नहीं लागे और आपने भी सेट होना है।
1: हाँ,
0: पचर टाबर होवे तो टाबर ने तो खेलावा का हिसाब हो दादा दादी वो नाना नानी वो
1: सबने लाड़ तो आवे।
0: हाँ, चाहे बेटी तीसरी जगह पे रहती हो नौकरी पे रहती हो तो भी दादा दादी की भी इच्छा होवे फोन करवा की, नाना नानी की भी इच्छा होवे फोन करवा की, क्योंकि बच्चा का पाछे सब कुछ है।
1: सही बात,
0: तो वह बात अलग है। बाकी नहीं करना चाहिए,
1: बाकी नहीं करना जो जो सही बात है रहता ना। हाँ। बार बार पियरी फोन नहीं करना अच्छी बात नहीं है, पर वो कैन माती लगा भी है बेटी ने थोड़ी सी उदास भी है कटे कटे ही तो देख यू भी है के ससुराल जाए तो बेटी सबने बातों करे, वरना एकली बेटी वे तो सोचे माँ ने इस फोन पर करो तो फोन लगावे अपरो दिल हल्को करे। बाकी कई कई घर ऐड़ा भी है जटे ससुराल में एहसास ही नहीं वेतो के मारो पियर है के माइक ससुराल है, तो बटे मने माई करी याद ही नहीं आती तो वो फोन ही नहीं करते।
0: हाँ वाह बात अलग है, एकलोपन लागे तो करना हाँ। चाहिए जाए क्योंकि घना ही जगह पे ससुराल में संयुक्त परिवार वे
1: हाँ।
0: टाइम कटिने बीते तो वाने तो
1: पड़े
0: वाने तो लड़नो पड़े कभी कदिक तो माँ ने फोन करे अगर
1: वो तो कहो रही ना एकली पड़े तो पछे कन्ने फोन करे।
0: हाँ और अब घर में खाली सास बहू जे काम निपटा बाद सास खुद का कमरा में रेस्ट कर रही बहू खुद का कमरा में रेस्ट कर रही तो पछे फोन एक आदो हो जावे तो कोई हर्जो कोई
1: नहीं।
0: पर फोन में भी आजकल है कही है अटिली वटिली बात करे वो नहीं होना चाहिए। तू कई खादो तू कई पेरियो थारा हाउजी कई कर रहा कई थाने लड़ियो था कोई नहीं
1: तो
0: कई थाने कई कहवे तो कोई नहीं
1: झगड़ा तैयार।
0: हाँ ये पचे झगड़ा तैयार है क्योंकि देखो आज तो फोन चल रहा पहली कैसे फोन है बेटी का समाचार ही नहीं मिलता महीना महीना तक बेटी कैसे आने कही है
1: नहीं मिलता
0: तो घरों को इन कोई मिलवा जाता
1: हाँ
0: ठा पड़ती कसान है कही है जतरे तो बात कतरी हो जाती कतरी दब जाती
1: कतरी दब जाती कतरी भूल ही जाता
0: भूल ही जाता। आने बेटियां आती पियर में तो वे खुशी रहती वे कोई शिकायत नहीं करती।
1: पहला तो बात तो माँ बाप ने बतावती ही नहीं थी बेटियां दुख वे सुख वे क्योंकि माँ बाप टेंशन करी। मेरी बेटियों थोड़ा सुख हुई वे तो मम्मी ने फोन करे प्रो पप्पा ने फोन पहला लड़कियों महिला कोई फोन नहीं करती थी पहला
0: अबे
1: सहन करती
0: बिल्कुल अब अबे फोन कर दे बेटी तो पाची बटे ससुराल में पाची ढलनो ही पड़े चलो अब बात ऊपरे नीचे होगी पाची दबगी पाचा सब सेट हो गया अटीने माँ बाप तड़फिया करे मारी छोरी दुख में मारी छोरी दुख में तो यह बात भी गलत है आप मत करो।
1: सही है
0: हाँ अगर आपके पानी सिर पर जा रहे हो तो भी को तोड़ तो निकालो इस पानी तो बचे आप आन व्यवस्थित बात करो बाकी छोटी छोटी बात में आज तो नमक कम हो सासू जी थोड़ा बोल लिया आज तो यो वे गयो तो वे यू बोल लिया
1: तो घर खराब है।
0: हाँ वो नहीं होना चाहिए
1: तो आज चीज तो देखो आप पीर में वो जरी मम्मी अपन लड़े के बेटा नमक ज्यादा वो चीज तो छोटी छोटी बात हो अपने घर ही मम्मी लड़े तो ससुराल में ही वहाँ माई सेवा ही लड़े।
0: हाँ
1: दिमाग में नहीं लेना
0: माँ लड़े जो तो आपने कहीं लागे ही नहीं सास लड़े जदि आपने मन पे बैठ जावे
1: पर रतन मन तो एड़ी है कि ससुराल में तो सास लड़े तो हाले हमें शादी हुआ बाद पियर जाओ जरे माँ बोल करे वो अपने नहीं सहन वे तो
0: देख बेटी ने थोड़ा 8-10 साल हो जावे पढ़ने ने घर में जीव पड़ जावे अन घर का वो कहवे ना कि नेचर तो समझ में आ जावे ना जब बहु घर में रहवे अपना घर में तो सब सदस्य को नेचर समझ में आ जावे कि भाई वह सुखी है दुखी
1: है
0: तो डल जावे वाणी माहौल में पचे वह पियर में जावे पियर में बचे माँ अगर दो बात कह देवे
1: तो सहन नहीं वे
0: बचे नहीं वे
1: सहन भी है
0: कहानी करता हमारा हारे हो
1: हारे वो पासी मुहावरे जाओ है।
0: हाँ
1: आज चीज में देखी है खूब महिलाओं ने एडू देखी हुआ है ससुराल जाई तो सास कही तो कदी सासू ने सामी नहीं बोले ने पियर आवी ने मम्मी थोड़ू सू कोई कियो तो मम्मी ती झगड़ो तैयार भी है तो माई की है के मुँह तो माँ हूँ वाह हाऊ है वन्नू तो थोन सेन वे ने मुँह कहो तो मारू खराब लागे तो वह बात है कि सासरे रहा हमें तो बोल ही मीठा लागे न पियर आओ तो बोल खारा लागे।
0: देखो ससुराल में कही सब अनजान है અને દરપ લાગે કે કટી મેં હામે બોલું, કટી ઘર મેં વાત કરી, કોઈ મને લડી, કોઈ ઝગડી. ઓર પિયર મેં તો માં કા હાથ ઉબડાવ્યા,
1: તો
0: માં કા તો મુંડે લાગોડા હોવા. આની વાસ્તે માં કઈ ભી કહેવે તો બેટિયા જવાબ દેવે તુરંત,
1: દેવે તુરંત,
0: જાણે કે માં મારી હે. ઓર ના માં કો આપણને ખોટો લાગે, મતલબ બેટી કો માં ને ખોટો લાગી, એક સમય ખોટો ભી લાગે તો તુરંત શિકાયત બંધ જાવે.
1: પર મારે તો શિકાયત ભી હૈ, માં કહે કે હું તો લડું તો મન તો સામી બોલે, સાસુ લડે તો સામે ની બોલે. માં ને મન મે વે કે થારે લાડકી તો અમે સાસુ હોઈ, મું ખરાબ હોઈ પ્રિયુ.
0: નહી વો તો માં ઈ જાણે કે ભાઈ બેટિયા માં કા હમે ની બોલી તો કઠે બોલી, ઓર બોલવા મે ભી મર્યાદા વેવે. યુ નહી કે બેટી છાવે જો સુનાય કે માં ભી છાવે જો સુનાય, ઓછો
1: ની બોલે, ઓછો ની બોલે માં ને.
0: તો ચાલો દેખો બાત ઈ બાત મે સમય હો ગયો, એક ગીત સુણવા કો ઠાઈ ની પડી.
1: ઓ ચલો ચલો ગીત સુના દો.
0: તો એક ગીત સુણન પાછા લોટા. હા તો શ્રોતા બંધુ આપ ભી બણ્યા રહેજો ગાવરી બાતા કાર્યક્રમ મે, સુનતા રહો,
1: મુસ્કુરાતા રહો.
0: રેડિયો મધુબન
1: 107.8 FM.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: झूला झूले रे बनवारी, आगी ग्यारस की रमजोल, ग्यारस की रमजोल, आगी झूलन की रमजोल। झूला झूले हो झूला झूले रे सांवरिया, आगी ग्यारस की रमजोल। तो आप सगला श्रोता बंधुओं का पाचक गावरी बाता कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है। कंचन आप बात कर रहे हैं कि भाई देखो त्योहारा का दिन आ गया, एक तरफ बेटियां अपने पियर में आन रहे है जिकी शादी के बाद फर्स्ट अषाढ़ महीनो आवे है, कोई कोई समाज में सावन महीनो आखो पियर में रहे। तो अलग अलग समाज में अलग अलग चलन होवे है, रीति रिवाज होवे है। और घावरा महीने तो देख ले भाई, अब सावन महीनो आयो नहीं तो झूला चालू हो जाए मंदिरा में।
2: हाँ, पूरा सावन महीना में।
1: हाँ,
2: भजन कीर्तन सब चालू कर दी।
1: बिल्कुल, भजन कीर्तन सत्संग अत्रो होवे है। कई क्यों पूनम और ग्यारस तो एक भी खाली नहीं जावे,
2: खाली नहीं जावे। व्रत करी है लड़कियां, व्रत करी ला सोमवार रा सुबह जल्दी स्नान करी, मंदिरा में जाई जल चढ़ावी शिव जी रा, अच्छो पति रे वास्ते व्रत करे किए है सोमवार। मंदिरों में भजन भी है, गाँव में खूब अन्नू चलन भी है, मेहंदी लगावी श्रावण रो सोमवार पहलो वे जरे, नवा नवा कपड़ा पहरी।
1: अरे और ज्यादातर हरिया कलर का पहने।
2: हाँ, हरिया कलर का कपड़ा,
1: महिला तो हरी हरी साड़िया।
2: अरे रतन तुम दियो ने, हमें तो मोबाइल में स्टेज डॉट सी लगावा डूगा परा मनक तो श्रावण रो सोमवार रा, श्रावण रो सोमवार आवे रियो है। शायद जुलाई महीना में आवे।
1: हाँ, जुलाई अगस्त में आधो हटीना चालू हो जावे।
2: चालू हो जावे। हाँ,
1: काहे अगस्त में राखी भी आ जावे।
2: हाँ, राखी भी आ जाएगा पछे।
1: हाँ, तो देखो भाई सावन महीना में शिव जी की पूजा ज्यादा होवे, शिव भोलेनाथ की, और सोल सोमवार भी करे। सोलह सोमवार चालू हो जावे चौथू। तो कार्तिक महीना की चौथ तक चाले सोलह सोमवार, पचे लास्ट में उद्यापन कर देवे।
2: उद्यापन कर देवे, सही है।
1: तो अनी को भी एक ठाट है, सुबह जल्दी उठनो ना धोन आपके एकदम शरीर पे पहने सको कपड़ों नहीं होना चाहिए, धुलियो सको होना
2: चाहिए,
1: बासी कपड़ों नहीं होना चाहिए।
2: यू लड़कियां सोमवार नहीं करे, वे सोलह सोमवार हमें श्रावण महीना रा पूरा करी ला, एक ही सोमवार नहीं छोड़े। बुजुर्ग महिला वही सोमवार करी ने कथा होबली भजन गावी, भजन नहीं खूब वही मंदिरों में रात्रि भजन जागरण वेला सोमवार रदन, हर मंदिरों में भजन आलबोस करीला।
1: कतराई त्योहार भी आई।
2: कतराई तो श्रावण महीना तीस त्योहार ही चालू भी है।
1: देख मन तो गीत की दो लाइन याद आई है जो गाओ सावन।

0: पियारी। अने में यूं केवे सावण महीना में घणा जणा हरी सब्जियां नी खावे।
1: हरी सब्जियां नी खावे, बैंगन नी खावे,
0: बैंगन नहीं खावे, हरी सब्जी कसी भी नहीं खावे, खाली दाल है, सूखी सब्जियां होवे ना, सूखी सब्जियां जैसे गुंदा है, काचरिया है, ये सूखी सूखी सब्जियां खावे।
1: हाँ रतन, मने ध्यान है क्योंकि माँ मम्मी मुँह बैंगन खाती ने तो मन डांटती के श्रावण रा सोमवार करे बैंगन खाए की बैंगन शिवजी ने चढ़े के बैंगन नहीं खाना जो जे जनती मन ध्यान है के बैंगन तो नहीं खाता।
0: सही है, देखो अलग अलग मान्यता है,
1: अलग मान्यता है, सही बात है।
0: तो सावन महीना में लीलोती नहीं खावे, ये पूरो ही भजन है। और बारह ही महीना में अलग अलग चीजा छोड़े,
1: अलग अलग चीजें तो
0: भादवा में दही नहीं खावे,
1: भादरवा में दही नहीं खावे,
0: तो आसोज में खीर नहीं खावे,
1: सब अलग अलग
0: आसोज महीना में श्राद्ध आवे, श्राद्ध में खीर पूरी ज्यादा बने तो खीर नहीं खावे। तो भाई बारह महीना का जो व्रत करे वे अणि नियम करे, तो सबको अलग अलग है। पर आपा बात कर रहे हैं, हाँ देखो भाई आषाढ़ महीना में बेन बेटे अपना घर में आवे तो घर में कतरी चहल पहल भेजा
1: जाए। सही बात है, आषाढ़ महीनो ही चल रही है, हमें जम जम बारिश ही चालू है, बारिश
0: हाँ। और बारिश का मौसम लागे भी अच्छो,
1: हाँ, अच्छो लागे रही,
0: क्योंकि एप के तो उतरी गर्मी पड़ी, हर कोई परेशान और हरे का मुंडा पे गर्मी,
1: कूलर ने एसी असर ही नहीं करता था। बाहर जाओ भले एसी में भी हो तो मैं तो कश्मीर, बाहर जाओ तो राजस्थान, वाह वाली फीलिंग आती थी।
0: सही बात है। और अब देखो एक दो बरसात भी नहीं, केड़ी ठंडक होगी,
1: ठंडक पड़ गई ने गांवों में तो देख रतन, अन गर्मी में हालत खराब रहती थी मन को, अतरी लू चलती थी, खूब मनक बीमार हुआ, कतरी बीमारी हुई गर्मी रे वजह थी,
0: बीमारी आई। और अरे भाई बाने अपन नहीं जा रहे, पर गर्मी ही गरम गरम हवा,
1: हाँ पंखा ही गरम गरम,
0: पंखा ही गरम गरम हवा फेंक रहा, कूलर में गरम गरम हवा,
1: और पे सोचता के रात रात ठंडी हवा आवे, रात रही पंखा री हवा गरम गरम, रात रही तो ठंडक कटे थी,
0: हाँ घर बैठे ही लू लाग जाती,
1: लू लाग जाती,
0: आंगना ने पानी नाक नाक नाक नाक ठंडा करता।
1: हाँ सही बात
0: का, आंगना पे सूजा पानी करता तो
1: सही बात है।
0: तो भाई वो आषाढ़ सावन चौमासो तो घणो अच्छो लागे,
1: अच्छो लागे, सही
0: बस थोड़ो ध्यान रखनो जीव जंतु निकले भी को,
1: जीव जंतु
0: बाकी अच्छो लागे, क्योंकि हर मौसम को देखो महत्व है,
1: महत्व है, सही है। पर अधिक वे जर लोग परेशान वे, देखो ठंड पड़े जर के गर्मी जो जे, ठंडी घनी अच्छी नहीं लगती, बरसात हमें कहता बरसात आवे, बरसात हमें ज्यादा बरसात वे जर लोग बरसात थी कंटाल यू के ओ बंदिश नहीं वे, तो भगवान का करे, हमें मनुष्य हर चीज थी परेशान है, बरसात थी परेशान, गर्मी थी परेशान, सर्दी थी परेशान, तो का कर सको। पर यू है कि ज्यादा अधिक वे तो करने थी सहन नहीं भी है,
0: अति चीज कोई भी व्या नहीं पसंद
1: नहीं पसंद आती,
0: हर चीज आ गई,
1: हर चीज आ गई, वही तो माते।
0: तो आषाढ़ सावन मजा आवे, क्योंकि एक तो भक्त मय माहौल हो जावे सब तरफ, सत्संग टाइम टू टाइम कसा जल्दी उठ उठन काम करा के भाई चलो मंदिर जानो, सत्संग में जानो, पूजा करनी पाठ करनो, कतरी भक्ति बढ़ जावे।
1: अन महीना में तो शादियों वेला अबार मो पड़ोस में ही शादियों है, बे तीन शादियों 13 तारीख बीच में ही है, 9 तारीख अन्नी शादियों पर वह के सूरज नम लागी और पुटी शादी ब्याह सब बंद रह जाये।
0: हाँ सूरज नम ने बल्या नवमी कहवे,
1: वहाँ बंद वे जाइला, पसे कोई भी शुभ कार्य, कोई फंक्शन, कोई घरोरा उद्घाटन वगैरह कोई नहीं भी है, पसे
0: हाँ, जाता ये नहीं होगा
1: श्राद्धों रे बाद,
0: ये तो पचे दीपावली बाद,
1: हाँ महीना
0: दिवाली बाद, 4 महीना चौमासो के बावे तो 4 महीना शुभ कार्य को नहीं होगा,
1: कोई नहीं करे।
0: और बाकी तो ठीक है, जो विदेश का है वे अटीना आवे तो वे तो काम करन जावे, क्योंकि वे तो पाछा आ नहीं सके, साल साल दो दो साल तीन तीन साल में आवे, वे भली काम काज करन चाहे बाकी नहीं करा,
1: रीति रिवाज रे अकॉर्डिंग हमें शादी भी है, पसे तो कोई नहीं भी है, वो ऑपरे शास्त्रो रे अकॉर्डिंग जो भी कुंडली में बतावे शादी करे वे तो हमेशा, पसे तो अपने मर्जी थी शादी करनी वे तो कदे भी करो।
0: हाँ वो तो है, बाकी शास्त्र का मुताबिक 4 महीना आपके देव पोड़ जाये,
1: हाँ देव पोड़ जाये, सही बात है।
0: हाँ चूके भाई देव पोड़ जावे पचे ये शुभ कार्य
1: नहीं होवे, तो राजस्थान में बस हमें शादी है, पसे तो दिवाली बाद शादी और सीजन चालू हाँ, पाची करे।
0: पाचे पाचे देव उठी ने हाँ। जदि दिवाली का बाद देव उठनी 11 सावे जदि शुभ कार्य पाचा शुरू हो जावे,
1: कार्य चालू करे हाँ, वो
0: सिस्टम अच्छो बने रहे, देखो हमें का आगे पाचे भी कहीं के साइंटिफिक कारण होवे,
1: हाँ सब पहला थी बनी ओड़ा है तो कोई ना कोई रीजन अकॉर्डिंग ही सुहा वेला,
0: हाँ तो भाई आपने बड़ा बुजुर्ग जो नियम बनायो जो भी बने नियम पे चलता कई तो सो समझ नहीं बनायो है।
1: सही है।
0: तो सत्संग को कई विचार है क्योंकि आषाढ़ महीनों चल रहे है एकादशी का पूनम का तो जोरदार सत्संग होवे और झूला को तो मजो ही अलग है। भाई मंदिरा में तो झूला अपने चालू हुए जावे ठाकुर जी के झूला भी कदी फूलाऊ सजावे कदी किकों सजावे ये दर्शन भी देखवा जैसा
1: देखवा जैसा मंदिर सजाई ला में श्रावण महीनो आवते हो भाद्रव उठता साढ़ महीना उतरता इस मंदिर सजावना चालू हुई सब मंदिरों में लाइट और डेकोरेशन तैयार हुई क्यूँ श्रावण महीनो लागी मंदिर जमा जम जी की रात भर भजन वही तो देखवा रो आनंद
0: बिल्कुल। तो आप रोज अलग अलग दर्शन ठाकुर जी का भी दर्शन बढ़िया झूला ने अलग अलग ऋतु सजाई कदी फूलों कदी कलियों कदी पान का पत्ताओं कदी लाइटिंग कदी दीपक अलग अलग प्रकार सजावे तो वे भी दर्शन में मजा आवे
1: ने वन टाइम श्रावण का सोमवार यू तो कौन टाइमिंग भी है 12 बजे बाद मंदिर नहीं जानो न श्रावण लागता इस मंदिर कोई टाइमिंग नहीं रहती कदे भी जाएं दीपक लगावे ना हो कदे भी जाएं जल चढ़ावे ना हो जर कोई टाइमिंग ही है भगवान बैठा है ओपरे वास्ते इस बैठा है।
0: सही है। और देख आजकल यो सिस्टम मैं देख रू खत्म होते जा रहे हो मैं पढ़ाई करते यदि मैंने याद आवे अपना श्रावण में जो सोमवार आवे हर सोमवार सब महिला इकट्ठी होन कसे कसे गार्डन में हरियाली में जान खानो खाते घरों टिफिन लेन जाता अनवाणी दिन स्कूल की छुट्टी बैठे जो मजा आ जाता आज तो छुट्टी है क्योंकि वन सोमवार करवा जा रहा
1: सोमवार। सही बात है पर हमें एडो नहीं रही कौन लोग बीजी बीजी सब बीजी है आज टाइम कोई
0: देख भाई कंचन पहली भी बीजी रहता कतरो काम करता पहली भी टावर पड़ता सब हो तो विकप बावजूद भी टाइम मिल जातो और सब मिल झूलन सब टिफिन ले ले आपका घर को खानो लेन आपा कहीं कोई अच्छो जटे घाम में के तो मंदिर में हरियाली वेती तो वटे जाता के बगीचा में जाता एडी जगह पे जाता जटे हरियाली है चारों तरफ वटे बैठता आपस में गीत भजन भी करता भजन देखो एक दूसरा को बड़ी बड़ी चीजा भी टेस्ट करता।
1: पर मैं तो देख रहा था मन तो कदी देखवा ने एडो मल तो ही नहीं पहला देखियो तो ठीक हमें तो एडो कटे हुए सब जो ने सब अपने अपने काम में व्यस्त है
0: मशीन की न्या दौड़ा लग गया ये टीवी मोबाइल थोड़ा ज्यादा व्यस्त कर देता
1: ज्यादा व्यस्त है मैं तो देख एक अकेला रूम में पहला ओपे बे जना बेन बात करो तो ही ओपन है यू है के पाड़े थे अब अर एक लो मनक ने बेरावन मोबाइल फोन दे दो वरने कन्नी जरूरत नहीं।
0: हाँ वही कह रू मोबाइल और टीवी में अतरा व्यस्त हो गया कि इंसान इंसान बात करो ही बंद कर दीजो
1: मैं एकलू मनक वह तो ही वो खुश है पहला एकलू मनक के घुटीज तू एकलू रह नहीं हकतू तू हम तो कोई जरूरत नहीं है मोबाइल वह तो वो एकेलो आराम ती रह
0: के मोबाइल के टीवी वह तो पचे उल्टा वे एक दूसरो वे तो अरे आप बोलो मत
1: मन टीवी देखवा दो डिस्टर्ब हो रहे हैं वाइस तो बात कह रही हूँ।
0: तो सावन महीना की मने घनी बात याद आवे कापा कहीं कहीं नहीं करता हर सोमवार जो शिवजी को मंदिर हो तो वटे घनी जगह पे देख ले शाम का टाइम पे पाची ठाट बाट टू आरती होवे तो सब सखी सहेलिया मिलन सब मंदिर में जाता दर्शन करवा
1: मिलन इस मंदिर में जाता
0: और कदी भाई पहला तो पढ़ाई करता है पढ़ाई करते टाइम पे कोई यूं तो है ही नहीं कि आपा साड़ी पहन रहा पर सब मिलन प्लान बनाता आज साड़ी पहन जावा काले ड्रेस पहन जावा
1: यूज तो करता आज सूट मु पहरू आज और अंगरो सूट पहरूला थूई पहर जे सब एक हर का कपड़ा पहन जाता।
0: हाँ
1: तो फटाफट उठेन घर रो काम निपटाता ने टाइमिंग देता 8 बजे थू आवजे 8 बजे मु आऊ
0: आछो भी लाग तो देखो चार जना मिलता रहा प्रेम बनियो रेवे व्यवहार टिक्यो रेवे और संबंधा में मजबूतता आवे त्योहार भार को आनंद यूं ही नहीं बनायो।
1: सही है।
0: पर ठीक है भाई समय का साथ में परिवर्तन आयो और अब तू बात की दी है कि भाई अमानु साहब आप आपका काम में अतरा व्यस्त है कि नहीं टाइम को नहीं मिले तो मैं तने छुट्टी दे तो टाइम पे घरे जा ताकि तो अगली बार टाइम सर आ सके
1: टाइम हो प्रो कहीं मन ध्यान ही नहीं पड़ियो
0: तो आओ जे भाई राम राम।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा। इस एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग जो है एक नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे और कल आपने अच्छी प्रैक्टिस भी की होगी, मैं ही सफलता हूं इस विषय का, और इस विषय पर आपने चिंतन भी किया होगा। तो चलिए, एक नया विषय आज हमारा है, सफलता का आधार मेरे संस्कार। जी हाँ, जीवन में कहते हैं कि संस्कार बड़ा रोल अदा करता है, तो मेरे संस्कार ही मुझे सुख या दुख या सफलता या असफलता का कारण बताते हैं। तो इस विषय को गहराई से समझेंगे और आज के हमारे विशेष मेहमान जिन्हें आप सभी जानते हैं, राजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का उनका ये विषय है, सफलता का आधार मेरे संस्कार। तो चलिए उनसे सुनते हैं। आप सभी की तरफ से राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, ओम शांति।
1: नमस्ते जी, ओम शांति।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
0: जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आज एक नए विषय पर आप बात करने वाले हैं, सफलता का आधार मेरे संस्कार। तो ये विषय क्यों आपने चुना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
1: ये इसलिए चुना क्योंकि एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, उसको बनाने में उसकी आदतें, या जिनको हम इंग्लिश में कहें हैबिट्स
0: जी,
1: या जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं, वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं
0: जी।
1: और व्यक्ति अपने आप को अपने संस्कारों के हिसाब से ही जानता भी है और पहचानता भी है। अगर वो कहता है मैं ये हूँ, तो वो उसके संस्कारों के आधार के ऊपर है, उसकी आदतों के ऊपर है। और आदतें एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आपकी बन जाएं तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और फिर वो अपने आप ही प्ले करती, हमें पता ही नहीं लगता कि हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। माना वो हमारी ज़िंदगी का कैसा अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं, जिनको अगर हम बाद में बदलना चाहें तो व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन आदत को नहीं बदल सकता हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि ये काम ऑटोमेटिकली ही हो रहा है। तो इसलिए अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली अच्छी आदतें, पॉजिटिव आदतें हमें सफलता की ओर लेके जाएंगी
0: जी, जी।
1: क्योंकि सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हर व्यक्ति की ज़िंदगी में वही आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गांधी जी जो थे, जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया, तो अंग्रेज़ों ने तो हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे अहिंसा का रास्ता अपनाना है। उन्होंने लाठी नहीं उठाई, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक अलग संस्कार, एक अलग आदत बना ली। और उसी एक संस्कार के कारण, उसी एक आदत के कारण वो 20वीं सदी के सबसे महान शख्स बन गए और उनको सबसे महान शख्स बनाया गया। लेकिन नॉर्मली हमारी आदतें क्या होती, जो डे टू डे लाइफ में हमें सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं, समाज में जो आम चलती हैं, जो दूसरों को देखते हैं, कभी हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। लेकिन वही एक आदत एक व्यक्ति को इतना महान बना दिया, और वही एक आदत एक व्यक्ति को वो जेल तक पहुंचा देती है, गुंडा बना देती है, डाकू बना देती है। जो डाकू होते हैं, गुंडे होते हैं, उनके सामने भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि केवल गांधी जी तो बेकसूर थे, लेकिन बेकसूर होते हुए भी उन्होंने एक अच्छी आदत, एक अच्छे संस्कार को अपनाया। ऐसे जो हम कहते हैं समाज में जो लोग बुरे बन जाते हैं, वास्तविकता में जन्म से कोई बुरा होता नहीं, लेकिन उनके सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं। उनके सामने भी हो सकता है कि उनको भी किसी ने दुख दिया हो, तंग किया हो, लेकिन उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जिसके कारण उनको भागना पड़ा और जो इतने अच्छे व्यक्ति थे वो चोर बन गए, डाकू बन गए, गुंडे बन गए।
0: बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया राजेश जी। मुझे लगता है कि संस्कार को लेकर काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन पर उसका असर पड़ता है, और जैसा व्यक्ति चिंतन करता है, सोचता है, उसके आदतें बनने शुरू हो जाती हैं, और फिर ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्शन पर रिएक्शन कैसे करें। अगर अंग्रेज़ों ने हिंसा का मार्ग अपनाया तो गांधी जी ने उसका विरोध में अहिंसा के रूप में उनके साथ में सामने खड़े रह गए। तो यहाँ पर हमारे चिंतन की धारा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे संस्कारों के साथ में। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी व्यक्ति का स्वभाव देखते हैं या उनका रवैया देखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि हमें भी उसी रवैया में बात करना है या उसी तरीके से बात करना है। आप अलग भी अपने जो है मानवीय मूल्यों को लेकर भी आप उनके साथ सामने खड़े हो सकते हैं। और देखिए, हमारे सामने बहुत ही सुंदर उदाहरण गांधी जी का है। हिंसा के प्रति वो अहिंसक रूप में खड़े होकर जीत हासिल की। तो हम लोग आज के समय में कभी ऐसा विचार नहीं करते, या करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सोचते हैं कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, है ना। तो आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कार तो पुराने भी होते हैं, पूर्व जन्म के भी होते हैं, तो फिर वो हमारे सफलता का आधार कैसे बनेंगे।
1: देखिए, कहते हैं ना कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं
0: जी,
1: कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना, अगर मिट्टी में भी हाथ डाल दे तो सोना बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उस में वो शायद किस कोई उसके पिछले जन्म की बात है, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर वो मिट्टी में हाथ डाल दे तो सोना बन जाता है, क्योंकि उसकी जो आदतें हैं या उसके जो संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि अगर वो किसी भी कार्य को करेगा तो बहुत निष्ठा से, बहुत मेहनत से, पहली बात तो हाथ में नहीं लेगा अगर उसने कोई कार्य करना है तो। लेकिन अगर लेगा भी, वो तभी लेगा अगर उसको ये पता होगा कि मैं इसको ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से, पूरी निष्ठा से करूँगा। और जब वो इन अपने मूल्यों के साथ उस कार्य को करता है तो उसको सफलता मिलती है। और जब वही कार्य वो बार बार करता है, क्योंकि दो व्यक्ति हैं और एक कार्य को दो व्यक्ति एक ही समय पर करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति असफल हो जाता है, एक व्यक्ति सफल हो जाता है, क्योंकि वो उसी कार्य को अपने उन्हीं मूल्यों, उन्हीं गुणों के साथ करता है, इसलिए वो सफल हो जाता है। तो अगर हम देखें, सफलता असफलता में केवल इतना ही फर्क है कि अगर हम मूल्यों को नहीं छोड़ें, अपने मूल्यों पर अडिग रहें। जैसे अगर हम सचिन तेंदुलकर की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन आज के दिन में माने जाते हैं। तो उनके मन में भी देखिए कितनी मेहनत उन्होंने ज़िंदगी में की होगी, साहस उनमें कितनी सहनशीलता होगी, साहस होगा, कड़ी मेहनत उन्होंने की होगी। दिन में मैं समझता हूँ 12-12 घंटे प्रैक्टिस की होगी, अभ्यास किया होगा, कड़ी मेहनत

0: होती। तो ऐसा नहीं है कि अब हर एक को अपनी माँ का भोजन ही अच्छा लगता है, लेकिन एक व्यक्ति को दूसरे की माँ का भोजन क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि बचपन से उसकी आदत जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है कि मुझे वही भोजन अच्छा लगेगा जो मेरी माँ बनाएगी, भले दूसरे की बनाएगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, बाहर का अच्छा नहीं लगेगा, 5 स्टार का होटल का अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो आदत पड़ चुकी है, वो बचपन में अनकॉन्शियसली पड़ी हुई है। इसी तरह ये जो सफल व्यक्ति होते हैं उनकी आदतें ही उनको क्या बनाती हैं, सफल जो है वो बनाती है। लेकिन कॉन्शियसली ध्यान देकर के हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जैसे बताया शुरू में, क्योंकि उनको बदलना क्या है बड़ी मुश्किल है, उसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे फिजिक्स में एक लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि कोई भी वस्तु वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि हम उसको कुछ बाहर से फोर्स ना दें, गति ना दें। एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए एक गिलास है, उसके ऊपर हमने एक गत्ता रखा है, है ना, और उसके ऊपर हमने एक सिक्का रखा है। तो अगर आप गत्ते को गिलास से ज़ोर से खींचेंगे तो सिक्का गत्ते के साथ नहीं जाएगा, लेकिन सिक्का गिलास में गिर जाता है। माना सिक्का अपनी वो अगर वो खड़ा है उसी जगह तो खड़ा ही रहना चाहता है, वो गत्ते के साथ चलना नहीं चाहता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी तरह हम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं ही ये आदत हूँ, मेरी ये पर्सनैलिटी है, इसको बदलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ मुश्किल है तो व्यक्ति की आदतें हैं। जैसे आपने पिछले जन्म की भी बात की, अगर पिछले जन्म की भी कुछ आदतें हैं अगर पॉजिटिव हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। कईयों के आते हैं संस्कार, जैसे मान लीजिए कई बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छा गाते हैं, पियानो बजाते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, या उनको गीता के श्लोक बिल्कुल याद होते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार हैं। लेकिन कई ऐसे संस्कार भी जो नेगेटिव होते हैं जो पिछले जन्मों में आते हैं, लेकिन अगर हम उनको ध्यान दें तो जैसे हमने अपने संस्कार बनाए हैं, अगर ध्यान देकर कॉन्शियसली उनके ऊपर हम ध्यान एकाग्र करें तो बहुत सारी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम संस्कारों को बदल भी सकते हैं।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि हम अपने संस्कारों पे अगर हम लोग काम करें तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जो है सबसे पहला प्रायोरिटी हम अपने संस्कारों को समझें। अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो उसको चेंज करें, है ना। लेकिन कैसे चेंज किया जाए, क्या पैरामीटर हो सकते हैं, कैसे बदले जा सकते हैं हमारी आदतों को?
0: जी, संस्कार जो है हम कहेंगे तीन तरह के हमारे संस्कार होते हैं। पहला तो है हमारी सोचने के संस्कार, सोचने की आदत
1: जी,
0: के मन जो है हमारा 24 घंटे सोचता रहता है। तो मन को भी एक आदत पड़ जाती है, जैसे हमने बात की कुछ सेशंस में पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हम टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, और उसका कारण यही है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसको एक आदत बन चुकी है, या स्ट्रेस में है, लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी में है, उसको एक आदत बन चुकी है कि उसने नेगेटिव ही सोचना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हर एक चीज़ के उसका एक नज़रिया बन जाता है, रवैया बन जाता है कि बार बार उसके मन में नेगेटिव संस्कार ही बनते हैं। तो मन के सोचने का भी एक संस्कार है। फिर जैसा हमारा मन सोचता है वैसे ही हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, कि जो हम सोचेंगे वैसी ही फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा होती है। उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को हम अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उन भावनाओं को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो दूसरी तरह के संस्कार कहेंगे हमारे बोलने के संस्कार, हमारी भाषा कैसी है, हम व्यवहार कैसे करते हैं, एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, संवाद कैसे करते हैं। तीसरा है जो हमें नज़र आते हैं, जैसे एक्शंस, प्रैक्टिकली जो हम उनको कर्म में करते हैं, और जो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने कार्य में उनको लेके आते हैं, उनको हम कहेंगे कर्म के आधार के ऊपर। लेकिन इनका जो बेस है वो हमारे मन की सोच है, कि मन हमारा क्या सोच रहा है, मन हमारा नेगेटिव सोचता है या मन हमारा जो है वो पॉजिटिव सोचता है। तो आप देखेंगे अगर हमारे संस्कार बुरे हैं, जैसे मान लीजिए किसी में गुस्सा करने का संस्कार है, कोई व्यक्ति किसी को देखते ही गुस्सा करना शुरू कर देता है, तो वो गुस्सा इसलिए करता है कि जैसे व्यक्ति उसको देखता है उसको पता है कि ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं है। तो जैसे ही वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं, उसके मन में पहला थॉट नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव जब आया तो उसके मन में भाव क्या हो जाता है, नेगेटिव ही हो।

0: जाता है, उसकी फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती हैं उस व्यक्ति के प्रति, उसके इमोशंस जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए वो नेगेटिव शब्दों से ही उस व्यक्ति से व्यवहार करता है। और उसका क्या हो जाता है, वो आदत क्या बन जाती है गुस्सा करने की, जो है वो बन जाती है। लेकिन उसके विपरीत कोई व्यक्ति अगर उसके मन में भाव ये है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो जैसे ही व्यक्ति सामने आएगा उसके बारे में क्या सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, अच्छा सोचेगा, उसकी जो टॉक है उसके प्रति अच्छी है, और जो शब्द उसके मुख से निकलेंगे उस व्यक्ति के प्रति वो भी कौन से निकलेंगे, अच्छे ही निकलेंगे। और व्यवहार भी क्या निकलेगा, व्यवहार भी कैसा करेगा, अच्छा करेगा, उसका वो काम करेगा, जो वो कहेगा उसकी वो बात भी मानेगा। लेकिन अगर उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वो समझता है कि ये बुरा है, उसकी वो बात भी नहीं मानेगा, भले वो अच्छी बात भी करेगा, भले वो उस व्यक्ति के फ़ायदे की बात भी करेगा, लेकिन उसको लगेगा नहीं ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं, इसलिए अच्छी बात कभी भी नहीं जो है वो कर सकता है। तो इसकी एक विधि है, इसका एक तरीका है, मैं समझता हूँ हम आने वाले सेशंस पे इसके ऊपर जो है वो ज़रूर बात करेंगे कि हम अपने संस्कारों को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन आने वाले जो हमारा नेक्स्ट होगा, कुछ देर के लिए आप ऑब्ज़र्व करें, देखें अपने आप को कि कोई है, जैसे हमने एग्जांपल दी कि एक व्यक्ति जिसको आप बुरा मानते हैं, जब वो सामने आता है तो मन आपका कैसा चलता है, क्या होता है, ऑब्जर्व करें अपने आप को। और दूसरी जगह जैसे ही कोई अच्छा व्यक्ति जिसको आप अच्छा समझते हैं जब वो आपके सामने आता है, तो आपका मन कैसा सोचता है, शब्द कैसे निकलते हैं, व्यवहार आपका कैसा होता है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है अपने सोच को बदल सकते हैं, और सोच अगर हमारा बदलना शुरू हो जाए तो फिर हम अपने आदतों को भी बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद ऐसा लगता है कि हमें अपने स्वभाव या संस्कारों को बदलने में एक टेक्निकल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद का निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। और चलिए, मैं चाहूँगा कि एक जाते जाते एक और बात, अगर इससे जुड़ी हुई कुछ बात रह गई हो तो ज़रूर बताइए राजेश जी।
0: हाँ, एक कॉमन प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि आदतें, आपने जैसे पूछा था कि आदतें कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि उनको बदलना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको ये समझें कि बनी कैसे। बनी ऐसे कि जब हम कोई भी काम को जो हमें अच्छा लगता है उसको हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारी जो है वो आदत बन जाती है। और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि उस काम को कितनी बार किया जाए कि जो हमारी आदत बन जाए, इसके भी ऊपर बहुत एक रिसर्च हुई है, लेकिन और इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत है, एक राय नहीं है, बहुत सारी राय, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हमारी आदतें संस्कार जो हैं वो नौ दिन लगते हैं उनको बदलने में। कुछ लोगों का व्यूज़ है कि उनको 21 दिन लगते हैं, लगातार हम एक ही कार्य को, जैसे मान लीजिए आपने सुबह उठने की आदत बनानी है, कुछ लोग कहते हैं अगर आप 9 दिन करेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि नॉर्मल सी आदतें हमारी 9 दिन में बदल जाती हैं, लेकिन जो मुश्किल आदतें हैं उनको शायद 21 दिन लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं 64 दिन लगते हैं। अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को बदलना है तो कम से कम 3 महीने से लेकर 9 महीने तक लगते हैं अपने भोजन की आदतों को बदलने में, एक्सरसाइज करने में, सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला जिसे हम नेक्टर टाइम कहते हैं उसको उठने में। तो पहली तो एक चीज़ है कि हमको जिस भी आदत को बदलना है, जिस भी नई आदत को लेके आना है, उसको हम क्या करें, बार बार बार बार करें, ये पहली बात है। दूसरी बात, उसको हम दिल से करें, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति हमको प्रेशर से कराए, जैसे बच्चों को हॉस्टल में होता है वो उनको प्रेशर से कराया जाता है। डिसिप्लिन, अगर हम उनको कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, लाइन में चलना है, तो टीचर खड़ा होगा तो लाइन में चलेंगे, अगर नहीं खड़ा है तो क्या होगा, फिर वो लाइन तोड़ देंगे। तो दूसरी शर्त ये है कि जिस आदत को भी आपने बदलना है, जो भी आपने नई चीज़ सीखनी है, उसको आप अपने दिल से करें, ना कि दूसरों से कहने से करें। और दिल से आप कब करेंगे, जब आपका लॉजिक माइंड, आपका जो तर्क करने वाली बुद्धि है, वो स्वीकार कर लेगी कि ये जो आदत है, ये जो संस्कार है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, ये मेरे को जीवन में आगे बढ़ाएगी, ये मेरे को सफलता तक लेके आएगी। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, किंतु है, परंतु है, तो उस प्रश्न को आप दूर करें, क्योंकि जब तक आपका जो लॉजिक माइंड है उसमें कोई क्वेश्चन है, तो हमारा इमोशनल माइंड, क्योंकि जो भाव हैं वही हमारे संस्कारों को बदलते हैं, हमारी आदतों को बदलते हैं, इसलिए इमोशनल माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी हमें जो है वो दूर कर लेना चाहिए
1: जी।
0: और चौथी बात है कि हम उसको कंटिन्यूस करें, लगातार करें, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन से करें. अगर हम उसको लगातार करते हैं तो हमारी आदत बदलती है. लेकिन अगर हम दो दिन करते हैं, फिर तीन दिन छोड़ देते हैं, दो दिन करते हैं, तीन दिन छोड़ देते हैं, तो वो हमारी आदत जो है वो नहीं बन पाती है. वो कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रेक हो जाता है. उसके लिए हमें बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए और बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है.
1: जी राजीव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे चीज़ें संभव हैं. ये बहुत ही अच्छी तरह से मंथन करके आपने बताया तीन चार चीज़ें. और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर ध्यान से अपने आदतों को बदलना चाहे तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ अगर आप करते हैं. और दूसरा, एक किसी चीज़ को बदलने के बजाय अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड है और उसके ऊपर काम करते हैं तब भी आपका काम हो जाता है. किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपका फोकस क्लियर हो कि मुझे क्या बनना है, उसी पे अगर आप ध्यान देते हो तो नए आदतें क्रिएट होंगे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का. तो ये भी एक अच्छी चीज़ है. तो अल्टरनेटिव चीज़ें बहुत सारी हैं. तो इस पर कई और चीज़ें जैसे कि है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे. लेकिन आज के लिए बस इतना ही. फिर से एक बार ढेर सारी खुशियाँ. थैंक यू राजेश जी, बहुत अच्छी बातें बताने के लिए. फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर. तब तक आप बने रहिए हमारे साथ. सलाम नमस्ते खमा गणिसा. जय हिंद, जय भारत, ओम शांति. सुनते रहो, मस्कराते रहो.

0: भानी, तुम्हें पता है कल मैंने सपने में क्या देखा?
1: क्या देखा?
0: हम दोनों तो कश्मीर घूमने गए थे।
1: कौन दोनों?
0: अरे तुम और मैं, और कौन दोनों?
1: वाह कश्मीर, वैसे मैं तो हिमाचल गई हुई हूँ।
0: कोई बात नहीं, मेरे साथ कश्मीर भी चल पड़ना।
1: अच्छा
2: कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो भाई आप लोग?
3: कहाँ घूमने की बातें हो रही है भाई?
4: दीदी कश्मीर।
3: कश्मीर जा रहे हो? और कहाँ, हिमाचल भी सुना था मैंने तो।
1: अरे दीदी सपने में जा रहे हैं।
3: अच्छा हाँ,
4: असली में तो जा नहीं सकते इसलिए सपनों में ही जा रहे हैं।
3: सपनों में तो कहीं भी घूम सकते हैं ना।
1: अरे दीदी असली में तो मैं भी गई हूँ हिमाचल।
3: अच्छा अच्छा ठीक है तो चलो एक काम करते हैं, असली में घूमने की बातें भी करेंगे लेकिन आज आपके सपनों के बारे में बात करते हैं बच्चों की दुनिया में। सब लोग तैयार है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बच्चों की दुनिया, क्योंकि बच्चों की दुनिया होती है बहुत ही अमेजिंग। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में कौन कौन जुड़ा है?
5: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ।
1: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में पढ़ती
8: हूँ। मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में पढ़ती हूँ।
9: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
3: ओके, तो हमारे साथ हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे और इनके बहुत सारे सपने, है ना? सपने तो सब देखते हैं।
1: हाँ।
3: कोई ऐसा है जो सपने बिल्कुल नहीं देखते?
1: नहीं।
3: खुली आंखों से देखते हो कि बंद आंखों से?
1: दोनों से।
3: तो दोनों से देखते हो। तो चलो पहले बात करते हैं बंद आंखों वाले सपनों की, यानी रात को आने वाले सपनों की। तो आप लोग को सबको सपने आते हैं क्या? रोज? अच्छा ऐसा? ओके
1: कभी
3: कभी कभी आते हैं। रोज किसको आते हैं?
4: दीदी मेरे को।
1: मेरे को।
3: ओके और ठीक है, किसी किसी को रोज आते हैं, किसी किसी को कभी कभी आते हैं। तो एक एक करके अपने सपने शेयर करेंगे सब लोग, क्या क्या क्या सपने आते हैं, कौन बताएगा पहले?
1: दीदी मेरे को तो ऐसा होता है कि कभी कभी लगातार आ जाते हैं और बीच बीच में गैप हो जाता है, और बहुत बार तो डरावने सपने भी आते हैं भले ही मैंने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी हो तब भी। और कभी कभी ऐसा लगता है मैं बिल्डिंग से गिर रही हूँ नीचे अपने बेड पर बैठे बैठे ही।
3: और डरावने सपने कैसे आते हैं?
1: जैसे मेरे पीछे कोई भूत पड़ गया ऐसे, मैं इधर उधर भागती हूँ चिल्लाती हूँ, फिर मेरी आँख खुलती है तब मैं सच में रो रही होती हूँ।
3: रोना आ जाता है?
1: हाँ।
3: फिर क्या करते हो जब उठते हो तब?
1: कुछ नहीं, आंसू पोंछ के फिर सो जाती हूँ।
3: अच्छा ठीक है, और किसको क्या सपने आते हैं भाई?
5: दीदी एक बार ऐसे आया कि मैं पलंग पे सो रही हूँ पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं नीचे गिर रही हूँ, पर फिर उठ के देखा तो मैं पलंग पे ही थी।
3: ऐसा लगता है ना गिर रहे हैं, और सच में वो लगने लगता है बॉडी को भी कि हम नीचे गिर रहे हैं मगर नहीं गिर रहे होते हैं।
1: एकदम बॉडी ऐसी लगती है जैसे नीचे की तरफ वेट जा रहा है सारा।
3: लेकिन असल में तो वो बस एक सपना होता है। ओके और कौन बताएगा अपने सपनों के बारे में?
4: दीदी एक बार तो मैंने सपनों में मूवी बनाई थी खुद।
3: अच्छा।
4: कभी उसमें डोरेमोन आ रहा था, कभी एलियंस आ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी भूत आ रहे थे, पता नहीं सब मिक्सचर होके आ रहा था।
3: ओके मतलब कार्टून्स भी आ गए उसमें, एलियंस भी आ गए उसमें,
4: सब कुछ।
3: एलियंस वाली कोई मूवी देखी थी क्या आपने?
4: नहीं वैसी मन में आ गया।
3: ओके ठीक है, ऐसा भी होता है भाई, मूवी बन जाती है सपनों में कभी कभी, मिक्स हो जाता है ना सब कुछ।
8: दीदी मेरे सपनों एलियन आए धरती पर मेरे से हाथ मिला के वापस चले गए।
3: एलियन धरती पर आके आपसे
8: हाथ मिलाए, मेरे परिचय लिया, चले गए वापस, बोलते आपसे दोबारा मिलने आएंगे।
3: अच्छा ये बोल के गए कि दोबारा मिलने आएंगे?
8: हाँ पर पता नहीं दीदी कौन सी भाषा में बोल के गए,
3: लेकिन आपको समझ में आ गया?
8: हाँ।
3: वाह यानी आपने एलियन वाली भाषा सीख ली है।
8: हाँ।
3: ओके ठीक है, इंटरेस्टिंग सपना था काफी। आपको कोई सपना आया शिक्षा?
7: मुझे कभी कभी सपने आते हैं और सपनों में ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स आते हैं, कभी वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मैं भाग रही होती हूँ और फिर मैं ना कभी कमरे में बंद हो जाती हूँ, कुंडी लगा लेती हूँ कि कहीं वो आ ना जाए, मुझे डर लगता है और मैं सपने में ही ना उठ जाती हूँ और उठती हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है हाँ अभी भी यहाँ कहीं है, पर ऐसा होता नहीं है, डरती हूँ फिर उठती हूँ, थोड़ा आंसू वगैरह निकल रहे होते हैं पोंछती हूँ, थोड़ी देर जगती हूँ, उसके बाद लाइट ऑन करके थोड़ी देर बैठती हूँ, जब लगता है कि हाँ अब नहीं आएगा सपना तब लाइट ऑफ करके सो जाती हूँ।
3: तो मतलब आप पहले खुद को पहले अश्योर कर लेते हो कि ये सपना था?
7: हाँ।
3: और मैं ठीक हूँ और यहाँ कोई भी नहीं आसपास, फिर वापस सोते हो?
7: हाँ।
3: ओके ठीक है, ऐसा होता है, डरावने सपने भी आते हैं कभी कभी, किसी के में तो एलियंस आ जाते हैं, किसी के में जानवर भी आ जाते हैं। बिल्कुल
7: ज्यादा ज्यादा सपने में कभी कभी तो बादलों पे चले जाते हैं।
3: बादलों पे चले जाते हो?
7: हाँ।
3: क्या करते हो बादलों पे?
7: मैं एक बार सपने में एक से दो बार ही गई हूँ बादलों पे। तब गई थी मैं तो उड़ने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे।
3: अरे वाह, तब तो बड़ा अच्छा लगा होगा।
7: हाँ, वो सपना मेरा सबसे बेस्ट सपना था।
3: बादलों में उड़ने में तो मजा हाँ। आता है ना?
7: हाँ।
3: पर रियल में पंख होते तो कितना अच्छा लगता ना।
8: ये आपसे एक बात पूछूं, यदि आपको कभी सपने आए हैं?
3: बताऊंगी मैं भी बताऊंगी, पहले आप लोग तो कंप्लीट कर लो।
6: मेरे को तो बहुत डरावना सपना आया था, मैं पूरे 5 बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे गई।
3: अरे बाप रे, फिर आपको तो डर
6: बहुत डर लगा।
3: फिर नींद खुली आपकी? फिर क्या किया? नींद खोला
6: फिर मुंह धोया, फिर बाद में तो नींद ही नहीं आ रही थी।
3: ओहो,
6: थोड़ी देर बाद नींद आई।
3: थोड़ी देर बात नहीं, क्योंकि डर गए होते हैं ना तो एकदम से कभी कभी नींद नहीं आती। रूहानी कुछ बोलना चाह रहे हैं हम?
1: हाँ दीदी, मेरे को ना सबसे अजीब गरीब सपना आया था।
3: क्या?
1: मैंने समाधि ले ली।
3: हाँ?
1: हाँ।
3: अच्छा, ओके।
1: चिता पर बैठ रही थी मैं खुद मरने के लिए।
3: अच्छा।
1: हाँ, वो भी रो के।
3: रो रहे थे आप?
1: हाँ।
3: ओके, उसके बाद नींद खुली या नहीं?
1: खुली थी, तब भी रो रही थी मैं, फिर आंसू पोंछ के सो गई।
3: तो घर में किसी को बताते हो आप लोग जब आपको?
1: हाँ,
3: ऐसे सपने आ रहे?
1: ऐसा सपना आया था ना, तब मेरे घर वाले सब साइड में खड़े थे, देख रहे थे मेरे को। फिर मेरे को पता चला कि उसमें ना मेरे को कैंसर हो गया था, इसलिए मैं खुद ही मर रही थी।
3: अच्छा। हाँ। बाप रे, तो आपके घर वालों को जब आप उठे तब बताया आपने कि मेरे को ऐसा ऐसा सपना आया?
6: नहीं, तब तो सब सो रहे थे, अगले दिन बताया।
3: तो क्या बोला सपने?
1: ऐसा कैसा सपना है, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था।
3: किसने थोड़ी ऐसा सोचा, पता नहीं कैसे आ गया ना।
1: हाँ।
3: तो आप लोग क्या करते हो जब सपना आता है? तो सो तो जाते हो, अगले दिन फिर बताते हो सबको घर में?
6: हाँ, बताते हैं।
1: कभी कभी तो ऐसा होता है कि सपना ही मन से चला जाता है, थोड़ा थोड़ा याद आता है,
3: भूल जाते हैं सपने। ओके, और आप लोग जब बताते हो तो फिर क्या बोलते हैं घर वाले?
7: मैं तो सपना ही भूल जाती हूँ अपना।
3: सपना
7: थोड़ा बहुत याद रहता है, वो बता देती हूँ,
3: फिर भूल जाते हैं ना।
7: हाँ।
3: पूरा तो नहीं याद रहता, कभी कभी भूल जाता है, वो तो है।
6: तो मम्मी पापा बोलते हैं कि तुझे पूरा याद क्यों नहीं रहता? मैं बोलती हूँ कि मैं तो वो डरावना था इसलिए आधा भूल गई।
3: डरावना था तो भूल जाता है कभी कभी, उस समय डर लगता है लेकिन बहुत है।
8: दीदी, जब मैंने एलियन वाली बात मेरे घर में बताई ना, मम्मी बोली नाश्ता पानी करवा देती हूँ उनको, आए थे वो।
3: कुछ खिला पिला के भेजना चाहिए था।
8: मेहमान आया, खाली हाथ चलेगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, वापस बुलाओ उनको।
3: वापस बुलाओ, दूसरे प्लैनेट पे चले गए, इतना दूर सफर किया बिना कुछ खाए पिए।
8: हाँ।
3: गलत बात है, बुरा मान जा।
8: दीदी, उनको पता नहीं 2 दिन लगे थे आने में, 2 दिन जाने में लगेंगे।
3: सपने में अलग भाषा थी कुछ?
8: सपने में तो पता नहीं, मैं जैपनीज।
3: अच्छा। हाँ भाई, हो सकता
8: है पहाड़ों में।
3: अच्छा, ओके। कुछ भी हो सकता है सपनों में, कुछ भी भाषा हो सकती है, कोई भी एथनिसिटी हो सकती है। क्योंकि देखो, एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, और दूसरा कौन सा होता है?
1: अनकॉन्शियस,
3: सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पता है सबको? किसने पढ़ा है? सच्ची सच्ची बताओ, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो। नहीं जानते? बोलो।
6: नहीं जानते।
8: नहीं जानती?
3: कोई भी नहीं जानता?
1: नहीं,
3: नहीं जानते। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, एक तो कॉन्शियस माइंड है जो एकदम अलर्ट है, एक्टिव है, आप जो पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, जो एक दूसरे से बात कर रहे हो, हम एक दूसरे के चेहरे याद रखते हैं ना, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। वो आपसे मैं बात कर रही हूँ तो अमीक्षा का मुझे याद है कि नाम क्या है, कैसी दिखती है, और बाकी लोगों का भी जिनका मुझे, जिनसे मैं बात कर रही हूँ। हमारा सबकॉन्शियस बहुत सारी चीज़ें पिक करता है, आसपास क्या रखा हुआ है, मेरा कॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बट मेरे सबकॉन्शियस ने काफ़ी चीज़ें आसपास की रखी हुई भी पिक कर ली और अपने अंदर रख ली। और जो बचपन की भी मेमोरीज होती हैं बहुत, जब आप छोटे थे या आपने कभी तो कुछ चलते फिरते ऐसे ही देख लिया, कॉन्शियस माइंड भूल गया, कॉन्शियस माइंड तो दूसरी चीज़ें देखने लगा और एब्जॉर्व करने लगा, पर सबकॉन्शियस में सब कुछ स्टोर हो जाता है। तो जब हम सोते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो उसमें जो कुछ सेव हुआ होता है ना, बहुत सारी फाइल्स, पुरानी पुरानी पुरानी पुरानी मूवीज देखी थी, टीवी देखा था, किसी से मिले थे, किसी के बारे में पढ़ा था, वो सब उसके अंदर है। तो जब हम सो रहे होते हैं ना तो कभी तो कोई फाइल निकाल देता है, कभी तो कोई फाइल निकाल देता है, और फिर 2-3 फाइल एक साथ खुल गई तो वो मिक्स होके कुछ और ही बन जाता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए कहा जाता है जब आप सोते हैं ना तो उससे पहले कुछ अच्छे अफर्मेशंस लिख के सोएं या बोल के सोएं, क्योंकि जैसे हम सोए हुए होते हैं ना फिर वही वाली फाइल्स ऊपर रहती हैं फिर हमारे, तो हमें स्लीप में मदद करती हैं वो वाली जो ऊपर खुली वाली फाइल्स हैं, है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने के समय और उठने के समय बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो जो आप उसको दोगे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सोचो उसके अंदर क्या क्या खजाना भरा पड़ा होगा जो हमको याद भी नहीं है, वो भी जो आपने कहीं ऐसे ही निकल गया होता किसी दुकान से, आपको नहीं याद होगा वहाँ क्या क्या रखा था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में काफी कुछ रहता है उसमें। कमाल की चीज है, इसके बारे में पढ़ना कभी, है ना? आप तो पढ़ते हो, गूगल यूज करते हो ना आप लोग?
1: हाँ।
3: है ना, यूट्यूब भी देखते हो?
1: हाँ।
3: तो कभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ के देखना, कितना इंटरेस्टिंग है।
1: ठीक है,
3: ठीक है।
1: हाँ।
3: अच्छा, ये तो हुए बंद आंखों से देखे हुए सपने। चलो खुली आंखों से देखे हुए सपनों के बारे में भी एक अलग से एपिसोड करेंगे। या तो ये बताओ, अच्छे सपने आए हैं किसी को बंद आंखों से? मतलब सपने तो देखे, डरावने भी देखे, भी देखे, अच्छे सपने देखे कोई? जैसे उन्होंने बताया बादलों के ऊपर थे, वैसे कोई अच्छा सपना आया है कभी? या सब कुछ डरावने ही सपने आते हैं?
8: दीदी आपको पता है, एक बार मुझे आसमान में उड़ना था, घूमना था, है ना? तो क्या हुआ, मैं सोचने लगी, सामने आया डोरेमोन, उसने निकाला अपने वो पॉकेट में से गैजेट और मुझे ऊपर भेज दिया घूमने के लिए।
3: वाह, उड़ने वाला सपना दो लोगों को आ गया।
8: हाँ दीदी, वो उसने पता नहीं मेरे सर पे क्या पहना है, चक्री।
3: अच्छा, तो वो आप उड़ गए उसको चक्री को लगा?
8: हाँ दीदी, पूरा आसमान 2-3 दिन में घूम के आई थी मैं।
3: वाह क्या बात है, 2-3 दिन तक ऊपर घूम रहे थे? वाह।
8: और वो खाना आगे दे रहा तो पर खाना खा लेना, पानी पी लेना।
3: ओके ठीक है। हाँ मीक्षा।
5: और दीदी एक बार है ना, मुझे एक फेरी मिली थी सपने में। वो बोल रही थी आपको मेरे घर देखना है। मैंने कहा हाँ आपका मुझे घर देखना है। तो मुझे वो लेके गई थी, मैं 4-5 दिन बाद वापस आई थी।
3: अच्छा,
5: उसका तो घर इतना बड़ा था।
3: कैसा था उसका घर?
5: बहुत अच्छा था,
3: बहुत सुंदर था। क्या क्या था वहाँ पे?
5: वहाँ पे खेलने के लिए बहुत कुछ था और बुक्स का मतलब पूरा शेल्फ था। उसमें बहुत सारी स्टोरीज बुक रखी हुई थी।
3: अरे वाह,
5: बहुत कुछ था। और
3: ओके, अच्छा लगा होगा ना आपको?
5: हाँ
1: दीदी, मेरी तो अच्छे सपने की स्टार्टिंग भी बुराई से ही हुई है।
3: कैसे?
1: अरे एक जलपरी ने मेरे को काट लिया, फिर मैं जलपरी बन गई। फिर मैं समुद्र के अंदर जाके समुद्र एक्सप्लोर किया था।
3: कैसा लगा था समुद्र अंदर?
1: बहुत मस्त था और अंधेरा भी बहुत ज्यादा था अंदर जाके।
3: तो सुंदर क्या लगा वहाँ पे?
1: वो रोशनी आ रही थी ना, उसमें बबल्स बहुत अच्छे दिख रहे थे।
3: तो बबल्स अच्छे लग रहे थे
1: और बहुत सारी फिशेज भी बहुत झुंड बना के ऐसे गोल गोल घूम रही थी। व्हर्लपूल जैसे।
3: फिशेज कितनी कलरफुल होती है ना, कितनी सुंदर होती है ना।
1: क्लोन फिश भी थी।
3: वो तो काफी फनी होते हैं, वो भी एक टाइप है फिश का। बिल्कुल। और फिशेस तो देख सकते हैं हम, प्रकृति ने क्या क्या कलर्स दिए हैं ना, कमाल के।
8: दीदी मैं एक बात बताऊं?
3: बोलिए।
8: मैं खुद भी जलपरी से मिल के आई हूँ।
3: अच्छा,
8: उसने अपना घर बनाया था मोतियों से, वो भी देख के आई थी। उसमें कम से कम 4-5 दिन लग गए थे देखने में।
3: 4-5 दिन लग गए थे? तो आपको सपने में पता चल गया था कि इतने दिन लग गए अभी। अभी घर जाना
8: है। गिन रही थी मैं।
3: अच्छा, आप गिन रहे थे?
8: हाँ। एक दिन कम्प्लीट हुआ, दूसरा दिन कम्प्लीट हुआ, तीसरा दिन कम्प्लीट हुआ और जा रही थी ना मैं अपने 5वें दिन, वो जलपरी उल्टा रोक के मेरे को चाय पिला रही थी।
3: वाह, समुद्र में चाय।
8: हाँ।
3: बात है। वाह, तो उसमें पानी नहीं चला गया फिर चाय में सारा?
8: नहीं, मैंने घर के अंदर बैठ के पिया।
3: घर के अंदर बैठ के पिया। ओके।
8: और वो मैंने जो मतलब जहाँ कोने में बैठी थी ना, वहाँ से पानी हटाया था मैंने।
3: अच्छा, पानी हटा के फिर बैठी साइड में। कैसा घर था जलपरी का?
8: दीदी उसमें सोचोगे नहीं, तो मतलब ऐसे बनाया था ना, मोती मोती मोती मोती जोड़ के ऐसे ही पूरा वो महल खड़ा कर दिया।
3: मोतियों का महल था।
8: हाँ।
3: और अंदर क्या क्या था?
8: अंदर वहाँ पे कुर्सी थी मोती वाली।
3: अच्छा।
8: उनका पूरा मतलब वो क्या बोलते, किचन का सेट
3: सेट मोतियों वाला।
8: हाँ, मोतियों वाला बेड भी था मोतियों वाला। उनकी ड्रेसेस रखी थी वहाँ पे मोतियों वाली,
3: वो भी मोतियों वाली। कितना सुंदर होगा।
8: और दीदी वहाँ पे एक मतलब बड़ा सा वो रखा था जिसके अंदर वो मोती निकाल के वहाँ पे जोड़ दी थी बार बार।
3: अच्छा, मतलब स्टॉक था उनके पास पूरा।
8: वो थोड़ी थोड़ी देर में मोती बनाए जा रहे थे, वो जोड़ती जा रही थी, जोड़ती जा रही, जोड़ती जा रही। मैंने भी जुड़वाया उनके साथ।
3: वाह, मतलब जहाँ गए वहाँ मदद भी करके आए। वाह। हाँ मीक्षा।
5: और दीदी मैंने वो फेरी के घर में गई थी ना, तो वहाँ पे फेरी के खेलने के लिए ना एक बादलों का घर बनाया था उसने।
3: अच्छा।
5: बहुत सुंदर था वो भी, उसके घर के जैसा ही था, बस बादलों से बना हुआ।
3: बादलों से बना हुआ था।
5: हाँ, उसको वो पेंट कर रही थी तो मैंने बोला मैं भी करूँ, तो बोला हाँ।
3: आपने पेंट कराया?
5: हाँ।
3: कौन से कलर के कर दिया आपने बादल? फिर
5: बादल मैंने ब्लू कलर के किए।
3: ब्लू कलर के किए, पहले व्हाइट थे।
5: हाँ।
3: कितना अच्छा लगा होगा ना। और अनुष्का ने कोई अच्छा सपना देखा कि नहीं?
1: हाँ।
3: क्या?
1: वहाँ पर मैं तो परी बन गई थी, मेरे तो पंख आ गए थे ऐसे। पूरे 2 दिन घूम के आए आसमान में।
3: अच्छा। बस आप परी बन के उड़ गए थे। कौन से कलर की परी थे आप?
1: मेरे पिंक कलर के पंख आए थे।
3: पिंक कलर के पंख आए थे,
1: मेरे को वो भी नहीं पता पिंक कलर के कहाँ से आ गए।
3: अच्छा। ओके, तो कैसे लग रही थी ऊपर से दुनिया?
1: बहुत अच्छी लग रही थी।
3: बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मजा आया। और आपको कोई सपना आया ऐसा?
7: मेरे को तो बस एक ही बार सपना आया था, बादल वाला। तब मैंने तो बस बादल पे चल के उसको घूम रही थी पूरा अच्छे से। वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट थी, बहुत सुंदर व्यू था वहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके अलावा बस मुझे हॉरर सपने ही आए हैं।
3: हॉरर सपने? हाँ। कैसे हॉरर सपने?
7: मैं सपने में ना डायनासोर वगैरह, मेरे को ज्यादा ज्यादा एनिमल्स मिलते हैं सपने में।
3: अच्छा, तो डायनासोर भी मिलते हैं आपको?
7: हाँ।
3: अरे बाप रे।
7: डायनासोर, मैं बेड के नीचे छुपी हूँ, वो घूम रहा है आसपास, ढूंढ रहा है। मैं ना कवर्ड में बंद हो गई, ऐसे मैं उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे ढूंढ रहा था। ऐसे मेरे को सपने बहुत डरावने आते हैं, डायनासोर, कभी है ना डीमंस वगैरह आ जाते हैं सपने में, ज़ॉम्बीज वगैरह, ऐसा सपना भी आ जाता है।
3: आ सकता है। आपने कभी वो जुरासिक पार्क या ज़ॉम्बीज वाली मूवी देखी?
7: हाँ।
3: तो हमारा सबकॉन्शियस ना वो सब चीजें रिकॉर्ड कर लेता है, जैसे पहले बात हुई थी ना, कॉन्शियस माइंड तो शिफ्ट हो गया, वो मूवी देख के आगे बढ़ गया, अब कुछ और देखने लगा, पर सबकॉन्शियस में वो चीजें अंदर तक चप गई और वो चीज़ों ने आपको बहुत इम्पैक्ट किया था उस समय, तो बहुत पावरफुल है सबकॉन्शियस में, तो वो निकल निकल के बाहर आती है ना। इसलिए हम जो चीज़ें देखते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और लग रहा है हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है अभी।
4: दीदी, हमें तो कभी अच्छे सपने आए ही नहीं, हमेशा एक्शन या हॉरर ही आते हैं।
3: एक्शन सपने आते हैं?
4: कभी हम किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं, किसी को किसी से बचा रहे होते हैं, या फिर कभी भूत आ जाते हैं।
3: किससे लड़ाई कर रहे होते हो?
4: याद भी नहीं रहता किससे लड़ रहे हैं। बस वो रियलिटी में जब बेड पे होते हैं तो भाई बहन को ही मारते हैं।
3: अच्छा।
4: बेड पे भाई बहन को, सपने में किसी और को।
3: मतलब लेकिन चल रही होती है मार पिटाई।
4: हाँ जी।
3: ओके, ठीक है। हाँ मीक्षा।
5: और दीदी, हम लोग कोई भी सपना देखते ना उसमें मजा आता है, बस थोड़ा डर लगता है।
3: डर तो लगता है। पता है एक बार किसी ने अपने एक सपने की स्टोरी बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनको शेर दिखाई देता था सपने में, और शेर के पीछे भाग रहा होता था और वो डर के उससे भाग रहे होते थे। तो फिर उनको किसी ने हेल्प करी और उनसे कहा कि अगली बार जब सपने में वो शेर आए ना तो उससे दोस्ती कर लेना, उससे बातें करना कि तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या करते हो, मेरे फ्रेंड बनोगे, और ये याद रखना, फ्रेंडशिप कर लेना, उससे बातें करना, और ये याद रखना सपने में कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, एकदम शेर से तो डबल ट्रिपल 100 times पावरफुल हो। तो अगर ऐसा लगता है कि वो शेर तुम पे हमला कर रहा है तो उसकी तुम पिटाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम।
1: दीदी, ऐसा करने का मन करता है लेकिन ऐसा लगता है कि सपने में हम खुद ही कंट्रोल हो रहे हैं।
3: हाँ, तो इसीलिए क्या करना है, जब रात को सोना है ना तो खुद को बोल के सोना है कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी पावरफुल। इसको बहुत बार लिखो, या तो लिखते हो ना तो वो भी माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। आपको बहुत सारी अच्छी फाइल्स देनी है सबकॉन्शियस में, अभी ये सब डरावनी फाइल्स दी हुई हैं आपने, तो आप अच्छी अच्छी पावरफुल फाइल्स दे दोगे ना तो वो उसको ओवरपावर कर लेंगी। लेकिन अभी बहुत सारी नेगेटिव ये वाली फाइल्स जमा है, क्योंकि हमने ऐसी मूवीज देखी हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं ना, कभी पहले भी देखी हो सकती हैं, हो सकता है अब हमने छोड़ भी दी हो, तो पर वो जमा तो हो जाती है फाइल, तो अब उसको पावरफुल पॉजिटिव फाइल्स आपको खोल के देनी पड़ेंगी। आई एम वेरी पावरफुल सोल, आई एम वेरी पावरफुल, ये लिखना है आपको बहुत बार, है ना। और भी ऐसे स्वमान आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अफर्मेशंस ले सकते हो, है ना, आई कैन डू एनी थिंग, आई यू नो, सबसे ऐसा कुछ लिख के भेजो, आई एम गॉड्स चाइल्ड, मेरे अंदर सारे ताकत है, मैं कुछ भी फेस कर सकती हूँ। इसको आप एटलीस्ट 50 times 100 times लिखोगे ना तो वो सबकॉन्शियस फिर आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अगली बार वो वाली फाइल भी खोल देगा वो, है ना। तो आप अपने सपने में हैंडल कर लोगे सारे सिचुएशंस।
4: दीदी, कई कई बार तो पता ही नहीं लगता कि रियल लाइफ में है या सपनों की लाइफ में है।
3: हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है ना,
4: कई बार अगर कहीं से गिरते होते हैं ना तो एकदम ऐसे आँख खुलती है जैसे हम गिर गए
3: हैं, ऐसा होता है, होता है।
5: और दीदी, एक बार तो क्या हुआ, मैं सपनों में लड़ाई कर रही थी तो मैंने एक बार है ना अपनी नानी को एक गुस्सा मार दिया।
3: सपने में लड़ाई करते करते ना, असली में तो नहीं किया ना।
4: दीदी, मैंने तो सपने में मम्मी की बहुत बार चाय गिरवाई है, मम्मी जैसे पैर के आगे बैठते हैं ना तो ना ऐसे पता लग जाता है आगे कोई बैठा है, पर सपने में जब लड़ रहे होते हैं ना तो पैर एकदम ऐसे आगे जाते हैं, मम्मी की चाय गिर जाती
3: है। असल में तो नहीं गिराई ना?
4: असल में ही तो गिराई है।
3: अच्छा, असल में गिरा दी।
4: बहुत बार गिरवाई है।
3: अच्छा, ओके।
10: दीदी,
3: हाँ
10: चलो मैं आपको अपना हॉरर सपना बताती हूँ।
3: बताओ।
10: एक बार क्या हुआ, मैं घूम रही थी जंगल में, एक हवेली दिखी, मैं उसमें गई, वहाँ पे गई, अपने आप गेट बंद हो गया, मैं बैठ के वहाँ पे भजन करने लगी, पता नहीं क्या दिमाग चला, भजन करने लगी, पास में से आई एक आत्मा, बोली तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम पल्ला है। मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? बोलती है भूतनाथ। मैंने बोला अच्छा भूतनाथ, और कैसे बनू? उससे मैंने बातचीत की। फिर बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने बोला मार दो। हमने खूब मस्ती की दीदी, सोचा कि नहीं। दो दिन तक मैं हवेली में थी।
2: मस्ती करते रहे भूत के साथ।
10: और मैं भूत को बाय बोल के जा रही थी। बोलता है नहीं तुम भी मेरे साथ भूतनाथ नहीं बन जाओ। मैंने बोला नहीं बनना मुझे।
2: नहीं नहीं जाने तो, बाद में आके बातें करूंगी मैं। ओके
4: दीदी, इनको तो पता भी लग रहा है कितने दिन लगा के आ रहे। मेरे को तो पता भी नहीं लगता मैं कितने दिन लगा के हूं, क्या करके आ।
2: हाँ ये थोड़ा मुश्किल है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे अनुष्का?
6: हाँ दीदी, हमने तो बहुत सपने देखे, आपने कौन से सपने देखे?
2: मैंने कौन से सपने देखे
5: दीदी, आप भी बताओ ना।
2: मैं अभी तो मुझे बहुत समय से कोई सपना नहीं आया, लेकिन पहले जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि गिर रहे हैं, ऐसा वाला सपना आता था मुझे भी कि आप किसी बिल्डिंग से गिर रहे हो अचानक से। और ना एक सपना आता था कि एग्ज़ाम में लिख रहे हो और ना पेन की रिफिल ख़त्म हो गई और फिर लिख ही नहीं पा रही हूँ मैं एग्ज़ाम, ऐसा सपना आता था मुझे।
4: दीदी इतना खतरनाक सपना।
5: फिर दीदी आपने क्या किया?
10: फिर मैम से पेन मांग लिया होगा।
2: हाँ नहीं, उस समय मेरा पेपर ही छूट जाता था एग्जाम में।
10: सबसे बड़ा डर रिजल्ट आता
5: था। असलियत में तो नहीं छूटा ना।
2: असलियत में एक बार छूट गया था मेरा, वो भी बोर्ड्स के एग्जाम में।
4: रिफिल खत्म हो गई थी
2: 6 मार्क्स का मैथ्स का पेपर, नहीं बिना रिफिल के छूट गया था, मगर ठीक है मार्क्स ठीक आ गए।
4: टाइम रिफिल नहीं हुआ।
2: हाँ क्या कह सकते हैं, अब असल लाइफ में तो भाई दोबारा सपना तो नहीं है कि दोबारा देख सके, है ना? जो हो जाता है वो हो जाता है, तो उससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना?
6: दीदी मेरी भी मम्मी सपना देखती है अभी भी।
2: आते हैं सपने, बड़ों को भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को आते हैं।
6: पर आपको तो नहीं आते अभी इस टाइम?
2: हाँ इस टाइम नहीं आते, क्योंकि पहले जब मुझे सपने आते थे ना तो बहुत ऐसे डर जाती थी मैं बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरी मम्मी को भी डर लगता था कि भाई बाहर पढ़ने जाओगे तो कैसे रहोगे, क्योंकि बहुत डर जाते थे।
4: अभी कई कई बार ऐसा होता है मैं सपने में उठ के बेड पे ऐसे मतलब खड़ी हो जाऊंगी, फिर दूसरी तरफ सिर करके सो जाऊंगी। मैं खुद को पता नहीं होता मैं कब उठी कब उधर सिर रखा कब सोगी।
2: सपने में बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन सपनों की दुनिया अपनी अलग है और रियल दुनिया अलग है। अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम बातें करेंगे लेकिन बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए हम लेते हैं इजाजत और अपने दोस्तों को कहते हैं बाय बाय।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जो अपने लिए जिया वो क्या जिया, जीवन तो उसी ने जिया जो मानवता के लिए जिया।

दोस्तों इस ऑडियो बुक में आप सुनेंगे हीरों के कैसे महान व्यापारी दादा लेखराज की जीवन कहानी, जिनका जन्म तो एक साधारण परिवार में हुआ परंतु अपनी सूझबूझ और व्यवहार कुशलता के कारण वो एक मशहूर हीरों के व्यापारी बने। अपनी उदारता और दिव्य व्यक्तित्व के कारण अपने समय के राजा महाराजाओं के लिए वो एक सम्माननीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आगे चलकर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने उस महान व्यक्ति को विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना साकार माध्यम बनाया। दादा लेखराज ने सन 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये एक ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय है जिसके तकरीबन 137 देशों में अनुसंधान केंद्र हैं, जहां पर राजयोग जैसे कठिन विषयों को बड़ी सहजता और सुगमता से पढ़ाया जाता है। अनोखी बात ये भी है कि यहां प्रवेश के लिए ना तो कोई उम्र मायने रखती है और ना ही कोई शुल्क देना पड़ता है, यानी यह पूरी तरह निशुल्क है। हाल ही में NIT कुरुक्षेत्र और ब्रह्मा कुमारीज ने मिलकर एक थॉट लैब का निर्माण किया है, जहां पर विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक सामंजस्य स्थापित करके कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं। साथ ही इसी वर्ष CBSE बोर्ड ने कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में दादा लेखराज की जीवन कहानी को शामिल किया है। दोस्तों बड़ी गर्व की बात है कि हम भारतीय एक बार फिर से अपने भारत के रियल हीरोज को जानना चाहते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। दोस्तों दादा लेखराज की कहानी भी भारत के इतिहास में सदियों तक याद की जाएगी। इनके योगदान का भारत ही नहीं बल्कि सारा विश्व ही ऋणी रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ऑडियो बुक को जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और गहन शांति का अनुभव होगा। जहाँ एक तरफ आप पुरानी कुरीतियों से विमुख होंगे, वहीं दूसरी तरफ आप अपने जीवन में एक नई विचारधारा को अपनाएंगे। इस ऑडियो बुक को शुरू करने से पहले मैं आपको इस बुक के लेखक के बारे में बताना चाहूंगा। इस बुक के लेखक हैं भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी, जो प्रोफेशन से एक प्रोफेसर थे और 1952 में दादा लेखराज के संपर्क में आए। तब से लेकर अपना सारा जीवन ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं में समर्पित कर दिया। उन्होंने तकरीबन 200 से अधिक बुक लिखी हैं और उन्हीं में से एक बुक है जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, जिसे आप सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।

बात सन 1936-37 की है। तब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी। कई शताब्दियों से मुसलमानी, क्रिस्तानी तथा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण हिंदू लोगों का खान पान तमो प्रधान अथवा भ्रष्ट हो चुका था। शराब और मांसाहार का आम रिवाज था। लोग भक्ति करते थे, परंतु वे जितना पूजा पाठ करते थे उतना ही उनमें धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह तथा मन में वासना भरी हुई थी। निरर्थक एवं खर्चीली रस्में और थोथे रिवाज समाज को घुन की तरह खाए चले जा रहे थे। लोगों के पास धन था, परंतु उनका घरेलू जीवन मनोविकारों और अशांति के कारण तथा सात्विकता के अभाव के कारण नरकमय बन गया था। माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक थी। उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे वो केवल अपने पति की वासना तृप्ति के लिए ही बनी हो। चाहे पति शराबी कबाबी हो और विषय वासना में ही डूबा रहता हो, परंतु स्त्री के लिए वह परमेश्वर और गुरु मानने के योग्य समझा जाता था। व्यापारी वर्ग के लोगों के यहाँ कन्याएं प्राय अशिक्षिता सी ही रहती थीं और माताएं प्राय बड़े बड़े घूंघटों में मुंह छुपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थीं, या तो वे प्राय घर की चारदीवारी में विचित्र वेशभूषा में रहती थीं। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें धर्म प्रचार का प्राय कोई अधिकार ही न था, ना ही उन्हें सन्यासियों की तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का ही कोई अधिकार था। घोर कलयुग की इस बेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बेड़ियों में बंधी हुई थीं। सभी लोग अज्ञान निद्रा में मूर्छित से हुए पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ब्रह्मा की रात्रि का वह अत्यंत अंधकारमय पल था। ऐसे वातावरण में सिंध हैदराबाद में एक निराले व्यक्ति थे जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। यूं तो वे साधारण थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थीं। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच वो जा रहे होते तो सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते थे और झट से पहचाने जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति प्रकृति, उनके कद-बुद और व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनमोहकता थी। उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सहृदयता थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनके नयन बैन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उन्नत मस्तक, उनके बाल, उनकी चाल, उनका रहन सहन एवं उनका शिष्टाचार, उनकी भक्ति भावना सभी चित्त को चुराने वाले थे। इसलिए लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी और वे सिंध के लोगों के स्नेही थे। यद्यपि एक मध्यम वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुर्य, ईमानदारी तथा परिश्रम से गिने चुने धनी मानी लोगों में अपना स्थान बना लिया था। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई बिरला ही होता है जिससे अपने कुटुंब परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हो। कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जो सभी लोगों का भी प्रिय हो और जिसके अपने मन में भी लोगों के लिए प्यार हो। ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज, क्योंकि वे दूसरों से मिलते जुलते, उनके लिए सुख की साज सामग्री रचते तथा उनसे मित्रता निभाने में वो बहुत कुशल थे, उदार चित्त थे और वचन के बहुत पक्के थे। उनकी कायिक रचना, उनका स्वास्थ्य, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी में भरे मिठास का हम कैसे वर्णन करें। वे सभी इस बात की ओर संकेत करते थे कि पूर्व जन्मों में उनके कोई विशेष ही संस्कार रहे होंगे और इसीलिए कुदरत ने उनके इस शरीर रूपी रथ को बनाने में विशेषता और अलौकिकता का प्रयोग किया होगा। जिन लोगों ने भी उन्हें एक बार देख लिया अथवा जो उनके संपर्क में आए, वे ऐसा अनुभव करते थे कि दादा उनके भी संबंधी हैं और वे मन में सोचते कि क्या ही अच्छा होता यदि वे दादा के निकट कुटुंबी होते। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल के एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ के द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर
एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजा महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वायसराय आदि से उनका मेल मिलाप था और नेपाल के राजकुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था और वे उनके राज्य दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थीं और जिनका लौकिक नाम राधिका था और इस समय वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज हैं, वो लिखती हैं। उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहां तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाताएं अंदर ही अपनी बहु बेटियों को हीरे जवाहर दिखाने के लिए निसंकोच बुला लेती थीं और कहती थीं, लखीराम, इस बेटी को यह जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लखीराम बाबू, भगवान से तो कोई भूल हो गई, उन्होंने हमें तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया, जबकि राजापन के सारे संस्कार तो आप में हैं। परंतु भगवान ने कोई भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजा तो एक ताज वाले थे, जबकि भगवान ने दादा को दो ताज वाला दैवी राजा बनाने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के पधारने पर उनको विशेष स्थान मान देते तथा उनका आतिथ्य करते। एक बार हम लोग उदयपुर के महाराजा के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं, उनकी युगल और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी साथ नहीं हैं। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब हम आए तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे और तब दरबार चालू हुआ। फिर राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि दादा के परिवार को श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान नवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पैनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी ही समझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। दादा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनगार और अपने सिरहाने के नीचे भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वे देखें और जहां भी उनका हाथ पड़े वहां ही श्री नारायण उनके सामने आ जाए। बाजार में श्री नारायण के जो छपे हुए चित्र प्राय मिलते थे, उनमें श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनके चरणों की दासी के तौर पर पांव दबाते हुए चित्रित किया गया है। दादा को ये चित्र बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वे इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री को गौण, दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता हो। दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से गौण नहीं मानते थे, इसलिए वे चित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिसमें कि लक्ष्मी का दासी भाव अंकित ना हो। दादा का भक्ति भाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, वे एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वे रेल यात्रा कर रहे हो तो भी वे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादा की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी बताती हैं। जिन राजा महाराजाओं तथा धनाढ्य व्यक्तियों के साथ दादा का हीरे जवाहरात का व्यापार था, वे कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते थे और उनकी गाड़ी के पहुंचने का समय कई बार वही होता था, परंतु फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन सात्विक जैसा था।
जब कभी वे मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें सिगरेट शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने वाले राजा तथा रईस लोग कई बार सिगरेट शराब आदि को ना पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते, दादा पार्टी फीकी रही। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़े ही भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, परंतु हम तो उनके बदले आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन और काशी आदि की यात्रा में विशेष रुचि थी। उन्हें साधु संन्यासियों को अपने यहाँ ठहराने में बहुत खुशी होती थी। अपने लौकिक गुरु में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनके स्वागत, सत्संग तथा आतिथ्य पर वे हजारों रुपए खर्च कर देते थे। वे गुरु की आज्ञा को कितना महत्व देते थे, इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी की पंक्तियां सुनने योग्य है। उन दिनों दादा की अपने गुरु में बहुत भावना थी। एक बार गुरु अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली लेकर उनके यहाँ आए। दादा ने बहुत ही आदर से उनका स्वागत किया। उनमें गुरु भावना इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगवाई। प्रातः और साय दोनों काल गुरु के शौच गृह में जाने से पहले वहाँ खूब गुलाब जल छिड़का जाता। दादा अपने ही हाथों से वहाँ एक बोतल गुलाब जल छिड़क आते और अगरबत्ती भी जला आते। उन्हें गुरु के आराम का बहुत ध्यान रहता। कहीं आवारा कुत्तों की आवाज गुरु के आराम या एकांत में खलल ना डाले, विशेषकर इस ख्याल से वो एक पहरेदार रखते। आम का मौसम ना होने के कारण बाजार में 4 रुपए का भी एक आम मिलता तो भी वे गुरु के लिए ले आते। वे गुरु की हर आज्ञा को हर हालत में शिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है कि दादा के पोते का नामकरण संस्कार होना था। शाम को सब बड़े बड़े व्यक्तियों का भोज था। अचानक ही गुरु का तार आया कि तुरंत आओ। दादा ने जसोदा जी से कहा, जो कि दादा की धर्म पत्नी थी, तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ क्योंकि मुझे जाना है। जसोदा जी बोली, इस अवसर पर कैसे जा सकोगे? दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर टाल सकते हैं कि आज हमारे पोते का नामकरण है? दादा इतना कहकर अंदर चले गए। अब हम क्या करते? उसी समय सभी मित्रों को फोन करके बताया कि दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया है। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया था कि उनको 10,000 रुपए चाहिए थे, क्योंकि उनके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। दादा स्वभाव से ही दानी थे। उनके एक चाचा जो कि मूलचंद आजवाला के नाम से प्रसिद्ध थे, एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में ही दादा भी उनकी कोठी पर जाकर बैठते और पीड़ित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। दादा के भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे कैसा भी अवसर क्यों ना हो, उनके कर्मों में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने जब अपनी लौकिक पुत्रियों तथा भतीजी का विवाह कराया तो उन्हें दहेज में हीरे, सोना तथा लाखों का सामान देने के अतिरिक्त उन्हें श्रीमद् भगवद गीता तथा चांदी का एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में दिया, ताकि वर और वधु के जीवन में भी भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रित कर लिया करते थे और शादी को भी एक सत्संग का रूप दे देते थे। उस अवसर पर भी वातावरण को धार्मिक बना देते थे तथा अन्य लोगों की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न करते थे। दादा की भक्ति भावना का परिचय इस बात से भी मिलता है कि लखपति होते हुए तथा लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी उन्होंने अपनी एक पुत्री, जिसे वे प्यार से पुट्टू नाम से याद करते थे, उसका विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि स्कूल में एक मुख्य अध्यापक थे, परंतु एक साधारण परिवार के थे। दादा की पुत्री सुशील थी, शोभनीय थी और सुखों में पली थी, परंतु दादा ने उसका विवाह किसी धनाढ्य कुल के युवक से न करके बोधराज से इसलिए करवाया क्योंकि बोधराज धर्म प्रिय थे। वे चिदाकाशी मठ में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगी राज नाम से प्रसिद्ध थे, इसलिए दादा ने अपने परिवार में भक्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया था। हालांकि उनके इस कार्य से उनके कुल में बहुत ही हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में यह एक चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते थे कि दादा ने अपने ही उच्च कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री की शादी क्यों की।
दादा की पत्नी तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी ही, उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे। और विपुल धन संपदा होते हुए भी दादा में ऐश अथवा विलासिता के संस्कार नहीं थे, बल्कि उनके

उस विवाह की यह विशेषता थी कि उसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता या घोर संसारिकता देखने में नहीं आती थी, बल्कि वह विवाह ऐसा लगता था कि जैसे कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा हो। उस समय के दृश्य का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे मन में यह विचार इसलिए उठा कि मुझे दादा के कुटुंब का सात्विक वातावरण बहुत भाता था। इस प्रकार का जीवन था दादा का। कोलकाता में उनकी हीरों की दुकान थी और मुंबई में भी वे जवाहरात के व्यापार के सिलसिले में आते जाते रहते थे। कोलकाता और मुंबई के अतिरिक्त उनका एक मकान हैदराबाद में भी था, जहां पर वे बहुत समय से रहते थे। इन तीनों स्थानों पर उनका जीवन अब राजकुल के जैसे सुख में व्यतीत हो रहा था। वैसे तो दादा में प्रभु निष्ठा, दानवीरता आदि की विकसित भावना थी, परंतु अभी घर छोड़कर वानप्रस्थी होने का संकल्प उन्हें नहीं था। दादा की आयु जब 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी, जिनका नाम जसोदा था, उन्होंने कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। परंतु दादा ने उन्हें कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए हैं, अभी इतने लाख और कमा लेने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। दादा धन कमाने में बहुत सिद्धहस्त थे और उनका विचार था कि और 2-4 वर्ष तक धन कमा करके फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन के बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन कछु और है, साहब के मन और। अनायास ही किसी ईश्वरी योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा, उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा, वे मनन चिंतन में रहने लगे। एक दिन ऐसा आया कि जब वे मुंबई में बाबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे, तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर अपने एक कमरे में चले गए। वहां बैठे हुए वे एक अलौकिक नशा सा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान ही नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार करवाए होंगे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत ही खुशी में यह सब वृतांत सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव से उन्होंने समझा कि गुरु इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित है और दिव्य साक्षात्कार कराना उनके सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर की बात है। अतः उनका मन परमपिता परमात्मा की ओर मुड़ा, जो ही वास्तव में सबके सदगुरु हैं। दादा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के दाता केवल परमात्मा ही हैं और उन्हें ही सच्चा गुरु मानना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि परमपिता परमात्मा ने ही उन्हें दिव्य चक्षु रूपी वरदान दिया है। कुछ समय के बाद दादा वाराणसी चले गए। वहां वे अपने एक मित्र की वाटिका में बैठकर मनन किया करते थे। वहां एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते। तब वे अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती थी। ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी कहती हैं कि तब दादा ने एक पत्र में लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूं। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उस स्थिति में दादा ने लिखा, पा लिया जो था पाना, और क्या बाकी रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का भी साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं, उनके विस्फोट से असहाय अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था, जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मूसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र हैं। दादा को जिन दिनों यह साक्षात्कार हुआ उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति

यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि के महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही हैं जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्धों का और प्राकृतिक प्रकोपों का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वे बच नहीं पा रहे हैं। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्मसात करती जा रही है, तो कहीं पर धमाके से खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है और कहीं पर पृथ्वी कंपायमान होकर कांप रही है। सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्धों तथा प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे हैं। दादा, जिनकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे थे, उनकी आंखों से अब अश्रुधारा बह रही थी और वो कह रहे थे, बस कीजिए प्रभु, बस कीजिए, इतना भयंकर विनाश, अब मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाइए। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था और उसे समेटने के लिए वे वहां से कोलकाता गए। उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे और वो बोले, यह तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। उसने कहा, यह कैसे होगा? दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक न था। उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने शायद यह भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए हैं और पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे। परंतु दादा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा हूं, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूं कि मुझे अब यह धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुगी सृष्टि का अब महाविनाश होना है, अतः मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा, आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसा भी ठीक समझो हिसाब किताब करा देना। हम पहले बता आए हैं कि दादा के एक चाचा थे जो कि काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। दादा दान कर्म में उन्हें काफी आर्थिक सहयोग देते थे। जब कोलकाता में उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था, तो उन्हीं दिनों सिंध से काका के बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले, उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। यहां अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब सिंध में वो आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। हां, तो मैं काका मूलचंद की बीमारी की बात कर रही थी। दादा के पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे। वहां उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई, सत्ता छोड़ते छोड़ते वह पांव के अंगूठे तक आई, फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आ गई। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक हफ्ते के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुजं तत्त्वम्। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी बारी बारी आए और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। इन साक्षात्कारों से जहां दादा को बहुत हर्ष हुआ, वहां इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे तत्त्वम का जो वरदान दिया गया है उसका वास्तव में क्या भाव है, ये साक्षात्कार मुझे किसने कराए।
उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपए खर्च किए। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत ही निराला लगा। दादा थे तो साकार में अर्थात शरीरधारी ही थे, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, उनको दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई, मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गईं। मैंने देखा कि दादा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता जैसे उनमें लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीर ही हो गई। इतने में एक आवाज ऊपर से आती हुई मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज पहले तो धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गई और वो आवाज थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है और ना ही वह आवाज ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था मुझे अच्छी तरह से याद है। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वे स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कोई शक्ति थी। अब दादा बहुत ही गहन विचार में थे। वह गहरी सोच करते और फिर कहते थे, वह कौन था? वह कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है, और इनके पीछे रहस्य क्या है? दादा के कुटुंबी जन भी इसी सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे और वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन रहते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था, और उन्होंने ही दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था, और उन्हें उस पावन सृष्टि की स्थापना अर्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हो। अब उनकी अंतरात्मा में गीता ज्ञान प्रकाशित हो रहा था, और साथ ही साथ वे उस ज्ञान की स्थिति और अनुभूति का भी अनुभव कर रहे थे। उनकी बुद्धि को स्वतः ही यह सूझ भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उनमें रहस्य क्या क्या हैं। गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई, और इस सत्य में उनका विश्वास और भी दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। परंतु अब जबकि स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे और उसकी अनुभूति करा रहे थे, तो गीता शास्त्र जिसे वे नित्य प्रति पढ़ा करते थे अब उनसे स्वतः ही छूट गया था। दादा को ऐसा अनुभव होता था कि वे अर्जुन हैं और स्वयं भगवान उनकी ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं ही भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए और गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। दादा को अब यह निश्चय हो गया कि मैं यह देह नहीं हूं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। यह शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपने स्वरूप की अब सही पहचान मिली है, और कुछ वर्षों के बाद
कलयुगी पुरानी सृष्टि का महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वे अन्य मित्रों तथा संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मगन अपनी नजर से निहाल कर देते थे। वे स्वयं भी आत्मानुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते कि तुम आत्मा हो। अब उन्होंने लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूं, जसोदा भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है। इस प्रकार वे लिख लिख कर कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ अच्छी तरह से याद कराते थे। अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उनके जीवन की ज्योति अब जाग गई हो। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फलस्वरूप सबको आत्मनिश्चय के साथ परम शांति का भी अनुभव होने लगा। उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी और उनका खान पान भी शुद्ध हो गया। परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश करके अब नरनारी के खान पान, व्यवहार, दृष्टिवृत्ति आदि को शुद्ध किया और उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की। उन्होंने सबको पितृवत स्नेह भी दिया और उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ नियम भी बताए। फिर क्या हुआ यह आगे सुनिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ साझा करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: दोस्तों, कभी आपने खाली समय में बैठ करके ऐसा सोचा कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, या ये दुनिया कैसे शुरू हुई, या पृथ्वी कैसे आई, सूरज कैसे चमकता है, या ऐसे कई सवाल हैं जो जीवन में हम चाहे तो बैठ करके सोचना शुरू करें तो दिन कब खत्म हो जाए पता भी ना चले। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इनमें से कई सवालों का जवाब विज्ञान हमें दे चुका है, और कई ऐसे सवाल हैं जिनके तह तक पहुंचने में विज्ञान को अभी भी काफी समय है। लेकिन विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत सुखमय बनाया है। कई ऐसे वैज्ञानिक, कई ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित किया है, उनके योगदान की वजह से आज हमारा जीवन इतना सुखद है। दोस्त, एक ऐसे ही वैज्ञानिक से आज हम बात करने जा रहे हैं। 107.8 रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद हैं प्रोफेसर रामकृष्ण वी हसूर जी। प्रोफेसर रामकृष्ण वी हसूर कर्नाटक के राज्य से आते हैं और एक बहुत ही जाने माने विख्यात वैज्ञानिक है भारत के, जिन्हें वर्ष 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला प्रोफेसर श्री रामकृष्ण हसूर जी के साथ। प्रोफेसर रामकृष्ण हसूर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपने बिजी लाइफ से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला और हमारे श्रोताओं के बीच में आप आए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू। या, इट्स माय प्लेजर।
0: तो रामकृष्ण जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे एक लंबी गहरी बातचीत का, लेकिन उस बातचीत से पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताइए, कहां से आपकी जर्नी शुरू हुई, कौन कौन से पड़ाव माइलस्टोन्स आपने कवर किए, एंड हाउ वाज इट लाइक?
1: ओके। मैं कर्नाटका के धारवाड करके एक टाउन है, वहां पैदा हुआ था। सो मेरा सब स्कूलिंग वगैरह एजुकेशन जो है वे धारवाड में ही हुआ था, अप टू एसएससी मैट्रिकुलेशन वहीं पे धारवाड में किया था मैंने। उसके बाद एक साल के लिए मैं मुंबई आया था फर्स्ट ईयर साइंस करने के लिए, क्योंकि उस समय वहाँ पे मैं थोड़ा सा अंडर एज था कॉलेज जाने के लिए, लेकिन मुंबई में इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मेरे मामा थे यहाँ पर मुंबई में, उन्होंने कहा ठीक है, एक स्कॉलरशिप मिला था मुझे, नेशनल स्कॉलरशिप। अगर मैं एजुकेशन कंटिन्यू न करता तो स्कॉलरशिप निकल जाता, तो इसलिए उन्होंने कहा चलो तुम ठीक है, तुम मुंबई आ जाओ, हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक साल के लिए मुंबई आया था, उसके बाद फिर वापस धारवाड में चला गया, क्योंकि उस समय उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन निकाल दिया। तो मैं बीएससी धारवाड में किया, बीएससी कर्नाटक कॉलेज में, वहाँ पे केमिस्ट्री लेके बीएससी केमिस्ट्री किया। वहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी को रैंक मिला था, तो उससे भी स्कॉलरशिप मिला। उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया एमएससी के लिए, एमएससी केमिस्ट्री में आ गया था, वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिला था। तो वहाँ पे हॉस्टल में रहते हुए मैंने एमएससी केमिस्ट्री वहाँ से ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं पीएचडी के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ज्वाइन किया, वहाँ का कोई इंटरव्यू वंटरव्यू सब जगह होते हैं, तो उसको क्लियर करके टीएफआर में मैंने पीएचडी के लिए ज्वाइन किया था। उस समय डिग्री तो मुंबई यूनिवर्सिटी से आता था, रिसर्च कहीं भी करो, टीएफआर में भी करेंगे तो भी डिग्री तो मुंबई यूनिवर्सिटी से ही आता। तो 1978 में मैंने मेरा डिग्री ख़त्म कर दिया, पीएचडी ख़त्म कर दिया। पीएचडी के बाद मुझे वहीं पर जॉब मिल गया था, टीएफआर में ही मुझे जॉब मिल गया, तो मैं वो जॉब लेके, उसके बाद दो साल के बाद मैं छुट्टी लेके लीव स्टडी लियो करके वहाँ एक प्रोविजन होता था, उसको लेके मैं स्विट्जरलैंड गया दो साल के लिए पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। वहाँ पे ईटीएच ज्यूरिक में प्रोफेसर कुर्ट वित्रिक और प्रोफेसर रिचर्ड अर्न्स्ट, ये दो लोग थे, बड़े दिग्गज लोग थे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उनके साथ मैं काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे दो साल में काम करके फिर वापस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आ गया था। तो उस समय दैट वाज ए गेम चेंजर फॉर मी, तो वहाँ पे मैंने जो सीखा है तो उसी को लेके मैं पूरा कंटिन्यू करते गया, पूरा मेरी जिंदगी भर उसको एक्सपांड करते करते आगे आके लेते गया। तो वो उस समय का वो रिसर्च जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, नए नए चीज़ें निकल आ रहे थे, तो आप सोचिए वो दोनों को नोबेल प्राइज मिल गया, रिचर्ड अर्नस्ट वो जो कर रहे थे न्यूक्लियर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, उन्होंने फूरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर डिस्कवर किया, टू डायमेंशनल एनएमआर डिस्कवर किया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का फाउंडेशन किया, तो उनको 1991 में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद प्रोटीन स्ट्रक्चर जो करते थे थोड़े छोटे, उस समय तो प्रोटीन स्ट्रक्चर निकल करने के लिए सिर्फ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होता था, दूसरा कोई टेक्निक नहीं था, सॉल्यूशन में करने के लिए कोई टेक्निक नहीं होता था। ये प्रोफेसर वित्रिक जो है उन्होंने प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन स्ट्रक्चर निकालने के लिए एनएमआर यूज करके उसका मेथड निकाल दिया, तो उस समय उसमें मैंने काम किया था, तो उनको भी नोबेल प्राइज मिल गया 2002 में, उनको भी नोबेल प्राइज मिल गया था। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जिस दोनों के साथ मैंने काम किया वो दोनों को नोबेल प्राइज मिल गया बाद में। फिर मैं आके TIFR में एनएमआर रिसर्च शुरू किया, उसी समय TIFR ऑल्सो अक्वायर ए हाई फील्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, वो 500 मेगाहर्ट्ज करके एक स्पेक्ट्रोमीटर उन्होंने खरीदा था। उस समय इंडिया में वही एक स्पेक्ट्रोमीटर था, बड़ा हाई फील्ड स्पेक्ट्रोमीटर का वही एक था, तो TIFR ने अक्वायर किया था। मैं आके मेरे ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, तो उसको लेके बायो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स ये सब चीजों के ऊपर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और उसके इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया मैंने। तो काफी सारे लोगों को मैंने ट्रेन किया था उस पर, और ये जो हमने इसको नेशनल फैसिलिटी कर दिया था, ये 500 मेगाहर्ट्ज़ एनएमआर दुनिया में, तो दुनिया मतलब इंडिया में एक ही था, दुनिया में और भी थे, इंडिया में एक ही था, तो इसलिए उसको हमने नेशनल फैसिलिटी कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, तो इंडिया से

0: कहीं भी लोग रिसर्च करते होंगे लेकिन उनके पास फैसिलिटीज नहीं है वो यहाँ आके उसको एनएमआर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे। हम उनको मदद करते थे, उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मदद करते थे, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी मदद करते थे। इसलिए ये एक बड़ा सर्विस हो गया, नेशन के लिए एक बड़ा सर्विस हो गया। तो हमने उसके बाद 500 MHz के बाद पहला स्पेक्ट्रोमीटर था, उसके बाद कुछ सालों के बाद हमने और भी एक खरीदा, वहां पर 600 MHz स्पेक्ट्रोमीटर खरीदा, क्योंकि गवर्नमेंट को ये कन्विंस हो गया कि हम अच्छे सर्विस दे रहे हैं, इंडिया के रिसर्चर्स को अच्छे सर्विस दे रहे हैं। 600 MHz खरीदने के लिए भी उन्होंने पैसे दे दिया था। तो उस समय 600 MHz के लिए 10 करोड़ पैसा लगता था, 10 करोड़ रुपये। तो हमने उसको खरीदा, फिर भी उसी को नेशनल फैसिलिटी को बनाया था। तो ऐसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया तो दुनिया में और भी बड़े बड़े स्पेक्ट्रोमीटर आने लगे। वो 600 MHz आ गया, उसके बाद 700 MHz आ गया, 800 MHz आ गया। तो हमने 2003 में ये उनको भी हमने अक्वायर किया ये फैसिलिटी में, बिकॉज नेशनल फैसिलिटी था ना उस समय। 800 MHz स्पेक्ट्रोमीटर खरीदने के लिए और एक सॉलिड स्टेट NMR स्पेक्ट्रोमीटर खरीदने के लिए 22 करोड़ का खर्चा करना पड़ता था। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल आसानी से सपोर्ट कर दिया। जैसे रोके यू आर डूइंग सो वेल विथ रिगार्ड टू द नेशन नेशनल सर्विस, इट हैज टू बी इन दिस प्लेस ओनली, दे कैन नॉट बी एनीवेयर एल्स, इट हैज टू बी इन दिस प्लेस ओनली। तो उन्होंने पैसे दे दिया। तीन तीन डिपार्टमेंट, डीएस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री, तीनों आके मिलके हमें पैसे दे दिया, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनोलॉजी। तो ये 22 करोड़ का उस समय, ये देखिए 2003 में ये सब स्पेक्ट्रोमीटर्स आ गए और उसका यूसेज बढ़ता रहा। हमने उसके ऊपर रिसर्च भी करते रहे, अलग अलग नया मेथड्स निकलते गए, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, इंटरैक्शन करते गए। तो ये बड़ा अजीब सा फैसिलिटी बन गया था इंडिया में। और उसके साथ जैसे जैसे इसका महत्व लोगों को समझ आने लगा, और हमने भी इसके लिए बहुत कोशिश की कि हम इंडिया के अलग अलग जगह में जाके वर्कशॉप करते थे, NMR वर्कशॉप्स कर रहे थे। तो दुनिया के, इंडिया के हर कोने में, कभी नॉर्थ में जाओ, कभी साउथ में जाओ, कभी ईस्ट में जाओ, कभी वेस्ट में जाओ, सब जगह जाके हम वर्कशॉप करते थे। हर वर्कशॉप में तो 100-100 लोग, बच्चे आते थे, रिसर्चर्स भी आते थे, उनको सिखाना था ये NMR का वैल्यू क्या है, इसका कितना महत्वपूर्ण रिसर्च कर सकते हैं उसके साथ। ये सब हमने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लिया था और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अभी ये अभी चलता रहा, अभी भी चलता रहता है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता रहता है हम उसको अपडेट करते रहते हैं लोगों को, तो वो फैसिलिटीज का भी बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए नेशनल फैसिलिटी TFR में जो है, अभी पिछले साल में उसके साथ जो लोग उसको यूज करने के लिए आते थे, हम उनको कहते थे देखो भाई इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पैसे देना पड़ेगा। क्यों पैसे देना पड़ेगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सीरियस हो, अगर सीरियस नहीं हो तो हम उसको इस्तेमाल करना नहीं थे, क्योंकि और लोग भी हैं जिसके लिए उनको जरूरी है। तुम उसके सीरियस हो, कितना सीरियस हो वो हम देखना चाहते हैं। तुम्हारे प्रोजेक्ट अगर अच्छा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम चार्ज नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट अच्छा है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम दे सकते हो। और काफी इंडस्ट्रीज भी उसके यूज करने लगेंगे। अभी तो पिछले साल में अभी ऐसा चल रहा है, वो तो हर साल में दे एक्चुअली अर्न एटलीस्ट समथिंग लाइक अबाउट 70-75 लाख। तो लोगों को, लोग इतने उसका यूज करने के लिए आ जाते हैं, उनका मदद मिल जाता है, एनालिसिस में मदद मिल जाता है। सो इसका पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गया, इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी भी बढ़ गया। तो हम बाहर से भी लोगों को बुलाते थे वर्कशॉप करने के लिए, वहां से भी लेक्चर्स अरेंज करते थे। तो इसलिए इनकम वैल्यू काफी बढ़ गया है। तो सो दैट वाज ए नेशनल सर्विस। तो हमने उसके बाद तो हम कभी बाहर बहुत देर के लिए कभी बाहर गए ही, इंडिया में और कॉन्फ्रेंस के लिए जाते थे, कॉन्फ्रेंस में अपना काम प्रेजेंट करते थे और वहां के लोगों को बुला के यहीं पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते थे, वहां से लोगों को काम करवाते थे। तो इसलिए यहाँ का रेपुटेशन काफी बढ़ गया, नेशनल फैसिलिटी का रेपुटेशन काफी बढ़ गया। तो इसके वजह से हमने एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है NMR के लिए। उसको हमने इंडिया को 2 बार लेके आए। क्यों लेके आए इंडिया में? क्योंकि हमारे बच्चे तो वहां नहीं जा सकते, उसके जाने के लिए पैसे बहुत चाहिए। वहां तो रजिस्ट्रेशन फी बहुत होता है, ट्रेवल का पैसा बहुत होता है, वहां रहने के लिए काफी महंगा हो जाता है, तो वहां कैसे जाएंगे? तो इसलिए हमने सोचा था तो वही कॉन्फ्रेंस को ही हम यहाँ ले आएंगे। तो इसलिए हम दो एक्चुअली तीन बार लेके आए थे, 1980 पे एक बार ले आए थे, 1984 में ले आए थे, 2004 में ले आए थे, और एक बायोफिजिक्स कांग्रेस करके कॉन्फ्रेंस होता था वो, उसमें एनएमआर, सिर्फ एनएमआर ही नहीं, क्रिस्टलोग्राफी, बाकी सब बायोफिजिकल रिसर्च जो होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इंटरैक्शन, ये बायोफिजिक्स कांग्रेस का ये इससे भी बड़ा कॉन्फ्रेंस है, हमने उसको भी ले आया, उसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था 1999 में। तो इस तरह हमारा मेहनत तो लोगों को सर्विस देने का, अपने रिसर्च को बढ़ाने का, ये हमेशा रहा। सो दैट वॉज ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन दैट वन। एंड उसके साथ साथ हमने सोचा कि एजुकेशन सिस्टम्स को भी बढ़ावा देना है। तो एजुकेशन सिस्टम कैसे बढ़ावा देना है, तो अभी एजुकेशन सिस्टम तो कोई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में अच्छी तरह से एजुकेशन होता है, समझो कि IITs में होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होता है, और आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का भी एक नया इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, तो 4-5 इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, तो इससे इससे बच्चे लोग वहाँ पे आते हैं, उसका रिसर्च पढ़ाई अच्छा होता है, लेकिन ये लिमिटेड हो जाता है ना, लिमिटेड हो जाता है, कितने बच्चों को ले लेंगे एक नया इंस्टीट्यूशन करने के लिए, वो तो 1000 लेंगे, 2000 लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ 700 यूनिवर्सिटीज हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहीं से आते हैं, उनका एजुकेशन कैसे इंप्रूव करोगे। तो एंड देयर फॉर वॉट वी थॉट, दिस वॉज द इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एज दे सेड ओके लेट अस हैव एन इंस्टीट्यूशन in the university campus which has the same mandate as this Indian Institute of Science Education and Research. ISER jo bolte hai na, Indian Institute of Science Education and Research, wo ek institution establish karne ke liye 1000 crore ka paisa lagta hai, kyunki pura infrastructure establish karna hai, lekin universities mein infrastructure to already hai, to usko hi tum use karo, baki nearby institution se teachers ko invite karo padhane ke liye, aur iska kharcha kitna hota hai, hame ye institution establish kiya Mumbai University mein, इट इज कॉल्ड UMDA सेंटर फॉर एक्सलेंस इन बेसिक साइंसेज, इतना 5 साल का खर्चा सिर्फ 50 करोड़, तो और कितने हम कितने बच्चे को पढ़ाते थे, ऐसे ही उसी तरह का मैंडेट, उसी तरह का क्वालिटी हम जनरेट करते थे बच्चों का, ये काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था इसका। तो ये हमने सिलेबस तैयार किया उसका पढ़ाने के लिए, लेटेस्ट सिलेबस, सो दैट दे रिमेन अप टू डेट, एंड इट इज क्वाइट फ्लेक्सीबिलिटी इन दैट वन इन द सिलेबस, एंड वी ऑल्सो गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, even abroad they come and taught at this place, and I happened to be the director of that place, I became the director of that center for excellence in basic sciences, uska main 8 saal tak director raha, so 2009 se 2017 tak main uska director raha, to us samay wo autonomous institution ban gaya, department of atomic energy se usko paise milne laga, and university se unko degree milta tha sab bachchon ko, and university was a participation enthusiastically participating in this center, so that became a role model for other universities to follow, so there are many universities can establish this kind of a center with much less investment, so overall across the country the education system can improve, that was the idea, it is still growing on, it is going now, developing very well, many universities are approaching to establish such kind of a centers. So it need not be always the Department of Atomic Energy, some other department of state and government can also fund it. Raipur University started this after us, and they, we went and taught there how to establish the institution, and they came to Center for Excellence in Basic Sciences to teach this thing. At the same time, my research was continued here. I was having both the appointments, I was having both the appointments, the director here and also with the senior professor at Tata Institute of Fundamental Research. So I had actually guided about 23 PhD students and about the same number of postdoctoral students, and we published together nearly 250 research articles, and all this was going parallelly, use the facilities in TIFR, education system in CBS to improve the quality of education in the university system, higher education system. So all of this was actually received very well. And ultimately, it resulted in my Padma Shri from the President of India in 2014. So I continue to do that. Now I retired from TIFR in 2018 as a researcher, as a senior professor. But I continue to be associated with IIT Bombay as distinguished visiting professor. And I interact with the PhD students of one of the departments. And my students have occupied professorial positions in many places in the country. including the IITs and the ICERs and many places, there are at least 8 to 10 students who are now faculty positions, professors in all of these places. And therefore, I have a good rapport with all of these institutions and their facilities, and I can guide those students. And that thing is what I am enjoying now. So recently a book was published. You may not be aware of this one. Just last month it has appeared. Somebody has published a book called 100 Great IITians Dedicated to the Service of the Nation. And it turns out that I am one of those 100 IITians. And this includes names like Narayan Murthy, Nandan Nilekani, Subba Rao, the governor of RBI, governor former, Sri Kumar Banerjee, Atomic Energy Chairman, and there are several others. So therefore, it is a matter of pride that we have served the nation in the best possible manner. And the title of the book says, those who were not lured by the invitations from other countries to go there and dedicated the service to the nation. And that is so they picked up on that basis. So I was very happy to see that. That recognition has come for the services we have delivered, the research we have performed, and educating the various students, the PhD students, and bringing them back to the country, bringing them back to the country to serve in the nation. So therefore, I think overall, it has been a very satisfying experience. Institution building, national service, educating the student, generating manpower, quality manpower in the country. So that has been the story, and I continue to do research with these students and faculty in IIT Bombay. And I continue to teach at the Center for Excellence in Basic Sciences in the University of Mumbai campus. So that is in short my story till now.
1: It is definitely one of the most inspiring stories that we have heard. But coming back to your initial part of your story, जब आपकी कहानी शुरू हुई, आपके बचपन में क्या शुरू से ही आप खोजी प्रवृत्ति के थे या विज्ञान के प्रति आपका रुझान शुरू से था? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हमारे श्रोताओं में कई ऐसे लोग भी होंगे जो कि विज्ञान को बहुत कठिन मानते हैं, कई ऐसे बच्चे या युवा भी सुन रहे होंगे जिनको विज्ञान गणित इन सब से थोड़ा सा बुखार आता है क्योंकि थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप अगर अपने बचपन की उस रुझान के बारे में हमारे साथ शेयर करें जिससे लगे कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है।
0: वही ये दो चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पर। पहले तो मेरा बेसिक साइंसेस में मेरा इंटरेस्ट शुरू से भी था, ओ, विज्ञान का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी था इसके अंदर। मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो मेरे ग्रैंडपा दे ही वाज एक्चुअली ग्रेट स्कॉलर एंड इन दैट फैमिली माय मदर दे वर ऑल ग्रेट स्कॉलर्स इन देयर स्कूल्स एंड सो देयरफॉर बेसिक इंटरेक्ट इन प्योर साइंस वाज ऑलवेज देयर दैट वाज नंबर वन दैट वी वांटेड टू एक्सेल इन दैट इवन फ्रॉम द स्कूल डेज इटसेल्फ आई हैड दिस ड्रीम दैट आई विल कंट्रीब्यूट बीइंग इन इंडिया इन प्योर साइंस दैट वाज माय ड्रीम एंड सेकंड ऑफ कोर्स देयर वाज अनदर फैक्टर Another factor was that I would not dream to go into streams such as engineering and medical fields, other fields, because they were expensive. Our resources did not permit that. So wherever I went with scholarships only, whether I was doing BSc, and in fact, as I told you, after the 10th standard, I got the national scholarship, and that is given only for pure science. It was not given for anything else. If you go to engineering field, that scholarship will not be available. And so therefore, I chose pure science for financial reasons as well. Also my interest. So it matched with my interest. And I got the scholarship from IIT Bombay as well. Then unka bhi merit kam means scholarship tha. Usme free ship mil gaya mujhe aur ye scholarship bhi tha. Therefore, it became easier for me to navigate through the courses. And pursue my interest.
1: लेकिन उन लोगों का क्या जिनको मान लीजिए स्कॉलरशिप नहीं मिलता, क्योंकि आप भी जब स्कॉलरशिप फाइट कर रहे थे तो मे बी आप वो चुने हुए 10-15 लोगों में होंगे जिनको स्कॉलरशिप मिला, बाकी के जो लोग हैं जिनको नहीं मिला है, उनके अंदर ये जज्बा प्योर साइंस को लेकर के, विज्ञान को लेकर के कि उसमें रुचि बनी रहे, उसके लिए क्या बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, कैसे हम हमारे को प्रिपेयर करें कि विज्ञान हमारी छूट ना जाए या विज्ञान हमें भारी ना लगे।
0: इसके लिए एजुकेशन के महत्व बहुत बढ़ जाता है। एजुकेशन किस तरह तुम आप पढ़ाओगे बच्चों को, यू हैव टू जनरेट इंटरेस्ट इन देम। generate interest in interest in science in those students. The creativity, see, the ye unko sochana chahiye, samajh mein aana chahiye, the without creativity, without inventions, you cannot progress. The technology is an outcome of pure science. Creativity comes from pure science. So therefore, this creativity has to be imbibed into the minds of the students. And for that, teaching is very efficient. Teaching in a way that they get attracted towards that is very important. And that we made it a point, even the CBS, Center for Excellence in Basic Sciences, we got therefore the best of the teachers. But the best of the teachers, and all of them, all the students actually are pursuing PhD. After those, not many have gone into other fields. Everybody is pursuing PhD in pure science, either physics or chemistry or biology. उसमें जा रहे थे. आज तो कंप्यूटर साइंस में भी कभी कभी चले जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आते हैं कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं, अल्गोरिथम्स डेवलपमेंट करना है तो वहां भी आ जाते हैं. सो विच इज ओके, दिस इज ऑल्सो प्योर साइंस. हाउएवर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट ओनली दोज हु आर डीपली इंटरेस्टेड इन दोज फील्ड्स परस्यू दैट फील्ड्स. यू शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन समबडी हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, देन ही विल नॉट परफॉर्म वेल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे एक्सेल, दे एक्सेल इन देयर एक्टिविटीज. तो जबरदस्ती किसी को तो हम उसको बुला के लेके आए तो काम नहीं करेगा, तो फायदा नहीं होगा. ही विल बी अ फेल्यूअर एंड इट विल बी अ फेल्यूअर फॉर द सिस्टम एज वेल. सो देयरफॉर वी हैव टू नर्चर विद गुड एजुकेशन, इम्प्रेस अपॉन देम दैट ओके यू हैव द टैलेंट. एंड ऑफ कोर्स ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट द सेम, देयर इज सर्टेनली अ ग्रेडेशन, देयर इज अ ग्रेडेशन इन द इंटेलेक्चुअल लेवल्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स. एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ. Somebody may be good in painting, somebody may be good in doing science, somebody may be good in music, somebody may be good in something else. So we need to nurture their talents, intrinsic talents. Jo hai har ek ko kisi na kisi cheez mein ek acha acha talent ho jata hai, and we have to nurture, we have to identify that and nurture that. To jinko pure science mein interest hai to unko identify karke aur to nurture that. That only a good teacher can do. A person who is well experienced in teaching, he can do it. He can identify the person. Therefore, it is very important to get good teachers. A teaching profession still salary ke liye nahi hona chahiye. It is not just as another job for salary. Filler nahi hona chahiye. It should be the deep interest. And this is why I always followed that whether or not there are enough students to take a course, I would teach. I have taught courses even for two students. Those two students who are deeply interested, I have taken a course for them. Because I know they are very good. And they will excel. And I can also tell you the story of Professor S. Chandrasekhar, who was a well-known astrophysicist. He got the Nobel Prize in physics. And he used to travel few hundred kilometers to teach two students astrophysics. Only two students. And both of these students won Nobel Prizes. Even before he won, for that matter. So, therefore, the good teaching is very important. The teacher has a very important role to play in the society. It is not just another job. It is not just another job like anything else. Okay, it has to inculcate, generate interest in the minds of the students to pursue that matter further and invent new things, create new things. Unless you create new things, you cannot become Atmanirbhar. If you follow somebody else, you will always be a follower. You have to create new things and you have to become the leader. Once you become the leader, then of course others will follow. In fact, thousands of years ago, India was the leader. India was the leader. Rao Raji Japam kehte the, us samay to Nalanda, Takshashila, these universities, these were the leaders. People used to come from other countries to learn here. And we have to bring that situation back. So we have to have good quality teachers, emphasize on the quality of the teaching and generate interest in the minds of the students, but don't force on them if they are not interested. You identify where they are interested. He can be a great painter also. Okay, why? Nothing wrong in that. He can be a great musician. Okay, a great an economist. Okay, so he can be a great builder, designer. So all of these are equally important. All of them are important. You nurture the talent where they are good at. And then of course you pursue that, encourage them in doing so. Then you will produce an overall developed society. To society ke liye sab cheeze chahiye, economics bhi chahiye, financial management chahiye, aur societal development chahiye, social service ka philosophy chahiye, all of these are required commitment. So therefore, if you give an overall development in that manner, nurture all of this, the country will grow. And that is a kind of a national service. That is a service to the nation.
1: एंड इसीलिए शायद आपको और इसीलिए शायद जो 100 चुने हुए IITians हैं जिनको उस किताब में दर्ज किया गया उनमें से एक आप हैं. आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट द रोल ऑफ अ टीचर इज इन नेशन बिल्डिंग. देश को बनाने में, एक व्यक्ति को गढ़ने में एक शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है ये तो आपने बताया. लेकिन यहाँ बात आती है कि चाहे शिक्षक कितना भी कोशिश कर ले किसी स्टूडेंट को अच्छा बनाने में, कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा स्टूडेंट कई बार बाहर के प्रलोभन में आ जाता है, या जैसे आपने बताया कि दे कैन बी अल्यूरमेंट्स वेयर यू कैन बी शिफ्ट फ्रॉम योर ओन फोकस. आप अपने देश, अपने समाज और अपने आसपास के जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करके कहीं दूर चले जाते हैं just because you want some more money or a different lifestyle.
0: Correct.
1: तो इस प्रकार का जो ब्रेन ड्रेनेज होता है इसको रोकने के लिए या इससे आपने खुद को कैसे बचाया? Because मैं समझता हूँ आपको आपके यूथ में जब आप नए थे अपने प्रोफेशन में आपको बहुत इन्विटेशन आए होंगे विदेश से.
0: Yes.
1: दो साल आपने वहाँ पढ़ाई किया, उस समय भी आप वहाँ रुकने के लिए बहुत सारे ऑफर मिले होंगे,
0: इंडिया में रह के करना था, जो भी करना यहीं से करना था. दैट इज तो इसके लिए मतलब कोई उसको एक्सेप्ट करने का कोई सवाल ही नहीं था. व्हाट एवर आई हैड टू डू आई हैव टू डू इट फ्रॉम विद इन द कंट्री. दिस वॉज माई कमिटमेंट इन हार्ट. द सेकेंड थिंग इज द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो हैज टू एम्फसाइज ऑन वैल्यूज. The value-based education is also required. And this is where some amount of spirituality treatment is required. Education is required. मुझे तो ये भी तो शुरू से ही मिला था. Spirituality and science, they should not be separated. Or spirituality in life. In fact, मैंने एक बार Mount Toba में lecture भी दिया था. Spirituality in life. उसके बारे में lecture दिया था मैं Mount Toba में. तो spirituality is important because it tells you what are your values. What are your responsibilities. ओके, व्हाट आर योर डूज एंड डोंट्स. कर्तव्य क्या है तुम्हारा और ये इस भूमि ने तुमको इतना सहारा दे दिया है, उसको छोड़ के कैसे जाओगे? उसके लिए तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. तो और तुम्हारे कल्चर जो होता है, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग लोग, बड़ों लोग, इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रखना है, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, ये सब तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये भी एजुकेशन देना चाहिए. ये एजुकेशन देने के लिए हमारे कल्चरल टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट बुक्स फीचर्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनका भी पढ़ाई होना चाहिए. तो वैल्यू सिस्टम हैज टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. इसलिए मैंने अभी एक किताब पब्लिश किया हूँ, दूसरा किताब भी पब्लिश कर रहा हूँ. इट्स द टाइटल ऑफ द बुक इज व्हेन साइंस मीट्स स्पिरिचुअलिटी. अभी एक बुक पब्लिश हो रहा है, अभी एक महीने के अंदर एंड में वो पब्लिश हो जाएगा. और दूसरा भी मैंने एक किताब लिखा है, वो भी पब्लिश हो जाएगा. दिस बुक्स टाइटल इज तेन बिना तृणमपि न चलति. इसके लिए संस्कृत के एजुकेशन चाहिए थोड़ा सा. तेन बिना तृणमपि न चलति. तो उसके भगवान के सपोर्ट के बिना कोई काम नहीं चलेगा. उसके अनुग्रह से, उसके आशीर्वाद से ही, ब्लेसिंग से सब चलेगा. तो इसके लिए साइंस लोगों को, बच्चे, छोटे छोटे यूथ को क्या होता है, भगवान के क्यों चाहिए, भगवान की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अपने आप चलता है, इस तरह का माइंड सेट होता है. उनको समझ में नहीं आता है कि उनके बिना ये नहीं चलता है, वो समझ में नहीं आता. उसको दिखाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा. तो यही मैंने ये किताबों में दिखाया. कैसे दिखाया, मतलब एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको. सिंस आई एम द साइंस बेस्ड स्टूडेंट, आई नो दिस फिलॉसफी इज हाउ इट इज. हमारे तो साइंस में क्या कहते हैं, दुनिया कैसे शुरू हो गया, एक बिग बैंग से शुरू हो गया. बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग से शुरू हो गया. एंड व्हाट वाज बिफोर द बिग बैंग, कोई नहीं जानता. और बिग बैंग वाज स्टार्टेड फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट. सिंगल पॉइंट, how was that infinite amount of energy which was concentrated in this point, single point, where did this energy come from, what is the source of this energy, kisi ke uske paas answer nahi hai. And secondly, when the big bang occurred, the energy which was there, it started, the system started cooling, then the materials were formed, the materials
1: and the planets were formed,
0: and the planets and the stars and the galaxies, yeah. Everything formed. Where did this material come from? And then there are laws, a lot of gravitation is there. And the gravitation law says it is always attractive. I say, why should it be attractive? Why is it not repulsive? Planetary motions is dependent on this gravitational law. There is a along with that there is gravitational attraction. It is because of that you have the stability system, dynamic stability of the gravitation of the planetary system. Now where

0: this law come from?
1: To generate an order. This means there is a great order in the universe. Enormous amount of order, which is immaculate, cannot be violated at all. I asked also, why is that the positive and the negative charges attract each other? And why the positive charges repel each other? What is charge in the first place? Why did the electron get the negative charge? Why did the proton get the positive charge?
2: बेसिकली आपने साइंस के जितने भी मूलभूत सिद्धांत है सबके आगे वाई जोड़ करके सबको चुप करा दिया.
1: हाँ, क्योंकि उसके पास आंसर नहीं है. तो अगर समझो कि हमने काफी कुछ हमने एडवांस किया है. हमने वो के इन विट्रो फर्टिलेशन करके डॉली को भी तैयार किया, मून पे गया, मार्स पे गया, ठीक है. कैन साइंस गारंटी दैट एवरीथिंग यू थिंक विल बी परफेक्ट? कैन इट बी परफेक्ट? कैन साइंस गारंटी यू दैट यू विल बी ऑलवेज हैप्पी? Can science guarantee you that you will be able to generate a system where you can be disease free? The human being is disease free? Can we understand all of this? There are limitations of this. Therefore,
2: just
1: this
2: for example, when you are saying this, something comes to my mind. जब आप ये बोल रहे हैं कि लोगों को ये research करके लोगों ने पता लगा लिया कि जब कोई व्यक्ति खुश होता है, when they are happy, तो endorphin ज्यादा है या फलाना हार्मोन ज्यादा है, फलाना हार्मोन कम है, etc. etc. लेकिन अगर सेम चीज को बैक ट्रैक किया जाए, अगर आप किसी में एंडोर्फिन को बढ़ा दो, यू नो लाइक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म, दैट डजंट गारंटी कि व्यक्ति खुश हो जाए या उन हार्मोन मिलाने से व्यक्ति खुश हो जाएगा. ऐसा नहीं है. खुशी के वजह से इन हार्मोन्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट इन हार्मोन्स की वजह से खुशी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं है.
1: तो ये बिल्कुल
2: जो ये सोच है, ये सोच मैं समझता हूँ कि हमारे प्रेजेंट जनरेशन में या पास्ट के भी जनरेशन में कई विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों में नहीं रही. उनको नहीं ऐसा लगता है विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है. इसलिए विज्ञान में जिन चीजों का जवाब नहीं है उन चीजों को वो सच नहीं मानते. विज्ञान जो है अध्यात्म को लेकर के कुछ कहता नहीं है तो वो अध्यात्म को नहीं मानते. विज्ञान जो है वो मान लीजिए ईश्वर या वैल्यूज, प्रेम, शांति, इन सब चीजों के बारे में विज्ञान कुछ नहीं कहता तो वो इन चीजों पर भी ध्यान नहीं देते.
1: Yes.
2: तो ऐसे में आप अपने स्टूडेंट्स जो यंग स्टूडेंट्स को आप आज पढ़ा रहे हैं, जिनको कि बाहर से बहुत सारा इनविटेशन आता होगा या जिनके पास बहुत सारा मोटिवेशन होगा चले जाने का, उनको आप कौन से वैल्यूज से यहाँ जोड़ के रखने का प्रयास कर सकते हैं?
1: तो वही तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ूंगा जिसमें तुम्हारे मेरे दूसरे बुक में जो है, तो हाउ टू कन्विंस दिस यूथ, यंगर पीपल, दैट द you have to accept the existence of a superpower. Tenevina trinamapina chalati, this means there is a superpower. This is without which, I will ask this question. What is the source of the infinite energy at the time of the Big Bang? And how was that condensed in an infinitesimally small space? What caused the Big Bang to occur? What initiated the formation of different particles with the different intrinsic properties? Is there a design? How did the most fundamental particles, namely quarks, get their charge and spin? The different types of quarks have these properties to different extent. How did the electron get a negative charge and a spin? Why do the charges repel each other? Why do like charges repel each other and opposite charges attract each other? Why is the gravitational force always attractive and follows the law as stated above, inverse square law? How did the laws of interaction emerge? So there is a design. This design requires intelligence. The human beings were not there when the planetary system was created. Therefore, intelligence cannot be presumed. It has to be there always. It has to be there before. Therefore, you have to accept that there is an intelligent being behind this. And now you start asking question, how do we understand this intelligent being? To understand the intelligent being, you have to go through the scriptures because he is beyond experimentation. He is beyond the reach of experiments because he is superpower. So he is beyond you. Therefore, you cannot reach him by experimentation. He has to be reached by the scripts which are blemish-free. Are the blemish-free, therefore you have to go into those scriptures like the Vedas and the Puranas and the Bhagavad Gita. You have to go into such kind of scriptures which are blemish-free.
2: I mean scriptures that are core. Matlab, aise granth ya aise Upanishad ya Ved, jin mein kisi dharm ka ya kisi prakar ke religion ka koi sarokar nahi hai, jo apne aap mein purna hai.
1: बिल्कुल बिल्कुल. सी दिस इज व्हाई आई सेड दिस इज ऑर्डर. धर्म अधर्म इज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन. धर्म अधर्म इज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी. इज नथिंग टू डू विद रिलीजन. इट इज अ स्टाइल ऑफ लिविंग. हाउ डू यू लिव? दो भगवद गीता इज एक्चुअली साइंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. इट इज अ साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन वन साइड एंड इट इज ऑल्सो indicating to you what are your limitations. Lord Krishna says in that one, you understand your limitations. You also understand your duties and the responsibilities. You have to understand that. So a particular action become dharma under a particular situation can become adharma under some other situation. So therefore, to understand what is dharma is also very delicate. So it is dependent on the situation. You have to understand that situation properly and see what is the right thing to do. And all this education, that's why I said the value-based education also has to be there. Therefore, I also wrote an article sometime back, which is called as Holistic Education and Research. That is, holistic education must include professional education as well as spiritual education. Both are required. This, both have to go hand in hand.
2: This combination that you mentioned, ek sarvangin shikshan pranali mein, adhyatmik bhi hona chahiye aur wo practical bhi hona chahiye, matlab jo jeevan se juda hua ho, saath hi saath wo research ya shanshodhan ya shodhan se bhi juda hua hona chahiye. Ye jo balance hai, क्या ये बैलेंस आपको आज के हमारे शिक्षण प्रणाली में दिखता है? और अगर नहीं,
1: दिखता है, तो नहीं दिखता है, वो लाना है, वो नहीं दिखता है. इनफैक्ट दिस इज एन इम्पोर्टेंट चैलेंज अभी उनको ले आने में. अभी पीपल शन टू रीड ऑल ऑफ दिस स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट. अरे क्यों भगवत गीता पढ़ना है, क्यों, क्या फायदा है उसका? इस तरह के दिमाग में चलता है लोगों के दिमाग में. और क्यों ये स्क्रिप्ट पढ़ना, लेकिन उनको समझ ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं कभी भी, तो कैसे पता चलेगा? तो कोई सिखाने वाला चाहिए उसको, वो तो सिलेबस में उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए. स्कूल से ही शुरू करना चाहिए, सिर्फ कॉलेज में नहीं, स्कूल में ही शुरू करना चाहिए. जब स्कूल से शुरू करेंगे, then it get imprinted deeply on the minds. उसके बाद
2: मुझे याद आता है, जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो हमारे कोर्स में कंपलसरी महाभारत, रामायण, कई काव्य रचनाएं जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान या मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, ये सब कंपलसरी होता था. हाँ. और भले इनका रेगुलर डे टू डे लाइफ में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं भी हो, लेकिन फिर भी ये पढ़ना हमको कंपलसरी होता था. मैं कुछ दिन पहले ही एक और यशस्वी भारत के एपिसोड में बातचीत कर रहा था डॉक्टर शरद काले जी से, जिनको आप भी जानते होंगे.
1: तो
2: उन्होंने भी बोला कि कितनी कहानियां, कितनी किताबें, कितने पोएम्स जो हैं, कविताएं जो हैं, आज के बच्चे जानते ही नहीं, क्योंकि वो सिलेबस से निकाल दिया है. डे टू डे लाइफ में कोई प्रैक्टिकल ऐसा कनेक्शन नहीं.
1: जी.
2: मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे, आपने कौन सा ऐसा किताब पढ़ा या आपके सिलेबस में से कौन सी ऐसी कहानी या कविता थी जो आपको आपके आज के जीवन में खींच करके लेके आए? देयर इज द कनेक्शन बिटवीन दैट स्टोरी और दैट एपिसोड ऑफ योर लाइफ टू योर प्रेजेंट डे.
1: मेरा तो शुरू से ही संस्कृत में इंटरेस्ट था. शुरू में हमारे फैमिली संस्कृत का इंटरेस्ट था, तो संस्कृत का किताब पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं था, अभी भी नहीं. तो मैं संस्कृत आराम से पढ़ सकता हूँ. तो काफी शास्त्र पाठों का मैं शुरू से ही पढ़ा. मेरे ग्रैंडफादर हैज टॉट मी लॉट ऑफ दिस थिंग्स. वहां से हमने शुरू किया था. और वो जब हम ये महाभारत, रामायण, पुराण पढ़ते थे, उसका वैल्यू निकालते थे हमेशा. इसके देर इज ए वैल्यू देर, देर इज ए वैल्यू सिस्टम इन ऑल. दे आर नॉट जस्ट कहानी, दे आर देर, but there is a value in each one of those.
2: मतलब सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद उसमें क्या गुण है,
1: गुण है, अंडरस्टैंड करना.
2: ओके.
1: अभी भी मैं उसको, वो गुण को मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ. अपने बच्चों को मैं सिर्फ, नॉट ओनली माय डायरेक्ट चिल्ड्रन बट आल्सो द स्टूडेंट्स, आल्सो द स्टूडेंट. इनफैक्ट दैट हैज हेल्प्ड सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स टू बिकम स्ट्रेस फ्री. वो काफी स्ट्रेस हो जाते थे, कुछ काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. तो मैंने कहा, देखो भाई, तुम्हारा कर्तव्य है काम करना है. तुम्हारा कहते फल तुम्हारे हाथ में नहीं है. कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि. तुम्हारा कर्म, काम करना है तुम्हारा ड्यूटी है. वो फल तुम्हारे हाथ में नहीं है. फल देने वाला पर वाला होता है, भगवान होता है. जब भी तुम्हारा इच्छा उनका इच्छा एक हो जाते हैं, तब वो ठीक हो जाता है. तो उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा. इसके लिए संस्कार भी काम होता है. देयर इज ए संस्कार आल्सो. यू विल हैव टू सी व्हाट यू कैरी फ्रॉम योर प्रीवियस जन्म. द संस्कार कम्स एंड एक्चुअली अकॉर्डिंगली यू डू योर कर्म. एंड व्हेन यू डू दैट यू विल गेट रिजल्ट. बट हैव पेशेंस एंड बट यू डू योर ड्यूटी. ऐसा मत बोलो कि वो कुछ नहीं दे रहा है मुझे, उसको उसके ऊपर कुछ विश्वास नहीं है. ऐसा नहीं, वो कहीं नहीं चलेगा. वो तुम्हें, उसको तुम्हारे लिए से क्या लेना देना है. तुम्हारा जो कर्म है उसी के हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा. तो उसकी वजह से तुम्हें उसको यू हैव टू कीप ट्राइंग

0: आयसर भोपाल। तो सब लोग कह रहे थे तुम आ जाओगे तो पोस्ट तुम्हारे लिए है, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मैं आ नहीं पाया, तो कॉन्फ्रेंस तभी गया था मैं अमेरिका के लिए, कॉन्फ्रेंस में गया था। सो देयरफॉर आई कैन नॉट कम बैक। आई सेड, आई टोल्ड देम, लुक, आई विल, व्हेन आई कम बैक आई विल कम एंड अटेंड फॉर द इंटरव्यू एंड, बट दे सेड ओके नो वी कैन नॉट वेट, दे अपॉइंटेड समबडी एल्स। के ठीक है, आई सेड ऑल राइट, समबडी यू अपॉइंटेड। सो व्हाट हैपेंड इन देन, व्हेन आई केम बैक इन 2007 टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, इट टर्न्ड आउट दैट माय वाइफ गॉट कैंसर। ओके, just remember, just notice down, just in the 2010, my wife got cancer. If I had gone to Bhopal, I would not have been able to attend to her as well as I could do in being in Bombay. And then what happened in 2009, I became the director of Center for Excellence in Basic Sciences. It is the same as I, sir. So, wo bhi ho gaya, ye bhi ho gaya. तो इनका भी देख, उस समय तो थोड़ा सा दुख हो गया होगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है, तो कोई और, कुछ और आने वाला है, ये मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो गया। सो आई डिड नॉट फील टू बैड, ओके ठीक है, समथिंग एल्स विल हैपन, उसका ये इच्छा है। तो मुझे डायरेक्टरशिप भी मिल गया, देन आई ऑल्सो कुड टेक केयर ऑफ माई वाइफ। सो देयरफॉर आई टोल्ड देम, लुक, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल, दिस सच थिंग्स विल हैपन ऑल द टाइम। एंड
1: ये जो आपने एक अनुभव सुनाया, ये हमारे सभी श्रोता साथियों को बार बार याद दिलाता है कि कभी भी हताश नहीं होना है, क्योंकि
0: बिल्कुल सही,
1: हमेशा कुछ ना कुछ जो हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है, और अगर कोई चीज हमारे सामने से हट जाती है या हमें नहीं मिलता है तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि कोई दूसरी चीज हमारे लिए इंतजार कर रही है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल
1: तो सही। आपने एक अनुभव सुनाया, ये वाकई में बहुत ही आंखों को खोलने वाला अनुभव है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ प्रोफेसर होसुर, की आपका क्लोनिंग अगर हो सके, अगर हम साइंस में इतना आगे बढ़ जाए कि हम प्रोफेसर रामकृष्ण जी का 100 क्लोन बना ले और उनको हर एक को एक एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट में भेज सके ताकि सारे स्टूडेंट्स का जीवन बदल जाए, तो कितना अच्छा होगा। मुझे ये जानने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही है कि मैं समझता हूँ कभी आपने ये सोच करके शुरुआत नहीं की थी कि मुझे पद्मश्री सम्मान मिलेगा या
0: नहीं, नहीं, नहीं, कभी नहीं,
1: जस्ट शुरू किया। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने जर्नी पे थे, आपके परिवार वालों ने कभी ऐसा आपको कहा कि इंजीनियर बन गए होते तो कम से कम अच्छा था, या डॉक्टर बन गए होते तो थोड़ा इनकम अच्छा होता, या कुछ इस तरीके का कभी आपके तरफ आया प्रॉब्लम?
0: वो एक चीज समझना चाहिए लोगों को, तो मेरे पास इस तरह का प्रेशर तो कभी नहीं था, क्योंकि हम तो वी कुड नॉट हैव अफोर्डेड नंबर वन सेकेंडली, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग जाने से बहुत महंगे वाली चीज थी, और मेरा प्योर साइंस के लिए स्कॉलरशिप था, उसको हम छोड़ नहीं सकते थे, दैट इज नंबर वन। सेकेंडली दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी हैड अ मैसेज इन अवर ओन फैमिली एंड एल्सवेयर दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी कैन नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस, मनी कैन ओनली ब्रिंग यू मिजरीज, बिकॉज इफ यू हैव मोर मनी यू विल हैव टू प्रोटेक्ट इट, पता नहीं कौन तुम्हारा के चोरी कर देगा तुम्हारा, यू विल हैव टू बी मोर केयरफुल, यू विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटिंग योर एनर्जी ऑन प्रोटेक्टिंग इट देन डूइंग समथिंग विच इज मोर कंस्ट्रक्टिव, विच इज बेटर। तो ज्ञान को छोड़ के, तो हमने हमेशा हमने ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चाहिए, मनी बेस्ड इकोनॉमी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर सरस्वती आ गई तो लक्ष्मी भी आ जाएगी, पहले सरस्वती आना चाहिए उसके बाद लक्ष्मी भी आ जाए, तो चलिए लक्ष्मी पीछे जाओगे सरस्वती नहीं आएगी। सो देयरफॉर यू मस्ट डू knowledge based economy, when you do that then automatically you will succeed in other things as well. So therefore this is another message which has to go to the community at large today, that don't go after money alone, because you need money, not that you don't need money, you will need money beyond a certain limit, it does not necessarily bring you happiness, it doesn't bring you happiness, it sometimes can bring you more miseries. That is, you will be always worried how to protect it, where should I invest it, which stock is better, which is that, things like that. All your energy will be concentrated on that. You will start forgetting about your values. बाकी सब छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, और कल्चर को छोड़ देते हैं, सबको छोड़ देते, उसी के पीछे पड़ जाते। So, इस तरह का कल्चरल रेवोल्यूशन आना चाहिए हमारे यहाँ, तो दिस हैज टू गो इन टू द एजुकेशन सिस्टम, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चाहिए, नॉलेज हैज टू बी एम्फेसाइज, एंड द मनी विल फॉलो, वंस यू डू दैट इन्वेंशंस विल हैपन, नेचुरली अदर थिंग्स विल फॉलो।
1: तो दोस्तों, जो रामकृष्ण जी ने हमें बताया कि अगर आप सच में लक्ष्य एक साधते हैं और उस लक्ष्य का जो भाव है वो केवल कल्याण है, तो वो लक्ष्य हमेशा आपके पास वापस से कुछ ऐसी चीजें लेकर के आएगा जिसका आपने कभी उम्मीद नहीं किया।

0: जैसे श्री रामकृष्ण जी के जीवन से अगर हम देखें तो उन्होंने लक्ष्य रखा था देश की प्रगति विज्ञान के माध्यम से उन्हें करना है। इस लक्ष्य ने उनके पास ना केवल वैभव धन संपदा लाया लेकिन साथ में जश भी लेकर के आया। भारत सरकार ने 2014 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। ये उनके इस जज्बे का सम्मान था जिस जज्बे में केवल और केवल देश था। वो चाहते तो कई बार उनके सामने आए हुए कितने ही ऐसे ऑफर्स, कितने ही ऐसे अपॉर्चुनिटीज थे जिनमें वो देश से बाहर जाकर के बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार हर प्रश्न का जवाब केवल एक ही शब्द में दिया, देश पहले। क्या आपके सामने भी ऐसा सवाल आता है और उसमें आप हर बार यही उत्तर देते हैं, देश पहले? ये केवल कारोबार या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ सवाल नहीं दोस्तों, ये सवाल हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कौन सा प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ, मैं रास्ते पे चलते हुए कचरा कहाँ फेंकता हूँ, इन हर चीजों में अगर हम केवल इस बात को जोड़े, क्या इससे मेरे देश को कुछ भला हो रहा है या नुकसान हो रहा है? ये केवल एक पैरामीटर जो है हमारे पूरे जीवन के जीने के तरीके को बदल देगा और देश को भी बदल सकता है। जाते जाते हम प्रोफेसर हसूर जी से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर हसूर, आप अगर आज आपके सामने केवल हमारे रेडियो के श्रोता नहीं, समझिए पूरा भारत देश है, इस
1: जी,
0: पूरे भारत देश को आप क्या एक सुझाव, संदेश, मैसेज देना चाहेंगे?
1: हाँ, फर्स्ट इज कमिटमेंट एंड सेल्फलेस सर्विस। स्वार्थ से कुछ नहीं होगा। अगर स्वार्थ देखोगे कभी भी तुम सर्विस नहीं कर पाओगे। स्वार्थ निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। ऑलवेज यू वांट टू टेक सम रिटर्न इन दैट वन एंड दैट विल नॉट बी द बेस्ट थिंग। एंड दैट दान कभी नहीं होता है। अगर तुम दान करने चाहते हो तो उसके तुम रिटर्न सोच के दान करते हो तो दान कभी नहीं होता है। देयरफॉर स्वार्थ निस्वार्थ कर, सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस एक्शन इफ यू डू, देन इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर यू एंड इट विल ऑलवेज ब्रिंग गुड फॉर द योर सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर द नेशन। एंड वॉट एवर प्रोफेशन यू परस्यू, एवरी प्रोफेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री एंड इन एवरी केस यू ओनली हैव टू एक्सेल एंड सी वॉट बेस्ट यू कैन गिव टू द सोसाइटी फ्रॉम देयर, हाउ टू ब्रिंग इन हार्मनी, पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी फ्रॉम योर वर्क, हाउ वॉट कैन यू गिव टू देम, बिकॉज यूर एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑन द वेरियस पीपल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो स्कूल तैयार करने के लिए बाकी सब बहुत सारे लोगों का पैसा खर्चा हो जाता है, बहुत सारे लोगों की उनको संभालना पड़ता है। सो इट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू गिव इट बैक टू द नेशन एंड देन ओनली द होल कंट्री एज ए होल कैन ग्रो। दैट्स व्हाई वी सेड दैट सेल्फलेस सर्विस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली अवर भगवद गीता ऑल्सो से दैट डोंट एक्सपेक्ट, डोंट डू थिंग्स एक्सपेक्टिंग समथिंग। फलापेक्ष नहीं होना चाहिए। फलापेक्ष के बिना तुम कर्म करोगे तुम उसी का तुम्हें फायदा मिलेगा, उसी को भगवान ये करेगा, उससे प्रीत होगा एंड दैट विल ओनली गिव यू गुड रिजल्ट्स एंड दैट इज अ फंडामेंटल फंडामेंटल रिएक्शन विच वन शुड, एवरीबडी शुड गेट प्रिंसिपल वन शुड फॉलो दैट वंस यू हैव दैट वन, वॉट एवर यू डू विल ऑलवेज बी ए बेनिफिशियल थिंग, ओनली नॉट ओनली फॉर दैट पर्सन बट ऑल्सो फॉर द सोसाइटी।
0: And keeping this message in mind, commitment and selfless service, निस्वार्थ सेवा और तत्परता, ये दोनों चीज अगर हमारे जीवन में बनी है तो सफलता जरूर हाथ आएगी। और केवल खुद के लिए सफलता नहीं बट पूरे अपने समाज के लिए भी एक सफल आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक सवाल पूछना है कि जब आप देश के कोने कोने में जाते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, विदेशों में जाते हैं, कौन सी एक बात आपने नोटिस की है जो भारत को भारत बनाती?
1: अपना कल्चर जो है, एक्चुअली इंट्रिंसिकली अपना कल्चर जो है, दिस इज इनवैल्यूएबल। दिस कल्चर हैड गॉट करोडेड बाय मनी पावर एंड दिस कल्चर इज एवरीबडी अप्रिशिएट दिस अवर कल्चर, एवरीबडी अप्रिशिएट्स द वैल्यू सिस्टम इन अवर कल्चर एंड देन ऑफकोर्स व्हेन इट गोज आफ्टर द मनी देन दे विल स्टार्ट टू फॉरगेट दैट एंड दिस इज समथिंग विच हैज टू बी ब्रॉट बैक। वन हैज टू रिमाइंड द पीपल एवरी नाउ एंड देन that okay, you follow the culture which is valuable and India is known for our culture. The Sanatana Dharma jo hum jo bolte hain and this is something which is, we cannot date it. It is so old and then of course our Ram Rajya jo bolte hain, it is actually based on the Sanatana Dharma, this principle, that kind of a principle. So this is actually recognized by various countries as well and therefore they actually, in order to win over us, they try to impose their पावर एंड थिंग्स लाइक दैट एंड डिस्ट्रॉयड अवर कल्चर। गुरुकुल का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। गुरुकुल में इतने इस तरह का एजुकेशन दिया जाता था कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया जाता था उसको उन्होंने सत्यानाश कर दिया. मेड पीपल द करप्शन स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड मनी पावर बिकेम इम्पोर्टेंट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द होल थिंग गॉट करप्टेड. सी द सिस्टम गॉट करप्टेड. सो व्हाइल इंट्रिंसिकली दे न्यू बट दे वॉन्टेड टू विन ओवर अस बाई डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ दिस रॉन्ग थिंग्स. But now we are rising, our country is rising, and it is important to convince the people, the youth, with this. That's why I am writing these books. मैंने कहा तो मैं ये बुक इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे cultural revolution आना चाहिए हमारे country में. तो ये सब जो पढ़ेंगे तो I, being a scientist myself, I am showing the limitations of science, how far it can go, and what is there beyond it, and you have to see how we can go beyond it. And when you do that, surely we will recover from all of this and go back to our ancient wisdom, which was significant, which was very large.
0: तो भारत को जो भारत बनाती है वो है उसका culture, की सभ्यता,
1: culture,
0: परंपरा.
1: बिल्कुल, yeah.
0: जो संस्कृति है वो भारत को भारत बनाती है, लेकिन इस संस्कृति से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, हाँ. तो उस दूरी के वजह से हम हमारे खुद से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी
1: अस्तित्व ही खराब हो गया,
0: हमारा परिचय. हम खेलेंगे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड अप आपके साथ, जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द में या एक वाक्य में देना है. तो अच्छा. शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से. सेवा क्या है?
1: वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स.
0: विज्ञान क्या है?
1: अंडरस्टैंडिंग द होल सिस्टम. अध्यात्म और प्रोफेशनल, दोनों चाहिए. अध्यात्म इज एक्चुअली विज्ञान, नॉर्मल ज्ञान इज ज्ञान, तो प्रोफेशनल ज्ञान जो है वो ज्ञान होती है, अध्यात्म ज्ञान है तो विज्ञान.
0: कर्तव्य क्या है?
1: कर्तव्य इज यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी, एंड सो देयरफॉर यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी.
0: धर्म क्या है?
1: धर्म इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. दिस इज टू अंडरस्टैंड धर्म इज नॉट ईजी. इट इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन एंड वॉट इज धर्म, वॉट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू डिसाइड वॉट इज in the bigger interest of the society, that is dharma. Temporarily, for a particular thing, it may not be looking good, but in the bigger interest of the society, it is. For example, Arjun itne sare kauravon ka vadh kiya, ye dharma ya dharma? To Arjun usne us samay to Krishna Bhagwan ne kaha, dekho this is dharma because you are doing your duty, because you are not allowing the adharma to grow. At the same time, you are killing so many people. Do you call it as adharma? It is not adharma at that time. So that is why, so adharma, dharma or adharma ko sambhalna, samajhna bahut delicate item hai wo. So this is dependent on the situation. You have to decide what is in the bigger interest of the society. Lok kalyan
0: se ek sawal dhyan mein aata hai, wo ye hai ki samaj kya hai?
1: So samaj is the, all of us have a contribution towards well being of the others. You have to see that we all grow together. Vasudeva kutumbakam, this is a family. So therefore, you have to grow together. So you have the responsibility towards each one of the other persons. And that is because nobody can live all by himself. So it is you live because others live. And therefore, you have to live along with them.
0: The next few questions only in one word. So first question, what is peace? Shanti kya hai?
1: Shanti, man ki shanti. Pahla hai man ki shanti. मन की शांति हो तो सबका शांति आ जाएगा.
0: ओके. खुशी क्या है?
1: खुशी भी मन की खुशी. खुशी तुम्हारे अंदर की खुशी जो है, अंतर्धान, वो खुशी जो वही खुशी.
0: लक्ष्य क्या है?
1: लक्ष्य, मेरा लक्ष्य है तो दूसरों को खुशी दे, खुश देखना.
0: वेरी नाइस. संतोष क्या है? व्हाट इज कंटेंटमेंट फॉर यू?
1: कंटेंटमेंट इज व्हाटएवर यू हैव, बी हैप्पी.
0: जो है उससे खुश रहना.
1: यस.
0: भारत क्या है?
1: One nation, one culture.
0: आखिरी सवाल, प्रोफेसर रामकृष्ण वी हसूर कौन है?
1: एक साधारण व्यक्ति है आपके जैसे.
0: This is amazing कि आपने अपने जीवन में इतना ज्ञान प्राप्त किया है, आप इतने लोगों को ज्ञान देते हैं. आपके कार्य के वजह से भारत ने आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है. आप भारत का गौरव हैं और आप खुद को कहते हैं कि मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ. ये आपकी नम्रता को दर्शाता है.
1: इंसानियत जो है वो सब में एक ही होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट मेक्स एन इंडिविजुअल. तो बाकी चीज जो आते हैं, आगे पीछे आते जाते रहते हैं, बट इंसानियत जो है दैट मेक्स अ मैन ग्रेट और अदरवाइज. तो अहंकारी हो गया तो उसको कुछ फायदा नहीं है, उसको कुछ भी मिले तो कुछ फायदा नहीं है.
0: जी, और मैं समझता हूँ अहंकार आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप वास्तव में बहुत नम्रचित्त हैं। नम्रता आपका गहना है, वो हमने शुरू से देखा है आज के एपिसोड में। प्रोफेसर रामकृष्ण वी हसूर जी, आप हमारे साथ आए, हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं के साथ रहे। आपने अपने जीवन की इतने सुंदर सुंदर कहानियों से हमारे इस एपिसोड को सजाया, और केवल सजाया नहीं, हमें प्रेरित भी किया कि जीवन को कैसे जिया जाए। इसके
1: थैंक
0: लिए आपका
1: यू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में हम चाहेंगे कि जैसे आपने दो प्रोफेसर को मदद की और उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, कभी भविष्य में आप भी उस मुकाम पे पहुंचे, आपके और जो विद्यार्थी हैं वो भी उस मुकाम पे पहुंचे, और देश को जिस प्रकार से आपने योगदान दिया है, आपके सभी छात्र, आपके सभी विद्यार्थी जिनको आप अपना बच्चा कहते हैं, आपके वो सभी बच्चे भी देश को उसी प्रकार से प्यार
1: जी
0: करें जैसे आप प्यार करते हैं। इस
1: जी
0: शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में हम बात कर रहे थे प्रोफेसर रामकृष्ण वी हसूर जी से, जो कि भारत सरकार द्वारा 2014 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक जाने माने विख्यात वैज्ञानिक हैं। यशस्वी भारत इस कार्यक्रम में हम न केवल प्रोफेसर हसूर जैसे वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन हम कभी कलाकारों से बात करते हैं, कभी लेखकों से बात करते हैं, कभी खिलाड़ियों से बात करते हैं। हर एक ने अपने अपने तरीके से देश के उत्थान में योगदान निभाया है। मैं और आप अपने जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, दिल से उसे करते हुए देश को अपना योगदान दे सकते हैं, और इसका सबसे पहला कदम आज ही आप शुरू कर सकते हैं, और वो ये है कि आप खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो देश भी खुश रहेगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन, बिकॉज रेडियो मधुबन आप सुनते रहेंगे तो मुस्कुराते जरूर रहेंगे, ये हमारा वायदा है। अगले एपिसोड में यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।
2: गोरा गोरा गाल तारा, वाकड़िया वाड़ तारी, लटकती

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी शिल्प कला को अर्जन करने के लिए किसी भी उम्र की सीमा रेखा नहीं होती है। उसके लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ हिम्मत का एक कदम और अथक पुरुषार्थ। तभी हम कह सकते हैं कि देखो, जैसे मिट्टी होती है, तो मिट्टी अगर नरम होती है तो उसमें बीज बोने से जितना जल्दी फसल होती है, सूखी में थोड़ी सी मेहनत भी लग जाती है। या दूसरा एग्जांपल भी हम दे सकते हैं कि अगर लोहा गर्म होता है आग में जलने के बाद, तो उसको आकार देना सहज है, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस वैसे ही अगर कम उम्र में संगीत सीखा जाए तो उसकी सफलता अनिवार्य हो जाती है। ऐसे ही संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद है हर बार की तरह श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, मैं भी सबको नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, हमने आज बताया कि ऐसे तो कोई भी कला कोई भी उम्र में सीख सकते हैं, मगर बचपन से अगर सीखा जाए तो हम बहुत सहजता से कर सकते हैं।
1: हाँ जी, क्योंकि वॉइस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसका इधर उधर करना होता है
0: जी,
1: वॉइस को थोड़ा, आपने बताया ना, नरम माटी में जितना अच्छा फसल होता है जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो वॉइस को हम इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो लेकिन ज्यादा उम्र हो जाए तो थोड़ा कोशिश ज्यादा करना पड़ता है ना।
0: संस्कारों का भी शायद ऐसा ही है।
1: ऐसे भी है सब,
0: खाली बचपन से ही जो आदत हम डाल लेते हैं।
1: हाँ, यही संस्कार ने आपने अच्छा बताया, जो आदत बन जाते हैं उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन कम उम्र में संस्कार अच्छा होता है, उसको वही संस्कार चलता है ना जिंदगी भर,
0: कायम रहते हैं।
1: तो ऐसे ही वॉइस के बारे में भी मैं कह सकती हूँ, अगर कम उम्र में सीखते हैं तो बहुत अच्छा वो सफलता की शिखर में पहुंच सकते हैं
0: जी,
1: जल्दी अपना लेते हैं। और थोड़ा ज्यादा उम्र हो जाता है तो थोड़ा उसको तो कोशिश करना ही पड़ता है,
0: ज्यादा अभ्यास करना। श्यामली जी, तिलंग राग के बारे में हमने पिछले एपिसोड में स्वर लिपि आरोह अवरोह किया, आगे आज आप हमें क्या सिखा रहे हैं?
1: हाँ, बाकी है जो बंदिश बाकी है, तान बाकी है, वो आज सिखाएंगे। ठीक है, तो लिसनर अगर किताब में बंदिश लिख लेते हैं तो अच्छा है
0: जी।
1: जैसे हमने दिया है, ले चल गोकुल गाओ, ले चल गोकुल गाओ श्याम कन्हैया रे, ले चल गोकुल गाओ श्याम कन्हैया रे। ये फर्स्ट स्थाई का है
0: जी।
1: अंतरा में है, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में कित छुप है श्याम कन्हैया रे, वृंदावन की कुंज गलिन में कीते छुप गए शाम कन्हैया रे। पहले बताया कि ये थोड़ा चंचल प्रकृति का है, तो इसमें जो बंदिश में आप ढूंढ सकते हो कितना इसमें नटखटी है
0: जी।
1: शाम कुंज गलिन में खुद छुप गए, उसको ढूंढने में लग गए सब, तो यही बात गोकुल के गांव की है, तो यही हम स्वल्पी में बैठा देते हैं। ठीक है
0: जी जी।

0: श्यामली जी, जो पिछले एपिसोड में आपने छोटी सी बंदिश बताई,
1: हाँ जी,
0: और ये बंदिश,
1: हाँ जी,
0: तो सीखने वाली ये बंदिश होती है ऐसा?
1: हाँ,
0: कुछ
1: सीखने
0: है?
1: वाली ये है। अच्छा। इसलिए हमने थोड़ा बिस्तर भी किया है, लेकिन ये प्रकृति चंचल है ना, इसको तो थोड़ा आराम से करेंगे इतना अच्छा नहीं लगे। इसको प्रकृति ही चंचल प्रकृति का है।
0: ओके।
1: थोड़ा ऐसे करेंगे, थोड़ा कभी फास्ट करेंगे, सिंगल लय डबल लय करेंगे, बिस्तर करेंगे, तो बहुत अच्छा है।
0: अच्छा श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में सुनते हैं तिलंग राग से संबंधित एक मीठा सा गीत। आप सभी श्रोता मित्र इसका आनंद लीजिए, और हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।
2: कैसे कहें हम प्यार ने हमको

0: किस्मत हमसे खुद से हम।
1: फिर से आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से तिलंग राग की बंदिश सुनी।
2: हाँ जी
1: श्यामली जी, आगे आप हमें क्या सिखा रहे हैं?
2: अभी थोड़ा तान करेंगे
1: जी।
2: तान भी सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। गुरु के पास तो ऐसी शिक्षा लेना है, जरूरी है, तो हम थोड़ा सिखाते हैं तो अच्छा लगता है।
1: जी,
2: सामने लिसनर अगर सीख जाते हैं तो कैसे करना चाहिए, चार मात्रा, आठ मात्रा, बारह मात्रा, सोलह मात्रा, कितना अच्छा अच्छा, दस मात्रा, बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है,
1: जैसे आप हर बार कहते हैं कि गुरु की शिक्षा लेना बहुत आवश्यक है, मुझे लगता है कि गुरु की शिक्षा लेने के बाद जैसे ट्यूशन में रिवीजन होता है, ऐसे हम रेडियो के माध्यम से जो संगीत सिखाते हैं शायद उनका रिवीजन हो जाता होगा।
2: वही बात है
1: जी।
2: ठीक है, स्थाई अंतरा थोड़ा तान करके सुनाते हैं।
1: हाँ जी।

0: श्यामली जी, तिलंग राग की
1: हाँ जी
0: ये तान के साथ समय देता है हमको इजाजत, हाँ। मगर जाते जाते हम आपसे सुने बिना तो हम जा ही नहीं सकते,
1: हाँ।
0: आज आप कौन सा गीत लाए हैं हमारे लिए?
1: हाँ, हम इतना पुराना भी नहीं है, महबूब की मेहंदी एक
0: अच्छा,
1: फिल्म,
0: ये फिल्म का गाना,
1: बहुत सुंदर फिल्म है, राजेश खन्ना की है
0: जी।
1: ये जो कंपोजिशन है लता जी और रफी साहब जी की है
0: अच्छा।
1: तो हम क्या करते हैं, लता जी के थोड़ा करते हैं।

0: हम भी याद रखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: ये जो तिलंगड़ा के ऊपर जो गीत है
0: जी,
1: जैसे कि यहाँ कितना इसमें नटखट है, जो राग की जो महसूसता है, जो इसका एसेंस जो है राग में है, गीतों में है, थोड़ा हटके मटके नटखट करके इसको जो करना है, कैसे होता है एक राग के ऊपर प्रेजेंटेशन कोई भी गीत
0: जी,
1: इतना इसमें अच्छा रूपरेखा बन गया। मैं कोशिश किया है
0: जी। बहुत सुंदर शामली जी। इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नो, आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, हम हिंसा को नो कार्यक्रम में लगातार अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे घरेलू हिंसा के प्रकार। दोस्तों, घरेलू हिंसा हम उसे कहते हैं जो घर परिवार वालों से, चाहे वो घर पर या अन्य किसी स्थान पर किए जाने वाले अत्याचार। घरेलू हिंसा चार प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा। ये चार प्रकार की हिंसा अक्सर हम घर परिवार में और समाज में देखते रहते हैं, लेकिन आज हम ऐसे परिवार में लेकर जाना चाहते हैं जहां पर कुछ बदलाव है, परिवार में आपसी प्यार है, विश्वास है, महिलाओं में हिम्मत है। तो चलिए चलते हैं आज के नाटक की ओर।
2: लंबी सफर है, ऊंची उड़ान, पढ़ लिख कर

0: सीमा, या घड़ी घड़ी डोरबेल क्यों बाज रही है? कौन है? अंजू की गांव बात कर रही है?
1: खुद ही पूछ लो।
2: पापा, यो पीयूष है। कदी समय पे नोट्स लिखे कोनी और पछे आ जावे नोट्स लेबा का वास्ते।
0: यो पीयूष कौन है बेटा?
2: मारो क्लास फेलो है पापा।
3: आपने अंजू समय पे काम करे तो चालो की केक तो काम आवे।
2: माँ, आप और पापा कतरा बढ़िया हो जो मारा पे कदी शक को नहीं करियो और हर प्रकार की छूट भी दे रखी। बाकी मारी सहेली सीता विको फ्रेंड रोहन का साथ में कोई बात कर ली थी परसों, विने खूब मारी विका मम्मी पापा खूब।
3: बेटा तू हर काम सोच समझ करे अणि वास्ते थारा पे विश्वास है और थारा करता भी मारी परवरिश पे मने पूरो विश्वास है।
4: साथी डारे छोरा चोरी जद देखू जद घर भरियो घुमड़ियो घुमड़ियो रे ऊ मैं तो जद देखू जद घर सुनो अबे तो मैं भी गणो खुश हूँ मैं फुल राव हाल रियो।
5: कई बात है बेटा, आज तो थारा पग धरती पे कोनी टिक रिया।
6: हाँ माँ, बात ही एड़ी है तो दादी बनवा वाली है।
5: अरे वाह वाह बीनणी, ले बेटा यो मुख मीठो कर गुड़ खा, मने तो थे दो ही जना खुश कर दीदा। पर यो कही राजू, तू बीनणी ने कही क्यों जो बीनणी उदास लाग रही?
6: माँ, थारी बीनणी ने डिलीवरी री चिंता लाग रही है।
5: देख बीनणी, एड़ा टाइम पे थारे कई भी मानसिक चिंता कोनी करनी, तू खुश रह ताकि बालक पे भी आछो प्रभाव पड़े।
7: जी माँ जी, आप तो मने घना अच्छा राखो, पर
5: तू कई समझे मने थारा पियर की आर्थिक परिस्थिति को ठा कोनी मैं सब समझू। डिलीवरी अपना घर में ही वे और थारी माँ ने भी बुला लेवा ताकि तू खुश रह सके। थारे कट्टे ही कोनी जानो समझी, और थारे जो भी इच्छा होवे बेधड़क माने केजे।
7: मैं कतरी भाग्यशाली हूँ कि मने माता पिता जेड़ा सास ससुर मिलिया और एक अच्छा दोस्त जेड़ा पति। अगर हर लड़की ने एड़ो ससुराल मिले तो किने पियर की याद कोनी आवे और हर बहू खुश रह सके।
5: कई सोच में पड़ गई बीनणी।
7: काई नहीं मम्मी जी, मैं घणी खुश हूँ, आप मारी सास कोनी माँ हो।
8: दिवाली में तो खूब मनावा सब मिलकर नाचागा, आयो त्योहार आचो आनंद हिरदाम समाओ।
7: पापा जी मम्मी जी, आप इतना जल्दी क्यों उठिया? और साफ सफाई आप रेवा दो, मैं हूं ना सब सफाई कर ले, आप आराम करो।
0: यो बता बेटा कि दीपावली तो अकेली मनाई?
7: नहीं नहीं पापा जी, आपा सब साथ में मनावा।
9: तो साफ सफाई भी सब मिलन करा ताकि दिवाली रो आनंद सब मिलन ले सका, क्यों श्याम?
10: हाँ माँ, मैं तो सोच ली तो मैं दीपावली पे गुलाब जामुन बनाऊ।
3: हाँ भैया, आपने गुलाब जामुन बहुत बढ़िया आवे बनाता, और मैं बनाऊ मठड़ी।
0: मैं बनाऊ मोहन थाल।
7: जय श्री कृष्णा। हेलो माँ, बोलो।
11: बेटा थारे बड़ो परिवार है, दीपावली री साफ सफाई तो ध्यान सु कर जे। सुन, मिठाई तो अतरी बना कोनी सके तो मैं भेजू?
7: माँ, मैं थारे वीडियो कॉल करू।
11: यो कई बेटा, ब्यांजी सा ब्याईजी सा जमाई सा सब मालन साफ सफाई कर रहा घर की, मारा तो भाग्य खुल गया।
10: हाँ माँ, आप काई चिंता मत करो, मिठाई भी सब मिलन ही बनावा।
11: वाह हावरो वेटो एडो, रखू बेटा फोन, मारा तो खुशी का आंसू आ गया।
9: बिन्नी ले बेटा यो गले को हार, मारी शादी के बाद पहली दिवाली ही जद मारी सास मने दी दो और मैं थने देऊं, थारी भी पहली दिवाली है, आसुन यो थारो है।
0: बिंदनिया टू व्हीलर की चाबी, पहली दिवाली पे मारा तरफ किया छोटी सी भेंट, आज सो छोटो मोटो काम तो खुद ही कर सके कि पे डिपेंड नहीं रहे इन्ने वास्ते।
7: थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी।

0: सा मुख सुकयो नहीं जायो सैको नी हो वेसा।
1: हेलो प्रिया, काई बात है? आज तू घणे खुश लाग रही है।
2: हाँ पूजा, आज मैं घणे खुश हूँ। आज मैं

0: साथ दिए।
1: काय बात कर रही प्रिया, थारा में यह हिम्मत कया नाई?
0: हिम्मत तो खुद ने ही जुटानी पड़े, ढीला पोचारा तो दुनिया बेच खावे।
1: थैंक यू प्रिया, थारा अनी डिसीजन सो तो मारा में भी ताकत आ गई। मैं भी थाने मारी यही बात करवा जा रही ही कि मने भी एक छोरो घणो तंग करे, पर वीको काय करनो, वो थारा सो सीखवा मल्यो। अगेन थैंक्स, चल आओ जी।
0: बेस्ट ऑफ लक पूजा।
1: थैंक यू प्रिया, बाय।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हिंसा को नो कार्यक्रम में। दोस्तों, जब हम हिंसा को नो कहते हैं तो वो परिवार और समाज कैसा होता है, आज हमने नाटक के द्वारा देखा है। अभी हम सुनेंगे आबू के अंचल में रहने वाली उन आवाजों को, उनका क्या अनुभव है घरेलू हिंसा को लेकर।
3: नमस्कार, मेरा नाम ललिता है और मैं आपको शारीरिक हिंसा के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हमारे जीजा जी थे, वो ट्रक चलाते थे, तो वो बहुत नशा करते थे और आते थे ना तो मारते थे। और ऐसा नहीं अकेले में मारते हो, जैसे कि हमारी दीदी बड़ी मम्मी के सामने मारते, बड़े पापा के सामने मारते, रिश्तेदारों के सामने मारते, सबके सामने मारते। मेरी दीदी है ना, चुपचाप मार खा लेती थी। क्यों? कि भाई मायके भी नहीं जा सकते हैं और ससुराल में भी सास ससुर नहीं है, तो हम कहेंगे भी किससे और जाएंगे भी कहाँ। पति का भरोसा है भाई, मार खाते रहो चुपचाप। तो ऐसे कईयों साल तक चला। हमारी बहन, छोटी बहन की शादी थी तो वहाँ पे गए थे, तो बैठ के बातें करने लगे, फिर डांस होने लगा औरतों का, फिर उनको वो अच्छा नहीं लगा। तो जाते थे, शराब पी के आते थे और उसको बहुत मारते थे दीदी को। तो फिर वहाँ पे दीदी ने ना खुद भी मारा और औरों से भी मारवाया उनको। बोला आप, तुम्हें मतलब पता चलेगा कि औरत जितना सहती है ना वो सहती है, जब वो नहीं सहती है ना तो वो किसी की नहीं सुनती है भाई। उसको भी जैसे तुम्हें अपनी इज्जत का वो होता है, भाई चार जनों के लोगों बीच में मार रही है तो मेरा कोई क्या इज्जत रह जाएगी, मैं तो मर्द हूँ। वो भी तो औरत है ना, आप मर्द को जन्म देने वाली औरत ही तो होती है ना, आप उस औरत पे अत्याचार करते हो। हमारी दीदी ने सबको यही बताया, भाई कितना हो जाए मतलब सहो नहीं। और यही सा हमारी बुआ के साथ भी हुआ, तो मेरी बुआ ने तो खैर उनको जेल में डलवा दिया, तो अब वो नहीं मारते हैं। और मेरी दीदी के साथ भी ऐसे हुआ, तो अब जीजा जी नहीं मारते हैं और दोनों आराम से रहते हैं। और अभी काफ़ी उन्होंने तरक्की भी कर लिया, क्योंकि नशा छोड़ दिया और नशे में आके वो मारते थे वो, तो उनको भी जब 3-4 बार पड़ा तो वो सुधर गए। यौन हिंसा, कई बार सोचते हैं यार बात करना कईयों को अच्छा नहीं लगता है यौन हिंसा के बारे में, क्योंकि वो प्राइवेट बातें हो जाती है। मैं फील्ड में एक औरत से मिली हूँ जो यौन हिंसा की शिकार है, उनके 10-12 बच्चे हैं ऐसे, उनके पति गुजर गए हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। तो उनके बच्चे में से जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा था, वो अपने माँ के साथ ही रेप करता था। जब वो मना करती थी तो वो सबके सामने शराब पी के सबके सामने मारता था, गांव वालों के सामने मारता था, रोड पे ऐसे मारता था जब वो नहीं मानती थी। और बहुत बार ज़बरदस्ती किया उसने, मारा भी बहुत, मतलब कपड़े निकाल के भी वो मारता था। उसके खिलाफ किसी ने केस भी नहीं किया, क्योंकि जो उस औरत की हेल्प करना चाहता था, मतलब उनको बचाना चाहते थे उस चीज़ से, चाहे वो औरत हो या जेंट्स हो। जो बेटा था ना वो उनके साथ भी मतलब झगड़ा करना, मारपीट करना ये सब करता था शराब पी के। और कई बार उसने दूसरे लोगों के साथ भी ऐसे किया, उसने मारपीट किया है। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी कर ली।
4: नमस्ते जी, मैं नंदू कंवर बोल रही हूँ। मारी शादी ने 35 हो गई, माना कि 35 साल होगी। जब से मैं शादी कर मेरे ससुराल गई, के बाद में मैंने कोई परेशानी नहीं है कि जो मैं घर में काम करती हूँ या मेरे को पैसे है, मेरा पीर का दियड़ दहेज है, मारे पीर की दियड़ कोई भी चीज़ है, मैं कोई अधिकार नहीं जमाई हूँ। और सब जो भी मारो मान रखियो, मतलब ससुराल में कि भाई थे यहाँ करो, था को जो चीज़ बाप दादा को लिया वह आपको ही अधिकार है। तुम्हारे सासू से लगा नण देवरणी जिठानी कोई मेरा हक नहीं जमाई हो, जो मारे मन चाहिए तो मैं यूज करियो, और जो मारे चाहिए भाई कोई ने भी देनो लेनो कहीं भी करियो तो मैं मारा हिसाब ही दियो लियो, ठीक है। फिर बाद में जब मारे खुद की भी मैं काम सिलाई पकड़ी, जब से भी चाहे भले वो 100 रुपये की सिलाई करी, 50 की करी, जो मारे मन में हुई हो कि वह चीज़ खरीदनी है, वो कोई ने देनो लेनो है तो वो ही दियो लियो, और वही पैसा मारे कन जमा है, पर मारो परिवार कोई मैंने यूँ परेशान नहीं करियो कि आज आपका पैसा वहाँ न दो, मैं कोई सामान ले वहाँ करा, कोई परेशानी नहीं है। और आज भी मारे घर में मैं करूँ तो मारे ने कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और सब अच्छे से अच्छे काम करूँ मैं मारे। और जो भी सिलाई करो, भले ही अपन 2 रुपये की कि भाई कोई बुनाई करो रहे, कोई काज बटन करो रहे, कोई भी

0: करा पा तो मारा घर में मैं ही बाप रहूं, और जो भी कोई पीछा आवे तो भाई देवरानी जिठानी ने लेनो देनो हो, चाहे आगे सास ससुरान को देनो लेनो हो, तो बेटा आप बोलो और आपने मन चाहे वो काम करो। तो ऐसो मारे तो घर में कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो को भी कोई मैंने पूछे कहते अतरा मजबूत किया हुआ कि आपा काम करा और आपा ही नाम नहीं करा तो दूसरों कौन करी। तो सब समझदारियों काम ले और चालर जकी भी आवे तो मतलब आई कोशिश कर भी खेऊँ। और कहते डरो मत, कोई भी मत डरो, अपने बढ़िया बढ़िया काम करनो और सारी होशियारी के साथ में चालनो, सबने साथ में लेट चालनो। और जो आप काम करा और बीमें भी कोई हुए तो भी ज्ञान बतावा कि बेटा यूं नहीं करनो और यूं करवाऊँ, आगे आपने अच्छे काम हुई आगे पीसा टक्का घर बार परिवार सब आपा ने चलानो है तो सब भी हिसाब चालो। तो जो भी मार्केट कोई सिलाई वाली भी आवे ना वही बात पूछे के भाभी साहब मैं तो यूं परेशान आ घर हूँ, देश की खातरी मन लड़े, मगर आदमी भी कोई यूं मन लड़े, टाबर भी है कोई पड़ोसन भी माने यूं खे देवे कि भाई थे थाने यूं लड़े करे तो आप घरे चले जाओ आंसू अलग हो जाओ। मैं एक ही बात हूँ कोई अलग नहीं होना कोई इश्यू भी, जो भी कह आपने काम करना मजबूती के साथ करो, मजबूती के साथ रहो और बढ़िया काम करो और सबने ज्ञान करो।
1: नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना है। हमारे पास में एक आंटी जी रहती है तो वो मतलब मानसिक हिंसा की शिकार हैं। उनके सास ससुर मतलब थोड़े पुराने ज़माने के, उनकी सोच मतलब नए ज़माने के साथ में बदली नहीं है। उनके साथ में एक बेटी है और वो फिर से प्रेग्नेंट है। तो उनके सास ससुर बोले कि हमको अब इस बार पोता ही चाहिए, पोती नहीं चाहिए। पोतियाँ मतलब बड़ी होगी, इतना खर्चा पैसा लगाएंगे शादी करके तो इनको दूसरे घर जाना है, इसलिए हमें एक और पोती नहीं चाहिए, हमें पोता चाहिए। पोता होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। ऐसे ऐसे करके उनको बहुत ताने मारते थे और पूरा घर का काम उनसे ही करवाते थे, ना उनको टाइम पे भोजन देना, ना उनका मतलब हॉस्पिटल वगैरह लेके, मतलब ढंग से ध्यान ही नहीं रखना। बस जरा सी गलती हो जाए तो बस उनको सुनाना सुनाना। वो इतने सास ससुर से परेशान हो जाए, वो सोचते थे कि अब मेरे भी दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए। अब वो मतलब उनके ऑपरेशन से लड़की हुई, वो हॉस्पिटल से जैसे ही घर आई तब भाई ताने शुरू, बेटी हुई है, एक बेटी हमसे पालनी जा रही है या दूसरी पे आ गया, ऐसे ताने दे कर करके उनको मतलब सुना सुना के 5 दिन की वो बच्ची हुई और वो भी ऑफ हो गई। फिर वैसे ही वो बीमार थी और वो मतलब डिप्रेशन में चली गई। फिर उन्होंने अपने पति को बोला तो पति बोले कि मैं सेटल होता हूँ वैसे ही मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। अब वो क्या करे, वो हिंसा को सहन कर रही है और अपनी चुप भी लगाए बैठी है।
2: तो सुना दोस्तों, हमारे आबू की महिलाएं और लड़कियां किन हालातों से गुजर रही हैं, हम हमारे घर परिवार की महिला और लड़कियों को किस प्रकार की सुरक्षा या न्याय दे पा रहे हैं। हमारी इस कार्यक्रम की यही कोशिश है कि हम अपनों के लिए खड़े रहे और उनको साथ दें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज का विषय घरेलू हिंसा के प्रकार बेहतर समझ में आया होगा। और आपके कोई अगर सुझाव है या अनुभव है तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। अभी हम लेते हैं आपसे विदाई और कहते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अभी आप सुनिए ये गीत आरजे उषा की जुबानी।

एक बेरबानी आपका घर का धनी ने कहवा लागी, बोला जी आजकल डिगी पति महाराज को मेलो भर रो, बोले मन मेला में ले चलो। तो बोला के चल, तो कहीं में बैठ चला, बोला जीप में चला, बस में चला, कहीं में चला। बेरबानी बोली के मैं तो जीप में कौन बैठू साहब, आजकल भीड़ बहुत चल रही है। तो कहीं में बैठे, तो मैं तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल पे बैठू। तो देखो कहीं करीजे, आ गया तैयार जावा भी डिग्गी के।

घंटा को तेल बीत को गेला में देखो कहीं बात बने बेरबानी केबल लगी केबला तेल तो गला ले होंडा में तो क्या गलावे देखो अरे नतड़ी बेच मारी पायल बेच दे अरे डोला तेल

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आरजे शुभा, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नई दुनिया नया जमाना, जहाँ हम बात करते हैं एक ऐसे भविष्य की जो हो स्वच्छ, हरित और सतत। धरती केवल हमारे रहने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या फिर संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। तो जब एक व्यक्ति जागता है तो समाज बदलता है, और जब समाज जागता है तो एक नई दुनिया का निर्माण होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे पर्यावरण योद्धा है जिन्होंने वर्षों से स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, जिनके कार्यों को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्री खमू राम विश्नोई जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: तो खमू राम जी, सबसे पहले तो आपके अनुभवों और संघर्षों के बारे में हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपके बारे में थोड़ा अधिक हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम खमू राम विश्नोई है, मैं ओशिया तहसील के गांव एकलगोरी का रहने वाला हूं, और वर्तमान में मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त 28 फरवरी 2026 को हुआ हूं, और पिछले लगभग ढाई दशक से मैं सिंगल यूज प्लास्टिक और के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहा हूं। बड़े बड़े मेले होते हैं, वहां हमारी टीम कचरा बीनती रहती है ताकि लोगों की मानसिकता में जो कचरा भरा हुआ है, जो लोगों की सोच में कचरा भरा हुआ है वो निकले। हमारी मकसद ये नहीं है कि हम जमीन से कचरा बीने, हमारा मकसद ये है कि जमीन पर कचरा आए उससे पहले ही मानसिकता ही बदल जाए कि मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं जमीन पे कचरा फेंकूं। तो इस प्रकार लगभग ढाई दशक हो गए हैं। और दूसरा हमारा काम है शादी ब्याह, वहाँ भी हम फ्री सेवा देते हैं। उसके पीछे हम तीन चार शर्तें होती है, वो पहली शर्त होती है पूरा कार्यक्रम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहना चाहिए, डिस्पोजल मुक्त रहना चाहिए, और दूसरा हमारी होती है झूठन मुक्त रहना चाहिए, तीसरा हमारा होता है नशा मुक्त रहना चाहिए, और चौथा होता है हमारा फटाका मुक्त समारोह हो। तो हम ऐसे सेवाएं देते हैं जैसे मेरी बहन की शादी हो, मेरी भतीजी की हो, भांजी की हो, सारे दिन हम तांबे के लोटे ले जाके मेहमानों को जलपान कराते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक को दरकिनार करते हैं, नशे को दरकिनार करते हैं, फटाकों को दरकिनार करते हैं, और झूठा भी नहीं छोड़ने के लिए मना करते हैं। क्योंकि धरती का, अगर मेरी भाषा में बोलूं तो धरती का सबसे बड़ा भगवान है वो भोजन है, भोजन से बड़ा भगवान मंदिरों में भी नहीं मिलता, मंदिर के भगवान को भी हमारे भोजन का प्रसाद का ही भोग लगता है।
0: जी जी सर, बिल्कुल। तो सर, बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में बीता, प्रकृति से जुड़ाव कैसे शुरू हुआ?
1: अब आपने बिल्कुल सुन रखा होगा कि विष्णुई समाज शुरू से ही, गुरु जम्बेश्वर भगवान 550 वर्ष पहले ही हमें विष्णुई समाज सभी कम्युनिटी में से चुन चुन के हमको अलग बैठा के और 29 नियमों की एक आचार संहिता दी, एक सिस्टम दिया कि प्रकृति के साथ समन्वय बैठा के तुम्हें जीना है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 1485 ईस्वी में सभी कम्युनिटी, सभी समाज के लोगों में से विष्णुई समाज के लोगों को एक नियम देके, 29 नियम देके, और एक नया पंथ चलाया या एक नया सिस्टम बनाया, एक नई जीवन जीने की एक नई कला दी जो प्रकृति के साथ में समन्वय बैठा के जी सके।
0: जी सर। सर, सहायक रजिस्टर पद से आपने रिटायरमेंट लिया है, और मतलब पढ़ लिख करके आप अच्छा नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को आपने जीवन का मिशन क्यों बनाया? आप चाहते तो अकेला भी, जितना आपको प्रकृति से प्रेम है तो आप अपने प्रेम के साथ जीते, लेकिन इसको मिशन क्यों बनाया आपने?
1: ऐसी बात है कि पहली बात तो गुरु जम्बेश्वर भगवान जो 15वीं शताब्दी के सबसे पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे, वो उनके अनुयायी हुआ। दूसरे मेरे माता पिता के जो रगों में भी पर्यावरण और संस्कृति बचाओ का खून था, प्रकृति प्रेमी का खून था, और दूसरा विष्णु कम्युनिटी का रंग भी तो मेरे साथ, मेरे ऊपर शरीर में मेरे लगा हुआ था, चढ़ा हुआ था, मेरे खून में घुला हुआ था। तो जब ये इतनी सारी आबो हवा के बीच में मुझे जीने का मौका मिला तो स्वाभाविक है कि मैं प्रकृति की सेवा करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जीवन ये बहुत ही कम समय के लिए मुझे भगवान ने दिया है और पर्टिकुलर एक टाइमिंग के लिए है, उसके बाद में भगवान मुझसे वापस छीन लेंगे और सांसें भी गिनी हुई है। अब मुझे रियलाइज नहीं है तो बात अलग है, लेकिन मुझे अगर रियलाइज है कि मेरे पास लिमिटेड सांसें हैं तो मैं बेहतरीन काम करने का प्रयास करता हूँ। और हर आदमी को जब ये मालूम चल जाता है कि मैं जीवन पृथ्वी धरती पे कोई विशेष प्रयोजन से आया हूं, तो वो कभी भी प्रकृति के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो हमेशा प्रकृति की सेवा करने का ही प्रयास करेगा। मैंने ही वैसा ही किया।
0: जी सर, बिल्कुल। जैसे कि ये संस्कार आपको आपकी संस्कृति से, आपके समाज से, आपके माता पिता से आपको मिली है और इसको ही आप आगे लेकर के जा रहे हैं और एक आपने समाज में क्रांति लाया है आपने। तो जब आपने शुरुआत की 2005 में, वर्ष 2005 में, हम सभी, आई थिंक मेरे जनरेशन के जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त सभी स्कूल में होंगे, तो आपने अकेले स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो उस समय ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली 2005?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया और मैं इसकी रिप्लाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से देना चाहूंगा। मैंने एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें भारतीय संस्कृति की बहुत ही तारीफ की गई, जैसे हमारी 5000 पुरानी हमारी संस्कृति है और हमारे जो पर्यटन स्थल है, हमारे जो धार्मिकता और प्रकृति से प्रति हम पीपल को पूजते हैं, हम गौ माता को माँ बोलते हैं और हम सभी अलग अलग देवताओं के अलग अलग जीव जंतु भी उनके सवारियों में, जीवों को भी उनकी सवारियां बनाई है। तो हम देवता को और जीवों को हमने समन्वय में बैठा के और उनको पोषण देने का प्रयास किया ताकि सभी जीव धरती पर रह सके और उनका सब अपने अधिकार पूर्वक रह सके, यही भारतीय संस्कृति थी। तो एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ अच्छा बताया, सब कुछ गुणगान किया गया, लेकिन अंत में हमारे तीर्थ स्थान है, हमारे जो पूजा स्थली है, वहाँ अंदर तो आरतियां गा रही है, ओम जय जगदीश हरे या और भी देवी देवताओं की जो आरतियां हो रही है, और बाहर की तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ बताया। तीर्थ स्थानों पर भी मेले में लोग इतने भीड़ कर देते हैं, लेकिन भीड़ के बीच में पैरों में इतना कचरा पड़ा रहता है कि वो तीर्थ न होके कोई कचरा घर हो जाता है। तो मेरे को दर्द हुआ और मैंने तीर्थ स्थान को जाके देखा, तो जैसी डॉक्यूमेंट्री में फोकस किया गया वैसे को वैसा मैंने वहाँ तीर्थ स्थान पे देखा। तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आया, पहले मैं हाईकोर्ट की सीक्रेसी में था, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मैंने छुट्टी मिली और मैं 2005 में कोई बड़े हमारे विष्णु समाज के बड़े तीर्थ स्थान पे गया। तो मैंने विष्णु समाज के लोगों को बलिदान को याद कर 363 लोग 1730 में पेड़ों हरी पेड़ों के लिए अमृता देवी के तत्व में शहीद हो गए थे और वन्य जीवों के लिए भी शहीद हो गए थे। सलमान खान वाला भी उदाहरण हमारे सामने ही था कि काले हिरण का शिकार करने आए और फंस गए, अभी भी फंसे हुए हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में इग्नोर क्यों कर रही है? तो समाज के लोगों ने मुझे थोड़ा कहा कि तेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हर चीज हमेशा अकेला करता ना वो आगे जरूर बढ़ता है।
0: जी, तो लोग जब आपका मजाक उड़ाते थे तो आपने हिम्मत कैसे बनाए रखी?
1: ऐसी बात है, शुरुआत में जब मैं गया तो वहाँ लोग कचरा फेंक रहे थे, तो मैंने उनको समझाने का कोशिश किया तो कौन मानता है, एक आदमी की कोई नहीं सुनता है, बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुनता, तो मैं एक साधारण आदमी था, मेरी कौन सुने। तो मैंने कहा अब ये सुनने वाला तो है नहीं, तो मैंने वो जो मेलों में हमारे विष्णु समाज के लगभग अपनी आमदनी का 10% चुग्गा पक्षियों के लिए, गायों के लिए लाते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े चुग्गा घर बनते हैं, वहाँ वो चुग्गा घर के लिए बोरी कट्टा भर के लाते हैं बाजरा का या गेहूं का, जो भी धान उनके फसल होती है वो ला के वहाँ डालते हैं, तो वो उसका खाली कट्टा पड़ा था। मैंने देखा अब इस कट्टे का उपयोग तो मुझे ही करना चाहिए, मैंने वो कट्टा उठाया और वहाँ जितना भी बिखरा हुआ कचरा था वो उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा विष्णु समाज के लोग थोड़े मानते कम है, कुछ अलग टाइप के हैं, मानेंगे नहीं, वो नहीं, मैं कचरा बींद रहा हूं मैं।

0: किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को धक्का नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ माई मदर लैंड प्लानिट, मैं धरती माँ की स्वच्छता के लिए काम कर रहा हूँ, और इसमें भी मुझसे कोई धक्का मुक्की होगी तो मैं मेरे सहन करूंगा।
1: जी सर, सलाम है आपके कार्य को, और आज भी वो कारवा जारी है और
0: बिल्कुल,
1: लोग
0: यह
1: जो
0: शुरुआत में ऐसा हुआ,
1: जी
0: फिर लोगों ने मेरे हंसी मजाक भी कौन चुके और फब्तियां कसने में कौन चुके, किसने कहा पागल हो गया, किसी ने कहा इसकी नौकरी चली गई, किसी ने ये कहा गया अब ये फटीचर हो गया, जो उनके मन में आता था वो कह रहे थे। लेकिन मेरा टारगेट था, मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित किया। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ और रोड से जा रहा हूँ तो कहीं गोलाई भी आती है, कहीं पुल भी आता है, कहीं बाईपास भी आते हैं, कोई कुछ भी आता है, लेकिन मेरा टारगेट जयपुर जाने का होता है तो मैं हर हाल में उसी रोड को चुनता हूँ जहाँ जो जयपुर जाती है, भले बीच में रास्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो भी मैं उससे बच के आगे यहन कहन में पहुंचता हूँ। वैसे मेरा टारगेट था, मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इस फील्ड में धरती माँ की सेवा करने में मेरे जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैंने वैसे किया। हालांकि मेरे पास खूब सारे ऐसे भी अवसर आए, परिवार के लोगों ने भी मुझे शुरू शुरू में कहा कि ये हमारे समाज, मेरे परिवार का, हमारे खानदान का नाक कटा रहा है, गंदगी उठा रहा है। परिवार के श्रीमती जी भी थे वो शुरू शुरू में, उन्होंने, उनकी सहेलियों ने और उनके लोगों ने, उनके परिवार जो उनकी बहनें हैं,
1: जी
0: उनके जो पीर की परिवार के लोग, उनको भी थोड़ा ऐसे महसूस हुआ, तो उसने भी अपने आप में नाक में सर डाली और मेरे को भी कभी व्यंग्यात्मक रूप से कभी कभी बोल देती थी, लेकिन वो भी मैंने सहन किया क्योंकि मेरा लक्ष्य था, मुझे आगे बढ़ना था। और लोग तो कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य था, तो मैंने भगवान की कृपा और प्रभु की कृपा से मैं मेरे उस रास्ते पे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मुझे समय मिलता, मैं हाई कोर्ट से सर्विस से छुट्टी लेके, परमिशन लेके मैं उस लक्ष्य पे काम करने लग गया।
1: जी सर, कभी ऐसा लगा नहीं है कि अभियान छोड़ देना चाहिए?
0: नहीं, कई बार ऐसा लगा कि कभी कभी मैं अकेला जाता था, बिल्कुल अकेला, तो मेरा चेहरा भी उतरा हुआ था कि मैं अकेला जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ स्लोगन लिखी हुई तख्तियां होती थी, कुछ बैनर होते थे, कुछ पर्दे होते थे, कुछ अन्य सामग्रियां भी होती थी, मेरे खुद के कपड़े भी होते, ऐसे 3-4 बैग हो जाते थे। 4 बैगों को उठा के किसी साथ वाले राई को मैं निवेदन करता था कि थोड़ा मेरे हेल्प कर दो, तो उस समय लगता था कि तुम करने क्या जा रहा है, अकेला क्या कर लेगा, लेकिन फिर प्रभु कहते थे कि अरे भाई, जो अकेला करता है ना उसको किसी का इंतजार करना नहीं पड़ता, तो जब अकेला चलता है ना उसको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो लेट नहीं होता है, वो हमेशा सही टाइम पे पहुंचता है। तो मैं अकेला था तो मुझे बड़ा ही खुशी हो रहा था कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा, मैं स्वयं ही डिसीजन ले रहा हूँ और स्वयं ही फाइनल डिसीजन, और स्वयं ही मन बंद कर रहा हूँ और स्वयं ही खोल रहा हूँ। मेरा काम शुरू भी मैं, श्री गणेश भी मैं कर रहा था और वाइंड अप भी मैं कर रहा था, तो मुझे कोई दर्द नहीं था। और धीरे धीरे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आने लगा, लोग कुछ लोग हेल्प के लिए, कुछ हेल्प नहीं होती थी तो तारीफ करने लगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे 2 जुड़े 4 जुड़े, और शुरू में जो आज मेरे साथ में थे, शुरू में थे वो अब एक भी नहीं है था, लेकिन मेरा कारोबार चल रहा है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने छोड़ते रहते हैं, रोटेशन बन गए। तो अभी भी
1: जी
0: मैं, हमारी कब शादी ब्याह में जाते हैं तो 10-20-30 हो जाते हैं, मेलों में हम 50-100 हो जाते हैं, और काम बेहद बेहतरीन तरीके से चल रहा है।
1: जी सर, तो सर धार्मिक मेलों में और जो पर्यटन स्थल है वहां पर प्लास्टिक रोकने के लिए विशेष प्रयास आप क्या कर रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो कैसे कर सकते?
0: बिल्कुल सही है, हर चीज शुरू से करना चाहिए। हम, मैं एक मोस्टली मैं जहां भी जाता हूँ ये एग्जाम्पल देता हूँ, वॉशरूम और किचन का। अपने परिवार में ही बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं 70-80 साल के, और उनकी मानसिकता थोड़ी सी, या सोचने की शक्ति या यादगार शक्ति कम हो जाती है, तो वो भूल जाते हैं। और छोटा बच्चा होता है 1.5-2-3 साल का, तो वो भी नहीं समझता वॉशरूम क्या होता है और किचन क्या होता है, लेकिन उनकी इतनी मानसिकता विकसित हो जाती है कि किचन से भोजन लेके वॉशरूम में जाके कभी नहीं बैठता, चाहे बच्चा भी नहीं बैठता, बूढ़े आदमी भी नहीं बैठते। और वॉशरूम का डब्बा या बाल्टी जो होती है, जो विशेष रूप से हम वहाँ काम लेते हैं, वो दूसरी जगह काम नहीं लेते, वो कभी लाके किचन में या दूसरी जगह नहीं रखते, या पानी के जो अपन जिसको परिंडा बोलते हैं वाला के कोई डब्बा या बाल्टी नहीं रखते, इतनी मानसिकता उनकी और बन
1: जी
0: जाती है। तो हम तो जागरूक है, इतनी मानसिकता तो हमारी होनी चाहिए कि जो चीज हम नहीं चाहते वो दूसरों को देंगे तो वापस हमें अच्छी कैसे मिलेगी। जैसे मैं आपको अभद्र शब्द भाषा में बोलूंगा तो आप क्यों मेरे को सभ्य भाषा का प्रयोग करेगी, कैसे करेगी, कैसे कर पाएगी, कर नहीं पाएगी, कौन से जलाव नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम करते हैं, हम लोगों को बेहतरीन व्यवहार देते हैं तो लोग हमें शाबाशी देते हैं, ऐसे ऐसे करते करते के लोगों को मैं, हम समझाते हैं कि तीर्थ स्थान, ध्यान, साधना, तपस्या और पूजा की और आत्म बल को मजबूत करने की जगह है, ये कोई कचरा फेंकने की और मौज मस्ती करने की या पिकनिक स्पॉट नहीं है। तीर्थ स्थान तो संकल्प को मजबूत करने की, हे भगवान मैं आपके आया हूँ और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरे मानवत्व को पहचानूं और अच्छा मानव जीवन जी के किस प्रकार मैं मेरी ये यात्रा पूरी करूं, ये तीर्थ स्थान उसके लिए है, न कि कोई नगर पालिका मेला होता है जहाँ झूले लगते हैं, लोग आइसक्रीम खाते हैं, जो भी चीज जो मर्जी हो वैसे चीजें खाते हैं, उसके लिए नहीं है। लेकिन लोग आजकल उसको तीर्थ स्थानों को भी सिर्फ एक वो कहानी में बेल घूमता ना, वैसे हर जो महीने एक फेरी दूंगा, अरे फेरी शरीर की नहीं लगानी है, फेरी विचार की लगानी है कि मैंने पिछले गुरु जो भी तीर्थ स्थान था वहां जाके आया, उसके बाद में मेरे भावना में, मेरे क्रियाक्रम में, मेरी सोच में क्या कुछ फर्क आया। अगर फर्क आया है तो मेरी यात्रा या मेरी जो वहां धोख देना या वहां साधना करना वहां जाना सफल है, नहीं तो फालतू ही गोता है और भगवान को धोखा देना। भगवान तो क्यों धोखा खाएंगे, धोखा तो खुद को ही मिलता है, क्योंकि वो एक बिना मन के बिना कोई संकल्प के वहां जाके आता है तो तेल जलता है और खुद की एनर्जी वेस्ट होती है, मिलना कुछ नहीं है। भगवान तो आत्म अनुभूति है, अपने आप के अंदर विराजमान है, पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है। पर एक मैं एक छोटी सी बात करके आपको बताऊंगा कि जब भगवान एक बार क्या हुआ, सभी लोगों ने अपनी इच्छाएं जताई और भगवान से पूछा कि हे भगवान हमें दो वो दो वो दो वो दो, अपनी अपनी, मेरे परिवार में मेरी वाइफ नहीं मानती, बेटा नहीं मानता, सासू नहीं मानती, रो तो भगवान परेशान हो गए कि जाऊं कहां, तो भगवान कहीं छिप गए, तो दूर पहाड़ में छिप गए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, वहां भी जाके ढूंढ लिया, यहाँ आके छिप गए और हम तो दुखी है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो हम मनुष्य के हृदय में आके बैठ गए। अब जिसको भी अगर भगवान को पहचानना है तो अपने हृदय के खुद को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। तो खुद के अंदर जब हम सोच से अपने आप को अंदर झांकेंगे, अपने अंदर आत्मा को देखेंगे, तभी हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। बाहर कहीं किसी भवन, किसी बिल्डिंग या किसी मंदिर में भगवान नहीं विराजमान है, भगवान अपने अंदर ही। मनुष्य के अंदर दो लोग रहते हैं, एक राक्षस एक एक भगवान। राक्षस इट मीन्स पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी, और भगवान इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, देवत्व, देवत्व और राक्षसत्व, ये दो चीज मनुष्य के अंदर रहती है। अगर मैं लगातार लगातार लगातार मैं अच्छे आदमियों के साथ रहूंगा, अच्छी संगति के साथ करूंगा, तो मेरे अंदर देवत्व का परसेंटेज बढ़ जाएगा और राक्षसी परसेंटेज कम हो जाएगा। और मैं अच्छे विचारों को इग्नोर करता जाऊंगा तो मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आएगी, हर एक से झगड़ा कर लूंगा, पुलिस केस हो जाएंगे, जेल में भी जाऊंगा, वापस पेरोल पे आके भी मैं उल्टा काम करूंगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। तो दो प्रवृत्तियों से ही मनुष्य का निर्माण होता है, और दूसरी एक प्रवृत्ति से निर्माण होता है, दूसरी प्रवृत्ति से मनुष्य का क्या विनाश होता है। ये मेरे विचार है, व्यक्तिगत विचार है।
1: बिल्कुल, तो अगर हम पॉजिटिव विचारों के साथ रहेंगे तो हम पर्यावरण के लिए भी सही काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही है, अगर हम प्रकृति का पेड़ है, पेड़ को काटेंगे फिर हमें छाया चाहिए, तो पेड़ को, जिस पेड़ को हमने काटा वहां छाया कैसी रहेगी, वो तो जगह खाली हो जाएगी। अगर छाया है चाहिए तो पेड़ लगाए। अब आजकल क्या करते हैं, अपन पाश्चात्य संस्कृति का फॉलो करते हैं, और बड़ी बड़ी शादियों में देखा होगा गरीब तो हाथ में कांदा रोटी लेके खा लेते हैं, बड़ी शादियों में चाउमीन के लिए अलग प्याला प्लास्टिक का, आइसक्रीम के, आइसक्रीम के भी अलग अलग फ्लेवर वो, और उसके अलग प्याले, कितने ही प्रकार के वो गोलगप्पे के लिए अलग प्याला। एक आदमी शादी ब्याह में, बड़ी शादी ब्याह में, रईस की शादी में 100 बर्तन काम में लेता है एक टाइम के भोजन के लिए। हम जा किधर रहे हैं, जा किधर रहे हैं, ये विचार भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो रईस होते हैं, वो देखा हमारा तो जन्म धरती को गंदा करने के लिए होता है, सफाई करने वाले तो कोई दूसरे हैं, हमारे लिए, हम कोई सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुए। और चाहते हैं, हर आदमी चाहता है हमें अच्छा व्यवहार मिले, लेकिन हम देवे नहीं देवे, ये हमारी बात, तो ये कैसे हो सकता है, संभव हो सकता है? छोटा बच्चे को भी अगर हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वो रूट जाएगा या वापस ऐसा जवाब देगा कि हमारी बोलती बंद हो जाएगी।
1: जी जी, तो सर आपने हजारों मेलों में और धार्मिक आयोजनों में सफाई अभियान चलाया है, कोई यादगार अनुभव साझा करें हमारे साथ।
0: बिल्कुल, मैं मेरे खुद के ही जो विष्णु समाज के मेले, वहाँ हम कचरा बीन रहा था, तो पेरिस से एक मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र आया फ्रैंक, वो जेल, तो उसने वो विष्णु समाज के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहा था, तो वो 2-3 मेलों में मुझे फॉलो किया और मेरे को कचरा बीनते हुए देखा, तो उन्होंने व्हाट आर यू डूइंग, मैं आई एम पिकअपिंग गार्बेज हियर टू मेक माई मदर प्लानेट नीट एंड क्लीन एंड आई वॉन्ट टू अवेयर द पीपल इन दिस रिगार्ड। तो उसने कहा आप इंग्लिश भी जानते हो, मैं थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी ऐसे, मैंने कहा मैं इतनी जानता हूँ, तो कहा ठीक है इतनी, इट्स एनफ। उसने कहा इतनी बहुत है मेरे लिए, मैंने जो मुझे आदमी चाहिए था उसको मैंने सर्च कर लिया। फिर एक मेले में वो मिला, मुझे दूसरे मेले मिला, तीसरे मेले मिला, हर मेले में मैं वही काम करता हुआ उसको पाया गया, उसने फोटोग्राफ खींचे। फिर पेरिस फ्रांस का था, वो पेरिस में जाके आर्टिकल छापा। 2008 में उसने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही थी, तो उसमें मुझे इनवाइट कर लिया, तो मैंने मना कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल टू कम देयर, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को और फॉलो करने में मैं असहज महसूस कर रहा था, मैंने मना कर दिया। तो उसने कहा खमू इट्स नॉट ईजी टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, सो यू डोंट से मी नो आफ्टर हाफ एन आवर वन पर्सन कॉल्ड यू और गेटिंग योर कंसेंट, सो डोंट से हिम आई डोंट वॉन्ट टू कम देयर, यू शुड से हिम आई हैव नो प्रॉब्लम टू कम देयर, आई वाना कम देयर टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाई ऑफ यू। तो ठीक है, उसने बात की और मैंने उसको कहा भाई ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ। आधे घंटे बाद मिस्टर फोन किया, आर यू मिस्टर खमूराम बिश्नोई, मैंने कहा यस आई एम खमूराम बिश्नोई, वुड यू लाइक टू कम पेरिस टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एज ए कीनोट स्पीकर, मैंने उसने मना किया हुआ था कि मना मत करना, मैंने कहा यस आई हैव नो प्रॉब्लम आई विल कम देयर कम व्हाट मे। फिर उसने बुलाया, मैं 2008 में गया, 11 में गया, 12 में गया, 13 में गया, 14 में गया, 15 में मेरी फ्लाइट मिस हो गई, टाइम मिस रीड कर लिया, और 18-20 में भी मेरे को इनवाइट किया था उन्होंने, लेकिन वहाँ कोरोना काल आ गया तो उसमें वो मिस हो गई। अब 2028-27 का भी वो कह रहे हैं कि वी वांट टू इनवाइट यू। देखो प्रभु क्या, मैं वहाँ जाने के लिए मेरा टारगेट नहीं है, मेरा का टारगेट तो है मेरी धरती माँ को स्वच्छ रखूँ, लेकिन अगर वो बुला लेते हैं तो मैं उनके यहाँ भी मना नहीं कर पाता।
1: जी सर, तो कैसा अनुभव रहा आप फ्रांस स्विट्जरलैंड में भी भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया और आपकी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी विदेश में प्रसारित हो चुकी
0: है। 52 मिनट की 2011 में 52 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने, फ्रेंच चैनल्स पे वो रिलीज हुई थी, और 2011 में ही पेरिस के मेट्रो रेलवे स्टेशन पे 100 फीट बाई 150 फीट की फोटो एग्जीबिशन भी मेरी रही। मैं उस समय 2011 में वहां गया था तो उस एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसके साथ में मेरे फोटोग्राफ्स भी उसने लिए। देखो खमू यू आर वेरी बिग पर्सन हियर, यू कैन सी दिस फोटोग्राफ्स, मैंने देखा तो वास्तव में बहुत लंबी चौड़ी जैसे बड़े बड़े होल्डिंग पे विज्ञापन होते हैं ना, वैसे वैसे मेरी फोटो लगी हुई थी। मैं अपने आप को भगवान को बार बार ही धन्यवाद दे रहा था, ये भगवान में एक छोटे से कचरा भीने वाले आदमी को आपने इस प्रकार प्रेजेंटेशन देने के लिए फोटोग्राफ्स में शामिल किया है, मैं आपका ऋणी हूँ और वो ऋण उतारने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में मैं धरती माँ का और प्रभु का ऋणी हूँ, क्योंकि एक मनुष्य होना जन्म लेना ही अपने आप में कितने ही कर्मों के बाद में, कितने ही अच्छे कर्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म इस यू आर नेक्स्ट गॉड, यू आर सेंडर ऑफ द गॉड, भगवान के ही रूप हो, भगवान ने ही आपको भेजा है, लेकिन हम आके यहाँ भूल जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम तो सूर्य है। अरे तुम बहुत कुछ हो, कितने भी महान महान वैज्ञानिक हुए या नेता हुए लोग हुए या स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, बहुत छोटी उम्र में गए लेकिन इतना कुछ देके चले गए कि कितनी शताब्दियों तक वो अमर रहेंगे और उनका संदेश कोई मिटा नहीं सकता। वैसे ही जाम्बोजी महाराज और भी घने ऐसे लोग हुए हैं, रामदेव जी हुए हैं और भी ऐसे खूब लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन समाज को भी चाहिए कि वो स्वीकार करे।
1: जी सर बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं का क्या रोल है पर्यावरण संरक्षण में सर, आप क्या कहते
0: हैं? मैं इस समय हमेशा कहता रहता हूँ मैडम के द यूथ जनरेशन इज गार्जियन ऑफ द प्रेजेंट एरा, वर्तमान के युवा क्या है, संरक्षक है। जो सीनियर सिटीजन थे जिनको अपन पूर्वज अपन बड़े रा कह दें या हमारे वरिष्ठ जन कह दें, जिन्होंने अपनी पारी खेल ली है, वो 70 के हो गए, 80 के हो गए या 60 से ऊपर हो गए, उन्होंने पारी खेली, जैसे उनका कर्तव्य था उन्होंने अपन को साफ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन धरती दी। वर्तमान समय युवाओं का है, बच्चों को अभी समझ में नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, तो अगर वर्तमान युवा जाग जाएंगे तो धरती को कोई गंदा नहीं कर सकता, युवा इग्नोर करेंगे तो धरती को कोई बचा नहीं सकता। धरती पर इतना कचरा हो गया, बड़े बड़े शहरों में तो 500-500 फीट ऊंचे पहाड़ बन गए। मैंने दिल्ली में देखे, पहले देखा मैं इस पहाड़ी पे चढ़ूंगा, फिर मैं पहाड़ी के पानीपत की ओर जा रहा था, पहाड़ी के नजदीक गया तो ऊपर आग दिखी, मैं वो पहाड़ी पे आग खींचने लगे, आग ये है कि पहाड़ी की आग नहीं है क्या, ये कचरे के ऊपर आग लगाई हुई है। और फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा वो डंपर होता ना वो ऊपर खाली होता, देखा माचिस की डिब्बी जितना दिख रहा था, इतने इतने कचरे के ढेर लग गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं समुद्र को, हमने सही नहीं छोड़ा समुद्र का, मैं अभी जू बीच पे गया था, वो तो ज्वार आता है ना तब जो कचरा समुद्र का देता है ना वो पूरा का पूरा वापस लुटा के और उनके घरों के आसपास किनारों पे लाके फेंक देता है। तो जब तक मनुष्य धरती को देना नहीं सीखेगा तब तक धरती दे नहीं पाएगी, लंबे समय धरती नहीं दे पाएगी, धरती अब इग्नोर करना बंद कर देगी और हम मरेंगे। और हम वैसे दिल्ली में अपन बड़े शर्म, आपने भी कहीं सुना होगा देखा होगा वहाँ वो जीना कोई जीना नहीं है, अमिताभ बच्चन वाला वो डायलॉग किसी एक फिल्म में था कि ये जीना भी कोई जीना है। तो इतनी गंदी बदबू आती है बड़े बड़े नालों के पास, कि एक दिन भी हमारा बाहर, हम जो खुले एरिया में रहते हैं जैसलमेर बाड़मेर या मरुस्थल वाले उधर जाते ना, तो मन नहीं होता कि घंटा आधा घंटा यहाँ रुके, लेकिन लगातार जब हम वहाँ रहते हैं तो हमारी भी नासिकाएं वो ऐसी स्वीकार कर लेती है गंदगी को, और हम गंदगी में रहने में मजबूर हो जाते हैं।
1: जी सर। सर, हर घर अगर कोई संकल्प ले या छोटा छोटा प्रयास करे तो क्या हम अपने देश को परिवर्तन कर सकते हैं? अगर
0: बिल्कुल
1: कर
0: बिल्कुल,
1: तो
0: मदर
1: सकते हैं,
0: टेरेसा ने
1: लेकिन
0: कहा,
1: चाहे।
0: बिल्कुल मदर टेरेसा ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि धरती को हम, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि धरती को तो साफ रख नहीं पाए और चांद की तरफ दौड़ रहे हैं, और गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास वो सब कुछ है जिससे हम अपन जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमारी लालसा को पूरी कोई भी नहीं कर सकता। अब लालसा किसी भी चीज से पूरी नहीं होती। मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी और पुरानी साइकिल थी, मैंने नई साइकिल ले ली तो फिर उसका नया ब्रांड और नई वो उसकी और हाई वर्जन देख लिया, फिर साइकिल से मोटरसाइकिल आई, कार आई, कार का नया ब्रांड। तो आदमी कभी भी संसाधन से, मेटेरियलिज्म से, मतलब भौतिक चीजों से आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट आदमी होता है अपने विचारों से संतुष्ट होता है कि मेरे लिए बहुत है,
1: जी
0: मेरे
1: सर,
0: लिए बहुत है,
1: बिल्कुल,
0: ये बात है।
1: संतुष्ट रहना और विचारों से ही हम
0: संतुष्टि बाहर
1: संतुष्ट
0: नहीं है,
1: होते।
0: संतुष्टि बाहर कहीं भी नहीं है, साधनों में संतुष्ट नहीं है। जोधपुर में मेरा, मतलब मैं जहां भी जिस शहर में रह रहा हूँ, मेरा पूरी पॉश कॉलोनी में सबसे अच्छा बंगला है, लेकिन साथ वाला, मेरे खाली जमीन पड़ी, उसने डिजाइन थोड़ी बदल के मेरी वाले से 21 डिजाइन लाके बना दिया, तो मेरे रात को नींद आनी बंद हो गई। अब जबकि बहुत बड़ा मेरा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी उसने डिजाइन नहीं ली तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ, उसकी डिजाइन के सामने देखता हूँ तो मेरा पिछता होता है, यार क्या कर लिया ये, अपने पैसे तो खूब लगे लेकिन इतने सारे डिजाइन नहीं बना ली। तो कहने का मतलब है आदमी किसी भी चीज से, ऐश्वर्य से, धन से कभी संतुष्ट नहीं होता। और कुछ लोगों ने विकास की जो दौड़ में है वो कहते हैं आदमी को संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ ऐसी हो गई है कि अब मनुष्य का जीवन ही निकलने लग गई है। छोटे बच्चे भी मोबाइल के अंदर इतने घुस रहे हैं कि मोबाइल उनकी माँ से भी प्यारे लगने लगे, माँ का दूध पीना छोड़ देंगे और मोबाइल की तरफ देखने लग जाएंगे। हम जा किधर रहे हैं ये हमें भी सूझ नहीं रहा है, और हम इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। स्कूल में सिर्फ एक बंद डब्बा में, स्कूल में पहले मैदान होते थे, पढ़ाते थे, अब मैदान गायब हो गए बंद डब्बों में बच्चों को। और कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ, आपने भी देखा होगा मैडम, 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर से बच्चे को सुबह कलेक्ट करते हैं, स्कूल लाते हैं और 3-4 घंटे बैठाते हैं, वापस 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बस में और घुमाते हैं। हम शाम को चाहते हैं कि बच्चा का दिमाग तेज हो रही है, इसकी मानसिकता सुधरे, कैसे सुधरे, वो थकान से मरा मरा हो जाता है, कैसे पढ़ाई करे, कैसा राष्ट्र उत्थान करे जब उसके है ही नहीं। और दूसरे ऐसी पहले हमें कविताएं और भजन और कीर्तन और राष्ट्रपति के गीत गवाए जाते थे, जैसे हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, बढ़ना है बढ़ना है आगे सबसे बढ़ना है, इस प्रकार के निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण ने भूले इतने जब नाव जल में छोड़ी, कितने प्रकार के राष्ट्रभक्ति के और आत्म उत्थान के गीत और कविताएं सुनाई जाती थी, तो हमारे मन में रहता था नहीं ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ होना भी नहीं है।
1: जी सर, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम आपसे बात कर रहे हैं, और आप इतने समय से ये कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं, उनके लिए जरूरी प्रेरणादायी कार्यक्रम है ये।
0: युवा
1: जी
0: आज
1: सर,
0: नहीं जागा तो कल गंदगी में खड़ा रहेगा और पछताएगा, और अगली पीढ़ी, जैसे आज जवान है उसके बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे जब वो जवान होंगे तो जो जिन्होंने जन्म दिया है उनको गालियां निकालेंगे, 100% गया, तो खुद ने तो जन्म दे के हमको छोड़ दिया और धरती को गंदगी करके चला गया, अब हम जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते, मरे तो कैंसर होके मर रहे हैं या कोई और बीमारी लेके मर रहे हैं, हर चीज में जेर है। व्यापारी चाहता है मैं किसान को ठगूं, किसान चाहता है मैं केमिकल डाल के व्यापारी को ठगूं, और एक दूसरे से ठग रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जबकि ठगा आदमी आदमी को रहा है लेकिन फिर भी खुश हो रहा है। जो किसान ठग रहा है वो व्यापारी को केमिकल दे रहा है, और व्यापारी मिलावट करके किसान को दे रहा है या अदर कंज्यूमर को दे के पैसे इकट्ठे कर वो ठग रहा है, तो वो भी देख रहा है मैं मेरे पास पैसे हैं, अरे पैसे किसी काम के नहीं, मरने वाला एक सांस भी पैसे से खरीद नहीं सकते।
1: जी जी सर, बिल्कुल, पैसे से सांसें नहीं खरीदी जा सकती, हमने देखा कोरोना काल में भी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को किस तरह से व्यवहारिक बनाया जाए, क्या क्या कहना चाहिए?
0: बिल्कुल सही है, जब भी बच्चों का जन्मदिन हो टोपियां नहीं बांटी जाए, बच्चों के हाथ से पौधे लगाए जाए, पर्यावरण के संबंध में रैलियां, गीत और उनको चित्रकला आयोजित की जाए कि पर्यावरण के बारे में बच्चा क्या जानता है, तुम अपने अपना एक बैठ जाओ और आपकी भावनाओं को पर्यावरण के बारे में क्या जानते हो वो भावना होनी चाहिए। शनिवार को जो नो बैग डे होना चाहिए, नो बैग डे में पर्यावरण के बारे में उनसे विचार लेने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनको बताना चाहिए कि जीना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा। उनको इस प्रकार की भावना ठूस ठूस के भरनी चाहिए। जैसे पहले हम स्कूल में हम पढ़ाई करके नहीं आते थे, होमवर्क करके नहीं आते तो मुर्गा बनाते थे, छोटे बच्चों को कभी कभी बड़े बच्चों के ऊपर बैठा देते थे और इस प्रकार की हम देते थे ताकि हम लज्जित होते थे कि नहीं पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी और ऐसा हमें करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चों को तो बर्थडे होता टॉफी बांटते हैं, वो बांटते रहे, ये चीजें टॉफी क्या होती है, कुछ नहीं, एक मीठा जेर है। लेकिन हमारे परिवार में और टिफिन में ही डालते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में टिफिन डालते हैं जो बदबू मारता है। एक तो पराठा बनाते हैं, पराठा खुद अपने आप बच्चों छोटे बच्चों के जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब करता है कि छोटे बच्चे बढ़ती वाले होते हैं, पराठे में तेल होता है, वो कैसा ही तेल होता है वो खिलाते हैं। कभी भी बच्चों को वो इस प्रकार के तेल में तली हुई छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देने चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार जब तक हम सात्विकता पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चों के बर्थडे पे भी पौधे लगाने की केक काटे हैं, पौधे लगावे, अगर एक बर्थडे पे एक पौधा होगा तो बच्चा अगर बड़ा होगा और 25 साल का होगा, शादी होगा तो अपनी वाइफ को कह सकता है कि मैं देख 25 साल का हूँ, मैंने मेरे 25 साल में इतने पौधे लगाए हैं, आज अपनी शादी के दिन भी हम 2 पौधे लगाएंगे, एक तेरा होगा एक मेरा होगा। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे और लोगों में भावना पैदा करेंगे कि हर फंक्शन को पौधे से जोड़ेंगे, हर फंक्शन को स्वच्छता से जोड़ेंगे, बाजार से कपड़े की थैली के ले जाएंगे, घर एक अलग ही अलमारी का कोना रखेंगे जहां कपड़े की थैली रखेगा, सामान लाने की थैली है, वहां मेरे बैग में मैं मोटरसाइकिल बैग में मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कम से कम 5 कपड़े की थैलियां हर समय रखती है, मिसेज रखती है, नहीं रखती है तो मैं उनको थोड़ा रौद्र रूप बताता हूँ तो वो झट से रख देती है, एक दिन नहीं रखती है, दूसरे दिन मेरे को मालूम नहीं चलता है, मैं जाके देखता हूँ तो थैलियां पड़ी रहती है। तो जब हम सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम से सब होता है, हम इग्नोर करेंगे। ऐसी ऐसी महीने हैं कि आलू ले रहे हैं और टिंडी ले रहे हैं, आलू और टिंडी अगर हम साथ में ले ले तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो उसके लिए प्लास्टिक अलग थैली मांगती है, हर सब्जी और फिर एक बड़ी थैली, 5 तरह की सब्जी ली तो 5 प्लास्टिक छोटी थैली है फिर एक बड़ी थैली है, घर से कपड़े की थैली ले जाते हैं, शर्म आती है। जब हम शर्म करेंगे तो फूटेंगे कर्म, ये तय है। हम प्रकृति बचाने में शर्म करेंगे तो मरेंगे, हमारे आंखों के सामने हम अपने पूर्वजों को अपने बच्चों को, या कोई भी कैंसर हो गए, कोई कैंसर से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, कोई किसी से मरेगा और हमें सहन करना पड़ेगा। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा,
1: जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। सर आपकी जो अभियान है कितने स्वयंसेवक जुड़े हुए? जी जी सर,
0: पहले बताया था कि हम छोटा फंक्शन होता ना, हम क्या है वॉलंटियर है, हम किसी से कुछ लेते नहीं, तो जब हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, जिसको जो समय मिलता है उस हिसाब से वो समय निकाल के अपना भाड़ा किराया खुद दे के आता है। तो शादी ब्याह होते हैं वहाँ 10-15 होते हैं और मेले होते हैं, धार्मिक मेले होते हैं तो वहाँ संख्या थोड़ी हमें बढ़ानी पड़ती है, उस समय हम कभी 50 हो जाते हैं, कभी 100-150 हो जाते हैं, वो मेले की और उनके लोगों के आने की आह्वान पर उनकी रुचि के अनुसार, दबाव कहीं नहीं होता, दबाव वाला काम भी नहीं करता।
1: जी जी सर,
0: जो बिना दबाव वाला एक आदमी 15 आदमी काम कर लेगा और दबाव वाला 15 आदमी एक आदमी काम नहीं करेगा, कहीं पेड़ के नीचे जब बैठ जाएगा या कहीं 2 मिनट में कहेगा मेरी मासी आई हुई है 2 मिनट मिल के आता हूँ, मासी क्या आई हो, शाम तक ही वापस नहीं आएगा।
1: जी
0: ये होता है
1: जी।
0: काम सब संकल्प काम करता है, शरीर काम नहीं करता है, जुनून काम करता है, बॉडी काम नहीं करती, जुनून काम करता है, संकल्प मजबूत होता है, हमें करना होता है, हमारी भावनाएं होती है, हमें कुछ देने की इच्छा होती है, तब काम होता है। काम आदमी किसी आदमी का कोई शरीर काम नहीं करता, उसके अंदर संकल्प क्या है और क्या वो धरती को देना चाहता है, किस प्रकार का जीवन जी के दूसरों को देना चाहता है वो काम करता है। कभी ये मत सोचना कि बॉडी काम करती है, बॉडी काम तो सिर्फ है भार उठाना, वो मेरे से एकदम छोटा बच्चा हूँ मेरे 10 किलो भार उठाए, लेकिन एक बहुत मुस्टंडा है वो हो सकता है 50 किलो है, 2 क्विंटल ही उठा ले, पहलवान है तो 2 क्विंटल ही उठा ले, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप किसी काम को अंजाम देने के लिए मेहनत करेंगे तो वो भावना से होगा। पहलवान ही बनेगा तो पहले उसकी भावना होगी शुरू से कि मैं बड़ा होकर पहलवान बनूंगा तो वो बन पाता है। तो बच्चों के अंदर ये भावना हम पैदा करेंगे शुरू से, बच्चा अगर तू ऐसा काम कोई मत करना जिससे तेरी और तेरे खानदान की और हमारी इज्जत मिट्टी मेट हो जाए, हम लज्जित हो जाए, ऐसा काम मत करना, ऐसा काम करना कि हमारा गांव भी नाज करे, शहर भी नाज करे, और हो सकता है तेरा नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच जाए और पूरा राष्ट्र तुझसे सुने, ऐसा बेटा बनना है तो ऐसा बन बेटा। बाकी शरीर लिए तो जानवर घने घूमते हैं, द मैन इज द मोस्ट नोटोरियस एनिमल ऑफ द प्लानिट, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ, धरती का सबसे गया बेटा जीव है तो मनुष्य है, धरती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जीव है तो मनुष्य है। किसी शेर ने अपना पेट भरने के बाद में दूसरे शेरों को या गंदगी को प्लास्टिक का उत्पादन नहीं किया या किसी प्रकार के दूसरा कोई चीज का उत्पादन नहीं किया। जो कर रहा है मनुष्य कर रहा है और जो नुकसान पहुंचा रहा है मनुष्य कर रहा है। मनुष्य कहता मैं बुद्धिमान हूं लेकिन वो है बुद्धिहीन। एयर केस में बुद्धिमान है, परसेंटेज बुद्धिमानों का बहुत ही कम है, सिर्फ दो पैरा वाला जानवर है, दो पैरा वाला जानवर। मनुष्य ये मत समझना कि मैं मनुष्य हूं। मनुष्यता लाने के लिए बहुत ज्यादा विचार करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, सवेरे उठ के सोचना पड़ता है व्हाट इज माय टारगेट ऑफ माय डे, व्हाट इज टारगेट ऑफ माय होल लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस प्रकार जीवन जी के आगे बढ़ना है। क्या हम सिर्फ एक जानवर बन के सुबह शाम भोजन करना और सो जाना, वो करना, दाल रोटी लाना, बच्चों को जिमाना, सो जाना, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता यह है अपना परिवार पाल के और दूसरों को भी कुछ दें, प्रकृति को भी कुछ दें, तब तो है मनुष्यता। सिर्फ अपना अपना ही पेट भराई करें तो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर भी करते हैं। एक जहरीला सांप भी करता है, एक कीड़ा मकोड़ा भी करता है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने कहा कि मनुष्य अपने अगर करते हुए को भूल जाए तो वो किसी जानवर के समान है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे,
0: जानवर समान नहीं है मैडम, जानवर से गया बीता है, जानवर से डाउनफॉल है। जानवर तो मतलब कोई गाय ने किसी ने धरती में इतना गंदगी नहीं कही। आज हम जानवरों की कंटीली बाड़ियां लगा के हिरणों को खत्म कर दिया। अब हमारे जोधपुर की तरफ हिरण खूब सारे थे हमारे खेतों में, हमारे घर के जब हम रात को बाहर घर के आगे खाट बिछा के सोते थे ना तो पास में हमारे चारों तरफ हिरण बैठे रहते। अब क्या हुआ, हर लोगों ने कंटीले तार लगा दिए तो हिरण को जो पालतू कुत्ते हैं और जो गलियों में घरों में होते हैं वो चार पांच का झुंड बना के हिरणों को मार देते। क्यों, वो जैसे वो हिरण दौड़ने की कोशिश करता सामने जाली आती थी, और कुछ लोग तो जाली भी इतनी बारीक लगाते हैं, सफेद जाली लगाते हैं वो प्लास्टिक वाली, उसमें और भी फंस जाता है, उसको दिखती भी नहीं है मैं कहां जा रहा हूं, मैं छलांग लगाता है लेकिन जाली में फंस जाता है, कुत्ते आ जाते हैं। अब हिरणों की तो टोली खत्म हो गई, अब किसकी आई है, जिसको अपन कहते हैं ना सूरों की। अब जहां भी देखो, जैसलमेर देखो, बाढ़ में देखो, बीकानेर देखो, हरे कहते हैं कि यार हमारे खेतों में सूर बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो चीज सुंदर थी उसको गायब कर दिया, तो अब सूर ही आएंगे।
1: बिल्कुल, जानवरों के घर तक हम पहुंच गए, उनके लिए जगह ही नहीं बची है।
0: अब बिल्कुल सही है, जानवरों का घर तक पहुंच गए, जानवर जाए कहां, तो जानवर आपके घर में आएंगे, और जानवरों की अच्छी क्वालिटी को खत्म कर दिया तो गंदी क्वालिटी है जो सूअर है वो वही आएंगे। अच्छी क्वालिटी जो हिरण थे, जो लोमड़ियां थी, जो वन बिलाव थे, जो भी है, जो हमारे प्रकृति के लिए फायदेमंद थे, उनको हमने उनकी जगह ही नहीं छोड़ी, तो अब जो गलियों में गंदगी में बैठे रहते हैं वो हमारी तरफ बढ़ने लगे।
1: बिल्कुल,
0: वही अपने साथ होता है। हम आगे अच्छे संस्कारों को इग्नोर करेंगे तो बुरे संस्कार तो स्वतः ही आ जाएंगे। वो तो कहीं गाली तो बच्चा कहीं भी सीख जाएगा, लेकिन एक कीर्तन भजन सत्संग या एक अच्छी पोएम याद कराने में हमें कितने दिन लग जाएंगे। और गाली तो एक मिनट में आके बोल देगा, डेढ़ दो साल का बच्चा, तीन साल का बच्चा इतनी भद्दी गाली बोलेगा आप अचंभित हो जाओगे, ये कहाँ से सीख के आगे। तो बुरी चीज तो हरेक सीखता। आज मैं इतना काम करता हूँ, मेरा इतना मैं वायरल नहीं हूँ, और एक दिन मैं किसी से झगड़ लूँ तो एक मिनट में मेरा वीडियो इतना वायरल होगा दुनिया देखती रह जाएगी, यार ये आदमी ऐसे क्यों झगड़ रहा है। और जगह जगह देखो, ये पर्यावरणविद खमुराम विष्णु, देखो इसका एक रूप, ये देखो यूं कर करके वीडियो आएंगे।
1: जी सर, नेगेटिव चीज जल्दी वायरल होता है, लेकिन आपने अपने हौसलों के साथ उड़ान अपने भरा है और अभी तक भी आप उड़ रहे हैं पर्यावरण के कार्य के क्षेत्र में पॉजिटिविटी के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैंने मेरा संकल्प ले रखा है, जब तक जिंदा रहूंगा धरती माँ को देता रहूंगा, और ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, क्यों धरती ने मुझे ऐसा जीवन दिया। मनुष्य मैं अपने आप को मनुष्य नहीं मानता, भगवान का रूप ही मानता हूँ, क्योंकि भगवान में मुझ में कोई फर्क नहीं है। भगवान में इतनी है कि भगवान दूसरों को देने का प्रयास करता है, मैं कभी कभी चूक जाता हूँ, इतनी कमी है। भगवान हमेशा हर एक को देता है और मैं कभी कभी देने में चूक जाता हूँ, लेकिन थोड़ा प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ देने का प्रयास करूँ। बाकी मनुष्य ही धरती का भगवान है। भगवान अपन कहते भी हैं कि एक मेरे को आज देवता मिला नहीं तो मैं आज पहुंच ही नहीं पाता, मैं बस चूक गया था, मैं फलन जगह ऐसे हो गया था, फंस गया था, लेकिन एक क्या मालूम देवता कहाँ से आया, मेरे को वहां से उसने बिठाया, ऐसा किया। हम कभी कभी वर्तमान सुनाते ही रहते हैं, तो मनुष्य में ही भगवान विराजमान होते हैं, मनुष्य में ही भगवान और देवता रहते हैं।
1: जी सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि विदेशों से भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या सीखना चाहिए भारत को? आप विदेश भी देखे हैं, भारत भी आपने देखा।
0: इसी बात है मैडम, विदेशों में अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा है, और अपने आप इग्नोरेंस है क्योंकि अपन इतनी इतनी अलग अलग जाति प्रथा में बंट गए हैं और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और कुछ लोग दूसरे कम्युनिटी दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, तो वो देखे हम यहाँ क्यों ऐसी क्यों हम भाव रख रहे हैं, हमें क्या करना है, वो क्या करना है, समझाए तो समझे नहीं तो अपन समझाओ तो वो कहते क्या ठेका ले रखा है तुमने समझाने का। लेकिन वहाँ दूसरे विदेशों में ऐसा नहीं है, वो अपने देश के प्रति भावना है और अपने देश को साफ रखना चाहता है और अपने यहाँ ऐसी भावना नहीं है क्योंकि एक तो आबादी बहुत ज्यादा है और एक अनपढ़ और इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है कि हमें हमारा क्या लेना हमारा क्या करना, सरकार अपने आप करेगी, हम तो पैसा हम हमारे ऊपर टैक्स लेती है वो लेती है वो लेती है, मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूं और दूसरा करे। आप दूसरा ऐसा कैसा, मेरा मुंह मैं ही नहीं धोऊं तो दूसरे को क्या पड़ी है मेरा मुंह धोए के धोएगा। हाँ छोटा हूँ मेरी माँ है, मैं छोटा हूँ मेरी माँ धो दी, लेकिन मैंने उम्र पा ली, मैं 25 का हूँ 15 का हूँ, माँ आके थोड़ी मेरा मुंह धोएगी। तो ये जब तक हम देश और अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, कर्तव्य को हम इग्नोर करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र गंदा होगा और भी ज्यादा बीमारी आएगी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनको कोई लेना देना नहीं है अपने यहाँ गंदगी हुए या गंदगी सफाई रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर का आदमी आके जब बांग्लादेश को क्या मतलब कि भारत की स्वच्छता रहे या नहीं रहे, या पाकिस्तानी क्यों आके अपने बारे में सोचेगा भारत साफ रहे। हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्र को साफ रखे, अपने गांव को साफ रखे, अपने घर को साफ रखे, और यही होगा तब होगा नहीं तो नहीं होगा। हो सकता है किसी कुछ फोर्स कॉलोनी में कोई विकास समिति बना दी और पर्टिकुलर एरिया आदर्श एरिया बना के उस जगह विशेष को साफ रख लिया हो, लेकिन पूरे भारत को कोई साफ नहीं रख सकता जब तक प्रत्येक आदमी नहीं जागेगा और प्रत्येक आदमी का कर्तव्य नहीं समझेगा। जब तक हम साफ रखने में बड़े ही मुश्किल है, जरूर हम अब मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत की जगह जगह वो कचरा टैक्सी चला दी, लेकिन कचरा टैक्सी में नहीं डालते हैं लोग, कचरा डालते नहीं टैक्सी में, वो देखे 50 रुपए लग जाएंगे, 100 रुपए लग जाएंगे या 80 रुपए लग जाएंगे। अब ऐसे लोगों से हम कैसे सफाई करावें, 80 रुपए का गुटखा खा लेगा, जर्दा खा लेगा, पान खा लेगा और कोई रात को ड्रिंक कर लेगा, लेकिन कचरा पात्र का महीने का 80 रुपए कचरा वाले गाड़ी को वो नहीं देगा और कचरा खुले में फेंक देगा और खाता चलता जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लास्ट बात कह के मेरी बात पूरी करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है पहले थूकता है कोने में और फिर चाहता है कि मेरा इलाज बहुत बढ़िया हो जाए। अरे कैसे हो जाए, मतलब अब मैं एक बात लास्ट में और कहता हूँ, मेरे को याद आ जाती है क्या करूँ, आपने कहा ही कहा आप कुछ याद आए जरूर बताना। अब एक गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, आप समझ गए, गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, वो नाराज हो गए आपस में झगड़ने लगे, एक गिरगिट ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या कि ये मानव मनुष्य आदमी बदले जैसे कैसे रंग बदल रहे हो, गिरगिटों ने कहा आदमी बदले जैसे क्यों रंग बदल रहे हो, मतलब गिरगिटों ने हमें उपाधि दे दी कि मनुष्य बहुत ज्यादा रंग बदल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता तो अलग तरह से बिहेव करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता तो अलग बिहेव करता है, और अगर वही एयरपोर्ट पर जाता है तो अलग बिहेव करता है, मतलब जगह जगह बदल रहा है, जगह जगह विचार अपनी एक रूपता रखता ही नहीं है, बदलता जा रहा है। और वही देख लो भी कहीं यहाँ बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी, 100, 200, 300 रुपए लग जाएगी, तो बड़ी बड़ी होटलों में जाता है तो इतना सीधा हो जाता है, गांव का गंवार होता है भी, वो कहीं नहीं थूकता है, बीड़ी भी नहीं सुलगाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पलंग के पास में मरीज बैठा सो रहा ऊपर और नीचे बैठा बीड़ी पी रहा है, समझता सब है लेकिन करना नहीं चाहता, वो रंग बदल लेता है, सब समझते हैं, छोटा बच्चा भी समझता है, मैंने आपको कहा था छोटा बच्चा भी समझता है कि क्या कौन सी चीज कहाँ रखनी है कौन सी कहाँ रखती है। अब ये जब तक हम राष्ट्र को बच्चे बच्चे को नहीं समझाने में सफल नहीं होंगे, छोटे बच्चे परिवार के लोगों को मानेंगे नहीं ये गंदगी ये सही है, बच्चा आगे बढ़ेगा युवा आगे बढ़ेगा तभी होगा, बूढ़ों से हम कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने तो अपनी आदत बना ली है, जो 25, 30, 40 साल से सिगरेट पी रहा है उसको हम पैर पकड़े भाई तू सिगरेट छोड़ दे मरे नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो शुरू कर रहा है उसको रोक दे कहाँ सिगरेट पी रहा है, तो वो हो सकता है वो हमारी बात मान ले, उसको हम प्रोत्साहित करें तो मान ले, ऐसा हो सकता है।
1: तो कुछ अंतिम क्षण में हम पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव है ये इस प्रोग्राम का, तो कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगी, तो एक शब्द में पर्यावरण आपके लिए क्या है, एक शब्द में
0: पर्यावरण यही है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो देना सीखना पड़ेगा, प्रकृति को हरा भरा और साफ सुथरा रखना पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि हम तो कुमोती मरेंगे, हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं, तो फिर जैसा जियो वैसा जियो, मौत बहुत नजदीक आ रही है, मौत दौड़ती आपको झपट रही है और मौत आपको कम उम्र में 25, 30, 35 और हमारी एज 50 से नीचे हो जाएगी, जो जीने की उम्र है ना वो बहुत कम हो आ जाती है, बीमारी है।
1: पर्यावरण मतलब देना है, देना।
0: पर्यावरण का
1: ओके
0: मतलब लेना नहीं है, पर्यावरण मतलब देना। अगर आप जो दोगे वो लौट के आएगी। जैसे इको है, इको आप वैसे ही इको सिस्टम बोलते हैं, इको है। पर्यावरण क्या, इको जैसे अपन बोलेंगे, जैसे कुएं बोलते हैं तो वापस आती आवाज आती है, वैसे ही ये पर्यावरण है। आप जो दोगे वो वापस मिलेगा। मैं घर के बाहर कचरा फेंकूंगा तो उड़ के घर के अंदर आएगा, नहीं आएगा तो बाहर जाऊंगा तब दिखेगा। और मैं घर के अंदर बाहर साफ रखूंगा तो बाहर जाऊंगा तो सफेद दिखेगी, अंदर भी हरियाली दिखेगी, सफेद दिखेगी। वही मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा तो मैं सुंदर लगूंगा, अच्छा लगूंगा, मन में शांति होगी। मैं गंदा कपड़ा पहनूंगा तो लगेगा यार आज क्या पहन लिया, लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग तो दूसरों के लिए भी पहनते हैं। और दूसरी एक
1: सही बात।
0: पर्यावरण की वो बढ़ती हुई, मैं एक बार लास्ट बात कर देता हूँ, जो फैशन है ना, ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। ऐसी ऐसी बहनें हैं जिनके, जैसे जयललिता जब वो सस्पेंड हुई थी, मुख्यमंत्री पद से हटी थी, तो अगर 1,000 जूतों की जोड़ी और वो अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों से, वैसे हमारी बहनों की भी है। हर मिनट

0: मरे नहीं तो वे रोग।
1: ये तो मिनिमलिज्म की बात अब कर रहे हैं, और जो हमारे पुरानी
0: बिल्कुल
1: संस्कृति
0: सही
1: है
0: है।
1: उसमें।
0: एक आदमी ने कहा कि धरती के सबसे सुखी आदमी या सभी एक राजा बहुत था, वो बहुत ज्यादा दुखी था, कितने वेद बुला लिए, सब कुछ बुला लिए, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने, एक ने चलता रहा चलता कहा मैं ठीक कर सकता हूँ। ये कैसा, ये जो सबसे संतुष्ट आदमी है उसका शर्ट लाके इसको राजा को पहना दियो। तो राजा ने दूत छोड़े तो कोई संतुष्ट था ही नहीं, कोई अपनी पत्नी से दुखी था, कोई पति से दुखी थे, कोई माँ से, कोई भाई से, कोई पड़ोसी से, कोई सब लोग दुखी थे। एक आदमी नदी किनारे बैठा था, वो एकदम खुश था, एकदम मस्त था। उससे पूछा राजा के दूतों ने, भाई तुम कैसे हो गए? मैं एकदम मस्त हूँ, एकदम मस्त, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, चिंता, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुम्हारा शर्ट दो मुझे, तुम्हारा बुशर्ट दो, तुम्हारा पहना हुआ कमीज दो, कि मेरे पास कमीज है का, बगैर कमीज बेटा मस्त मस्त मोला बेटा था। तो संसाधनों से, कपड़ों से और संपत्ति से आदमी कोई सुखी नहीं रह सकता।
1: जी बिल्कुल
0: सुख
1: जी
0: है
1: सर,
0: विचारों में।
1: विचारों में और पर्यावरण के प्रति आपके समर्पण भाव आपको सुख देता है। तो आपका पसंदीदा वृक्ष क्या है सर?
0: मेरा पसंदीदा वृक्ष तो ये खेजड़ी है, जो राजस्थान की राज्य वृक्ष है, जिसकी अब सोलर प्लांट की वजह से निरंतर कटाई हो रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि खेजड़ी बढ़ाओ, क्योंकि खेजड़ी की लूंग होता है तो वो भी खाद करता है। खेजड़ी के खोके होते हैं वो हिरणों के और पशुओं और जानवरों के लिए खाने, ऊंट के लिए भी खाने के लिए काम आता है। और सांगरी से हम बहुत अच्छी तरह पंचकुटा की सब्जी बनाते हैं। वैसे वैसे जो अपने भारतीय संस्कृति में दूसरे जो पेड़ है, पीपल है, बरगद है, जो अपने अपने पेड़ है, वो सब विलुप्त
1: आपके
0: होते जा रहे हैं।
1: पसंदीदा
0: और नए नए पेड़ लगाए, कोनो कोरपस नया पेड़ आया है जिसे सब जगह बैन कर रखा है, लेकिन राजस्थान में कुछ जगह लगाए जा रहे हैं, जो 12 मास है लेकिन वो प्रकृति का इतना शोषण कर रहा है। जैसे बबूल, बबूल पेड़ों का राक्षस है, पेड़ों
1: ओके
0: में मनुष्य में जो राक्षस होता है ना, वैसे पेड़ों का राक्षस बबूल है। किसी को नहीं छोड़ा है, हर धरती पहाड़ को नहीं छोड़ा, नदी को नहीं छोड़ा, सड़क किनारे को नहीं छोड़ा और घास को नहीं छोड़ा। जानवर आज अगर गौशाला में है तो बबूल की वजह से है, बबूल उगने नहीं देता घास को। तो
1: जी ओके। तो
0: ये
1: आपका
0: बातें हैं जो
1: खेती
0: मैंने
1: पसंदीदा
0: सुंदर।
1: वृक्ष है, और बबूल को हमें जहाँ कम लगाना चाहिए अगर देख रहे हैं तो उसे
0: छोटे
1: उसके
0: वाला
1: बगले
0: मधमाश
1: हम
0: है, वो राक्षस है, राक्षस तो अपने आप ही पनपते हैं मैडम, बबूल को लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप ही, कितनी ऊंची पहाड़ी हो, कैसे हो, कहीं हो, खेत हो, जमीन हो,
1: वहां पे
0: सड़क
1: लगा
0: किनारे,
1: हुआ है
0: अपन
1: उसे हटा के हम दूसरे वृक्ष लगा सकते, पेड़ पौधे लगा सकते।
0: लेकिन इतने इतने संसाधन अपने पास है ही नहीं, लोग रुचि भी नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं ले रही है, प्राइवेट वाले नहीं ले रहे हैं, अपने क्या करना। और बबूल फैलता जा रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है कि पूरी सृष्टि को खत्म करेगा। अरे इतने बबूल हो गए, आपने देखा, आपसे क्या छिपा है, मैं आपको क्या बताऊं कि हो सकता है पहाड़ी आया जो माउंट आबू में उस तरफ कम होंगे, लेकिन हमारे मरुस्थल में तो इधर बहुत है, सड़कों के किनारे
1: जी
0: और जहाँ खाली हो या नाडी के किनारे हो या तालाब के किनारे हो, बहुत सारे लगते जा रहे हैं। और पूरी जमीन को, घास की जमीन को बबूलों ने घेर रखा है।
1: जी सर, जी सर। सर, जल, जमीन, आसमान, सबसे पहले किसको बचाना चाहेंगे आप?
0: मैं तो कहूँ पांच तत्वों को बताना चाहिए, पांचों तत्व है वही भगवान है। इन पांचों तत्वों, जो जल, जमीन, आकाश, वायु, अग्नि,
1: लेकिन एक
0: इसमें
1: चूज
0: भी
1: करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले किसको बचाएंगे?
0: अब जल को बचाएंगे तो सब बच जाएंगे,
1: जल को
0: जल ही नहीं होगा
1: बचाएंगे,
0: तो पूरी संपत्ति, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जल से ही सब जीव पैदा हुए हैं, जल बच जाएगा तो बाकी सब बच जाएंगे।
1: ओके सर, जी सर, बढ़िया सर। एक चीज जो हर भारतीय को आज ही छोड़ देना चाहिए, आपको क्या लगता है?
0: प्रदूषण फैलाना,
1: प्रदूषण
0: और क्या,
1: फैलाना, ओके।
0: एक आदत
1: प्रदूषण
0: ज्यादा से
1: फैलाना,
0: ज्यादा धरती को हरी भरी रखें, हरियाली में ही भगवान है, भगवान का दूसरा, और हरियाली ही भगवान है, भगवान वही रहेंगे जहाँ हरियाली होगी, हरियाली का नाम ही भगवान है। भगवान, कोई भगवान
1: अरे
0: गंदगी पर जाके नहीं खड़ा रहेगा, जहाँ हरियाली होगी वहीं रहेंगे भगवान। तो
1: जी
0: हरियाली मीन्स प्रभु है, हरि
1: बिल्कुल,
0: वहां जहाँ हरियाली।
1: हरी वहां है जहां हरियाली है सर, बहुत सुंदर बात है ये। और भारत को हरित बनाने का एक उपाय क्या है आपको लगता है?
0: सभी संकल्प लेंगे तब होगा, बाकी अकेले आदमी साहब सब संकल्प लेंगे कि हम हमारी धरती माँ को हरा भरा रखें, हो गया। बाकी कोई ऐसा उपाय नहीं है, किसी के पास कोई जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा डंडा नहीं है कि भारत को हरा भरा बना दे। जब मनुष्य जागेंगे, सब जागेंगे, तभी होगा। ऐसा कोई ऐसा आदमी, एक देवदूत नहीं पैदा होगा या पहुंच भी नहीं पाएगा कि हरे को हरा बना दे। मोदी जी खूब कहते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन अब कितनी सरकारी मशीनरी है, वन विभाग है, कितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े अफसर है, IAS जो IAS के कैडर वाले होते हैं, लेकिन हजारों पेड़ लगते हैं, लेकिन पेड़ों को बड़ा करने
1: जी
0: वाला कोई नहीं है, लगाने वाले खूब है, आत्मा पेड़ों को मारने वाले खूब है, वहां नर्सरी से लगाते हैं और मर जाते हैं बस।
1: जी सर, जी
0: मेरे
1: सर,
0: को कुछ
1: बिल्कुल।
0: कुछ लोग पूछते हैं कि आपने कितने पेड़ बड़े किए, मैं ये क्वेश्चन आपने गलत ही पूछा है। वो कहे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं आप ये बोलो कितने पेड़ लगा के बड़े कर दिए, ऐसे पूछो। मैंने अगर 50 पेड़ बड़े कर दिए तो अपने आप में बहुत, मैं अपने आप को यूं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।

0: मैंने पांच
1: मतलब
0: हजार रुपये
1: लगाना
0: लगा
1: नहीं बट
0: दिए।
1: उनका देखभाल भी करना है सर, ऐसा बोल रहे हैं।
0: हाँ, लगा के देखभाल करके बड़ा करे, और बड़ा दिखना चाहिए, लगना चाहिए। 25 साल तक आप हो तो भी आपको आपके लगाया हुआ पेड़ नजर आना चाहिए, तब तो है। आप लगाया पेड़ है ही नहीं, और आपके तो मैंने तो मेरे जीवन में 50 हजार पेड़ लगा दिए। अरे भाई है कौन, जिंदा कितने हैं वो तो मालूम नहीं।
1: जी सर, आपके बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है एक और कार्यक्रम भी कम पड़ेगा, और इतने सारे उपलब्धियां हैं आपके पास, इतने सारे पुरस्कारों की सूची भी है मेरे पास,
0: मैं बिल्कुल सही
1: लेकिन
0: है,
1: वक्त
0: आपकी तरफ से मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। आई विल बी ऑनर्ड बाई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुझे वहाँ का बहुत बड़ा पुरस्कार देने जा रही है। गुरु जम्बेश्वर
1: आपको बहुत
0: प्रौद्योगिकी,
1: बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन सर,
0: धन्यवाद मैडम। गुरु जम्बेश्वर
1: शुभकामना।
0: प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा।
1: हिसार से, जी सर, जी सर, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, और फिर से आपको एक और
0: मैम
1: पुरस्कार से नवाजा
0: ये
1: जाएगा।
0: सब प्रभु का खेल है, प्रभु ही है, मैं उनको ही समर्पित करता हूँ। जो भी मुझे धन्यवाद देते हैं तो मैं धन्यवाद भगवान को दो कि मुझे मनुष्य बनाया है, इसे ऐसी समझ दी है। तो एक्चुअली मैं काम भगवान कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है, तो मैं तो हमेशा ऋणी रहता हूँ। मैं हमारे परमात्मा भगवान के साथ शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। वो आपने कहीं सुना होगा, एक कोई सेठ दान दे रहा था और आंखें नीचे हो रही थी, तो किसी ने पूछा कि दान दे रहे हो इतना अच्छा करो, फिर नीचे क्यों आके कर रहे हो? क्या देने वाला कोई और है? मैं तो सिर्फ एक बीच की माध्यम हूँ, इसलिए लोग मेरा समझ रहे, तब मेरे को शर्म आ रही है, इसलिए आके नीचे कर रहा हूँ। तो मैं भी अपने आप को, लोग मेरे को कहते हैं आप अच्छा करते हो, तो मेरे को लगता है कि करने वाला भगवान है, मैं नहीं हूँ। मुझे समझ दी, अक्ल दी है तो भगवान ने दी है। मैंने तो मेरे मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। और आई एम डूइंग समथिंग ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जाम्बो जी एंड
1: जी
0: ऑलमाइटी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, और आपके समर्पण भाव को सलाम है, और आपके कार्य क्षमता को सलाम है, देशभक्ति को भी सलाम करते हैं आज हम रेडियो मधुबन के माध्यम से। और दोस्तों, वक्त हो गया है यहाँ से अलविदा कहने का, तो खम्बूराम जी, आपका बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनुभवों को, संघर्षों को, प्रेरणादायक विचारों को भी हम सलाम करते हैं।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए संपर्क किया, मुझसे बातचीत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा मुझे शक्ति दे, समझ दे, ज्ञान दे, अकल दे, कि मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षणों तक धरती माँ को कुछ न कुछ न कुछ न कुछ ऐसा दूं कि मेरी माँ मुझ पर गौरवान्वित तो हुए कि वाह बेटा मैंने
1: बिल्कुल
0: कुछ जन्म दिया है तो कुछ समझ के दिया, तुम उसके काबिल निकला।
1: जी, बिल्कुल, आप सर काबिल हैं, और धरती माता आपके लिए गौरवान्वित है
0: मैं
1: ही,
0: कहता भी रहता हूँ कि
1: और
0: हमारी तीन, मैं कभी कहता भी रहता हूँ कि हमारी तीन माँ, एक माँ जो हमें दूध पिला के मुझे बड़ा करती, दूसरी माँ गौ माता होती है, तीसरी सब माओ की बड़ी माँ, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट मदर, वो कौन होती है? वो धरती माँ होती है जो सब माओ को दूध पिलाती है, सब माओ को भोजन देती है, वो होती है धरती माँ। हम बड़ी वाली माँ नाराज हो जाएगी, छोटी वाली माँ जिंदगी नहीं रह पाएगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही, अगर बड़ी वाले माँ को नाराज नहीं करना है हमको, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, थोड़ा और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें, तो दोस्तों यहीं पर रुकना
0: और
1: चाहते
0: समय की
1: हैं।
0: मांग है, दिस इज द नीड ऑफ आर, ये समय की मांग है, और समय के हिसाब हम काम नहीं करेंगे तो फिर बेहाल होना ही है। पानी पीना है, पानी नहीं पी रहे हैं तो कह रहे हैं वो डॉक्टर कहेंगे भी पानी की कमी होगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा।
1: सही सही बात है, तो समय की मांग को देखते हुए हमें पर्यावरण के लिए एक कदम जरूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी प्रेरणादायी बातों के लिए, और आपके बारे में जानकर के हमारे श्रोताओं को भी बहुत प्रेरणा मिली है, और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से।
0: मैं आपका ऋणी हूं, और प्रभु ने चाहा तो आपने जो भी आशा किया उसका मैं पालन करूंगा मेरे जीवन में।
1: धन्यवाद सर, तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग इस प्रोग्राम को जो है जीवन विकास नाम से भी जानते हैं। तो कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारी जीवन यात्रा में जो भी मेन तो है हमारा पढ़ाई, पढ़ाई के बाद फिर हम लोग अपना एक बिजनेस करते हैं या फिर अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करते हैं या फिर कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में, तो इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन तो होता नहीं है। और इन्हीं चीजों में जो है करियर करे, बिजनेस करे, कैसे करे, इसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। तो ये सोचने का मौका हमें 10वीं 12वीं के बाद हम लोग इस पर फोकस करते हैं, और कई लोग तो 8वीं 9वीं से भी शुरू कर देते हैं, और कई लोग बचपन से ही माँ बाप जो है बोलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो इस तरह की कई बातें होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको इन सारी बातों से, जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, सफल करियर बना चुके हैं, उन लोगों की जीवन कहानी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपना करियर को कैसे चूज किया। तो आज के हमारे खास मेहमान गुणवंत परमार सर हैं, जिनसे हम लोग बात करेंगे। आप दूरदर्शन से रिटायर हुए हैं ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट से, और दूरदर्शन में काफी आपने अलग अलग काम भी किया, मुंबई, गुजरात वगैरह, दिल्ली। तो मैं चाहूंगा कि आज हम लोग गुणवंत परमार जी की जीवन यात्रा के साथ साथ करियर पे उन्होंने किस तरह से कब फोकस किया, कैसे उनका करियर उन्होंने बनाया, क्या क्या पापड़ बेले और सफलता उन्हें कब मिली, ये सारी बातें हम उनसे जानने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से गुणवंत परमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं गुणवंत सर?
2: बस मजे में। ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे फिर से एक बार आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो गुणवंत सर, मैं चाहूंगा कि आप करियर के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले तो अभी आप बताइए कि आपका बचपन कहाँ भी था और किस जगह से आपने स्कूलिंग वगैरह जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो हमारा बोलते हैं, वो कहाँ और कैसे, और उस समय आपके माता पिता क्या करते थे, थोड़ा सा बताइए।
2: राइट। हाँ जी, तो मेरा तो जन्म अहमदाबाद में हुआ था। हाँ। और मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ इनकम टैक्स से, वो पहले मैं असारवा एरिया में मकान था हमारा।
1: हाँ।
2: और फादर मदर दोनों मिल में सर्विस करते थे। हम दो भाई और तीन बहनें थे। मैं सबसे छोटा लड़का भाइयों में। मेरे से दो बड़े भाई थे, वो बड़े भाई तो सर ये गवर्नमेंट जॉब करते थे। उससे बीच वाले जो भाई है वो सेक्रेटरी ऑफ यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटी थे। वो कोरोना टाइम में एक्सपायर हुए। तो बड़े भाई उससे पहले हुए थे। मैं फिर अहमदाबाद ओम नगर सोसाइटी जहाँ कहते असर भाई रहे वहाँ रहता थे। वहाँ मेरा जन्म हुआ तो 4 साल के बाद स्कूल में रखना, तो मेरे बगल में ही यानी मेरे घर के पास में ही स्कूल था। अच्छा। और बीच में सिर्फ एक दीवार थी, तो मुझे पिताजी उठा के रख देते थे ऐसे ही, जाओ स्कूल में पढ़ करके।
1: तो वो गवर्नमेंट स्कूल थी कि प्राइवेट स्कूल थी?
2: नहीं, गवर्नमेंट स्कूल थी। एक से चार तक वहाँ पढ़ा, फिर चार के बाद दूसरी एक स्कूल थी, वो भी उसमें 4 से 2 साल ही वहाँ रहा। बाद में असारवा विद्यालय करके थी असारवा में, उसमें मैं 11वीं तक वहाँ पढ़ा।
1: अच्छा। उसके बाद वो स्कूल क्या दूर था कि वो भी पास ही था?
2: नहीं, वहाँ से दूर था, वो साइकिल लेके जाते थे हम थोड़ा।
1: अच्छा अच्छा।
2: या तो बस है, मगर बचपन में मुझे बस में वॉमिटिंग बहुत होती थी, यानी थोड़ा भी एक दो स्टॉपेज गया तो बस में उल्टी हो जाती थी।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ज्यादा बस में नहीं बैठता था, फिर पिताजी ने साइकिल लाके साइकिल पे जाते थे।
1: अच्छा,
2: और स्टडी किया 11 तक। 11 के बाद हमने CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट ज्वाइन किया मैंने।
1: अच्छा,
2: उसमें
1: अच्छा।
2: आर्ट का कोर्स किया। जब मैं कॉलेज में था इसमें पढ़ता, तो पिताजी तो मिल में सर्विस करते थे, तो पिताजी को ये आर्ट या इसका कुछ नॉलेज इतना नहीं। वो बाद में मुझे डांटते थे कि भाई ये लीटा था, यानी ड्राइंग करने से आपका लाइफ नहीं बनेगा, कुछ पढ़ो, कुछ ठोस पढ़ाई करो, तो डिग्री पाओ तो कुछ बनेगा, ऐसा बात कहते थे।
1: अच्छा,
2: जब मैंने कॉलेज होने के बाद मुझे सिविल हॉस्पिटल में आई डिपार्टमेंट में सर्विस मिल गया था।
1: फाइन आर्ट्स वाला फिर आई डिपार्टमेंट में कैसे?
2: आई डिपार्टमेंट में आर्टिस्ट का पोस्ट था।
1: अच्छा, उसमें क्या करना होता था?
2: वहाँ जो डॉक्टर ढांडा करके बहुत वेल नोन आंख के डॉक्टर थे, उनके मैं ऑपरेशन मुझे दिखाते थे ऑपरेशन थिएटर में जाके, फिर वो पूरा ऑपरेशन कैसा उसका मैं बाहर आके स्केच बनाता था, स्केचेस।
1: अच्छा।
2: तो वो स्केच के ऊपर से वो स्टूडेंट को सिखाते थे कि भाई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्मूंगा। सब स्टूडेंट को तो ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जा सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: फिर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के वो मेरे स्केचेस के ऊपर से वो बताते थे कि ऐसा ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो आर्टिस्ट की पोस्ट वहां थी, उसमें 2 साल करीबन सर्विस किया। बाद में मैं ऐसे ही रमत में ही अप्लाई कर दिया था, बॉम्बे दूरदर्शन में पोस्ट आया था आर्टिस्ट का, ग्राफिक आर्टिस्ट।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था बिनर पटेल करके, दोनों ने हमने अप्लाई किया तो इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू आया तो हमने तो बॉम्बे देखा नहीं था लाइफ में, कभी गए नहीं थे।
1: हाँ,
2: तो
1: हाँ,
2: मेरा
1: हाँ।
2: फ्रेंड बोला चलो घूम के आते अपन, इंटरव्यू
1: अच्छा,
2: तो आया है तो उसी बहाने घूम के आते। तो एक्चुअली इंटरव्यू को तो हमने ऐसे ही दिया, ऐसे ही
1: बिल्कुल,
2: कि जैसे
1: बिल्कुल।
2: हम घूम नहीं गए, सीरियसली नहीं दिया था उसको हमने।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: मगर इंटरव्यू में लकीली हमको सिलेक्ट हो गए। तो घर आए जैसे वहां से बॉम्बे से अहमदाबाद, अहमदाबाद तो सीधा टेलीग्राम आ गए आप सिलेक्ट हो गए, आपको इमिडिएटली ज्वाइन करना है। और तब मैं सर्विस करता था, फादर मदर छोड़ने के लिए तैयार नहीं गया तो तुम वहां जाओगे तो। और मैं सबसे छोटा था, मेरी जिम्मेदारी रहती थी फादर मदर के साथ रहने।
1: तो उस समय फिर घर में कौन कौन थे, बाकी लोग थे
2: उस
1: क्या?
2: समय घर में बड़े भाई भी थे, वो
1: हाँ।
2: तीनों, वो दोनों भाई भी थे, मेरी सिस्टर दोनों की शादी हो गई थी। और काफी, मगर फैमिली बड़ा था तो पिताजी और माताजी मिल में थे, अर्निंग करते
1: तो
2: थे,
1: तभी भी
2: फाइनेंशियल
1: वो
2: थोड़ा
1: मिल में
2: तकलीफ
1: काम
2: होता।
1: करते थे पिताजी और माताजी।
2: हाँ, तभी भी कभी कभी रात को जाते थे, वो लाइट लेट नाइट ड्यूटी होते थे ना उसमें,
1: हाँ
2: कभी
1: हाँ
2: कभी जाते। वैसे वो रिटायर, फिर मैंने जब वो सिविल के तनख्वाह ला के दिया 350 रुपये उस टाइम फर्स्ट टाइम, तो
1: हाँ हाँ
2: पिताजी
1: हाँ
2: ऐसे गदगद हो गए कि यार मैंने खाम खा तुमको डाटा ही लीटा में से ही, तूने तो बहुत कमाई कर ली है। उसको तो, क्योंकि पूरे महीने के उनके 100 रुपये मिलते थे और मेरे एक ही महीने में सीधा 350 तनख्वाह गए। तो माता जी और पिताजी तो एकदम खुश हो गए कि चलो इनके तो लाइफ बन गई करके। फिर ऐसे ही 2 साल होने के बाद जब बॉम्बे इंटरव्यू देने गए, सिलेक्ट हो गए, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि भाई तुम वहां जाओगे तो। वैसे बड़े भाई
1: बिल्कुल।
2: भी साथ में थे, उनकी भी तनख्वाह थी, घर चल रहा था, ऐसा कुछ फाइनेंशियल फिर धीरे धीरे कम प्रॉब्लम
1: स्टेबल
2: नहीं
1: हो
2: था,
1: गया था।
2: स्टेबल हो गया था।
1: जी जी
2: फिर
1: जी
2: मुझे पिताजी ने बोला कि देखो हमने तो तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको पंखे आई है, अब तुम उड़ो, तुमको जहाँ उड़ना है। यानी पिताजी की मर्जी थी कि हम जाए, मम्मी की थोड़ी कम मर्जी थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: फिर
1: बिल्कुल।
2: भी हम वहाँ नोटिस में भर के सिविल हॉस्पिटल में वो छोड़ के, मैं और मेरा बिनर पटेल फ्रेंड था, वो दोनों ज्वाइन किए
1: तो
2: बॉम्बे।
1: सिविल हॉस्पिटल वाले आपको मना नहीं कर रहे थे?
2: नो, मना ही कर रहे थे कि मत जाओ करके, तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट हमको मिलेंगे नहीं। मगर वहां मुझे बहुत खराब अनुभव ये हुआ कि वो जो डॉक्टर थे, बहुत नामी डॉक्टर थे, उनके ऑपरेशन के सब स्केचेस मैं करता था। और उन्होंने लंदन में जाके एक बुक लिखी थी, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, यानी आंख के ऊपर ही कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, कैसे आंख बदलने का जो ऑपरेशन होता है उसके ऊपर अगर लिखा, बुक लिखी थी। वो बुक में करीबन मेरे 150 ड्राइंग थे, मैंने खुद ने किए हुए। और उस
1: अच्छा।
2: टाइम एक एक दो दो महीना लेकर मैं ड्राइंग करता था। वो पूरे बुक में वो ड्राइंग मेरे ही छपे थे, बुक भी काफी उसकी चर्चा में रही। फिर मैंने
1: तो फिर
2: देखा
1: उसका कुछ
2: कि
1: आपको रॉयल्टी वगैरह दिया क्या उन्होंने?
2: नहीं, मुझे उसके फ्रंट पे जो मैंने एक्नोलेज पढ़ा, उसने किसका किसका आभार माना था डॉक्टर ने, तो उसमें मेरा कहीं नाम निशान नहीं, तो मुझे
1: अच्छा,
2: बहुत बुरा लगा।
1: तो आपने पूछा नहीं फिर उनको
2: मैंने
1: डॉक्टर से?
2: पूछा तो वो क्या डॉक्टर लोग को आर्टिस्ट की इतनी वैल्यू नहीं है मेंटली। तो
1: अच्छा
2: उसने
1: अच्छा
2: मुझे
1: अच्छा
2: लाइटली लिया था कि नहीं तुमने तो तनख्वाह ली ड्राइंग की, उसमें क्या है। बाकी लोग जो टाइपिस्ट तक का उसका नाम दिया था, जो नर्स
1: अच्छा
2: उनको अटेंड कर रहे थे अपने, वो सबको क्रेडिट दिया था, मेरा
1: हाँ
2: कहीं जिक्र नहीं। तो मुझे बहुत
1: हाँ
2: बुरा लगा। और उसी टाइम मैंने ये एप्लीकेशन किया था और मैं सिलेक्ट हो गया। तो छोड़ते नहीं थे, 1 मंथ नोटिस भेज दिया और मैं छोड़ के गया। मैं बोला भाई, बोले तुम क्यों यहाँ, तुमको क्या तकलीफ है। वहाँ के लेडी डॉक्टर थे, उसने मुझे उसकी कार में 1 घंटा घुमाया सिविल के आसपास और समझाया कि तुम मत छोड़ो। मैं बोला नहीं, मैं गांव जा रहा हूँ, मुझे अहमदाबाद में रहना है। ऐसा झूठ बोल के मैं नौकरी छोड़ दिया और वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ
1: अच्छा अच्छा
2: ज्वाइनिंग करने गए तो डायरेक्टर वहाँ का बोलता है कि आपको तो हमने टेलीग्राम भेजा है, आपको सीधा दिल्ली जाना है ट्रेनिंग लेने के लिए। उसका टेलीविजन ट्रेनिंग सेंटर उस टाइम दिल्ली में मंडी
1: दिल्ली
2: हाउस
1: में
2: में
1: था।
2: था
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: और मंडी राजा का जो महल था उसमें ट्रेनिंग थी।
3: अच्छा,
2: मैं बोला यार एक तो अहमदाबाद छोड़ के बॉम्बे आए,
3: बॉम्बे
2: बॉम्बे वाले
3: आया,
2: सीधा
3: बॉम्बे से फिर
2: दिल्ली
3: दिल्ली
2: पहुंचते।
3: कहाँ भेजा।
2: फिर वापस घर आए तो घर से मना कर रहे थे कि भाई आप दिल्ली जाओगे, फिर कब बॉम्बे आओगे, फिर कैसे रहेगा।
3: हाँ
2: मैं ऐसा करके महीना निकाल दिया, तो बाद में उन्होंने लेटेस्ट टेलीग्राम भेजा कि 15 दिन में अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे हमें मजबूरन किसी और को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
3: तो उन्होंने उस समय जो आपको टेलीग्राम वगैरह किया था, तो क्या अपॉइंटमेंट हो गई थी आपकी?
2: हाँ, अपॉइंटमेंट सिलेक्ट कर लिया था
3: सिलेक्ट कर
2: पहले
3: लिया था,
2: आर्टिस्ट।
3: तो
2: हाँ
3: कितना मंथली पेमेंट वगैरह
2: मैं
3: सब बता दिया था?
2: वो ज्यादा था, यानी अहमदाबाद से थोड़ा ज्यादा था, मगर
3: हाँ।
2: उतना मगर वहाँ कैरियर का ऑप्शन ज्यादा था। यहाँ क्या, मैं आर्टिस्ट की पोस्ट में पड़ा रहने वाला था,
3: हाँ, लाइफ
2: वहाँ
3: टाइम
2: मुझे
3: यही तो
2: आर्टिस्ट,
3: रहते हैं।
2: हाँ
3: हाँ
2: वहाँ आर्टिस्ट की पोस्ट में पड़ा। मेरे फ्रेंड लोगों ने भी मुझे पुश किया कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारा लाइफ बन जाएगा, क्योंकि तब
3: बिल्कुल
2: टेलीविजन
3: बिल्कुल
2: नया नया था, पहला
3: हाँ।
2: सेंटर खुला था बॉम्बे, उसके बाद दिल्ली, बाद में बॉम्बे खुला था। और वो फर्स्ट ओपनिंग के टाइम ही लगभग करीबन हम 72 में वहाँ ज्वाइन किया, तो
3: ओके ओके,
2: काफी टाइम पहले। तो
3: बहुत
2: वहाँ
3: बढ़िया।
2: वहाँ ज्वाइन करने गए तो बोला आपको तो सीधा ट्रेनिंग जाना है वहाँ मंडी हाउस दिल्ली। फिर वापस आए, कैसे भी घर वाला को जाए, फिर हमने टेलीम क्लियर किया, ठीक है हम जाते, तो 6 महीने के लिए हम सीधा दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर चले गए। वहाँ वहाँ जो ट्रेनिंग देने के लिए स्टाफ आए, तो सीबीसी लंदन से आए, तो पूरा फॉरेनर, और हमने
3: अच्छा,
2: इतना इंग्लिश काफी पढ़ा नहीं था, तो मैंने वहाँ इंग्लिश के क्लासेस ज्वाइन किए और सीखा
3: ओके।
2: इंग्लिश की बात। फिर हमको जो सिखाने वाला आया था वहां से, कनाडा से, सीबीसी से, लंदन से, वो
3: हाँ
2: आर्ट वर्क करके था, बहुत ही जेंटलमैन था, तो
3: हाँ
2: जब तक
3: हाँ
2: हम उंगली ऊपर नीचे नहीं करें तब तक हमको समझाता ही रहता था, उसको पता था कि इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है। फिर
3: बिल्कुल
2: भी ड्राइंग कर
3: बिल्कुल
2: करके फिर उसने हमको ऑफर रखा उस टाइम कि
3: हाँ।
2: आपको हम कनाडा ले जाना चाहते हैं अगर आप तैयार है तो, सीबीसी, क्योंकि
3: अच्छा,
2: हमारा उसने हमारा काम देखा तो इतना इम्प्रेस हो गया था कि नहीं आप कैसे भी करके आप बोलो। मैं बोला सर हम हमारे फैमिली को छोड़ के इतना दूर नहीं जाए। वो बहुत
3: बिल्कुल
2: 6 महीने तक उसने काफी हमको प्रेशर किया कि तुम्हारा गारंटी, पासपोर्ट, वीसा, रहने का सब इंतजाम मैं कर लूंगा, मगर हमारा दोनों का, मैं और पटेल करके था मेरे दोस्त, दोनों को ले जाना चाहता था, हमने
3: अच्छा
2: मना किया कि भाई नहीं हम नहीं आ सकते सॉरी करके। तो
3: चलिए आगे
2: बॉम्बे
3: बढ़ते
2: जो,
3: हैं। गुणवंत परमार जी,
2: हाँ
3: बहुत ही
2: जी,
3: अच्छी बातें बताया आपने। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, और
2: हाँ
3: उसके
2: जी,
3: बाद फिर यात्रा जो है दिल्ली में और क्या
2: ठीक
3: क्या हुआ उसके बारे में आपसे
2: राइट,
3: जानेंगे।
2: हाँ
3: आप
2: जी,
3: सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मस्कर रात।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही प्यारी बातें हो रही हैं करियर में और किस तरह से हम लोग जो है, कई बार होता है कि हम लोग आज के समय में जो प्रोफेशन है उसको देखकर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और कई बार जो है कलाएं हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट है, जैसे आर्ट की बात करें या संगीत की बात करें या इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की बात करें या डांस की बात करें या फिर आप कुछ ऐसे हट के कुकिंग की बात करें, खाना बनाना भी बहुत बड़ा आर्ट है। तो ये सारी चीजें शायद हम लोग मेन स्ट्रीम में कभी भी परिवार वाले इन चीजों को करने के लिए मना करते हैं, बोले ये क्या चीज है। तो मैं
1: सही
0: भी
1: बात।
0: बीच में एक बार होटल मैनेजमेंट के लिए पिताजी से बात किया तो मेरे को एकदम से उन्होंने बोला कि ये क्या तेरा पोजिशन है। क्या खाना वाना बनाएगा, तू वेटर बनेगा। तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी एक करियर है, इसमें प्रोफेशन है और इसमें भी अच्छा कमा सकते हैं। तो मना उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कुछ ऐसी चीजें। अगर कोई बंदा बोले कि भाई मुझे गिटारिस्ट बनना है, अरे बोले पगला गए, गिटार वटर तो साइड में बाद में बजाना, पहले पढ़ाई करना, पहले पढ़ाई के साथ साथ में आप उसको सैटरडे संडे खाली हॉबीज की तरफ उसको ले लो, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसी कई चीजें हमारे परिवार में होती हैं, लेकिन आपका अगर जिज्ञासा है और बहुत ज्यादा आप उसमें रुचि रखते हैं तो आप वे बिंदास थोड़ी देर के लिए आप कॉम्प्रोमाइज जरूर करें, क्योंकि उस समय पिताजी या माताजी या कोई परिवार वाले आपको समझने वाले नहीं होते अगर आप बताएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप वो चीजों को उनके सामने जाहिर ना करते हुए आप पढ़ाई भी करें हल्का और साथ में अपने पैशन को जो है बरकरार रखें, क्योंकि पढ़ाई के लिए जो टाइम है वो पढ़ाई में दिए और बाकी जो बचता है आप टाइम, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें आप पूरी तरह से आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं ताकि आगे बढ़ सकें। तो आइए इस हम लोग जीवन विकास के कार्यक्रम में बातें कर रहे हैं। गुणवंत परमार जी हमारे साथ गुजरात अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और वो अपनी यात्रा के बारे में हमें बता ही चुके हैं, और निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि आगे क्या हुआ होगा, है ना। तो अब दिल्ली पहुंचे हैं हम लोग, 6 महीने का ट्रेनिंग और इनको कनाडा का ऑफर भी मिल रहा है। तो ऐसे ट्रेनिंग किस तरह की, क्या क्या चीजें हुई उसमें, वो अभी जानेंगे। तो गुणवंत परवार जी बताइए, दिल्ली की ट्रेनिंग 6 महीना आप कैसे बिताए, क्या क्या इवेंट हुए, क्या चीजें आपने सीखा और क्या चीजें आपको सिखाई गई।
1: सही बात है। वहाँ दिल्ली में हमको जो प्रोग्राम बनते थे उसके प्रोग्राम के टाइटल बनाने का सिखाया गया, क्योंकि
0: अच्छा,
1: कॉलेज में जो सीखे हैं उससे तो अपार्ट फ्रॉम ये कुछ अलग ही था। उसको
0: ओ
1: कैप्शन कहते थे, टाइटल वगैरह। हर एक प्रोग्राम में हर एक प्रोड्यूसर को एक असाइनमेंट दिया जाता था कि आपको इसको, ये प्रोड्यूसर को हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम बनाना है, कोई प्रोड्यूसर को ग्राम जगत के ऊपर, कृषि के ऊपर प्रोग्राम बनाना है, कोई सी प्रोड्यूसर को स्पोर्ट्स के ऊपर, सबको बांट दिया जाते थे प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम वो हमको प्रोड्यूसर आके एक्सप्लेन करता था कि मेरा प्रोग्राम का कंटेंट ऐसा ऐसा है और हमें इसका टाइटल वगैरह बनाए, जैसे फिल्म के टाइटल होते हैं ऐसे प्रोग्राम के टाइटल है। तो टाइटल इस एकदम सोच समझ के बनाना पड़ता है, उस टाइटल से ही पता चले कि प्रोग्राम में कंटेंट्स क्या आने वाला है। ऐसे जैसे
0: अच्छा
1: रसोई शो है तो रसोई शो में रसोई बनती हुई बैकग्राउंड में रखे और उसके ऊपर टाइटल सुपर करे, ऐसा होता है। फिर कुछ सपोज जर्नी का है, ट्रैवल का, तो ट्रेन से जाता हुआ शॉर्ट हो उसके ऊपर टाइटल सुपर करे, या प्लेन जाता हुआ उसके तो ट्रैवल का पता चले। ऐसा जो भी सब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्राम है उसके मुताबिक टाइटल बनाने करें। तो जो जो जो वहाँ प्रोग्राम बनाए उसमें ने बनाए। फिर वहां से स्टूडियो से, वहां से एक बार वहां पे उसी टाइम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था दिल्ली में,
0: अच्छा
1: वो फर्स्ट टाइम ट्रेड फेयर, दूरदर्शन ने वहां कांच का पूरा स्टूडियो बनाया था वो फेयर में, ताकि पब्लिक को पता चले कि दूरदर्शन टेलीविजन कैसे काम करता है।
0: जी
1: तो हमारा ड्यूटी वहाँ डेप्यूटी हुआ था, तो मैं, मेरा मित्र फ्रेंड पटेल वगैरह दोनों को आर्टिस्ट करके वहाँ रखे थे, बाकी प्रोड्यूसर लोग वहाँ प्रोग्राम बनाते थे। हमको वहाँ टाइटल बनाने के लिए मैटर दिया जाता था, हम ऑन द स्पॉट टाइटल बनाते थे। कांच से बाहर लोगों को दिखता था कि भाई ये इसका प्रोग्राम का इन्होंने ये टाइटल बनाया, ये कैमरा के ऊपर गया, ये सुपर हुआ, ऐसा करके पूरा समझ में आए पब्लिक को। तो वहां से जब वो भी पूरा अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ हमें। फिर वापस यहाँ से पूरा ट्रेनिंग होने के बाद हमको सर्टिफिकेट दिया गया कि भाई आपने टेलीविजन फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग आपने पूरा किया है। उसके बाद हमको ट्रांसफर फिर वापस बॉम्बे भेज दिया गया। बॉम्बे में करीबन 35 प्रोड्यूसर रहते थे, वो 35 प्रोड्यूसर के सबके रिक्विजेशन, जो टाइटल रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास आती थी। मैं ग्राफिक सुपरवाइजर, फिर मुझे 2 साल में वहाँ प्रमोशन मिल गया बॉम्बे में एज ए
0: अच्छा
1: ग्राफिक सुपरवाइजर। तो मैं सुपरवाइजर बना और मेरे साथ जो आर्टिस्ट है वो मेरे अंडर में रहते, तो करीबन 12 आर्टिस्ट थे वहाँ बॉम्बे में। तो 4 लैंग्वेज का काम वहाँ होता था, हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश। और चार
0: अच्छा
1: लैंग्वेज के तीन तीन मैंने आर्टिस्ट बांट दिए थे, 12 थे टोटल, तो तीन तीन हर एक लैंग्वेज के लिए आर्टिस्ट बांट दिए,
0: बिल्कुल
1: तीन गुजराती के, तीन इंग्लिश के, तीन मराठी के, और ऐसे करके वो सबको जैसे भी जिसका भी जो लैंग्वेज का काम है वो उसको मैं मार्क करके दे देता था, और वो लोग प्रोग्राम वो टाइटल वगैरह बनाते थे। टाइटल में कुछ स्पेशल इफेक्ट चाहिए ऐसा कुछ है तो मेरा कांटेक्ट करते थे मुझे सुपरवाइजर।
0: अच्छा
1: फिर वहाँ काफी हमने काम किया, हर एक मेरा अंडर में जो भी आर्टिस्ट था वो करीबन पर डे उस टाइम पे बाय हैंड 70 टाइटल्स बनाते थे पर डे, यानी इतना वर्कलोड रहता था वो, और
0: अरे
1: काफी काम लोग करते थे। फिर
0: बाप
1: उसमें धीरे धीरे हमने एनिमेशन यानी थोड़ा मूवमेंट जैसा आए वो दिखाने पड़े ऐसा, तो उसमें दूरदर्शन बॉम्बे के लिए फर्स्ट टाइम वो केदार शर्मा करके डायरेक्टर थे आउटसाइडर,
0: रे हाँ।
1: दूरदर्शन ने उनको फिल्म बनाने के लिए, जिसने राज कपूर को तैयार किया था वो केदार शर्मा नामी डायरेक्टर थे,
0: अच्छा
1: उनको एक दूरदर्शन ने भीगी पलके करके फिल्म बनाने ऑर्डर दिया था बुक करके, उन्होंने 3 घंटे की पूरी फिल्म बनाई थी। तो उसके जो टाइटल थे वो बनवाने के लिए मेरे पास आए थे, मुझे बताया कि ऐसा कि ट्रेन जाती है उसका धुआं ऊपर से पीछे, यानी ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाती है उसके उल्टी साइड उसका धुआं जा रहा
0: दुआ
1: है,
0: जाएगा बराबर
1: और धुआं के अंदर टाइटल मुझे
0: चाहिए।
1: एम्बो सुपर होना चाहिए ऐसा इफेक्ट चाहिए। और ऐसा तो अभी तो ऐसे इफेक्ट लाने में 2 मिनट लगता है, मगर
0: बिल्कुल
1: उस टाइम
0: बिल्कुल
1: तो कुछ सोचना पड़ता है। तो फिर मैंने पूरा कागज का कटआउट किया,
0: हाँ
1: ट्रेन का कटआउट किया, और धुएं का पोर्शन इतना कटआउट किया, और धुएं के पोर्शन के पीछे मैंने वो धुएं के जाते हुए ऐसे वो फ्लेम एनिमेट किया, ने कागज पीछे से खिसकाने लगे तो ऐसा लगता है ट्रेन आगे जा रही है धुआं पीछे जा रहे। उसके ऊपर भी आगे टाइटल जो किए वो ब्लैक एंड व्हाइट किए, वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइटल वो ऐसे मैं समझाने जाऊंगा प्रैक्टिकल देखने जाऊंगा तो ही पता चलेगा कि कैसे, तो
0: बिल्कुल
1: उसको ऐसे राइट टू राइट खींचने लगे तो लगता था कि ट्रेन का धुआं ऐसे जा रहा और टाइटल ऐसे आ रहे। तो केदार शर्मा इतना खुश हो गए कि यार क्या इफेक्ट दिया है, तो बिल्कुल ऐसा तो हम फिल्म लाइन में भी नहीं कर सकते थे, खुश हो गया
0: अच्छा
1: था काफी केदार शर्मा। फिर
0: हाँ
1: मुझे उसकी गाड़ी में बैठा के उनका स्टूडियो दिखाने ले गए थे, देखो मैंने राज कपूर को यहाँ तैयार किया था, यहाँ ये किया था, पूरा
0: हाँ
1: स्टूडियो देखा। और काफी बाहर के प्रोड्यूसर गुफी पेंटल भी आते थे, अमोल पालेकर आते थे उस टाइम, वो जो स्मिता पाटिल अभी जो हीरोइन बनी है वो पहले दूरदर्शन बॉम्बे की न्यूज रीडर थी, और
0: हाँ
1: बॉम्बे दूरदर्शन की जब बर्थडे थी तब उसको दुल्हन के रूप में बैठाए सजा के पूरा न्यूज पढ़ाए। दूसरे
0: अच्छा
1: दिन कोई प्रोड्यूसर का फोन आया कि आप फिल्म में काम करोगी, तो उसने
0: अच्छा
1: हाँ कह दिया, तो डायरेक्ट वो गई दूरदर्शन छोड़ के बाद में वापस नहीं आई। तो स्मिता पाटिल तो ऐसे ही हमारे बाजू में, क्योंकि हमारा ग्राफिक सर्जन था ना वो, एक मेरे अंडर में काम कर राजा स्वामी, वो महाराष्ट्र थे, उससे मराठी में गप्पा मारने आ जाते थे काफी कोई लोग उस टाइम भी। फिर मनोज कुमार वो फिल्म का एक गाना शूट करने आए थे, वो मैं ना भूलूंगा करके गए थे, वो और जिन्नत मकान, रोटी कपड़ा मकान
0: रोटी
1: करके,
0: कपड़ा और मकान
1: हाँ।
0: जो भी
1: तो एक दिन के लिए उसने पूरा स्टूडियो बुक किया था, मगर
0: अच्छा
1: वो एक दिन के लिए वो एक लाइन शूट करने के लिए उन्होंने सुबह 10 बजे से चालू किया था, वो शाम को 5 बजे उनका वो सीन कंप्लीट हुआ, सिर्फ एक लाइन ही बोलने का। मनोज कुमार बोलता है मैं ना भूलूंगा, और उस साइड से जिन्नत अमान बोलती है मैं ना भूलू, इतना लाइन, यानी फिल्म लाइन में भी उस टाइम वो लोग मेहनत करते थे, पूरा दिन के लिए उन्होंने स्टूडियो बुक किया था और वहां पे रिकॉर्डिंग किया था। तो बॉम्बे में काफी एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद मुझे अहमदाबाद में ट्रांसफर मिला, मैं बॉम्बे से अहमदाबाद ट्रांसफर लेके आया। तब जो डायरेक्टर था सौरभ साहब, पहले हम ज्वाइन नहीं करने वाले थे बॉम्बे दूरदर्शन क्योंकि हमें कोई गुजराती नहीं दिखाई दे रहा था, तो
0: बिल्कुल
1: बाद में जो सौरभ साहब करते थे अरुण श्रॉफ, उन्होंने हमें चैम्बर में बुलाया उनके कि देखो आप अकेले गुजराती नहीं, मैं भी गुजराती हूँ, और मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि आपको मैं अहमदाबाद ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, अहमदाबाद में स्टूडियो बनेगा ही, और उसको आपको ट्रांसफर करके मिला। उसने इतना हमें कॉन्फिडेंस दिया तब हमने बॉम्बे ज्वाइन किया। फिर उन्होंने अहमदाबाद से वो खुद ट्रांसफर लेके आए, अहमदाबाद में स्टूडियो डेवलप किया, फिर मेरा और बिनर पटेल का डिमांड रखा उन्होंने, और यहाँ पे ट्रांसफर होके अहमदाबाद आए। अहमदाबाद में तब इसरो चल रहा था, इसरो का जो स्टूडियो था वो हम आधा घंटा प्रोग्राम हम बनाते थे, आधा घंटा इसरो वाले बनाते थे उस टाइम प्रोग्राम।
0: अच्छा
1: तो आधा घंटा जो इसरो वाले वो एग्रीकल्चर बेस पे बनाते थे, हमारा आधा घंटा में 15 मिनट न्यूज रहता था और 15 मिनट ड्रामा वगैरह ऐसा कुछ बनाते थे उस टाइम। धीरे धीरे इसरो का स्टूडियो में भी काम करते करते फिर यहाँ पे अहमदाबाद में खुद का उनका अहमदाबाद का स्टूडियो के लिए जगह फिक्स की। फिर थलतेज एरिया में गवर्नमेंट ने जगह दिया, वहाँ पे स्टूडियो बना। हम फिर वहाँ से यहाँ थलतेज अहमदाबाद का खुद के स्टूडियो में काम करने लगे। उसके बाद मेरा यहाँ से अहमदाबाद से ट्रांसफर हुआ दिल्ली डीडी। पहले मेट्रो करके चैनल चल रही थी दूरदर्शन के, जिसमें प्राइम प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम आते थे, वो मेट्रो चैनल में मेरा यहाँ से ट्रांसफर हुआ। वहाँ से सीपीसी
0: अच्छा
1: खेलगांव में, दिल्ली में स्टूडियो है सीपीसी के अंदर, सीपी यानी खेलगांव में के अंदर सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर तब था
0: अच्छा
1: दिल्ली दूरदर्शन का, वो उसमें क्रीम प्रोग्राम ही बनते थे। मेरा वहाँ ट्रांसफर हुआ।
0: अरे वाह
1: फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ भी बहुत अच्छे बॉर्डर प्रोड्यूसर, उन्होंने सीपीसी के बाद मेरी पर नजर न्यूज वालों की गई, तो न्यूज वाले देखा इनका काम तो बहुत अच्छा है, हमें खींच लेना चाहिए। तो डीडी न्यूज में मेरी ट्रांसफर हो गई, उसमें मुझे काफी टफ काम मिला था, क्योंकि उसमें 24 घंटा आपको अवेयर रहना था, कि 24 घंटा वहाँ कंटिन्यूस मुझे एक आर्टिस्ट पोस्ट बुकिंग करना ही रहता था। वो सीजी ऑपरेटर जो, क्योंकि न्यूज में तो 24 घंटा चलता था, उसमें
0: बिल्कुल
1: तुरंत ही टाइट बना के टाइटल वगैरह डाले ना, ऐसा सीजी ऑपरेटर और आर्टिस्ट दोनों का बुकिंग मैं करता, मेरा जिम्मेदारी रहता।
0: अच्छा
1: और उस टाइम डीडी न्यूज के लिए हर रोज 8 मीटिंग होती थी, 1 घंटे के बाद न्यूज में हेडलाइन क्या जाएगी उसके लिए मीटिंग रहती। वो मीटिंग में मीटिंग है, मैं प्रैक्टिकल काम करने में मजा आता है, मगर मीटिंग अटेंड करने में बोर हो जाता है। फिर
0: बिल्कुल
1: मैं इतना बोरिंग मेरा वो बॉम्बे में जो न्यूज का गया, उसके बाद कैसे भी
0: बिल्कुल
1: करके फिर यहाँ अहमदाबाद ट्रांसफर हुआ। फिर अहमदाबाद में अपने लोकल प्रोग्राम के टाइटल वगैरह बनाए। मेरे अहमदाबाद में मेरे हाथ नीचे 8 आर्टिस्ट रहते हैं, उनको भी अलग अलग लैंग्वेज के मुताबिक। अहमदाबाद में तो 2-3 ही लैंग्वेज चलते थे, एक हिंदी का अलग प्रोग्राम होता था, इंग्लिश का होता था, और गुजराती मैक्सिमम गुजराती का, उसके टाइटल सब टाइटल सुपर करना, वो सब बनवाने का मेरा जिम्मेदारी, उसका मटेरियल भी परचेज करके आर्टिस्ट को प्रोवाइड करना, वो
0: बिल्कुल
1: भी मेरी
0: बिल्कुल
1: जिम्मेदारी। मैं बॉम्बे में जो 8 आर्टिस्ट को कैजुअल बुक करता था, वो बाद में कोर्ट में केस किया उन्होंने लगे, और उनको फिर गवर्नमेंट को परमानेंट करना पड़ा उनको। करीबन मैं अहमदाबाद आया है तब तक उनको परमानेंट नहीं किया था,
0: अच्छा
1: गवर्नमेंट हो सके वहां तक कैजुअल बुकिंग से चलाती, तो वो लोगों ने केस किया, फिर वो लोग परमानेंट हो गए। तो वो लोग अभी भी, मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मुझे याद करते कि भाई साहब आपने हमारा बुकिंग कैजुअल किया था, तो हम परमानेंट जॉब पे लगे
0: सही बात
1: नहीं मानते करके।
0: जी
1: और बाद में तो अहमदाबाद में तो गुजराती अपना रेगुलर काम करते रहते हैं, उसमें भी एनिमेशन कार्टून, फिर धीरे धीरे तो कंप्यूटर आ गए, फिर हमारा काम हमको वो उतना नहीं रहा जितना पहले था
0: बिल्कुल
1: इतना। अभी तो कंप्यूटर में सीजी ऑपरेटर है, फटाफट टाइप किया और वो कुछ भी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: विजुअल चाहे तो आप लोग गूगल पे सर्च मार,
0: तो
1: डाउनलोड कर
0: पहले
1: लो
0: जब आप काम करते थे
1: सब।
0: कंप्यूटर के पहले तो वो क्या सब बना बना के आप देते थे
1: बना
0: फिर
1: बाय हैंड ही
0: उसको
1: बनाना
0: वापस
1: पड़ता
0: कैमरा में लेते थे वो लोग क्या?
1: ना उस टाइम। तीन टाइप के टाइप वो जो टाइटल हम बनाते थे ना, उसमें तीन टाइप के रहते, एक तो सॉलिड टाइटल, सॉलिड टाइटल है ना प्रोग्राम का जो मेन टाइटल है ना वो सॉलिड रहता था, उसको हर कलर लगते थे। और दूसरा रहता था सेंटर सुपर, सुपर है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, ब्लैक पेपर लेने का उसके
0: हाँ
1: ऊपर व्हाइट कलर से लिख देना का, वो
0: अच्छा
1: कैमरा और दूसरा कैमरा दोनों के इम्प्रेशन करके वो लोग सुपर करते थे
0: अच्छा
1: इलेक्ट्रॉनिकल, तो उसको सुपर बोलते थे। फिर बिलो सुपर, बिलो सुपर है ना जो व्यक्ति का नाम आता था इंटरव्यू में, सपोज मैं इंटरव्यू दे तो मेरा नाम आएगा GS परमार, गुणवंत भाई परमार, और मैं जिसका इंटरव्यू है उसका नाम सपोज विनय पंड्या कोई भी है, तो उनका नाम नीचे पूरे
0: आएगा
1: ब्लैक फ्रेम में नीचे लिखा हुआ रहता था। फिर वो दो कैमरे के इम्प्रेशन मिक्स करके वो ऐसा दिखता था जैसे आपके शरीर के ऊपर से वो जा रहा है लिखा हुआ,
0: अच्छा
1: ऐसा सुपरिंग सुपरिंग कैप्शन बोलते थे वो सुपरिंग बोलते। फिर कोई मैप है वहां पे ड्राइंग है उसका आइडेंटिफाई करना, ये जगह का नाम है, तो वहां सुपर करते थे वो दो कैमरे का इम्प्रेशन मिक्स कर। फिर पहले स्क्रोलिंग, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, पहले स्क्रोलिंग करने के लिए हम पूरा लंबा कागज लेते थे ब्लैक, उसके ऊपर ऊपर से नीचे तक सब क्रेडिट लिखते थे, प्रोड्यूस बाय, डायरेक्टर बाय, साउंड बाय, फिर सेट डिजाइन बाय, मेकअप बाय, ऐसा पूरा लिख के लंबा रोल तैयार करते थे
0: फिर वो
1: और
0: स्क्रोल
1: उसको एक
0: करते थे।
1: रोलर के ऊपर राउंड वाइंड अप कर देते थे, फिर उसको ऐसा ऐसा घुमाते थे, ऐसे वो नीचे से ऊपर जा रहा, ऐसा
0: ऊपर
1: इफेक्ट
0: जा रहा
1: आता
0: है
1: है,
0: वैसे दिख रहा
1: ऐसा इफेक्ट आ रहा है, तो बाय हैंड
0: था
1: वो बाय हैंड ही करते थे।
0: एंड फिर वो रिकॉर्ड हो जाता था।
1: उस टाइम बॉम्बे में भी हम छोटे, मेरे अंडर पे एक ज्योति राव करते थे, उसका ड्राइंग अच्छा था, तो छोटे छोटे एनिमेशन फिल्म जैसा भी बनाते थे, एनिमेशन यानी उसमें कटआउट पिक्सेलेशन, कैमरा हमको प्रोवाइड किया था,
0: अच्छा
1: कैमरे
0: अच्छा
1: से हम
0: अच्छा
1: शूट एक एक फ्रेम शूट करके फिर एनिमेशन थोड़ा डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। फिर
0: ओके
1: एनआईडी में भी, मैं अहमदाबाद है, उसके बाद एनआईडी में भी हमको ट्रेनिंग दिया था, एनआईडी में थोड़ा ट्रेनिंग लिया था एनिमेशन का। फिर जब ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी हुआ,
0: कलर टीवी। हाँ
1: तो ब्लैक एंड व्हाइट का जो सिंबल था उसको कलर में कन्वर्ट करने के लिए भी मेरा ड्यूटी एनआईडी में लगाया गया था, और वहाँ जो उस टाइम जो ब्लैक सिंबल था ना,
0: हाँ
1: उसको धीरे धीरे कलर करके स्टेप बाय स्टेप करीबन 35 डिफरेंट कलर करके वो शूट किए, और वो
0: अच्छा
1: दोनों
0: अच्छा
1: की इम्प्रेशन मिक्स करके हमने वो उस टाइम इमिडिएटली ब्लैक एंड व्हाइट को कलर सिंबल करके ऑफिस को दिया था दूरदर्शन।
0: अरे वाह। अब धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर
1: हाँ
0: वापस
1: जी
0: गुणवंत परमार जी, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो पहले हैंडवर्क होता था, मैन्युअली करते थे सारा कागज पे, और उसको जो है फिर कैमरे में शूट करके फिर वो आप टीवी दूरदर्शन पे या फिल्मों में देखते थे। अब जैसे ही कंप्यूटर आना शुरू हो गया, तो कंप्यूटर आने के बाद फिर मैन्युअली करना या फिर पेंटिंग करना, ये सारी चीजें जो है बहुत जल्दी से होने लगे, और फिर क्या चेंजेस आए, तो उस समय के जो आर्टिस्ट है जो मैन्युअली करते हैं, उनके जीवन में क्या चेंजेस आया, वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा समरी में सुनेंगे, फिर कभी विस्तार से सुनेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आपकी जान आपकी शान आपू निवासियों की है पहचान। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस विशेष करियर ऑप्शन प्रोग्राम में, जीवन विकास प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं गुणवंत परमार जी को, जो ग्राफिक डिजाइनर दूरदर्शन के रहे हैं और अभी रिटायर होकर अहमदाबाद में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो उनकी जो कहानी है वो हमने सुना कि किस तरह से एक आर्ट लाइन में खुशी से वो उसको ज्वाइन किया क्योंकि उनको इंटरेस्ट था। और फिर घर में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो माता पिता जैसे नौकरी करते हैं तो उनको लगता है कि भाई पढ़ाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, ये ड्राइंग वगैरह करके क्या होने वाला है। लेकिन फिर गुणवंत परमार जी ने ड्राइंग के माध्यम से, ड्राफ्टिंग के माध्यम से, जब उन्होंने स्केच करके जो है पहला कमाई उनके हाथ में रखा तो उन्हें उनकी आंखें खुली और वो गदगद होकर इन्हें बहुत प्यार से फिर इनके साथ जो है एक प्यार बना रहा, कनेक्टिविटी बना रहा। तो हो सकता है कि हमारे माता पिता हमें समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है क्योंकि उनको डर रहता है। एक्चुअली में उनका कहने का भाव ये नहीं रहता है कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपना गारंटेड करियर आपका बने, आपको पैसे मिले, आप अपने आगे के जीवन को सर्वाइव अच्छा करें, ये भावना रहती है। और क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि यहाँ पर हमें कुछ अभी जैसे ही हम एडमिशन देते हैं तो उसके बाद हमें ये पता नहीं ना कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं या उनको पता नहीं रहता, तो इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन पेशन रखने से सब चीजें आराम से अच्छी हो जाती है, जैसे गुणवंत परमार जी ने पेशन के साथ उन चीजों को किया। तो आइए आप वापस जोड़ते हैं आपको गुणवंत परमार जी से, और बात चल रही थी जब कंप्यूटर का युग शुरू हो गया। तो ये कंप्यूटर जब आया कितने समय था, वो कौन से ईयर में आया और फिर क्या क्या चीजें जो है चेंज होना शुरू हो गया आपके, मैन्युअली जो करते थे वो फिर टाइप करना हो तो मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कंप्यूटर से हो जाता होगा, तो वो जो फेज है चेंजिंग फेज या टर्निंग पॉइंट था उसके बारे में थोड़ा बताइए जी।
2: तो अहमदाबाद में तो मैं आ गया, उसके बाद वो कंप्यूटर वगैरह आ गए तो धीरे धीरे मुझे भी कंप्यूटर का थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ा।
1: ये कौन सा साल था वो टाइम पे?
2: ये करीबन 85 के बाद का।
1: अच्छा, 1985
2: के आसपास का,
1: 85
2: के बाद,
1: 90 के बीच में।
2: तो धीरे धीरे कंप्यूटर आने लगे, कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेने लगे। और जब यहाँ से मैं वहाँ बॉम्बे दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो वहाँ तो सब कंप्यूटर पे ही चलता था, सब लोग वही कंप्यूटर में। वो वहाँ पे पेंट बॉक्स करके एक मोटा मशीन था जिसमें योर माइंड इज ए लिमिट, आप जितना सोचो बैकग्राउंड अलग कलर से हो जाता है, टाइप अलग कलर से आ जाता है, वो आपको जो ड्राइंग भी चाहिए वो भी अंदर इनबिल्ट मिल जाता है। मगर वो उसके जो कमांड वो सब वो सीखना मेरे लिए काफी दिक्कत वाला था। वो लोग तो करते ही थे, वो लोग काम करते ही थे वहाँ के जो रेगुलर आर्टिस्ट, वो तो ट्रेन थे। मुझे एक बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस बॉम्बे

0: में और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा,
1: हाँ
0: वो हम एनिमेट करके वो बाद में टाइप करके एवरी डे चेंज करके उसको डाल सकते हैं। उसका बहुत बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया था। 6 महीने मैंने और उन्होंने कंटिन्यूस कंप्यूटर पे बैठ के वो पूरा मॉन्टाज तैयार किया हुआ था, और जिस दिन वो जाने वाला था ऑन एयर, उसी दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे किसी ने कोई मास्टर कंप्यूटर से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिलीट मार दिया। यानी पूरा 6 महीने की मेरी और मेरे आर्टिस्ट की जो मेहनत, वो एक ही सेकंड के अंदर पूरा, और ऐसा डिलीट मारा कि वो फिर से हम डस्टबिन में से वापस ला ही नहीं सके।
1: अच्छा,
0: यानी
1: रिसाइकल
0: हम
1: बिन में से वापस लाना होता, ला सकते
0: वापस
1: थे
0: लाना होता है।
1: तो
0: और
1: नहीं
0: उस टाइम
1: हुआ।
0: वो ऑर्डर ऑर्डर करके मशीन उन्होंने खरीदा था दिल्ली दूरदर्शन वालों ने, वो
1: हाँ
0: फर्स्ट टाइम वो मशीन, उसका हमको ट्रेनिंग भी दिया था, मगर
1: हाँ
0: उसके ऊपर पूरा बनाया था। जो तो हम वहां से हमने वहां कंप्लेन किया, कोई उनका कोई इंजीनियर को बुलाया,
1: हाँ
0: उसको दिल्ली के होटल में ठहरा है, वो
1: हाँ
0: पूरा कंप्यूटर उसको दिया,
1: हाँ
0: उसने भी 15 दिन यानी 2 वीक को कंटिन्यूस मेहनत किया, फिर भी
1: हाँ
0: वो जो वहां का इंजीनियर था वो कंपनी का, वो भी
1: हाँ
0: उसको वापस नहीं ला सका। तो ये
1: अच्छा
0: जो इंजीनियर लोग जो होते हैं ना,
1: हाँ
0: इंजीनियर लोग को अच्छा नहीं लगता था कि इनका अच्छा गुड व्यूज की बुक में नहीं थे, हम तो
1: हाँ
0: अच्छा नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए उसने देखा जो जो भी इंजीनियर के, ये तो साला बहुत बढ़िया जा रहा है, उनको क्या है उसी टाइम बाहर ज्यादा काम देना था पड़ता,
1: हाँ
0: और हम स्टाफ वाले इतना अच्छा काम करते तो
1: तो
0: जस्टिफाइड हो
1: स्विट्जरलैंड से
0: जाता
1: हो
0: था।
1: रहा। हाँ हाँ
0: हाँ तो उनको पता, वो सबसे मेरे लाइफ में जो बुरा एक्सपीरियंस हुआ ना गवर्नमेंट सर्विस में, कि ये है दूसरा के अहमदाबाद में, कि अहमदाबाद के बहुत बच्चा नामी प्रोड्यूसर दीपक भावस्कर, वो बहुत अच्छा बना था, उसने एक एक वीक के अंदर रेवा करके फिल्म का शूटिंग करके वो तैयार किया था, 3 घंटे की फिल्म, फर्स्ट टेलीविजन अहमदाबाद दूरदर्शन में रेवा, ये अमूल डेयरी के स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, तो वो कंप्लीट किया। तो डायरेक्टर पॉलिटिक्स इतने रमे रमे थे, उनको टेलीकास्ट नहीं होने दिया, वो पूरा
1: अच्छा
0: फिल्म उसने कलर में शूट किया हुआ था, मगर
1: हाँ
0: जब जो बहुत दिनों के सालों के बाद जब वो टेलीकास्ट हुआ तो ब्लैक एंड व्हाइट, उसके कलर भी नहीं होता हुए थे,
1: अच्छा
0: ब्लैक एंड व्हाइट में वो टेलीकास्ट हुआ बाद। यानी पॉलिटिक्स इतनी गंदी रमत है, यानी वो हर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में रहती है, ऐसा कोई नहीं कि
1: बिल्कुल
0: दूरदर्शन
1: बिल्कुल
0: में, मगर ये मेरे लाइफ के में मुझे जो बैड एक्सपीरियंस हुआ वो एक एक तो ये मेरे आर्टिस्ट का 6 महीने का मेरा और उनका मेहनत का एक ही जगह
1: बिल्कुल
0: इसमें डिलीट
1: बिल्कुल
0: मार के उड़ा दिया। और यहाँ इतना कई, फिर बाद में ये जो प्रोड्यूसर था अहमदाबाद का दीपक, उसको ट्रांसफर दिया आसाम, दो सोचते थे कि ये बहुत बड़ा अच्छा काम करता है, उसको आसाम भेजा, और उसकी मिसेस कैमरामैन के यहाँ थी, उसको बॉम्बे ट्रांसफर दिया। अब हस्बैंड वाइफ दोनों को गवर्नमेंट
1: अलग
0: ने अलग
1: अलग
0: कर
1: जगह पे भेज दिया
0: अलग
1: तो
0: कर
1: गड़बड़ हो
0: दिया।
1: जाता।
0: अरे ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, कि तुम जो टैलेंटेड इंसान है उनकी कदर ना करो कुछ नहीं, तो उसको ट्रांसफर करके उसको पूरा उसका कैरियर खत्म कर देते हो। और बेचारा वहाँ आसाम में जाके क्या प्रोग्राम, यहाँ हर रोज 3 घंटे का ड्रामा रिकॉर्ड करता था, 3 घंटे का ड्रामा करना यानी 1 घंटे की वो जो जैसे 3 घंटे की फिल्म के लिए लोग कितना टाइम लगाते हैं,
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: 1 घंटे का आराम से कोई 1 घंटे का प्रोडक्शन देता था। उसको बंदे को बेचारे को वहां ट्रांसफर कर दिया, उसकी मिसेस को बॉम्बे कर दिया, उसका पूरा लाइफ। फिर बाद में जब अहमदाबाद आके उसने केस किया गवर्नमेंट के ऊपर, उसको केस जीता और उसको देना, अभी तो कलर टीवी में काम कर रहा है, बड़े अच्छी वो गुजराती चैनल संभाल रहे हैं कलर टीवी में, मगर ये जो टैलेंटेड वर्क जो करते हैं अच्छा करते, उनको ऐसा करके वो किया जाता है,
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल।
0: अच्छा नहीं है गवर्नमेंट
1: चलिए गुणवंत जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका आपने शेयर किया, ग्राफिक डिजाइनिंग और टेलीविजन दूरदर्शन के सारी बातें आपके द्वारा, पुरानी जो टेलीविजन की बातें हैं वो सुनने को मिला। मुझे भी पहली बार ये सारी बातें ये
0: आपने मुझे
1: आपका
0: भी
1: हृदय
0: मौका
1: हुआ
0: दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो मित्र हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई चीज अगर टर्निंग पॉइंट आता है तो उसके लिए आप सीखने के लिए हमेशा रेडी रहें। और
0: सही
1: दूसरा,
0: है,
1: आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एक निष्ठा से आप उस करियर के बारे में सोचते जाइए, उसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छी तरह से आपका वो करियर बन सकता है। चाहे कोई भी फील्ड कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपको जो है उसके साथ जुड़

0: रहना है लास्ट तक। जब आप पूरी तरह से उसमें जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप उसमें माहिर बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, और आप अपना बहुत ही अच्छी तरह से उसका रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। फिर बाद में जो लोग शुरू शुरू में आपको नकारते हैं, मना करते हैं, वो सारे लोग भी फिर कहेंगे अरे वाह वाह कर, है ना। तो इसीलिए अपने करियर के लिए आप अगर सोच रहे हैं तो जो आपका इंटरेस्ट फील्ड है उसके ऊपर पहला फोकस कीजिए। दूसरा, अगर आपका इंटरेस्ट कहीं डगमग जा रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप काउंसलिंग टीचर्स से, जो है काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनसे जरूर राय सलाह करें, जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे जरूर बात करें। और मुझे लगता है कि गुणवंत परमार सर का जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन है, और बहुत ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिला है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। तो आशा करूंगा आप सभी को और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अच्छा करें ऐसी शुभ आशा के साथ, अच्छा करियर बनाए, अच्छा नाम करें परिवार का और देश का ऐसी शुभ आशा के साथ, एक बार फिर से आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की ओर से गुणवंत परमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड
1: थैंक
0: में
1: यू,
0: जुड़कर
1: थैंक यू
0: इतनी
1: वेरी
0: अच्छी
1: मच।
0: जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी तरह कुछ नए विषय को लेकर, कुछ नई स्टोरी लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और आपको फिर बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम।

नमस्कार, मधुमन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में वो राजस्थान में विवाह जन्मदिन लोक गीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोक गीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमा कर और परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारू मारे देश। राग मांड साजन आहे हे सखी मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं। साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें केसरिया बालम पधारू मारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारू मारे देश।

0: क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो रातों की नींद उड़ा दे?
1: क्या आपका दिल भी किसी पैशन के लिए धड़कता है?
0: वो पैशन जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो जुनून जो आपको हर मुश्किल पार करने में ताकत देता है।
1: चाहे वो गिटार के सुर हो, कठपुतलियों से कहानी हो, या फिर रूढ़ीवादी परंपरा को तोड़ा हो,
2: हम ला रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन जोशीले युवाओं से जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना रास्ता बना लिया
3: और ये जुनून जबरदस्त था हम में। तो आज हम चाहे गुणंतर 70 साल के हो गए तो आज भी श्रमदान होता है और हमने हर गांव में 3-3 तालाब बना दिए आज भी।
4: तो सेवा तो सर ये वास्तव में आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर नाम मधुबन रेडियो ने दिया है जुनून। ये वास्तव में जुनून है, ये चस्का है।
5: सुनिए उनकी कहानी, जानिए उनका सफर और महसूस कीजिए उस जुनून की आग को उन्हीं की जुबानी। पेश है रेडियो मधुबन पर एक अनोखा कार्यक्रम जुनून। जुनून हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे साथी श्रोताओं, और हम लोग हर बार एक नई आवाज और एक नए व्यक्तित्व के साथ आपके पास होते हैं, आपके कानों के पास होते हैं, आपके दिल के पास होते हैं, और हमारा एक शानदार, बेहतरीन और दूर दूर तक सुने जाने वाला कार्यक्रम जुनून। और जुनून में इस बार की शख्सियत हैं जिनको पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत जानता है। हमारे साथ है कमलेश मीणा जी। आप वैसे तो सरकार की सेवाओं में हैं, एक देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, और देश की दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक पहचान और अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आप एक सक्रिय अकेडमिशियंस हैं, एक शैक्षणिक प्रशासक हैं, और के साथ साथ एक कम्युनिकेटर हैं। और तो और क्या कहूँ इनकी तारीफ में, मैं एक लंबी लिस्ट अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की नहीं पढ़ना चाहता। सिर्फ इतनी सी बात है कि आप जान लें उनकी आवाज़ को, कुछ क्षणों में हमारे बीच में होंगे, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन मधुबन रेडियो 107.8 FM, और आप इसको सुन सकते हैं हमारे रेडियो मधुबन के एप्लीकेशन के माध्यम से भी। तो कमलेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम जुनून में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो मधुबन, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके प्रति, विशेषकर रेडियो मधुबन, ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रति बहुत आभार कि आज आपने इस जुनून कार्यक्रम के तहत मुझे जोड़ा है, और जो आज आपके साथ रूबरू होंगे, हम जो बातचीत होगी निश्चित रूप से हमारे मुआशरे के लिए, हमारी आवाम के लिए, विशेषकर हमारे यूथ के लिए। जो आप लगातार, मैं आपके कार्यक्रमों को सुनता हूँ, और इस बात के लिए मैं आपकी बड़ी तारीफ करूँगा, बड़ी प्रशंसा कि आप लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस पहल के माध्यम से जिसका नाम आपने जुनून दिया है, उस जुनून के माध्यम से लोग हमारे यूथ के अंदर वो स्पार्क, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन भरने का काम कर रहे हैं, और विशेषकर उन शख्सियतों को आप हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने मुश्किल हालातों का सामना करते हुए आज का जो मुकाम हासिल किया, और समाज को ये आईना दिखाया कि व्यक्ति के अंदर अगर समानता के आधार पर, बिना भेदभाव के आधार पर, या यूं कहूं कि रंग भेद जात और मजहब जो भी हो, आदमी से कमतर है
0: जी।
1: रंग भेद जात और मजहब जो भी हो, आदमी से कमतर है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरफ मान जाओ तो कोई बात बने, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरफ मान जाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हम सबके लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंस्पिरेशन वाला रहेगा। मैं पुनः प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन के प्रति बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया कमलेश जी। कमलेश जी, हमारा पहला सवाल और हमारा एक रूटीन का सवाल जो हम अपने गेस्ट से हर बार जानना चाहते हैं, और हम खोद के जानते हैं इस सवाल को, वो सवाल है कि आपका जुनून क्या है? क्या जुनून है ऐसा जिसने आपको इतना जिंदा दिल बनाया है? क्या जुनून है ऐसा कि जिसने आपको देश के दूरस्थ इलाकों में पहुंचाया? और क्या जुनून है वो जिसने आपको इतना खुश और दुनिया के प्रति इतना बड़ा दिल रखने वाला बनाया?
1: सरद भाई, सबसे पहले तो जुनून केवल मेरे अंदर ही नहीं है, जुनून हर शख्स के अंदर होना चाहिए। जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तो बिना जुनून के भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात से हमको सबसे पहले परिचित होना चाहिए। जुनून का होना बहुत जरूरी है किसी भी मुकाम तक हासिल, उसको पहुंच को बरकरार करने के लिए। और आपने सवाल किया कि मेरा जुनून क्या है। मेरा जुनून आज भी बरकरार है, और इस जुनून की वजह से हम जिंदा है, इस जुनून ने हमको बनाए हुए हैं, और ये जुनून है जिंदगी में कुछ हासिल करने का, ये जुनून है जिंदगी में वो मुकाम हासिल करने का जो समाज में हर व्यक्ति का अधिकार होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी मजहब का हो, जात का हो, पात का हो, क्षेत्र का हो, भाषा को जानने वाला हो, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां पर हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार, अपने जुनून अनुसार, अपनी इच्छाओं अनुसार मुकाम हासिल करने की आजादी है। और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि जब आपने इस प्रोग्राम में बुलाया, जुनून जिसका नाम आपने दिया है, तो मैं अपने आप को रिव्यू करता हूँ कि मेरे अंदर कौन सा जुनून है जिसकी बदौलत मैं आज भी तरल ताजा रहता हूँ, जिसकी बदौलत आज भी मैं लगातार काम करता हूँ। ये जुनून है समाज को सर्व करने का, ये जुनून है उन तमाम वंचित वर्ग के बच्चों को अपलिफ्ट करने का, ये जुनून है उस व्यक्ति को राहत दिखाने का जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, जिसका कोई गाइडेंस नहीं है, जिसका कोई मेंटोर नहीं है, जिसका कोई टीचर्स नहीं है। तो ये तमाम चीजें आज भी मुझे इस काम के लिए प्रेरणा देती है, इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आज भी हमारे भारत में ऐसे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनको टाइमली गाइडेंस नहीं मिल पाती है और उस लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनका जुनून, उनका पैशन, उनकी जो इच्छाएं हैं कुछ हासिल करने की वो खत्म हो जाती है। तो मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के साथ मैं काम कर रहा हूँ और हायर एजुकेशन देने का जिम्मा मुझे मिला हुआ है। और दूसरा सौभाग्य मुझे सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के साथ मैं काम कर रहा हूँ, रोजी रोटी कमा रहा हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, आध्यात्मिक रूप से भी मैं दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के

0: माध्यम से भी मैं लगभग 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये दोनों चीजें मेरे जीवन में मेरे जुनून को बरकरार रखने में बड़ी मददगार है, और इस माध्यम से कम मुझे इस बात का सुकून मिलता है, इस बात की तसल्ली रहती है कि मैं समाज को सर्व कर रहा हूँ बहुत ईमानदारी के साथ, थ्रू एजुकेशन, थ्रू राजयोग, योगा, मेडिटेशन के माध्यम।
1: जी बहुत बढ़िया कमलेश जी, आपकी बात सुन के तो मुझे यह याद आता है कि यह बंदे कुछ ऐसे जा गुजर कि जब तू निकले तो आवाम कहे कि कौन गया गुजर। तो ये बात है, और बात जो है कि आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हैं। आपने अपने जुनून में बताया कि आपका जुनून है कि उन बच्चों तक, उन युवाओं तक शिक्षा को पहुंचाना, और उस शिक्षा के माध्यम से वो अपने मुकाम या उस पद सोपानों पे आगे बढ़ सकें जो जिंदगी में सफलता के लिए आवश्यक है। और इसके साथ साथ आपने जुनून में बात की कि आप हक और अधिकार की भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो ऐसा बगीचा जिसमें हर फूल अपनी खुशबू देता हो अपने रंग के साथ भी। वो बात है ना कि वो शेर है कि चमन में गुलेबू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो,
0: क्या तुम हो।
1: सो नाइस। तो कुछ ऐसी बात आपने कह दी है और वो सारी बातें आज हमारे बीच में हो रही हैं। तो बताएं ना थोड़ा आपके इस जुनून के माध्यम से जो मंजर होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा उसका विवेचन करें हमारे श्रोताओं के सामने।
0: वर्तमान में जैसे कि आपने मेरे इंटरव्यू में कहा कि मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूं, और मुझे अभी तक 14-15 साल की मेरी इस करियर में देश के अलग अलग कोने में काम करने का मौका मिला, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, चाहे राजस्थान हो, और मैंने हर जगह अपनी प्रेजेंस को बहुत ईमानदारी से साबित किया है कि व्यक्ति के अंदर डेडिकेशन है, जुनून है, कमिटमेंट है, तो एक अच्छा काम किया जा सकता है और एक अच्छे मुआसरे का निर्माण हम कर सकते हैं थ्रू हायर एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन, थ्रू मॉरल वैल्यू एजुकेशन, थ्रू करेक्टर बिल्डिंग के माध्यम से। तो एक ये लोग हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ये शरद भाई मुझे देखने को मिलता है कि हमारे यूथ में विशेषकर वो मोटिवेशन नहीं है, वो जुनून नहीं है, कहीं ना कहीं लेक ऑफ पैशन की वजह से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाती है। तो हमारे जैसे व्यक्ति जब इस मुकाम तक पहुंचते हैं, आप हम सब समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है, हमने एक छाप छोड़ी है हमारे कार्य के माध्यम से, हमारी शिक्षा के माध्यम से, हमारे कार्य क्षेत्र के माध्यम से। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हौसला ना छोड़ कर सामना जहां का, हौसला ना छोड़ कर सामना जहां का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का। हौसला ना छोड़ कर सामना जहां का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है, ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है मेरे दोस्तों। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
1: यस,
0: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है,
1: नई जंग है।
0: और हमेशा आपके लिए मैं कहूंगा कि रोज कहाँ ढूंढोगे सूरज चांद सितारों को, रोज कहाँ ढूंढोगे सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे हंधियारों को। ये हम उस तरह के शख्सियत हैं और उस हालात से गुजरे हैं, लेकिन उन हालातों को कभी हमने जिम्मेदार नहीं ठहराया, उन हालातों के ऊपर कभी दोष नहीं मना, और हमने जो भी जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से, मजबूती के साथ निर्वहन किया है। और आज आप हमारी जो पहचान बनी है, वो जो हमारे अंदर जुनून था समाज के प्रति कुछ देने का, समाज का ऋण उतारने का, इस राष्ट्र के प्रति हमारी जो दायित्व थी, एक राष्ट्र को बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, और ये तब मुमकिन होगा जब व्यक्ति के अंदर राष्ट्र, समाज और देश के प्रति उसकी जिम्मेदारियों से, उसकी जवाबदेहिता से, या उसके प्रति उसकी कर्तव्य क्या है उनसे वो वाकिफ हो। और आप हम वो शख्स जिसको लेगेसी विरासत में कोई बड़ी दौलत या बड़ा मुकाम, बड़ा नाम नहीं मिला, हमने बिना विरासत के हमारा जो आज का मुकाम है वो हासिल किया है। और एक कहते हैं कहावत हमारे यहाँ कि विरासत से मंच तो मिल सकता है, याद रखिए विरासत से मंच तो मिल सकता है लेकिन तालियां खुद बटोरनी पड़ती है।
1: क्या बात है, क्या बात,
0: तालियां खुद बटोरनी पड़ती है। तो ये गलत फहमी में ना रहे कि हर चीज विरासत से हासिल की जा सकती है, विरासत को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको कर्म मेहनत करनी पड़ेगी। और हम तो बिना विरासत के चले थे, कोई ऐसी लेगेसी हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमारे अंदर एक जुनून था समाज के लिए, देश के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन देना, और हमने जो शिक्षा हासिल की, जो तालीम हासिल की, जिसके लिए हमको हमारे वालिद वालिदानों के प्रति, हमारे माँ बापों के प्रति, हमारे पेरेंट्स के प्रति बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमको इस लायक बनाया। और आज जो शिक्षा हमको मिली है उस शिक्षा के मार्फत हम समाज को बदलने का काम कर रहे हैं। और शिक्षा भी ऐसी मिली है जहाँ नफरतों के जहाँ में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, नफरतों के जहाँ में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। मोह पहुंच कर अश्क अपने आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, पहुंच कर अश्क अपने आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, इस तरह का कंसेप्ट हम लोग लेके चलते हैं। और सबके सब सबको उठाने का काम, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देने का काम हम लोग करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो आप भी वाकिफ है, लोग भी वाकिफ है कि हमारा रोल बहुत बेहतरीन आज की तारीख में हमारे मुआशरे के लिए, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में उन बच्चियों तक तालीम पहुंचाने का जिम्मा, उन युवाओं तक, उन व्यक्तियों तक जो क्षेत्र के दूर तलक इलाकों में रहते हैं, इस सोसाइटी के वासिंदे हैं, डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन उन तक वो आज भी कई सारे कारणों की वजह से शिक्षा से महरूम है, शिक्षा का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। और डेमोक्रेसी होने के नाते विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का जब हम दावा करते हैं तो उस लोकतांत्रिक देश के नाते ये हम सब की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति विशेष चाहे किसी भी मजहब का हो, कहीं भी रहता हो, उसको वो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए जिसके लिए हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते हैं। और उन मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा सबसे अहम मसला है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने उस वर्ग तक, उस व्यक्ति तक, उस समाज तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित किया है जो कहीं कहीं आपकी पारंपरिक शिक्षा पद्धति से महरूम थे, वहां तक वो पहुंच नहीं पाए। और 10+2 के बाद विशेषकर हायर एजुकेशन में आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने लाखों व्यक्तियों का जीवन को बदला है।
1: बेहतरीन कमलेश जी, आपकी बात सुन के तो वो बात समझ में आई है कि आपका जुनून का रास्ता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और अब इसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि आप ODL के क्षेत्र में, आप वहां पर एक प्रशासक हैं, एक क्षेत्रीय निदेशक हैं, और मैं वहां का विद्यार्थी रहा हूं। तो ODL के माध्यम एक बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार माध्यम है अपनी सफलता के रास्ते को, अपनी सफलता की कुंजी को पकड़ने का, और आप जुनून में लगे हैं कि ODL कैसे देश में अपना काम, जो लक्ष्य है हमारे ODL के, वो तय कर सकें। तो वो क्या लक्ष्य है थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कंसेप्ट जानना समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में दो तरह की शिक्षा पद्धति आज की तारीख में मौजूद है, एक पारंपरिक शिक्षा पद्धति, दूसरा दूरस्थ और मुक्त शिक्षा पद्धति। पारंपरिक शिक्षा पद्धति की अपनी लिमिटेशन है, अपने तौर तरीके हैं, अपने कायदे कानून है, वहाँ पर इंटेक का भी अब लिमिटेड इंटेक होती है, एक सर्टेन लेवल पर एडमिशन होता है। लेकिन अभी तो सौभाग्य से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस देश का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए महत्वपूर्ण नीति है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 21वीं सदी का भारत जो बनने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा नीति इस देश के लिए बनाई है, जिनकी लीडरशिप में ये शिक्षा नीति तैयार हुई है, जिसका लक्ष्य है व्यक्ति का निर्माण करना चारित्रिक रूप से, राष्ट्रीयता की भावना क्या है उसके अंदर, देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है, मान मूल्य मर्यादा क्या है, हमारी नॉलेज एंड भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, उसको वापस रिस्टोर किया जा रहा है। और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत सारे बदलाव जो हमारे हायर एजुकेशन से लेकर प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे देखने को मिल रहे हैं, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी देश के एक चुनिंदा विश्वविद्यालयों में दुनिया का नंबर 1 का विश्वविद्यालय है जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि मुक्त दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हायर एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, विशेषकर उन बच्चों को, उन महिलाओं को, उन व्यक्तियों को जो 10+2 के बाद में किसी भी कारणवश उच्च शिक्षा का हिस्सा नहीं बन पाए। कारण चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, भौगोलिक कारण हो, और चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियों की वजह से वो शिक्षा से महरूम रहे हैं, लेकिन पढ़ने की ख्वाहिश उनके अंदर है, पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को, ऐसी महिलाओं को, ऐसी बच्चियों को हम इस उच्च शिक्षा के माध्यम से जोड़ते हैं। और आज आप पूरी दुनिया में, देश में देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो कंट्रीब्यूशन है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ऐसे ऐसे बच्चों को हमने तालीम के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए हैं जो किसी भी कारणवश से, चाहे कारण कोई सा भी हो सकता है, मैं कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रजातांत्रिक देश होने के नाते ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्ची और बच्चियों तक शिक्षा की सुविधाएं सुलभ तरीके से मिले, आसानी से, इजीली एक्सेसिबल टू ऑल वाला कंसेप्ट होना चाहिए। इसको सार्थक किया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने। मैं राजस्थान में, अभी वापस राजस्थान की मैं बात करूं, मैं इससे पहले पंजाब में था, बिहार में था, कश्मीर में मैं अपनी सेवाएं दी। आप देखेंगे राजस्थान में हमारे यहाँ तकरीबन अभी जनवरी 2026 सेशन के में आप देखेंगे तो 82,000 से ज्यादा एडमिशन हो चुका है। इनमें 80% महिलाएं हैं। वो महिलाएं वो है जो 10+2 के बाद में पढ़ नहीं पा रही है, उन लेकिन पढ़ना चाहती है। बहुत सारे मसाइल से उनकी लाइफ में है, उनके जीवन में है, लेकिन ऐसी मुश्किल हालातों में उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो किसी कंटेम्पररी कन्वेंशनल एजुकेशन का हिस्सा बन पाए या कॉलेज रेगुलर एजुकेशन ले पाए। तो उन सब के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सबसे अहम विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है। आज हमारा विश्वविद्यालय, जिनकी हमारी वर्तमान वाइस चांसलर मैडम प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में, पूरे मुल्क में बहुत एक्टिवनेस के साथ, बहुत मजबूती के साथ, बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है। और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि शिक्षा हर उस बच्चे, हर उस बच्ची, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस देश का वासिंदा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, किसी भी भाषा को जानने वाला हो, किसी भी इलाके से, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। तो सारी चीजों को तोड़ते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सबके लिए शिक्षा की पहुंच आसान बनाई है और उसका फायदा आज लाखों बच्चों को, बच्चियों को मिल रहा है। दूसरा कंसेप्ट, इन सर्विस कैटेगरी वाले, आप हम जैसे व्यक्ति जो सर्विस में आ गए हैं लेकिन पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, अपनी हायर एजुकेशन और बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सबसे अहम विश्वविद्यालय है, सबसे अहम प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको रेगुलर क्लास लेने की जरूरत नहीं है, जहां पर सीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड इंटेक हमारे यहाँ होते हैं। और आज की तारीख में आप देखेंगे 333 UG, PG, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उपलब्ध करवा रहा है। साल में 2 बार एडमिशन देता है, साल में 2 बार एग्जाम करवाता है। ये तमाम तरह की फैसिलिटी आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस देश के वासिंदों को, इस देश के युवाओं को, इस देश की महिलाओं को, बच्चियों को हम लोग दे रहे हैं, जिसका फायदा हमारे माशरे को। और सरकार चाहती है कि हमारा GER 2030 तक 50% बढ़े, उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे आपके उस ख्वाहिश की, उस जुनून की, इसमें आप समाज को एक बराबरी का समाज देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जो हमारे संविधान में निहित है, तो उसके निमित्त आप क्या कर रहे हैं और क्या सोचते हैं थोड़ा बताएं, जिससे कि, और चूंकि समय की सीमा भी हमारे सामने, हमारे कार्यक्रम के सामने रहती है, तो हम बहुत थोड़े से शब्दों में चाहेंगे कि कैसे आप अपने दूसरे जुनून के बारे में, जो जुनून आपका ODL का जुनून तो है ही, और शिक्षा के इस टूल के माध्यम से आप उस जुनून को हासिल करना चाहते हैं, हालांकि दूसरा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शिक्षा वो टूल है जो आपके उस जुनून के लिए एक माध्यम बनती है, तो वो जुनून क्या है?
0: चलिए भाई, मैं आपके इस जुनून कार्यक्रम के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप हम जिस जंजावतों को पार करते हुए यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो कहना बहुत आसान है, उसको फील करना बड़ा मुश्किल है। और मैं कहूँगा कि तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। तमाशा करने वालों को क्या खबर कि हमने कितने तूफानों को पार कर ये दिया जलाया है। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो दीपक हमने जलाया है ज्ञान का, शिक्षा का, हमारी जिम्मेदारियों के माध्यम से, उसका बेनिफिट, उसका लाभ, उसका फायदा हमारे समाज को, हमारे माशरे को, हमारे आवाम को, हमारे एक एक बच्चे को मिले। और इसी नाते में हम लोग लगातार, मैं लगातार लगा रहता हूँ। और मेरा जुनून आपने जानना चाहा कि निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे व्यक्तियों को इस राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिले किसी भी जिम्मेदारी के माध्यम से, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएं। और उस समाज के माध्यम से जिस हमारे बच्चों के अंदर चारित्रिक मूल्य, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, राष्ट्रवाद क्या है, हमारी ड्यूटी संविधान के प्रति क्या है, ऐसी भावना का निर्माण करते हुए ऐसे मुआशरे का निर्माण करें जहां पर किसी भी जात, मजहब, जाति पाति के बिना सबको बराबरी का हक मिले, जहाँ पर आप हम लोग जैसे व्यक्तियों को जो जिस मुकाम मिल पाया है, ऐसे 22 मंद हजारों बच्चे हैं जो आज भी अपनी ख्वाहिशों को दबाए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों, ऐसी बच्चियों, ऐसे लोगों को मौका मिले बहुत मजबूती के साथ, ताकि उनका रोल हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे आवाम के लिए मजबूती से उभर कर सामने आए। मैं आप सबके प्रति, विशेषकर आपके पैशन, जो आपने जुनून कार्यक्रम आपके ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मधुबन चैनल के माध्यम से जो रखते हो, जो डिस्कशन रखते हो, निश्चित रूप से हमारे यूथ के लिए, हमारे सोसाइटी में ये इनसे प्रेरणा मिलती है, बच्चों को एक ताकत मिलती है, हौसला मिलती है। इस हौसला अफजाई के लिए मैं आपके प्रति, आपके मधुबन चैनल के प्रति, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के प्रति और तमाम आपकी टीम मेम्बरान के प्रति बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आप उन समाज के पसमंदा व्यक्तियों को निकाल निकाल कर ला रहे हो, उन चुनिंदा व्यक्तियों को, चुनिंदा शख्सियतों को समाज से रूबरू करवा रहे हो, जिन्होंने बहुत मुश्किल हालातों का सामना किया अपने जीवन में, लेकिन वो रुके नहीं, थके नहीं, डरे नहीं और बिना किसी रुकावट के अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे आपने मौका दिया, मैं आपके प्रति दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे नाचीज को आज समाज से रूबरू करवाया इस जुनून कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं पुनः शरद भाई आपके प्रति, आपके मधुबन चैनल के प्रति, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिनका एक विशेष मोटो है इस चैनल के माध्यम से, मुझे इस विश्वविद्यालय से जुड़ने का मौका मिला है। 20-22 साल से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपने जिस तरह से समाज को बदलने की जो जिम्मेदारी ले रखी है और अलग अलग इनिशिएटिव, अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से, चाहे नशा मुक्त भारत अभियान हो, स्वस्थ अभियान हो, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव है जो राज योगा एजुकेशन और मेडिटेशन के माध्यम से आप इस समाज का निर्माण करने में लगे हुए हैं, और मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार हूँ, आप साधुवाद हूँ कि आप जैसे व्यक्तियों की बदौलत हम जैसे व्यक्तियों को मौका मिला और हमने कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियों के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति, इस देश के प्रति, समाज के प्रति अपने आप को बनाए रखा, खड़ा रखे, और जो आज जिस जो भी मुकाम हम हासिल कर पाए हैं उसमें कहीं कहीं आप जैसी शख्सियत, आप जैसी संस्थान का बड़ा अहम किरदार है, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार आपके।
1: बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, आपने देखा और सुना कि एक जबरदस्त और बुलंद आवाज आज आप हमारे शो में थी। कार्यक्रम का नाम है जुनून और आप सुन रहे हैं इसको अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर, और आपकी फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM। तो फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी शख्सियत के साथ। कमलेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए आप,
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक महापुरुष के पास एक युवा पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत तकलीफें हैं, आप मुझे ऐसा स्थान बताएं जहां कोई समस्या ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो उस महापुरुष ने कहा कि तुम कल सुबह आ जाना। दूसरे दिन सुबह जब वो युवा उनके पास पहुंचा तो वो महापुरुष उसे लेकर के शमशान घाट पहुंच गए और कहा कि तू यहाँ लेट जा। तो उस युवा ने कहा कि महाराज, मैं तो ये जानना चाहता था कि समस्याओं का निदान क्या है या कहाँ मैं सब समस्याओं से मुक्त रह सकता हूँ। महापुरुष ने कहा, यही वो स्थान है जहाँ तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं आएगी। कहने का भाव ये है, यदि हम जीवन में हैं, संसार में हैं, तो समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि हम उनका निदान कैसे करते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। इसी बात पे हमारा सुख या हमारा दुख निर्भर करता है। कहते हैं, हार या जीत दो बातों पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसलिए समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को हम हमेशा ही श्रेष्ठ बनाए रखें और ये श्रेष्ठता हमेशा हमें प्रदान करते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। व्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: व्रता जी। ये जो बात जैसे मैंने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी थी समस्याओं के बारे में, कि समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, और साथ ही जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी ही, क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल, ठान लें तो सचमुच तो चैलेंज है, हमें शक्तिशाली बनाएंगे। ठान लें तो हर बड़ी से बड़ी खाई को भी हम पार कर सकते हैं। ठान लें तो समस्याएं हमसे डर के भाग जाएंगी। तो वास्तव में हमें अपनी आंतरिक पावर को बहुत बढ़ा देना चाहिए। सच तो यही है कि समस्याओं से अधिक पावरफुल हम हैं, लेकिन मनुष्य जब

0: निगेटिव होकर, बहुत ज़्यादा तनाव में रहकर, या जब उसके एटीट्यूड्स दूसरे के लिए बहुत निगेटिव हो जाते हैं, जब उसके चित्त में शुभ भावनाओं का अभाव हो जाता है, तब उसकी जो ये आंतरिक एनर्जी है, इनर पावर है, वो वीक पड़ जाती है। और ये वीक जो पावर है हमारी, जो निगेटिव थॉट्स के रूप में वाइब्रेट आउट होती है, ये समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए हमें समस्याओं से मुक्त जीवन जीने के लिए अपने चित्त को बिल्कुल पॉजिटिव कर देना चाहिए। और सभी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ सीखने योग्य है कि हर व्यक्ति में गुण हैं ही। हमें दूसरों के गुणों को, उनकी योग्यताओं को पहचान कर, उन्हें, उनके लिए अपने मन में सम्मान की फीलिंग पैदा करनी चाहिए और शुभ भावनाएं रखनी चाहिए कि ये बहुत आगे बढ़े। मान लो एक स्टूडेंट है और वो क्रोध बहुत करता है, लेकिन काम करने में बड़ा एक्सपर्ट है। हर कार्य जो उसे दिया जाता है वो बड़ी जिम्मेदारी से करता है, जो उसे पढ़ाया जाता है वो जिम्मेदारी, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत करता है। अब देखिए, दो स्थिति होगी कि व्यक्ति उसके इस व्यवहार को देखकर उसके प्रति निगेटिव हो जाए, बड़ा क्रोधी लड़का है, ये बिल्कुल सफल नहीं होगा, ये आगे चल के बहुत परेशान रहेगा, इसके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा, इसके मुख से तो सदैव बदबू निकलती है, गंदी बातें निकलती हैं, तो न जाने क्या क्या बोलता है। दूसरी चीज, एक दूसरा मनुष्य जो समझदार है वो ये सोच रहा है कि बच्चे में क्रोध तो है, लेकिन कितनी योग्यताएं साथ लिए हुए हैं, क्रोध तो शायद इसकी सच्चाई के कारण है, क्योंकि ये खुद सच्चा है तो चाहता है दूसरे भी सच्चे हों, ये उसकी गलती है। लेकिन वो उसके टैलेंट्स को सम्मान देता है, उसके लिए उसके मन में प्रेम पैदा होता है, और जब उसके लिए मन में प्रेम पैदा होगा तो इस प्रेम की फीलिंग से यदि उसे कहा जाए कि बेटा जरा क्रोध भी कम कर लिया करो, तो जरूर मुस्कुराएगा और कहेगा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्रोध बहुत बुरा है। और अगर उसके प्रति निगेटिव फीलिंग्स है, तुम बहुत क्रोधी हो, तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो, तुम कभी इस क्रोध से मुक्त नहीं हो पाओगे, छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, तो वो कहेगा तुम छोड़ो पहले, मैं क्या छोड़ू।
1: ये बहुत गहरी बात आपने कही है भ्राता जी, जिसपे सचमुच चिंतन करना चाहिए कि हमारी मनोभावनाएं भी सामने वाले पे बहुत प्रभाव डालते हैं। यदि मैं अच्छी भावना से, प्रेम की भावना से, उसके कल्याण की भावना से कह रहा हूँ तो जरूर एक्सेप्ट करे, लेकिन यदि घृणा का भाव लेके यदि मैं कह रहा हूं तो वो शायद उसे रिजेक्ट कर।
0: घृणा भी और रोब भी और अधिकार भी, जैसे बाप है उसका बच्चा क्रोध करता है तो वो अधिकार से कहेगा तू बड़ा क्रोधी है, तूने घर में अशांति की हुई है, तू पता नहीं कब इसे छोड़ेगा, तेरी तकदीर पता नहीं कैसी है, तू सदा ही अशांत रहेगा, वो ऐसे कहेगा। और अगर प्यार से कहा जाए कि बेटा क्रोध बहुत बुरी चीज है, एक सेकंड का क्रोध मनुष्य के सुंदर भविष्य को नष्ट कर देता है, देखो क्रोध तो अग्नि है, तुम भी अशांत होते हो, दूसरे भी अशांत होते हैं, अच्छा नहीं है क्रोध करना, तो जरूर रहेगा पापा बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं भी छोड़ूंगा इसे। तो हम दूसरों के लिए शुभ भावनाएं रखें, दूसरों के गुणों पर हम ध्यान दें।
1: प्रताप जी, मैं मेल्स की ओर आता हूँ। ये आज जो हमारे पास पहला मेल आया है, ये सिरसा से आया है। और रेणु जी लिख रही हैं कि मेरा जो बेटा है बहुत ही अग्रेसिव है और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, और इस कारण कई बार बहुत सारी समस्याएं हमारे घर में और आसपास क्रिएट हो जाती हैं। तो मैं कैसे अपने इस बच्चे को हैंडल करूं, उसके इस अग्रेसिव नेचर को, और जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है।
0: इन सब समस्याओं का समाधान बच्चे को समझा कर तो नहीं किया जा सकता, न बच्चे को मारपीट के किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी जो गृहिणी हैं, माताएं हैं, वो बच्चों से इस तरह दुखी होकर उन्हें मारपीट करेंगी या उन्हें बुरा बोलेंगी, अपनी मानसिक स्थिति बिगाड़ देंगी, गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, गुस्सा उनको आ रहा था, गड़बड़ बच्चे कर रहे थे, लेकिन मनोस्थिति माँ ने बिगाड़ ली, तो इससे वातावरण बिल्कुल दूषित हो जाता है। तो सच तो ये है, मैं इस बहन को कहूँगा कि वातावरण बच्चे के एग्रेसिव होने से नहीं हो बिगड़ रहा है, आपके परेशान होने से बिगड़ रहा है, इसलिए उसको सुधारने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना बहुत आवश्यक होगा। तो इसमें कुछ चीजें अपना लेनी है। एक तो इस बात को बहुत सहज भाव से लें कि बच्चे तो चंचल एग्रेसिव होते ही हैं, इमोशनल भी होते हैं, समय बदलता है, उनका स्टडी पर ध्यान जाता है, वो किसी फील्ड में मैच्योर होने लगते हैं और उनकी ये सारी निगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिव एनर्जी में टर्न होने लगती
1: मतलब
0: है।
1: मतलब एक एज होता है जबकि ये जो चंचलता है या अग्रेशन है, इस प्रकार की जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो होती हैं।
0: बिल्कुल, तो एक तो इसको स्वीकार कर लें, इसको बहुत सीरियसली लें तो इसने मुझे तंग कर दिया, इसने हमारे घर का माहौल सारा खुशी का था वो अशांति का कर दिया, पता नहीं इसका भविष्य कैसे होगा, बड़ा होके ये क्या करेगा। लोग 20 साल आगे की सोचने लगते हैं कि अब ये ऐसा है तो बड़ा होकर ये क्या तूफान करेगा। अरे नहीं, हर दिन सब कुछ बदल रहा है, सबे दिन होत न एक समाना, तो सब कुछ बदल रहा है। ये संसार का खेल बहुत परिवर्तनशील है। तो माताओं को चाहिए ऐसे केसेस में कि अपने बच्चों के लिए शुभ भावनाएं रखें। अब मैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताता हूँ। इस बहन को भी राजयोग सीख लेना चाहिए, सहज 7 दिन का कोर्स करके, और ये सब स्पिरिचुअल स्टडी कर लेनी चाहिए। तो एक काम ये करेंगी कि भोजन जब बनाएं तो बहुत अच्छी तरह याद करती रहें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो परम पवित्र हूँ, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो एक बहुत अच्छी आत्मा हूँ। तो इससे क्या होगा, इनके नैनों से और हाथों से निकलने वाले वाइब्रेशंस भोजन में समाने लगेंगे। और फिर ये संकल्प करें, जब बच्चे को भोजन खिलाए तो ये पवित्र भोजन खाकर ये इस बच्चे का चित शांत हो जाए, ये बहुत स्वीट हो जाए, ये बहुत हार्मोनियस हो जाए, इसके चित्त में सबके लिए प्रेम पैदा हो जाए। जो भी वो विचार देना चाहती हैं भोजन के समय अपने बच्चे के लिए करें। तो भोजन में जो वाइब्रेशंस हैं वो उसी रूप में टर्न होके वैसा ही काम करेंगे। एक चीज ये, बच्चा छोटा है तो दूध पिलाते हैं या पानी जब उसको देते हैं तो पानी पर भी दृष्टि डालकर 7 बार एक साथ संकल्प कर दें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। तो पानी भी चार्ज हो गया, और फिर जब पिलाएं तो उसको पुनः संकल्प दे दें कि इस पानी को पीने से इसका चित्त शांत हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, और इसका इसकी जो प्योरिटी है वो बहुत बढ़ जाए, इसकी जो ये नेचर है, इमोशनल नेचर, एग्रेसिव नेचर, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। 2 काम तो ये करेंगे। एक तीसरी चीज जो मैं पहले भी सिखाई है जो बहुत अच्छा रहता है, ये तब भी की जा सकती है जब बच्चा सोया हो। मान लो सवेरे 5 बजे या 6 बजे बच्चा सोया है, तो उसे राजयोग के द्वारा 1-2 मिनट तो गुड वाइब्रेशंस दिए जाएं, क्योंकि जब वो सोया है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जागृत है। फिर उसे कुछ अच्छे थॉट्स दिए जाएं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो देवकुल के हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे हो, अब शांत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, तुम तो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है।
1: मतलब जैसा हम देखना चाहते हैं वैसे ही संकल्प उसे,
0: तो वो उसमें डेवलप होने लगेगा। और जब वो उठेगा तो धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद ही आप देखेंगे उसके बिहेवियर में चेंज आ गई। तो ये एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसको करने से बहुत कुछ बदल जाता है।
1: बिल्कुल, मतलब परेशान होने के बजाय आपने बहुत सुंदर जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई हैं वो या तो भोजन बनाते समय भी इसे करें, पानी जब वो देती हैं बच्चे को तब करें, और साथ ही जब वो सोया हुआ है तब जैसा हम उसे देखना चाहते हैं वैसे ही संकल्प करें और देखें कि वो वैसा हो गया है।
0: बिल्कुल, और बच्चे तो क्योंकि उनका माइंड अभी बहुत भटका नहीं है इधर उधर, तो देयर माइंड इज वेरी सेंसिटिव, और वो हमारे जो थॉट्स जा रहे हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुली रिसीव करेगा और बिल्कुल चेंज लाएगा उनके जीवन में। मैं समझता हूँ 7 दिन में बहुत बड़ी चेंज दिखाई देगी, पर 21 दिन तक अवश्य कर लेना।
1: पिछली बार एक कॉन्फ्रेंस में एक महिला आई थी भ्राता जी, वो लगभग इसी प्रकार का अपना अनुभव शेयर कर रही थी कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, 1 8 साल का और 1 6 साल का, और दोनों इतनी ज्यादा मतलब बहुत लड़ते हैं हर चीज को लेके कि घर का पूरा माहौल अशांत करके रखते हैं। तो जो आपने तीसरी बात कही, उन्होंने भी कहा कि मैंने ये एक सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस की, मैंने ये कि ये कैसे मैं उन्हें देखना चाहती हूँ कि ये कैसे हैं, और मैंने वैसे थॉट्स दिए और सचमुच मैंने पाया कि जैसा जैसा मैंने विचार किया था ठीक वैसा ही उन्होंने किया। तो ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस हो सकती है कि परेशान होने की बजाय जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं
0: विजन बनाए,
1: वैसा विजन बनाए,
0: और ये इस तरह के वाइब्रेशंस दें तो विजन प्लस वाइब्रेशन विल ब्रिंग ए वंडरफुल चेंज इन देम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इससे इनकी ये जो समस्या है ये समस्या दूर हो जाएगी। प्रताप जी, अगला जो हमारे पास आया है मेल, ये आया है गुजरात जामनगर से। पल्लवी जोशी जी लिख रही हैं कि मेरे पिता को बोन कैंसर हो गया है और उनका इलाज तो हम करा रहे हैं लेकिन वो बहुत तकलीफ में हैं। हम सब उनके तकलीफ को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, मम्मी तो रोती ही रहती हैं। क्या दवाइयों के अलावा कुछ ऐसी आध्यात्मिक साधना या कुछ प्रैक्टिसेस जैसा कि आप बताते हैं अपने कार्यक्रम में की जा सकती हैं जिससे कि उनकी तकलीफ दूर हो सके?
0: बिल्कुल की जा सकती है। इनको राजयोग सीख ही लेना चाहिए। राजयोग का

0: कि पानी पर दृष्टि डालें, पानी लें गिलास में, उस पर दृष्टि डालें। सात बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, इसकी हम चर्चा करते ही आ रहे हैं। हमारे दर्शक इसको जान गए होंगे अब ये शब्द कि हम भगवान के बच्चे, सर्व शक्तिवान के बच्चे हैं, तो उसकी शक्तियां हम में भी हैं और उसको हम नाम देते हैं मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। तो सात बार संकल्प करने से पानी में शक्तियों के वाइब्रेशंस भर जाएंगे। तो ये पानी एक बहुत पावरफुल मेडिसिन बन गया। अब उस व्यक्ति को पिलाएं और ये संकल्प करें कि इससे इसका बोन कैंसर ठीक हो जाए, तो वो पावरफुल दवाई उनके बोन कैंसर को ठीक करेगी। उनको जो बहुत पेन हो रहा है उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज, क्योंकि पेन मन को होता है, बॉडी में तो जो कुछ भी है वो तो है ही, लेकिन फीलिंग जो है पेन की वो मन को जा रही है। तो इसके लिए वो उन्हें रोज 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को, और अगर ज्यादा करना तो 15 मिनट दिन में भी राजयोग मेडिटेशन करके उनको गुड वाइब्रेशंस दें कि इनका चित शांत हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए, ये पेन फ्री हो जाए। और इसका तरीका है कि हम परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ें और फील करें उसकी एनर्जी मुझे आ रही है कुछ देर तक, और फिर मुझ आत्मा से उनको जा रही है
1: जी,
0: और उनको एनर्जेटिक बना रही है। इतना एनर्जेटिक बना रही है उनको कि पेन फील होता ही नहीं। और तीसरी चीज करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ जो ये सब कुछ हो रहा है, बीमारियां आदि आ रही हैं या और भी कोई समस्या आती है, इनमें पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब का भी गहरा नाता है। इसलिए एक संकल्प के साथ एक घंटा रोज पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, ताकि इनके वो कर्मिक अकाउंट सेटल हो जाएं जिनके कारण ये शरीर की स्थिति बनी है। यानी विकर्मों को नष्ट करने के लिए एक घंटा, कम से कम 21 दिन योग, और अगर जरूरत पड़े तो 3 मास तक। तो इन तीनों चीजों के प्रभाव से कैंसर बिल्कुल, हमें विश्वास है, ठीक हो जाएगा और ये पुनः अपने जीवन का आनंद लेंगे।
1: बिल्कुल। अगला जो प्रश्न हमारे पास आया है, ये आया है इलाहाबाद से। राम मंजोर जी लिख रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 3 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ है। कृपया बताएं कि मैं अपने आध्यात्मिक अनुभूति को कैसे बढ़ाऊं, ताकि इस मार्ग में और आगे बढ़ने के लिए मेरा उमंग उत्साह बढ़े।
0: कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो 3-5 साल चलने तक भी बड़े ढीले ढाले रहते हैं। अब इनको अनुभव नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से ये रेगुलर नहीं है, निश्चित रूप से ये सवेरे नहीं उठते हैं। अगर इनसे पूछा जाए तो ये जरूर उत्तर देंगे, मैं 7-8 बजे उठता हूँ और कभी कभी क्लास में चला जाता हूँ। तो देखिए, एक तो ये हमारी स्टडी है, इसको रेगुलर करना चाहिए ताकि ज्ञान बहुत डेप्थ से हमारे पास आ जाए। हमारी बुद्धि रिफाइन हो जाती है राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, और जब बुद्धि रिफाइन हो जाती है तो ये डिवाइन बनने लगती है, और इसमें इंट्यूशन स्वतः ही आने लगते हैं, और वो इंट्यूशन से बहुत बड़ा अनुभव होने लगते हैं। मान लो हम कहीं जा रहे हैं और हमारा जाना उचित नहीं, तो हमें इंट्यूशन आने लगेगा, नहीं अभी नहीं जाओ, ठहर जाओ, या कोई बाधा पड़ जाएगी जो हमें रोक लेगी 5-7 मिनट के लिए, और वो बाधा टल जाएगी। तो एक तो ये, लेकिन इन्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा सवेरे उठने पर। तो अगर सचमुच इनको बहुत अच्छे अनुभव करने हैं तो 4 बजे उठकर बहुत अच्छा ईश्वरीय चिंतन, ईश्वरीय नशे का अभ्यास करेंगे, और उसमें मैं पहली राय इनको दूंगा कि 5 स्वरूपों का अभ्यास ये करें। उसमें हमारा एक अनादि स्वरूप है आत्मिक स्वरूप, दूसरा हमारा आदि स्वरूप है देव स्वरूप, तीसरा हमारा पूज्य स्वरूप है जो मंदिरों में हमारी पूजा हो रही है, चौथा वर्तमान समय हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, और हमारा लक्ष्य फरिश्ता बनना है। ये 5 स्वरूप हैं हमारे, इनको विजुअलाइज करना, इनको चिंतन करना है। और विजुअलाइजेशन के लिए आवश्यक है कि बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ हो, क्योंकि विजुअलाइजेशन यानी उन स्वरूपों को देखना, ये काम होगा बुद्धि के तीसरे नेत्र से। इसलिए ये बहुत आवश्यक होगा कि ये सवेरे 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, 5 बार कर लें, रात को भी करें सोने से पहले 5 बार। लेकिन इसके लिए अपनी बुद्धि को सारा दिन व्यर्थ से मुक्त रखना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के पास व्यर्थ बहुत है। कई लोग कहते हैं ना, हम बहुत

0: बिजी हैं और मैं उनको कन्विंस कर देता हूं कि तुम बिजी नहीं हो, और तब उनकी समझ में आ जाता है जब वो ये जान लेते हैं कि बिजी तो हमें व्यर्थ ने किया हुआ है।
1: कई बार कहते हैं ना विदाउट वर्क बिजी। हाँ,
0: बहुत लोग बिजी हैं, उन्हें कुछ काम नहीं, वो कहते हैं हम तो बहुत बिजी हैं, मिलने का टाइम अभी तो हम ये काम कर रहे हैं, घर के काम में बिजी हैं सारा दिन, तो व्यर्थ से इन्हें बचना पड़ेगा। ऐसा हम समझ लेंगे वेस्ट थॉट्स आर द एनिमीज ऑफ द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये जो हमारा ज्ञान योग का मार्ग है, व्यर्थ संकल्प तो उसमें मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, इसलिए उससे बचना पड़ेगा। और तीसरी चीज, अभ्यास पर ध्यान देना पड़ेगा, बार बार अभ्यास, क्योंकि कोई भी कठिन चीज भी अभ्यास करने पर सरल हो जाती है, इसलिए पुनः पुनः पुनः अभ्यास। इसके लिए मैं एक सिंपल राय दूंगा पहले कि वो हर घंटे में कोई भी अभ्यास दो बार कर लें। बहुत सारे अभ्यास हैं हम जो सिखाते हैं लोगों को, दो बार कर लेंगे तो व्यर्थ से बचना भी सहज हो जाएगा क्योंकि मन उनमें लगा रहेगा। लेकिन लास्टली मैं ये जोड़ना चाहूंगा, प्योरिटी बहुत आवश्यक है अध्यात्म के गहरे अनुभवों के लिए। अगर इन्होंने अभी तक प्योरिटी नहीं अपनाई है तो बिना प्योरिटी के तो राजयोग के गहन अनुभव होंगे नहीं। इसलिए प्योरिटी की प्रतिज्ञा करें, उस पर ध्यान दें, भगवान को वचन दे दें, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम परम पवित्र हो, पवित्रता के सागर हो, हमें भी पवित्रता से अपने जीवन का श्रृंगार करना है। तो देखिए पहले दिन से अनुभव शुरू हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, तो सुबह उठना प्रारंभ करें यदि नहीं उठ रहे हैं तो, और सारे दिन व्यर्थ से मुक्त रहें। इसके लिए आपने कहा कि कुछ ना कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते रहें, कम से कम घंटे में एक बार या दो बार कुछ इस प्रकार से निश्चित कर लें। और प्योरिटी की बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही प्रता जी, कि प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार है आध्यात्मिक अनुभव का। मुझे लगता है प्रता जी, कई लोग अनुभूति को इस रूप में लेते हैं कि हमें कुछ साक्षात्कार हो, कि जैसे मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो या परमात्मा का साक्षात्कार हो, इसे वो अनुभूति मानते हैं। तो क्या ये अनुभूति है या ये कुछ अलग चीज़
0: नहीं
1: है?
0: ये भी एक तरह की अनुभूति है। दूसरी अनुभूति ये भी होती है कि हम शिव बाबा से बात कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, और हमें फील हो रहा है कि वो हमें क्या उत्तर दे रहा है। ये भी एक बहुत सुंदर अनुभूति होती है
1: जी।
0: तीसरी अनुभूति का स्वरूप होता है कि हम बॉडी लेस हो जाएं और हमें डीप साइलेंस की अनुभूति होने लगे। ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। अनुभवों का तो एक विशाल स्वरूप है। जीवन में कोई समस्या सामने खड़ी है, उसमें हम उलझे हुए हैं, उसके तुरंत हल होने के भी अनुभव होते हैं मेडिटेशन में। तो अनुभव तो एक ऐसी चीज है जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी प्रैक्टिस, उस तरह के अनुभव होते हैं। लेकिन बहुत अनुभूति होगी जब हम भगवान से बातें करके परम आनंद में पहुंच जाएंगे, जब हमारी खुशी एकदम अनलिमिटेड हो जाएगी, और इसके बाद आ जाती है मन की वो स्थिति जो सर्वोच्च स्थिति है, जिसे हम परम आनंद कहते हैं। और ये तब आती है जब हमारा मन और बुद्धि परमात्म स्वरूप पर लंबे समय के लिए स्थिर हो जाए, यानी एकाग्रता फर्स्ट क्लास। तो जब योग में एकाग्रता होगी तो ये परम आनंद की स्थिति होगी और वो अनुभव सुपर है।
1: मतलब हम अपने आप को अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाते रहें, योगाभ्यास करते रहें, जैसे आपने कहा कि अभ्यास करते करते ही एक प्रकार से अनुभूति की ओर हम बढ़ेंगे, निराश भी ना हो। कई लोग निराश हो जाते हैं कि इतने समय करने के बाद हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उन पर चलते हुए अभ्यास बनाए रखें ताकि अनुभूति उन्हें।
0: बिल्कुल, निराश होना ये सबसे बड़ी कमजोरी है मनुष्य की, क्योंकि कभी कभी जैसे बीमारियों के फील्ड में भी ये देखा जाता है कि दवाई खिलाई जा रही,
1: ठीक नहीं हो रहे हैं तो निराश
0: नहीं हो रहा है, लेकिन बनता जा रहा है, फील्ड बनता जा रहा है, और 30 दिन के बाद जब 31वें दिन हम गोली खाएंगे तो हमें बहुत रिलीफ फील होगा, लेकिन 30 दिन तो धैर्य रखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे ही ये है। योग अभ्यास कईयों के लिए थोड़ा कठिन इसलिए होता है कि कईयों ने बचपन से ही अपने मन को बहुत भटकाया है, कईयों के बचपन से ही दृष्टिकोण बहुत निगेटिव रहे हैं, कुछ ऐसे विकार उनके मन में रहे हैं जिन्होंने अंतर की शुद्धि को नष्ट किया हुआ है। ऐसे लोगों को अनुभूति देर से होती है और कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत सुंदर विचार हैं उनके पास, मन में काफी शुद्धि है उनके पास, सब सबके लिए उनके मन में प्रेम बसा हुआ है, वो नेचुरली खुश रहते हैं, ऐसे लोग जल्दी अनुभूति कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि राम मंजूर जी भी इन तमाम बातों को अपनाएंगे और एक अच्छे अनुभव की ओर बढ़ेंगे। भ्राता जी, आज की तमाम सुंदर बातों के लिए, सुंदर अनुभवों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, जितना जितना हम अभ्यास करते हैं उतना उतना ही परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं, अनुभूति की ओर बढ़ते हैं, करत करत अभ्यास के, ये हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित मान्यता है। इसलिए अपने अभ्यास को ना छोड़ें, निराश ना हो, क्योंकि किसी ने कहा है कि मान लीजिए आप किसी दीवार को गिराना चाहते हैं और वो दीवार 100वें हथौड़े पर गिरता है, तो क्या पहले हथौड़े का महत्व नहीं था, 10वें हथौड़े का महत्व नहीं था, 50वें हथौड़े का महत्व नहीं था, हर हथौड़े का महत्व था, हर अभ्यास का महत्व था। परिश्रम कभी भी निरर्थक नहीं जाती, इसलिए परिश्रम करते रहें, निश्चित रूप से आपको सुंदर अनुभूति होगी। समस्याओं के लिए भी यही बात है, आप धैर्य बनाए रखें और सतत प्रयास करते रहें, समस्या निश्चित रूप से दूर होती ही हैं। आज के समाधान के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। गांव और अंचल को जब जाते बा सुनते नाम कितना खुशी लगता है, क्योंकि अपना गांव अपना अंचल जिस गांव जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ देते हैं गाँव और अंचल परिवेश प्रकृति। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर रोज की तरफ आज भी आपका पास रखने जा रहे एक कार्यक्रम जो कि बच्चों का हुनर बच्चों का टैलेंट को भाव और भावना को आप तक तो पहुंचाएंगे, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक का जो विशेषता जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है वो चीज आज रख पा रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो सुनते हैं, कमर्शियल रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो मीन्स योर रेडियो आपका रेडियो आपका द्वारा प्रसारित होता है। तो रेडियो मधुबन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनार में पहुंचे और बच्चों का आवाज भी बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर विद्यालय का आवाज को रखते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय के सहयोग से मिलित भावना से आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे सभी बारी बारी। तो हमें खुशी है इस तरह बढ़ चढ़कर बच्चे जब भाग लेते हैं और इसका श्रेय तो माता पिता और संस्था का संस्था प्रधान का साथ सभी स्टाफ को जाता है, बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो देर किस बात की, पहले एक प्रार्थना के रूप में हमारा छात्राएं उपस्थित है तो उनको स्वागत करते हैं नाम का साथ। वो अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कहाँ से, क्योंकि रेडियो में जब उनका आवाज सुनेंगे तो पता चला किसका आवाज है। आवाज से कोई कोई पहचानेंगे, जिसको कोई सुना नहीं आवाज को वो कैसे पता चलेगा, इसलिए उनका नाम बताएंगे कौन सा क्लास। भले विद्यार्थी जीवन में अपना सहपाठी उनका आवाज को जानते जान लेंगे, लेकिन जो दूसरे बाहर लोग सुनते हैं ऑल इंडिया में कहीं पर भी सुनते हैं तो उनका आवाज सुनने के साथ साथ नाम और स्कूल का नाम जरूर ले। तो सभी को स्वागत करते हैं, अपना नाम और क्लास का साथ एक प्रार्थना शुरू कराएंगे।
1: मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 12 से हूँ और मैं चन्नार से हूँ।
2: मेरा नाम आफरीन है, मैं कक्षा 11 से हूँ और मैं चन्नार से हूँ।
3: मेरा नाम विश्ना है, मैं कक्षा 12 से हूँ और चन्नार से हूँ।
4: मेरा नाम दक्षा और मैं कक्षा 11 से हूँ और चन्नार से हूँ।
5: मेरा नाम अश्विनी है, मैं कक्षा 10 में हूँ।
1: क्या

उसे चुन लाऊं तेरे लिए। थाली में फल फूल लाए हम प्रभु के चरणों में, थाली में फल फूल लाए।

0: लिए।
1: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भाव और भावना का साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से प्रभु तक पहुंचाते हैं और अपना जो दिल का उद्गार और मन का बात प्रार्थना का रूप में हर विद्यालय में होता है, तो आज इस विद्यालय में भी बच्चे एक गीत का पूरा एक प्रार्थना सभी जगह में सभी विद्यालय में सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर गाते हैं। बहुत खुशी लगता है इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब भाग लेते हैं। तो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्या लक्ष्य रखे हैं? हमारा गुड़िया है, क्या नाम बताया?
0: खुशबू।
1: खुशबू, देखो नाम कितना खुशी लग रहा है नाम सुनते ही। खुशबू, खुशबू आज तो फैला रहे हैं, फूल का खुशबू आता है कि नहीं, तो आज खुशबू खुद नाम का खुशबू फैला रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, क्योंकि एक मंच जिसका आवश्यकता था आज बच्चों को मिल रहा है। इसके लिए बच्चे तरसते हैं, लेकिन आज ये तो सरकार का धन्यवाद है क्योंकि सरकार इस तरह कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी बच्चों को देते हैं, जिसका चलते बच्चे अपना हुनर सिर्फ सीमित अंचल में क्यों सीमित रखे, अपना क्लास में अपना विद्यालय में अपना गांव में पूरा जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबनी इस तरह मंच देते, जिसका चलते उनका सुर लय और ताल का साथ अपना व्यक्तित्व को निखारते हैं और जो आवश्यकता था आज मिल रहा। और इस कार्यक्रम को सुंदर में मैम हमारा सजा रहे और सर भी सजा रहे, तो उनको भी धन्यवाद देंगे और उनका भी दिल का बात सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: सुंदर प्रस्तुति सुनने के पश्चात ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं, और खासकर बच्चे सच्चे होते और उनका भावना आज जन जन तक पहुंचाए रेडियो मधुबन द्वारा, और इसका श्रेय तो सभी बच्चों को उनका माता पिता को भी जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरह आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते, चाहे जो भी संसाधन जो भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो इस कार्यक्रम को हमारा संस्था का प्रभारी वो भी उपस्थित है, मैम कैसे बच्चों को अनुशासन में रखते हैं, हमें बहुत खुशी लगा अनुशासन में बच्चों को रखते, पूरा साइलेंस में बच्चे बैठे, तो मैम अपना परिचय देंगे, मैम अपना परिचय देंगे, और खासकर बच्चों का मेन जो लक्ष्य है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, ये देखा मैंने, तो आप अपना परिचय देंगे मैम, आपका स्वागत।
1: थैंक यू, आपने हमारे स्कूल में मौका दिया इस बात के लिए।
0: जी मैम,
1: मेरा नाम सुमनलता मीणा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनार की प्रिंसिपल ना होके व्याख्याता हूँ, सेकंड इंचार्ज। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आदिवासी लोग के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनमें अनुशासन का असर बहुत ज्यादा है।
0: जी।
1: वो ज्यादा बोल नहीं पाते, बट अनुशासन उनमें पढ़ते भी हैं, पर विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी वो स्कूल से आते हैं, उनके घरों के जो हालात है आप देखते होंगे इतने अच्छे नहीं है, फिर भी वो यहाँ विद्यालय में आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमें खुशी है कि हम इनको अपने ज्ञान से इनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। थैंक यू।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम को धन्यवाद देते हैं, और सर को भी लेंगे, सर भी बच्चों का साथ आज कुछ उमंगों से और वार्म अप करा देंगे, बच्चे थोड़ा सा जो थोड़ा पीछे रह रहे उसको आगे बढ़ाने के लिए भी खुशी मिलेगा। सर से एक निवेदन है, सर बच्चों को ऐसे कार्यक्रम का माध्यम से देखते हुए वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, आज वो अपना आवाज में गीत सुनाएंगे हमारा श्रोता मित्र को, और हमारा जो सामने बैठे सभी बच्चों को, और इस माध्यम से जो भी सुन रहे तो वो भी सर को जानते होंगे, और जब सुनेंगे सर का परिचय तो उनको भी खुशी लगेगा, क्योंकि रेडियो कार्यक्रम में मंच कभी कभी मिलता, आज मिल रहा है, तो सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी सर।
2: जी नहीं,

0: मैं पीतम सिंह, वरिष्ठ अध्यापक जीएसएस चनार, जो ब्रह्म कुमारी से पधारे हुए, मधुबन से आए हुए हमारे पवित्र भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ जीएसएस चनार में इन आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के सामने इस प्रकार ये प्रोग्राम रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन बच्चों की जो खूबी है, इनमें प्रतिभा बहुत, प्रत्येक बच्चे में अपनी खूबी होती है। कहते हैं ना कि मछली जल की रानी होती है, वो कभी भी जंगल की रानी नहीं बन सकती। शेर जंगल का राजा होता है, वो कभी भी पानी का राजा नहीं बन सकता। इसका अर्थ कि प्रत्येक बच्चे में अपनी एक खूबी होती है, सिर्फ उसको निखारना ये बहुत बड़ी बात है। और इसको निखारने के लिए हमको भी इतनी दूर से लगाया गया है। हम चाहेंगे कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें और अपना हुनर सबको दिखाएं। ये आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं बहुत दूर से आते हैं, हमें पता है इनकी परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में ये हैं, उन परिस्थितियों से, ऐसी बात नहीं है, हम भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम रखते रहें, तो इन बच्चों की भी उत्साह बढ़ेगा और इनमें कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है कि हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद के लिए धन्यवाद, लेकिन हम जो करते हैं, आप जो करते हैं, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच है, जिस मंच का माध्यम से अपना बात को, भावना को और दिल का उद्गार को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और सभी का मोटिवेशन बच्चों का प्रति रहता है, सभी का लक्ष्य बच्चे आगे बढ़े, बच्चे अच्छा बने, देश का नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन करने का पहले खुद का नाम रोशन करें, परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन, सबका आस बच्चों का ऊपर रहता है। इन बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से भाग लेते हैं एक दूसरे को देखकर, तो हमें खुशी होता है। और सरकार का जो मंचा है, एक लोकल के जो सिंगर हो चाहे उनका बस जो भाषण का कला हो चाहे गीत का जो कला है वो जन जन तक पहुंचाए, इससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक खुला मंच है, सभी अपना बात को रख सकते हैं। और सर ने जैसे बताया, बहुत कठिन परिस्थिति, जब परिस्थिति आता है तो स्वस्थिति को भी मजबूत रखना होगा, क्योंकि परिस्थिति का काम तो आएगा ही, सबका पास परिस्थिति आता है, परिस्थिति किसी का पास नहीं है। परिस्थिति आएगा तो आपका परीक्षा होगा, कितना आप स्थित रहते हैं, स्वस्थिति में कितना स्थित रह पाते हैं, क्योंकि परिस्थिति को हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति हमारा हाथ में। हम वो परिस्थिति को, जैसे रास्ता में कोई पहाड़ गिर गया तो हमें पहाड़ को तो तोड़ नहीं पाएंगे, पहाड़ को साइड होकर हम निकलना है, नहीं तो समय हमारा बर्बाद होता है। तो इस तरह परिस्थिति देखे, रामचंद्र का टाइम में जैसे आपने गीत का माध्यम से बोला, भाई हमें इतना राम चाहिए, तो राम के पास भी परीक्षा आया था, है कि नहीं, उनका सीता को चोरी कर रावण ले गया था, वो भी कहानी आपको है, उनका भी कितना परिस्थिति आया, जंगल में रहना पड़ा। परिस्थिति तो सबके लिए आता है, लेकिन हमें अपना स्थिति से, जैसे रामचंद्र अपना स्थिति बना के रखा, भले ये तो आया लेकिन वो तो जाएगा, कभी रहेगा नहीं, वो फिर सीता आपस आया कि नहीं, तो इसलिए बुद्धिमान कहते, इसलिए देवता कहते, भगवान कहते, इसलिए हमारा पास भी परिस्थिति आएगा, आता है कि नहीं, परिस्थिति सभी के पास परिस्थिति आता है कि नहीं, परिस्थिति आएगा, कि परिस्थिति आएगा तो आपको मजबूत कराएगा, ये ठीक है कि नहीं, इसलिए परिस्थिति को आने दो और हम अपना स्थिति में उसको पार करेंगे। पढ़ाई कर रहे तो परीक्षा आएगा कि नहीं, परीक्षा को डरेंगे नहीं, डरते बच्चे डरते परीक्षा जब समय आता डरते हैं नहीं, डरते तब तो उत्तीर्ण होगा आगे क्लास को, परीक्षा नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे तो अगला क्लास को जाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो हम परीक्षा को निमंत्रण करना चाहिए, आइए हम रेडी है मुकाबला करने के लिए, ऐसे साहस होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, इसलिए परिस्थिति अपना काम करे और हम अपना स्वस्थिति से मुकाबला करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनकर एक कार्यक्रम, मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, ये था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनार का सभी का आवाज, खासकर हमारा आज स्टाफ भी इस कार्यक्रम को बच्चों का साथ मिलकर एक आवाज का गुलदस्ता बन गया। सर का आवाज, प्रीतम सर को धन्यवाद देते हैं और मैम को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: नमस्ते, कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हमारा बच्ची उपस्थित है और स्कूल के नाम रोशन करने के लिए भले बहुत सारा बच्चे लेकिन एक बच्ची काफी होता है। जैसे रात को बहुत सारा तारे होते हैं लेकिन एक चांद पूरा रोशन कर देती है कि नहीं। हजारे तारे रहते हैं लेकिन फिर भी एक चांद होते हैं। जैसे हर स्कूल में इतने बच्चे होते हैं लेकिन एक दो बच्चे पूरा चांद का जैसे काम करते हैं, तो आज चांदनी का रात में जैसे चांद अपना प्रभाव विस्तार करते हैं, आज इस स्कूल के होबनहार बच्चे जो सिलेक्टेड बच्चे उनको पुनः स्वागत करते हैं। तो नाम फिर से बताइए।
1: मेरा नाम आफरीन, मैं कक्षा 11 से चनार से।
0: सुनाओ गीत।
1: ओ देश मेरे तेरी शान पे।

0: परिंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और ऐसे बच्चे को जब मंच मिलता है तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, उनको एक मौका का आवश्यकता था। उनका जो हुनर है, जो टैलेंट है, इस तरह जब कंपटीशन हो, चाहे इंटर स्कूल कंपटीशन हो, चाहे कोई भी प्रतिभा को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह सहयोग मिलता है जिसका चलते वो आगे बढ़ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सर, इसका बारे में क्या कहना चाहिए, इसके गीत के बारे में थोड़ा दो शब्द बताएंगे।
2: आफरीन हमारे विद्यालय की विद्यार्थी जो क्लास 11th में है
1: जी,
2: जिसने जो ये देशभक्ति गीत सुनाया है, वास्तव में कहते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति प्रेम है ना, क्या होता है वो अपनी या तो आवाज से पता चलता है, या ऐसा नहीं है कि देश पे डटा हुआ जवान ही देश की रक्षा करता है। देश की रक्षा करने के लिए हम सभी देश की रक्षा करते हैं। अगर मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, अगर मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, आपका काम, आप विद्यार्थी हो, अगर विद्यार्थी अपना काम, इनका काम जो है, इनका काम क्या है विद्यार्थी का, विद्या का
1: अध्ययन
2: अर्जन करना, विद्या का अर्जन करना, इसका मतलब इनको पढ़ना है, इनको इनका जो काम है वो पूर्ण रूप से कर लें। जो मेरा काम है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर लूं, तो अपना देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, उन्नति कर जाएगा। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति जैसे किसान है, किसान अपना कार्य ईमानदारी से करता है, ईमानदारी से करता है, फसल पैदा करता है और वो फसल पूरे देश के लिए काम आती है ना। और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो चपरासी हो या कलेक्टर, जिसका जो कार्य है वो अपना कार्य अगर ईमानदारी से कर ले, है ना, कहीं हमें ना तो देश बॉर्डर पे जाने की जरूरत है ना। ये नहीं कि बॉर्डर पे जाकर ही हम देश की सेवा करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी देश की सेवा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सही बात, स्पष्ट रूप में बताया भाई, हम सभी एक एक सैनिक है देश बॉर्डर में, तो सैनिक हमारा भाई रहते हैं, लेकिन हम जो अंदर रहते हैं उनको सपोर्टिंग करते हैं, उनको जो चाहिए हम देते हैं, जैसे किसान सब कुछ देते हैं, शिक्षक एक अच्छा सैनिक बनाकर देते हैं, और शिक्षक को सरकार भी इतना सहयोग देते हैं, चाहे संसाधन भी मिलता है जिसका चलते वो आराम से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और बच्चे भी आराम से बढ़कर पढ़ते हैं क्योंकि संसाधन चाहिए, क्योंकि इसका चलते हमारा देश नाम रोशन करेगा और भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हम सब ईमानदार से अटेंशन होकर हर कार्य को श्रेष्ठता रूप में देंगे, तो जरूर कामयाब होंगे, और हम सब कामयाब होंगे ही, जरूर हुए थे और होंगे, कोई नया चीज नहीं है, हम भूल चुके हैं लेकिन हम थे, अभी है और आगे भी होंगे, हम ही देश को आगे बढ़ाया था और आज हम ही आगे बढ़ाएंगे देश को। पहले हम खुद बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा ईमानदार से, है ना सर। तो ईमानदार एक अच्छा वैल्यू है, सर्वश्रेष्ठ गुण है, ऐसे सभी बच्चों के पास विशेष गुण है, सब विशेष है, कोई किसका पास अवगुण नहीं है, अवगुण रहते भी एक विशेषता है जिसका चलते परमात्मा भगवान प्रभु आपको सिलेक्शन किया है मनुष्य जीवन में, भले हमें पता नहीं चलता लेकिन हमारे पास इतना विशेषता है, जो विशेषता कहीं ना कहीं काम में आता है, इसलिए कभी खुद को छोटा नहीं सोचना है, मैं बाहर बाहर में ऐसे सोचना है, मेरे जैसे कोई संसार में नहीं, इतना लोग है, कितना करोड़ लोग है, आपका जैसे शकल, आपका जैसे आवाज, आपका जैसे विचार जोड़ा बच्चा भी होगा तब नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे होगा, हाँ कि नहीं सर।
3: बिल्कुल,
1: इसलिए खुद को महान सोच के ईमानदार से काम करेंगे तो हम महान आत्मा बन सकते, महान आत्मा बन सकते कि नहीं, महान आत्मा क्या, देवात्मा भी बन सकते हैं, दिव्य गुण रहेगा तो देवता बनते हैं, हर्षित मुक्तता, नम्रता, नियमितता, कौन कौन बच्चे नियमितता, नियमित स्कूल को आते हैं, विद्यालय में नियमित जो भी स्कूल खोलता है नियमित कौन आता है, रेगुलर, हाथ उठा देखी सर, हमारा देख रहे, मैम भी देख रहे, रेगुलर। विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण, विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता, क्या बोला,
4: नियमितता,
1: रेगुलरिटी, पूरा कभी भी छुट्टी नहीं, ऐसे होना चाहिए, जब नियमित आएंगे तो हमारा जो अध्यापक आपको अच्छे से ज्ञान सुनाएंगे, है ना सर। तो नियमित आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए,
2: ये तो है ही है,
1: आते ही
2: बिल्कुल, पहला ही है विद्यार्थी का पहला लक्षण ही है कि हमको रेगुलर आना है, विद्या अर्जित करने के लिए तो हमें रेगुलर रहना ही पड़ेगा,
1: अनुशासन में रहना है, तो इसका बाद रेगुलरिटी, हर रोज हम जब भी स्कूल खोलता है आना चाहिए, इसके बाद सभी गुण आ जाएगा, नम्रता आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, मधुरता आ जाएगा, सब आ जाएगा।
2: फिर भी सर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना,
1: जी सर,
2: बहुत दूर से आते हैं, ये एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर से आते हैं, और इनको टाइम दे रखा है हमने 7:15 बजे, 7:20 तक ये लगभग लगभग 95% और अब तो 100% उपस्थिति हो जाती है 7:20 पे, 7:25 पे।
1: ये तो अनुशासन है,
2: ये है सबसे पहला अनुशासन इनका, यही है
1: समय से पहले आना।
2: आज इनकी उपस्थिति 7:20 पर, 7:30 का टाइम है, लेकिन हमने इनको टाइम दे रखा है 7:15 बजे का, और 7:25 तक सभी बच्चे विद्यार्थी उपस्थित हो जाते हैं। देख लो,
1: देखो
2: कितनी परिस्थितियों से गुजर के आते हैं, इन्हीं को पता है
1: जी, जी।
2: कि हमको पता है इनकी परिस्थिति,
1: हम भी पढ़ते तो हमको भी पता है, हम भी तो ऐसे परिस्थिति में पढ़ते हैं तब जाकर आगे बढ़े, परिस्थिति आएगा इतना, हम तो 7-8 किलोमीटर जाते सर,
2: बिल्कुल
1: पढ़ाई हमारा समय में इतना नजदीक स्कूल नहीं था, और ग्राम पंचायत भी तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज, हमारा कॉलेज हमारा गांव में नहीं रहता था उड़ीसा में सर, 9th क्लास से बस 7th क्लास पढ़ने के लिए हमें 5 किलोमीटर, मैट्रिक 10th क्लास तक हम 5 किलोमीटर, फिर कॉलेज 12वीं क्लास करने के लिए हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता पैदल हो चाहे साइकिल, अभी तो मोटरसाइकिल उस समय नहीं था। और आप तो भाग्यवान है सभी, हमसे भी आप नजदीक है, एक ग्राम पंचायत का अंडर में रहते हैं, तो तब भी अभी का समय में आपको मुश्किल लग रहा है समय को, उस समय हमको मुश्किल लग रहा था, अभी आपको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो आएगा ही, लेकिन उसमें हमें पास होना है, पास होना है कि नहीं, पास होना है और पास रहना है, किसका पास, ऊपर वाला का पास, परमात्मा का पास, बुद्धि रहेगा ना तुम्हारा चार्जिंग होगा बैटरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति, वो भी हमारा सर ही कर देंगे लास्ट।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति अंतिम प्रस्तुति होगी और ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का जो मिलित सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है और सब सुन पा रहे सभी का आवाज को अंतिम की और हम चल रहे हैं और हमारा सर इस कार्यक्रम को सजाएंगे वंस मोर लास्ट सर स्वागत।
1: धन्यवाद सर आपका। हमारे जो एक आप पढ़ते आ रहे हो सर सिक्स क्लास से ट्वेल्थ तक सभी में पढ़ते हो या कबीर कबीर पढ़ते हो ना, कबीर का अर्थ क्या है पता है? कबीर कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, सिर्फ हमने उसको नाम दे दिया गया। कबीर क्या है? का से करुणा, बा से बीज और रा से रम रहा। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा का बीज रम रहा है वो व्यक्ति कबीर है, वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति कबीर है। करुणा करुणा से ही हमें हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करें है ना, प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वो कैसा भी है ना, तो हमारे अंदर उसके प्रति करुणा है तो हम कबीर हैं। तो कबीर साहब का एक भजन है उससे इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर। कबीर

0: हम पंछी परदेश मुसाफिर आए हैं यहाँ सैलानी। हम पंछी परदेश मुसाफिर। बोलो सतगुरुदेव की जय।
1: तो कितना सुंदर और भाव का साथ, दिल का साथ गाए सर ने और सभी को मन मुग्ध कर दिए। और पंछी आई और कभी भी जा सकती है। तो हम सब मेहमान है संसार में, आत्मा पंछी कभी भी उड़ सकती है और आई तो जाएगी। तो आज के लिए सबको धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। और मैंने सोचा नहीं था सर इतना सुंदर रूप में गीत गाते हैं और भाव और भावना का साथ सभी बच्चों को आत्मा साथ करा दिए, मन मुग्ध करा दिए। और वाणी में जो मधुरता वो विशेषता आज देखने को मिला कि कबीर का जो वाणी, कबीर वाणी जो कहते हैं, वो वाणी में मधुरता सही में और गीत में भी मधुरता। और हमारा बच्चे भी मीठे बच्चे है, हमारा सभी बच्चे मीठे है, किंतु गीत मीठे सुने और मीठे गीत गाए तो मीठा वाणी में सभी मन मुग्ध हो गए। तो मैम को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टाफ को, और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सभी ने सजाया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सर भी अपना आवाज को रोक नहीं पाए, वांच मोर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी। और
2: धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत आप विद्यालय में आए,
1: मौका मिला तो सर मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल गया जैसे, तो चौका छक्का लगा दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गाए, हाँ कि नहीं बच्चा अच्छे गए। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे सर, नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: अरे थारी कंचन सीका यारों भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें आरसी संदीप का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह हाजिर हूं प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के, और आप सब तो जानती हैं इस कार्यक्रम में हम लोग ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने कुछ अनोखा करके दिखाया है या जिनके अंदर कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें हैं जो शायद औरों से हट करके हों, और सही मायने में जिन्होंने अपने मन की आंखों से कुछ कर दिखाया हो। तो ऐसे ही एक मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर महाराष्ट्र से, भारती जी। भारती जी, रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्ते सर।
0: तो भारती जी, हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताइए कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपको कौन सी परेशानी है?
1: जी सर, मैं नागपुर से हूँ और मैं अभी LLM क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट हूँ दीक्षा भूमि अम्बेडकर लॉ कॉलेज से। और पहले मैं देख सकती थी, लेकिन 10वीं के बाद मुझे ये तकलीफ शुरू हुई और मुझे डॉक्टरों से पता चला कि मुझे रेटिना प्रॉब्लम है और धीरे धीरे मेरे आंखों के पर्दे पतले हो रहे हैं और जलते हुए आ रहे हैं, और फर्स्ट ईयर से मेरा पढ़ना असंभव हो गया तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा सर। 8 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी और मेरी लाइफ 8 साल हॉस्पिटलाइज रही, 2.3 पॉइंट ब्लड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन, यही मेरी जिंदगी रही। डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने गुरु अकील अहमद सर के संगीत का सहारा लिया। गुरु अकील अहमद सर संगीत के टीचर है जो क्लासिकल संगीत पढ़ाते हैं। और फिर मैंने जब इस कॉलेज में क्लास में एडमिशन किया तब मुझे पता चला कि दिव्यांग भी पढ़ते हैं, ब्रेल के माध्यम से पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग कर सुनकर पढ़ते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं भी पढ़ सकती हूँ, जब दिव्यांग पढ़ सकते हैं तो मैं भी पढ़ सकती हूँ। और फिर मैंने 1 महीने में अपनी ब्रेल कंप्लीट की और फिर बाद में फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया 8 साल की गैप के बाद। और अब फिर मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ किया सर, और अभी मैं LLM सेकेंड ईयर की विद्यार्थिनी हूँ क्रिमिनल लॉ में।
0: बहुत खूब। तो अभी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है भारती जी?
1: जी सर, अभी मुझे सिर्फ 20% दिखाई देता है।
0: अच्छा, तो धीरे धीरे आपको ऐसा भी लग रहा है कि दिखना कम हो रहा है आपको?
1: धीरे धीरे करके मेरी आंखों की रोशनी पूरी चले जाएगी, डॉक्टरों का कहना है। मेरी दादी की आई डोनेट करने वाले थे 2010 में, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि अगर आई डोनेट भी की जाए तो मेरे अंदर की बीमारी वो नई आंखों को भी खराब कर देगी, इसलिए आई डोनेट करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा उनका कहना था सर।
0: तो भारती जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
1: जी, मेरे पापा सुरेश महादेव यादव जो मेहो हॉस्पिटल PWD में क्लर्क थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। मम्मा हाउसवाइफ है मेरी, और हम 3 भाई और 3 बहन है सर।
0: अच्छा, 6 भाई बहन है। तो आप सबसे छोटे हैं, बड़े हैं या बीच में हैं?
1: जी सर, मैं दूसरे नंबर की हूँ।
0: अच्छा, आप सेकंड नंबर पे। तो 8 साल डिप्रेशन में जब आप रही भारती जी, तो क्या किया उस दौरान आपने? मतलब
1: सर, उस दौरान तो सिर्फ सोच थी मेरे दिमाग में कि आंखें जाने के बाद मैं करूंगी क्या, और मैं फ्यूचर में बोला जाए तो दूसरों पे डिपेंड रहूंगी, ना मैं कमा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो लाइफ बोला जाए तो उसे डिप्रेशन के कारण 2 पॉइंट ब्लड होना, 3 पॉइंट ब्लड होना, अनेमिया, जिसके कारण मैंने अपने 8 साल ऐसे ही गवा दिए।
0: उस दौरान कुछ सीखने का भी काम कर पाए या बिल्कुल एकदम खाली हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ करने का मन ही नहीं किया आपका?
1: नहीं सर, वो 8 सालों में तो पहले तो कोई गाइडेंस करने वाला मिला ही ना था। डैडी का कहना था कि मैं आज रिटायर हूँ लेकिन मैं अपनी बेटी को पाल सकता हूँ, रास्ते पे अगर जाएगी कम ज्यादा हो गया तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब गुरु अकील अहमद सर को मेरे फैमिली डॉक्टर से पता चला कि सिर्फ किताबें दे दी जाए तो वो फिर से जीने की उम्मीद जाग उठेगी, और फिर सर ने मुझे ब्रेल में एडमिशन कराया। फिर मैंने 1 महीने में ब्रेल कंप्लीट की और फिर उसके बाद मैंने LED कॉलेज में फिर से एडमिशन कराया BA में।
0: तो आपने ब्रेल लिपि कौन से इंस्टीट्यूट से सीखी?
1: जी, आत्मदीपम सोसाइटी जो अंबाझरी में है सर, वहां से सीखी।
0: नागपुर में ही है आपके?
1: जी हाँ।
0: तो अब आप ब्रेल अच्छे से जानते हैं, ब्रेल लिपि?
1: जी हाँ सर।
0: अच्छा, तो अब जो आप LLM की पढ़ाई कर रहे हैं अभी इन दिनों में, वो कैसे कर रहे हैं?
1: सर, वो LLM की पढ़ाई में इंस्टा रीडर है हमारे पास, जो ऐप है मोबाइल में, उसमें बुक की फोटो क्लिक कर लो तो वो रीडर पढ़ता है, और सर अभी क्या बोलते हैं, हम जो मोबाइल में नेट पैक होता है जिसमें यूट्यूब में बहुत सारे लॉ के वीडियोज आते हैं, जीके नॉलेज आते हैं, अगर हम उस नेट पैक का सही में अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, FB इंस्टा रीडर में वक्त बिताने से बेटर अगर हम इस तरफ वीडियो पे फोकस किया जाए, तो सर LLB की पढ़ाई हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने तो अपना ज्यादातर समय अपने मोबाइल में यूट्यूब के वीडियो, जनरल नॉलेज, इन्हीं रिसेंटली केसेस, इसी में बिताया। और सबसे बड़ा सहयोग मेरे कॉलेज के टीचर्स का रहा, जैसे मेरे प्रोफेसर शाजिया मैम, डॉक्टर हिमा विनोन मैम, वर्षा देशपांडे मैम, प्रतिमा लोखंडे मैम, और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मेहरे मैम और बहादुर सर। और ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे प्रिंसिपल मैम इतने सपोर्ट करते हैं हमें कि उन्होंने चेन्नई फाउंडेशन जो अभी गोवा की है सर, और ये हमें 10,000 की स्कॉलरशिप ब्लाइंड स्टूडेंट को देती ही है, साथ ही साथ जो अभी क्या बोलते हैं लैपटॉप के जो जितने भी क्या बोलते कोर्स है, अभी MSCIT हो गया, टैली हो गया, ये सारे कोर्स करने के लिए हमारे कॉलेज की मैम ने एक बड़ा सा रूम दिया हुआ है जिसमें चेन्नई फाउंडेशन की जो सर है वो हमें प्री MSCIT की क्लासेस कराते हैं, ताकि हम उनका मोटिव हमें स्कॉलरशिप देना ही ना हो, हमें टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी हासिल कराना है ताकि हम एक पर्टिकुलर जॉब हासिल कर सके।
0: तो अब आप फोन वगैरह भी चला लेती हैं अच्छे से?
1: जी हाँ, मैं टॉकबैक सिस्टम से फोन अच्छे से चला लेती हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि जिस तरह से आपने वापस एक तरह से अपने आप को खड़ा किया, तो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं, क्योंकि 8 साल डिप्रेशन में रहना कम बात नहीं है। ये बताइए भारती जी कि लॉ फील्ड में जाने का सपना कब देखा आपने?
1: सर ये सपना तो मैंने बचपन से ही देखा था, छोटी सी थी तो अदालत सीरियल देखती थी जिसमें वकीलों को देखती थी कि क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कैसे, तो मेरी इच्छा थी कि मैं लॉयर बनूं। लेकिन ये सपने जब 10वीं के बाद टूटते हुए नजर आए कि मैं पढ़ नहीं सकती अब, तो फिर मैंने वहाँ जब ब्रेल सीखने गई आत्मदीपम सोसाइटी में, वहाँ नंदिता त्रिपाठी मैम को देखा, और वो असिस्टेंट गवर्नमेंट लॉयर है और वो भी टोटली ब्लाइंड है, लेकिन टोटली ब्लाइंड होने के बावजूद भी आज मैंने जब उनको देखा तो मेरे सपने फिर जाग उठे कि भारतीय जब मैम भी टोटली ब्लाइंड है, उन्होंने तो दुनिया नहीं देखी, अंधेरे की सीमा नहीं देखा, लेकिन तो भी आज एक वो लॉयर है और क्रिमिनल मैटर में वो केस लेते हैं, तो मेरे लिए वो सपने फिर से जाग उठे। और दूसरी बात, फिर मैंने डॉक्टर शिप्रा सरकार मैम को जब मैं बीए में LED में थी उनको देखा, उन्होंने मुझे हर बार एक ही चीज बोली कि भारती इंसान बोला जाए तो सब कुछ कर सकता है, हमने तो दुनिया नहीं देखी, इंसान कैसे दिखते हैं हमने ये नहीं देखा, लेकिन तो भी आज हम आगे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों फिर आंखों के लिए रो रही हूँ, जिन्होंने दुनिया आज तक नहीं देखी, रंग कैसे होते हैं, इंसान कैसे होते हैं, वो जब दुनिया से इतने खुश है और अपनी जिंदगी में वो कामयाबी पे है, तो मैं इन सब के लिए रोते हुए अपना क्यों समय बर्बाद करूं। और मैंने फोकस अपने LLB के तरफ किया, और तब तक तो मैं BA में एडमिशन कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ करूं, और फिर LLM में मैंने एडमिशन किया, और आज मैं LLM लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूं सर।
0: वेरी नाइस। तो ये शिप्रा मैम भी ब्लाइंड है?
1: जी शिप्रा सरकार मैम भी ब्लाइंड है। और सर साइड बाय साइड मेरे साथ बोला जाए तो बहुत सारी संस्थाएं थी, जैसे गायत्री वात्सल्य मैम जो ऑटिस्टिक बच्चे और जो बोला जाए तो जो बातें ठीक से नहीं कर सकते वो बच्चों की संस्था चलाती है, SVK शिक्षा संस्था, जिसमें मैंने ये देखा कि वो बच्चे ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी अभी उन्होंने झनकार ब्रांड लॉन्च किया है, और जिसमें अनूप ताइड़े सर इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और सारा खर्चा वो मैम उठाती है उन 17 बच्चों का, कि यानी कि टीचर हायर करना, फिर और उनसे कोई पैसे नहीं लेती, उनका मोटिव यही होता है कि वो बच्चे कुछ बन सके। और फिर बाद में विलासिता मैम की एक संस्था है सर, जो कैंसर सर्वाइवर बच्चे और गरीब बच्चों के लिए कार्य करती है, और इतने ऑनेस्ट है कि वो स्पॉन्सरशिप नहीं लेते। और आत्मदीपम जो ये आशादीप सोसाइटी है, उसमें से मेरी 40 कविता प्रकाशित हुई वेद सोच करके, जिसमें मेरी 40 कविता है सर, और वो साइड बाय साइड क्या बोलते हैं हमें रिकॉर्डिंग भी BA तक तो देते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग का भी वो संस्था कार्य करती है, और जिन्हें राइटर लगे तो वो राइटर भी देती है सर। और अभी दिल्ली में एक उपाध्याय सर की संस्था है प्रोग्रेसिव फेडरेशन करके, बालचंद्र उपाध्याय, ये संस्था का मोटिव हमें राजनीति में भी हमें आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ऐसी बात है जब हमें चुनाव का अधिकार है तो हमें खड़े होने का भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो दिमाग के बल पर चलती है ना सर, और जब राजनीति दिमाग के बल पर चलती है तो आप एक ब्लाइंड के दिमाग को ये उसके आंखों आंखें न होने पर आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो राजनीति के लायक नहीं है। तो अभी हमारे उपाध्याय सर का मोटिव यही है कि हमें राजनीति में भी दिया जाए कि राजनीति में भी हमें जगह चाहिए, हमें सिर्फ चुनाव का अधिकारी नहीं, हमें आरक्षण मिला है नौकरी में, और लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमें सब जब इक्वल समझा जा रहा है तो राजनीति के दौर पे हमें क्यों नहीं इक्वल समझा जा रहा है। और इसीलिए अभी उनकी अयोध्या में 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक उन्होंने कार्यक्रम रखा है। साइड बाय साइड यही मोटिव होता है कि तीर्थ धाम के दर्शन भी हो सके और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो सके। और अभी मुझे ऑडियंस के डिमांड पे कविता बनानी है सर।
0: जी भारती जी, बहुत खूब। तो भारती जी, आपकी बातों से ये भी समझ में आ रहा है कि आपने अपने अंदर कविताएं लिखने का जो शौक है वो भी पैदा कर लिया है। तो ये कब सोचा कविताएं लिखने का?
1: सर, पहली बात तो मैं कोई पोइटिस्ट ही नहीं, बीए से अचानक पता चला कि मुझ में जो गुण है, और मेरे दोस्तों ने कि भारती वहां कविता चल बोल रहे हैं लोग, तो मैं सोचा मैं ऐसी मजाक में गई माइक में कि मैं भी कविता बोलूंगी करके, और पता चला मैंने अपनी पहली कविता बनाई गुण स्वभाव और संस्कार पे, जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। और सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे दोस्तों का रहा सर। मेरी एक दोस्त है शुभांगी बावने, उसकी हर बातें नहीं पता कविताएं बन जाती, और हर दोस्त होते हैं जो खुशियां बांटते हैं, लेकिन मेरे दोस्त का स्वभाव बोला तो पानी पूरी जैसा था, कभी कड़वा कभी तीखा, और हर गुणों में एक मैंने कविता देखी। ऐसी बात नहीं कि दोस्त लड़ते झगड़ते तो सारे दोस्त हैं,

0: लेकिन ये दोस्त वो थी जो फिक्र के साथ मुझे एक कविता की सौगात देते गई, और शीघ्र कवि बनने का श्रेय मेरा उसी पे जाएगा। हालांकि मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, स्वप्नाली है, प्रीति है, कल्याणी है, उन्नति है, निर्मिषा है, जो LLB में मेरी मदद करते हैं, लेकिन शीघ्र कवि का श्रेय बोला जाए तो शुभांगी बावने पर ही जाता है। और मेरे जो अंकल थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, विजय अंकल, वो हर बार मुझे कहते थे कि भारती जिस मंच पर खड़े हो जाओ वो मंच समझना अपना है, और अपना कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होने देना। और इसी बातों ने आज मुझे हर मंच से विजेता बनाकर लाया। मैं कभी हार कर वापस नहीं आई। तो मुझे साइड बाय साइड बोला जाए तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलता गया और मैं आगे बढ़ते गई। सर,
1: वो जो पहली कविता है उसकी दो लाइनें सुना सकते हैं आप हमारे श्रोताओं को?
0: घमंड किया इंसान ने, घमंड किया इंसान ने रूप रंग धन दौलत पे, ना किया घमंड गुण स्वभाव संस्कार पे। नादा इंसान भूल गया रूप रंग धन दौलत मट्टी बन गई, गुण स्वभाव और संस्कार की वो कीमती दौलत ले गया।
1: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब भारती जी। और आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिला, आपने बताया भी, और आपने खुद ने भी अपने अंदर हिम्मत पैदा की, जो कि सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। श्रोताओं, आज सुन रहे हैं मन की आंखों से कार्यक्रम में आप भारती जी को, जो कि नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं और जो देख नहीं पाती हैं। तो भारती जी, अब भविष्य में क्या करना चाह रही हैं?
0: सर, पहली बात तो साइड बाय साइड मेरी कविता है, सारे मेरे दिव्यांग दोस्तों के लिए रहेगी, कि उसमें जो भी मेरा इनकम होगा, जो भी वो कविता है कल चल के कौन से भी लेवल में जाए, लेकिन ये कविताओं का सारा श्रेय जब मेरे दोस्तों पर जाता है तो मैं सारी कविताएं अपने दिव्यांग दोस्तों के काम आ सके, मैं यही मोटिव के साथ आगे चलूंगी। और हाँ, मैंने LLB इसलिए किया सर क्योंकि आजकल कई ऐसे मैटर है जिसमें क्या बोलते हैं फ्रॉड हो जाते हैं, ब्लाइंड के साथ तो ज्यादातर होते हैं, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दिव्यांगों के साथ गलत हो जाता है, लेकिन उनको न्याय मिल, जस्टिस मिल ही नहीं पाता सर, क्योंकि एक तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है और दूसरी तरफ कि वो अच्छा वकील हायर नहीं कर सकते। तो मेरा मोटिव तो ये रहेगा कि अगर मैं प्री लीगल एड बन सकी तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती होगी कि मैंने न्याय के लिए लड़ा।
1: इसके अलावा जॉब वगैरह के बारे में क्या सोचा है?
0: सर, साइड बाय साइड यही कि मैं लॉयर बनकर एक अच्छा वकील बनूं और साइड बाय साइड अपनी कविताओं में नया रंग भरती रहूं।
1: तो भारती, जब ये आंखों की प्रॉब्लम हुई तो फैमिली का क्या कहना था उस समय?
0: सर, फैमिली में तो बोला जाए तो मुझे सपोर्ट ही किया, बोला जाए तो मेरे भाई ने सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। वो एक ही चीज बोलता था, भारती अगर आप घर के अंदर से बाहर नहीं निकलोगे तो ब्लाइंड लोग बाहर निकलते हैं तो उनको एक हैबिट हो जाती है मोबिलिटी की, अंदर से जब डर नहीं निकलेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो भाई की वो शब्दों की प्रेरणा, और साइड बाय साइड डैडी को डर था मेरे लिए कि रास्ते पे कम ज्यादा हो जाए, तो ये हर माता पिता को ये डर होता है सर। साइड बाय साइड फिर मैं जब पढ़ने लगी और मेरे जब अच्छे परसेंट आने लगे मैं, तो मेरे फैमिली भी बहुत खुश हुई कि मैंने आज यानी कि धीरे धीरे करके प्रोग्रेस किया अपने लाइफ में।
1: अब आज आपकी प्रोग्रेस को देख करके अब क्या फैमिली अब क्या कहती है?
0: हाँ, फैमिली को प्राउड होता है मुझ पे कि आज आके नहीं रहने पर भी मैं आज LLM कर रही हूँ, साइड बाय साइड कविताएं भी लिखती हूँ।
1: तो और इसके अलावा क्या क्या करती हैं? कविताएं और पढ़ाई के अलावा भारती क्या क्या करती है?
0: जी, पढ़ाई जी। और इसके अलावा बोला जाए तो सर, मैं अखिल अहमद सर के क्लास में संगीत के स्टूडेंट को सुनकर, उनके गीतों की मधुर आवाज को सुनकर ऑन द स्पॉट कविता बनाती हूँ, और अखिल सर से मैंने यही सीखा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि संगीत वो प्लेटफॉर्म है जो इंसान के दिमाग को खुश रहना सिखाता है, लेकिन आज संगीत बोला जाए तो BA से ही है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि पहली से 10वीं तक क्यों नहीं है। एग्जाम्पल तो मैं हूँ, जब मुझ जैसा इंसान आज डिप्रेशन से निकल गया तो जरूरी थोड़ी ना है दिव्यांग डिप्रेशन में जाते हैं, आंख वाले भी तो जाते हैं ना सर। और आज जब मैंने BA में स्टूडेंट की जो सिचुएशन देखी कि BA में उस लेवल से कुछ नहीं आता, अच्छा करते हैं तो वही लोग करते हैं जिन्होंने प्राइवेट क्लासेस लगाई है, लेकिन सर हर कोई क्लासेस नहीं लगा सकता ना प्राइवेट, इसीलिए अगर पहली से लेकर 10वीं तक अगर स्कूल में ही ये चीजें दी जाए तो आज जो BA में जो स्टूडेंट की सिचुएशन है तो सिर्फ प्राइवेट क्लास लगाए वाले बच्चे ही नहीं, जिनको पहली से लेकर 10वीं तक भी म्यूजिक का नॉलेज दिया गया है बेसिक, तो वो लोग भी तो अच्छे करेंगे ना सर। आज गोल्ड मेडलिस्ट बोला जाए तो MMA वही लोग हैं जिनको पहले से बचपन से ही प्राइवेट क्लासेस में वो शिक्षा दी गई, लेकिन आप भी जानते हो कि आज गरीब घर का बच्चा या तो उसकी मम्मी डैडी उसकी फीस भर पाएंगे या तो क्लासेस का खर्चा दे पाएंगे, तो सर ये चीज बोला जाए तो संगीत आज वंचित है लोगों से, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर पहली से लेकर दसवीं तक दिया जाए तो सब अच्छा करेंगे। और जहां तक मैंने मेरे ब्लाइंड दोस्तों को देखा तो ये ज्यादातर ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम करते हैं सर, गाना गाते हैं, तो इन्हें ये चीज बेसिक नहीं मिला लेकिन तो भी ये आज इतना अच्छा गाते हैं। तो आप ही सोचिए अगर ये इन्हें पहली से लेके दसवीं से ही मिले तो ये कितना अच्छा गाएंगे। इनकी आवाज क्या इंडियन आइडल में जाने लायक ये है अगर वो चीज उन्हें बचपन से दी जाए तो?
1: सही है, बिल्कुल सही है। संगीत में आप क्या, आप भी, आपकी भी रुचि है संगीत में?
0: जी हाँ, मैंने प्रवेशिका पूर्ण तक की एग्जाम दी है सर।
1: गायन में?
0: जी हाँ, लेकिन मैं उतना बेस्ट नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ अपने दिमाग को सही जगह पर लाने के लिए, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए संगीत ने मुझे खुश रहना सिखाया। बोला जाए तो संगीत के गुरु अकील अहमद सर मेरे दूसरे जीवन दाता है।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अकील अहमद सर भी ब्लाइंड है?
0: नहीं सर, अखिल अहमद सर देख सकते हैं, और ज्यादातर तो अगर अखिल अहमद सर ब्लाइंड हो गए तो मुझे राह कौन दिखाएगा?
1: नहीं क्यों, वैसे तो ब्लाइंड लोगों ने भी तो राह दिखाई है आपको
0: सर, ऑब्वियसली। लेकिन सबसे पहली बात सर, मेरे दोस्त बोला जाए तो मैं बहुत लेट मिली उनसे, लेकिन जब मैं पहली बार मिली तो मैं गुरु अखिल अहमद सर से मिली, क्योंकि मैं जानती नहीं थी कोई ब्लाइंड संस्थाओं को, क्योंकि अब तक बचपन से लेके अभी तक साइटेड के बीच में रही तो ये सब नहीं पता था कि ब्लाइंड स्कूल बच्चे कैसे होते हैं। और मेरे दोस्त बोला जाए तो आज हीरे है सर, भले ही उनके पास आंखें नहीं है लेकिन उनकी मन की ज्योति इतनी प्यारी है कि उनके गुण और स्वभाव और संस्कार के कारण आज मैं उन पर खींची जाती हूँ, जो बहुत बड़ी बात है। कि बोलते ना कि आंखों से देखा जाए इंसान धोखा खाता है, मन से पढ़ा जाए आईना साफ नजर आता है। तो शायद भगवान ने मुझे दिव्यांग इसीलिए बनाना था ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ मिल पाऊँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा भारती जी। तो अभी आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कविताओं का, और शीघ्र कवि एक शब्द जो आपके लिए कहा जाता है,
0: तो सर आप मुझे कोई भी शब्द वहां से दे दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके दिए हुए शब्दों को मैं कविताओं में ढाल पाऊं।
1: ये भी एक आपका हुनर है, गुण है ये आपका बहुत बड़ा।
0: जी हाँ।
1: आपने रेडियो सुना है, रेडियो के बारे में जानते हैं आप?
0: जी हाँ सर।
1: क्या जानते हैं
0: सर? रेडियो के बारे में संगीत और न्यूज मिलते हैं हमें, वहां से सारी खबरें मिलती है, दूसरों के विचार हम सबको दूर भी रहकर यहाँ तक हम सुन पाते हैं। और जहाँ तक है आपके कार्यक्रम का नाम है मन की आंखों से, तो आज बोला जाए तो मैं दूर भी हूँ लेकिन मन की आंखों से आज सभी कोई मेरी आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो शब्द देता हूँ मैं आपको।
0: जी
1: बताइए।
0: जी ठीक है, आज इसे दूरदर्शन ही बोलूंगी ना सर मैं हिंदी में?
1: नहीं नहीं, दूरदर्शन अलग चीज है, वो टीवी का एक रूपांतरित रूप है।
0: तो रेडियो बोल सकती हूँ ना मैं ऐसे हिंदी में?
1: हाँ रेडियो बिल्कुल बोल सकते हैं।
0: आज रेडियो के माध्यम से देखो आप सबके समक्ष में आ गई, अपनी गहरी शब्दों की सोच लेकर मैं आपके समक्ष में आ गई। आवाज मेरी सुनकर शायद आप खुश हो जाओगे लेकिन आपको बिन देखे ही मैं खुश हो जाती हूँ। दूर दूर से जब मधुर आवाज की ध्वनि कानों में मेरे पड़ती है, दूर दूर से जब मधुर आवाज की ध्वनि कानों में मेरे पड़ती है, सारी खबर मुझे जल्दी जल्दी मिलती है। दूर रह के भी आपके विचार मुझ तक आ ही जाते हैं, तो जानो ऐसा लगता कि रेडियो ने जानो वो अहम भूमिका बनाई है। इसीलिए तो संचार के माध्यम से आप सभी की बातें मैं तो सुन ही पाती हूँ, और जानो हर शब्दों को सुनकर शब्दों की नई सोच बनाती हूँ। दूर दूर ही हो लगता उस समय की पास आप मेरे नजर ही आते हो, रेडियो के माध्यम से बिल्कुल मेरे समक्ष नजर ही आते हो। तो जानो ऐसा लगता मुझको रेडियो मेरा साथी आज ही बन गया, जिसने शब्दों की सोच दी वो अनोखा अनमोल साथी रेडियो आज मेरा बन गया।
1: क्या बात है, वाह बहुत खूब बहुत खूब, सचमुच ये बहुत जबरदस्त गुण है आपका, और आपने इसको पहचाना ये और अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि आपको इसमें और मेहनत करनी चाहिए।
0: जी सर।
1: और लगातार मेहनत करनी चाहिए इस तरीके से कि श्रोता बंध जाएं आपके शब्दों के साथ।
0: जी सर।
1: बहुत खूब भारती जी। तो कुछ गा के भी सुनाने का मन है, एक दो लाइन?
0: जी नहीं सर, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगी कि मैं उतनी बेस्ट सिंगर नहीं हूँ। हाँ मेरे बाजू में मेरी दोस्त है।
1: सवाल बेस्ट का नहीं है, सवाल सवाल बेस्ट का नहीं है, सवाल सिर्फ गुनगुनाने का है
0: सर। पहली बात तो सर अभी मेरे वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो शायद नहीं कर पाऊंगी सर।
1: कोई बात नहीं। तो भारती जी, जो संस्थाएं जिनके साथ आप जुड़ी हुई हैं,
0: जी सर,
1: उन संस्थाओं में भी आप जाकर के अपना योगदान देती हैं, उनमें कोई पद वगैरह आपने ले रखा है?
0: हाँ सर, वो संस्थाओं में भी मैं जाती हूँ, अपनी कविताएं प्रस्तुत करती हूँ और अपने दिव्यांग दोस्तों के लिए भी कविता बनाती हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरी कविताएं उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि मेरी एक कविता है कि भगवान से प्रश्न मैं करती, निरंतर चलती है सोच मेरी, उन सोच को कैसे कागज कलम पर लिख मैं पाऊँ, भगवान मुझे बता दो कि कैसे इन शब्दों को लिख मैं पाऊँ, ब्रेल टकते हाथ है दुखते कैसे कागज कलम से लिख मैं पाऊँ। तो भगवान मेरे कहते, ना लेता तेरी आंखें उन आंखों का दर्द कैसे बताती, दिव्यांग की पीड़ा कविताओं के सुनहरे अक्षरों में कैसे सजाती, ना लेता किसी के आंख हाथ और पैर, इस दुनिया को उन अंगों की कीमत कैसे बताता, हर होते हैं अंग कीमती, इस दुनिया को मैं कैसे बताता, माना है कमजोर कदम ये, आज गिरते पड़ते लड़खड़ाते हैं, पर खुद ही तो संभल जाते हैं, गिरना पड़ना लड़खड़ा कर संभलना, यही जिंदगी होती है, इन्हीं दोनों पहलुओं से तो संसार की रचना होती है।
1: बहुत खूब भारती जी। आपने एक बुक का जिक्र किया कि आपकी एक पुस्तक भी छपी है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे शुरुआत हुई?
0: सर, मेरी वेद सोच बुक प्रकाशित हुई। वैसे तो मैं लिखती नहीं हूँ सर ब्रेल में, मेरे दिमाग में जो भी चीज रास्ते में हो या कहीं पे भी हो, अगर जो चीज बन जाती है तो मैं तुरंत उसको वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो जब मैंने वेद सोच बुक लिखी तो मैंने 20 कविता मैम को दी थी, फिर मैम बोले भारती 40 कविता चाहिए, तो मैंने आधे घंटे में 20 कविता बनाकर मैम को दे दी।
1: क्या बात है। फिर
0: अभी मेरे पास 250 कविता है सर, और अगर बनाने बैठूं तो एक घंटे में 25-30, जो जो टॉपिक आगे वाला देते जाएगा मैं कविता बनाते जाऊंगी।
1: तो वो जो 40 कविताएं हैं जो बुक आपकी निकली है, वेद सोच आपने उसका नाम बताया, तो
0: जी सर,
1: ये मार्केट में मतलब भी है या केवल एक तरह से आपने इसको?
0: सर, ये बुक तो आशादीप संस्था में आपको मिलेगी, जो प्रतिमा शास्त्री मैम है, इन्होंने ये बुक क्या बोलते प्रकाशित की है, तो ये बुक वहीं से मिलती है सर, आशादीप संस्था से।
1: ब्रेल लिपि में?
0: जी नहीं सर, ये साइटेड लिपि में है ये बुक,
1: इंक में है। ओके जी जी जी जी जी। और सारी कविताएं इसमें हिंदी में ही हैं?
0: जी सर, सारी कविताएं हिंदी में हैं। मैम ने मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन सुनकर वो कविताओं को लिखा, यानी उन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि जो कविता मैं बोल दूं, दोबारा बोलोगे कि भारती उसे फिर से बोल, तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी।
1: ये सबके साथ होता है भारती जी, एक बार जो शब्द आ जाते हैं मन में वो दोबारा बदल जाते हैं। इसके अलावा हिंदी के अलावा भी किसी भाषा में लिखती हैं आप?
0: जी नहीं सर।
1: जैसे आपकी अपनी भाषा तो शायद मराठी होगी?
0: नहीं नहीं नहीं, मेरी अपनी भाषा हिंदी है सर, मराठी अच्छा, मुझे नहीं आती है।
1: अच्छा, मराठी नहीं आती
0: है, पर बोलते ठीक से नहीं आता है।
1: घर में आपके हिंदी ही बोलते हैं?
0: जी हाँ सर, सभी हिंदी बोलते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप हिंदी में ही लिखती हैं?
0: जी हाँ।
1: तो और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, हमने थोड़ी देर पहले भी पूछा था आपसे।
0: सर, हॉबी तो मेरी बहुत है, जब मेरे पास आंखें थी तो मुझे बाम्बू आर्ट आते थे, सिरामिक वर्क आता था, और थर्माकोल के बड़े बड़े मंदिर बनाती थी मैं गणपतियों के, और मेहंदी क्लासेस लेती थी, और अच्छा। एलईडी कॉलेज में प्रथम पुरस्कार भी मैंने जीता था मेहंदी में। तो अच्छा। बोला जाए मुझे सभी कलाएं आती है। तो फिर बाद में जब मेरे पास आंखें गई और मैं कॉटन का गणपति बनाती हूँ बियर के बॉटल पे, वो चीज फिर मेरे पास है अभी कि मैं बिन हाथों के स्पर्श से वो कॉटन का गणपति बना सकती हूँ, लेकिन बाम्बू आर्ट, सिरामिक वर्क, मेहंदी, ये सब अब नहीं कर सकती सर।
1: ये नहीं कर सकते आप? तो ये जो आपका आर्ट है उसको आप कर रहे हैं अभी उस पर काम, या आप छोड़ दिया वो भी आपने उस पर?
0: हाँ
1: भी
0: सर, बाकी के जो बारीक काम है उसके लिए आंखें लगती है।
1: नहीं, ये जो आपने गणपति बनाने का जो बताया कॉटन से,
0: जी सर, ये बनाती हूँ मैं। अच्छा। मुझे 2.5 घंटे लगते हैं इसे बनाने में, बियर की बॉटल पे पूरा तैयार करने को फ्रेम।
1: अच्छा, फिर उसको बनाते हो, मतलब मेरा मतलब ये कि लोगों को देते हैं आप या नहीं?
0: हाँ, शादी में मेरे दोस्तों के गिफ्ट करती हूँ, लेकिन अच्छा। सर बेचने के इससे नहीं बनाती, क्योंकि वैसे बहुत समय लगता है, बारीक वर्क भी, उसकी आंखें बनाने के लिए मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो इसीलिए वो बोला जाए तो शादी में रुखवंत के लिए ही बना के देती हूँ सर।
1: ओके ओके, बहुत खूब। तो अभी आपने एलएलएम में मतलब एलएलबी जब किया आपने, तो क्रिमिनोलॉजी को ही क्यों चुना?
0: सर मेरा मोटिव यही था कि मैं क्राइम के मैटर लू, कि मर्डर हो गए, रेप हो गए, जो
1: हाँ, तो इसी को ही क्यों चूज किया आपने? जी
0: इसीलिए किया सर कि आजकल बोलो तो क्राइम इसी में तो ज्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि बोला जाए तो आज इतनी लड़कियों के साथ गलत हो जाता, लेकिन अच्छा वकील नहीं मिल पाता पैसों की कमी के कारण। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसी फील्ड चुनूं जिसमें सही में लोगों के काम में आ सकूं।
1: तो आप इस माध्यम से यानी अपनी जो लॉ प्रैक्टिस है उसकी मदद से भी आप लोगों को हेल्प करना चाहती हैं?
0: जी हाँ सर।
1: इसके अलावा आपकी अध्यात्म में भी रुचि है भारती जी?
0: जी हाँ सर।
1: कैसे, क्या करते हैं आप उसके लिए?
0: सर जैसे कि मुझे रामायण सुनना अच्छा लगता है, तो ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। चालीसा सुनना, सप्तशृंगी सुनना, मुझे मंदिर जाना सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे लाइफ में सिर्फ दो ही काम है, खाना बनाना तो मुझे आता नहीं, पूजा करना और पढ़ना, ये दो ही काम आते हैं मुझे।
1: अच्छा, और कविताएं लिखना?
0: जी हाँ,
1: कविता लिखना
0: का नाम वेद सोच रखा ना सर, क्योंकि मैं उसे कंसीडर सरस्वती से करती हूँ। और बोला जाए तो जो किताबें हैं, वेद पुराण, ये सब वो ज्ञान है जिसके माध्यम से आज हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और जब तक हमारे दिमाग में ही ज्ञान नहीं होगा तो कविता कहाँ से क्या बोलते बनेगी सर।
1: अच्छा, कविताएं लिखना तो ठीक है, कविताएं सुनने का भी शौक है आपको?
0: जी जी हाँ सर, सुनने का शौक है मुझे। सबसे ज्यादा हरीश्वर राय बच्चन की कविता बहुत अच्छी लगती है।
1: हरिवंश राय बच्चन?
0: जी हरिवंश
1: राय बच्चन। उनकी कोई कविता याद है दो लाइनें आपको?
0: जी सर उतनी ज्यादा याद नहीं है, लेकिन सुना है। और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता।
1: आपके पसंदीदा कवियों में बच्चन साहब हैं और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी हैं?
0: जी सर
1: जी। और और, और, और किसी जो प्रोग्राम होते हैं कवि सम्मेलनों के, वहाँ कभी गए आप?
0: जी हाँ सर, मैं विदर्भ कवि सम्मेलन में गेस्ट बन के गई थी वहाँ। नहीं, पर
1: कवियत्री के रूप में गए कहीं आप?
0: हाँ, कवित्री के रूप में मुझे गेस्ट बनाकर बुलाया गया था विदर्भ कवि सम्मेलन में सर।
1: अच्छा, कब की बात है ये?
0: ये 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात, जब मैं एलएलबी फाइनल ईयर में थी सर।
1: अच्छा, फिर वहाँ आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही?
0: सर वहाँ पे मैंने बोला जाए तो तुरंत ही कोरोना खत्म हुआ था, तो मैंने उस समय कोरोना को तुरंत एनालाइज किया और अपनी कविता बनाई। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। किसी के मांग का सिंदूर है छीना, बेटे को पिता से छीना था, कितने बच्चे अनाथ हुए, कोरोना विश्व में आया था। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। अब कारखाने में चिमनी धुआ अब ना उगले, अब मंदी चढ़ी बाजारों में, घर में चूल्हे ना जले, अब आग लगी शमशानों में। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। नई नवेली दुल्हन कितने सपने लेकर आई थी, अच्छे संस्कारों से ससुराल की बगिया को महकाए, वो तो आशाएं लेकर आई थी, कोरोना इसमें नजर लगाए। नई नवेली दुल्हन सफेद लिबास में नजर ही आई थी, हाथों की चूड़िया टूट गई, हाथों की चूड़िया टूट गई, जबकि मेहंदी की हाथों की फीकी ना होने पाई थी। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। जिस पिता ने बेटे को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था, बुढ़ापे का वो बनेगा सहारा, अपना पेट काट काट कर बड़ा इंसान उसे बनाया था। कोरोना इसमें नजर लगाए, बेटा पिता का सहारा न बन पाया था, अंतिम समय में पिता अपने लाल की सूरत देख न पाया था। यह बेटा पिता को अग्नि देता, यह बेटा पिता को अग्नि देता, पिता ने जलती हुई चिता दूर से देखी थी। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। खुशियां मची है घर में, देखो नन्ना मेहमान आने वाला है, इस घर का कुल दीपक देखो वारिस आने वाला है। सपने सारे सपने रह गए, घर का वारिस माँ की कोख में ही चला गया, किलकारी ना गूंजी घर में, मातम देखो फैल गया। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। और इस कविता ने सर 3 बार मुझे पुरस्कार दिया, त्र्यंबकेश्वर में भी मैंने प्रथम पुरस्कार लिया, एलईडी कॉलेज में भी मुझे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, जबरदस्त हुनर है ये आपका, वाकई मैं कहना पड़ेगा। लुई ब्रेल साहब, अभी अभी हमने ब्रेल जयंती भी मनाई और
0: जी हाँ वर्ल्ड
1: ब्रेल डे भी मनाया, तो लुई ब्रेल पर भी आपने कोई कविता लिखी है भारती?
0: जी हाँ सर, मैंने वो इंटर पॉइंट पे कविता लिखी थी जो छह अक्षरों की ब्रेल होती है ना, उस पर कि जैसे वो छह अक्षरों की पार्टी पे, उस पे मैंने अपनी कविता लिखी थी सर।
1: अच्छा, लुई ब्रेल साहब पर नहीं लिखी आपने?
0: जी नहीं सर, वो इंटर पॉइंट पे मैंने कविता लिखी थी।
1: सुनाइए दो उसकी दो लाइनें। याद है?
0: छह अंकों पर देखो आज कितने कमाल में कर गई कविताओं के सुनहरे अक्षरों को, ब्रेल की पाटी पर ही घड़कर देखो शब्दों की रचना घड़ गई। अ आ ई नहीं मैं, अम आहा हूं मैं, तभी तो पूरे शब्दों की बारह खड़ी हूं मैं। ना होती वो ही ब्रेल पाटी तो कैसे कविताओं को लिख मैं पाती, और कैसे स्पर्श कर उन कविताओं को मैं खुद ही पढ़ ही पाती। उभरे हुए ये सारे अक्षर सफेद मोती की भांति लगते हैं, कागज में जब कलम से लिखो तो वो काले काले मोती अलग ही जानो लगते हैं। लेकिन मन के दर्पण को देखो आज सफेद रूप में मैंने ब्रेल के माध्यम से आज उतारा है। देखो ना, काले मोती का सहारा लेकर मैंने सफेद मोती के सहारे से ही तो ब्रेल लिपि के माध्यम से आज अपनी कविताओं के सोच को घड़ ही डाला है।
1: क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो खाली समय में क्या करती है भारती?
0: सर खाली समय में सिर्फ शब्दों में गुम रहती हूँ कविताओं।
1: अच्छा?
0: से क्योंकि मैं पढ़ के थक जाती हूँ सर, बोला जाए तो मेरी पढ़ाई, बोला जाए तो 8-9 घंटे पढ़ो तो ही मैं पास होगी, तो उसके बाद जब दिमाग पूरा थक जाता है तो मैं अपने शब्दों में कविताओं की दुनिया में समय बिताती हूँ।
1: अच्छा, और फैमिली के साथ समय कब बिताती हैं भारती जी?
0: सर वो तो बहुत कम।
1: तो ये शिकायत नहीं रहती कभी फैमिली को?
0: नहीं, उनको पहले से पता है कि मैं बचपन से अकेला रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, अपने किताबों के साथ और जब दिखता था तो अपने आर्ट के साथ, तो उन्हें पता है कि मैं ज्यादातर शांत अपने रूम में रहना पसंद करती हूँ, तो कोई परेशान भी नहीं करता। उसे पता है, ज्यादातर मेरे कान में हेडफोन होता है सर, कि मेरी रिकॉर्डिंग चलते रहती है यूट्यूब की, तो मम्मी को पता रहता है कि पढ़ रही करके, तो कोई डिस्टर्ब तो करता नहीं है।
1: आपके फैमिली में भारती जी किसी और को भी कभी ये प्रॉब्लम हुई आंखों की? या
0: जी
1: आप
0: नहीं,
1: ही पहले
0: किसी को नहीं हुई, परिवार में सभी देख सकते हैं, सिर्फ मैं ही
1: हुई, आपको हुई। अच्छा भारती जी, कुकिंग वगैरह का भी कुछ है शौक या वो नहीं करती हैं बिल्कुल भी आप?
0: सर वो बताते हुए तो मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे चाय बनाना भी नहीं आता।
1: आपको नहीं लगता कि नॉर्मली ये सभी ज्यादातर लोगों की ये दिक्कत रहती है ब्लाइंड होने के बाद, तो आपको इस फील्ड में भी मतलब कोशिश करनी चाहिए, या आपको फैमिली करने नहीं देती है?
0: सर पहली बात तो मुझे खाना बनाना ये बिल्कुल नहीं पसंद है।
1: अच्छा, आपको लगता है जोमेटो स्विगी है, कहाँ दिक्कत है, क्यों?
0: जी हाँ, वैसे है ना सर, मम्मा है,
1: नहीं नहीं है। कभी अकेले भी अगर हुए किसी मामले में तो ऑर्डर कर देंगे,
0: उनके घर चले जाऊंगी खाना खाने,
1: उनके घर चली जाऊंगी, ये भी ठीक है। इसलिए आपको कुकिंग पसंद नहीं है?
0: जी बिल्कुल नहीं पसंद है,
1: और इसीलिए उस तरफ आपने
0: कुकिंग के साथ मुझे खाना खाना भी नहीं पसंद है सर।
1: ओ, तो इसीलिए आपने
0: बोला जाए तो मैं चल फिर पाऊं,
1: जीने के लिए खाना पड़ता है।
0: जी हाँ,
1: और इसीलिए आप उस फील्ड में नहीं गए, वरना कुकिंग में भी आप अपना हाथ आजमा सकते थे, राइट?
0: जी जी जी।
1: चलिए, तो कोई नहीं, ये पता चला हमको कि भारती कुछ ऐसा भी है जो भारती जी को नहीं आता है।
0: जी हाँ। तो सर अगर सभी इंसान सभी तरह से संपूर्ण हो जाए तो भगवान की जगह ले ले, हम इंसान है इसलिए तो हमने कुछ ना कुछ कमियां होती है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने कि हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। भारती जी बताइए कि तो जीवन तो अच्छा खासा चल ही रहा है, अब डिप्रेशन से अब आप बाहर आ गए हैं, बल्कि आप खुद बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन गए हैं, कुल मिला के सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब कभी बात होती है फैमिली में शादी वगैरह के बारे में?
0: सर पहले से मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी के मैं खिलाफ हूँ, और इसीलिए अच्छा। भाई को भी पता है कि अगर शादी की बात की जाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, फिर 2 पॉइंट ब्लड पे चले जाऊंगी, इसलिए ये सब बातें तो कोई करता ही नहीं। और मुझे सिर्फ पूजा पाठ करना और पढ़ाई करना पसंद है। थर्ड चीज के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, शादी ब्याह इन सब के बारे में कभी सोचा नहीं सर, और ना ही कभी सोचूंगी।
1: आपने तो नहीं सोचा कभी फैमिली।

0: मम्मी वगैरह पापा वगैरह
1: नहीं
0: कभी
1: नहीं
0: बोल?
1: नहीं भाई ने भी कभी प्रेशर नहीं डाला, ना ही पापा ने ना ही मम्मी ने।
0: अच्छा ओके। और आपने ये सोच ही रखा है कि आपको अकेले मतलब रहना है, मैंने यानी बिना शादी के ही आपको रहना है ना?
1: जी जी जी सर।
0: अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने डिसीजन में बिल्कुल पक्के हैं, ये आपने सोच रख,
1: जी हाँ सर।
0: इस वजह से कोई बात भी नहीं करता है।
1: नहीं, मैं बीएफ और जीएफ वालों से पहले ही दूर रहती हूँ सर, क्योंकि मुझे वो आध्यात्मिक विषय पसंद नहीं है। हाँ, पढ़ाई के टूवर्ड्स अगर मुझे कोई मेरे दोस्त मेरी किताब लेके अगर वो अपनी आंखों से देख देख के पढ़ रहे हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मेरे दोस्त बोला जाए तो गिनती के 3 या 4 दोस्त हैं अभी तक, और इससे ज्यादा दोस्त नहीं बने कभी। वो मुझे
0: नहीं
1: बोरिंग
0: भारती जी,
1: समझते हैं।
0: भारती जी होता क्या है ना कि जो आप कह रही हैं वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है ना कि जो समाज में कई सारी चीजें होते हैं उनमें से विवाह भी एक है, शादी ब्याह भी एक उसमें
1: जी
0: से
1: हाँ
0: है
1: सर, आपकी बात सही है।
0: जी। इसलिए हर कोई गलत हो ऐसा भी नहीं है,
1: नहीं सर, देखो हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन मैं
0: लाइफ
1: इंटरफेयर भी नहीं करती हूँ किसी के मामले में, क्योंकि
0: हाँ
1: ऐसी
0: वही
1: बात है, मैं अपने विचारों से शादी के खिलाफ हूँ। मेरे दोस्त हो ये
0: जरूरी
1: जरूरी थोड़ी ना है, तो जो
0: नहीं,
1: उनकी
0: इसीलिए
1: लाइफ
0: मैं कह
1: है
0: रहा
1: वो
0: हूं
1: अपनी लाइफ जिए, लेकिन मैं
0: बिल्कुल।
1: इंटरफेयर नहीं करती हूँ किसी केस में।
0: बिल्कुल ठीक। तो अब तो आंखों को लेकर के तो आप चिंतित नहीं हैं कि क्योंकि अब आपने एक राह पकड़ ली है, अब अच्छी चल रही है जिंदगी आपकी, या अभी भी आपको कभी कभी अकेले में ख्याल आता है कि अरे कहां ही गड़बड़ हो गई है सब आंखों को लेके?
1: हाँ जी, कभी कभी आता है कि मुझे कैसे, मुझे पढ़ने का शौक है और कभी रिकॉर्डिंग जल्दी नहीं मिलती, तो उन किताबों को पढ़ने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है कि काश मेरे पास आंखें आ जाए, मैं पढ़ लूँ, मैं खुद पढ़ू, ना कि रिकॉर्डिंग में कब रिकॉर्डिंग मिलेगी और कब कोई सर्च करके देगा, क्योंकि एलएलएम की सारी नोट्स अभी गूगल से सर्च करना है सर, कोई मार्केट में किताब नहीं है, तो जब वो आगे वाला सर्च करके देगा उस टॉपिक पे तभी मैं पढ़ूंगी। और मुझे रोज पढ़ने की आदत है, एकदम से पढ़ना नहीं होता मुझसे, तो इसीलिए ये चीज का एहसास होता है सर कि मैं खुद करूं, जल्दी से पढ़ू और मेरा सिलेबस पेपर के पहले मैं पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लूं, तो होती है ये चीज का एहसास होता है। अवेलेबल नहीं हमारे को।
0: तो भारतीय आपका जो जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा है क्रिमिनोलॉजी में?
1: हाँ सर, मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉपिक है जो मेरी मैम पढ़ाती है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें
0: अच्छा
1: आर्टिकल 14 के बारे में उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन कोरोना के समय मुझे एहसास हुआ कि इक्वालिटी किधर है, जब मैंने ये देखा कि क्या बोलते हैं, सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, उन किताबों को सिर्फ मैं देख सकती हूँ, उन काले अक्षरों को मैं पढ़ नहीं सकती, तो शिकायत तो सबसे पहले मेरी भगवान से थी। मैंने भगवान से कहा कि मेरी मैडम आर्टिकल 14 पढ़ाती है इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो भगवान मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कि संविधान की किताब मैं पढ़ती हूँ, समान अधिकार सोच सोच खुश हो जाती हूँ, फिर भगवान से शिकायत करती हूँ, तेरी दुनिया में भगवान समान अधिकार ने दिए दुनिया में लोगों को, भविष्य के वकीलों की कतार लगी है, मैं गुनहगार बनकर कटघरे में खड़ी नजर आई, सब आंखों से देख के पढ़ते भगवान, मैं कानों से सुनती पढ़ती हुई नजर आई, सोचा ना था पहला मुकदमा अपने आप के लिए ही लड़ना होगा, अपनी कमजोरी के संग आगे मुझे ही बढ़ना होगा, तो हर लेक्चर ने मुझे एक कविता दी, और ज्यादातर मेरी कविताएं मेरी मैम जो पढ़ाती गई तो साइड बाय साइड मेरे नॉलेज के साथ वो मुझे कविताओं की भी सौगात देते गए।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि नॉलेज तो जब बढ़ता जाता है तो फिर हमारा सोचने समझने का जो दायरा है वो भी बढ़ता जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपकी कविताओं में भी दिखता है। बिल्कुल ठीक। तो आए दिन रोज अखबारों में क्राइम की खबरें तो छाई रहती हैं भारती जी, परेशान नहीं होती हैं आप उन सबको पढ़ करके देख करके? अच्छा
1: नहीं,
0: आप
1: परेशान होती हूँ
0: न्यूज़पेपर
1: ना सर,
0: पढ़ती
1: तो
0: हैं?
1: मंदिर में अपना मूड फ्रेश करने चले जाती हूँ, क्योंकि
0: अच्छा आप
1: घटनाएं
0: न्यूज़पेपर
1: तो
0: पढ़ती हैं?
1: समाज में होते ही रहेगी।
0: न्यूज़पेपर पढ़ती हैं भारती आप?
1: जी हाँ सर।
0: कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हैं?
1: भाई पढ़ते हैं तो मैं सुनते रहती हूँ, नवभारत, दैनिक भास्कर, तो वो बताते हैं, कोई अगर खबर आई तो पूरा पेपर तो वो मुझे बता नहीं सकते पढ़ के, लेकिन मम्मा बताती है जैसे क्या हो रहा है समाज में तो मम्मा बताती है, और इच्छा होती है कि पूरा न्यूज़पेपर पढूं, लेकिन तो भी उतने ही सेटिस्फाइड हो जाती हूँ जितना भाई पढ़ के बताते हैं।
0: कोई ऐसा केस आपके सामने आया, आपने कभी उस पर आपका ध्यान गया हो जिसने आपको अंदर तक हिला करके रख दिया हो? और जो
1: पहली बार तो वो निर्भया केस जो हुआ था
0: जी,
1: और अभी जो क्या बोलते वो डॉक्टर का केस जो हुआ, तो ये बोला जाए तो बहुत ही इतना दहशत थी कि ऐसा लग रहा था कि इंसानियत शायद अभी रही नहीं।
0: रही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे जी। अच्छा भारती, काफी हम कविताएं तो सुनी रहे हैं आपसे और प्रोग्राम में बातचीत भी चल रही है, मम्मी पर भी कभी कुछ लिखा है आपने? माँ पर?
1: जी हाँ जी। मम्मी पे लिखा है, माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊं, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊं, जिस माँ की बेटी दिव्या हो जाती है वो अपने मम्मी के चिंता का कारण बन जाती है, कॉलेज में जब बेटी जाती माँ चिंतित हो जाती है, सही सलामत मेरी लाडली घर को आ पाती है, माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊं, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊं, घर के सारे काम करे पर मन बेटी में होता है, बुरी बुरी बातों से उसका मन घेरा हुआ होता है, लोगों की बुरी नजरों से क्या मेरी लाडली बच पाती है, सही सलामत मेरी लाडली घर को आ पाती है, माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊं, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊं।
0: बहुत अच्छे, बहुत खूब। वही मैं इसीलिए मुझे लगा कि इस पर जरूर आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो अभी आंखों की दवाई वगैरह भी चल रही है आपकी?
1: जी नहीं सर,
0: अब सब बंद। तो बहुत खूब भारती जी, काफी अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और मुझे लगता है बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपकी बातें सुन करके। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है मन की आंखों से, आपने अपनी आंखों की रोशनी के कम होने के बाद, इतने सालों तक डिप्रेशन में रहने के बाद, अपने आप को जिस दमदार तरीके से खड़ा किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत जबरदस्त बात है ये। तो नागपुर के बाहर कहाँ गए, कहाँ कहाँ गए आप प्रोग्राम के लिए भारती?
1: सर मैं त्र्यंबकेश्वर गई ना, और क्या बोलते अभी अयोध्या जाऊंगी, इसके पहले भी मैं सर
0: गए कहाँ कहाँ, अभी वो बताइए अभी तक कहाँ कहाँ गए हो?
1: सर अभी तक तो मैं इधर ही तक गई हूँ, नागपुर के बाहर नहीं गई हूँ, बोला जाए अच्छा। तो त्र्यंबकेश्वर इधर तक ही गई हूँ, बॉम्बे तक गई हूँ बस, उसके आगे नहीं गई सर।
0: अच्छा, मतलब अभी तो आप महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकले हैं?
1: नहीं नहीं नहीं सर।
0: और ज्यादातर प्रोग्राम आपके नागपुर में ही होते हैं?
1: जी हाँ सर, यही पे हुए।
0: तो हर महीने एक आध प्रोग्राम हो जाता है?
1: सर हर महीने बोला तो 5-6 प्रोग्राम हो जाते हैं।
0: अच्छा 5-6 प्रोग्राम हो जाते हैं। इसमें कुछ आपको भारती जी, हम जानना ही चाह रहे हैं कि कुछ मतलब आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है या केवल परफॉर्मेंस के तौर?
1: वैसे तो कॉलेज के जितने भी कॉम्पिटिशन हो तो उस लिफाफे में 1,000-2,000 ये तो मुझे मिल ही जाते हैं, और त्र्यंबकेश्वर में भी मैंने जब प्रथम पुरस्कार जीता तो उसमें मुझे 2,000 रुपए प्रथम पुरस्कार दिया गया।
0: यानी कुल मिला के आप जहां भी जाते हैं प्रोग्राम के लिए वहां पे एक तरह से आपको आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है, आपकी पॉकेट मनी भी निकल जाती है, आराम से आप अपना खर्चा भी निकाल लेती हैं, राइट?
1: जी सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: पॉकेट मनी नहीं, मेरे जो भी पैसे आते हैं वो भगवान के मंदिर में जाते हैं।
0: अच्छा,
1: तो मैं जैसे कि जिस उद्देश्य से मैं चल रही हूँ कि ये कविताओं के पैसे मैं अपने दिव्यांग दोस्तों के लिए कल चल के उनको सहयोग करूँ, तो जब तक मैं कुछ नहीं बन जाती तो वो अमानत तो मंदिर की दान पेटी की है ना, तो मेरे लिफाफों के सारे पैसे मंदिर में जाते हैं।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छी बात है भारती जी, आपको जो एक कला आपके अंदर है कविताएं लिखने की और कविताएं सुनाने की, सबसे बड़ी बात इंस्टेंटली यानी तुरंत शीघ्रता से किसी भी विषय पर कविता लिखने का ये जो हुनर है ये बहुत ही अच्छा है, और आगे और इसमें आप तरक्की करें यही हम चाहते हैं, और जिंदगी में आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे हों। और जो अब आंखों की जो समस्या उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो अब लोगों को रोशनी एक तरह से दिखाने का काम कर रही हैं, रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं, तो उसी में ही आपको लगे रहना चाहिए। रेडियो मधुबन पर आज मन की आंखों से कार्यक्रम में आपने आकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि चलते चलते कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को कोई प्रेरणादायी कविता सुनाएं और आप क्या कहना चाहते हैं आपका

0: आने वाले जीवन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भारती जी, आज एक बार फिर से आपने जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज का मन की आंखों से कार्यक्रम आप सबको जरूर पसंद आएगा, उम्मीद करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा 94-14-15-14-15 पर। मिलते हैं फिर किसी और कार्यक्रम में, तब तक दीजिए इजाजत मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: किसी कभी सोचा न था कि हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां आ जाएंगी। फूलों की दुनिया में आपको हम ले जाते हैं हर सप्ताह। फूल माना खुशी, फूल माना पॉजिटिविटी, फूल माना हर दम आशावादी बने रहना। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हसीन लम्हों को हम आज बिताएंगे। ख्वाबों को सच करने का हम एक सुनहरा अवसर देते हैं आप सभी को। गीतों और बातों के माध्यम से खूबसूरत ऐसे फूलों भरी बातें जिसमें सिर्फ और सिर्फ होती है पॉजिटिविटी। पल पल एक दूजे से बातें करेंगे, कार्यक्रम है गुलदस्ता। दोस्तों, फ्रेशनेस उस ओस की बूंदों जैसी होती है। जी हाँ, फ्रेशनेस उस ओस की बूंदों जैसी होती है जिसकी झलक मुश्किल से मिलती है। तो अपने जीवन को तरोताजा बनाने के लिए ट्यून इन रेडियो मधुबन और ट्यून इन कीजिए कार्यक्रम गुलदस्ता। रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हसीन लम्हे, शरीर लम्हे, शर्मीले लम्हे, झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं

0: जरा जरा सी बातें याद आती हैं। बेशक अगर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है, किसी भी पर्टिकुलर लक्ष्य को हासिल करता है और उसके बाद जब अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है तो उसको सारी बातें, सारी वो लम्हे याद आती हैं जो बेशकीमती हैं। और आज हम ऐसी मल्लिका, सुरों की मल्लिका के बारे में आपसे बातें कर रहे हैं। आपको उन हसीन लम्हों में लेकर जाएंगे जो उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर, अपने किरदार को निभाकर, जी हाँ, गायकी का जो स्पेशल किरदार आपने निभाया उसे निभाकर हमें जो कीमती तोहफे दिए गीतों के रूप में, उसे हम पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं आपके साथ। रेडियो मधुबन 107.8 FM कार्यक्रम है गुलदस्ता, और पूरे जोश के साथ और खुशी के साथ आपके साथ हूँ मैं, स्वर्णलता।
1: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
2: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
1: चलो चलते हैं।
2: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
3: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
2: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
4: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
2: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
5: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
6: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: मीठी आवाज और मीठी मुस्कान की मल्लिका मेलोडी क्वीन अलका जी की आवाज में हम सुन रहे हैं कीमती तराने, कीमती गीत, जिन्हें सुनकर आपको महसूस होगा कि इन्हें क्यों ना दोबारा सुन लिया जाए। वैसे अलका जी की वॉइस में क्लैरिटी है। अलका जी की वॉइस में गीतों को, सुरों को समझाने का एक स्पेशल तरीका है और उनकी वॉइस में महीनता है, जिस महीनता को आज हम महसूस करेंगे हर एक गीतों में। दोस्तों, अलका जी के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। आपकी वॉइस को सुनकर, आपके गाए हुए गीतों को देखकर, जानकर, समझकर हमें ऐसा लगता है कि कैसे आप हर तरह के गीत बखूबी निभा लेते हैं, कैसे आप गजलों को भी गा लेती हैं बहुत ही सरलता से, कैसे आप भक्तिमय भजन भी गा लेती हैं, कैसे आप प्रभु प्रेम में युक्त गीत सुना देती हैं। तो ऐसे गीतों को आज हम सुनेंगे और आपको ढेर सारा गुड विशेस देंगे ताकि आप आने वाले समय में ऐसे ही गीतों को हमारे लिए गाते रहें।
1: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's Community Radio Station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.

0: कार्यक्रम गुलदस्ता में अलका जी की आवाज में आपने सुना एक मराठी सॉन्ग जिसके बोल थे घर एकाकी। वैरायटी गीतों को प्रस्तुत करता है कार्यक्रम गुलदस्ता। वैसे तो हम मोस्टली आपको हिंदी फिल्मी गीत या गैर फिल्मी गीत दोनों ही प्रकार के गीत आपको सुनवाते हैं, पर आज अभी इस वक्त हमने आपको सुनवाया एक मराठी सॉन्ग फॉर अ चेंज। वैसे अन्य भाषाओं के गीत भी समय प्रति समय हम प्ले करते रहते हैं। भारतीय सिनेमा की दिग्गज पार्श्व गायिका हैं अलका जी। 4 दशक लंबे करियर में उन्होंने 22,000 से अधिक गीत गाए हैं। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित और काजोल जैसी अभिनेत्रियों की आवाज रही अलका याग्निक जी, जिन्होंने 7 फिल्मफेयर और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। 2026 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वैसे साथियों, आज हमने खास इस सुरों की मल्लिका को क्यों चुना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए कार्यक्रम गुलदस्ता में। आपके लिए आ रहा है बहुत ही सुंदर गीत अलका जी की वॉइस में।
1: हेलो, आई एम अलेक्सेंडर, डिप्लोमेट फ्रॉम रशिया, एंड यू आर लिसनिंग FM Radio Madhuban. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomadhuban.in on internet, even Russia, even everywhere.

मीठी गजल आपने सुनी अलका जी की वॉइस में, जिसके बोल थे किसके शानों पे वो अशकों को बहाता होगा। धुन थी नदीम श्रवण जी की। रेडियो सुनने वाले हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में, आप हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते हुए मुस्कुराते हुए हमेशा कायम रहते हैं स्वर्णलता के साथ। दोस्तों, पद्म भूषण से सम्मानित अलका जी इन दिनों कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना कर रही हैं, तभी आज का प्रोग्राम उनके लिए एक गुड विशेस के तौर पर है। हम सब उनके लिए अनकंडीशनल गुड विशेस सौंपें, उनको याद करके कि वो आने वाले दिनों में और भी मधुर गीत हम तक पेश करें। दोस्तों, कलाकार जो हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, क्योंकि वो साधना करते हैं और हमारे लिए एक से बढ़कर एक गीत पेश करते हैं, ताकि हम उन्हें एंजॉय करें, उनसे कुछ सीखें, उनसे शिक्षाओं को अर्जित कर अपने जीवन को भी संभालें, है ना। तो बने रहिएगा और सुनिए अगला गीत, जो बंगाली में हम आपको सुनवाना चाहते हैं अलका जी की वॉइस में।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सुनते हुए मुस्कुराते हुए हम सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। और इस कार्यक्रम में आज हम खास सुन रहे हैं अलका जी की वॉइस में बहुत सारे ऐसे खास गीत जिन्हें शायद ही हमने कभी सुने हो। एक आध हमने बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक बजाए, बाकी सब बिल्कुल हटके गीत सुन रहे हैं। ब्यूटीफुल म्यूजिक है, ब्यूटीफुल सॉन्ग कलेक्शंस हैं अलका जी की वॉइस में। दोस्तों, अभी हमने एक बंगाली में गीत सुना जिसके बोल हैं शेई पाखीटार के जाने की नाम। इसका अर्थ ये है, क्या कोई हमें बता सकता है कि सुबह सुबह जो पंछियां गीत गाकर हमें जगाती हैं, जो पंछियां हमें मधुर गीत सुनाती हैं, क्या उनका नाम आपको पता है? क्या उनका पता आपको पता है? क्या वो किस घोंसले में रहती हैं, क्या आपको पता है? है ना, बहुत सुंदर मीनिंग। दोस्तों, आज हमने अलका जी की आवाज में आपको बहुत सारे गीत सुनवाए और उनके बारे में हम बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वे एक कठिन दौर से गुजर रही थी। उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज थे जिनसे वो अभी उबर रही हैं। तो हम सब की ढेर सारी गुड विशेस हैं उनके प्रति कि वो जल्द से जल्द पूरा ठीक हो जाएं और पहले की तरह हमारे लिए बहुत सारे अनगिनत गीत सुनवाएं। वैसे उनका कहना है कि पद्म भूषण मिलने के बाद भावुक हुई सिंगर अलका याग्निक। उनका कहना है कि मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ, 2 साल पहले अचानक सुनाई देना बंद हुआ, सिंगिंग छोड़ी। सिंगर अलका याग्निक को मंगलवार यानी 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सम्मान लेने से पहले सिंगर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लिया और फिर अवार्ड लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ कदम बढ़ाए। सम्मान मिलने के बाद अब सिंगर ने एक भावुक पोस्ट शेयर कर बताया है कि वो पिछले 2 साल से मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। तो उस पोस्ट के बारे में और उनकी दिल की जो भी भावनाएं हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, पर अभी सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत उनकी आवाज में रेडियो मधुबन पर।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
2: रेडियो मधुबन

अलका जी हमेशा श्रोताओं के दिल में बसी रहेंगी उनकी बेजोड़ संगीत के कारण। दोस्तों, अलका जी का कहना है कि जब मैं स्वास्थ्य संबंधी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, ऐसे समय में आपका यानी कि श्रोता बंधुओं का, फैंस का, उनके चाहने वालों का प्यार, दुआएं, संदेश और अटूट समर्थन हर कदम पर मेरे साथ रहा, यानी उनके साथ रहा। यह पल मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह सिर्फ मेरे काम की पहचान नहीं बल्कि प्यार, उम्मीद और हौसले से मिलने वाली ताकत की याद भी है। मैं धीरे धीरे फिर से अपने जीवन की राह पर लौट रही हूँ और आज यहाँ आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए भी जो इस सफर का हिस्सा रहे हैं। वो पद्म भूषण से जो सम्मानित हुई, उन्होंने वह पद्म भूषण का जो सम्मान है, प्रेस्टिजियस पुरस्कार है, वह अपने श्रोताओं के नाम करते हुए ये सब बातें उन्होंने कही। तो हमारे लिए यह बहुत ही खास पल है क्योंकि आप जो हैं हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने अपनी आवाज से सभी को बहुत प्यार दिया। सो फ्रेंड्स, आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए और जाते जाते हम उनकी आवाज में दो ऐसे प्रभु प्रीत के गीत सुनवाना चाहेंगे जो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम किया, जो हम सब सुनते हैं और प्रभु की याद में खो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह एक बेहतरीन विषय के साथ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आरजे शुभा, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नई दुनिया नया जमाना, जहाँ हम बात करते हैं एक ऐसे भविष्य की जो हो स्वच्छ, हरित और सतत। धरती केवल हमारे रहने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या फिर संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। तो जब एक व्यक्ति जागता है तो समाज बदलता है, और जब समाज जागता है तो एक नई दुनिया का निर्माण होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे पर्यावरण योद्धा है जिन्होंने वर्षों से स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, जिनके कार्यों को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्री खमू राम विश्नोई जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: तो खमू राम जी, सबसे पहले तो आपके अनुभवों और संघर्षों के बारे में हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपके बारे में थोड़ा अधिक हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम खमू राम विश्नोई है, मैं ओशिया तहसील के गांव एकलगोरी का रहने वाला हूं, और वर्तमान में मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त 28 फरवरी 2026 को हुआ हूं, और पिछले लगभग 2.5 दशक से मैं सिंगल यूज प्लास्टिक और के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहा हूं। बड़े बड़े मेले होते हैं, वहाँ हमारी टीम कचरा बीनती रहती है ताकि लोगों की मानसिकता में जो कचरा भरा हुआ है, जो लोगों की सोच में कचरा भरा हुआ है वो निकले। हमारी मकसद ये नहीं है कि हम जमीन से कचरा बीने, हमारा मकसद ये है कि जमीन पर कचरा आए उससे पहले ही मानसिकता ही बदल जाए कि मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं जमीन पे कचरा फेंकूं। तो इस प्रकार लगभग 2.5 दशक हो गए हैं। और दूसरा हमारा काम है शादी ब्याह, वहाँ भी हम फ्री सेवा देते हैं। उसके पीछे हम 3-4 शर्तें होती है, वो पहली शर्त होती है पूरा कार्यक्रम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहना चाहिए, डिस्पोजल मुक्त रहना चाहिए, और दूसरा हमारी होती है झूठन मुक्त रहना चाहिए, तीसरा हमारा होता है नशा मुक्त रहना चाहिए, और चौथा होता है हमारा फटाका मुक्त समारोह हो। तो हम ऐसे सेवाएं देते हैं जैसे मेरी बहन की शादी हो, मेरी भतीजी की हो, भांजी की हो, सारे दिन हम तांबे के लोटे ले जाके मेहमानों को जलपान कराते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक को दरकिनार करते हैं, नशे को दरकिनार करते हैं, फटाकों को दरकिनार करते हैं, और झूठा भी नहीं छोड़ने के लिए मना करते हैं, क्योंकि धरती का, अगर मेरी भाषा में बोलूं तो धरती का सबसे बड़ा भगवान है वो भोजन है। भोजन से बड़ा भगवान मंदिरों में भी नहीं मिलता, मंदिर के भगवान को भी हमारे भोजन का, प्रसाद का ही भोग लगता है।
0: जी जी सर, बिल्कुल। तो सर, बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में बीता, प्रकृति से जुड़ाव कैसे शुरू हुआ?
1: अब आपने बिल्कुल सुन रखा होगा कि विष्णुई समाज शुरू से ही, गुरु दम्बेश्वर भगवान 550 वर्ष पहले ही हमें विष्णुई समाज सभी कम्युनिटी में से चुन चुन के हमको अलग बैठा के और 29 नियमों की एक आचार संहिता दी, एक सिस्टम दिया कि प्रकृति के साथ समन्वय बैठा के तुम्हें जीना है। तो गुरु दम्बेश्वर भगवान ने 1485 ईस्वी में सभी कम्युनिटी, सभी समाज के लोगों में से विष्णुई समाज के लोगों को एक नियम देके, 29 नियम देके, और एक नया पंथ चलाया या एक नया सिस्टम बनाया, एक नई जीवन जीने की एक नई कला दी जो प्रकृति के साथ में समन्वय बैठा के जी सके।
0: जी सर। सर, सहायक रजिस्टर पद से आपने रिटायरमेंट लिया है, और मतलब पढ़ लिख करके आप अच्छा नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को आपने जीवन का मिशन क्यों बनाया? आप चाहते तो अकेला भी, जितना आपको प्रकृति से प्रेम है तो आप अपने प्रेम के साथ जीते, लेकिन इसको मिशन क्यों बनाया आपने?
1: ऐसी बात है कि पहली बात तो गुरु दम्बेश्वर भगवान जो 15वीं शताब्दी के सबसे पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे, वो उनके अनुयायी हुआ। दूसरे मेरे माता पिता के जो रगों में भी पर्यावरण और संस्कृति बचाओ का खून था, प्रकृति प्रेमी का खून था, और दूसरा विष्णु कम्युनिटी का रंग भी तो मेरे साथ, मेरे ऊपर शरीर में मेरे लगा हुआ था, चढ़ा हुआ था, मेरे खून में घुला हुआ था। तो जब ये इतनी सारी आबो हवा के बीच में मुझे जीने का मौका मिला तो स्वाभाविक है कि मैं प्रकृति की सेवा करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जीवन ये बहुत ही कम समय के लिए मुझे भगवान ने दिया है और पर्टिकुलर एक टाइमिंग के लिए है, उसके बाद में भगवान मुझसे वापस छीन लेंगे और सांसें भी गिनी हुई है। अब मुझे रियलाइज नहीं है तो बात अलग है, लेकिन मुझे अगर रियलाइज है कि मेरे पास लिमिटेड सांसें हैं तो मैं बेहतरीन काम करने का प्रयास करता हूँ। और हर आदमी को जब ये मालूम चल जाता है कि मैं जीवन पृथ्वी धरती पे कोई विशेष प्रयोजन से आया हूँ तो वो कभी भी प्रकृति के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो हमेशा प्रकृति की सेवा करने का ही प्रयास करेगा। मैंने ही वैसा ही किया।
0: जी सर बिल्कुल, जैसे कि ये संस्कार आपको आपकी संस्कृति से, आपके समाज से, आपके माता पिता से आपको मिली है और इसको ही आप आगे लेकर के जा रहे हैं और एक आपने समाज में क्रांति लाए हैं आपने। तो जब आपने शुरुआत की 2005 में, वर्ष 2005 में, हम सभी आई थिंक मेरे जनरेशन के जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त सभी स्कूल में होंगे, तो आपने अकेले स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो उस समय ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली 2005?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया और मैं इसकी रिप्लाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से देना चाहूंगा। मैंने एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें भारतीय संस्कृति की बहुत ही तारीफ की गई, जैसे हमारी जो 5000 पुरानी हमारी संस्कृति है और हमारे जो पर्यटन स्थल है, हमारे जो धार्मिक तो और प्रकृति से प्रति हम पीपल को पूजते हैं, हम गौ माता को माँ बोलते हैं और हम सभी अलग अलग देवताओं के अलग अलग जीव जंतु भी उनके सवारियों में, जीवों को भी उनकी सवारियां बनाई है, तो हम देवता को और जीवों को हमने समन्वय में बैठा के और उनको पोषण देने का प्रयास किया ताकि सभी जीव धरती पर रह सके और उनका सब अपने अधिकार पूर्वक रह सके, यही भारतीय संस्कृति थी। तो एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ अच्छा बताया है, सब कुछ गुणगान किया गया, लेकिन अंत में हमारे तीर्थ स्थान है, हमारे जो पूजा स्थली है, वहाँ अंदर तो आरतियाँ गा रही है, ओम जय जगदीश हरे या और भी जे देवी देवताओं की जो आरतियाँ हो रही है, और बाहर की तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ बताया। तीर्थ स्थानों पर भी मेले में लोग इतने भीड़ कर देते हैं लेकिन भीड़ के बीच में पैरों में इतना कचरा पड़ा रहता है कि वो तीर्थ न होके कोई कचरा घर हो जाता है, तो मेरे को दर्द हुआ और मैंने तीर्थ स्थान को जाके देखा तो जैसी डॉक्यूमेंट्री में फोकस किया गया वैसा को वैसा मैंने वहाँ तीर्थ स्थान पे देखा। तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आया, पहले मैं हाईकोर्ट की सिक्रेसी में था, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मैंने छुट्टी मिली और मैं 2005 में कोई बड़े हमारे विष्णु समाज के बड़े तीर्थ स्थान पे गया, तो मैंने विष्णु समाज के लोगों को बलिदान को याद कर 363 लोग 1730 में पेड़ों हरे पेड़ों के लिए अमृता देवी के तत्व में शहीद हो गए थे और वन्य जीवों के लिए भी शहीद हो गए थे, सलमान खान वाला भी उदाहरण हमारे सामने ही था कि काले हिरण का शिकार करने आए और फंस गए, अभी भी फंसे हुए हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में इग्नोर क्यों कर रही है। तो समाज के लोगों ने मुझे थोड़ा कहा कि तेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हर चीज हमेशा अकेला करता ना वो आगे जरूर बढ़ता है।
0: जी, तो लोग जब आपका मजाक उड़ाते थे तो आपने हिम्मत कैसे बनाए रखी?
1: ऐसी बात है, शुरुआत में जब मैं गया तो वहाँ लोग कचरा फेंक रहे थे तो मैंने उनको समझाने का कोशिश किया तो कौन मानता है, एक आदमी की कोई नहीं सुनता है, बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुनता, तो मैं एक साधारण आदमी था, मेरी कौन सुने, तो मैंने कहा अभी सुनने वाला तो है नहीं, तो मैंने वो जो मेलों में हमारे विष्णु समाज के लगभग अपनी आमदनी का 10% चुगा पक्षियों के लिए गायों के लिए लाते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े चुगा घर बनते हैं, वहाँ वो चुगा घर के लिए बोरी कट्टा भर के लाते हैं बाजरा का या गेहूं का, जो भी धान उनके फसल होती है वो ला के वहाँ डालते हैं, तो वो उसका खाली कट्टा पड़ा था, मैंने देखा इस कट्टे का उपयोग तो मुझे करना चाहिए, मैंने वो कट्टा उठाया और वहाँ जितना भी बिखरा हुआ कचरा था वो उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा विष्णु समाज के लोग थोड़े मानते कम है, कुछ अलग टाइप के हैं, मानेंगे नहीं, वो नहीं, मैं कचरा बींध रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को धक्का नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आई एम वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ माई मदर प्लानिट, मैं धरती माँ की स्वच्छता के लिए काम कर रहा हूँ और इसमें भी मुझसे कोई धक्का मुक्की होगी तो मैं मेरे सहन करूंगा।
0: जी सर, सलाम है आपके कार्य को और आज भी वो कारवा जारी है और
1: बिल्कुल ये शुरुआत में ऐसा हुआ
0: जी,
1: फिर लोगों ने मेरे हंसी मजाक भी कौन चुके और फबतियां किसने में कौन चुके, किसने कहा पागल हो गया, किसी ने कहा इसकी नौकरी चली गई, किसी ने ये कहा गया अब ये फटीचर हो गया, जो उनके मन में आता था वो कह रहे थे, लेकिन मेरा टारगेट था, मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित किया। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ और रोड से जा रहा हूँ तो कहीं गोलाई भी आती है, कहीं पुल भी आता है, कहीं बाईपास भी आते हैं, कोई कुछ भी आता है, लेकिन मेरा टारगेट जयपुर जाने का होता है, तो मैं हर हाल में उसी रोड को चुनता हूँ जहाँ जो जयपुर जाती है, भले बीच में रास्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो भी मैं उससे बच के आगे यहन कहन में पहुँचता हूँ। वैसे मेरा टारगेट था, मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इस फील्ड में धरती माँ की सेवा करने में मेरे जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैंने वैसे किया। हालांकि मेरे पास खूब सारे ऐसे भी अवसर आए, परिवार के लोगों ने भी मुझे शुरू शुरू में कहा कि ये हमारे समाज मेरे परिवार का हमारे खानदान का नाक कटा रहा है, गंदगी उठा रहा है। परिवार के श्रीमती जी भी थे वो शुरू शुरू में, उन्होंने उनकी सहेलियों ने और उनके लोगों ने उनके परिवार जो उनकी बहनें हैं उनके जो पीर की परिवार के लोग उनको भी थोड़ा ऐसे महसूस हुआ, तो उसने भी अपने आप में नाक में सर डाली और मेरे को भी कभी व्यंग्यात्मक रूप से कभी कभी बोल देती थी, लेकिन वो भी मैंने सहन किया क्योंकि मेरा लक्ष्य था, मुझे आगे बढ़ना था। लोग तो कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य था, तो मैंने भगवान की कृपा और प्रभु की कृपा से मैं मेरे उस रास्ते पे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मुझे समय मिलता मैं हाई कोर्ट से सर्विस से छुट्टी लेके परमिशन लेके मैं उस लक्ष्य पे काम करने लग गया।
0: जी सर, कभी ऐसा लगा नहीं कि अभियान छोड़ देना चाहिए?
1: नहीं, कई बार ऐसा लगा कि कभी कभी मैं अकेला जाता था, बिल्कुल अकेला, तो मेरा चेहरा भी उतरा हुआ था कि मैं अकेला जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ स्लोगन लिखी हुई तख्तियां होती थी, कुछ बैनर होते थे, कुछ पर्दे होते थे, कुछ अन्य सामग्रियां भी होती थी, मेरे खुद के कपड़े भी होते थे, तीन चार बैग हो जाते थे। चार बैगों को उठा के किसी साथ वाले राई को मैं निवेदन करता था कि थोड़ा मेरे हेल्प कर दो, तो उस समय लगता था कि तुम करने क्या जा रहा है, अकेला क्या कर लेगा, लेकिन फिर प्रभु कहते थे कि अरे भाई जो अकेला करता है ना उसको किसी का इंतजार करना नहीं पड़ता, तो जब अकेला चलता है ना उसको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो लेट नहीं होता है, वो हमेशा सही टाइम पे पहुंचता है। तो मैं अकेला था तो मुझे बड़ा ही खुशी हो रहा था कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा, मैं स्वयं ही डिसीजन ले रहा हूँ और स्वयं ही फाइनल डिसीजन और स्वयं ही मन बंद कर रहा हूँ और स्वयं ही खोल रहा हूँ। मेरा काम शुरू भी मैं श्री गणेश भी मैं कर रहा था और वाइंड अप भी मैं कर रहा था, तो मुझे कोई दर्द नहीं था और धीरे धीरे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आने लगा। लोग कुछ लोग हेल्प के लिए, कुछ हेल्प नहीं होती थी तो तारीफ करने लगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे दो जुड़े चार जुड़े, और शुरू में जो आज मेरे साथ में थे शुरू में थे वो अब एक भी नहीं था, लेकिन मेरा कारोबार चल रहा है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने छोड़ते रहते हैं, रोटेशन बन गया ये। तो अभी भी हमारे कब शादी ब्याह में जाते हैं तो 10-20-30 हो जाते हैं, मेलों में हम 50-100 हो जाते हैं और काम बेहद बेहतरीन तरीके से चल रहा है।
0: जी सर, तो सर धार्मिक मेलों में और जो पर्यटन स्थल है वहां पर प्लास्टिक रोकने के लिए विशेष प्रयास आप क्या कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो कैसे कर सकते?
1: बिल्कुल सही है, हर चीज शुरू से करना चाहिए। हम मैं एक मोस्टली मैं जहां भी जाता हूँ एग्जांपल देता हूँ, वॉशरूम और किचन का। अपने परिवार में बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं 70-80 साल के और उनकी मानसिकता थोड़ी सी या सोचने की शक्ति या यादगार शक्ति कम हो जाती है तो वो भूल जाते हैं, और छोटा बच्चा होता है 1.5-2-3 साल का तो वो भी नहीं समझता है वॉशरूम क्या होता है किचन क्या होता है, लेकिन उनकी इतनी मानसिकता विकसित हो जाती है कि किचन से भोजन लेके वॉशरूम में जाके कभी नहीं बैठता, चाहे बच्चा भी नहीं बैठता बूढ़े आदमी भी नहीं बैठते। और वॉशरूम का डब्बा या बाल्टी जो होती है जो विशेष रूप से हम वहाँ काम लेते हैं वो दूसरी जगह काम नहीं लेते, वो कभी लाके किचन में या दूसरी जगह नहीं रखते या

0: नहीं कि जो अपन जिसको परिंदा बोलते हैं, वाला के कोई डब्बा या बाल्टी नहीं रखते, इतनी मानसिकता उनकी और बन
1: जी
0: जाती है। तो हम तो जागरूक है, इतनी मानसिकता तो हमारी होनी चाहिए कि जो चीज हम नहीं चाहते वो दूसरों को देंगे तो वापस हमें अच्छी कैसे मिलेगी। जैसे मैं आपको अभद्र शब्द भाषा में बोलूंगा तो आप क्यों मेरे को सभ्य भाषा का प्रयोग करेगी, कैसे करेगी, कैसे कर पाएगी, कर नहीं पाएगी, कौन से अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम करते हैं, हम लोगों को बेहतरीन व्यवहार देते हैं तो लोग हमें शाबाशी देते हैं। ऐसे करते करते के लोगों को मैं हम समझाते हैं कि तीर्थ स्थान, ध्यान, साधना, तपस्या और पूजा की और आत्मा बल को मजबूत करने की जगह है। ये कोई कचरा फेंकने की और मौज मस्ती करने की या पिकनिक स्पॉट नहीं है। तीर्थ स्थान तो संकल्प को मजबूत करने की, हे भगवान मैं आपके आया हूँ और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरे मानवत्व को पहचानूं और अच्छा मानव जीवन जी के किस प्रकार मैं मेरी ये यात्रा पूरी करूं। ये तीर्थ स्थान उसके लिए है, न कि कोई नगर पालिका मेला होता है जहाँ झूले लगते हैं, लोग आइसक्रीम खाते हैं, जो भी चीज जो मजे आओ वैसे चीजें खाते
1: जी
0: हैं, उसके लिए नहीं है। लेकिन लोग आजकल उसको तीर्थ स्थानों को भी सिर्फ एक वो कहानी में बेल घूमता ना, वैसे हर जो महीने एक फेरी दूंगा। अरे फेरी शरीर की नहीं लगानी है, फेरी विचार की लगानी है कि मैंने पिछले गुरु जो भी तीर्थ स्थान था वहां जाके आया, उसके बाद में मेरे भावना में, मेरे क्रियाक्रम में, मेरी सोच में क्या कुछ फर्क आया। अगर फर्क आया है तो मेरी यात्रा या मेरी जो वहां धोख देना या वहां साधना करना, वहां जाना सफल है, नहीं तो फालतू ही गोता है और भगवान को धोखा देना। भगवान तो क्यों धोखा खाएंगे, धोखा तो खुद को ही मिलता है, क्योंकि वो एक बिना मन के, बिना कोई संकल्प के वहां जाके आता है तो तेल जलता है और खुद की एनर्जी वेस्ट होती है, मिलना कुछ नहीं है। भगवान तो आत्म अनुभूति है, अपने आप के अंदर विराजमान है, पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है, पर एक मैं एक छोटी सी बात करके आपको बताऊंगा कि जब भगवान एक बार क्या हुआ, सभी लोगों ने अपनी इच्छाएं जताई और भगवान से पूछा कि हे भगवान हमें दो वो दो वो दो वो दो, अपनी अपनी, मेरे परिवार में मेरी वाइफ नहीं मानती है, बेटा नहीं मानता, सासू नहीं मानती रहो। तो भगवान परेशान हो गए कि जाऊं कहाँ, तो भगवान कहीं छिप गए, तो
1: जी
0: दूर पहाड़ में छिप गए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, वहां भी जाके ढूंढ लिया कि यहाँ यहाँ आके छिप गए और हम तो दुखी है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो हम मनुष्य के हृदय में आके बैठ गए। अब जिसको भी अगर भगवान को पहचानना है तो अपने हृदय के खुद को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मैं जीवन में क्या कर सकता हूं। तो खुद के अंदर जब हम सोच से अपने आप को अंदर झांकेंगे, अपने अंदर आत्मा को देखेंगे, तभी हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। बाहर कहीं किसी भवन, किसी बिल्डिंग या किसी मंदिर में भगवान नहीं विराजमान है, भगवान अपने अंदर ही। मनुष्य के अंदर दो लोग रहते हैं, एक राक्षस एक एक भगवान। राक्षस इट मीन्स पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी, और भगवान इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, देवत्व, देवत्व और राक्षसत्व, ये दो चीज मनुष्य के अंदर रहती है। अगर मैं लगातार लगातार लगातार मैं अच्छे आदमियों के साथ रहूंगा, अच्छी संगति के साथ करूंगा, तो मेरे अंदर देवत्व का परसेंटेज बढ़ जाएगा और राक्षसी परसेंटेज कम हो जाएगा। और मैं अच्छे विचारों को इग्नोर करता जाऊंगा तो मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आएगी, हर एक से झगड़ा कर लूंगा, पुलिस केस हो जाएंगे, जेल में भी जाऊंगा, वापस पेरोल पे आके भी मैं उल्टा काम करूंगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। तो दो प्रवृत्तियों से ही मनुष्य का निर्माण होता है, और दूसरी एक प्रवृत्ति से निर्माण होता है, दूसरी प्रवृत्ति से मनुष्य का क्या विनाश होता है। ये मेरे विचार है,
1: जी
0: व्यक्तिगत विचार है।
1: बिल्कुल। तो अगर हम पॉजिटिव विचारों के साथ रहेंगे तो हम पर्यावरण के लिए भी सही काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही है। अगर हम प्रकृति का पेड़ है, पेड़ को काटेंगे फिर हमें छाया चाहिए, तो पेड़ को, जिस पेड़ को हमने काटा है वहां छाया कैसी रहेगी, वो तो जगह खाली हो जाएगी। अगर छाया है चाहिए तो पेड़ लगाए। अब आजकल क्या करते हैं, अपन हम पाश्चात्य संस्कृति का फॉलो करते हैं, और बड़ी बड़ी शादियों में देखा होगा गरीब तो हाथ में कांदा रोटी लेके खा लेते हैं, बड़ी शादियों में चाउमीन के लिए अलग प्याला प्लास्टिक का, आइसक्रीम के, आइसक्रीम के भी अलग अलग फ्लेवर वो, और उसके अलग प्याले, कितने ही प्रकार के वो गोलगप्पे के लिए अलग प्याला। एक आदमी शादी ब्याह में, बड़ी शादी ब्याह में, रईस की शादी में 100 बर्तन काम में लेता है एक टाइम के भोजन के लिए। हम जा किधर रहे हैं, जा किधर रहे हैं, ये विचार भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो रईस होते हैं, वो देखा हमारा तो जन्म धरती को गंदा करने के लिए होता है, सफाई करने वाले तो कोई दूसरे हैं, हमारे लिए, हम कोई सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुए। और चाहते हैं, हर आदमी चाहता है हमें अच्छा व्यवहार मिले, लेकिन हम देवे नहीं देवे, ये हमारी बात, तो ये कैसे हो सकता है, संभव हो सकता है। छोटा बच्चे को भी अगर हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वो रूठ जाएगा या वापस ऐसा जवाब देगा कि हमारी बोलती बंद हो जाएगी।
1: जी। तो सर आपने हजारों मेलों में और धार्मिक आयोजनों में सफाई अभियान चलाया है, कोई यादगार अनुभव साझा करें। हमारे साथ।
0: बिल्कुल, मैं मेरे खुद के ही जो विष्णु समाज के मेले वहाँ हम कचरा बीन रहा था, तो पेरिस से एक मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र आया फ्रैंक वोजेल, तो उसने वो विष्णु समाज के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहा था, तो वो दो तीन मेलों में मुझे फॉलो किया और मेरे को कचरा बीनते हुए देखा, तो उन्होंने व्हाट आर यू डूइंग, मैं आई एम पिकअपिंग गार्बेज हियर टू मेक माई मदर प्लानेट नीट एंड क्लीन एंड आई वॉन्ट टू अवेयर द पीपल इन दिस रिगार्ड। तो उसने कहा आप इंग्लिश भी जानते हो, मैं थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी ऐसे, मैंने कहा मैं इतनी जानता हूँ, तो कहा ठीक है इतनी, इट्स एनफ। उसने कहा इतनी बहुत है मेरे लिए, मैंने जो मुझे आदमी चाहिए था उसको मैंने सर्च कर लिया। फिर एक मेले में वो मिला, मुझे दूसरे मेले मिला, तीसरे मेले मिला, हर मेले में मैं वही काम करता हुआ उसको पाया गया, उसने फोटोग्राफ खींचे। फिर पेरिस फ्रांस का था, वो पेरिस में जाके आर्टिकल छापा। 2008 में उसने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही थी, तो उसमें मुझे इनवाइट कर लिया, तो मैंने मना कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल टू कम देयर क्योंकि मैं प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करने में मैं असहज महसूस कर रहा, तो मैंने मना कर दिया। तो उसने कहा कम, इट्स नॉट ईजी टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, सो यू डोंट से मी नो आफ्टर हाफ एन आवर वन पर्सन कॉल्ड यू और गेटिंग योर कंसेंट, सो डोंट से हिम आई डोंट वॉन्ट टू कम देयर, यू शुड से हिम आई हैव नो प्रॉब्लम टू कम देयर, आई वाना कम देयर टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाई ऑफ यू। तो ठीक है, उसने बात की और मैंने उसको कहा भाई ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ। आधे घंटे बाद मुझसे फोन किया, आर यू मिस्टर खमुराम बिश्नोई, मैंने कहा यस आई एम खमुराम बिश्नोई, वुड यू लाइक टू कम पेरिस टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एज ए कीनोट स्पीकर। मैंने उसने मना किया हुआ था कि मना मत करना, मैंने कहा यस आई हैव नो प्रॉब्लम आई विल कम देयर कम बट मे। फिर उसने बुलाया, मैं 2008 में गया, 11 में गया, 12 में गया, 13 में गया, 14 में गया, 15 में मेरी फ्लाइट मिस हो गई, टाइम मिस रीड कर लिया, और 18-20 में भी मेरे को इनवाइट किया था उन्होंने, लेकिन वहाँ कोरोना काल आ गया तो उसमें वो मिस हो गई। अब 2028-27 का भी वो कह रहे हैं कि वी वांट टू इनवाइट यू। देखो प्रभु क्या, मैं वहाँ जाने के लिए मेरा टारगेट नहीं है, मेरा का टारगेट तो है मेरी धरती माँ को स्वच्छ रखूँ, लेकिन अगर वो बुला लेते हैं तो मैं उनके यहाँ भी मना नहीं कर पाता।
1: जी सर, तो कैसा अनुभव रहा, आप फ्रांस स्विट्जरलैंड में भी भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया और आपकी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी विदेश में प्रसारित हो चुकी है।
0: 52 मिनट की 2011 में 52 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने, फ्रेंच चैनल्स पे वो रिलीज हुई थी, और 2011 में ही पेरिस के मेट्रो रेलवे स्टेशन पे 100 फीट बाई 150 फीट की फोटो एग्जीबिशन भी मेरी रही। मैं उस समय 2011 में वहाँ गया था, तो उस एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसके साथ में मेरे फोटोग्राफ्स भी उसने लिए। देखो कमू यू आर वेरी बिग पर्सन हियर, यू कैन सी दिस फोटोग्राफ्स। मैंने देखा तो वास्तव में बहुत लंबी चौड़ी, जैसे बड़े बड़े होल्डिंग पे विज्ञापन होते हैं ना, वैसे वैसे मेरी फोटो लगी हुई थी। मैं अपने आप को भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा था, ये भगवान में एक छोटे से कचरा बीनने वाले आदमी को आपने इस प्रकार प्रेजेंटेशन देने के लिए फोटोग्राफ्स में शामिल किया है, मैं आपका ऋणी हूँ, और वो ऋण उतारने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में मैं धरती माँ का और प्रभु का ऋणी हूँ, क्योंकि एक मनुष्य होना, जन्म लेना ही अपने आप में कितने ही कर्मों के बाद में, कितने ही अच्छे कर्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म इस यू आर नेक्स्ट टू गॉड, यू आर सेंडर ऑफ द गॉड, भगवान के ही रूप हो, भगवान ने ही आपको भेजा है, लेकिन हम आके यहाँ भूल जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम तो सूर्य है। अरे तुम बहुत कुछ हो, कितने भी महान महान वैज्ञानिक हुए या नेता हुए, लोग हुए या स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, बहुत छोटी उम्र में गए लेकिन इतना कुछ देके चले गए कि कितनी शताब्दियों तक वो अमर रहेंगे और उनका संदेश कोई मिटा नहीं सकता। वैसे ही जाम्बोजी महाराज और भी घने ऐसे लोग हुए हैं, रामदेव जी हुए हैं और भी ऐसे खूब लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन समाज को भी चाहिए कि वो स्वीकार करे।
1: जी सर बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं का क्या रोल है पर्यावरण संरक्षण में सर, आप क्या कहते
0: हैं? मैं इस समय हमेशा कहता रहता हूँ मैडम के द यूथ जनरेशन इज गार्जियन ऑफ द प्रेजेंट एरा, वर्तमान के युवा क्या है, संरक्षक है। जो सीनियर सिटीजन थे, जिनको अपन पूर्वज अपन बडेरा कह दें या हमारे वरिष्ठ जन कह दें, जिन्होंने अपनी पारी खेल ली है, वो 70 के हो गए, 80 के हो गए या 60 से ऊपर हो गए, उन्होंने पारी खेली, जैसे उनका कर्तव्य था उन्होंने अपन को साफ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन धरती दी। वर्तमान समय युवाओं का है, बच्चों को अभी समझ में नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, तो अगर वर्तमान युवा जाग जाएंगे तो धरती को कोई गंदा नहीं कर सकता, युवा इग्नोर करेंगे तो धरती को कोई बचा नहीं सकता। धरती पर इतना कचरा हो गया, बड़े बड़े शहरों में तो 500 फीट ऊंचे पहाड़ बन गए। मैंने दिल्ली में देखे, पहले देखा मैं इस पहाड़ी पे चढ़ूंगा, फिर मैं पहाड़ी के पानीपत की ओर जा रहा था, पहाड़ी के नजदीक गया तो ऊपर आग दिखी, मैं वो पहाड़ी पे आग खींचने लगे, आग ये है कि पहाड़ी की आग नहीं है क्या, ये कचरे के ऊपर आग लगाई हुई है। और फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा वो डंपर होता ना वो ऊपर खाली होता, देखा माचिस की डिब्बी जितना दिख रहा था, इतने इतने कचरे के ढेर लग गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं समुद्र को, हमने सही नहीं छोड़ा समुद्र का। मैं अभी जू बीच पे गया था, वो तो जवार आता है ना, तब जो कचरा समुद्र का देता है ना वो पूरा का पूरा वापस लुटा के और उनके घरों के आसपास किनारों पे लाके फेंक देता है। तो जब तक मनुष्य धरती को देना नहीं सीखेगा तब तक धरती दे नहीं पाएगी, लंबे समय धरती नहीं दे पाएगी, धरती अब इग्नोर करना बंद कर देगी और हम मरेंगे। और हम वैसे दिल्ली में अपन बड़े शर्म, आपने भी कहीं सुना होगा देखा होगा वहाँ वो जीना कोई जीना नहीं है, अमिताभ बच्चन वाला वो डायलॉग किसी एक फिल्म में था कि ये जीना भी कोई जीना है। तो इतनी गंदी बदबू आती है बड़े बड़े नालों के पास कि एक दिन भी हमारा बार, हम जो खुले एरिया में रहते हैं जैसलमेर बाड़मेर या मरुस्थल वाले उधर जाते हैं ना तो मन नहीं होता कि घंटा आधा घंटा ही यहाँ रुके, लेकिन लगातार जब हम वहाँ रहते हैं तो हमारी भी नासिकाएं वो ऐसी स्वीकार कर लेती है गंदगी की और हम गंदगी में रहने में मजबूर हो जाते हैं।
1: जी सर, हर घर अगर कोई संकल्प ले या छोटा छोटा प्रयास करे तो क्या हम अपने देश को परिवर्तन कर सकते हैं? अगर
0: बिल्कुल मदर टेरेसा ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि धरती को हम, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि धरती को तो साफ रख नहीं पाए और चांद की तरफ दौड़ रहे हैं, और गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास वो सब कुछ है जिससे हम अपन जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमारी लालचा को पूरी कोई भी नहीं कर सकता। अब लालचा किसी भी चीज से पूरी नहीं होती। मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी और पुरानी साइकिल थी, मैंने नई साइकिल ले ली तो फिर उसका नया ब्रांड और नई वो उसकी और हाई वर्जन देख लिया, फिर साइकिल से मोटरसाइकिल आई, कार आई, कार का नया ब्रांड। तो आदमी कभी भी संसाधन से, मेटेरियलिज्म से, मतलब भौतिक चीजों से आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट आदमी होता है अपने विचारों से संतुष्ट होता है कि मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है।
1: बिल्कुल संतुष्ट और विचारों से
0: संतुष्टि बाहर नहीं है, संतुष्टि बाहर कहीं भी नहीं है, साधनों में संतुष्टि नहीं है, जोधपुर में मेरा, मतलब मैं जहां भी जिस शहर में रह रहा हूँ मेरा पूरी पोस्ट कॉलोनी में सबसे अच्छा बंगला है, लेकिन सात वाला मेरे खाली जमीन पड़ी, उसने डिजाइन थोड़ी बदल के मेरी वाले से 21 डिजाइन लाके बना दिया, तो मेरे रात को नींद आनी बंद हो गई। अब जबकि बहुत बड़ा मेरा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी उसने डिजाइन नहीं लिया तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ उसकी डिजाइन के सामने देखता हूँ तो मेरा पिछता होता है, यार क्या कर लिया ये, अपने पैसे तो खूब लगे लेकिन इस तरह सारे डिजाइन नहीं बना ली। तो कहने का मतलब है आदमी किसी भी चीज से, ऐश्वर्य से, धन से कभी संतुष्ट नहीं होता। और कुछ लोगों ने विकास की जो दौड़ में है वो कहते हैं आदमी को संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ ऐसी हो गई है कि अब मनुष्य का जीवन ही निकलने लग गई है। छोटे बच्चे भी मोबाइल के अंदर इतने घुस रहे हैं कि मोबाइल उनकी माँ से भी प्यारे लगने लगे, माँ का दूध पीना छोड़ देंगे और मोबाइल की तरफ देखने लग जाएंगे, हम जा किधर रहे हैं ये हमें भी सूझ नहीं रहा है और हम इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। स्कूलों में सिर्फ एक बंद डब्बा में स्कूल में पहले मैदान होते थे, पढ़ाते थे, अब मैदान गायब हो गए बंद डब्बों में बच्चों को। और कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ, आपने भी देखा होगा मैडम, 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर से बच्चे को सुबह कलेक्ट करते हैं, स्कूल लाते हैं और 3-4 घंटे बैठाते हैं, वापस 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बस में और घुमाते हैं। हम शाम को चाहते हैं कि बच्चा का दिमाग तेज हो रही है, इसकी मानसिकता सुधरे, कैसे सुधरे, वो थकान से मरा मरा हो जाता है, कैसे पढ़ाई करे, कैसा राष्ट्र उत्थान करे जब उसके है ही नहीं। और दूसरे ऐसी पहले हमें कविताएं और भजन और कीर्तन और राष्ट्रपति गीत गवाए जाते थे, जैसे हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, बढ़ना है बढ़ना है आगे सबसे बढ़ना है, इस प्रकार के निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण ने भूले इतने जब नाव जल में छोड़ी, कितने प्रकार के राष्ट्रभक्ति के और आत्म उत्थान के गीत और कविताएं सुनाई जाती थी तो हमारे मन में रहता था नहीं ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ होना भी नहीं है।
1: जी सर, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम आपसे बात कर रहे हैं और आप इतने समय से ये कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं उनके लिए जरूरी प्रेरणादायी कार्यक्रम है ये।
0: युवा आज नहीं जागा तो कल गंदगी में खड़ा रहेगा और पिछताएगा, और अगली पीढ़ी जैसे आज जवान है उसके बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे जब जवान होंगे तो जो जिन्होंने जन्म दिया है उनको गालियां निकालेंगे 100% गए, तो खुद ने तो जन्म दे के हमको छोड़ दिया और धरती को गंदगी करके चला गया, अब हम जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते, मरे तो कैंसर होके मर रहे हैं या कोई और बीमारी लेके मर रहे हैं, हर चीज में जेर है। व्यापारी चाहता है मैं किसान को ठगूं, किसान चाहता है मैं केमिकल डाल के व्यापारी को ठगूं, और एक दूसरे से ठग रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जबकि ठगा आदमी आदमी को रहा है लेकिन फिर भी खुश हो रहा है। जो किसान ठग रहा है वो व्यापारी को केमिकल दे रहा है, और व्यापारी मिलावट करके किसान को दे रहा है या अदर कंज्यूमर को दे के पैसे इकट्ठे कर वो ठग रहा है। तो वो भी देख रहा है मेरे पास पैसे हैं, अरे पैसे किसी के काम के नहीं, मरने वाला एक सांस भी पैसे से खरीद नहीं सकते।
1: जी जी सर बिल्कुल, पैसे से सांसें नहीं खरीदी जा सकती, हमने देखा कोरोना काल में भी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को किस तरह से व्यवहारिक बनाया जाए, क्या कहना चाहिए?
0: बिल्कुल सही है, जब भी बच्चों का जन्मदिन हो टोपियां नहीं बांटी जाए, बच्चों के हाथ से पौधे लगाए जाए, पर्यावरण के संबंध में रैलियां गीत और उनको चित्रकला आयोजित की जाए कि पर्यावरण के बारे में बच्चा क्या जानता है, तुम अपने अपना एक बैठ जाओ और आपकी भावनाओं को पर्यावरण के बारे में क्या जानते हो, वो भावना होनी चाहिए। शनिवार को जो नो बैग डे होना चाहिए, नो बैग डे में पर्यावरण के बारे में उनसे विचार लेने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको बताना चाहिए कि जीना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा। उनको इस प्रकार की भावना ठूस ठूस के बढ़नी चाहिए। जैसे पहले हम स्कूल में हम पढ़ाई करके नहीं आते थे, होमवर्क करके नहीं आते तो मुर्गा बनाते थे, छोटे बच्चों को कभी कभी बड़े बच्चों के ऊपर बैठा देते थे और इस प्रकार की हम देते थे ताकि हम लज्जित होते थे कि नहीं पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी और ऐसा हमें करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चों को तो बर्थडे होता टॉफी बांटते वो बांटते रहे, ये चीजें टॉफी क्या होती है कुछ नहीं, एक मीठा जेर है। लेकिन हमारे परिवार में और टिफिन में ही डालते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में टिफिन डालते हैं जो बदबू मारता है। एक तो पराठा बनाते हैं, पराठा खुद अपने आप में बच्चों छोटे बच्चों के जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब करता है कि छोटे बच्चे बढ़ती वाले थे पराठे में तेल होता है, वो कैसा ही तेल होता है वो खिलाते हैं। कभी भी बच्चों को वो इस प्रकार के तेल में तली हुई छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देने चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार जब तक हम सात्विकता पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चों के बर्थडे पे भी पौधे लगाने की केक काटे हैं पौधे लगावे, अगर एक बर्थडे पे एक पौधा होगा तो बच्चा अगर बड़ा होगा और 25 साल का होगा शादी होगा तो अपनी वाइफ को कह सकता है कि मैं देख 25 साल का हूं, मैंने मेरे 25 साल में इतने पौधे लगाए हैं, आज अपनी शादी के दिन भी हम दो पौधे लगाएंगे, एक तेरा होगा एक मेरा होगा। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे और लोगों में भावना पैदा करेंगे कि हर फंक्शन को पौधे से जोड़ेंगे, हर फंक्शन को स्वच्छता से जोड़ेंगे, बाजार से कपड़े की थैली के लिए जाएंगे, घर एक अलग ही अलमारी का कोना रखेंगे जहां कपड़े की थैली रखेगा, सामान लाने की थैली है वहां, मेरे बैग में मैं मोटरसाइकिल बैग में मोटरसाइकिल चलाता हूँ कम से कम 5 कपड़े की थैलियां हर समय रखती है, मिसेज रखती है नहीं रखती है तो मैं उनको थोड़ा रौद्र रूप बताता हूँ तो वो झट से रख देती है, एक दिन नहीं रखती है दूसरे दिन मेरे को मालूम नहीं चलता है, मैं जाके देखता हूँ तो थैलियां पड़ी रहती है। तो जब हम सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम से सब होता है, हम इग्नोर करेंगे। ऐसी ऐसी महीने हैं कि आलू ले रहे हैं और टिंडी ले रहे हैं, आलू और टिंडी अगर हम साथ में ले ले तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो उसके लिए प्लास्टिक अलग थैली मांगती है, हर सब्जी और फिर एक बड़ी थैली, 5 तरह की सब्जी ली तो 5 प्लास्टिक छोटी थैली है फिर एक बड़ी थैली है, घर से कपड़े की थैली ले जाते हैं, शर्म आती है। जब हम शर्म करेंगे तो फूटेंगे कर्म, ये तय है। हम प्रकृति बचाने में शर्म करेंगे तो मरेंगे, हमारे आंखों के सामने हम अपने पूर्वजों को अपने बच्चों को या कोई भी कैंसर हो गया, कोई कैंसर से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, कोई किसी से मरेगा और हमें सहन करना पड़ेगा। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा,
1: जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। सर आपकी जो अभियान है कितने स्वयंसेवक जुड़े हुए? जी जी सर
0: पहले बताया था कि हम छोटा फंक्शन होता ना, हम क्या है वॉलंटियर है, हम किसी से कुछ लेते नहीं, तो जब हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, जिसको जो समय मिलता है उस हिसाब से वो समय निकाल के अपना भाड़ा किराया खुद दे के आता है। तो शादी ब्याह होते हैं हम 10-15 होते हैं और मेले होते हैं धार्मिक मेले होते हैं तो वहाँ संख्या थोड़ी हमें बढ़ानी पड़ती है, उस समय हम कभी 50 हो जाते हैं कभी 100-150 हो जाते हैं, वो मेले की और उनके लोगों के आने की आह्वान पर उनकी रुचि के अनुसार, दबाव कहीं नहीं होता, दबाव वाला काम भी नहीं करता।
1: जी जी सर ओके,
0: जो बिना दबाव वाला एक आदमी 15 आदमी काम कर लेगा और दबाव वाला 15 आदमी एक आदमी काम नहीं करेगा, कहीं पेड़ के नीचे जब बैठ जाएगा या कहीं 2 मिनट में कहेगा मेरी मासी आई हुई है 2 मिनट मिल के आता हूँ, मासी क्या आई हो, शाम तक ही वापस नहीं आएगा।
1: जी
0: ये होता है
1: जी।
0: काम सब संकल्प काम करता है, शरीर काम नहीं करता है, जुनून काम करता है, बॉडी काम नहीं करती, जुनून काम करता है, संकल्प मजबूत होता है, हमें करना होता है, हमारी भावनाएं होती है, हमें कुछ देने की इच्छा होती है तब काम होता है। काम आदमी किसी आदमी का कोई शरीर काम नहीं करता, उसके अंदर संकल्प क्या है और क्या वो धरती को देना चाहता है और किस प्रकार का जीवन जी के दूसरों को देना चाहता है वो काम करता है। कभी ये मत सोचना कि बॉडी काम करती है, बॉडी काम तो सिर्फ भार उठाना, वो मेरे से मैं छोटा बच्चा हूँ मेरे 10 किलो भार उठाए, लेकिन एक बहुत मुस्टंडा है वो हो सकता है 50 किलो 2 क्विंटल ही उठा ले, पहलवान है तो 2 क्विंटल ही उठा ले, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप किसी काम को अंजाम देने के लिए मेहनत करेंगे तो वो भावना से होगा। पहलवान ही बनेगा तो पहले उसकी भावना होगी शुरू से कि मैं बड़ा होकर पहलवान बनूंगा, तो वो बन पाता है। तो बच्चों के अंदर ये भावना हम पैदा करेंगे शुरू से, बच्चा अगर तू ऐसा काम कोई मत करना जिससे तेरी और तेरे खानदान की और हमारी इज्जत मिट्टी मेट हो जाए, हम लज्जित हो जाए, ऐसा काम मत करना, ऐसा काम करना कि हमारा गांव भी नाज करे, शहर भी नाज करे, और हो सकता है तेरा नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच जाए और पूरा राष्ट्र तुझसे सुने, ऐसा बेटा बन, बनना है तो ऐसा बन बेटा। बाकी शरीर लिए तो जानवर घने घूमते हैं, द मैन इज द मोस्ट नोटोरियस एनिमल ऑफ द प्लानिट, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। धरती का सबसे गया बेटा जीव है तो मनुष्य है, धरती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जीव है तो मनुष्य है। किसी शेर ने अपना पेट भरने के बाद में दूसरे शेरों को या गंदगी को प्लास्टिक का उत्पादन नहीं किया या किसी प्रकार के दूसरा कोई चीज का उत्पादन नहीं किया, जो कर रहा है मनुष्य कर रहा है और जो नुकसान पहुंचा रहा है मनुष्य कर रहा है। मनुष्य कहता मैं बुद्धिमान हूं लेकिन वो है बुद्धिहीन, एयर केस में बुद्धिमान है, परसेंटेज बुद्धिमानों का बहुत ही कम है, सिर्फ दो पैरा वाला जानवर है, दो पैरा वाला जानवर। मनुष्य ये मत समझना कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यता लाने के लिए बहुत ज्यादा विचार करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, सवेरे उठ के सोचना पड़ता है व्हाट इज माय टारगेट ऑफ माय डे, व्हाट इज टारगेट ऑफ माय होल लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस प्रकार जीवन जी के आगे बढ़ना है, क्या हम सिर्फ एक जानवर बन के सुबह शाम भोजन करना और सो जाना, वो करना दाल रोटी लाना, बच्चों को जिमाना, सो जाना, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता यह है अपना परिवार पाल के और दूसरों को भी कुछ दें, प्रकृति को भी कुछ दें, तब तो है मनुष्यता। सिर्फ अपना अपना ही पेट भराई करें तो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर भी करते हैं, एक जहरीला सांप भी करता है, एक कीड़ा मकोड़ा भी करता है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने कहा कि मनुष्य अपने अगर करते हुए को भूल जाए तो वो किसी जानवर के समान है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि
0: जानवर समान नहीं है मैडम, जानवर से गया बीता है, जानवर से डाउनफॉल है। जानवर तो मतलब कोई गाय ने किसी ने धरती में कितना गंदगी नहीं कही, आज हम जानवरों की कंटीली बाड़ियां लगा के हिरणों को खत्म कर दिया। अब हमारे जोधपुर की तरफ हिरण खूब सारे थे हमारे खेतों में, हमारे घर के जब रात को बाहर घर के आगे खाट बिछा के सोते थे ना तो पास में हमारे चारों तरफ हिरण बैठे रहते। अब क्या हुआ, हर लोगों ने कंटीले तार लगा दिए तो हिरण को जो पालतू कुत्ते हैं और जो गलियों में घरों में होते हैं वो चार पांच का झुंड बना के हिरणों को मार देते, क्यों वो जैसे वो हिरण दौड़ने की कोशिश करता सामने जाली आती थी, और कुछ लोग तो जाली भी इतनी बारीक लगाते हैं, सफेद जाली लगाते हैं वो प्लास्टिक वाली, उसमें और भी फंस जाता है, उसको दिखती भी नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं छलांग लगाता है लेकिन जाली में फंस जाता है, कुत्ते आ जाते हैं। अब हिरणों की तो टोली खत्म हो गई, अब किसकी आई है, जिसको अपन कहते हैं ना सूरों की। अब जहां भी देखो, जैसलमेर देखो, बाढ़ में देखो, बीकानेर देखो, हरे कहते हैं कि यार हमारे खेतों में सूअर बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो चीज सुंदर थी उसको गायब कर दिया, तो अब सूअर ही आएंगे।
1: बिल्कुल, जानवरों के घर तक हम पहुंच गए, उनके लिए जगह ही नहीं बची है।
0: अब बिल्कुल सही है, जानवरों का घर तक पहुंच गए, जानवर जाए कहां, तो जानवर आपके घर में आएंगे, और जानवरों की अच्छी क्वालिटी को खत्म कर दिया तो गंदी क्वालिटी है जो सूअर है वो वही आएंगे, अच्छी क्वालिटी जो हिरण थे, जो लोमड़ियां थी, जो वन बिलाव थे, जो भी है, जो हमारे प्रकृति के लिए फायदेमंद थे, उनको हमने उनकी जगह ही नहीं छोड़ी, तो अब जो गलियों में गंदगी में बैठे रहते हैं वो हमारी तरफ बढ़ने लगे।
1: बिल्कुल,
0: वही अपने साथ होता है, हम आगे अच्छे संस्कारों को इग्नोर करेंगे तो बुरे संस्कार तो स्वतः ही आ जाएंगे, वो तो कहीं गाली तो बच्चा कहीं भी सीख जाएगा, लेकिन एक कीर्तन भजन सत्संग या एक अच्छी पोएम याद कराने में हमें कितने दिन लग जाएंगे, और गाली तो एक मिनट में आके बोल देगा, डेढ़ दो साल का बच्चा, तीन साल का बच्चा इतनी भद्दी गाली बोलेगा आप अचंभित हो जाओगे, ये कहाँ से सीख के आगे। तो बुरी चीज तो हरेक सीखता है, आज मैं इतना काम करता हूँ, मेरा इतना मैं वायरल नहीं हूँ, और एक दिन मैं किसी से झगड़ लूँ तो एक मिनट में मेरा वीडियो इतना वायरल होगा दुनिया देखती रह जाएगी, यार ये आदमी ऐसे क्यों झगड़ रहा है, और जगह जगह देखो ये पर्यावरणविद खमुराम विष्णु, देखो इसका एक रूप, ये देखो यूं कर करके वीडियो आएंगे।
1: जी सर, नेगेटिव चीज जल्दी वायरल होता है, लेकिन आपने अपने हौसलों के साथ उड़ान आपने भरा है और अभी तक भी आप उड़ रहे हैं पर्यावरण के कार्य के क्षेत्र में पॉजिटिविटी के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैंने मेरा संकल्प ले रखा है, जब तक जिंदा रहूंगा धरती माँ को देता रहूंगा, और ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, क्यों धरती ने मुझे ऐसा जीवन दिया, मनुष्य मैं अपने आप को मनुष्य नहीं मानता, भगवान का रूप ही मानता हूँ, क्योंकि भगवान में मुझ में कोई फर्क नहीं है, भगवान में इतनी है कि भगवान दूसरों को देने का प्रयास करता है, मैं कभी कभी चूक जाता हूँ, इतनी कमी है, भगवान हमेशा हर एक को देता है और मैं कभी कभी देने में चूक जाता हूँ, लेकिन थोड़ा प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ देने का प्रयास करूँ। बाकी मनुष्य ही धरती का भगवान है, भगवान अपन कहते भी हैं कि एक मेरे को आज देवता मिला नहीं तो मैं आज पहुँच ही नहीं पाता, मैं बस चूक गया था, मैं फलन जगह ऐसे हो गया था, फंस गया था, लेकिन एक क्या मालूम देवता कहाँ से आया मेरे को, वहां से उसने बिठाया, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। हम कभी कभी वर्तमान सुनाते ही रहते हैं, तो मनुष्य में

0: भगवान विराजमान होते हैं, मनुष्य में ही भगवान और देवता रहते हैं।
1: जी सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि विदेशों से भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या सीखना चाहिए भारत को? आप विदेश भी देखे हैं, भारत भी आपने देखा।
0: ऐसी बात है मैडम, विदेशों में अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा है और अपने आप इग्नोरेंस है, अपने आप इग्नोरेंस है, क्योंकि अपन इतनी इतनी अलग अलग जाति प्रथा में बंट गए हैं और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और कुछ लोग दूसरे कम्युनिटी दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, तो वो देखे हम यहाँ क्यों ऐसी क्यों हम भाव रख रहे हैं, हमें क्या करना है वो क्या करना है, समझाएं तो समझे नहीं तो अपन समझाएं तो वो कहते क्या ठेका ले रखा है तुमने समझाने का। लेकिन वहाँ दूसरे विदेशों में ऐसा नहीं है, वो अपने देश के प्रति भावना है और अपने देश को साफ रखना चाहता है और अपने यहाँ ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है और एक अनपढ़ और इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है कि हमें हमारा क्या लेना हमारा क्या करना, सरकार अपना आप करेगी, हम तो पैसा हम हमारे ऊपर टैक्स लेती है वो लेती है वो लेती है, मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूँ और दूसरा करे, आप दूसरा ऐसा कैसा, मेरा मुंह मैं ही नहीं धोऊं तो दूसरे को क्या पड़ी है मेरा मुंह धोए के धोएगा, हाँ छोटा हूँ मेरी माँ है मैं छोटा हूँ मेरी माँ धो दी, लेकिन मैंने उम्र पा ली मैं 25 का हूँ 15 का हूँ, माँ आके थोड़ी मेरा मुंह धोएगी। तो ये जब तक हम देश और अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, कर्तव्य को हम इग्नोर करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र गंदा होगा और भी ज्यादा बीमारी आएगी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनको कोई लेना देना नहीं है अपने यहाँ गंदगी हुए या गंदगी सफाई रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर का आदमी आके जब बांग्लादेश को क्या मतलब कि भारत की स्वच्छता रहे या नहीं रहे, या पाकिस्तानी क्यों आके अपने बारे में सोचेगा भारत साफ रहे, हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्र को साफ रखे, अपने गांव को साफ रखे, घर को साफ रखे, और यही होगा तब होगा नहीं तो नहीं होगा। हो सकता है किसी कुछ फोर्स कॉलोनी में कोई विकास समिति बना दी और पर्टिकुलर एरिया आदर्श एरिया बना के उस जगह विशेष को साफ रख लिया हो, लेकिन पूरे भारत को कोई साफ नहीं रख सकता जब तक प्रत्येक आदमी नहीं जागेगा और प्रत्येक आदमी का कर्तव्य नहीं समझेगा जब तक हम साफ रखने में बड़े ही मुश्किल है। जरूर हम अब मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत की जगह जगह वो कचरा टैक्सी चला दी, लेकिन कचरा टैक्सी में नहीं डालते हैं लोग, कचरा डालते नहीं टैक्सी में, वो देखे 50 रुपये लग जाएंगे 100 रुपये लग जाएंगे या 80 रुपये लग जाएंगे, अब ऐसे लोगों से हम कैसे सफाई कराएं? 80 रुपए का गुटखा खा लेगा, जर्दा खा लेगा, पान खा लेगा और कोई रात को ड्रिंक कर लेगा, लेकिन कचरा पत्र का महीने का 80 रुपए कचरा वाले गाड़ी को वो नहीं देगा और कचरा खुले में फेंक देगा और खाता चलता जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लास्ट बात कह के मेरी बात पूरी करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है पहले थूकता है कोने में और फिर चाहता है कि मेरा इलाज बहुत बढ़िया हो जाए, अरे कैसे हो जाए, मतलब अब मैं एक बात लास्ट में और कहता हूँ मेरे को याद आ जाती है क्या करूँ, आपने कहा ही कह दिया आप कुछ याद आए जरूर बताना। अब गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, आप समझ गए, गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, वो नाराज हो गए आपस में झगड़ने लगे, एक गिरगिट ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या कि ये मानव मनुष्य आदमी बदले जैसे कैसे रंग बदल रहे हो, गिरगिटों ने कहा आदमी बदले जैसे क्यों रंग बदल रहे हो, मतलब गिरगिटों ने हमें उपाधि दे दी कि मनुष्य बहुत ज्यादा रंग बदल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता तो अलग तरह से बिहेव करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता तो अलग बिहेव करता है, और अगर वही एयरपोर्ट पर जाता है तो अलग बिहेव करता है, मतलब जगह जगह बदल रहा है, जगह जगह विचार अपनी एक रूपता रखता ही नहीं है, बदलता जा रहा है, और वही देख लो भी कहीं यहाँ बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी 100, 200, 300 रुपए लग जाएगी तो बड़ी बड़ी होटलों में जाता है तो इतना सीधा हो जाता है, गांव का गंवार होता है भी वो कहीं नहीं थूकता है, बीड़ी भी नहीं सुलगाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पलंग के पास में मरीज बैठा सो रहा ऊपर और नीचे बैठा बीड़ी पी रहा है, समझता सब है लेकिन करना नहीं चाहता, वो रंग बदल लेता है, सब समझते हैं, छोटा बच्चा भी समझता है, मैंने आपको कहा था छोटा बच्चा भी समझता है कि क्या कौन सी चीज कहाँ रखनी है कौन सी कहाँ रखती है। अब ये जब तक हम राष्ट्र को बच्चे बच्चे को नहीं समझाने में सफल नहीं होंगे, छोटे बच्चे परिवार के लोगों को मानेंगे नहीं ये गंदगी ये सही है, बच्चा आगे बढ़ेगा युवा आगे बढ़ेगा तभी होगा, बूढ़ों से हम कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने तो अपनी आदत बना ली है, जो 25-30-40 साल से सिगरेट पी रहा है उसको हम पैर पकड़े भाई तू सिगरेट छोड़ दे मरे नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो शुरू कर रहा है उसको रोक दे कहाँ सिगरेट पी रहा है, तो वो हो सकता है वो हमारी बात मान ले, उसको हम प्रोत्साहित करें तो मान ले, ऐसा हो सकता है।
1: कुछ अंतिम क्षण में हम पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव है ये इस प्रोग्राम का, तो कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगी, तो एक शब्द में पर्यावरण आपके लिए क्या है, एक शब्द में?
0: एक शब्द में पर्यावरण यही है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो देना सीखना पड़ेगा, प्रकृति को हरा भरा और साफ सुथरा रखना पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि हम तो कुमोती मरेंगे, हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं, तो फिर जैसा जियो वैसा जियो, मौत बहुत नजदीक आ रही है, मौत दौड़ती आपको झपट रही है और मौत आपको कम उम्र में 25, 30, 35 और हमारी एज 50 से नीचे हो जाएगी, जो जीने की उम्र है ना वो बहुत कम हो आ जाती है, बीमारी है।
1: पर्यावरण मतलब देना है,
0: पर्यावरण का मतलब लेना नहीं है, पर्यावरण मतलब देना, अगर आप जो दोगे वो लौट के आएगी। जैसे इको है, इको आप वैसे इको सिस्टम बोलते हैं, इको है पर्यावरण क्या, इको जैसे अपन बोलेंगे, जैसे कुएं बोलते हैं तो वापस आती आवाज आती है, वैसे ही ये पर्यावरण है, आप जो दोगे वो वापस मिलेगा। मैं घर के बाहर कचरा फेंकूंगा तो उड़ के घर के अंदर आएगा, नहीं आएगा तो बाहर जाऊंगा तब दिखेगा, और मैं घर के अंदर बाहर साफ रखूंगा तो बाहर जाऊंगा तो सफेद दिखेगी, अंदर भी हरियाली दिखेगी सफेद दिखेगी। वही मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा तो मैं सुंदर लगूंगा, अच्छा लगूंगा, मन में शांति होगी। मैं गंदा कपड़ा पहनूंगा तो लगेगा यार आज क्या पहन लिया, लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग तो दूसरों के लिए भी पहनते हैं। और दूसरी एक पर्यावरण की वो बढ़ती हुई, मैं एक बार लास्ट बात कर देता हूँ, जो फैशन है ना ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। ऐसी ऐसी बहनें हैं जिनके, जैसे जयललिता जब वो सस्पेंड हुई थी मुख्यमंत्री पद से हटी थी तो अगर 1000 जूतों की जोड़ी है, वो अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों से, वैसे हमारी बहनों की भी है, हर मिनट में नया कलर लेके आती है, पहनती है हर शादी, एक ड्रेस को दोबारा पहनने में शर्म महसूस करती है, जबकि हमारे पूर्वज उसकी राली बनाते थे और धोती पुरानी होती थी, धोती का ऊपर कवर चढ़ा के और धोती के अंदर कपड़े भर के रालियां बनाते थे, वो तो हम भूल गए। अब बूढ़े बड़े जावे ना तो उनके, जैसे मेरे दादी जी चले गए या मेरे नानी जी चले गए तो नानी जी के जितने भी कपड़े हैं ना बाहर चौराहे में या कहीं जैसे भी हो कहीं ले जाके फेंक देते हैं, उन कपड़ों को काम नहीं लेते, जबकि वो पुराने लोग थे, गर्व समझते थे मेरे दादा की धोती है, मेरी नानी की साड़ी है, राली बनाएंगे या बैठने की वो बनाएंगे। तो जब तक हम इस प्रकार का सिस्टम नहीं लाएंगे, भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, देखा देखी करेंगे तो देखा देखी करे तो मरे नहीं तो हुए रोग।
1: तो मिनिमलिज्म की बात अब कर रहे हैं और जो हमारे पुरानी संस्कृति,
0: बिल्कुल सही है। एक आदमी ने कहा कि धरती के सबसे सुखी आदमी सभी, एक राजा बहुत था, वो बहुत ज्यादा दुखी था, कितने वेद बुला लिए, सब कुछ बुला लिए लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने, एक ने तो चलता रहा चलता कहा मैं ठीक कर सकता हूँ, ये कैसा, ये जो सबसे संतुष्ट आदमी है उसका शर्ट लाके इसको राजा को पहना दियो। तो राजा ने दूते छोड़े तो कोई संतुष्ट था ही नहीं, कोई अपनी पत्नी से दुखी था, कोई पति से दुखी थे, कोई माँ से, कोई भाई से, कोई पड़ोसी से, कोई सब लोग दुखी थे। एक आदमी नदी किनारे बैठा था, वो एकदम खुश था, एकदम मस्त था। उससे पूछा राजा के दूतों ने, भाई तुम कैसे हो गए, मैं एकदम मस्त हूँ, एकदम मस्त, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, चिंता कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, तो तुम्हारा शर्ट दो मुझे, तुम्हारा बुशर्ट दो, तुम्हारा पहना हुआ कमीज दो, कि मेरे पास तो हम कमीज है कहाँ, बगैर कमीज बेटा मस्त मस्त मोला बेटा था। तो संसाधनों से, कपड़ों से और संपत्ति से आदमी कोई सुखी नहीं रह सकता
1: जी,
0: सुख है विचारों में
1: और पर्यावरण के प्रति आपके समर्पण भाव आपको सुख देता है। तो आपका पसंदीदा वृक्ष क्या है सर?
0: मेरा पसंदीदा वृक्ष तो ये खेजड़ी है, जो राजस्थान की राज्य वृक्ष है, जिसकी अब सोलर प्लांट की वजह से निरंतर कटाई हो रही है, तो हम तो यही कहेंगे भी खेजड़ी बढ़ाओ, क्योंकि खेजड़ी की लूंग होता है तो वो भी खाद करता है, खेजड़ी के खोके होते हैं वो हिरणों के और पशुओं और जानवरों के लिए खाने, ऊंट के लिए भी खाने के लिए काम आता है, और सांगरी से हम बहुत अच्छी तरह पंचकुटा की सब्जी बनाते हैं। वैसे जो अपने भारतीय संस्कृति में दूसरे जो पेड़ है, पीपल है, बरगद है, जो अपने पेड़ है वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं, और नए नए पेड़ लगाए, कोनो कोरपस नया पेड़ आया है जिसे सब जगह बैन कर रखा है, लेकिन राजस्थान में कुछ जगह लगाए जा रहे हैं जो 12 मास है, लेकिन वो प्रकृति का इतना शोषण कर रहा है, जैसे बबूल पेड़ों का राक्षस है। पेड़ों में मनुष्य में जो राक्षस होता है ना, वैसे पेड़ों का राक्षस बबूल है, किसी को नहीं छोड़ा है, हर धरती पहाड़ को नहीं छोड़ा, नदी को नहीं छोड़ा, सड़क किनारे को नहीं छोड़ा और घास को नहीं छोड़ा। जानवर आज अगर गौशाला में है तो बबूल की वजह से है, बबूल उगने नहीं देता घास को
1: जी। ओके,
0: तो ये बात है जो मैंने
1: है, और बबूल को हमें जहाँ कम लगाना चाहिए अगर देख रहे हैं तो उसे,
0: बबूल तो छोटे बदमाश है, वो राक्षस है, राक्षस तो अपने आप ही पनपते हैं मैडम, बबूल को लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही, कितनी ऊंची पहाड़ी हो, कैसे हो, कहीं हो, खेत हो, जमीन हो,
1: यहाँ पे लगा हुआ है, हटा के हम दूसरे वृक्ष लगा सकते,
0: इतने संसाधन अपने पास है ही नहीं, लोग रुचि भी नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं ले रही है, प्राइवेट वाले नहीं ले रहे हैं, अपने क्या करना, और बबूल फैलता जा रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है कि पूरी सृष्टि को खत्म करेगा। अरे इतने बबूल हो गए, आपने देखा, आपसे क्या छिपा है, मैं आपको क्या बताऊं कि हो सकता है पहाड़ी आया जो माउंट आबू में उस तरफ कम होंगे, लेकिन हमारे मरुस्थल में तो इधर बहुत है, सड़कों के किनारे और जहाँ खाली हो या नाडी के किनारे हो या तालाब के किनारे हो, बहुत सारे लगते जा रहे हैं और पूरी जमीन को, घास की जमीन को बबूलों ने घेर रखा है।
1: जी सर, जल, जमीन, आसमान, सबसे पहले किसको बचाना चाहेंगे?
0: मैं तो कहूँ पांच तत्वों को बताना चाहिए। पांचों तत्व है वही भगवान है, इन पांचों तत्वों जो जल जमीन आकाश वायु अग्नि,
1: लेकिन एक चूज करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले किसको बचाएंगे?
0: अब जल को बचाएंगे।

0: और भारत को हरित बनाने का एक उपाय क्या है आपको लगता है?
1: सभी संकल्प लेंगे तब होगा, बाकी अकेले आदमी सब संकल्प लेंगे कि हम हमारी धरती माँ को हरा भरा रखें, हो गया। बाकी कोई ऐसा उपाय नहीं है, किसी के पास जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा डंडा नहीं है कि भारत को हरा भरा बना दे। जब मनुष्य जागेंगे, सब जागेंगे, तभी होगा। ऐसा कोई ऐसा आदमी, एक देवदूत नहीं पैदा होगा या पहुंच भी नहीं पाएगा कि हरे को हरा बना दे। मोदी जी खूब कहते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन अब कितनी सरकारी मशीनरी है, वन विभाग है, कितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े अफसर है, जो IAS के कैडर वाले होते हैं, लेकिन हजारों पेड़ लगते हैं, लेकिन पेड़ों को बड़ा करने वाला कोई नहीं है। लगाने वाले खूब है, आत्मा पेड़ों को मारने वाले खूब है। नर्सरी से लगाते हैं और मर जाते हैं बस।
0: जी सर,
1: मेरे को कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि आपने कितने पेड़ बड़े किए, ये क्वेश्चन आपने गलत ही पूछा है। वो कहे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं आप ये बोलो कितने पेड़ लगा के बड़े कर दिए, ऐसे पूछो। मैंने अगर 50 पेड़ बड़े कर दिए तो अपने आप में बहुत, मैं अपने आप को यूं गर्व गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैंने 5,000
0: लगाना नहीं, बट उनका देखभाल भी करना है सर, ऐसा बोल।
1: हाँ, लगा के देखभाल करके बड़ा करे, और बड़ा दिखना चाहिए, लगना चाहिए। 25 साल तक आप हो तो भी आपको आपके लगाया हुआ पेड़ नजर आना चाहिए, तब तो है। आप लगाया पेड़ है ही नहीं, और आपके तो मैंने तो मेरे जीवन में 50,000 पेड़ लगा दिए। अरे भाई है कौन सी जिंदा कितने है वो तो मालूम नहीं।
0: जी सर, आपके बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है एक और कार्यक्रम भी कम पड़ेगा, और इतने सारे उपलब्धियां हैं आपके पास, इतने सारे पुरस्कारों की सूची भी है मेरे पास।
1: बिल्कुल सही है, आपकी तरफ से मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, आई विल बी ऑनर्ड बाई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुझे वहाँ का बहुत बड़ा पुरस्कार देने जा रही है। गुरु जम्बेश्वर
0: को बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन सर।
1: धन्यवाद मैडम। गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा।
0: हिसार से। जी सर, जी सर, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, और फिर से आपको एक और पुरस्कार से नवाजा जाएगा।
1: ये सब प्रभु का खेल है, प्रभु ही है, मैं उनको ही समर्पित करता हूँ। जो भी मुझे धन्यवाद देते हैं तो मैं धन्यवाद भगवान को दो कि मुझे मनुष्य बनाया है, इसे ऐसी समझ दी है। तो एक्चुअली में काम भगवान कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है, तो मैं तो हमेशा ऋणी रहता हूँ। मैं परमात्म भगवान के साथ शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। वो आपने कहीं सुना होगा, एक कोई सेठ दान दे रहा था और आंखें नीचे हो रही थी, तो किसी ने पूछा कि दान दे रहे हो इतना अच्छा करो, फिर नीचे क्यों आंखें कर रहे हो, क्या देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ एक बीच की माध्यम हूँ, इसलिए लोग मेरा समझ रहे, तब मेरे को शर्म आ रही है, इसलिए आंखें नीचे कर रहा हूँ। तो मैं भी अपने आप को, लोग मेरे को कहते हैं आप अच्छा करते हो, तो मेरे को लगता है कि करने वाला भगवान है, मैं नहीं हूँ। मुझे समझ दी, अकल दी है तो भगवान ने दी है। मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। और आई एम डूइंग समथिंग ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जाम्बोजी एंड ऑलमाइटी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, और आपके समर्पण भाव को सलाम है, और आपकी कार्य क्षमता को सलाम है, देशभक्ति को भी सलाम करते हैं आज हम रेडियो मधुबन के माध्यम से। और दोस्तों, वक्त हो गया है यहाँ से अलविदा कहने का, तो खम्मूराम जी आपका बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनुभवों को, संघर्षों को, प्रेरणादायक विचारों को भी हम सलाम करते हैं।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए संपर्क किया, मुझसे बातचीत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा मुझे शक्ति दे, समझ दे, ज्ञान दे, अकल दे, कि मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षणों तक धरती माँ को कुछ न कुछ न कुछ न कुछ ऐसा दूँ कि मेरी माँ मुझ पर गौरवान्वित तो हुए कि वाह बेटा, मैंने कुछ जन्म दिया है तो कुछ समझ के दिया, तो उसके काबिल निकला।
0: जी बिल्कुल, आप सर काबिल है, और धरती माता आप के लिए गौरवान्वित है ही।
1: मैं कहता भी रहता हूँ कि हमारी तीन माँ, एक माँ जो हमें दूध पिला के बड़ा करती है, दूसरी माँ गौ माता होती है, तीसरी सब माओं की बड़ी माँ, द ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट मदर, वो कौन होती है, वो धरती माँ होती है, जो सब माओं को दूध पिलाती है, सब माओं को भोजन देती है, वो होती है धरती माँ। हम बड़ी वाली माँ नाराज हो जाएगी, छोटी वाली माँ जिंदगी नहीं रह पाएगी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही, अगर बड़ी वाले माँ को नाराज नहीं करना है हमको, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, थोड़ा और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहीं पर रुकना चाहते हैं,
1: समय की मांग है, दिस इज द नीड ऑफ आवर, ये समय की मांग है, और समय के हिसाब हम काम नहीं करेंगे तो फिर बेहाल होना ही है। पानी पीना है, पानी नहीं पी रहे हैं तो कह रहे हैं वो डॉक्टर कहेंगे भी पानी की कमी होगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा।
0: सही सही बात है, तो समय की मांग को देखते हुए हमें पर्यावरण के लिए एक कदम जरूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी प्रेरणादायी बातों के लिए, और आपके बारे में जानकर के हमारे श्रोताओं को भी बहुत प्रेरणा मिली है, और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से।
1: मैं आपका ऋणी हूँ, और प्रभु ने चाहा तो आपने जो भी आशा किया उसका मैं पालन करूंगा मेरे जीवन में।
0: धन्यवाद सर, तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

0: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान साहित्यकार से परिचित करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जी हाँ, आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है वृंदावन लाल वर्मा जी को।
1: श्रोताओं, हिंदी साहित्य के गगन में वृंदावन लाल वर्मा का नाम एक उज्जवल नक्षत्र के समान है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों को इतनी ऊंचाई प्रदान की कि उन्हें हिंदी के सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई। उनके उपन्यास झांसी की रानी और मृगनयनी ने हिंदी साहित्य में नए कीर्तिमान स्थापित किए। 80 वर्षों के अपने जीवन काल में उन्होंने 70 से अधिक पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य को अपार समृद्धि प्रदान की।
0: वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक कुलीन श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में हुआ था। यह परिवार परंपरागत रूप से शिक्षा और संस्कृति को महत्व देने वाला था। उनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद वर्मा था। श्री अयोध्या प्रसाद झांसी के तहसीलदार के कार्यालय में रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। यह एक सम्मानजनक सरकारी पद था। पिता का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता था, जिसके कारण वृंदावन लाल वर्मा का बचपन विभिन्न स्थानों पर बीता।
1: वृंदावन लाल वर्मा का परिवार अत्यंत रूढ़िवादी था, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था। उनके पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाएं। पिता के स्थानांतरण के कारण वृंदावन लाल वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा विभिन्न स्थानों पर हुई। उन्होंने झांसी, ग्वालियर और आगरा जैसे स्थानों पर अध्ययन किया। इस भ्रमणशील जीवन ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और लोगों से परिचित कराया, जो उनके भावी साहित्यिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।
0: बचपन से ही वृंदावन लाल वर्मा में पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के प्रति गहरी रुचि थी। वे घंटों रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियां सुनते रहते थे। उनके विद्यागुरु स्वर्गीय पंडित विद्याधर दीक्षित थे, जिन्होंने उनमें संस्कृत और इतिहास के प्रति रुचि जागृत की। वृंदावन लाल वर्मा में लेखन की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। जब वे मात्र 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी उन्होंने 3 छोटे छोटे नाटक लिखे और उन्हें इंडियन प्रेस प्रयाग को भेजा। उनकी प्रतिभा को देखते हुए प्रेस ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप 50 रुपये प्रदान किए। उस समय यह एक बड़ी राशि थी। यह उनकी साहित्यिक यात्रा की पहली उपलब्धि थी।
1: मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वृंदावन लाल वर्मा को घर की आर्थिक स्थिति के कारण लिपिक का काम करना पड़ा, लेकिन उनके मन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। विशेषकर वे वकील बनना चाहते थे। कुछ समय के बाद उन्होंने लिपिक के पद से त्यागपत्र दे दिया और आगे की पढ़ाई के लिए विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में दाखिला ले लिया। ग्वालियर से बीए करने के उपरांत उन्होंने आगरा जाकर एलएलबी की पढ़ाई प्रारंभ की।
0: कानून की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी में वकालत शुरू की, लेकिन शुरुआती दिन बहुत संघर्षपूर्ण रहे। उन्हें प्रारंभ में मुकदमे नहीं मिलते थे, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वकालत के साथ साथ उन्होंने लेखन भी जारी रखा। दिन में वकालत की तैयारी करते और रात में लिखते। उन्होंने अपनी आत्मकथा अपनी कहानी में अपने इस संघर्षमय जीवन का विस्तृत वर्णन किया है।
1: धीरे धीरे उनकी वकालत जमने लगी। वे एक सफल वकील के रूप में प्रतिष्ठित हुए, लेकिन उनका मन हमेशा साहित्य में ही रमता था। वे कहते थे कि वकालत मेरी जीविका है, लेकिन साहित्य मेरा जीवन। वृंदावन लाल वर्मा की पहली महत्वपूर्ण रचना सेनापति उदल नामक एक नाटक था, जो वर्ष 1909 में प्रकाशित हुआ। यह नाटक बुंदेलखंड के वीर सेनापति उदल की वीर गाथा पर आधारित था, लेकिन इस नाटक की नियति विचित्र रही। ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावना थी।
0: यह घटना वृंदावन लाल वर्मा के लिए निराशाजनक थी, लेकिन इसने उनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति और अधिक प्रतिरोध की भावना जगाई। इसके बाद उन्होंने कई रचनाएं लिखी, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित एक मौलिक ग्रंथ, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद। ये रचनाएं उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती हैं। वे मौलिक लेखन के साथ साथ अनुवाद में भी रुचि रखते थे।
1: वर्ष 1927 में वृंदावन लाल वर्मा ने अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास गढ़ कुंडार लिखा। इस उपन्यास को उन्होंने केवल 2 महीने में पूरा किया। यह उपन्यास बुंदेलखंड के मध्यकालीन इतिहास पर आधारित था। गढ़ कुंडार की सफलता ने वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में स्थापित कर दिया। पाठकों और समीक्षकों ने इस उपन्यास की भूरी भूरी प्रशंसा की।
0: ১৯২৭ का वर्ष उनके लेखन का स्वर्णिम वर्ष था। इस एक ही वर्ष में उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं पूर्ण की, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, हृदय की हिलोर आदि। यह उनकी अद्भुत लेखन क्षमता का प्रमाण था। 1930 में उन्होंने विराट की पद्मिनी नामक उपन्यास लिखा। यह उपन्यास भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित था और इसे भी पाठकों का भरपूर प्यार मिला।
1: इसके बाद कई वर्षों तक उनका लेखन स्थगित रहा। इसके कई कारण थे, जैसे व्यस्त वकालत, पारिवारिक जिम्मेदारियां और शायद कुछ निजी परिस्थितियां। वर्ष 1939 में उन्होंने पुनः सक्रिय रूप से लेखन शुरू किया, जिसमें उन्होंने धीरे धीरे व्यंग, जो वर्ष 1939 में प्रकाशित हुआ, वर्ष 1942 से 1944 के दौरान कभी ना कभी, और मुसाहिब जू की रचना की।
0: 1946 में वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी सबसे प्रसिद्ध और कालजयी कृति झांसी की रानी लिखी। यह उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित था। इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य में नए कीर्तिमान स्थापित किए। यह उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पर दूरदर्शन धारावाहिक बना, इस पर फिल्म बनी और भारत सरकार ने इसके लिए उन्हें 2,000 रुपये का पुरस्कार दिया। यह उपन्यास अंग्रेजी, चेक, स्पेनिश, जर्मन और चीनी भाषाओं में भी अनुवादित हुआ। यह उपन्यास आज भी रानी लक्ष्मीबाई पर लिखा गया सबसे प्रामाणिक और श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है।
1: इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा ने एक के बाद एक श्रेष्ठ उपन्यास लिखे। मृगनयनी 1950 में लिखा हुआ उनका यह उपन्यास मुगल सम्राट जहांगीर और उनकी प्रेमिका अनारकली की कथा पर आधारित है। इस पर भी एक धारावाहिक और फिल्म बनी। टूटे कांटे यह राजपूत वीरता की गाथा है। कचनार में बुंदेलखंड के इतिहास पर आधारित हमें जानकारी मिलती है। वहीं माधवजी सिंधिया, ये महान मराठा योद्धा माधवराव सिंधिया के जीवन पर आधारित है।
0: महारानी दुर्गावती गोंडवाना की वीर रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित कृति थी। यह उपन्यास अंग्रेजी में रानी दुर्गावती द फॉरगॉटन लाइफ ऑफ ए वॉरियर क्वीन ऑफ गोंडवाना एम्पायर शीर्षक से अनुवादित हुआ। अहिल्याबाई होलकर राज्य की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर पर केंद्रित थी। भुवन विक्रम यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित था। रामगढ़ की रानी बुंदेलखंड के इतिहास पर और टूटे धनुष राजपूताना के इतिहास पर केंद्रित था।
1: वृंदावन लाल वर्मा ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों की एक मजबूत परंपरा स्थापित की। उनसे पहले भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा ने इस विधा को नई ऊंचाई प्रदान की। आम तौर पर कहा जाता है कि ऐतिहासिक उपन्यास में या तो इतिहास मर जाता है या उपन्यास, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा ने इस मान्यता को झुठला दिया। उनके उपन्यासों में इतिहास और कल्पना का संतुलित समन्वय है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को बनाए रखते हुए रोचक कथानक बुना।
0: वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चितेरा कहा जाता है। उनके अधिकांश उपन्यासों की पृष्ठभूमि बुंदेलखंड का मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है। उन्होंने बुंदेलखंड की वीरता और शौर्य की गाथाएं, सांस्कृतिक परंपराएं, प्राकृतिक सौंदर्य और लोक जीवन सबको अपने उपन्यासों में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया।
1: वृंदावन लाल वर्मा के चरित्र चित्रण की विशेषता है कि उनके पात्र मात्र ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं रहते बल्कि जीवंत तो मानवीय चरित्र बन जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, अनारकली, ये सभी पात्र पाठकों के मन में जीवित हो उठते हैं। वृंदावन लाल वर्मा की भाषा सरल और प्रवाहमय है। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग है, बुंदेलखंडी शब्दों का समावेश है और वर्णनात्मक शैली अत्यंत प्रभावशाली है।
0: उनकी शैली इतनी मनोहारी थी कि पाठक उपन्यास में पूरी तरह से डूब जाता था, इसीलिए उन्हें हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट कहा गया। वृंदावन लाल वर्मा केवल उपन्यासकार ही नहीं थे, उन्हें इतिहास, पुरातत्व, कला, मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने इन विषयों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने बुंदेलखंड के विभिन्न किलों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, वहां के शिलालेखों और स्थापत्य का अध्ययन किया। यह सब उनके उपन्यासों की प्रामाणिकता में दिखाई देता है।
1: उपन्यासों के अतिरिक्त वृंदावन लाल वर्मा ने निबंध और लघु कथाएं भी लिखी। उनके निबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों पर केंद्रित थे। वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी कहानी नामक एक आत्मकथा भी लिखी। इसमें उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन, साहित्यिक यात्रा और अनुभवों का विस्तृत वर्णन किया है। यह आत्मकथा उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: वृंदावन लाल वर्मा केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक समर्पित समाज सेवी भी थे। वे प्रेम को जीवन का सबसे आवश्यक अंग मानते थे। उन्होंने जुनून की सीमा तक सामाजिक कार्य किए। उन्होंने वकालत व्यवसाय से कमाई गई समस्त पूंजी समाज के कमजोर वर्ग के नागरिकों को पुनर्वासित करने के कार्य में लगा दी। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा की।
1: वृंदावन लाल वर्मा एक सरल, विनम्र और उदार व्यक्ति थे। वे दिखावे से दूर रहते थे। उनका जीवन सादगी का प्रतीक था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनमें अद्भुत धैर्य और मेहनत की क्षमता थी। वे घंटों बैठकर लिखते रहते थे। उनकी एकाग्रता और समर्पण अनुकरणीय था। वृंदावन लाल वर्मा की साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए।
0: भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 1963 में सम्मानित किया। डीलिट मानद आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। साहित्य वाचस्पति साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की।
1: सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। वहीं भारत सरकार ने झांसी की रानी उपन्यास के लिए 2000 रुपए का विशेष पुरस्कार दिया। साथ ही भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। इन सम्मानों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं ने भी उन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया।
0: वृंदावन लाल वर्मा अपने जीवन के अंतिम दिनों तक सक्रिय रूप से लेखन में संलग्न रहे। 80 वर्ष की आयु में भी उनकी लेखनी थमी नहीं थी। 23 फरवरी 1969 को इस महान साहित्यकार ने अंतिम सांस ली। उनके निधन से हिंदी साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे देश ने एक महान साहित्यकार को खो दिया।
1: वृंदावन लाल वर्मा ने अपने पीछे एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ी। 70 से अधिक प्रकाशित पुस्तकें, कई अप्रकाशित रचनाएं, हिंदी ऐतिहासिक उपन्यास की मजबूत परंपरा। उनके उपन्यास आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य का अध्ययन होता है। शोध छात्र उन पर शोध करते हैं।
0: वृंदावन लाल वर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महान स्तंभ के रूप में स्थापित हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों को नई ऊंचाई प्रदान की। उनके उपन्यासों ने लाखों पाठकों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और वीरता से परिचित करवाया। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और साहित्य साधना का उदाहरण है। वकालत के व्यस्त जीवन में भी उन्होंने साहित्य को समय दिया और 70 से अधिक पुस्तकें लिखी।
1: आज भी जब कोई झांसी की रानी पढ़ता है तो रानी लक्ष्मीबाई का वीरता भरा जीवन आंखों के सामने साकार हो उठता है। यही वृंदावन लाल वर्मा की महानता है। उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है और सदा रहेगा। वृंदावन लाल वर्मा ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक निबंध और लेख प्रकाशित किए। जो विविध विषयों पर केंद्रित थे, जैसे साहित्य और समाज, इतिहास और संस्कृति, बुंदेलखंड का इतिहास, कला और स्थापत्य।
0: वृंदावन लाल वर्मा अपने उपन्यास लिखने से पहले गहन शोध करते थे। वे ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करते, शिलालेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों की जांच करते, संबंधित स्थानों का भ्रमण करते, स्थानीय किंवदंतियों और लोक कथाओं का संग्रह करते। झांसी की रानी लिखने से पहले उन्होंने झांसी के किले, रानी महल और आसपास के क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने 1857 के संग्राम से जुड़े तमाम दस्तावेजों और अंग्रेजी अभिलेखों का भी अध्ययन किया।
1: वृंदावन लाल वर्मा की सबसे बड़ी कला थी ऐतिहासिक तथ्यों को बनाए रखते हुए रोचक कथानक बुनना। उन्होंने इतिहास की सूखी तथ्यात्मकता को जीवंत कथाओं में बदल दिया। उनके उपन्यासों में मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं यथावत रहती थीं, प्रमुख ऐतिहासिक पात्र प्रामाणिक रहते थे, काल्पनिक पात्र और घटनाएं केवल कथा को रोचक बनाने के लिए जोड़ी जाती थीं।
0: वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में नारी पात्र अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली हैं। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, अनारकली, अहिल्याबाई, ये सभी पात्र न केवल सुंदर हैं बल्कि साहसी, बुद्धिमान और निर्णायक भी हैं। उन्होंने नारी को केवल सहायक पात्र के रूप में नहीं बल्कि मुख्य नायिका के रूप में प्रस्तुत किया। उनके उपन्यासों में नारी शक्ति का प्रभावशाली चित्रण मिलता है।
1: वृंदावन लाल वर्मा युद्ध दृश्यों का वर्णन अत्यंत प्रभावी ढंग से करते थे। झांसी की रानी में झांसी की लड़ाई और ग्वालियर के युद्ध का वर्णन इतना जीवंत है कि पाठक को लगता है मानो वह स्वयं युद्ध के मैदान में खड़ा है। वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड की संस्कृति, परंपराओं, लोकगीतों, रीति रिवाजों और जीवन शैली का सुंदर चित्रण किया। उनके उपन्यासों में बुंदेली भाषा के शब्द और मुहावरे, स्थानीय त्योहार और उत्सव, लोक संगीत और नृत्य, खान पान और वेशभूषा, सब कुछ जीवंत रूप से उभरता है।
0: वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में प्रबल देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना की भावना है। झांसी की रानी तो राष्ट्रीय चेतना का जैसे महाकाव्य है। इस उपन्यास ने लाखों युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह उपन्यास क्रांतिकारियों की प्रिय पुस्तक था और इसे पढ़कर कई युवा स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े।
1: वृंदावन लाल वर्मा ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की एक नई परंपरा स्थापित की। उनके उपन्यासों में इतिहास और साहित्य का सुंदर समन्वय है। झांसी की रानी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय इतिहास की गौरव गाथाओं को जीवंत किया। उनकी तुलना विश्व के श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकारों से की जा सकती है।
0: वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी उपन्यास केवल साहित्यिक कृति नहीं है, यह राष्ट्रीय चेतना का दस्तावेज है। इस उपन्यास ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वृंदावन लाल वर्मा के बाद कई लेखकों ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उन्होंने इस विधा को इतनी लोकप्रियता दी कि यह हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा बन गई। चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर जैसे लेखकों ने उनसे प्रेरणा ली।
1: वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। झांसी की रानी पढ़कर लाखों लोग रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान से परिचित हुए। यह उपन्यास आज भी युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाता है। उनके उपन्यासों में सशक्त महिला पात्रों ने महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती और अहिल्याबाई जैसे चरित्र आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
0: वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यासों के माध्यम से बुंदेलखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनके उपन्यासों को पढ़कर लोग बुंदेलखंड के इतिहास, संस्कृति और वीरता से परिचित हुए। वृंदावन लाल वर्मा स्मारक झांसी, झांसी में उनकी स्मृति में एक स्मारक स्थापित किया गया है। वृंदावन लाल वर्मा साहित्य पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध केंद्र, उनके साहित्य पर शोध के लिए विशेष केंद्र बनाए गए हैं।
1: प्रतिवर्ष उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर विभिन्न स्थानों पर साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। साहित्यकार और विद्वान उनके योगदान पर चर्चा करते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों में उनके उपन्यासों को शामिल किया गया है। झांसी की रानी और मृगनयनी ये विशेष रूप से पढ़ाए जाते हैं।
0: वृंदावन लाल वर्मा का जीवन संदेश है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प, समर्पण और कठिन परिश्रम हो तो वह किसी भी क्षेत्र में महान कार्य कर सकता है। उन्होंने वकालत के व्यस्त जीवन में भी साहित्य को समय दिया और 70 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनका संदेश था, इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने गौरवशाली इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। देशभक्ति सर्वोपरि, देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। नारी शक्ति को सम्मान, महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। और साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, समाज को दिशा देने का माध्यम है।
1: वृंदावन लाल वर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास में एक दीप्तिमान नक्षत्र हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों को ऐसी ऊंचाई प्रदान की कि आज भी उनकी बराबरी करना कठिन है। झांसी की रानी हिंदी साहित्य की अमर कृति है जो पीढ़ियों तक पढ़ी जाती रहेगी। उनके उपन्यासों ने लाखों पाठकों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और वीरता से परिचित कराया। उन्होंने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत की, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
0: आज जब हम झांसी की रानी पढ़ते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का वीरता भरा जीवन हमारे आंखों के सामने साकार हो उठता है। जब हम मृगनयनी पढ़ते हैं तो मुगल कालीन भारत जीवंत तो हो उठता है, और यही वृंदावन लाल वर्मा की साहित्यिक महानता का प्रमाण है। वृंदावन लाल वर्मा का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में सदा के लिए अमर है। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेंगी।
1: इतिहास केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं होता, वह आज के लिए प्रेरणा और कल के लिए मार्गदर्शन होता है। यही था वृंदावन लाल वर्मा का साहित्यिक दर्शन। उनकी पुण्य स्मृति को शत शत नमन। श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, वाचन भगवती सक्सेना और विजयकांत नायक का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: दादू दादू कहते हुए नन्ना वेद पीठ पर स्कूल बैग थामे अपने दादाजी की ओर दौड़ते हुए आया। आ गया मेरा बेटा लिटिल चैंप, कहते हुए वेद के कंधे से उसका बैग उतारकर एक हाथ में पकड़ते हुए दूसरे हाथ से दादाजी ने वेद को भी गोद में उठा लिया। आज मेरा चैंप टिफिन खत्म करके आया है कि नहीं?
1: दादू पता है आज मम्मी ने टिफिन में क्या दिया था? मेरे मन पसंद वेज बटर पराठे, दोनों पराठे खा लिए दादू मैंने। अब देखिए मैं कितना ताकतवर बन गया हूँ।
0: कहते हुए वेद ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर दादाजी को डोले शोले दिखाने लगा। अरे वाह मेरे लिटिल चैंप, अरे अच्छे से खाओगे तभी तो स्वस्थ रहोगे और पढ़ाई खेल सब में अव्वल रहोगे, है ना?
1: हाँ दादू। ये अपना घर आ गया, अब मैं कपड़े बदल कर और खाना खा कर आता हूँ, फिर आप मुझे ताकतवर भीम की कहानी सुनाना।
0: अभी नहीं बेटा, खाना खाकर थोड़ी देर मम्मी के साथ आराम करना, फिर हम दोनों शाम को पार्क में चलेंगे और चेस भी खेलेंगे। मैं रात में तुमको भीम की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है ना?
1: ओके दादू।
0: ऐसे ही रोजाना बस स्टॉप से घर तक दादाजी वेद को अपनी प्यार भरी बाहों में साथ लाते, दोनों की आपस में ढेर सारी बातें हुआ करती। फिर रोजाना शाम को पार्क में एक घंटा घूमने और खेलने के दौरान वेद दादाजी से ढेर सारे सवाल किया करता। दादाजी बड़े ही रोचक अंदाज में उसकी सारी जिज्ञासाओं को शांत किया करते। वेद की 10वीं कक्षा की परीक्षा के बाद ही अचानक दादाजी की तबीयत खराब हो गई और कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद एक दिन वे हमेशा हमेशा के लिए वेद से दूर चले गए। दादाजी से बेहद जुड़ाव रखने वाला वेद उनके शांत होते ही एकदम गुमसुम हो गया था। उसके जीवन का एक बड़ा सा कोना खाली खाली सा हो गया। दिन भर चोहलबाजी करने वाला वेद अब घर के किसी अंधेरे कोने में होता। मम्मी पापा को पता ही नहीं चलता, न खाने पीने की जिद, ना ही घूमने या पहनने ओढ़ने की चाह। मानो वेद की जिंदगी वहीं ठहर सी गई थी। ऐसे ही बेचैन मन से एक दिन वेद दादाजी के कमरे में गया। रोज की तरह दादाजी का बिस्तर झटकार कर धुली हुई चादर बिछाई, फिर उनकी कुर्सी पर बैठ गया और टेबल पर सिर रख कर लेट गया। अचानक ही उसकी नजर टेबल के ऊपर पुस्तकों के नीचे रखी एक डायरी पर गई। उसने झट से वो डायरी निकाली, फिर मन ही मन पुतपुताया।
1: दादू मुझे अकेले छोड़ के कहाँ चले गए आप? मैं टूट गया हूँ आपके बिना, किससे कहूँगा मैं अपने दिल की बात अब? दादू मेरे ढेर सारे सवालों के जवाब कौन देगा?
0: कहते कहते वेद डायरी खोलकर पेज पलटते जा रहा था। अचानक एक पेज पर उसकी नजर ठहर गई। वेद मेरे लिटिल चैंप, जीवन में कभी भी निराश या दुखी मत होना। तुमने शतरंज का खेल सीखा है ना? शतरंज का खिलाड़ी कितनी ही मूल्यवान मोहरों को खोने के बाद भी आखिरी क्षण तक जीतने के लिए खेलता है। अनायास ही वेद दादाजी के साथ बिताए अविस्मरणीय पलों के धुंधलके में खो गया।
1: दादू शतरंज का खेल काले सफेद चौसर पर और काली सफेद मोहरों के साथ ही क्यों खेला जाता है?
0: वेद शतरंज की चौसर, मोहरें, उनकी चालें, सब कुछ ही हमारे जीवन को बेहतर बनाने की कुछ न कुछ सीख देते हैं।
1: वो कैसे दादू?
0: जैसे काले सफेद 64 खाने वाले चौसर के माध्यम से शतरंज हमें सही गलत और सच्चे झूठे को पहचानने का संदेश देता है। काला गलत यानी झूठ और सफेद सच्चाई का प्रतीक होता है। इसी तरह शतरंज में सफेद मोहरों से खेलने वाला खिलाड़ी खेल की पहली चाल चलता है।
1: ऐसा क्यों दादू?
0: वेद खेल के इस नियम को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि सत्य की विजय होती है और सफेद रंग ही सत्य का प्रतीक होता है। इस तरह सफेद यानी सत्य हमेशा आगे रहता है।
1: दादू
2: मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आप बाकी सारी मोहरों के बारे में भी कहानियाँ बनाकर बताइए ना।
0: तुझे सीखना है शतरंज? अरे 3-4 घंटे एक ही जगह बैठकर खेलना होता है। बैठेगा इतनी देर एक जगह?
1: हाँ दादू, बैठूंगा ना।
0: रोज मेरे साथ 1 घंटा योगा और मेडिटेशन करेगा? सारे शतरंज के खिलाड़ी अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए रोज योगा और मेडिटेशन करते हैं।
1: अरे हाँ दादू, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा।
0: आज पहले दिन मैं बस शतरंज की मोहरों और उनकी चालों के बारे में तुझे बताता हूँ।
1: जी दादू, शुरू कीजिए ना जल्दी।
0: चलो वेद, ये रहा चौसर। अब ये दो मोटी मोटी मोहरें दिख रही हैं ना, इन्हें हाथी यानी रूक कहते हैं। और ये दाएं बाएं आगे पीछे एकदम सीधे चलते हैं और सिखाते हैं कि हमें कभी भी अपना काम निकालने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार या घूसखोरी। नियम कानूनों का हमेशा पालन करना।
1: ठीक है दादू, इनको चौसर पर कहाँ जमाऊं?
0: इन दोनों हाथियों को पीछे वाले खंड के दोनों किनारों पर रखो। इसके बाद हाथी के बिल्कुल बाजू से ये दो घोड़े यानी नाइट। चलो अब अपनी मोहरे जमाओ वेद।
1: दादू ये कैसे आगे बढ़ते हैं?
0: वेद, ये घोड़े 2.5 घर चलते हैं और सिखाते हैं कि अगर हमारे आसपास बेमतलब की बातें या एक दूसरे की बुराइयों पर चर्चा हो रही हो तो वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप दूसरी ओर चले जाओ, अपना रास्ता बदल दो।
1: दादू घोड़े के बाद कौन सी मोहरे आती हैं?
0: घोड़े या नाइट के बाजू से ये लंबे लंबे ऊंट यानी बिशप रखते हैं। ये तिरछा चलते हैं और सिखाते हैं कि हमें अपने आसपास पैनी नजर रखना चाहिए, जैसे कक्षा में पढ़ाई के साथ खेल कूद में अव्वल रहने वाले साथी एक साथ कैसे मैनेज करते हैं, देश दुनिया में क्या कुछ नया घटित हो रहा है, या बाजार में अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या नई तकनीक अपना रहे हैं। यानी हमें अपने आसपास भी पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए। समझ में तो आ रहा है ना मेरे लिटिल चैंप? दादाजी बोले।
1: हाँ दादू, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। मैं तो अब रोज आपके साथ शतरंज खेलूंगा।
0: ठीक है, ऊंट के बाद सिर पर ताज वाली रानी और ये राजा, इनको जमाओ। रानी किसी भी दिशा में आगे पीछे दाएं बाएं तिरछे कहीं भी बढ़ सकती है और दूसरे खिलाड़ी मोहरों को मार भी सकती है। और ये राजा, ये अपने खंड से 1 घर आगे पीछे दाएं बाएं आगे बढ़ सकता है। ठीक
1: दादू, ये दोनों क्या सीख देते हैं?
0: वेद, किसी भी दिशा में बढ़ने वाली रानी हमें सीख देती है कि हमारे चारों ओर ज्ञान का अथाह भंडार है, जिससे जो भी सीखने को मिले सीखते जाना चाहिए। इसी तरह राजा ये सिखाता है कि हमें अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एकदम से आगे बढ़ने से गिरने का खतरा होता है। अचानक ही वर्तमान में लौटता वेद खुद ब खुद बुदबुदाया।
1: नहीं दादू, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आपने मुझे जो बातें सिखाई हैं, मैं उन पर अमल करूंगा। कितनी भी मुश्किलें हो, अपना आत्मविश्वास बनाए रखूंगा।
0: दादू की डायरी को सीने से लगाते हुए वेद ने महसूस किया जैसे दादू कहीं नहीं गए हैं, उनके पास ही हैं। और वो एक अद्भुत ऊर्जा आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो गया है। दोस्तों, आप सुन रहे थे अंजलि खेर जी की लिखी कहानी दादाजी की डायरी से। दादाजी की डायरी से ये कहानी खास अंजलि जी ने इसलिए लिखी कि मैं और अप्रतिम दोनों ही इसमें एक्टिव रूप से आवाजें दे सकें। अप्रतिम को वो बहुत स्नेह करती हैं, इसलिए खास उन्होंने ये कहानी लिखी। और ये कहानी प्रेरणा है, या कह सकते हैं कि कुछ अंश हैं उनकी लिखी प्रथम पुस्तक शतरंज और जीवन प्रबंधन से। कुछ समय पहले ही उनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। राम प्रसाद एंड सन्स उस पुस्तक के प्रकाशक हैं। ये पुस्तक, अंजलि जी कहती हैं कि उनके जीवन के सबसे अहम पात्र उनके पिता, जिन्हें वो बाबा कहकर के पुकारती आई हैं, उन्हें समर्पित करती हैं। शतरंज का खेल और शतरंज के खेल को जब सिखाने वाले शिक्षक जीवन के उदाहरण देते हैं, उन उदाहरणों को सुनते, उनको मनन करते, उनको प्रेरणा मिली कि कहीं ना कहीं ये उदाहरण जीवन की प्रैक्टिकलिटी यानी कि व्यवहारिकता से संबंधित हैं, और शतरंज का खेल तो लाइफ के मैनेजमेंट को सिखाता है। शतरंज की चौसर हो या मोहरे हो या प्रत्येक मोहरों का अलग अलग विशेषता रखना, शतरंज के खेल में आवश्यक जीवन के मूल्यों का होना, धैर्य, संयम, आत्मविश्वास, एकाग्रता की शक्ति, परखने की शक्ति, ऐसे जीवन मूल्यों की आवश्यकता होती है। और यही जीवन मूल्य जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आवश्यक होते हैं। सफलता के लिए जिस प्रकार से शरीर और मस्तिष्क यानी कि तन मन का स्वस्थ होना आवश्यक है, शतरंज का भी ठीक ऐसा ही है, वाइस वर्सा। बस यही सब सोचते हुए उन्होंने जीवन के प्रबंधन को सिखाने का आधार इस खेल को चुना और इस

जीवन का प्रबंधन मैनेजमेंट पहले करना होगा। कुछ एक मुख्य शिक्षाएं मैं आपके साथ साझा करता हूं। वो कहती हैं कि शतरंज का काला सफेद बोर्ड हमें विशेषता है वो भी सिखाई है, जो कि अभी अभी हमने इस कहानी में भी सुनानियों को पसंद वर्धक कहानी पसंद आई होगी, लोगों के भी पहुंच से फिर होगी मुलाकात बेहतर।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। गांव और अंचल को जब जाते बा सुनते नाम कितना खुशी लगता है, क्योंकि अपना गांव अपना अंचल जिस गांव जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ देते हैं गांव और अंचल, परिवेश प्रकृति। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर रोज की तरफ आज भी आपका पास रखने जा रहे कार्यक्रम, जो कि बच्चों का हुनर बच्चों का टैलेंट को भाव और भावना को आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि समुदाय का जो विशेषता जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है वो चीज आज रख पा रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो सुनते हैं, कमर्शियल रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो मीन्स योर रेडियो, आपका रेडियो आपका द्वारा प्रसारित होता है। तो रेडियो मधुबन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनार में पहुंचे और बच्चों का आवाज भी बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर विद्यालय का आवाज को रखते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय के सहयोग से मिलित भावना से आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे सभी बारी बारी। तो हमें खुशी है इस तरह बढ़ चढ़कर बच्चे जब भाग लेते हैं, और इसका श्रेय तो माता पिता और संस्था का संस्था प्रधान का साथ सभी स्टाफ को जाता है, बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो देर किस बात की, पहले एक प्रार्थना के रूप में हमारा छात्राएं उपस्थित है तो उनको स्वागत करते हैं नाम का साथ। वो अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कहाँ से, क्योंकि रेडियो में जब उनका आवाज सुनेंगे तो पता चला है किसका आवाज है। आवाज से कोई कोई पहचानेंगे, जिसको कोई सुना नहीं आवाज को वो कैसे पता चलेगा, इसलिए उनका नाम बताएंगे कौन सा क्लास। भले विद्यार्थी जीवन में अपना सहपाठी उनका आवाज को जानते जान लेंगे, लेकिन जो दूसरे बाहर लोग सुनते हैं ऑल इंडिया में कहीं पर भी सुनते हैं, तो उनका आवाज सुनने के साथ साथ नाम और स्कूल का नाम जरूर ले। तो सभी को स्वागत करते हैं, अपना नाम और क्लास का साथ एक प्रार्थना शुरू कराएंगे।
1: मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 12 से हूँ और मैं चन्नार से हूँ।
2: मेरा नाम आफरीन है, मैं कक्षा 11 से हूँ और मैं चन्नार से हूँ।
3: मेरा नाम विश्ना है, मैं कक्षा 12 से हूँ और चन्नार से हूँ।
4: मेरा नाम दक्षा और मैं कक्षा 11 से हूँ और चन्नार से हूँ।
5: मेरा नाम अस्मीन है, मैं कक्षा 10 में हूँ।
1: क्या

0: भी।
1: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भाव और भावना का साथ इस कार्यक्रम का माध्यम से प्रभु तक पहुंचाते हैं और अपना जो दिल का उद्गार और मन का बात प्रार्थना का रूप में हर विद्यालय में होता है। तो आज इस विद्यालय में भी बच्चे एक गीत का पूरा ये प्रार्थना सभी जगह में सभी विद्यालय में सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर गाते हैं। बहुत खुशी लगता है इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब भाग लेते हैं। तो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्या लक्ष्य रखे हैं? हमारा गुड़िया है, क्या नाम बताया?
0: खुशबू।
1: खुशबू। देखो नाम कितना खुशी लग रहा है, नाम सुनते ही खुशबू। खुशबू आज तो फैला रहे हैं, फूल का खुशबू आता है कि नहीं? तो आज खुशबू खुद नाम का खुशबू फैला रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, क्योंकि एक मंच जिसका आवश्यकता था आज बच्चों को मिल रहा है। इसके लिए बच्चे तरसते हैं, लेकिन आज ये तो सरकार का धन्यवाद है क्योंकि सरकार इस तरह कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी बच्चों को देते हैं, जिसका चलते बच्चे अपना हुनर सिर्फ सीमित अंचल में क्यों सीमित रखे, अपना क्लास में, अपना विद्यालय में, अपना गांव में, पूरा जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह मंच देते हैं, जिसका चलते उनका सुर लय और ताल का साथ अपना व्यक्तित्व को निखारते हैं। और जो आवश्यकता था आज मिल रहा है, और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में मैम हमारा सजा रहे हैं और सर भी सजा रहे, तो उनको भी धन्यवाद देंगे और उनका भी दिल का बात सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सुंदर प्रस्तुति सुनने के पश्चात ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और खासकर बच्चे सच्चे होते और उनका भावना आज जन जन तक पहुंचाए रेडियो मधुबन द्वारा, और इसका श्रेय तो सभी बच्चों को उनका माता पिता को भी जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरह आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते हैं, चाहे जो भी संसाधन जो भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो इस कार्यक्रम को हमारा संस्था का प्रभारी वो भी उपस्थित है, मैम कैसे बच्चों को अनुशासन में रखते हैं, हमें बहुत खुशी लगा अनुशासन में बच्चों को रखते, पूरा साइलेंस में बच्चे बैठे। तो मैम अपना परिचय देंगे, मैम अपना परिचय देंगे और खासकर बच्चों का मेन जो लक्ष्य है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, ये देखा मैंने, तो आप अपना परिचय देंगे। मैम आपका स्वागत।
2: थैंक यू, आपने हमारे स्कूल मौका दिया इस बात के लिए।
1: जी मैम,
2: मेरा नाम सुमनलता मीणा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनार की प्रिंसिपल ना होके व्याख्याता हूँ, सेकंड इंचार्ज। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आदिवासी लोग के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुशासन का असर बहुत ज्यादा है
1: जी।
2: वो ज्यादा बोल नहीं पाते बट अनुशासन उनमें पढ़ते भी हैं, पर विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी वो स्कूल से आते हैं। उनके घरों के जो हालात है आप देखते होंगे इतने अच्छे नहीं है, फिर भी वो यहाँ विद्यालय में आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें खुशी है कि हम इनको अपने ज्ञान से इनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। थैंक यू।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम को धन्यवाद देते हैं और सर को भी लेंगे, सर भी बच्चों का साथ आज कुछ उमंगों से और वार्म अप करा देंगे, बच्चे थोड़ा सा जो थोड़ा पीछे रह रहे उसको आगे बढ़ाने के लिए भी खुशी मिलेगा। सर से एक निवेदन है, सर बच्चों को ऐसे कार्यक्रम का माध्यम से देखते हुए वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, आज वो अपना आवाज में गीत सुनाएंगे हमारा श्रोता मित्र को और हमारा जो सामने बैठे सभी बच्चों को, और इस माध्यम से जो भी सुन रहे तो वो भी सर को जानते होंगे और जब सुनेंगे सर का परिचय तो उनको भी खुशी लगेगा, क्योंकि रेडियो कार्यक्रम में मंच कभी कभी मिलता, आज मिल रहा है। तो सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी सर।
3: जी नहीं,

0: मैं पीतम सिंह, वरिष्ठ अध्यापक जीएसएस चनार, जो ब्रह्म कुमारी से पधारे हुए, मधुबन से आए हुए हमारे पवित्र भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ जीएसएस चनार में इन आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के सामने इस प्रकार ये प्रोग्राम रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन बच्चों की जो खूबी है, इनमें प्रतिभा बहुत, प्रत्येक बच्चे में अपनी खूबी होती है। कहते हैं ना कि मछली जल की रानी होती है, वो कभी भी जंगल की रानी नहीं बन सकती। शेर जंगल का राजा होता है, वो कभी भी पानी का राजा नहीं बन सकता। इसका अर्थ कि प्रत्येक बच्चे में अपनी एक खूबी होती है, सिर्फ उसको निखारना ये बहुत बड़ी बात है। और इसको निखारने के लिए हमको भी इतनी दूर से लगाया गया है। हम चाहेंगे कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें और अपना हुनर सबको दिखाएं। ये आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं बहुत दूर से आते हैं, हमें पता है इनकी परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में ये हैं उन परिस्थितियों से, ऐसी बात नहीं है, हम भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम रखते रहें, तो इन बच्चों की भी उत्साह बढ़ेगा और इनमें कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है कि हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद के लिए धन्यवाद, लेकिन हम जो करते हैं, आप जो करते हैं, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच है, जिस मंच का माध्यम से अपना बात को, भावना को और दिल का उद्गार को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और सभी का मोटिवेशन बच्चों का प्रति रहता है, सभी का लक्ष्य बच्चे आगे बढ़े, बच्चे अच्छा बने, देश का नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन करने का पहले खुद का नाम रोशन करें, परिवार का और विद्यालय का।

नाम रहा, सबका आस बच्चों का ऊपर रहता है, बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से भाग लेते हैं एक दूसरे को देखकर, तो हमें खुशी होता है। और सरकार का जो मंचा है, एक लोकल के जो सिंगर हो चाहे उनका बस जो भाषण का कला हो चाहे गीत का जो कला है वो जन जन तक पहुंचाए, इससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक खुला मंच है, सभी अपना बात को रख सकते हैं। और सर ने जैसे बताया बहुत कठिन परिस्थिति, जब परिस्थिति आता है तो स्वस्थिति को भी मजबूत रखना होगा, क्योंकि परिस्थिति का काम तो आएगा ही, सबका पास परिस्थिति आता है, परिस्थिति किसी का पास नहीं है। परिस्थिति आएगा तो आपका परीक्षा होगा कितना आप स्थित रहते हैं, स्वस्थिति में कितना स्थित रह पाते हैं, क्योंकि परिस्थिति को हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति हमारे हाथ में। हम वो परिस्थिति को, जैसे रास्ता में कोई पहाड़ गिर गया तो हमें पहाड़ को तो तोड़ नहीं पाएंगे, पहाड़ को साइड होकर हम निकलना है, नहीं तो समय हमारा बर्बाद होता है। तो इस तरह परिस्थिति देखिए, रामचंद्र का टाइम में जैसे आपने गीत का माध्यम से बोला भाई हमें इतना राम चाहिए, तो राम के पास भी परीक्षा आया था, है कि नहीं, उनका सीता को चोरी कर रावण ले गया था, वो भी कहानी आपको है, उनका भी कितना परिस्थिति आया, जंगल में रहना पड़ा। परिस्थिति तो सबके लिए आता ही है, लेकिन हमें अपना स्थिति से, जैसे रामचंद्र अपना स्थिति बना के रखा, भले ये तो आया लेकिन वो तो जाएगा, कभी रहेगा नहीं वो, फिर सीता आपस आया कि नहीं, तो इसलिए बुद्धिमान कहते, इसलिए देवता कहते, भगवान कहते, इसलिए हमारे पास भी परिस्थिति आएगा, आता है कि नहीं परिस्थिति, सभी के पास परिस्थिति आता है कि नहीं, परिस्थिति आएगा, कि परिस्थिति आएगा तो आपको मजबूत कराएगा, ये ठीक है कि नहीं, इसलिए परिस्थिति को आने दो और हम अपना स्थिति में उसको पार करेंगे। पढ़ाई कर रहे तो परीक्षा आएगा कि नहीं, परीक्षा को डरेंगे नहीं, डरते बच्चे डरते परीक्षा जब समय आता डरते हैं नहीं, डरते तब तो उत्तीर्ण होगा आगे क्लास को, परीक्षा नहीं देंगे एग्जाम नहीं देंगे तो अगला क्लास को जाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो हम परीक्षा को निमंत्रण करना चाहिए, आइए हम रेडी है मुकाबला करने के लिए, ऐसे साहस होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, इसलिए परिस्थिति अपना काम करे और हम अपना स्वस्थिति से मुकाबला करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनकर है कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, ये था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनार का सभी का आवाज, खासकर हमारा आज स्टाफ भी इस कार्यक्रम को बच्चों का साथ मिलकर एक आवाज का गुलदस्ता बन गया। सर का आवाज, प्रीतम सर को धन्यवाद देते हैं और मैम को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हमारा बच्ची उपस्थित है और स्कूल के नाम रोशन करने के लिए भले बहुत सारा बच्चे लेकिन एक बच्ची काफी होता है। जैसे रात को बहुत सारा तारे होते हैं लेकिन एक चांद पूरा रोशन कर देती है कि नहीं। हजारे तारे रहते हैं लेकिन फिर भी एक चांद होते हैं। जैसे हर स्कूल में इतने बच्चे होते हैं लेकिन एक दो बच्चे पूरा चांद का जैसे काम करते हैं, तो आज चांदनी का रात में जैसे चांद अपना प्रभाव विस्तार करते हैं। आज इस स्कूल के होबनार बच्चे जो सिलेक्टेड बच्चे उनको पुनः स्वागत करते हैं। तो नाम फिर से बताइए।
1: मेरा नाम आफरीन, मैं कक्षा 11 से चनार से।
0: सुनाओ गीत।
1: ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके।

दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी

0: परिंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और ऐसे बच्चे को जब मंच मिलता है तब कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, उनको एक मौका का आवश्यकता था। उनका जो हुनर है, जो टैलेंट है, इस तरह जब कंपटीशन हो, चाहे इंटर स्कूल कंपटीशन हो, चाहे कोई भी प्रतिभा को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह सहयोग मिलता है जिसका चलते वो आगे बढ़ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। इसका बारे में क्या कहना चाहिए, इसका गीत का बारे में थोड़ा दो शब्द बताएंगे।
2: आफरीन हमारे विद्यालय की विद्यार्थी जो क्लास 11th में है
1: जी,
2: जिसने जो ये देशभक्ति गीत सुनाया है, वास्तव में कहते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति प्रेम है ना, क्या होता है वो अपनी या तो आवाज से पता चलता है, या ऐसा नहीं है कि देश पे डटा हुआ जवान ही देश की रक्षा करता है। देश की रक्षा करने के लिए हम सभी देश की रक्षा करते हैं। अगर मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, अगर मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, आपका काम, आप विद्यार्थी हो, अगर विद्यार्थी अपना काम, इनका काम जो है, इनका काम क्या है विद्यार्थी का, विद्या का
1: अध्ययन
2: अर्जन करना, विद्या का अर्जन करना, इसका मतलब इनको पढ़ना है, इनको इनका जो काम है वो पूर्ण रूप से कर लें। जो मेरा काम है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर लूं, तो अपना देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, उन्नति कर जाएगा। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति, जैसे किसान है, किसान अपना कार्य ईमानदारी से करता है, ईमानदारी से करता है, फसल पैदा करता है और वो फसल पूरे देश के लिए काम आती है ना। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो चपरासी हो या कलेक्टर, जिसका जो कार्य है वो अपना कार्य अगर ईमानदारी से कर ले, है ना, कहीं हमें ना तो देश बॉर्डर पे जाने की जरूरत है ना। ये नहीं कि बॉर्डर पे जाकर ही हम देश की सेवा करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी देश की सेवा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सही बात, स्पष्ट रूप में बताया भाई, हम सभी एक एक सैनिक है देश बॉर्डर में, तो सैनिक हमारा भाई रहते हैं, लेकिन हम जो अंदर रहते हैं उनको सपोर्टिंग करते हैं, उनको जो चाहिए हम देते हैं, जैसे किसान सब कुछ देते हैं, शिक्षक एक अच्छा सैनिक बनाकर देते हैं, और उस शिक्षक को सरकार भी इतना सहयोग देते हैं, चाहे संसाधन भी मिलता है जिसका चलते वो आराम से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और बच्चे भी आराम से बढ़कर पढ़ते हैं क्योंकि संसाधन चाहिए, क्योंकि इसका चलते हमारा देश नाम रोशन करेगा और भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हम सब ईमानदार से अटेंशन होकर हर कार्य को श्रेष्ठता रूप में देंगे, तो जरूर कामयाब होंगे, और हम सब कामयाब होंगे ही, जरूर हुए थे और होंगे, कोई नया चीज नहीं है, हम भूल चुके हैं लेकिन हम थे, अभी है और आगे भी होंगे, हम ही देश को आगे बढ़ाया था और आज हम ही आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे देश को, पहले हम खुद बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा ईमानदार से, है ना सर। तो ईमानदार एक अच्छा वैल्यू है, सर्वश्रेष्ठ गुण है, ऐसे सभी बच्चों के पास विशेष गुण है, सब विशेष है, कोई किसका पास अवगुण नहीं है, अवगुण रहते भी एक विशेषता है जिसका चलते परमात्मा भगवान प्रभु आपको सिलेक्शन किया है मनुष्य जीवन में, भले हमें पता नहीं चलता लेकिन हमारे पास इतना विशेषता है, जो विशेषता कहीं ना कहीं काम में आता है, इसलिए कभी खुद को छोटा नहीं सोचना है, मैं बाहर बाहर में ऐसे सोचना है, मेरे जैसे कोई संसार में नहीं, इतना लोग है, कितना करोड़ लोग है, आपका जैसे शकल, आपका जैसे आवाज, आपका जैसे विचार दोबारा बच्चा भी होगा तब नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे होगा, हाँ कि नहीं सर।
3: बिल्कुल,
1: इसलिए खुद को महान सोच के ईमानदार से काम करेंगे तो हम महान आत्मा बन सकते, महान आत्मा बन सकते कि नहीं, महान आत्मा क्या, देवात्मा भी बन सकते हैं, दिव्य गुण रहेगा तो देवता बनते हैं, हर्षित मुक्तता, नम्रता, नियमितता, कौन कौन बच्चे नियमितता, नियमित स्कूल को आते हैं विद्यालय में, नियमित जो भी स्कूल खोलता है नियमित कौन आता है, रेगुलर, हाथ उठा देखी सर, हमारा देख रहे, मैम भी देख रहे, रेगुलर। विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण, विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता, क्या बोला,
4: नियमितता,
1: रेगुलरिटी, पूरा कभी भी छुट्टी नहीं, ऐसे होना चाहिए, जब नियमित आएंगे तो हमारा जो अध्यापक आपको अच्छे से ज्ञान सुनाएंगे, है ना सर। तो नियमित आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए,
2: ये तो है ही है,
1: आते ही,
2: बिल्कुल, पहला ही है विद्यार्थी का पहला लक्षण ही है कि हमको रेगुलर आना है, विद्या अर्जित करने के लिए तो हमें रेगुलर रहना ही पड़ेगा,
1: अनुशासन में रहना है, तो इसका बाद रेगुलरिटी, हर रोज हम जब भी स्कूल खोलता है आना चाहिए, इसके बाद सभी गुण आ जाएगा, नम्रता आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, मधुरता आ जाएगा, सब आ जाएगा।
2: फिर भी सर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना,
1: जी सर,
2: बहुत दूर से आते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर से आते हैं, और इनको टाइम दे रखा है हमने 7:15 बजे, 7:20 तक ये लगभग लगभग 95% और अब तो 100% उपस्थिति हो जाती है 7:20 पे, 7:25 पे।
1: ये तो अनुशासन है,
2: ये है सबसे पहला अनुशासन इनका यही है,
1: समय से पहले आना।
2: आज इनकी उपस्थिति 7:20 पर, 7:30 का टाइम है, लेकिन हमने इनको टाइम दे रखा है 7:15 बजे का, और 7:25 तक सभी बच्चे विद्यार्थी उपस्थित हो जाते हैं। देख लो,
1: देखो
2: कितनी परिस्थितियों से गुजर के आते हैं, इन्हीं को पता है।
1: जी जी,
2: आगे हमको पता है इनकी परिस्थिति,
1: हम भी पढ़ते तो हमको भी पता है, हम भी तो ऐसे परिस्थिति में पढ़ते हैं, तब जाकर आगे बढ़े, परिस्थिति आएगा इतना, हम तो 7-8 किलोमीटर जाते सर,
2: बिल्कुल
1: पढ़ाई हमारा समय में इतना नजदीक नजदीक स्कूल नहीं था, हर ग्राम पंचायत भी तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज, हमारा कॉलेज हमारा गांव में नहीं रहता था उड़ीसा में सर, 9th क्लास से बस 7th क्लास पढ़ने के लिए हमें 5 किलोमीटर, मैट्रिक 10th क्लास तक हम 5 किलोमीटर, फिर कॉलेज 12वीं क्लास करने के लिए हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता पैदल हो चाहे साइकिल, अभी तो मोटरसाइकिल समय नहीं था। और आप तो भाग्यवान है सभी, हमसे भी आप नजदीक है, एक ग्राम पंचायत का अंडर में रहते हैं, तो तब भी अभी का समय में आपको मुश्किल लग रहा है, समय को उस समय हमको मुश्किल लग रहा था, अभी आपको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो आएगा ही, लेकिन उसमें हमें पास होना है, पास होना है कि नहीं, पास होना है और पास रहना है, किसका पास, ऊपर वाला का पास, परमात्मा का पास, बुद्धि रहेगा ना तुम्हारा चार्जिंग होगा बैटरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति, वो भी हमारा सर ही कर देंगे लास्ट में।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति अंतिम प्रस्तुति होगी और ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का जो मिलित सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है और सब सुन पा रहे सभी का आवाज को अंतिम की और हम चल रहे हैं और हमारा सर इस कार्यक्रम को सजाएंगे वंस मोर लास्ट सर स्वागत।
1: धन्यवाद सर आपका। हमारे जो एक आप पढ़ते आ रहे हो सर सिक्स क्लास से ट्वेल्थ तक सभी में पढ़ते हो या कबीर कबीर पढ़ते हो ना, कबीर का अर्थ क्या है पता है? कबीर कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, सिर्फ हमने उसको नाम दे दिया गया। कबीर क्या है? का से करुणा, बा से बीज और रा से रम रहा। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा का बीज रम रहा है वो व्यक्ति कबीर है, वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति कबीर है। करुणा, करुणा से ही हमें हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करें, है ना, प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वो कैसा भी है ना, तो हमारे अंदर उसके प्रति करुणा है तो हम कबीर हैं। तो कबीर साहब का एक भजन है, उससे इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर कबीर।

फिर आए हैं यहाँ सैलानी, हम पंछी परदेश मुसाफिर आए।

0: हम पंछी परदेश मुसाफिर आए हैं यहाँ सैलानी। हम पंछी परदेश मुसाफिर। बोलो सतगुरुदेव की जय।
1: तो कितना सुंदर और भाव का साथ, दिल का साथ गाए सर ने और सभी को मन मुग्ध कर दिए। और पंछी आई और कभी भी जा सकती है। तो हम सब मेहमान है संसार में, आत्मा पंछी कभी भी उड़ सकती है और आई तो जाएगी। तो आज के लिए सबको धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। और मैंने सोचा नहीं था सर इतना सुंदर रूप में गीत गाते हैं और भाव और भावना का साथ सभी बच्चों को आत्मा साथ करा दिए, मन मुग्ध करा दिए। और वाणी में जो मधुरता वो विशेषता आज देखने को मिला, किन कबीर का जो वाणी, कबीर वाणी जो कहते हैं वो वाणी में मधुरता सही में और गीत में भी मधुरता। और हमारा बच्चे भी मीठे बच्चे है, हमारा सभी बच्चे मीठे है, किन्तु गीत मीठे सुने और मीठे गीत गाए तो मीठा वाणी में सभी मन मुग्ध हो गए। तो मैम को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टाफ को, और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सभी ने सजाया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सर भी अपना आवाज को रोक नहीं पाए, वांच मोर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी। और
2: धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत आप विद्यालय में आए,
1: मौका मिला तो सर मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल गया जैसे, तो चौका छक्का लगा दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गाए, हाँ कि नहीं बच्चा अच्छे गए। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे सर, नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: अरे थारी कंचन सी का यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी ला।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवरते जाओ, अदको तो लाग्यो सावण भादवो। अरे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवरते जाओ, अदको तो लाग्यो सावण भादवो।
1: कई है रतन, कई है, आज बड़ी खुश दिखाई रही है।
0: देख भाई, मु तो रोज खुश रहू, अन कई कई मु तो गुनगुनाती रहू। थोड़ी की नवरी पड़ू नहीं, मारा तो मुंडा पे कई कई गीत तो आई जावे। अभी आषाढ़ महीना चल रहो, और आषाढ़ महीना में तो आपा तेजा जी का गीत ने तो याद कर रही।
1: सही है,
0: तो मैंने तो गीत याद आ गया, तो मैं गुनगुनावा लाग गई। पर आओ भाई आओ, राम राम
1: राम राम राम राम।
0: और अपना सगला श्रोता बंधु को भी स्वागत करा हा गावरी बातें कार्यक्रम में। आप सगला जना को खूब खूब स्वागत है,
1: हार्दिक अभिनंदन है आप सभी ने, श्रोता बंधु ने।
0: आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।
0: और बता कंचन, तबीयत तो बढ़िया?
1: बस ठीक, तू बता का चल रही हो आजकल? थारे खुश घनी देखा है रही है।
0: देख भाई, त्योहार आ रहा है, मन तो आषाढ़ सावन आवे ना तो त्योहार की याद आवे।
1: हाँ वो तो है।
0: अबे देख, एक तो भल्या नवमी आ रही है, तो देख भाई भल्या नवमी का बाद सब शकुन का काम बंद हो जाये।
1: हाँ,
0: चौमासो लाग गयो बचान तो
1: सही है,
0: पर भल्या नवमी लास्ट वे यदि शादी ब्याह या शगुन को जो भी काम करना हो आप कर लो।
1: सही,
0: पचे ये 3-4 महीना शांति
1: शांति, हमें शादी ब्याह जो भी बहना वही हमारे शुभ काम जो भी करनो वही करी। पसे थन दियो ने वन्ने पुटी, तो अगर नवी नवी शादी वे तो ही बेटी ने पीए लावे के जोड़ा साथे नहीं रह सकता।
0: हाँ मैं भी सुनियो हो। हाँ। कोई कोई समाज में एडो रिवाज है।
1: हाँ मैं सुनियो है, क्योंकि मैं पड़ोस में रहता बनो, नवी नवी शादी हुई वे कहता था कि मारे बच्ची ने लानी है हमें, तो जरे मैं क्यों रतन ने ध्यान वही रतन ने पूछू, रतन ने सब रीति रिवाज रो ध्यान भी है।
0: हाँ तो इमें यू ही है कि एक महीना तक बेटी ने अपना घरे रखे, जे की शादी वे के पहले यो चौमासो आवे।
1: हाँ।
0: आषाढ़ महीनो आवे।
1: हाँ।
0: तो आखो महीनो बेटी ने पियर में रखे।
1: हाँ जरे इसमु कहू रतन ने पूछू, रतन ने ध्यान वही ला नवो नवो जोड़ो वे जर के एक महीना पीर में लावे, बाद में तो कोई नहीं ना, बाद में तो लावे हके, पसे तो कोई टेंशन नहीं।
0: अरे बच्चो की जिंदगी भर पीर में बैठा रहा के गए।
1: ना वो पूछ रही हूँ,
0: पर एक महीना रखे पचे जमाई लेवा आवे वाने। अच्छा। हो मान चूंडन पचे सीख देवे।
1: अच्छा
0: जमाई के ड्रेस देवे, बेटी के कपड़ा देवे। और भाई कपड़े भाई पहली बार
1: आई
0: जो 4 जोड़ी 5 जोड़ी तो बेटी का लिए ही देवे, जमाई का लिए 1 या 2 जोड़ी।
1: हाँ तो हमें देख, ओ महीनो बेवा वालो है आषाढ़, श्रावण महीना में तो देख मंदिरों में का गुंज उठीला।
0: हाँ तो भाई वो कहवे कि आषाढ़ महीनो तो यूं ही बीते, पाछे श्रावण में अपने रक्षाबंधन आवे, बड़ी तीज आवे, छोटी तीज आवे, आनी पे पाछे बेटी ने लानो ही पड़े।
1: लानी पड़े, सही बात है।
0: तो देखो भाई, अपने राजस्थान रा मायने अलग अलग तरह का समाज है, और हर समाज का थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रीति रिवाज है। कटे सावन महीना में लावे तो आखो महीनो सावन महीना में रखे थन ठाए। आखो सावन नहीं भेजे बेटी,
1: सावन नहीं बेटी भेजे सावन के, ओके मल महीनो बैठो है, मल महीना में के बेटी ने एक महीना के मैं तो लावे ही हो। जर मैं क्यों मु रतन ने पूछू, रतन ने ध्यान वही के ओ मल महीनो का भी ने बेटी ने क्यों लावे।
0: देख माँ तो मल महीनो किन्ने के वहाँ ठाए थे, जनवरी मास में 14 दिसंबर 14 जनवरी जो वो मर महीनो लागे ने बिने माँ मल महीनो के वहाँ
1: माल मल महीनो जद के माँ माते भार वे जनती के बेटी ने पीरे लावे।
0: हाँ।
1: माँ माते वरना भार पड़े।
0: माँ माते
1: मैं सुनियो है, मने ध्यान नहीं, मैं एडो सुनियो है की भाई माँ माते भार वे जनती बेटी ने पीर में लावे के।
0: बिल्कुल कंचन, माँ बाते तो देखो जदी बेटी जन्म लेवे वदियो माँ का माते भार तो खैर बेटिया तो कोई भार होवे कोनी, बेटिया तो आजकल भार उतारे।
1: मैं
0: तो यूज क्यों होनी, वैसे माँ के ऊपर केड़ो भार है।
1: सही बात है।
0: हाँ पहला दहेज को बोल बालो हो झट्टे, आज भी दहेज का लिए बेटिया ने परेशान करे, बुआ ने सतावे, तो वो पचे भार के वावे, बाकी तो आज बेटिया माँ बाप ने हल्की करे,
1: हल्की करे, सेवा चाकरी बेटिया इस करे।
0: हाँ सेवा चाकरी करे, प्यार भरी मीठी वाणियों भी आश्वासन,
1: दिन में चार चार फोन परा करे।
0: सेवा भी करे, जरूरत पड़े तो सेवा भी करे माँ बाप की।
1: पर माँ ने उम्मीद बेटा करती, बेटी ने वे ससुराल में वे तो फोन नहीं करे तो माँ बेटी रो फोन नहीं आयु, बेटी 4-4 बार फोन करे जर माँ ने तसल्ली वे तो वो तो है
0: नहीं, अब बेटियां कहीं देखो ससुराल में, मैं तो क्यों चार बार फोन भी करो गलत है। आप चार दिन में एक बार बात कर लो बढ़िया। देखो आप झटे गया हो बटे वटा का वर्णन रो और बटे आप सेठ वेवा की कोशिश करो।
1: वो तो है,
0: मारो तो कहना यो ही है अनिवार्य। रोज को फोन नहीं होना चाहिए, रोज को फोन कदी होवे कंचन कदि आपने दोईता दोईती हो जावे।
1: जरे
0: जदी यू रहे कर टाबर कई कर रहे हुए खाली बेटी ससुराल में है तो माँ ने भी फोन त्रो कारण परेशान नहीं करना छावे। आप का मनक सबने वालो वे बिना सेठ वेवा दो ससुराल में। और बेटी के भी अत्रो यो नहीं करना छाओ मम्मी कई कर रहे मम्मी कई कर रहे। देखो भाई सासरे वाला ने भी अच्छो नहीं लागे,
1: अच्छो नहीं लागे।
0: और आपने भी सेठ होना है,
1: सेठ में
0: हाँ, पचे टाबर होवे तो टाबर ने तो खेलावा का हिसाब हो। दादा दादी वो नाना नानी वो
1: सबने लाड तो आ गए।
0: हाँ, चाहे बेटी तीसरी जगह पे रहती हो नौकरी पे रहती हो तो भी दादा दादी की भी इच्छा होवे फोन करवा की, नाना नानी की भी इच्छा होवे फोन करवा की, क्योंकि बच्चा का पाछे सब कुछ है।
1: सही बात,
0: तो वह बात अलग है, बाकी नहीं करना चाहिए।
1: बाकी नहीं करना जो जो सही बात है रहता ना। हाँ। बार बार पियरी फोन नहीं करना अच्छी बात नहीं है, पर वो कैन माती लगा भी है बेटी ने, थोड़ी सी उदास भी है कटे कटे ही तो देख यू भी है के ससुराल जाए तो बेटी सब ने बातों करे, वरना एकली बेटी वे तो सोचे माँ ने इस फोन पर करो तो फोन लगावे अपरो दिल हल्को करे। बाकी कई कई घर ऐड़ा भी है जटे ससुराल में एहसास ही नहीं वेतो के मारो पियर है के माइक ससुराल है, तो बटे मने माइक री याद ही नहीं आती तो वो फोन ही नहीं करते।
0: हाँ वाह बात अलग है, एकलो पन लागे तो करना चाहिए क्योंकि घना ही जगह पे ससुराल में संयुक्त परिवार वे टाइम कठिने बीते तो वाने तो
1: पड़े
0: वाने तो लड़नो पड़े कभी कदिक तो माँ ने फोन करे अगर
1: वो तो कहो ना एकली पड़े तो पछे कन्ने फोन करे।
0: हाँ और अब घर में खाली सास बहु जे काम निपटा बाद सास खुद का कमरा में रेस्ट कर रही, बहु खुद का कमरा में रेस्ट कर रही तो पछे फोन एक आदो हो जावे तो कोई हर्जो कोई
1: नहीं।
0: पर फोन में भी आजकल कही है अटिली वटिली बात करे वो नहीं होना चाहिए। तू कई खादो तू कई पेरियो थारा हाउजी कई कर रहा कई थाने लड़ियो था कोई नहीं कई थाने कई कहवे तो कोई नहीं
1: झगड़ा तैयार।
0: हाँ ये पचे झगड़ा तैयार है क्योंकि देखो आज तो फोन चल रहा पहली कैसे फोन है बेटी का समाचार ही नहीं मिलता महीना महीना तक बेटी कैसे आने कही है
1: नहीं मिलता
0: तो घर कोई न कोई मिलवा जाता ठा पड़ती कैसे आने कही है जतरे तो बाता कतरी हो जाती कतरी दब जाती
1: कतरी दब जाती कतरी भूल ही जाता
0: भूल ही जाता। आने बेटियां आती पियर में तो खुशी रहती
1: खुशी रहती
0: वे कोई शिकायत नहीं करते।
1: पहला तो बात माँ बाप ने बतावती ही नहीं थी बेटियां दुख वे सुख वे क्योंकि माँ बाप टेंशन करी मेरी बेटियों थोड़ा सुख हुई वे तो मम्मी ने फोन करे प्रो पप्पा ने फोन। पहला लड़कियों महिला कोई फोन नहीं करती थी पहला बात अबे सहन करती
0: बिल्कुल अब अबे फोन कर दे वे बेटी तो पाची बटे ससुराल में पाची ढलनो ही पड़े चलो अब बात ऊपरे नीचे होगी पाची दबगी पाचा सब सेट हो गया अटी ने माँ बाप तड़फिया करे मारी छोरी दुख में मारी छोरी दुख में तो यह बात भी गलत है आप मत करो।
1: सही है
0: हाँ अगर आपके पानी सिर पर जा रहे हो तो विकट तोड़ तो निकालो इस पानी तो बचे आप आन व्यवस्थित बात करो बाकी छोटी छोटी बात में आज तो नमक कम हो सासू जी थोड़ा बोल लिया आज तो यो वे गयो तो वे यू बोल लिया
1: तो घर खराब है।
0: हाँ वो नहीं होना चाहिए
1: तो आज चीज तो देखो आप पीर में वो जरी मम्मी अपन लड़े के बेटा नमक ज्यादा वो चीज तो छोटी छोटी बात हो अपने घर ही मम्मी लड़े तो ससुराल में ही वहाँ माई सेवा ही लड़े।
0: हाँ
1: दिमाग में नहीं लेना
0: माँ लड़े जो तो आपने कहीं लागे ही नहीं सास लड़े यदि आपने मन पे बैठ जावे
1: पर रतन मन तो एड़ी है कि ससुराल में तो सास लड़े तो हाले हमें शादी हुआ बाद पियर जाओ जरे माँ बोल करे वो अपने नहीं सहन वे तो
0: देख बेटी ने थोड़ा 8-10 साल हो जावे पढ़ने ने घर में जीव पड़ जावे अन घर का वो कहवे ना कि नेचर तो समझ में आ जावे ना जब बहू घर में रहवे अपना घर में तो सब सदस्य को नेचर समझ में आ जावे कि भाई वह सुखी है एक दुखी है।

0: पिए
1: तो डल जावे वाणी माहौल में बच्चे पियर में जावे पियर में बच्चे माँ अगर दो बात के देवे
0: तो सहन तो नहीं वे
1: बच्चे नहीं वे
0: सहन पिए
1: कहानी करता मारा हारे हो
0: हारे वो पासी मुहावरे जाऊ है आज चीज में देखी है खूब महिलाओं ने एडू देखी है ससुराल जाई तो सास कही तो कदी सासू ने सामी नहीं बोले ने पियर आवी मम्मी थोड़ू सु कोई कियो तो मम्मी ते झगड़ो तैयार भी है तो माई किए के मु तो माँ हूँ वाह हाऊ है वनु तो थोन सेन वे ने मुँह कहू तो मारू खराब लागे तो वाह बात है के सास रे रहा हमें तो बोली मीठा लागे ने पियर आओ तो बोल खारा लागे
1: देखो ससुराल में ये सब अंजान है अंदर अब लागे कि कटी में हाँ मैं बोलूं कटी घर में बात करी कोई मने लड़ी कोई झगड़ी और पियर में तो माँ का हाथ बड़ा व्या है तो माँ का तो मुंडे लागुड़ा हुआ आने वास्ते माँ कहीं भी कहे तो बेटियां जवाब देवे तुरंत जाने के माँ मारी है और न माँ को आपने खोटो लाग मतलब बेटी को माँ ने खोटो लागी एक समय खोटो भी लागे तो तुरंत ही वह शिकायत बंद हो जावे
0: पर मारे तो शिकायत भी है माँ कह के मार मुँह तो लड़ू तो मन तो सामी बोले सासू लड़े तो सामे नहीं बोले माँ ने मन में वह के थारे लाल की तो हमें सासू हुई मुँह खराब हुई प्रियो
1: नहीं वो तो माँ ही जाने कि भाई बेटिया माँ का हमें नहीं बोली तो कटे बोली और बोला में भी मर्यादा वे वे यूनिक बेटी छावे जो सुनाए के माँ भी छावे जो सुनाए
0: नहीं बोले हाँ। बोले माँ ने
1: तो चलो देखो बात ही बात में समय हो गयो एक गीत सुना को ठाई नहीं पड़ी
0: ओ, चलो चलो गीत सुना दो
1: तो एक गीत सुनन पचा लोटा हाँ तो श्रोता बंधु आप भी बने रहे जो गावरी बाता कार्यक्रम में सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: झूला झूले रे बनवारी, आगी ग्यारस की रमजोल, ग्यारस की रमजोल, आगी झूलन की रमजोल। झूला झूले हो झूला झूले रे सांवरिया, आगी ग्यारस की रमजोल। तो आप सगला श्रोता बंधुओं का पाचक गावरी बाता कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है। कंचन आप बात कर रहे हैं कि भाई देखो त्योहारा का दिन आ गया, एक तरफ बेटियां अपने पियर में आन रहे है जिकी शादी के बाद फर्स्ट अषाढ़ महीनो आवे है, कोई कोई समाज में सावन महीनो आखो पियर में रहे। तो अलग अलग समाज में अलग अलग चलन होवे है, रीति रिवाज होवे है। और घावरा महीने तो देख ले भाई, अब सावन महीनो आयो नहीं तो झूला चालू हो जाए मंदिरा में।
2: हाँ, पूरा सावन महीना में।
1: हाँ,
2: भजन कीर्तन सब चालू कर दी।
1: बिल्कुल, भजन कीर्तन सत्संग अत्रो होवे है। कई क्यों पूनम और ग्यारस तो एक भी खाली नहीं जावे,
2: खाली नहीं जावे। व्रत करी है लड़कियां, व्रत करी ला सोमवार रा सुबह जल्दी स्नान करी, मंदिरा में जाई जल चढ़ावी शिव जी रा, अच्छो पति रे वास्ते व्रत करे किए है सोमवार। मंदिरों में भजन भी है, गाँव में खूब अन्नु चलन भी है, मेहंदी लगावी श्रावण रो सोमवार पहलो वे जरे, नवा नवा कपड़ा पहरी।
1: अरे और ज्यादातर हरिया कलर का पहने।
2: हाँ, हरिया कलर का कपड़ा,
1: महिला तो हरी हरी साड़िया।
2: अरे रतन तुम दीवाने, हमें तो मोबाइल में स्टेज डॉट सी लगावा डूगा परा मनक तो श्रावण रो सोमवार रा, श्रावण रो सोमवार आवे रही है। शायद जुलाई महीना में आवे।
1: हाँ, जुलाई अगस्त में आधो हटीने चालू हो जावे,
2: चालू हो जावे। हाँ,
1: काहे अगस्त में राखी भी आ जावे।
2: हाँ, राखी भी आ जाएगा।
1: हाँ, तो देखो भाई सावन महीना में शिव जी की पूजा ज्यादा होवे, शिव भोलेनाथ की, और सोल सोमवार भी करे। सोलह सोमवार चालू हो जावे चौथू। तो कार्तिक महीना की चौथ तक चाले सोलह सोमवार, पचे लास्ट में उद्यापन कर देवे।
2: उद्यापन कर देवे, सही है।
1: तो अनी को भी एक ठाट है, सुबह जल्दी उठनो, ना धोन आपके एकदम शरीर पे पहने सको कपड़ों नहीं होना चाहिए, धुलियो सको होना
2: चाहिए,
1: बासी कपड़ों नहीं होना चाहिए।
2: यू लड़कियां सोमवार नहीं करे, वे सोलह सोमवार हमें श्रावण महीना रा पूरा करी ला, एक ही सोमवार नहीं छोड़े। बुजुर्ग महिला वही सोमवार करी ने कथा होबली भजन गावी, भजन ही खूब वही मंदिरों में रात्रि भजन जागरण वेला, सोमवार रदन हर मंदिरों में भजन आलबोस करीला।
1: कतराई त्योहार भी आई।
2: कतराई तो श्रावण महीना तीस त्योहार ही चालू भी है।
1: देख मन तो गीत की दो लाइन याद आई है जो गाओ। सावन

0: पियारी। अने में यूं केवे सावण महीना में घणा जणा हरी सब्जियां नी खावे।
1: हां हरी सब्जियां नी खावे, बैंगन नी खावे,
0: बैंगन नी खावे, हरी सब्जी कसी भी नी खावे, खाली दाल है, सूखी सब्जियां होवे ने, सूखी सब्जियां जैसे गुंदा है, काचरिया है, ये सूखी सूखी सब्जियां खावे।
1: हाँ रतन, मने ध्यान है क्योंकि माँ मम्मी मुँह बैंगन खाती ने तो मन डांटती के श्रावण रा सोमवार करे बैंगन खाए की बैंगन शिवजी चढ़े के बैंगन

0: मैं आवती घर में कतरी चहल पहल भेजा
1: चहल भेजा है। सही बात है। अषाढ़ महीनो ही चल रही हो, हमें जमजम बारिश ही चालू है। बारिश
0: हाँ। और बारिश का मौसम लागे भी अच्छो।
1: हाँ, अच्छो लागे रही,
0: क्योंकि अब के तो उतनी गर्मी पड़ी, हर कोई परेशान और हर एक का मुंडा पे गर्मी गर्मी।
1: कूलर ने एसी असर ही नहीं करता था। बारे जाओ भले एसी में भी हो, तो मैं तो कश्मीर, बारे जाओ तो राजस्थान, वाह वाली फीलिंग आती थी।
0: सही बात है। और अब देखो एक दो बरसात भी नहीं, केड़ी ठंडक होगी,
1: ठंडक पड़ गई ने गांव में तो देख रतन अन गर्मी में हालत खराब रहती थी मन को, और अतरी लू चलती थी, खूब मनक बीमार हुई, कतरी बीमारी हुई गर्मी रह वजह थी,
0: बीमारी आई। और अरे भाई बाने अपन नहीं जा रहे, पर घर में ही गरम गरम हवा,
1: हाँ पंखा ही गरम,
0: हाँ पंखा ही गरम गरम हवा फेंक रहा, कूलर में गरम गरम हवा,
1: और पे सोचता के रात रात ठंडी हवा आवे, रात रही पंखा रही हवा गरम गरम, रात रही तो ठंडक कटे थी,
0: हाँ घर बैठे ही लू लाग जाती,
1: लू लाग जाती,
0: आंगना ने पानी नाक नाक नाक नाक ठंडा करता।
1: हाँ सही बात।
0: कांगना पे सुझा वाणी करता तो
1: सही बात है।
0: तो भाई वो अषाढ़ सावन चौमासो तो घणो अच्छो लागे,
1: अच्छो लागे सही बात।
0: बस थोड़ो ध्यान राखनो जीव जंतु निकले भी को,
1: जीव जंतु
0: बाकी अच्छो लागे, क्योंकि हर मौसम को देखो महत्व है,
1: महत्व है सही है। पर अधिक वी जर लोग परेशान वे, देखो ठंड पड़े जर के गर्मी जो जे, ठंड ही घनी अच्छी नहीं लगती, बरसात हमें कहता बरसात आवे, बरसात हमें ज्यादा बरसात वही जर लोग बरसात थी कंटालियु के और बंदिश नहीं पे, तो भगवान का करे, हमें मनुष्य हर चीज थी परेशान है, बरसात थी परेशान, गर्मी थी परेशान, ने सर्दी थी परेशान, तो का कर सको। पर यू है कि ज्यादा अधिक वे तो करने थी सहन नहीं भी है,
0: अति चीज कोई भी व्या नहीं पसंद
1: नहीं पसंद आती,
0: पचवा हर चीज आ गई,
1: हर चीज आ गई, वैस तो मात है।
0: तो ये असाड़ सावन मजा आवे, क्योंकि एक तो भक्त मय माहौल हो जावे सब तरफ, सत्संग टाइम टू टाइम कसा जल्दी उठ उठन काम करा के भाई चलो मंदिर जानो, सत्संग में जानो, पूजा करनी पाठ करनो, कतरी भक्ति बढ़ जावे।
1: अन महीना में तो शादी हो वेला, अबार मो पड़ोस में ही शादी है, बे तीन शादी, 13 तारीख बीच में ही है, 9 तारीख अन्नी शादी, पर वह के सूरज नम लागी और पुटी शादी ब्याह सब बंद वे जाये।
0: हाँ सूरज नम ने बल्या नवमी के वह
1: बंद वे जाइला, पसे कोई भी शुभ कार्य, कोई फंक्शन, कोई करोरा उद्घाटन वगैरह कोई नहीं भी है, पसे
0: हाँ, जाता ये नहीं होगा
1: श्राद्धों रे बाद,
0: ये तो पचे दीपावली बाद,
1: हाँ महीना
0: दिवाली बाद, 4 महीना चौमासो के बावे, तो 4 महीना शुभ कार्य को नहीं होगा,
1: कोई नहीं करे।
0: और बाकी तो ठीक है, जो विदेश का है वे अटीना आवे तो वे तो काम करन जावे, क्योंकि वे तो पाछा आ नहीं सके, साल साल दो दो साल तीन तीन साल में आवे, वे भली काम काज करन चाहे, बाकी नहीं करा।
1: रीति रिवाज रे अकॉर्डिंग हमें शादी भी है, पसे तो कोई नहीं भी है, वो ऑपरे शास्त्रों रे अकॉर्डिंग जो भी कुंडली में बतावे शादी करे वे तो हमेशा, पसे तो अपने मर्जी थी शादी करनी वे तो कदे भी करो।
0: हाँ वो तो है, बाकी शास्त्र का मुताबिक 4 महीना आपके देव पोड़ जाये।
1: हाँ देव उड़ जाये, सही बात है।
0: हाँ चूके भाई देव पोड़ जावे पचे ये शुभ कार्य नहीं
1: होवे। अपने तो राजस्थान में बस हमें शादी है, पसे तो दिवाली बाद शादी और सीजन चालू,
0: हाँ, पाची करे। पाचे पाचे देव उठी ने, हाँ, जदि दिवाली का बाद देव उठनी 11 सावे, जदि शुभ कार्य पाचा शुरू हो जावे,
1: कार्य चालू करे। हाँ वो
0: सिस्टम अच्छो बनियो रहे, देखो यहाँ का आगे पाचे भी कहीं के साइंटिफिक कारण हो।
1: हाँ सब पहला थी बनियोड़ा है, तो कोई ना कोई रीजन अकॉर्डिंग हुआ वेला।
0: हाँ तो भाई अपने बड़ा बुजुर्ग जो नियम बनायो, जो भी बने नियम पे चलता है, कई तो सोच समझ नहीं बनायो है।
1: सही है,
0: तो सत्संग को कई विचार है, क्योंकि अषाढ़ महीनों चल रहे है, एकादशी का पूनम का तो जोरदार सत्संग होवे, और झूला को तो मजो ही अलग है। भाई मंदिरा में तो झूला अपने चालू हुए जावे ठाकुर जी के, झूला भी कदी फूलाऊ सजावे, कदी किको सजावे, ये दर्शन भी देखवा जैसा,
1: देखवा जैसा मंदिर सजाईला। हमें श्रावण महीनो आवते हो, भाद्रव उठता, साढ़ महीना उतरते इस मंदिर सजावना चालू हुई, सब मंदिरों में लाइटो डेकोरेशन तैयार हुई, क्यों श्रावण महीनो लागी मंदिर जमा जम जी की रात भर भजन वही, तो देखवारो आनंद
0: बिल्कुल। तो आप रोज अलग अलग दर्शन, ठाकुर जी का भी दर्शन बढ़िया, झूला ने अलग अलग ऋतु सजाई, कदी फूलों कदी कलियाओं कदी पान का पत्ताओं कदी लाइटिंग कदी दीपक अलग अलग प्रकार सजावे, तो वे भी दर्शन में मजा आवे,
1: मजा आवे। श्रावण सोमवार, यू तो कौन टाइमिंग भी है 12 बजे बाद मंदिर नहीं जानो, न श्रावण लागता इस मंदिर कोई टाइमिंग नहीं वेती।

0: कदे भी जैन दीपक लगावे ना हो, कदे भी जैन जल चढ़ावे ना हो, जर कोई टाइम में ये भगवान बैठा है आपरे वास्ते बैठा है।
1: सही है। और देख आजकल यो सिस्टम मैं देख रही हूँ खत्म होते जा रहे हो। मैं पढ़ाई करते यदि मैंने याद आवे अपना सावन में जो सोमवार आवे, हर सोमवार सब महिला इकट्ठी होन कसेन कसे गार्डन में हरियाली में जान खानो खाते, घर टिफिन ले जाता, अनवाणी दिन स्कूल की छुट्टी बैठे जो मजा आ जाता, आज तो छुट्टी है क्योंकि वन सोमवार करवा जा रहा
0: है। सोमवार सही बात है, पर हमें एडो नहीं रही, कौन लोग बिजी सब बिजी है आज टाइम कोई।
1: देख भाई कंचन पहली भी बिजी रहता, कतरो काम करता, पहली भी टावर पड़ता सब हो तो विकप बावजूद भी टाइम मिल जाता, और सब मिल झूलन सब टिफिन ले ले आपा को घर को खानो लेन, आपा कहीं कोई अच्छो जटे घाम में के तो मंदिर में हरियाली बहती तो वटे जाता के बगीचा में जाता एडी जगह पे जाता जटे हरियाली है चारों तरफ, वटे बैठता आपस में गीत भजन भी करता, पचे देखो एक दूसरा को बड़ी बड़ी चीजा भी टेस्ट करता।
0: पर मैं तो देख रतन मन तो कदी देखवा नेड़ो मलतो ही नहीं, पहला देखियो तो ठीक है, मैं तो एड़ो कटे हुए सब जो ने सब अपने अपने काम में व्यस्त है,
1: मशीन की नया दौड़ा ला गया ये टीवी मोबाइल थोड़ा ज्यादा व्यस्त कर देता
0: व्यस्त है। मैं तो देख एक अकेला रूम में पहला ओपे बे जना बेन बात करो तो ही ओपन है यू है के पाड़े थे, अबर एक लो मनक ने बेरावन मोबाइल फोन दे दो वरने कन्नी जरूरत नहीं।
1: हाँ वही कह रू मोबाइल और टीवी में अतरा व्यस्त हो गया कि इंसान इंसान बात करो ही बंद कर दे दो।
0: मैं एकलू मनक वह तो ही वो खुश है, पहला एकलू मनक के घुटीज तू एकलू रह नहीं हकतू तू, हम तो कोई जरूरत नहीं है मोबाइल वह तो वो एकलू आराम ती रह
1: के। मोबाइल के टीवी वह तो पचे उल्टा वे एक दूसरो वे तो अरे आप बोलो मत
0: मन टीवी देखवा दो डिस्टर्ब हो रहे हैं। वाइस तो बात कह रही हूँ
1: तो सावन महीना की मने घनी बात याद आवे कापा कहीं कहीं नहीं करता हर सोमवार जो शिवजी को मंदिर हो तो वटे घनी जगह पे देख ले शाम का टाइम पे पाची ठाट बाट टू आरती होवे तो सब सखी सहेलिया मिलन सब मंदिर में जाता दर्शन करवा
0: मिलन इस मंदिर में जाता।
1: और कदी भाई पहला तो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते टाइम पे कोई यूं तो है ही नहीं कापा साड़ी पहन रहा, पर सब मिलन प्लान बनाता आज साड़ी पहन जावा काले ड्रेस पहन जावा
0: यूज तो करता आज सूट मु पहरू आज और अंगरो सूट पहरूला तू ही पहर जे सब एक हर का कपड़ा पहन जाता।
1: हाँ
0: तो फटाफट उठेन घर रो काम निपटाता ने टाइमिंग देता अतरे बजे तू आव जे अतरे बजे मु आओ
1: अच्छो भी लागतो। देखो चार जना मिलता रहा प्रेम बनियो रेवे व्यवहार टिक्यो रेवे और संबंधा में मजबूतता आवे, त्योहार भार को आनंद यूं ही नहीं बनायो।
0: सही है।
1: पर ठीक है भाई समय का साथ में परिवर्तन आयो और अब तू बात की दी है एक भाई अमानु सब आप आपका काम में अतरा व्यस्त कि नहीं टाइम को नहीं मिले तो मैं तने छुट्टी देऊंगी तो टाइम पे घरे जा ताकि तो अगली बार टाइम सर आ सके।
0: टाइम वो प्रो का ही मन ध्यान ही नहीं पड़ियो
1: तो आवजे भाई राम राम।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग जो है एक नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे और कल आपने अच्छी प्रैक्टिस भी की होगी, मैं ही सफलता हूं इस विषय का, और इस विषय पर आपने चिंतन भी किया होगा। तो चलिए, एक नया विषय आज हमारा है, सफलता का आधार मेरे संस्कार। जी हाँ, जीवन में कहते हैं कि संस्कार बड़ा रोल अदा करता है, तो मेरे संस्कार ही मुझे सुख या दुख या सफलता या असफलता का कारण बताते हैं। तो इस विषय को गहराई से समझेंगे और आज के हमारे विशेष मेहमान जिन्हें आप सभी जानते हैं, राजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का उनका ये विषय है, सफलता का आधार मेरे संस्कार। तो चलिए उनसे सुनते हैं। आप सभी की तरफ से राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, ओम शांति।
1: नमस्ते जी, ओम शांति।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
0: जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आज एक नए विषय पर आप बात करने वाले हैं, सफलता का आधार मेरे संस्कार। तो ये विषय क्यों आपने चुना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
1: ये इसलिए चुना क्योंकि एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, उसको बनाने में उसकी आदतें, या जिनको हम इंग्लिश में कहें हैबिट्स
0: जी,
1: या जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं, वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं
0: जी।
1: और व्यक्ति अपने आप को अपने संस्कारों के हिसाब से ही जानता भी है और पहचानता भी है। अगर वो कहता है मैं ये हूँ, तो वो उसके संस्कारों के आधार के ऊपर है, उसकी आदतों के ऊपर है। और आदतें एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आपकी बन जाएं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और फिर वो अपने आप ही प्ले करती, हमें पता ही नहीं लगता कि हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। माना वो हमारी ज़िंदगी का कैसा अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं, जिनको अगर हम बाद में बदलना चाहें तो व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन आदत को नहीं बदल सकता हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि ये काम ऑटोमेटिकली ही हो रहा है। तो इसलिए अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली अच्छी आदतें, पॉजिटिव आदतें हमें सफलता की ओर लेके जाएंगी।
0: जी जी।
1: क्योंकि सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हर व्यक्ति की ज़िंदगी में वही आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गांधी जी जो थे, जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया, तो अंग्रेज़ों ने तो हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे अहिंसा का रास्ता अपनाना है। उन्होंने लाठी नहीं उठाई, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक अलग संस्कार, एक अलग आदत बना ली। और उसी एक संस्कार के कारण, उसी एक आदत के कारण वो 20वीं सदी के सबसे महान शख्स बन गए और उनको सबसे महान शख्स बनाया गया। लेकिन नॉर्मली हमारी आदतें क्या होती, जो डे टू डे लाइफ में हमें सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं, समाज में जो आम चलती हैं, जो दूसरों को देखते हैं, कभी हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। लेकिन वही एक आदत एक व्यक्ति को इतना महान बना दिया, और वही एक आदत एक व्यक्ति को वो जेल तक पहुंचा देती है, गुंडा बना देती है, डाकू बना देती है। जो डाकू होते हैं, गुंडे होते हैं, उनके सामने भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि केवल गांधी जी तो बेकसूर थे, लेकिन बेकसूर होते हुए भी उन्होंने एक अच्छी आदत, एक अच्छे संस्कार को अपनाया। ऐसे जो हम कहते हैं समाज में जो लोग बुरे बन जाते हैं, वास्तविकता में जन्म से कोई बुरा होता नहीं, लेकिन उनके सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं। उनके सामने भी हो सकता है कि उनको भी किसी ने दुख दिया हो, तंग किया हो, लेकिन उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जिसके कारण उनको भागना पड़ा और जो इतने अच्छे व्यक्ति थे वो चोर बन गए, डाकू बन गए, गुंडे बन गए।
0: बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया राजेश जी। मुझे लगता है कि संस्कार को लेकर काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन पर उसका असर पड़ता है, और जैसा व्यक्ति चिंतन करता है, सोचता है, उसके आदतें बनने शुरू हो जाती हैं, और फिर ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्शन पर रिएक्शन कैसे करें। अगर अंग्रेज़ों ने हिंसा का मार्ग अपनाया, तो गांधी जी ने उसका विरोध में अहिंसा के रूप में उनके साथ में सामने खड़े रह गए। तो यहाँ पर हमारी चिंतन की धारा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे संस्कारों के साथ में। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी व्यक्ति का स्वभाव देखते हैं या उनका रवैया देखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि हमें भी उसी रवैया में बात करना है या उसी तरीके से बात करना है। आप अलग भी अपने जो है मानवीय मूल्यों को लेकर भी आप उनके साथ सामने खड़े हो सकते हैं। और देखिए, हमारे सामने बहुत ही सुंदर उदाहरण गांधी जी का है। हिंसा के प्रति वो अहिंसक रूप में खड़े होकर जीत हासिल की। तो हम लोग आज के समय में कभी ऐसा विचार नहीं करते, या करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सोचते हैं कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, है ना। तो आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कार तो पुराने भी होते हैं, पूर्व जन्म के भी होते हैं, तो फिर वो हमारी सफलता का आधार कैसे बनेंगे।
1: देखिए, कहते हैं ना कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं
0: जी,
1: कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना, अगर मिट्टी में भी हाथ डाल दे तो सोना बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उस में वो शायद किस कोई उसके पिछले जन्म की बात है, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर वो मिट्टी में हाथ डाल दे तो सोना बन जाता है, क्योंकि उसकी जो आदतें हैं या उसके जो संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि अगर वो किसी भी कार्य को करेगा तो बहुत निष्ठा से, बहुत मेहनत से, पहली बात तो हाथ में नहीं लेगा अगर उसने कोई कार्य करना है तो। लेकिन अगर लेगा भी, वो तभी लेगा अगर उसको ये पता होगा कि मैं इसको ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से, पूरी निष्ठा से करूँगा। और जब वो इन अपने मूल्यों के साथ उस कार्य को करता है तो उसको सफलता मिलती है। और जब वही कार्य वो बार बार करता है, क्योंकि दो व्यक्ति हैं और एक कार्य को दो व्यक्ति एक ही समय पर करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति असफल हो जाता है, एक व्यक्ति सफल हो जाता है, क्योंकि वो उसी कार्य को अपने उन्हीं मूल्यों, उन्हीं गुणों के साथ करता है, इसलिए वो सफल हो जाता है। तो अगर हम देखें, सफलता असफलता में केवल इतना ही फर्क है कि अगर हम मूल्यों को नहीं छोड़ें, अपने मूल्यों पर अडिग रहें। जैसे अगर हम सचिन तेंदुलकर की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन आज के दिन में माने जाते हैं। तो उनके मन में भी देखिए कितनी मेहनत उन्होंने ज़िंदगी में की होगी, साहस उनमें कितनी सहनशीलता होगी, साहस होगा, कड़ी मेहनत उन्होंने की होगी, दिन में मैं समझता हूँ 12-12 घंटे प्रैक्टिस की होगी, अभ्यास किया होगा, कड़ी मेहनत की होगी, डिटर्मिनेशन होगा उनमें, डिसिप्लिन होगा। जहाँ पर उनके विद्यार्थी थिएटर में जाके पिक्चर्स देखते होंगे, वही दोपहर की कड़कती धूप में वो मेहनत में इतनी मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम ये जो मूल्य हैं इनकी बहुत आवश्यकता है एक व्यक्ति के सफल और असफल होने में। और उन्हीं मूल्यों को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में जब लेके आते हैं, बार बार उनको करते हैं, तो फिर जैसे हम कहते हैं ना कि व्यक्ति को किसी भोजन की आदत पड़ जाती है। जैसे बचपन में हम सबको माँ का भोजन ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है कि माँ का भोजन खाने की आदत होती है। तो ऐसा नहीं है कि अब हर एक को अपनी माँ का भोजन ही अच्छा लगता है, लेकिन एक व्यक्ति को दूसरे की माँ का भोजन क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि बचपन से उसकी आदत जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है कि मुझे वही भोजन अच्छा लगेगा जो मेरी माँ बनाएगी, भले दूसरे की बनाएगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, बाहर का अच्छा नहीं लगेगा, 5-स्टार का होटल का अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो आदत पड़ चुकी है, वो बचपन में अनकॉन्शियसली पड़ी हुई है। इसी तरह ये जो सफल व्यक्ति होते हैं उनकी आदतें ही उनको क्या बनाती हैं, सफल जो है वो बनाती है। लेकिन कॉन्शियसली ध्यान देकर के हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जैसे बताया शुरू में, क्योंकि उनको बदलना क्या है, बड़ी मुश्किल है। उसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे फिजिक्स में एक लॉ है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि कोई भी वस्तु वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि हम उसको कुछ बाहर से फोर्स ना दें, गति ना दें। एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए एक गिलास है, उसके ऊपर हमने एक गत्ता रखा है, है ना, और उसके ऊपर हमने एक सिक्का रखा है। तो अगर आप गत्ते को गिलास से ज़ोर से खींचेंगे तो सिक्का गत्ते के साथ नहीं जाएगा, लेकिन सिक्का गिलास में गिर जाता है। माना सिक्का अपनी वो अगर वो खड़ा है उसी जगह तो खड़ा ही रहना चाहता है, वो गत्ते के साथ चलना नहीं चाहता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी तरह हम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं ही ये आदत हूँ, मेरी ये पर्सनैलिटी है, इसको बदलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ मुश्किल है तो व्यक्ति की आदतें हैं। जैसे आपने पिछले जन्म की भी बात की, अगर पिछले जन्म की भी कुछ आदतें हैं अगर पॉजिटिव हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। कईयों के आते हैं संस्कार, जैसे मान लीजिए कई बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छा गाते हैं, पियानो बजाते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, या उनको गीता के श्लोक बिल्कुल याद होते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार हैं। लेकिन कई ऐसे संस्कार भी जो नेगेटिव होते हैं जो पिछले जन्मों में आते हैं, लेकिन अगर हम उनको ध्यान दें तो जैसे हमने अपने संस्कार बनाए हैं, अगर ध्यान देकर कॉन्शियसली उनके ऊपर हम ध्यान एकाग्र करें तो बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम संस्कारों को बदल भी सकते हैं।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि हम अपने संस्कारों पे अगर हम लोग काम करें तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जो है सबसे पहला प्रायोरिटी हम अपने संस्कारों को समझें। अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो उसको चेंज करें, है ना। लेकिन कैसे चेंज किया जाए, क्या पैरामीटर हो सकते हैं, कैसे बदले जा सकते हैं हमारी आदतों को?
1: जी, संस्कार जो है हम कहेंगे तीन तरह के हमारे संस्कार होते हैं। पहला तो है हमारी सोचने के संस्कार, सोचने की आदत।
0: जी,
1: के मन जो है हमारा 24 घंटे सोचता रहता है, तो मन को भी एक आदत पड़ जाती है। जैसे हमने बात की कुछ सेशंस में पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हम टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, और उसका कारण यही है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसको एक आदत बन चुकी है, या स्ट्रेस में है, लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी में है, उसको एक आदत बन चुकी है कि उसने नेगेटिव ही सोचना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हर एक चीज़ के उसका एक नज़रिया बन जाता है, रवैया बन जाता है कि बार बार उसके मन में नेगेटिव संस्कार ही बनते हैं। तो मन के सोचने का भी एक संस्कार है। फिर जैसा हमारा मन सोचता है वैसे ही हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, कि जो हम सोचेंगे वैसी ही फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा होती है। उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को हम अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उन भावनाओं को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो दूसरी तरह के संस्कार कहेंगे हमारे बोलने के संस्कार, हमारी भाषा कैसी है, हम व्यवहार कैसे करते हैं, एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, संवाद कैसे करते हैं। तीसरा है जो हमें नज़र आते हैं, जैसे एक्शंस, प्रैक्टिकली जो हम उनको कर्म में करते हैं, और जो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने कार्य में उनको लेके आते हैं, उनको हम कहेंगे कर्म के आधार के ऊपर। लेकिन इनका जो बेस है वो हमारे मन की सोच है, कि मन हमारा क्या सोच रहा है, मन हमारा नेगेटिव सोचता है या मन हमारा जो है वो पॉजिटिव सोचता है। तो आप देखेंगे अगर हमारे संस्कार बुरे हैं, जैसे मान लीजिए किसी में गुस्सा करने का संस्कार है, कोई व्यक्ति किसी को देखते ही गुस्सा करना शुरू कर देता है, तो वो गुस्सा इसलिए करता है कि जैसे व्यक्ति उसको देखता है उसको पता है कि ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं है। तो जैसे ही वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं, उसके मन में पहला थॉट नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव जब आया तो उसके मन में भाव क्या हो जाता है, नेगेटिव ही हो जाता है, उसकी फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती हैं उस व्यक्ति के प्रति, उसके इमोशंस जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए वो नेगेटिव शब्दों से ही उस व्यक्ति से व्यवहार करता है, और उसका क्या हो जाता है, वो आदत क्या बन जाती है गुस्सा करने की, जो है वो बन जाती है। लेकिन उसके विपरीत कोई व्यक्ति अगर उसके मन में भाव ये है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो जैसे ही व्यक्ति सामने आएगा उसके बारे में क्या सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, अच्छा सोचेगा, उसकी जो टॉक है उसके प्रति अच्छी है, और जो शब्द उसके मुख से निकलेंगे उस व्यक्ति के प्रति वो भी कौन से निकलेंगे, अच्छे ही निकलेंगे, और व्यवहार भी क्या निकलेगा, व्यवहार भी कैसा करेगा, अच्छा करेगा, उसका वो काम करेगा, जो वो कहेगा उसकी वो बात भी मानेगा। लेकिन अगर उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वो समझता है कि ये बुरा है, उसकी वो बात भी नहीं मानेगा, भले वो अच्छी बात भी करेगा, भले वो उस व्यक्ति के फ़ायदे की बात भी करेगा, लेकिन उसको लगेगा नहीं ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं, इसलिए ये अच्छी बात कभी भी नहीं जो है वो कर सकता है। तो इसकी एक विधि है, इसका एक तरीका है, मैं समझता हूँ हम आने वाले सेशंस पे इसके ऊपर जो है वो ज़रूर बात करेंगे कि हम अपने संस्कारों को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन आने वाले जो हमारा नेक्स्ट होगा, कुछ देर के लिए आप ऑब्ज़र्व करें, देखें अपने आप को कि कोई जैसे हमने एग्जांपल दी कि एक व्यक्ति जिसको आप बुरा मानते हैं जब वो सामने आता है तो मन आपका कैसा चलता है, क्या होता है, ऑब्जर्व करें अपने आप को। और दूसरी जगह जैसे कोई अच्छा व्यक्ति जिसको आप अच्छा समझते हैं जब वो आपके सामने आता है तो आपका मन कैसा सोचता है, शब्द कैसे निकलते हैं, व्यवहार आपका कैसा होता है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है अपने सोच को बदल सकते हैं, और सोच अगर हमारा बदलना शुरू हो जाए तो फिर हम अपने आदतों को भी बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद ऐसा लगता है कि हमें अपने स्वभाव या संस्कारों को बदलने में एक टेक्निकल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद का निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। और चलिए, मैं चाहूँगा कि एक जाते जाते एक और बात, अगर इससे जुड़ी हुई कुछ बात रह गई हो तो ज़रूर बताइए राजेश जी।
1: हाँ, एक कॉमन प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि आदतें, आपने जैसे पूछा था कि आदतें कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि उनको बदलना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको ये समझें कि बनी कैसे। बनी ऐसे कि जब हम कोई भी काम को जो हमें अच्छा लगता है उसको हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारी जो है वो आदत बन जाती है। और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि उस काम को कितनी बार किया जाए कि जो हमारी आदत बन जाए, इसके भी ऊपर बहुत एक रिसर्च हुई है, लेकिन और इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत है। एक राय नहीं है, बहुत सारी राय, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हमारी आदतें संस्कार जो हैं वो नौ दिन लगते हैं उनको बदलने में। कुछ लोगों का व्यूज है कि उनको 21 दिन लगते हैं, लगातार हम एक ही कार्य को, जैसे मान लीजिए आपने सुबह उठने की आदत बनानी है, कुछ लोग कहते हैं अगर आप 9 दिन करेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि नॉर्मल सी आदतें हमारी 9 दिन में बदल जाती हैं, लेकिन जो मुश्किल आते हैं उनको शायद 21 दिन लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं 64 दिन लगते हैं। अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को बदलना है तो कम से कम 3 महीने से लेकर 9 महीने तक लगते हैं अपने भोजन की आदतों को बदलने में, एक्सरसाइज करने में, सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला जिसे हम नेक्टर टाइम कहते हैं उसको उठने में। तो पहली तो एक चीज़ है कि हमको जिस भी आदत को बदलना है, जिस भी नई आदत को लेके आना है, उसको हम क्या करें, बार बार बार बार करें, ये पहली बात है। दूसरी बात, उसको हम दिल से करें, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति हमको प्रेशर से कराए, जैसे बच्चों को हॉस्टल में होता है वो उनको प्रेशर से कराया जाता है। डिसिप्लिन, अगर हम उनको कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, लाइन में चलना है, तो टीचर खड़ा होगा तो लाइन में चलेंगे, अगर नहीं खड़ा है तो क्या होगा, फिर वो लाइन तोड़ देंगे। तो दूसरी शर्त ये है कि जिस आदत को भी आपने बदलना है, जो भी आपने नई चीज़ सीखनी है, उसको आप अपने दिल से करें, ना कि दूसरों से कहने से करें। और दिल से आप कब करेंगे, जब आपका लॉजिक माइंड, आपका जो तर्क करने वाली बुद्धि है, वो स्वीकार कर लेगी कि ये जो आदत है, ये जो संस्कार है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, ये मेरे को जीवन में आगे बढ़ाएगी, ये मेरे को सफलता तक लेके आएगी। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, किंतु है, परंतु है, तो उस प्रश्न को आप दूर करें, क्योंकि जब तक आपका जो लॉजिक माइंड है उसमें कोई क्वेश्चन है तो हमारा इमोशनल माइंड, क्योंकि जो भाव हैं वही हमारे संस्कारों को बदलते हैं, हमारी आदतों को बदलते हैं, इसलिए इमोशनल माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी हमें जो है वो दूर कर लेना चाहिए
0: जी।
1: और चौथी बात है कि हम उसको कंटिन्यूस करें, लगातार करें, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन से करें। अगर हम उसको लगातार करते हैं तो हमारी आदत बदलती है, लेकिन अगर हम 2 दिन करते हैं फिर 3 दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन करते हैं 3 दिन छोड़ देते हैं, तो वो हमारी आदत जो है वो नहीं बन पाती है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रेक हो जाता है। उसके लिए हमें बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए और बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है
0: जी। राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे चीज़ें संभव हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से मंथन करके आपने बताया 3-4 चीज़ें। और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर ध्यान से अपने आदतों को बदलना चाहे तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ अगर आप करते हैं, और दूसरा एक किसी चीज़ को बदलने के बजाय अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड है और उसके ऊपर काम करते हैं तब भी आपका काम हो जाता है, किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका फोकस क्लियर हो कि मुझे क्या बनना है, उसी पे अगर आप ध्यान देते हो तो नए आदतें क्रिएट होंगे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अल्टरनेटिव चीज़ें बहुत सारी हैं, तो इस पर कई और चीज़ें जैसे कि है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार ढेर सारी खुशियाँ, थैंक यू राजेश जी बहुत अच्छी बातें बताने के लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

ओम शांति। आज 19 जुलाई 2026 के हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2011 को सुनाए थे। 18 जनवरी स्मृति दिन होने कारण, स्नेह का दिन होने के कारण सभी बच्चों का स्नेह बाप दादा अमृत वेले से देख रहे थे। तो बाबा कहते, आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और अपने दिल के स्नेह की निशानियां मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। अनेक प्रकार की मालाएं, स्नेह की, उलहने की, अश्रुओं की, मोतियों की, ये सारी मालाएं बाप के पास पहुंच गई। हर एक बच्चे के नैन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। बाबा ने देखा हर एक बच्चे का नैन जो स्नेह में समाया हुआ और उनकी मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ये परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। तो स्नेह संगम युग पर ही हमें प्राप्त होता है। ये परमात्मा स्नेह क्या करता है? सहज बाप का बनाने वाला, सर्व खजानों का मालिक बनाने वाला। ये स्नेह बाबा कहे, देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। फिर बाबा कहे, इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, लेकिन समर्थ्य दिवस है। इस दिन बाप ने बच्चों को कौन सी समर्थ्य दी? विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करणहार बनाने का तिलक दिया। आज भी कोई भी सेवा की सफलता का साधन क्या है? स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करणहार बनाया। बाबा बार बार ये कहते, करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करणहार हूं। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। करणहार बनने से निमित्त और निर्माण बन जाते हैं। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है। बाबा कहते, अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतना बड़ा परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, लेकिन सारी जिम्मेवारी होते हुए भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसीलिए भक्ति मार्ग के यादगार में क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा का आसन, कमल आसन दिखाते हैं, न्यारा और प्यारा। बाप दादा ने देखा कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। क्या लक्ष्य है हर एक बच्चे का? बाप समान बनना ही है। इस जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे, ये लक्ष्य है। बाप दादा ने देखा कि जो भी बाप दादा होमवर्क देते हैं तो बच्चे उसमें अटेंशन भी जरूर देते हैं, लेकिन सदा नहीं। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? कि योगी भी अच्छे हैं, लेकिन सदा के योगी बनाना चाहते हैं। सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो भी संकल्प दो वही करे। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। इसीलिए ये गायन है, मन जीते जगत जीते। ये किसका है? बाबा कहे,
मन को भी मेरा कहते हो, मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो भी संकल्प करना चाहो, जितना समय वो संकल्प करना चाहो वो बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि मन मेरा है। तो बाप दादा स्नेह के दिन यही होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हो तो वो शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म करते हैं। ये नहीं कि चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले। बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए कि चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले। ये कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, मन तो आत्मा का साथी है। उसको कर्मेंद्रिय भी नहीं कहा, लेकिन मन तो आत्मा का साथी है। तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो और मन जीत बनो। बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे ना। फिर बाबा रहम दिल होके कहते हैं, चलो अभी जो भी बात बीती सो बीती, अब ऑर्डर करो कि आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ संकल्प बंद। और उसकी युक्ति है, ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो। याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करो। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है। सिर्फ आप याद करना, बाबा कहते सिर्फ आप याद करना। मन जीत जगत जीत जो गायन है वह स्वरूप धारण करना। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, मन को थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, तो वो अपना काम करता है। अभी अटेंशन दो, मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में चलो। बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। दिल से तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन, मैं सिक्की लधा बच्चा हूं। तो बाबा हर जोन को ये होमवर्क दे रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया जाए वह किया या नहीं किया ये चेक करना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। नवीनता के लिए जो रोज के महावाक्य सुनते हैं वह होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया, तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। बाबा कहते देखो, ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया। चाहे बॉम्बे भी जाते रहे कारण या कारणे, तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी वो मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। तो इसी तरह बाबा कहते बच्चों का भी प्यार मुरली से हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है, ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के स्मृति का दिन है। स्मृति के साथ साथ स्नेह का भी दिन है। तो बाबा कहे सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले
बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। बाबा बच्चों के स्नेह को एक्नॉलेज कर रहे हैं, अर्थात स्वीकार कर रहे हैं कि 4 बजे से पहले से ही स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की, अपने दिल के स्नेह की निशानियां, मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। बाबा कहते, एक तो अमृत वेले से बाबा से मिलन मनाने की और स्नेह की निशानियां, मालाएं, कौन सी मालाएं, किसी किसी की उल्हने की माला थी, स्नेह की माला थी, बाबा के प्यार में समाई हुई मालाएं थी, अश्रुओं की मालाएं थी, तो ये सारी मालाएं पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। इतना प्यार से बाबा उस स्नेह को स्वीकार करते हुए कहते हैं, उसमें भी बच्चों का स्नेह की खुशबू समाई हुई थी। हर एक बच्चे के नैन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। क्या क्या बोल रही थी? ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं। अमृत वेले से लेकर के शाम तक हरेक बच्चों के नैनों की भाषा में वो दिल का स्नेह समाया हुआ है, क्योंकि ये परमात्म स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। ये अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। बाबा कहते, ये अलौकिक स्नेह हरेक के दिल से निकलता है, मेरा बाबा, तो इसके अनुभव से अपना बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना। यह स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। परमात्म स्नेह क्या क्या करता है? सहज बाबा का बनाने वाला है, सर्व खजानों का मालिक बनाने वाला है, देहभान से एक सेकंड में देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है, 18 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? बाबा कहे, सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है लेकिन समर्थि दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन, बच्चों को करणहार बनाने का तिलक दिया। बाबा विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करणहार बनाकर बाबा ने वह तिलक दिया। सन शोज फादर का करणहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करणहार बनाया, क्योंकि बाबा कहते, सेवा में सफलता का साधन मैं करणहार हूं, करावनहार करा रहा है। जब बच्चों के अंदर ये बात बुद्धि में आ जाए कि मैं करणहार हूं, बाबा करावनहार है, तो सेवा में सहज सफलता प्राप्त होती है। यह स्मृति व यह स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति कौन सी रही? मैंपन, देह अभिमान में ले आती है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करणहार हूं, इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से
देह अभिमान समाप्त हो जाता है। जब ये स्मृति में सहज रहते कि मैं निमित्त हूं, तो देह अभिमान सहज समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसीलिए करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। करणहार बनने से स्वतः ही निमित्त है, निर्माण बन जाते हैं। बाबा कहते जब करणहार समझते हैं अपने आप को, तो सहज निमित्त भी और निर्माण भी बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बन सेवा करते हैं, तो निमित्त बन सेवा करने वाले जो सेवाधारी है, उनके मस्तक में सेवा का फल क्या है? तो निमित्त बन करके सेवा करते तो उनके मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है। इसीलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कहके मुबारक दे रहे हैं। जो ऐसे निमित्त समझते हैं अपने आप को, तो बाबा भी देखकर खुश है और ब्रह्मा बाप विशेष कहते हैं वाह बच्चे वाह मुबारक दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाबा हर बच्चे को इशारा भी दे रहे हैं कि आपको बाप समान फरिश्ता स्थिति में सदा रहना है। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का अटेंशन है कि हमें फरिश्ता बनना है। ये अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी ब्रह्मा बाप जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाप का आसन कौन सा दिखाते हैं? कमल आसन दिखाते हैं। नेचुरल जिम्मेवारी होते हुए भी जीवन मुक्ति के मजे में, जीवन मुक्त बन। अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए, आप समान बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा की अभी भी यही आशा है कि फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्ति बताए, आप समान बनाने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा, क्या देखा? कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हो? याद है क्या कहते हो? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? इस जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप समान क्या बनेंगे? इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है, क्या देखा? कि जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं। बाबा बच्चों को शाबाशी भी देते हैं कि जो भी होमवर्क दिया तो बच्चे उस बात में अटेंशन देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया था,
कई जोन की रिपोर्ट एक मास के रिजल्ट में अच्छी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने देखा कि बच्चों को जो होमवर्क देते हैं विशेष अटेंशन रखते हैं और करते भी है, लेकिन सदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी बाबा सब बच्चों को वाह बच्चे वाह कहकर मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहना है बाबा की? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा ठीक रहो। योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाने चाहते हैं। कभी कभी के योगी नहीं, सदा योगी बनाने चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था सदा रहने के लिए, हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। अभी बाप दादा यही चाहते हैं। जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत, मन को जो संकल्प दो वही करे। ऐसे मन जीत जगत जीत बनना है कि मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों क्यों मन को वही करना है? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते। बाबा कहते अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। बाप दादा भी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। जो गायन है, मन जीते जगत जीत, ये किसका गायन है? आप बच्चों का ही तो गायन है। हर कल्प किया है तभी गायन है, क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रिय को मेरी कहते हो वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मन बाबा कहते जैसे और कर्मेंद्रिया को मेरी कर्मेंद्रिया कहते हैं, ऐसे मन को भी तो मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो संकल्प करने चाहो, जितना समय वो संकल्प करने चाहो, वो बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा है, मेरा मन है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन यही होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म करते हैं। इतनी पावर हो कि मन को संकल्प या शुद्ध संकल्प करना है तो फिर व्यर्थ ना चले, वो व्यर्थ को खत्म कर दे। चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले, ये कंट्रोल होना चाहिए। अगर एक घंटा योग लगाने चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है। मन मालिक नहीं है, आत्मा का साथी है। तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो और मन जीत बनो। क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आते हैं। क्या आता है? बाबा कहते बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है। क्या समाचार आता है? व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं। नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं।
तो क्या ये मालिक कहेंगे? तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना, तो बाप आज स्नेह में यह दिल की चाहना सुना रहे हैं कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। ब्रह्मा बाबा से स्नेह है तो आज स्नेह की सौगात बाबा को यही चाहिए कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे ना। स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दी जाती है ना। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से ये सौगात देने के लिए कह रहे हैं, तैयार है? तैयार है? हाथ उठाओ। तो अभी जब भी ऑर्डर करें तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। कर सकते हो आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ। कर सकते हो? कर सकते हो? बाबा बार बार पूछ करके कंफर्म करते, करेंगे? चलो अभी बीती सो बीती, अब तक जो हो गया बाबा इतना रहम दिल क्षमा का सागर। बाबा कहते चलो अभी बीती सो बीती, लेकिन अब ऑर्डर करें कि आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप। तो करना पड़ेगा ना। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। बाप से स्नेह में जो बाप कहे वो करना है। संकल्प व्यर्थ बंद, व्यर्थ संकल्प बंद। इसकी युक्ति है ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। इतना बाबा का स्नेह है हम बच्चों के प्रति, चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा। ब्रह्मा बाबा को किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है। देखा है या नहीं देखा है? बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है। जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाप की पालना देखी, तो क्या उसी से चल रहा हूं? तो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठा के तो खुश कर लिया बाबा को। जब बाबा कोई बात में हाथ उठाते हैं उठवाते हैं तो सभी बच्चे हाथ उठा के बाबा कहते बाप को खुश कर लिया। बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी है ना। लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना तो सदा बाप के संबंध। कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप को कभी सखा भी बन जाते हैं। इसलिए या संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध, जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना। तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना। बाबा कहते आप दिल से याद करना और बाप सदा स्नेही भी और सहयोगी भी। तो समझा आज क्या करना है? मन जीत जगत जीत जो गायन है वह स्वरूप धारण करना। ऑर्डर से चलाओ मन को, ऑर्डर से चलाओ। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना तो वह अपना काम करता है। मन को जैसे ही फ्री छोड़ दिया तो वह अपना काम करता है। अभी अटेंशन दो मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों में रमण करे और आ जाती है फालतू बातें, तो क्या हुआ?
मन मालिक बना या आप मालिक बने? तो सभी ने यह होमवर्क समझा, तो होमवर्क बाबा दे रहे हैं, तो बाबा कहे यह होमवर्क समझा, मन जीत बनना है, जो ऑर्डर करे वह मानेगा, जरूर मानेगा, अटेंशन देना पड़ेगा बस, अटेंशन देंगे तो मन फिर बेचारा मानेगा। माताएं या टीचर्स हो सकता है, हो सकता है, टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स हाथ उठा रहे हैं, अगर समझते हैं हो सकता है तो हाथ हिलाओ, पहली लाइन तो हिलाओ, भाई हाथ हिलाओ, तुमने हिलाया तो बाबा कहते वाह, फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है, मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन, बाप का सिक्की लदा बच्चा, सभी कितने बारी कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा, कितने बारी सारे दिन में कहते हो, बाप सुनता है ना, सब नोट करता है, डबल फॉरेनर्स भी सुन रहे हैं ना, बाप दादा ने देखा